का सिस्टम सवालों के घेरे में। ऐसे में सरकार जहां जांच और एक्शन के द्वारा श्री राम भक्तों का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्ष पूरी जांच पर सवाल खड़े कर रहा है।

0: सवाल राम मंदिर का है। ऐसे में चंदा चोरी का मामला पूरी तरह से सियासी हो चुका है। योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
1: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो।
0: सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए सोना चांदी और धनराशि के गबन से जुड़े दस्तावेज SIT को सौंपे जाएंगे। इतना ही नहीं, घर घर अभियान के दौरान इकट्ठा किए गए सोने से संबंधित साक्ष्य भी SIT को उपलब्ध कराए जाएंगे। उधर अभी मुक्तेश्वरानंद भी चंदे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है, हमने सुना। जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है।
0: सवाल SIT की जांच पर भी खड़े हो रहे हैं, जहां विपक्ष एक सुर में सरकार पर हमला कर रहा है।
3: ये जो फर्जी SIT बनी, अब कल फर्जी FIR हुई, उस फर्जी FIR में 8 छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया, कोई बड़े नाम नहीं है।
4: ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये इस्तीफा है दबाव पर। और इसमें जो FIR अब तक हुई है, वो FIR छोटे लोगों पर हुई है, बड़े लोग बचाए गए।
0: इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट के 2 बड़े पदाधिकारियों पर आरोप की बात कबूली है।
5: मुझे नहीं लगता कि कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत है। 2 ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है, ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है।
0: अब सवाल ये है कि ये एक्शन कहां तक जाएगा, कौन से बड़े चेहरों को लपेटा जाएगा, क्योंकि इतना तो साफ है कि इसकी सियासी गूंज आने वाले कई चुनाव में सुनाई देने वाली है। आज तक ब्यूरो।
6: खबर पुणे के गेतन हत्याकांड की, जिसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी सिया गोयल की मां का कहना है कि अगर उनकी बेटी दोषी है तो उसे भी किले से नीचे फेंक दीजिए, जहां से केतन को उसने फेंका था, लेकिन ये सब जांच पर निर्भर करता है। केतन के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्णय किया।
7: सिया की मां क्यों बोली कि अगर बेटी दोषी तो उसे भी किले से धक्का दे दो।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे है, वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए।
7: केतन को किले से धकेल कर मारने का प्लान किसका था, चेतन का या सिया का? 18 जून को लोहगढ़ किले पर जाने का प्लान किसका था, केतन का या सिया का? क्या सिया का परिवार अपनी बेटी और प्रेमी चेतन के बारे में पहले से जानते थे? केतन विग लगाता था, क्या इसीलिए सिया उसे पसंद नहीं करती थी?
9: मुझे यानी कि संभव ही नहीं है कि ये मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती।
7: क्या पुणे के केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को बचाकर प्रेमी चेतन को फंसाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस के सूत्रों से यही खबर आ रही है कि मंगेतर केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया को चेतन ने उकसाया था। सूत्रों के हवाले से अभी तक की जांच में पुलिस को यह पता चला है कि सिया को उसके प्रेमी चेतन ने ही केतन की हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ये पता लगा रही है कि कहीं इस हत्याकांड में सिया गोयल के परिवार का कोई सदस्य तो शामिल नहीं है, इसीलिए पुलिस ने आज सिया के भाई साहिल से भी घंटों की पूछताछ की है। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या परिवार को सिया के अफेयर के बारे में, उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के बारे में पता था या नहीं, या फिर क्या सिया के परिवार को यह जानकारी थी कि सिया केतन को पसंद नहीं करती है? क्योंकि अब तो ये साफ है कि सिया सिर्फ खुश दिखने की एक्टिंग कर रही थी और अंदर ही अंदर वो केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी।
10: अभी तक हमने एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद पीसी मिली है, दो और अभी तक एक्यूज अरेस्ट है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है अभी फिलहाल हम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो कलेक्ट कर रहे हैं, पंचनामा वगैरह बाकी सब चालू है।
11: आज सिया के भाई को बुलाया गया है, किस प्रकार के मतलब जांच शुरू है, क्या स्टेटमेंट लिया गया है और कितने घंटों से यहाँ स्टेटमेंट दिया जा चुका है?
10: करीबन 3 घंटे हो गए उनका इन्वेस्टिगेशन जवाब लेना चालू है, वो हमको जो हमारी जो क्वेश्चन है उसको पॉजिटिवली रिप्लाई दे रहे हैं।
7: हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से ये खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई, एंग्जाइटी और घबराहट इतनी ज्यादा हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। परिवार का दावा है कि उन्हें सिया के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
12: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
9: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
12: आप पहचानते नहीं था? आप भी नहीं पहचानते?
9: नहीं थी, पहचानते नहीं।
12: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है, मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स है, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
8: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
12: हाँ।
8: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
9: हाँ। तो मेरा साहिल।
8: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
12: हाँ।
8: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
7: एक तरफ परिवार इनकार कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि अगर इस पूरे केस में उनकी बेटी दोषी होती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए या फिर उसी लोहगढ़ के किले से उसे भी नीचे फेंक दिया जाए।
9: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का दे के उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए, जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए।
7: यही मांग करने के लिए आज केतन अग्रवाल के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। केतन के परिवार की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की सहमति दे दी। इसके अलावा परिवार की मांग पर जाने माने अधिवक्ता उज्जवल निकम स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे।
13: आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे।
14: सर आपने क्या मांग की है, मतलब आप बार बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से की?
13: सर मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
14: आपने ये कहा मुख्यमंत्री
13: जी? मैंने ही उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए जी। उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है कशा
15: प्रकार की घटना है, अनाकलनीय अशा प्रकार की घटना है। खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, याच्या पाठीमागची कारणं काय आहेत? मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये। पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक।
7: श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार भाबले, पुणे आज तक।
6: मुख्य आरोपी सिया गोयल के परिवार की तरफ से यह दावा किया गया कि 18 जून को यानी कि केतन अग्रवाल की हत्या के दिन लोहगढ़ किले में जाने का प्लान केतन अग्रवाल का ही था, जबकि पहले दिन से केतन अग्रवाल का परिवार यह दावा कर रहा था कि केतन को किले में ले जाने की योजना सिया गोयल की थी। अब सवाल ये कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे मर्डर का मोटिव साफ होता है। अगर ये सिद्ध हो गया कि सिया ही केतन को लेकर जाना चाहती थी तो फिर ये भी सिद्ध होगा कि वो केतन का मर्डर प्लान करके गई थी।
7: अठारह जून को पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या हुई। आरोप लगा कि केतन की मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया। केतन के परिवार की तरफ से पहले दिन से यह कहा जा रहा है कि सिया ने ही केतन को लोहगढ़ के किले पर जाने को कहा था। 19 जून को सिया का बर्थडे था तो दोनों परिवारों का महाबलेश्वर में जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम था। अभी तक की थ्योरी के हिसाब से सिया ने 18 जून को केतन को लोहगढ़ फोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया, जबकि केतन नहीं जाना चाहता था, लेकिन सिया की तरफ से यह कहा गया कि उसके दोस्तों की तरफ से वहां बर्थडे पार्टी का प्लान है। केतन के परिवार ने तो यह तक दावा किया था कि सिया ने केतन की मां को फोन करके केतन को भेजने के लिए कहा था, लेकिन अब सिया का परिवार कह रहा है कि 18 जून को किले में जाने का प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था।
9: उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था
12: जी,
9: उसमें उनकी यानी कि ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होंगी। तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनका महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है
12: जी,
9: क्या करेंगे थक जाएंगे। बोले पापा मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे तो अपन नहीं चलते करके अपन और कहीं जाने का प्लान करते हैं।
12: ओके
8: और ये सिया के मोबाइल में चैट भी है, आप देख सकते हो
12: मोबाइल में चैट है उसका,
8: चैट है कि केतन मुझे नहीं जाना है अपन और कहीं चलते हैं। तो केतन जी ने लिखा है कि तू मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर अपन चलते हैं।
12: तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके आते
8: हैं। हाँ जी ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल जाएंगे,
12: ये चैट भी है मोबाइल में। अब तो पुलिस ने
8: चैट, हाँ जी तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट ये।
16: फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था महाबलेश्वर में, हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे।
7: अब सवाल है कि सच क्या है, क्योंकि अगर सिया और चेतन ने केतन के मर्डर का प्लान बनाया था तो फिर किले में जाने का प्लान तो उन्हीं का बनता है, वो भी तब जब 4 दिन पहले 14 जून को भी सिया केतन की हत्या की असफल कोशिश कर चुकी थी और ये वारदात भी लोहगढ़ किले में हुई थी। तो अब सिया का परिवार ये दावा क्यों कर रहा है कि ये प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ रही थी, लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
13: केतन एक छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का, अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
7: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
17: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
7: अब केतन का परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि सिया के परिवार को ये सब पहले से पता था, लेकिन सिया के परिवार का दावा है कि अगर ये बात सही साबित हो गई तो पूरा परिवार सजा भुगतने को तैयार है।
12: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
9: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है, और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी रॉयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
8: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए आप।

0: दोनों ही परिवारों की दुनिया खत्म सी हो गई। एक का बेटा ही चला गया, दूसरे की बेटी जेल चली गई। केतन के परिवार को कभी ऐसा नहीं लगा कि सिया में कोई कमी है, और सिया का परिवार तो अभी भी कह रहा है कि उनका होने वाला दामाद उनके बेटे जैसा था। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
1: उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर भी तनाव की तस्वीरें सामने आई, जहां कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद निहंगों के जत्थे को प्रशासन की ओर से रोका गया। हंगामे के बीच तनाव को देखते हुए उन्हें वापस भेज दिया गया।

0: हंगामे की ये तस्वीर उत्तराखंड बॉर्डर की है। एक तरफ उत्तराखंड पुलिस है, दूसरी तरफ निहंग सिखों का जत्था है। पुलिस निहंगों को उत्तराखंड घुसने से रोक रही थी, जिस पर निहंगों का जत्था बेकाबू हो गया।
1: हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंहों की तरफ से माफी मांगते हैं।
0: ऐसी ही तस्वीरें कुल्हाल में हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर भी हंगामे की आई। दरअसल इस हंगामे की वजह नागरासू और कर्णप्रयाग गुरुद्वारे में पिछले दिनों से जारी तनाव, जहां कई दिनों से हंगामा हो रहा था। निहंगों के जत्थे ने पहले से ही 25 जून को कर्णप्रयाग पहुंचने का ऐलान किया था, जिसके बाद किसी भी तरह के तनाव को देखते हुए जत्थे को रोकने के लिए उत्तराखंड के सीमावर्ती शहरों में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।
2: ये पूरा पुल आप देखेंगे जाम है इस वक्त, लगातार वाहन जो है वो जहां तहां फंसे हुए हैं। पूरे पुल पर आवाजाही इस वक्त बाधित हो चुकी है। लोग किसी तरह हिमाचल जाने के लिए पैदल रास्ते पर अपना रहे।
0: राहत की बात यह है कि काफी मान मनोबल के बाद निहंगों और उत्तराखंड पुलिस के बीच गतिरोध खत्म हो गया। जत्थेदारों के मार्च रद्द करने पर सहमत होने से देहरादून में हालात सामान्य हुए। टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
3: हंगामे की तस्वीरें बंगाल में भी थमने का नाम नहीं ले रही, जहां टीएमसी के नेताओं पर जनता का गुस्सा जमकर निकल रहा है। कहीं कटमनी को वापस मांगा जा रहा है तो कहीं अंडों से टीएमसी नेताओं पर हमला किया जा रहा है।
4: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाराबनी में बाहुबली टीएमसी नेता आसित सिंह पुलिस के हत्थे चढ़े तो जनता ने कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर हंगामा किया। अंडे फेंकने की कोशिश की गई। ऐसा ही एक वीडियो कूच बिहार से वायरल हो रहा है, जहां टीएमसी के एक नेता को गुस्साई भीड़ रस्सी से बांधकर घुमा रही है। लोग जमकर अंडे मार रहे हैं। हावड़ा में तो टीएमसी नेता को गांव वालों ने खंबे से बांध दिया और गले में जूतों की माला पहना दी। आरोप है कि हावड़ा के जगबल्लभपुर में वसु सांतरा नाम के इस टीएमसी नेता ने पीएम आवास योजना और मनरेगा में लोगों से कटमनी ली थी। आसनसोल में भी टीएमसी नेताओं पर जनता के गुस्से की तस्वीर सामने आई। अवैध पत्थर खनन घोटाला केस में गिरफ्तार टीएमसी नेता भोला सिंह को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची तो लोग बेकाबू हो गए। चोर चोर के नारे लगाने लगे, जूते दिखाने लगे। किसी तरह से पुलिस टीएमसी नेता को बचा कर ले गई। टीएमसी नेता के खिलाफ ये तस्वीर देखिए, ये मालदा से आई है। ये कुख्यात अपराधी और टीएमसी के पूर्व एरिया प्रेसिडेंट बकुल शेख है। इसके कमर में और हाथ में रस्सी बांधकर इसकी परेड कराई जा रही है। कुल मिलाकर जब से बीजेपी बंगाल में आई है, तब से टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। आज तक ब्यूरो।
3: खबर मुहर्रम की, जिसे लेकर कई जगहों पर हिंसा और झड़प की तस्वीरें सामने आई। प्रशासन एक्शन में है। तनाव को देखते हुए यूपी से लेकर बिहार तक भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए थे।
0: उज्जैन में जिस इलाके में मुहर्रम जुलूस के नाम पर हंगामा हुआ था, उसी इलाके में उपद्रवियों की पुलिस ने परेड निकाली। जुलूस के दौरान हुए ब्लास्ट और हंगामे पर अब सियासत तेज हो गई है।
5: वो स्टंट बतलाया गया है, उतना ज्यादा नहीं था, वो सिर्फ दो

0: चाल पटाखे थे, और वो भी एक वेन को पुरानी वेन में वो ग्लू से चिपका कर कांच वाच लगा दिए गए थे और उनको विस्फोट किया गया था।
1: मोहर्रम के जुलूस की आपत्ति नहीं है, मोहर्रम का जुलूस चाहे जैसा निकालो उसकी क्या आपत्ति है, लेकिन मोहर्रम के जुलूस में इस तरह के तुम क्रेन पे बैन लटका कर विस्फोट करोगे तो आतंकवादी है, ये आतंकवादी घटना से जुड़ा है।
2: मुहर्रम जुलूस हंगामे की एक तस्वीर बिहार के शिवहर से भी आई, जहां अखाड़ों की क्रॉसिंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ जो पथराव और झड़प में तब्दील हो गया। करीब 15 लोग घायल हुए। पुलिस ने 75 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। उधर यूपी में भी मुहर्रम को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। वहीं पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। प्रतापगढ़ में मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया है। 2016 से हर साल एहतियात के तौर पर यह कार्रवाई की जाती है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं संभल में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।
3: जो पूरा पैदल मार्च है वो इस वक्त संभल की सड़कों पर किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, अस्त्रों और शस्त्रों का कहीं ना कहीं प्रदर्शन ना हो और जो शासन की गाइडलाइंस है उनका पालन हो सके, इसके लिए अब पुलिस अधिकारी सड़कों पर है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।
4: यह खबर दुनिया की है, जहाँ हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से तनाव है। सीज फायर डील के बावजूद इसराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, जिससे ईरान भड़का है।
5: अमेरिका ईरान सीज फायर के बावजूद इसराइल के दक्षिणी लेबनान पर हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रही हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के टनल नेटवर्क पर भीषण हमले किए हैं। इसराइल का दावा है कि हमले में 6 हिजबुल्ला आतंकवादी मारे गए हैं और लगभग 30 सुरंगों के अंदर या तो फंस गए हैं या जिंदा दफन हो गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर और लेबनान में इसराइल के हमलों से ईरान बौखला गया है। ईरान का कहना है कि लेबनान प्रतिशोध का प्रतीक है, न कि कब्जे की जगह। इस बीच हॉर्मुज को लेकर भी तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने एक कार्गो शिप पर गोलीबारी की। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस जहाज पर कल हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश के दौरान ड्रोन से हमला हुआ था। हमले के बाद ईरान ने कहा कि अगर कोई जहाज उसकी ओर से बनाए गए प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर गुजरता है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। ये हमला तब हुआ है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। मार्को रूबियो ने सुबह ही कहा था कि जहाजों की आवाजाही सामान्य तौर पर होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता और ईरान जहाजों को धमकी देता है तो ये समझौते का उल्लंघन होगा। ऐसे में एक बार फिर युद्ध विराम के समझौतों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
4: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन गोपाल राव ने किया इनकार। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी, सभी 8 आरोपित को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चढ़ावा चोरी मामले पर सियासत तेज, सीएम योगी बोले जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं। अखिलेश का वार, अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड, मुद्दे को संसद में उठाएगी कांग्रेस। वेतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को प्रेमी चेतन ने ही उकसाया, पुलिस का बड़ा दावा, आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉग। सिया के भाई से 10 घंटे की पूछताछ, सीएम फडणवीस से मिले मृतक के पिता। आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया, पहला T20 मुकाबला 34 रन से जीता। अभिषेक की 50 काम नहीं आई, 182 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पूरी टीम 148 पर ऑल आउट। और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका में धर्म की हुई वापसी, महान देश के लिए धर्म और ईश्वर जरूरी, कहा डेमोक्रेटिक राज में कैथोलिकों को FBI ने बनाया था निशाना।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। राम मंदिर चंदा चोरी पर जारी एक्शन के बीच चंपत राय के इस्तीफे की खबर सामने आई। वहीं मामले में अब तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच की आज सीधे चंपत राय तक पहुंचेगी, जिन पर पूरी ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी।
1: पहले गिरफ्तारी और अब इस्तीफे। राम मंदिर में चंदा चोरी पर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल वही कि क्या सिर्फ जांच के नाम पर छोटी मछलियों को ही फंसाया जाएगा या कानून के दायरे में बड़े दिग्गज ही सलाखों के पीछे जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस्तीफे को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं।
2: अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ,
3: बाकी तो भगवान जाने।
2: वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्या करें।
1: मामले में अब तक कई छोटी मछलियों की गिरफ्तारी हुई है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, सुशांत श्रीवास्तव, रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू अज्ञात। इसके अलावा 5 लोगों से पूछताछ जारी है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या चंपत राय से भी पूछताछ होगी, क्या गिरफ्तारी की तलवार उन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। आज तक ब्यूरो।
0: और अब तक जांच में क्या सामने आया, कैसे भक्तों के चढ़ावे पर गबन का खेल शुरू हुआ और अब तक क्या क्या सबूत मिले हैं, चलिए हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं।
4: एक जांच जिसकी आंच में कई चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि दान पेटियों से निकले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। FIR के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम की शुरुआती जांच में मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत मिले। जांच में आरोप है कि संगठित तरीके से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी हुई। FIR में यह भी कहा गया है कि गिनती कक्ष में मौजूद कुछ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी मामले में पहली FIR के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में कुल 70 मौकों पर कथित चोरी गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, अभी सिर्फ 3 महीने के CCTV सबूत मिले हैं, जो कि इन घटनाओं को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं मंदिर में चढ़ावे को लेकर चांदी की ईंट के गायब होने की जांच भी SIT की ओर से की गई है। सूत्रों के अनुसार SIT की रिपोर्ट में 200 किलो चांदी की ईंटों की चोरी के दावे को गलत पाया गया है। जांच में सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों को लेकर किए गए कई दावों को भ्रामक बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक दान में मिली चांदी की ईंटें गलाने के लिए भेजी गई थी। चांदी की ईंटें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी जांच में मिला है। SIT की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टिन्नू के पास बिना आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां थी। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक कर चढ़ावा गणना के लिए एक SOP तैयार की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक SOP का पालन नहीं किया गया। आज तक ब्यूरो।
0: और जिस राम मंदिर के मुद्दे ने BJP को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, आज उसी राम मंदिर का सिस्टम सवालों के घेरे में। ऐसे में सरकार जहां जांच और एक्शन के जरिए राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष इस पूरी जांच पर सवाल खड़े कर रहा है।

0: सवाल राम मंदिर का है। ऐसे में चंदा चोरी का मामला पूरी तरह से सियासी हो चुका है। योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
1: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो।
0: सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए सोना चांदी और धनराशि के गबन से जुड़े दस्तावेज SIT को सौंपे जाएंगे। इतना ही नहीं, घर घर अभियान के दौरान इकट्ठा किए गए सोने से संबंधित साक्ष्य भी SIT को उपलब्ध कराए जाएंगे। उधर अभी मुक्तेश्वरानंद भी चंदे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है, हमने सुना। जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है।
0: सवाल SIT की जांच पर भी खड़े हो रहे हैं, जहां विपक्ष एक सुर में सरकार पर हमला कर रहा है।
3: ये जो फर्जी SIT बनी, अब कल फर्जी FIR हुई, उस फर्जी FIR में 8 छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया, कोई बड़े नाम नहीं है।
4: ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये इस्तीफा है दबाव पर। और इसमें जो FIR अब तक हुई है वो FIR छोटे लोगों पर हुई है, बड़े लोग बचाए गए।
0: इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट के दो बड़े पदाधिकारियों पर आरोप की बात कबूली है।
5: मुझे नहीं लगता कि कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत है। दो ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है, ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है।
0: अब सवाल ये है कि ये एक्शन कहां तक जाएगा, कौन से बड़े चेहरों को लपेटा जाएगा, क्योंकि इतना तो साफ है कि इसकी सियासी गूंज आने वाले कई चुनाव में सुनाई देने वाली है। आज तक ब्यूरो।
6: चलिए लिए चलते हैं आपको अयोध्या से पंजाब, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की विवादित वीडियो में मास्क बैन की एंट्री हो चुकी है। भगवंत मान के आरोपों के बाद अब मास्क बैन का वीडियो सामने आया, जो भगवंत मान पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
7: हाथ में भगवंत मान का मास्क लिए कार में बैठे शख्स का नाम है जगमन समरा, जो कि कनाडा का रहने वाला है। भगवंत मान ने अपने विवादित वीडियो को लेकर अब समरा पर निशाना साधा है। मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समरा पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया, जिस पर समरा ने भगवंत मान पर पलटवार किया है।
8: मेरे पिताजी मेनू कदे यही जी बात नहीं बोले, जे मैं तू बोलदा दारू पी के, वो भी बिना किसी कह लो भी आधार पर।
7: भगवंत मान ने कहा था कि वो समरा से सिर्फ एक बार मिला है, जबकि समरा का दावा है कि वो मान को बहुत अच्छे से जानता है, जहां भगवंत मान के पैतृक गांव में भी उसका आना जाना था। लेकिन भगवंत मान वीडियो के पीछे मास्क मैन होने का दावा कर रहे हैं।
9: दो चीजें दे विच होर नोट करे, एक तो मेरे गल का निशान नहीं है, एक इथों बिल्कुल लाइन बन रही है, मास्क लगे हुआ है। नंबर 3 ते क्योंकि इहदे च अखां नहीं लग सकदियां, मास्क तो बन जाता है, अखां नहीं बनदियां, तो फिर उन्हें एनक लाई है।
8: दो जिहड़ियां जहेदार साहब ने कराईयां, उन्होंने 3 लैबां च कितने मास्क का जिक्र नहीं, जिहड़ी इन्हां ने जाली करवाई उहदे विच भी जिक्र नहीं। उत्थे जिक्र तां करा लैंदे वी यार मास्क है ते सारे पा दिओ, फिर तुहाडे कोल तां बंदा भी है, एक्टर भी होऊगा, ते सारे पा दिओ, नशर कर दिओ।
7: अब सवाल यह है कि जब वीडियो में मास्क मैन था तो फिर मान ने पहले ये क्यों कहा कि ये AI वीडियो है। मान फिर पलटे और वीडियो में जर्मन के किसी उनके जैसे दिखने वाले शख्स पर आरोप लगाया। फिर मास्क मैन की थ्योरी आई। सबसे बड़ा सवाल, जिस वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट को अकाल तख्त के सामने मान की ओर से सौंपा गया है, उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं है। हालांकि अब रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी के भी फर्जी होने का दावा गुरुग्राम पुलिस की ओर से किया गया है, जिसमें भगवंत मान एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं।
10: जो साडे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कहिंदे आ ना भी ये मार्च का वीडियो मेरी नहीं, तो फिर उन्होंने गड़गांव जाने की लोड़ सी। जे गड़गांव जाके तुसीं 10 लाख रुपया करते पे होटल से कमरे बुक कराने पे आ, तो कदे तहत कराने पे, जे वीडियो तुहाडी नहीं तुसीं तो फिर घर बैठो।
7: वीडियो का सच जो भी हो, लेकिन भगवंत मान की मुश्किलें आसान होती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
6: बात पुणे के केतन हत्याकांड की, जिसमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपित सिया की मां का कहना है कि अगर उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे भी किले से नीचे फेंक कर मार दिया जाए, जहां से केतन को फेंका गया था। लेकिन ये सब तो जांच पर निर्भर करता है। उधर केतन के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का फैसला किया।
0: सिया की मां क्यों बोली कि अगर बेटी दोषी तो उसे भी किले से धक्का दे दो।
11: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं, वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए।
0: केतन को किले से धकेल कर मारने का प्लान किसका था, चेतन का या सिया का? 18 जून को लोहगढ़ किले पर जाने का प्लान किसका था, केतन का या सिया का? क्या सिया का परिवार अपनी बेटी और प्रेमी चेतन के बारे में पहले से जानते थे? केतन विग लगाता था, क्या इसीलिए सिया उसे पसंद नहीं करती?
12: मुझे यानी कि संभव ही नहीं है कि ये मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती।
0: क्या पुणे के केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को बचाकर प्रेमी चेतन को फंसाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस के सूत्रों से यही खबर आ रही है कि मंगेतर केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया को चेतन ने उकसाया था। सूत्रों के हवाले से अभी तक की जांच में पुलिस को यह पता चला है कि सिया को उसके प्रेमी चेतन ने ही केतन की हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ये पता लगा रही है कि कहीं इस हत्याकांड में सिया गोयल के परिवार का कोई सदस्य तो शामिल नहीं है। इसीलिए पुलिस ने आज सिया के भाई साहिल से भी घंटों की पूछताछ की है। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या परिवार को सिया के अफेयर के बारे में, उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के बारे में पता था या नहीं, या फिर क्या सिया के परिवार को यह जानकारी थी कि सिया केतन को पसंद नहीं करती है। क्योंकि अब तो ये साफ है कि सिया सिर्फ खुश दिखने की एक्टिंग कर रही थी और अंदर ही अंदर वो केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी।
13: अभी तक हमने एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद पीसी मिली है, दो अभी तक एक्यूज अरेस्ट है। उनका जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी फिलहाल हम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो कलेक्ट कर रहे हैं, पंचनामा वगैरह बाकी सब चालू है।
14: आज सिया के भाई को बुलाया गया है, किस प्रकार के मतलब जांच शुरू है, क्या स्टेटमेंट लिया गया है और कितने घंटों से यहाँ स्टेटमेंट दिया जा चुका है?
13: करीबन 3 घंटे हो गए उनका इन्वेस्टिगेशन जवाब लेना चालू है। वो हमको हमारी जो क्वेश्चन है उसको पॉजिटिवली रिप्लाई दे रहे हैं।
0: हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से ये खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई, एंग्जाइटी और घबराहट इतनी ज्यादा हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। परिवार का दावा है कि उन्हें सिया के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
15: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
12: नहीं, मैंने आज तक कभी उससे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
15: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
12: नहीं थी, पहचानते नहीं।
15: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
11: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
15: हाँ।
11: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
12: हाँ। तो
11: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
15: हाँ।
11: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
0: एक तरफ परिवार इनकार कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि अगर इस पूरे केस में उनकी बेटी दोषी होती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए या फिर उसी लोहगढ़ के किले से उसे भी नीचे फेंक दिया जाए।
12: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
11: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए, जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए।
16: यही मांग करने के लिए आज केतन अग्रवाल के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। केतन के परिवार की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की सहमति दे दी। इसके अलावा परिवार की मांग पर जाने माने अधिवक्ता उज्जवल निकम स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे।
17: आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे।
18: सर आपने क्या मांग की है, मतलब आप बार बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से की?
17: सर मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
18: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से? सर
17: जी मैंने ही उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है नहीं
19: खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, याच्या पाठीमागची कारणं काय आहेत? मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये। पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक आहे।
16: श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
6: अब मुख्य आरोपी सिया गोयल के परिवार की तरफ से दावा किया गया है कि 18 जून को यानी कि केतन की हत्या के दिन लोहगढ़ के किले में जाने का प्लान केतन का ही था, जबकि पहले दिन से केतन का परिवार यह दावा कर रहा था कि केतन को किले में ले जाने की योजना सिया की थी। अब सवाल है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जिससे मर्डर का मोटिव साफ होता है। और अगर यह साबित हो गया कि सिया ही केतन को लेकर जाना चाहती थी तो फिर यह भी साबित होगा कि वो केतन का मर्डर प्लान करके गई थी।

0: 18 जून को पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या हुई। आरोप लगा कि केतन की मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया। केतन के परिवार की तरफ से पहले दिन से यह कहा जा रहा है कि सिया ने ही केतन को लोहगढ़ के किले पर जाने को कहा था। 19 जून को सिया का बर्थडे था तो दोनों परिवारों का महाबलेश्वर में जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम था। अभी तक की थ्योरी के हिसाब से सिया ने 18 जून को केतन को लोहगढ़ फोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया, जबकि केतन नहीं जाना चाहता था, लेकिन सिया की तरफ से यह कहा गया कि उसके दोस्तों की तरफ से वहां बर्थडे पार्टी का प्लान है। केतन के परिवार ने तो ये तक दावा किया था कि सिया ने केतन की मां को फोन करके केतन को भेजने के लिए कहा था, लेकिन अब सिया का परिवार कह रहा है कि 18 जून को किले में जाने का प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था।
1: उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था
2: जी,
1: उसमें उनकी यानी कि ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होगी। तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनका महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है
2: जी,
1: क्या करेंगे, थक जाएंगे। बोले पापा, मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे तो अपन नहीं चलते करके अपन और कहीं जाने का प्लान करते हैं।
2: ओके
3: और ये सिया के मोबाइल में चैट भी है, आप देख सकते हो
2: मोबाइल में चैट है उसका,
3: चैट है कि केतन मुझे नहीं जाना है अपन और कहीं चलते हैं। तो केतन जी ने लिखा है कि तू मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर, अपन चलते हैं।
2: तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके आते।
3: हाँ जी, ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल जाएंगे,
2: ये चैट भी है मोबाइल में। अब तो पुलिस ने
3: चैट, हाँ जी, तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट ये।
4: फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था महाबलेश्वर में, हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे।
0: अब सवाल है कि सच क्या है, क्योंकि अगर सिया और चेतन ने केतन के मर्डर का प्लान बनाया था तो फिर किले में जाने का प्लान तो उन्हीं का बनता है, वो भी तब जब 4 दिन पहले 14 जून को भी सिया केतन की हत्या की असफल कोशिश कर चुकी थी और ये वारदात भी लोहगढ़ किले में हुई थी। तो अब सिया का परिवार ये दावा क्यों कर रहा है कि ये प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ रही थी, लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
5: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का, अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
0: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
6: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
0: अब केतन का परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि सिया के परिवार को ये सब पहले से पता था, लेकिन सिया के परिवार का दावा है कि अगर ये बात सही साबित हो गई तो पूरा परिवार सजा भुगतने को तैयार है।
2: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
1: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
3: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो बात की बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरे गोयल फैमिली को।
0: अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ये दिख रहा है कि दोनों ही परिवारों की दुनिया खत्म सी हो गई। एक का बेटा ही चला गया, दूसरे की बेटी जेल चली गई, केतन के परिवार को कभी ऐसा नहीं लगा कि सिया में कोई कमी है, और सिया का परिवार तो अभी भी कह रहा है कि उनका होने वाला दामाद उनके बेटे जैसा था। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
7: तो एक तरह से ये हंगामा ही है जो महाराष्ट्र में मचा हुआ है, लेकिन एक हंगामे की तस्वीर पश्चिम बंगाल में भी थमने का नाम नहीं ले रही, जहां टीएमसी के नेताओं पर जनता का गुस्सा जमकर निकल रहा है। कहीं कटमनी को वापस मांगा जा रहा है तो कहीं अंडों से हमला किया जा रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाराबंकी में बाहुबली टीएमसी नेता आसित सिंह पुलिस के हत्थे चढ़े तो जनता ने कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर हंगामा किया। अंडे फेंकने की कोशिश की गई। ऐसा ही एक वीडियो कूच बिहार से वायरल हो रहा है, जहां टीएमसी के एक नेता को गुस्साई भीड़ रस्सी से बांधकर घुमा रही है। लोग जमकर अंडे मार रहे हैं। हावड़ा में तो टीएमसी नेता को गांव वालों ने खंबे से बांध दिया और गले में जूतों की माला पहना दी। आरोप है कि हावड़ा के जगबल्लभपुर में वसु सांतरा नाम के इस टीएमसी नेता ने पीएम आवास योजना और मनरेगा में लोगों से कटमनी ली थी। आसनसोल में भी टीएमसी नेताओं पर जनता के गुस्से की तस्वीर सामने आई। अवैध पत्थर खनन घोटाला केस में गिरफ्तार टीएमसी नेता भोला सिंह को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची तो लोग बेकाबू हो गए। चोर चोर के नारे लगाने लगे, जूते दिखाने लगे। किसी तरह से पुलिस टीएमसी नेता को बचा कर ले गई। टीएमसी नेता के खिलाफ ये तस्वीर देखिए, ये मालदा से आई है। ये कुख्यात अपराधी और टीएमसी के पूर्व एरिया प्रेसिडेंट बकुल शेख है। इसके कमर में और हाथ में रस्सी बांधकर इसकी परेड कराई जा रही है। कुल मिलाकर जब से बीजेपी बंगाल में आई है तब से टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। आज तक ब्यूरो।
7: यहां वक्त चला है बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
9: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
10: कौन से ग्रह के मुख्य रत्न का क्या है उपरत्न, उपरत्नों से किस प्रकार होता है फायदा, क्या उपरत्नों को अलग तरीके से पहना जाता है, क्या है ग्रहों के मुख्य रत्नों के उपरत्न, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
11: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points.
12: This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
8: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th.
13: Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with Delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
8: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन गोपाल राव ने किया इनकार। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी। सभी 8 आरोपित को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चढ़ावा चोरी मामले पर सियासत तेज। सीएम योगी बोले, जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं। अखिलेश का वार, अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड। मुद्दे को संसद में उठाएगी कांग्रेस। वेतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को प्रेमी चेतन ने ही उकसाया। पुलिस का बड़ा दावा, आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉग। सिया के भाई से 10 घंटे की पूछताछ। सीएम फडणवीस से मिले मृतक के पिता। आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया। पहला T20 मुकाबला 34 रन से जीता। अभिषेक की 50 काम नहीं आई। 182 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पूरी टीम 148 पर ऑल आउट। और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका में धर्म की हुई वापसी। महान देश के लिए धर्म और ईश्वर जरूरी, कहा डेमोक्रेटिक राज में कैथोलिकों को FBI ने बनाया था निशाना। बात पंजाब की, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान के विवादित वीडियो में मास्क मैन की एंट्री हो चुकी है। भगवंत मान के आरोपों के बाद अब मास्क मैन का वीडियो सामने आया, जो भगवंत मान पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
1: हाथ में भगवंत मान का मास्क लिए कार में बैठे शख्स का नाम है जगमन समरा, जो कि कनाडा का रहने वाला है। भगवंत मान ने अपने विवादित वीडियो को लेकर अब समरा पर निशाना साधा है। मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समरा पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया, जिस पर समरा ने भगवंत मान पर पलटवार किया है।
2: मेरे पिताजी मेनू कदे यही जी बात नहीं बोले, जे मैं तू बोलदा दारू पी के, वो भी बिना किसे कह लो भी आधार पर।
1: भगवंत मान ने कहा था कि वो समरा से सिर्फ एक बार मिला है, जबकि समरा का दावा है कि वो मान को बहुत अच्छे से जानता है। जहां भगवंत मान के पैतृक गांव में भी उसका आना जाना था, लेकिन भगवंत मान वीडियो के पीछे मास्क मैन होने का दावा कर रहे हैं।
3: दो चीजें दे विच होर नोट करे, एक तो मेरे गल दा निशान नहीं हैगा, एक इथों बिल्कुल लाइन बन रही है मास्क लगे हुआ है। नंबर 3 ते क्योंकि इहदे च अखां नहीं लग सकदियां, मास्क तां बन जांदा है, अखां नहीं बनदियां, तां फिर उन्हें ऐनक लाई है।
4: दो जिहड़ियां जहेदार साहब ने कराईयां, उन्हां 3 लैबां च किते मास्क दा जिक्र नहीं। जिहड़ी इन्हां ने जाली करवाई उहदे विच भी जिक्र नहीं। उत्थे जिक्र तां करा लैंदे वी यार मास्क है ते सारी पा दिओ, फिर तुहाडे कोल तां बंदा भी है, एक्टर भी होऊगा, ते सारी पा दिओ, नशर कर दिओ।
1: अब सवाल यह है कि जब वीडियो में मास्क मैन था तो फिर मान ने पहले ये क्यों कहा कि ये AI वीडियो है। मान फिर पलटे और वीडियो में जर्मन के किसी उनके जैसे दिखने वाले शख्स पर आरोप लगाया। फिर मास्क मैन की थ्योरी आई। सबसे बड़ा सवाल, जिस वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट को अकाल तख्त के सामने मान की ओर से सौंपा गया है, उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं है। हालांकि अब रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी के भी फर्जी होने का दावा गुरुग्राम पुलिस की ओर से किया गया है, जिसमें भगवंत मान एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं।
5: जो मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कहते हैं ना भी ये मार्च का वीडियो मेरी नहीं, तो फिर उन्होंने गड़गांव जाने की लोड़ सी। जे गड़गांव जाके तुम 10 लाख रुपया करते पे होटल से कमरे बुक कराने पे आ, तो कदे तहत कराने पे जे वीडियो तुहाडी नहीं, तुम तो फिर घर बैठो।
1: वीडियो का सच जो भी हो, लेकिन भगवंत मान की मुश्किलें आसान होती नहीं दिख रही आज तक। फिर
0: राम मंदिर चंदा चोरी पर जारी एक्शन के बीच चंपत राय के इस्तीफे की खबर सामने आई। वही मामले में अब तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सवाल है कि क्या जांच की आज सीधे चंपत राय तक पहुंचेगी, जिन पर पूरी ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी।
6: पहले गिरफ्तारी और अब इस्तीफे। राम मंदिर में चंदा चोरी पर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल वही कि क्या सिर्फ जांच के नाम पर छोटी मछलियों को ही फंसाया जाएगा, या कानून के दायरे में बड़े दिग्गज भी सलाखों के पीछे जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस्तीफे को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं।
7: अभी तक इस्तीफा नहीं
8: है, बाकी तो भगवान जाने।
7: वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्या करें।
6: मामले में अब तक कई छोटी मछलियों की गिरफ्तारी हुई है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, सुशांत श्रीवास्तव, रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू अज्ञात। इसके अलावा 5 लोगों से पूछताछ जारी है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या चंपत राय से भी पूछताछ होगी? क्या गिरफ्तारी की तलवार उन तक भी पहुंच सकती है? क्योंकि चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। आज तक ब्यूरो।
0: अब तक जांच में क्या सामने आया, कैसे भक्तों के चढ़ावे पर गबन का खेल शुरू हुआ और अब तक क्या क्या सबूत मिले हैं, हम आपको बताते हैं।
8: एक जांच जिसकी आंच में कई चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि दान पेटियों से निकले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। FIR के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम की शुरुआती जांच में मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत मिले। जांच में आरोप है कि संगठित तरीके से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी हुई। FIR में यह भी कहा गया है कि गिनती कक्ष में मौजूद कुछ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी मामले में पहली FIR के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में कुल 70 मौकों पर कथित चोरी गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, अभी सिर्फ 3 महीने के CCTV सबूत मिले हैं, जो कि इन घटनाओं को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं मंदिर में चढ़ावे को लेकर चांदी की ईंट के गायब होने की जांच भी SIT की ओर से की गई है। सूत्रों के अनुसार SIT की रिपोर्ट में 200 किलो चांदी की ईंटों की चोरी के दावे को गलत पाया गया है। जांच में सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों को लेकर किए गए कई दावों को भ्रामक बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक दान में मिली चांदी की ईंटें गलाने के लिए भेजी गई थी। चांदी की ईंटें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी जांच में मिला है। SIT की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टिन्नू के पास बिना आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां थीं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक कर चढ़ावा गणना के लिए एक SOP तैयार की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक SOP का पालन नहीं किया गया। आज तक बेरो।
0: जिस राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, आज उसी राम मंदिर का सिस्टम सवालों के घेरे में है। और ऐसे में सरकार जहां जांच और एक्शन के जरिए राम भक्तों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष पूरी जांच पर सवाल खड़े कर रहा है।

0: सवाल राम मंदिर का है। ऐसे में चंदा चोरी का मामला पूरी तरह से सियासी हो चुका है। योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
1: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो।
0: सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए सोना चांदी और धनराशि के गबन से जुड़े दस्तावेज SIT को सौंपे जाएंगे। इतना ही नहीं, घर घर अभियान के दौरान इकट्ठा किए गए सोने से संबंधित साक्ष्य भी SIT को उपलब्ध कराए जाएंगे। उधर अवि मुक्तेश्वरानंद भी चंदे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है, हमने सुना। जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है।
0: सवाल SIT की जांच पर भी खड़े हो रहे हैं, जहां विपक्ष एक सुर में सरकार पर हमला कर रहा है।
3: ये जो फर्जी SIT बनी, अब कल फर्जी FIR हुई, उस फर्जी FIR में 8 छोटे छोटे छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया, कोई बड़े नाम नहीं है।
4: ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये इस्तीफा है दबाव पर। और इसमें जो FIR अब तक हुई है वो FIR छोटे लोगों पर हुई है, बड़े लोग बचाए गए।
0: इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट के 2 बड़े पदाधिकारियों पर आरोप की बात कबूली है।
5: मुझे नहीं लगता कि कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत। 2 ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है, ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है।
0: अब सवाल ये है कि ये एक्शन कहां तक जाएगा, कौन से बड़े चेहरों को लपेटा जाएगा, क्योंकि इतना तो साफ है कि इसकी सियासी गूंज आने वाले कई चुनाव में सुनाई देने वाली है। आज तक ब्यूरो।
6: बात पुणे के केतन हत्याकांड की, जिसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपित सिया की मां का कहना है कि अगर उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे भी किले से नीचे फेंक कर मार दिया जाए, जहां से केतन को फेंका गया था। लेकिन ये सब तो जांच पर निर्भर करता है। और उधर केतन के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का फैसला किया।
7: सिया की मां क्यों बोली कि अगर बेटी दोषी तो उसे भी किले से धक्का दे दो।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे है वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए।
7: केतन को किले से धकेल कर मारने का प्लान किसका था, चेतन का या सिया का? 18 जून को लोहगढ़ किले पर जाने का प्लान किसका था, केतन का या सिया का? क्या सिया का परिवार अपनी बेटी और प्रेमी चेतन के बारे में पहले से जानते थे? केतन विग लगाता था, क्या इसीलिए सिया उसे पसंद नहीं करती?
9: मुझे यानी कि संभव ही नहीं है कि ये मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती।
7: क्या पुणे के केतन हत्याकांड में मंगेतर सिया को बचाकर प्रेमी चेतन को फंसाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस के सूत्रों से यही खबर आ रही है कि मंगेतर केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया को चेतन ने उकसाया था। सूत्रों के हवाले से अभी तक की जांच में पुलिस को यह पता चला है कि सिया को उसके प्रेमी चेतन ने ही केतन की हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ये पता लगा रही है कि कहीं इस हत्याकांड में सिया गोयल के परिवार का कोई सदस्य तो शामिल नहीं है, इसीलिए पुलिस ने आज सिया के भाई साहिल से भी घंटों की पूछताछ की है। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या परिवार को सिया के अफेयर के बारे में उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के बारे में पता था या नहीं, या फिर क्या सिया के परिवार को यह जानकारी थी कि सिया केतन को पसंद नहीं करती है। क्योंकि अब तो ये साफ है कि सिया सिर्फ खुश दिखने की एक्टिंग कर रही थी और अंदर ही अंदर वो केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी।
10: अभी तक हमने एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद PC मिली है, 2 और अभी तक एक्यूज अरेस्ट है। उनका जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी फिलहाल हम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो कलेक्ट कर रहे हैं, पंचनामा वगैरह बाकी सब चालू है।
11: आज सिया के भाई को बुलाया गया है, किस प्रकार के मतलब जांच शुरू है, क्या स्टेटमेंट लिया गया है और कितने घंटों से यहाँ स्टेटमेंट दिया जा चुका है?
10: करीबन 3 घंटे हो गए उनका इन्वेस्टिगेशन जवाब लेना चालू है, वो हमको हमारी जो क्वेश्चन है उसको पॉजिटिवली रिप्लाई दे रहे हैं।
7: हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से ये खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई, एंग्जाइटी और घबराहट इतनी ज्यादा हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। परिवार का दावा है कि उन्हें सिया के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
12: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
9: नहीं, मैंने आज तक कभी उससे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
12: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
9: नहीं थी, पहचानते नहीं।
12: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
8: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
12: हाँ।
8: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
9: हाँ। मेरा
8: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ, उसके बाद कोई बात नहीं। उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
7: एक तरफ परिवार इनकार कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि अगर इस पूरे केस में उनकी बेटी दोषी होती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए या फिर उसी लोहगढ़ के किले से उसे भी नीचे फेंक दिया जाए।
9: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
8: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे है वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए।
7: यही मांग करने के लिए आज केतन अग्रवाल के पिता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। केतन के परिवार की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की सहमति दे दी। इसके अलावा परिवार की मांग पर जाने माने अधिवक्ता उज्जवल निकम स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे।
13: आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे।
14: सर आपने क्या मांग की है? मतलब आप बार बार कह रहे हो कि कड़क शिक्षा होनी चाहिए, क्या शिक्षा की मांग आपने मुख्यमंत्री से की?
13: सर मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
14: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से?
13: जी मैंने ही उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है नहीं
15: अनाकलनीय अशा प्रकारची घटना है। खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, याच्या पाठीमागची कारणं काय आहेत? मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये। पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक।
7: श्रीकृष्ण पांचाल के साथ ओंकार भाबले, पुणे आज तक।
6: अब मुख्य आरोपित सिया गोयल के परिवार की तरफ से दावा किया गया है कि 18 जून को यानी कि केतन की हत्या के दिन लोहगढ़ के किले में जाने का प्लान केतन का ही था, जबकि पहले दिन से केतन का परिवार यह दावा कर रहा था कि केतन को किले में ले जाने की योजना सिया की थी। अब सवाल है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जिससे मर्डर का मोटिव साफ होता है और अगर यह साबित हो गया कि सिया ही केतन को लेकर जाना चाहती थी तो फिर यह भी साबित होगा कि वो केतन का मर्डर प्लान करके गई थी।
7: अठारह जून को पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या हुई। आरोप लगा कि केतन की मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया। केतन के परिवार की तरफ से पहले दिन से यह कहा जा रहा है कि सिया ने ही केतन को लोहगढ़ के किले पर जाने को कहा था। 19 जून को सिया का बर्थडे था तो दोनों परिवारों का महाबलेश्वर में जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम था। अभी तक की थ्योरी के हिसाब से सिया ने 18 जून को केतन को लोहगढ़ फोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया, जबकि केतन नहीं जाना चाहता था, लेकिन सिया की तरफ से यह कहा गया कि उसके दोस्तों की तरफ से वहां बर्थडे पार्टी का प्लान है। केतन के परिवार ने तो ये तक दावा किया था कि सिया ने केतन की मां को फोन करके केतन को भेजने के लिए कहा था, लेकिन अब सिया का परिवार कह रहा है कि 18 जून को किले में जाने का प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था।
9: उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था
12: जी,
9: उसमें उनकी यानी कि ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होंगी। तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनको महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है
12: जी,
9: क्या करेंगे, थक जाएंगे। बोले पापा मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे तो अपन नहीं चलते करके अपन और कहीं जाने का प्लान करते हैं।
12: ओके
8: और ये सिया के मोबाइल में चैट भी है, आप देख सकते हो
12: मोबाइल में चैट है उसका,
8: चैट है कि केतन मुझे नहीं जाना है अपन और कहीं चलते हैं। तो केतन जी ने लिखा है कि तू मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर अपन चलते हैं।
12: तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके आते
8: हैं। हाँ जी, ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल जाएंगे,
12: ये चैट भी है मोबाइल में। अब तो पुलिस ने
8: रिकॉर्ड कर लिया। हाँ जी, तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट है।
16: फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था महाबलेश्वर में, हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्वेंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे।
7: अब सवाल है कि सच क्या है, क्योंकि अगर सिया और चेतन ने केतन के मर्डर का प्लान बनाया था तो फिर किले में जाने का प्लान तो उन्हीं का बनता है।

0: जब चार दिन पहले 14 जून को भी सिया केतन की हत्या की असफल कोशिश कर चुकी थी और ये वारदात भी लोहगढ़ किले में हुई थी। तो अब सिया का परिवार ये दावा क्यों कर रहा है कि ये प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ रही थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
1: केतन एक छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
0: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही? क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
2: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारी बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले, गए, रिश्ता पक्का हो गया।
0: अब केतन का परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि सिया के परिवार को ये सब पहले से पता था। लेकिन सिया के परिवार का दावा है कि अगर ये बात सही साबित हो गई तो पूरा परिवार सजा भुगतने को तैयार है।
3: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
4: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
5: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
0: अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो ये दिख रहा है कि दोनों ही परिवारों की दुनिया खत्म सी हो गई। एक का बेटा ही चला गया, दूसरे की बेटी जेल चली गई। केतन के परिवार को कभी ऐसा नहीं लगा कि सिया में कोई कमी है और सिया का परिवार तो अभी भी कह रहा है कि उनका होने वाला दामाद उनके बेटे जैसा था। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
6: हंगामे की तस्वीर पश्चिम बंगाल से थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार आ रही है, जहां टीएमसी के नेताओं पर जनता का गुस्सा जमकर निकल रहा है। कहीं कटमनी को वापस मांगा जा रहा है तो कहीं अंडों की बरसात की जा रही है।
0: पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाराबनी में बाहुबली टीएमसी नेता असित सिंह पुलिस के हत्थे चढ़े तो जनता ने कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर हंगामा किया, अंडे फेंकने की कोशिश की गई। ऐसा ही एक वीडियो कूच बिहार से वायरल हो रहा है, जहां टीएमसी के एक नेता को गुस्साई भीड़ रस्सी से बांधकर घुमा रही है, लोग जमकर अंडे मार रहे हैं। हावड़ा में तो टीएमसी नेता को गांव वालों ने खंबे से बांध दिया और गले में जूतों की माला पहना दी। आरोप है कि हावड़ा के जगबल्लभपुर में बसु सांतरा नाम के इस टीएमसी नेता ने पीएम आवास योजना और मनरेगा में लोगों से कटमनी ली थी। आसनसोल में भी टीएमसी नेताओं पर जनता के गुस्से की तस्वीर सामने आई। अवैध पत्थर खनन घोटाला केस में गिरफ्तार टीएमसी नेता भोला सिंह को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची तो लोग बेकाबू हो गए, चोर चोर के नारे लगाने लगे, जूते दिखाने लगे। किसी तरह से पुलिस टीएमसी नेता को बचा कर ले गई। टीएमसी नेता के खिलाफ ये तस्वीर देखिए, ये मालदा से आई है। ये कुख्यात अपराधी और टीएमसी के पूर्व एरिया प्रेसिडेंट बकुल शेख है। इसके कमर में और हाथ में रस्सी बांधकर इसकी परेड कराई जा रही है। कुल मिलाकर जब से बीजेपी बंगाल में आई है तब से टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। आज तक ब्यूरो।
6: यहां वक्त चला बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का इस्तीफा, अनिल मिश्रा की भी गई कुर्सी। सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की जेल, अब तक 80 लाख रुपए बरामद। चढ़ावा चोरी मामले में सियासी घमासान जारी, अखिलेश बोले अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड। सीएम योगी का पलटवार, सबूत नहीं है तो बदनाम करना बंद करो। केतन हत्याकांड को लेकर पुलिस का एक्शन जारी, आरोपी सिया के भाई से 10 घंटे पूछताछ। चेतन सिया ने डिलीट किए थे फोन लॉग, सीएम से मिले केतन के पिता। शांति समझौते के बाद अमेरिका ने ईरान पर किया हमला, मिसाइल ड्रोन और कोस्टल रडार साइट्स को बनाया निशाना। हॉर्मुज में कार्गो शिप पर हमले का लिया बदला। आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया, पहले T20 मुकाबला 34 रन से जीता। अभिषेक की 50 काम नहीं आई, 182 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पूरी टीम 148 पर ऑल आउट।

आपका आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों से लाभ लेने के लिए रत्न पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन रत्न कभी कभी बड़े महंगे भी होते हैं। तो अगर आप महंगे रत्न नहीं खरीद पा रहे हैं तो रत्नों के स्थान पे उनके उप रत्नों का प्रयोग कर सकते हैं। किस ग्रह के लिए कौन सा उप रत्न धारण किया जाएगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, रात के 10:11 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं उपरत्नों की, यानी मुख्य रत्नों के सब्स्टिट्यूट्स की। आखिर रत्नों के स्थान पर उपरत्न क्यों धारण किए जाते हैं और उपरत्नों का महत्व क्या है? देखिए, ज्योतिष के उपायों में मुख्य रूप से 9 की चर्चा की गई है, परंतु कभी कभी ये जो मुख्य 9 हैं बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और कभी कभी इनके नकली होने की संभावना भी होती है। रत्नों के स्थान पर अगर उपरत्न पहने जाएं तो ये सस्ते भी होते हैं और ये अच्छा काम भी करते हैं। उपरत्न में और रत्न में मुख्य अंतर यही है कि रत्न ज्यादा लंबे समय तक काम करते हैं, जबकि उपरत्न की जो लाइफ होती है वो कम होती है। उपरत्न कम समय के लिए प्रभावशाली होते हैं। एक ग्रह के लिए मुख्य रूप से 1 होता है, मुख्य रत्न, और उस मुख्य रत्न के कई सारे उपरत्न होते हैं। सही उपरत्न का चुनाव करके अगर सही उपरत्न धारण किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है। सब्स्टिट्यूट्स पहनने से भी आपको फायदा अवश्य होगा। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य ग्रह के लिए कौन सा उपरत्न धारण करना चाहिए? देखिए, सूर्य का जो मुख्य रत्न है वो है माणिक्य। अंग्रेजी में कहते हैं रूबी, बांग्ला में कहते हैं चुन्नी। माणिक्य के स्थान पर उसके उपरत्न हैं तामड़ी, लालड़ी और लाल तुरमली और गार्नेट। ये भी आप पहन सकते हैं, लेकिन माणिक्य का सबसे अच्छा उपरत्न होता है स्पाइनल। इसको अनामिका अंगुली में तांबे में धारण करना अच्छा होता है। इसको धारण करने से भी सूर्य लाभकारी हो जाते हैं। बाकी ग्रहों के उपरत्नों की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि आज अगर किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है,
महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, धन की परेशानी हो सकती है। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब जानते हैं कि चंद्रमा का उपरत्न कौन सा है। देखिए, चंद्रमा का जो मुख्य रत्न है वो है मोती। मोती के उपरत्न है मून स्टोन और एगेट। लेकिन मोती के स्थान पे सबसे बढ़िया जो उपरत्न है वो मून स्टोन है। इसको चांदी में कनिष्ठा अंगुली में सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल के लिए कौन सा मुख्य रत्न है और कौन सा उपरत्न है। मंगल का मुख्य रत्न है मूंगा, कोरल, बांग्ला में कहते हैं प्रवाल। मूंगे का एक ही उत्तम उपरत्न है लाल हकीक। ये आप मूंगे की जगह पहन सकते हैं। इसको तांबे में धारण करना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। अगर मूंगा नहीं खरीद पा रहे हैं तो लाल हकीक बहुत ही सस्ता होता है। इसको आप तांबे में बनवा करके पहन सकते हैं। बाकी ग्रहों के उपरत्नों पर भी चर्चा होगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन खर्च पर ध्यान दें, अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी,
धन के खर्चों से परेशानी होगी, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की समस्या हल हो जाएगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न जयदेव जी ने हमें लिखा है, कुरुक्षेत्र हरियाणा से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1965, जन्म का समय सुबह के 6 बजे, जन्म स्थान है कुरुक्षेत्र हरियाणा। ये कह रहे हैं कि एक संपत्ति को लेके, प्रॉपर्टी को लेके विवाद चल रहा है, उसका निपटारा कब तक होगा, क्या मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल पाएगी। जयदेव जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी आपको अवश्य मिलेगी। अप्रैल 2027 के बाद 2027 में ही इस मुकदमे का निपटारा होगा और उससे आपको लाभ होगा। रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में उनको लाल फूल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि बुध ग्रह का मुख्य रत्न कौन सा है और इसके उपरत्न कौन से हैं। बुध का जो मुख्य रत्न है उसे कहते हैं पन्ना, एमरल्ड। पन्ने के बहुत सारे उपरत्न होते हैं, हरा बैरूज, ओनेक्स और मरगज, लेकिन इनमें सबसे अच्छा जो पन्ने का उपरत्न है वो है मरगज। मरगज को चांदी में धारण करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अगर आप पन्ना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, नहीं खरीद पा रहे, तो एक मरगज चांदी की अंगूठी में बनवा करके सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहन सकते हैं। अब जानते हैं कि बृहस्पति का रत्न कौन सा है और उसके उपरत्न कौन से हैं। बृहस्पति का मुख्य रत्न है पीला पुखराज और पीले पुखराज के जो उपरत्न हैं वो है पीला बैरूज, सुनहला और येलो सिट्रिन। ये आप पीले पुखराज की जगह पहन सकते हैं। जो येलो बेरियल है, पीला बैरूज है, वो बृहस्पति का सबसे अच्छा उपरत्न है। इसको पीतल में या सोने में बनवा कर तर्जनी उंगली में धारण करना शुभ होता है। बाकी उपरत्नों पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे
आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। अगर फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर के सारे काम पूरे होंगे, वाहन या संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, अभी धैर्य बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब ये जानते हैं कि शुक्र ग्रह का मुख्य रत्न कौन सा है और इसके उपरत्न कौन से हैं। शुक्र का जो मुख्य रत्न है वो सबसे महंगा, सबसे कीमती रत्न है हीरा। हीरे के उपरत्न हैं जरकन, अमेरिकन डायमंड और ओपल। हालांकि ओपल हीरे से ज्यादा बेहतर काम करता है शुक्र और चंद्र के मामले में, लेकिन अगर आपको शुक्र को प्रबल करना है खास तौर से पुरुषों के लिए तो ओपल सबसे अच्छा उपरत्न है। और कभी कभी ओपल हीरे से ज्यादा बेहतर काम करता है। शुक्र के लिए महिलाओं को हीरा या जरकन पहनना चाहिए और पुरुषों को शुक्र के लिए हीरा या ओपल पहनना चाहिए। अगर उपरत्न की बात है तो महिलाएं जरकन पहने, सफेद अमेरिकन डायमंड पहने, मोन्जो नाइट पहने, अच्छा रहेगा। और जो पुरुष हैं अगर वो सब्स्टिट्यूट पहनना चाहते हैं तो हीरे की जगह ओपल पहनेंगे। इसको चांदी में धारण करना चाहिए, या तो अनामिका अंगुली में या तो तर्जनी उंगली में। अब बात करते हैं शनि की। शनि का मुख्य रत्न कौन सा है और इसके उपरत्न कौन से हैं। शनि का मुख्य रत्न सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, उसे कहते हैं नीलम। नीलम के उपरत्न हैं नीली, नीला टोपाज, लाजवर्त और सोडा लाइट। बहुत सारे
नीलम के उपरत्न यूज किए जाते हैं, क्योंकि सामान्यतः लोग नीलम से डरते भी हैं और नीलम महंगा भी है। एक रत्न आता है, उसे कहते हैं तंजनाइट, तंजानिया में मिलता है ये रत्न। और नीलम का सबसे अच्छा अगर कोई उपरत्न है तो वो है तंजनाइट, इसको धारण करना चाहिए। अगर आप नीलम नहीं पहन पा रहे, अगर तंजनाइट भी महंगा लग रहा है, तो ब्लू टोपाज इसको आप चांदी में बनवा कर मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में धारण कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना विशेष है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।

कम होता जाएगा, करियर की बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

वाहन सावधानी से चलाइएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बीमारी में उसने रत्न पहना है, या कोई व्यक्ति रत्न पहना है उसकी मृत्यु हो गई, तो किसी बीमार या मृत्यु वाले व्यक्ति का रत्न नहीं पहनना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप कोई रत्न धारण करते हैं तो वो आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को लेना शुरू कर देता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसने रत्न पहना है, तो रत्न उसकी बीमारी की तरंगों को खींच के बाहर फेंकेगा, कुछ तरंगें उस रत्न के अंदर रह जाएंगी। उसी तरह से कोई व्यक्ति रत्न पहन के अगर मर गया, उसका देहांत हो गया, तो उसके मृत्यु की समय की जो नकारात्मक तरंगे हैं वो रत्न में आ सकती हैं या आ जाती हैं। तो अगर किसी बीमार व्यक्ति का या मृत व्यक्ति का रत्न पहनेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं, आपको मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है, आप तनाव या चिंता के शिकार हो सकते हैं। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर 2, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी। नंबर 3, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। नंबर 4, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 8, धन लाभ के योग हैं। नंबर 9, रुके हुए काम पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी को गुलाब अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न रश्मि श्रीवास्तव ने हमें लिखा है, भोपाल मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 6 फरवरी 1992 का जन्म है, रात में 11 बजे, जन्म स्थान है भोपाल। रश्मि कह रही हैं कि मेरे पति विदेश में नौकरी करते हैं और मैं काफी समय से उनके पास जाने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन उसमें अड़चने बहुत आ रही हैं। तो क्या मैं विदेश जा पाऊंगी या मेरे पति वापस आएंगे? हम लोग कब से एक दूसरे के साथ रह पाएंगे?
रश्मि, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके पति के स्थान परिवर्तन की संभावना ज्यादा प्रबल है। इस साल के आखिरी में, साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपके पतिदेव नौकरी भी बदलेंगे और जगह भी बदलेंगे, वापस भारत में आएंगे ऐसा लग रहा है। और भारत में आने के बाद आप अगले साल के फरवरी के बाद ऐसा लगता है कि उनके साथ रह सकेंगी और वैवाहिक जीवन में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

होगा वृश्चिक वालों के लिए, हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि वालों के लिए, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा मेष राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, चिंता बढ़ सकती है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज त्रयोदशी तिथि है, आज शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन अगर काम देव की पूजा की जाए तो विवाह शीघ्र होता है, इसलिए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो आज काम देव की उपासना अवश्य करें। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: ईरान अमेरिका तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या पिछले 100 साल की सबसे बड़ी घटना। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान की सर्वोच्च नेता अली खामनेई समेत कई लोग भी सुलेमानी से डरते थे और उसकी मौत से खुश थे। फेथ एंड फ्रीडम सम्मेलन में ट्रंप का बड़ा बयान, बोले अमेरिका में धर्म पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटा, ईश्वर और धर्म से ही महान बनता है देश। ट्रंप ने कहा व्हाइट हाउस में रहते हुए, हर आस्थावान अमेरिका की रक्षा करूंगा, पिछली सरकार ने ईसाई और धार्मिक लोगों को निशाना बनाया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि जो भी देश अमेरिका पर डिजिटल टैक्स लगाएगा उसके सभी सामानों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुआ सीज फायर समझौता खतरे में पड़ता दिख रहा है। ट्रंप ने ईरान पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन हमले का गंभीर आरोप लगाया। ट्रंप ने दावा किया एक कार्गो जहाज हमले का शिकार हुआ, जबकि अमेरिकी नौसेना ने 3 अन्य ड्रोनों को रोक दिया। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने रणनीतिक जलमार्ग से गुजर रहे जहाजों पर 4 वन वे अटैक ड्रोन दागे, संघर्ष विराम समझौते का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन बताया। इसराइल और हिजबुल्ला लड़ाकों के बीच लड़ाई खत्म करने के लिए कई दिनों तक चली बातचीत के बाद शुक्रवार को वाशिंगटन में अब बात बन गई। दोनों ने शांति समझौते पर किया हस्ताक्षर, इसे इसराइल और हिजबुल्ला के बीच शांति की दिशा में पहला कदम बताया जा रहा है। इस समझौते की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। रूसी सेना का यूक्रेन के जापोरिजिया और सुमी क्षेत्रों पर बड़ा हमला, यूक्रेन का आरोप, रिहायशी इलाकों पर हुआ हमला, जापोरिजिया में 3 लोग घायल। डेनमार्क की सरकार इस्लामी अजान पर रोक लगाने की कर रही है तैयारी, यहां के इमिग्रेशन मंत्री ने अजान पर रोक लगाने की योजना का ऐलान किया। चीन दौरे पर बीजिंग पहुंचे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने की राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात, प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद तारिक रहमान का पहला विदेश दौरा। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बाद भारी तबाही की खबरें जारी हैं, अब तक 920 लोगों की मौत, 3,360 सख्त। जापान में 2 तूफानों ने मचाया हड़कंप, सरकार ने लोगों को किया अलर्ट, तेज हवाओं और भारी बारिश की आशंका। आज सेशल्स की राजकीय यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, 27-29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे पीएम। पीएम मोदी राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल, हिंद महासागर के सेशल्स का रणनीतिक महत्व, ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी। चीन के प्रभाव के बीच भारत और सेशल्स संबंध मजबूत करने पर जोर, कई मुद्दों पर बातचीत। आज अमित शाह गांधीनगर में कई प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे, गुजरात में भारत टैक्सी पहल शुरू करने के लिए बैठक करेंगे। फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई, पटना सिविल कोर्ट से पुलिस केस डायरी अधूरी होने के कारण टाल दी थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, सभी 8 आरोपियों की फैजाबाद कोर्ट में पेशी, 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। कांग्रेस ने संसद में इस मुद्दे को उठाने का किया ऐलान, केसी वेणुगोपाल बोले करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई, सरकार को इस पर देना होगा जवाब। राम मंदिर मामले को लेकर भड़के कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बोले ट्रस्ट करें भंग, पीएम मोदी भी दें जवाब, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बोले राजनीतिक जुड़ाव वाले लोगों को हटाकर संतों और धार्मिक लोगों को ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। विपक्ष के लगातार हमलों के बीच बीजेपी ने कहा मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच के बीच चंपत राव ट्रस्ट चैनल मिश्रा ने दिया इस्तीफा, लेकिन गोपाल राव ने इनकार किया। राम मंदिर चढ़ावे पर चोरी मामले पर बचा सियासी घमासान, सीएम योगी बोले राजनीतिक बयानबाजी बंद करें, अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक है। सीएम ने कहा जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं, विपक्ष को दी सबूत लाने की चुनौती। सीएम बोले सबूत है तो एसआईटी को दें, एसआईटी रिपोर्ट के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। अखिलेश का बीजेपी पर वार, बोले अयोध्या ही होगा बीजेपी का लंका कांड। एसआईटी का बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक 2022 से 2025 के ऑडिट में मिली गड़बड़ियां, 42 दिन में 70 बार चोरी के सबूत, 60 लाख बरामद। सूत्रों के मुताबिक मंदिर के सीसीटीवी में कई बार चोरी करते दिखा था मनीष यादव, जो कि टिन्नू का रिश्तेदार है। एसआईटी ने जांच में पाया कि सीसीटीवी में दिखने के बाद भी मनीष पर कोई नहीं हुआ एक्शन। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा एफआईआर दर्ज हो गई है, अब उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश पाठक ने एसपी कांग्रेस पर तुष्टिकरण और टेरर फंडिंग का आरोप लगाया, बोले बाबरी मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे का हिसाब दे अखिलेश। राम मंदिर विवाद पर शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाए सवाल, कहा पार्टी ने राम मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ और चांदी की ईंट पर रसीद नहीं मिली। सीएम योगी नोएडा प्राधिकरण के नए प्रशासनिक मुख्यालय का आज उद्घाटन करेंगे, 390 करोड़ से बनकर तैयार हुआ है नोएडा अथॉरिटी का हेडक्वार्टर। राम मंदिर छड़ावा चोरी पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन का बयान, बोले असली आरोपियों को बचाया जा रहा है। देवरिया में सीएम योगी ने 456 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कहा शिक्षा पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। अयोध्या दौरे पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बोले केजरीवाल 8 आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर सिर्फ दिखावा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर छत्ता चोरी मामले पर अरविंद केजरीवाल ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। कांग्रेस ने अविनाश पांडे की जगह अब राजेंद्र पाल गौतम को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया। आंध्र प्रदेश दौरे पर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, विजयवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन। एनसीईआरटी की नौवीं कक्षा की किताब में चुनाव आयोग और एसआईआर को मिली जगह, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के विपक्ष के सवालों के बीच तारीख। वित्त हत्याकांड की जांच तेज, पुणे पुलिस की 6 टीमें और फॉरेंसिक टीम की जांच में कई बड़े खुलासे, सिया के परिजनों के बयान दर्ज। चेतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस का बड़ा दावा, प्रेमी चेतन ने ही मंगेतर सिया गोयल को हत्या के लिए उकसाया। पुलिस का दावा, आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉग, सिया के भाई से 10 घंटे पूछताछ। सिया के भाई साहिल ने कहा अगर सिया ने परिवार को बताया होता कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती तो परिवार शादी के लिए आगे नहीं बढ़ता। मुख्य आरोपी सिया की मां का बड़ा बयान, बोली अगर बेटी दोषी साबित होती है तो उसे भी किले से नीचे फेंक कर मार दिया जाए। सीएम फडणवीस से मिले मृतक केतन के पिता, महाराष्ट्र सरकार ने पूरे केतन हत्याकांड केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का फैसला लिया। भरत तिवारी की मां का सनसनीखेज आरोप, कहा भोजपुर एसपी ने कहा कि मीडिया में मत बोलो नहीं तो भरत की तरह मरवा देंगे। सदरपुर एसपी ऑफिस में भरत तिवारी के पोस्टर लगाए और युवक वहां पर पहुंचा और बोला कहीं मैं भी ना बन जाऊं भरत तिवारी, मेरा भी हो सकता है एनकाउंटर, मिल रही रहूं। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने पूजा की, भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। केरलम के तुमपुर रेलवे स्टेशन पर बने रेलवे प्लेटफॉर्म शेल्टर का शुभारंभ, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी शामिल हुई। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरणमान जी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कई एमओयू पर हस्ताक्षर। मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, आने वाले 24 घंटे में बिहार झारखंड के सभी इलाकों और उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में तेज होगी मानसूनी गतिविधियां, 29 से 30 जून के बीच उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो सकता है मानसून। सबसे पहले पूर्वी यूपी में देखने को मिलेगा मानसून का असर, बढ़ेगा बारिश का दायरा, तापमान में 5 से 8 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम समेत पूरे पूर्वोत्तर में मानसून की बारिश जारी, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून के विस्तार पर होगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिलहाल भारी बारिश की संभावना, गरज चमक के साथ बादल छाने और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला, बागेश्वर में चमकदार बारिश। अरुणाचल के चांगलांग जिले के चोमना मार्केट में भूस्खलन, रास्ता साफ करने में जुटा प्रशासन। भूस्खलन के कारण सिक्किम और सिलीगुड़ी के बीच चलने वाला वाहनों का रास्ता बदल गया, पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही बारिश की जगह सड़क मार्ग पर रुकावट आई। पूर्वी पश्चिमी भारत समेत मध्य पूर्वोत्तर भारत के कई जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान की संभावना, अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने उत्तर बंगाल में भारी बारिश की आशंका जताई, इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी। बिहार के समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान भारी बवाल, तैनात पुलिस टीम पर लोगों ने की पत्थरबाजी, कई घायल। पत्थरबाजी में पुलिस जवान के साथ कई लोग घायल हुए, सड़क पर लोग उतर आए। जयपुर में मुहर्रम के जुलूस में अचानक भड़की आग, ताजिए के गुंबद से उठी लपटे हड़कंप मच गया। फिरोजाबाद में खाली प्लॉट में खड़ी 2 कारों में आग लग गई, दमकल विभाग ने काबू पाया। नैनीताल में कॉर्बेट में बाघों की खूनी जंग, देर रात रेस्क्यू कर वन्य जीव चिकित्सकों ने बचाई बाघ की जिंदगी। फरीदकोट में शिया काल तख्त साहिब के आदेश वाले बोर्ड को शरारती तत्वों ने फाड़ा, वारदात सीसीटीवी में। गाजियाबाद में 12 दिन डिजिटल अरेस्ट, रिटायर बैंक मैनेजर से 2,20,00,000 की साइबर ठगी हुई, फर्जी पुलिस ईडी बनकर ठगा। रोहतास में नहर से 1 महिला का शव बरामद, इलाके में हड़कंप। जयपुर में बेटे ने बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा, मारपीट का सीसीटीवी सामने आया। और आज के वाशी में बड़ा हादसा हुआ, बस का टायर पलटने से नियंत्रित हुई बस दुकान में घुसी, 2 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र के पालघर में महानगर पालिका की इलेक्ट्रिक बस में अचानक आग लगी, बस पूरी तरह जलकर खाक हुई। गुजरात के गांधीनगर हाईवे पर 4 लग्जरी कारों के बीच टक्कर के बाद एक कार में आग लगी, 4 लोग घायल हुए। मेरठ में हाईवे पर चलती डबल डेकर एसी बस में अचानक आग लगी। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी 26 यात्री सुरक्षित। मैसूर में दो बसों की आमने सामने टक्कर, टकराव के बाद बस में लगी आग में कई यात्री घायल। कौशाम्बी टोल प्लाजा पर डिवाइडर से टकराया एलपीजी टैंकर, बाद में लगी आग, बाइक की चपेट में आई, 7 लोग झुलस गए। बेंगलुरु में सड़क पर जा रहे बाइक सवार पर अचानक गिरी पेड़ की टहनी, शख्स की हालत गंभीर। बेंगलुरु में चलती स्कूल वैन का पिछला दरवाजा खुलने पर 5 बच्चे बाहर गिरे, पीछे से कोई गाड़ी नहीं आने पर बड़ा हादसा टल गया। उधम सिंह नगर में हाथियों का तांडव, हाईवे पर अचानक आए हाथियों के झुंड को देख मची अफरा तफरी, जाम लग गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में मोहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, हाई टेंशन तार से टकराया, ताजिया 3 की मौत, 12 झुलसे। आगरा के फतेहपुर सीकरी में कार से स्कूटी सवार को टक्कर मारी, 2 किलोमीटर तक घसीटा। चारधाम यात्रा में बना हुआ यात्रियों का उत्साह, अब तक 40,50,000 से ज्यादा भक्त हो चुके हैं शामिल। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे हैं सबसे ज्यादा श्रद्धालु, 13,20,000 से ज्यादा कर चुके हैं बद्री विशाल के दर्शन। हेमकुंड साहिब में अब तक 1.5 लाख के करीब श्रद्धालु टेक चुके हैं मत्था, करीब 5,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं रोज। ग्रेटर चेन्नई में पुलिस ने किया फूड फेस्टिवल का आयोजन, एमोर पुलिस म्यूजियम में सजाए गए कई तरह के व्यंजन। कुंभलगढ़ को जल्द मिलेगा टाइगर रिजर्व का दर्जा, राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़। आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया, पहले टी20 मुकाबला 34 रन से जीता। अभिषेक की फिफ्टी किसी काम नहीं आई, 182 रन का पीछा करते हुए 148 पर टीम इंडिया ऑल आउट। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इस मैच में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। भारतीय फील्डरों ने 3 अहम कैच छोड़े, शिवम दुबे ने 10, चैक्टर का कैच छोड़ा, अभिषेक वर्मा ने गैरत जलानी का आसान कैच गवाया। तेरा मेरा नाता ने सिनेमाघरों में दी दस्तक, ये एक फैमिली ड्रामा, 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ। हिंदी की सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नव्या चक्र भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तुषार काबले, क्षितिज पवार और प्रतीक्षा सिंह लीड। राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का टीजर रिलीज, 7 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्रहार में राजकुमार ने मशहूर वकील उज्जवल निकम का किरदार निभाया, जिन्होंने 26/11 हमले में आरोपी अजमल कसाब को फांसी दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। राजकुमार हीरानी ने किया बड़ा ऐलान, 20 साल बाद फिर ला रहे मुन्ना भाई का तीसरा पार्ट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
2: Cybersecurity roles are growing fast, but opportunity doesn't wait. You've got to be ready for it. At WGU, you can earn your degree online, gain up to 16 certifications, and graduate with skills employers look for.
3: My boss is leaning on me for designing the security space. No one else at work knows what I know. They don't have the same certifications.
2: Plus, you may qualify for a $6,000 cybersecurity scholarship. Learn more at wgu.edu.
4: Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points.
5: This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
6: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: In association with Hind, बड़े आराम से Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Vimal, बोलो जुबां केसरी.
4: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
5: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक.
6: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
7: जो मुख्य गुनहगार है वो तो बाहर है, वो आप भी उस ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं ना। चोरी का पैसा वो आप मंदिर में चोरी करते हो, हिंदुत्ववादी लोग हैं आप, अपने आप को मानते हो। आप मंदिर की दानपेटी चुराते हो, लाखों करोड़ रुपया चुराते हो, वो पैसा राजनीति में आता है और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो, पार्टियां तोड़ते हो। वही राम मंदिर के 2000 करोड़ आप लोगों ने जो चोरी की है, उसी पैसे से आपने आपके सांसद तोड़े, तृणमूल के सांसद तोड़े, विधायक तोड़े, शिवसेना के जो 6 सांसद तोड़े, वो राम मंदिर का ही लूटा हुआ पैसा है।
8: उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो कहावत है उसी तरह संजय राव जी का बर्ताव है। मैं हर बार बोलता हूँ उनको पागलपन के दौरे आ रहे हैं और उसी का ये नतीजा है इसी तरह की बातें करना। राम मंदिर और उनकी तिजोरी जो कुछ पैसा है उसके बारे में SIT लगाया है। अगर ये पैसा चोरी करने का था, रहता मन में था, तो उनके ऊपर SIT नहीं लगता था। वो जिन्होंने चोरी की है उनको पकड़ रहे हैं। ये सिर्फ पागलपन के दौरे के वजह से इसी तरह की बातें संजय राउत कर रहे हैं। मुंबई महापालिका को लूटने का काम संजय राउत और UBT ने किया है और मुंबई के सिवा उनके ध्यान किधर भी नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं। उनकी पार्टी अब खत्म हो रही है, उनको छोड़ के जा रही है, कांग्रेस में विलीन होने की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, शरद पवार जी ने आत्मसम्मान के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की निर्मिति की, उनको बोल रहे कांग्रेस में विलीन हो, इसीलिए संजय राउत ने कितना पैसा लिया है, कितनी पैसे की सुपारी ली है, मैं उनके जाहिर ये प्रश्न पूछता हूं। राहुल गांधी ने

0: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
1: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena, ESPN Radio.
2: How they looked after game one.
3: I mean, they were frustrated.
1: The Daily.
4: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
1: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
5: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
6: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
7: जो आशंका थी अंततोगत्वा वही हुआ और जिन लोगों का नाम एफआईआर में आया है ये सारे के सारे सपाई हैं। टिन्नू यादव का गैंग है जो अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है और हम लोग जो है सोच रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि हम लोग अयोध्यावासी अयोध्या में रहने वाले अयोध्या में आश्रम हम लोगों को पता नहीं लगा और इतनी बड़ी घटना हो गई है। उस घटना का सबसे पहला बयान सपा मुखिया अखिलेश यादव दे रहे हैं जिनके बाप ने राम भक्तों पर गोली चलाया जो आज तक राम मंदिर नहीं गया।
8: ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि बहुत विलंब से दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, लेकिन देर से ही सही दुरुस्त आया और मुकदमा 8 लोगों के ऊपर लिखा गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग धैर्य रखिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो हमको लगता है धैर्य का ही परिणाम है कि मुकदमा लोगों के ऊपर लिखा गया एसआईटी ने।
9: आसमान में उड़ने का सपना हर आम इंसान देखता है। छुट्टियों और लॉन्ग वीकेंड्स की ट्रिप के लिए लोग अपने परिवार के साथ फ्लाइट्स की बुकिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हवाई सफर की प्लानिंग आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है। दरअसल दुनिया भर में जेट फ्यूल का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मैकेंजी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की किल्लत की वजह से एयरलाइंस की लागत आसमान छू रही है। इसका सीधा नतीजा ये होगा कि आने वाले दिनों में हवाई किराया 25% तक महंगा हो सकता है। हवाई सफर के इस बजट बिगड़ने के पीछे की पूरी कहानी डेटा से अगर समझें, तो किसी भी एयरलाइन के कुल ऑपरेटिंग खर्च में करीब 30% हिस्सा अकेले ईंधन का होता है और इस बार ग्लोबल रिफाइनरियों में उत्पादन की कमी और जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से फ्यूल सप्लाई चेन टूट गई है। ऐसे में दुनिया के 40% जेट फ्यूल सप्लाई करने वाले खाड़ी देश और एशियाई निर्यातकों पर छाया संकट हालात को बिगाड़ रहा है। इस पूरे संकट के पीछे कच्चे तेल की कीमतों के साथ एक टेक्निकल खेल भी काम कर रहा है। कच्चे तेल और उसे रिफाइन होकर बनने वाले ATF की कीमत के बीच के अंतर को क्रैक स्प्रेड कहते हैं। पहले ये क्रैक स्प्रेड $20 प्रति बैरल रहता था, जो 2026 में औसतन $50 प्रति बैरल के पार जा सकता है। फिलहाल ग्लोबल रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं, जिससे ATF का नया प्रोडक्शन बढ़ाना नामुमकिन हो गया है। अभी डिमांड को पूरा करने के लिए पुराने स्टॉक का सहारा लिया जा रहा है, जो तेजी से खत्म होने की कगार पर है। फ्यूल की लागत दोगुनी होने की स्थिति में एयरलाइंस इस पूरे बोझ को मुसाफिरों पर डालने की तैयारी में है। आम जनता को इस महंगे सफर से राहत कब मिलेगी, इसे लेकर के भी स्थिति बहुत ज्यादा साफ नहीं है। हालांकि इस संकट के बीच कुछ उम्मीदें भी

0: जुड़ी हुई है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अगर तेल टैंकरों की आवाजाही रफ्तार पकड़ती है तो कीमतों में फौरी कमी आ सकती है। ये राहत बहुत छोटे वक्त के लिए होगी क्योंकि दुनिया के तमाम देश अपना रणनीतिक भंडार दोबारा भरने में जुटे हैं। इस रीस्टॉकिंग की वजह से सप्लाई सामान्य होने के बाद भी कई महीनों तक हवाई ईंधन के दाम ऊंचे बने रहेंगे। ऐसे में राहत की उम्मीद कम है और लंबे समय तक महंगा सफर ही आम लोगों की किस्मत बनने की आशंका है। जाहिर है कि एयरलाइंस के बढ़ते खर्च का बोझ सीधे मिडिल क्लास के बजट पर आने वाला है, जिससे हवाई सफर का मजा फीका होना तय है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

डील के बाद पहली बार टूटा सीज फायर, हॉर्मुज में कार्गो शिप पर हमले का अमेरिका ने लिया बदला, वेंस बोले हिंसा का जवाब हिंसा से। वेनेजुएला में तबाही का महाभूकंप, 1000 के करीब मौत, मलबे से अब भी निकल रहे शव, भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्तार। आज से 3 दिन के सेशल्स दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी, राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की जेल, अब तक 80 लाख रुपए बरामद, बाबा बागेश्वर बोले चोरों को भगवान देगा महादंड। और केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपित सिया के भाई साहिल से 10 घंटे पूछताछ, चेतन सिया ने डिलीट किए चैट हिस्ट्री, विक पैच थ्योरी की एंट्री।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमांशु दीक्षित। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर से अमेरिका और ईरान में एक बार तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन हमले का गंभीर आरोप लगाया। ट्रंप ने दावा किया कि एक कार्गो जहाज हमले का शिकार हुआ है, जबकि अमेरिकी सेना ने 3 अन्य ड्रोन को रोक दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने रणनीतिक जलमार्ग से गुजर रहे जहाजों पर 4 वन वे अटैक ड्रोन दागे। ट्रंप ने इस कथित हमले को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम समझौते का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन बताया है।
1: एंड अगेन वी डिड हैव टू मेक दैट एक्सकर्शन। हाउ वुड यू लाइक टू बी गिवन द बेस्ट नंबर्स वी हैव एवर हैड एज अ कंट्री एंड टेल पीपल इरान इफ वी डिडंट डू दैट एंड वी स्टिल यू नो वी स्टिल हैव अ फाइट। दे हैव सम कैपेबिलिटी, नॉट मच। They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. You know, they shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff.
0: So, एक तरफ लग रहा था सीज़फ़ायर, सब शांति अब दिखाई देगी मिडिल ईस्ट में, क्योंकि अब सीज़फ़ायर हो चुका है अमेरिका और ईरान के बीच। लेकिन जैसे ही यह खबर आई, उसके बाद माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गया है। हॉर्मुज में कमर्शियल जहाज पर हमले से अब तनाव के हालात देखे जा रहे हैं। अमेरिका और अमेरिका की तरफ से आरोप लगाया गया कि काफी हमले ईरान की तरफ से किए गए, 4 वन वे अटैक किए गए। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रणय, लंबे वक्त से हम देखते आ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, एक उम्मीद दिखी थी, लग रहा था कि अब सब कुछ शांत होगा, लेकिन अस्थायी शांति थी। क्या आप ये कहें आने वाले वक्त में फिर तनाव बढ़ेगा?
2: देखिए, तनाव की आशंका तो बरकरार है ही सही, क्योंकि भरोसे का संकट सबसे बड़ा संकट है। दोनों पार्टीज के बीच में गहरा अविश्वास है एक दूसरे के इंटेंशंस को लेकर, और खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आखिर कैसे ऑपरेट किया जाए। और ये कोई पहला मौका नहीं है हिमांशु। अगर हम बीते 80 दिनों का पूरा ग्राफ देखें, यानी 7-8 अप्रैल 2026 को जब सीज फायर का ऐलान किया गया, उसके बाद से लेकर अभी तक 46 बार ये संघर्ष विराम टूट चुका है। और इसीलिए ये जो घटनाक्रम हुआ है, यानी 25 जून को जिस तरीके से सिंगापुर के फ्लैग्ड शिप एवर लवली को अटैक किया गया, उसके बाद अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई, उसके बाद जवाबी कार्रवाई, ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उसने अमेरिकी ठिकानों के ऊपर वार किया है उन देशों में जहां पर अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने को लेकर अभी भी जो है कई दिक्कतें, कई मुश्किलें बरकरार हैं, क्योंकि कैसे खोला जाए, किस तरीके से शिप्स की आवाजाही हो, इन तमाम चीजों को लेकर कई अनसुलझे सवाल हैं। और यही मुद्दे हैं जो बार बार आकर इस पूरे इलाके के अंदर जो शिप्स की आवाजाही है, जहाजों की आवाजाही, उसको बाधित करते हैं। दुनिया ने राहत की सांस ली थी 25 तारीख को, जब करीब 20 मिलियन बैरल तेल जो है वो शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर जो जहाजों की संख्या है उसमें एक कमी देखने को मिली है पिछले कुछ घंटों के दौरान, और साथ ही जो सैन्य तनाव है उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है।
0: आप बने रहिए प्रणय हमारे साथ, क्योंकि हम आपसे ये भी बात करेंगे कि ट्रंप के दावों पर ईरान का भी जवाब आया। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आरोप लगाते हैं कि ईरान ने हमला किया, अब ईरान का भी जवाब आ गया। ईरानी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका पर धोखा देने का आरोप लगाया। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने शांति समझौते का उल्लंघन किया। वार्ता के बीच हमला करके ट्रंप ने सीज फायर तोड़ा है, मतलब ईरान ट्रंप को दोषी ठहरा रहे हैं इस हमले के लिए। ट्रंप दोषी है और ट्रंप ने यह हमला किया है। प्रणय बने हुए हमारे साथ। प्रणय, अमेरिका कह रहा है कि ईरान की तरफ से हमला किया गया, सीज फायर तोड़ा, ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने धोखा दिया है, लेकिन आम लोग क्या समझे, किसकी तरफ से शुरुआत की गई?
2: देखिए, दो बयान तो दोनों ही तरफ से आए हैं। इब्राहिम अजीजी के बयान का जिक्र आपने किया, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वैंस कह रहे हैं कि हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा, या जिस तरीके से जहाज को टारगेट किया गया वो जो है अनआंसर्ड नहीं जा सकता, उसका जवाब ईरान को जरूर दिया जाएगा। वहीं ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने इस चीज की शुरुआत की थी और हम केवल जवाब दे रहे हैं, क्योंकि करीब 90 मिनट तक ईरान के जो कोस्टल रडार हैं, ईरान के जो मिसाइल ठिकाने हैं, ईरान के जो ड्रोन ठिकाने हैं, उन तमाम चीजों को निशाना बनाते हुए करीब 1.5 घंटे तक अमेरिकी सेना की तरफ से बमबारी की गई है। और वो ये बमबारी ऐसे समय में आई है जबकि दोनों के बीच में कथित तौर पर जो स्विट्जरलैंड है वहां पर समझौता भी हुआ, और समझौते के साथ साथ दोनों के बीच में पहले राउंड की बातचीत भी हुई, संघर्ष विराम को एक स्थायी समझौते में तब्दील करने को लेकर चर्चा हुई। तो ऐसे में ये संशय बरकरार है लोगों के मन में कि आखिर ये समझौता टिकेगा भी,
0: और यही यही सबके मन में चल रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, शांति या तनाव। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर इसराइल लेबनान से जुड़ी हुई है, वो भी आपको बता दें, दोनों देशों में समझौता हो गया है। कई दिनों तक चली बातचीत के बाद शुक्रवार को वॉशिंगटन में बात बन गई, दोनों देशों ने शांति समझौते पर दस्तखत हस्ताक्षर कर दिए। अब इसे इसराइल और हिजबुल्ला के बीच शांति की दिशा में पहला कदम बताया जा रहा है। ये एक त्रिपक्षीय समझौता है, त्रिपक्षीय, जिसमें अमेरिका की भी भूमिका रहेगी, यानी अमेरिका, इसराइल, लेबनान। समझौते के बाद नेतन्याहू ने दावा किया कि सुरक्षा कारणों से इजरायली फौज लेबनान के बफर जोन में मौजूद रहेगी और तब तक रहेगी जब तक सारे खतरे समाप्त नहीं हो जाते। ये इसराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि हम मौजूद तो रहेंगे, हटेंगे नहीं लेबनान के बफर जोन से। वहीं वेनेजुएला की राजधानी काराकास के आसपास आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 1,000 के करीब पहुंच गई है, साथ ही 4,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। ऐसे में मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। इस संकट की घड़ी में दुनिया भर से राहत सामग्री वेनेजुएला भेजी जा रही है। भारत ने भी कल एयरफोर्स के ग्लोब मास्टर विमान से राहत सामग्री भेजी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई और ये लगातार बढ़ती जा रही है, तेजी के साथ बढ़ रही है, और बहुत जल्द 1,000 के पार पहुंच सकती है क्योंकि अभी भी मलबे से शव निकाले जा रहे हैं। कई हजार जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो इस वक्त लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं, राहत बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो चुकी हैं और छुट्टी का दिन था तो ऐसे में ज्यादातर लोग अपने घरों में थे।

0: वेनेजुएला की राजधानी काराकास के पास आए दो विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। बचावकर्मी अभी भी मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। इस आपदा में अब तक कम से कम 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक राजधानी काराकस और पास के तटीय शहर लागवायरा में ढही हुई इमारतों के मलबे के नीचे से लोगों की मदद के लिए पुकार सुनाई दे रही है। वहीं कई लोग बेघर हो गए हैं, जबकि क्षतिग्रस्त और असुरक्षित इमारतों में रहने से डरे लोग सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला को हर संभव मदद देने की बात कही।
1: We took over Venezuela in less than one day. And the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big. They had a tremendous earthquake last night that you read about, massive in Caracas. But we're going to help them out.
0: अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक बुधवार को पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके कुछ ही सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का इससे भी ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आया था। दोनों भूकंप धरती की सतह के काफी करीब आए, जिससे भारी तबाही हुई। इस भूकंप के बाद दुनिया के कई देशों ने वेनेजुएला की मदद के लिए आगे हैं और काराकास में मानवीय सहायता पहुंचनी जारी है। आज तक ब्यूरो।
2: पीएम मोदी आज 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना होंगे। 27-29 जून तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स की रणनीतिक स्थिति और भारत की समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच इस यात्रा का उद्देश्य भारत सेशेल्स के द्विपक्षीय संबंधों, समुद्री सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत करना है। आज सेशेल्स जाएंगे पीएम मोदी, 3 दिनों की उनकी यह यात्रा रहेगी। संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश रहेगी। सेशेल्स के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। और अब बात उस खबर की, जिस खबर ने देश के करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में कई शंकाएं और सवाल खड़े कर दिए। राम मंदिर चढ़ावा कांड की बात कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी में FIR और गिरफ्तारी के बाद इस्तीफे भी हुए। चंपत राय महासचिव जो थे, अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्टी थे, उनका विकेट गिर चुका है, लेकिन विपक्ष के सियासी बाउंसर अभी भी जारी हैं। अखिलेश जिस तरह से हिंदुत्व की पिच पर उतरकर बीजेपी को घेर रहे हैं, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव में अयोध्या के इर्द गिर्द ही दोनों के बीच सियासी टक्कर हो सकती है।
3: मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती।
4: योगी आदित्यनाथ भले ही अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले का दूध और पानी का पानी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर घेर रहा है और इसे आस्था का अपमान बताता है।
5: ये आप जो है पिछले चुनाव में नारा था कि जो राम को लाए हैं उन्हें आप सत्ता में लाइए, तो अब जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है? उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए कि सिर्फ 8 कर्मचारियों पर डाल के, छोटे मोटे लोगों पर डाल के आप जो है इससे बच के निकलना चाहते हैं। ये मुद्दा बहुत देशव्यापी स्तर पर चल रहा। जो दक्षिण भारत की महिलाएं आती थी वहां पे एक परंपरा है कि जो वो पहने होती हैं, जो आभूषण या जेवर ज्वेलरी वो सब डाल देती हैं। इतने सालों से, दसियों सालों से जो ज्वेलरी, जो आभूषण, जो जेवर आ रहे थे उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं बना है।
4: कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि भगवान राम का हीरे का हार भी गायब हो चुका है।
5: एक लंबी चौड़ी फेरिस्त जो लोगों ने शिकायत करने का सिलसिला शुरू हुआ कि हमने ये दिया था, हमने ये दिया था, हमने ये दिया था, उसकी हमें रसीद आज तक नहीं आई। तो उसका तो कुछ कितने 100 करोड़ का, कितने 1000 करोड़ का जेवर था, आभूषण थे, उनका तो कुछ पता ही नहीं। कहते राम, भगवान राम की जो माला थी हीरे की, वो भी गायब है। तो ये तो अजीबो गरीब मामला, ऐसा तो सुना ही नहीं था। तो ये जो है, यह अब मेरे हिसाब से राजनीतिक मुद्दा नहीं, एक बहुत बड़ा धार्मिक मुद्दा है जिसपे हर एक की चिंता है।
4: अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि बीजेपी का लंका कांड अयोध्या में ही होगा। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि आखिरकार दान भक्तों का मुखौटा उतर ही गया, क्योंकि प्रभु की अलौकिक शक्ति ने अपना चमत्कार दिखा दिया। अखिलेश यादव ने लिखा है कि अब भाजपाइयों के अहंकार की चमचमाती लंका के साम्राज्य का अंत होगा और लंकाधिपति का भी। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को चढ़ावा चोरी का मुद्दा काम का लग रहा है, जिसके जवाब में योगी राम भक्तों को राम मंदिर आंदोलन में समाजवादी पार्टी के रोल की याद दिलाते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरह अरविंद केजरीवाल भी इस मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि चंदा चोरी में FIR दिखावा है, असली मकसद बड़े लोगों को बचाना है।
6: आज मैं गया भगवान राम के सामने नतमस्तक हुआ, वो भी इनको दंड देंगे। राम के सहारे आए थे, अब राम ही इनको भगाएंगे, भगवान राम ही इनको भगाएंगे।
4: 2027 के चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन जिस तरह से अयोध्या को लेकर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हैं, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि यूपी में अगले चुनाव के प्रमुख मुद्दे में अयोध्या का मुद्दा सबसे आगे हो सकता है।
2: तो चढ़ावा चोरी की सियासत महाराष्ट्र तक पहुंच गई। संजय राउत ने शिंदे गुट पर आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे से ही विधायकों सांसदों की खरीद फरोख्त की गई। शिवसेना ने भी पलटवार किया है। अब
7: मंदिर की दानपेटी चुराते हो, लाखों करोड़ रुपया चुराते हो, वो पैसा राजनीति में आता है और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो, पार्टियां तोड़ते हो। वही राम मंदिर के 2000 करोड़ आप लोगों ने जो चोरी किए हैं, उसी पैसे से आपने आपके सांसद तोड़े, तृणमूल के सांसद तोड़े, विधायक तोड़े, शिवसेना के जो 6 सांसद तोड़े, वो राम मंदिर का ही लूटा हुआ पैसा है।
8: मैं हर बार बोलता हूँ उनको पागलपन के दौरे आ रहे हैं और उसी का ये नतीजा है इसी तरह की बातें करना। राम मंदिर और उनकी तिजोरी जो कुछ पैसा है उसके बारे में SIT लगाया है। अगर ये पैसा चोरी करने का था, रहता मन में था, तो उनके ऊपर SIT नहीं लगता था। वो जिन्होंने चोरी की है उनको पकड़ रहे हैं, ये सिर्फ पागलपन के दौरे के वजह से इसी तरह की बातें संजय राउत कर रहे हैं।
2: बड़ी खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां के इटौजा में मकान का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर गया और इसकी चपेट में आने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद अपनी मशीन थी, वही यहां पर भी हुआ। जुलूस कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। यह खबर मिल रही है कि मोहल्ला पकड़िया निवासी मुश्ताक अपने घर के छज्जे से जुलूस में शामिल लोगों को शरबत और पेय पदार्थ वितरित कर रहे थे। परिवार के कई सदस्य और स्थानीय लोग छज्जे और छत पर खड़े होकर मुहर्रम का जुलूस देख रहे थे। अचानक छज्जा गिर गया, भार नहीं सह सका और 2 मासूमों की मौत हो गई। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की हालत भी गंभीर है। लखनऊ में मुहर्रम जुलूस के दौरान ये छज्जा गिर गया।
9: थाना क्षेत्र इटौंजा में कस्बा गोहोना में छज्जा गिरने की सूचना मिली। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, सभी घायलों को उपचार के लिए भेजा गया। इसमें 2 बच्चों की मृत्यु होना बताया गया है। अली और अरमान उम्र करीब 13 वर्ष है। ये एक निर्माणाधीन घर था, उसमें कुछ मुहर्रम के अवसर पर शरबत बांट रहे थे छत पर खड़े होके, तो उसमें छज्जे पे दबाव के कारण वो छज्जा नीचे जो खड़े थे उनके ऊपर गिर गया, इसके कारण मृत्यु हो गई। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, सबको उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।
2: मुहर्रम की बात की जा रही है, जिससे लेकर कई जगहों पर हिंसा और झड़प की तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद प्रशासन अब एक्शन मोड में है और तनाव को देखते हुए यूपी से लेकर बिहार तक भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई।
10: उज्जैन में जिस इलाके में मुहर्रम जुलूस के नाम पर हंगामा हुआ था, उसी इलाके में उपद्रवियों की पुलिस ने परेड निकाली। जुलूस के दौरान हुए ब्लास्ट और हंगामे पर अब सियासत तेज हो गई है।
11: वो स्टंट बतलाया गया है, उतना ज्यादा नहीं था, वो सिर्फ 2-4 पटाखे थे और वो भी एक वैन को पुरानी वैन में वो ग्लू से चिपका कर कांच वाच लगा दिए गए थे और उनको विस्फोट किया गया था।
12: मुहर्रम की जुलूस की आपत्ति नहीं है, मुहर्रम का जुलूस चाहे जैसा निकालो, उसकी क्या आपत्ति है, लेकिन मुहर्रम के जुलूस में इस तरह के तुम क्रेन पे बैन लटकाकर विस्फोट करोगे तो आतंकवादी है, ये आतंकवादी घटना से जुड़ा है।
10: मुहर्रम जुलूस हंगामे की एक तस्वीर बिहार के शिवहर से भी आई, जहां अखाड़ों की क्रॉसिंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जो पथराव और झड़प में तब्दील हो गया। करीब 15 लोग घायल हुए। पुलिस ने 75 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। उधर यूपी में भी मुहर्रम को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। वहीं पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। प्रतापगढ़ में मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया है। 2016 से हर साल एहतियात के तौर पर यह कार्रवाई की जाती है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं संभल में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।
13: जो पूरा पैदल मार्च है वो इस वक्त संभल की सड़कों पर किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, अस्त्र और शस्त्रों का कहीं ना कहीं प्रदर्शन ना हो और जो शासन की गाइडलाइंस है उनका पालन हो सके, इसके लिए अब पुलिस अधिकारी सड़कों पर है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।
2: और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, शिमला में भीषण सड़क हादसा हुआ। गहरी खाई में एक पिकअप वाहन गिर गया है और यह बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हो गई। अब ये वीडियो बहुत हैरान करने वाला है, क्यों? क्योंकि लाइव वीडियो सामने आया है। कार में जो शख्स आगे बैठा था वो ये वीडियो बना रहा था और उसके बाद अभी लाइव वीडियो दुर्घटनाग्रस्त। दूध की गाड़ी शिमला काशापाट जा रही थी, गाड़ी में सवार सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी में 5 पुरुष थे, एक महिला सवारी थी। हादसे के समय वीडियो भी आया। अब ये देखिए, आप एक बार फिर से वीडियो देखिए कैसे अचानक चीख पुकार मचती है।
14: सामने देखो कुकु पार मेरा निहाल कुखी पार को।
2: देखिए एक महिला बात करते हुए दिखाई दे रही है, एक बच्चे की भी आवाज आ रही है और फिर अचानक से गाड़ी गिरती है और चीख पुकार मच जाती है। दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू हो गई है, लेकिन ये बेहद दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां शिमला हादसे का ये लाइव वीडियो आया। एक बार फिर आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, ये कार जा रही होती है, कई लोग इसमें होते हैं, महिला और बच्चों की भी आवाज आ रही है और फिर हादसा। रुकोगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at -150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is -210 to capture 3 points. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
18: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
19: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
18: Big 12 Radio.
20: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
18: and
20: down.
18: And talk sports.
21: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
18: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
12: हाँ सर, बहुत खुश हैं सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं का स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स पर।
11: जी,
12: हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा और हम लोग बहुत खुश हैं सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर।

0: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
1: हमें मालूम है कि देश भर में कौन से राज्य में कहां केमिकल जोन है। बहुत छोटे कंस्ट्रक्शन एरिया में लैब बना दी जाती है और ऊपर कोई मुखौटा होता है, तो एजेंसियों ने भी उसको ढूंढने का एक अपना तंत्र विकसित करना पड़ेगा और उसको कठोरता के साथ हमने नष्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन जो नई पद्धति के इन्होंने ढूंढे हैं, इसका भी हमने उपाय भी ढूंढना पड़ेगा और ये उपाय को सतत परिवर्तनशील करते हुए मॉनिटरिंग कर इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना पड़ेगा। पीएमएलए और ईडी के माध्यम से इसके फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को भी हमने बहुत रूथलेसली करना पड़ेगा और ये सब मिलकर उनके नेटवर्क को छिन्न विछिन्न करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक बार नेटवर्क छिन्न विछिन्न होता है तो हमारी लड़ाई जीतने के रास्ता बहुत आगे तक हम कर लेंगे। और तीसरा है डिस्ट्रॉय, नेटवर्क को दोबारा खड़ा न हो इस तरह से रूथलेसली समाप्त करना है।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: कोर्ट इसमें देर नहीं करें, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए।
1: केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासे के साथ तस्वीर यही बन रही है कि सिया कोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या की। लोगढ़ किले की पहाड़ी से 350 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। इस मामले में पहली बार सिया गोयल के माता पिता कैमरे पर आए। दोनों आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सिया को लेकर काफी सख्त दिखे। दोनों ने कहा कि सिया ने गुनाह किया है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिले, उसे भी खाई में धक्का दे दें।
0: वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
1: एक पिता के मुंह से निकले ये शब्द उनके सदमे की कहानी भी कहते हैं। सिया के पिता का कहना है उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी का नाम किसी हत्या की साजिश में आएगा। सिया की मां पूजा कोयल ने भी अपने पति की तरह बेटी को लेकर कड़ा रुख अपनाया। सिया के माता पिता ने उस दावे को भी खारिज किया जिसमें कहा जा रहा है कि उन्हें चेतन चौधरी और सिया रिश्ते की पहले से जानकारी थी। उनका कहना है कि उन्होंने कभी चेतन को देखा तक नहीं था और ना ही बेटी ने कभी दूसरे रिश्ते की बात बताई। गोयल परिवार का कहना है कि रिश्ता पूरी तरह सहमति से तय हुआ था। दोनों परिवार लगातार मिल रहे थे, वीडियो कॉल होती थी, डिनर होते थे और शादी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी। माता पिता का दावा है कि सिया ने कभी ये नहीं कहा कि वो केतन से शादी करना नहीं चाहती। यही नहीं, परिवार का कहना है कि बाली हनीमून की तैयारी हो चुकी थी, 50,000 रुपए की शॉपिंग कराई गई, प्री वेडिंग शूट की तैयारी थी और उदयपुर में शादी की प्लानिंग चल रही थी। ऐसे में अगर बेटी शादी नहीं करना चाहती तो फिर इतनी तैयारियां क्यों होती, यही सवाल अब सिया के माता पिता उठा रहे हैं। गोयल परिवार ने अग्रवाल परिवार के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें कहा गया कि सिया के फोन बिजी रहते थे और परिवार सब जानता था। सिया के पिता का कहना है अगर केतन को कोई शक था तो अग्रवाल परिवार को उसी वक्त उनसे बात करनी चाहिए थी। इंटरव्यू में एक और बड़ा दावा किया गया, सोशल मीडिया पर चल रही करोड़ों की शादी, चार्टर फ्लाइट और 17 करोड़ के महल वाली चर्चाओं को भी गोयल परिवार ने फर्जी बताया। उनके मुताबिक शादी का बजट पहले से तय था और दोनों परिवार अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से खर्च कर रहे थे। पुलिस की जांच अभी जारी है और अदालत में सबूतों की कसौटी पर ही होगा कि साजिश किसने रची और हत्या का असली जिम्मेदार कौन है, लेकिन पुलिस का दावा है कि सिया साजिश का हिस्सा थी। पुणे से ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: ईरान अमेरिका तनाव के बीच ट्रंप का कार्रवाई करने का अमेरिकी कार्रवाई का ईरान ने दिया जवाब। IRGC ने अमेरिकी सेनेट ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिकी ईरान तनाव फिर बढ़ा, ट्रंप ने लगाया ड्रोन हमलों का गंभीर आरोप। ट्रंप का दावा, एक कार्गो जहाज हमले का शिकार हुआ जबकि अमेरिकी सैन्य की तरफ से 3 अन्य ड्रोन रोक दिए गए। इसराइल और हिजबुल्ला लड़ाकों के बीच लड़ाई खत्म करने के लिए कई दिनों तक चली बातचीत के बाद शुक्रवार को वॉशिंगटन में बात बन गई। इसराइल और लेबनान ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, इसे इसराइल और हिजबुल्ला के बीच शांति की दिशा में पहला कदम बताया जा रहा है। पूरी जानकारी सार्वजनिक अभी नहीं हुई। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या पिछले 100 साल की सबसे बड़ी घटना है। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई समेत कई लोग भी सुलेमानी से डरते थे और उसकी मौत से खुश थे। फेट एंड फ्रीडम सम्मेलन में ट्रंप का बड़ा बयान, बोले अमेरिका में धर्म पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटा, ईश्वर और धर्म से ही महान बनता है देश। ट्रंप ने कहा व्हाइट हाउस में रहते हुए हर आस्थावान अमेरिका की रक्षा करूंगा, पिछली सरकार ने ईसाइयों और धार्मिक लोगों को निशाना बनाया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि जो भी देश अमेरिका पर डिजिटल टैक्स लगाएगा उसके सभी सामानों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रूसी सेना का यूक्रेन के जापोरिजिया और सुमी क्षेत्रों पर बड़ा हमला, यूक्रेन का आरोप रिहायशी इलाकों पर हुआ हमला, जापोरिजिया में 3 लोग घायल। डेनमार्क की सरकार इस्लामी अजान पर रोक लगाने की कर रही है तैयारी, यहां के इमिग्रेशन मंत्री ने अजान पर रोक लगाने की योजना का ऐलान किया। चीन दौरे पर बीजिंग पहुंचे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, शी जिनपिंग से मुलाकात। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बाद भारी तबाही की खबरें आना जारी, अब तक करीब 950 लोगों की मौत, 3,360 जख्मी। जापान में 2 तूफानों ने मचाई हड़कंप, सरकार ने लोगों को किया अलर्ट, तेज हवा और बारिश का आशंका है। आज सेशल्स की राजकीय यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, 27-29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल, हिंद महासागर के सेशल्स का रणनीतिक महत्व, ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी। चीन के प्रभाव के बीच भारत और सेशल्स संबंध मजबूत करने पर जोर, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। आज अमित शाह गांधीनगर में कई प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे, गुजरात में भारत टैक्सी पहल शुरू करने के लिए बैठक करेंगे। फैसल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई, पटना सिविल कोर्ट ने पुलिस की स्टायरी अधूरी होने के कारण टाल दी थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, सभी 8 आरोपियों की फैजाबाद कोर्ट में पेशी, 3 दिन की न्यायिक हिरासत। कांग्रेस ने संसद में इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया, केसी वेणुगोपाल बोले करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई, सरकार को जवाब देना होगा। राम मंदिर मामले को लेकर भड़के कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, बोले ट्रस्ट करें भंग, पीएम मोदी भी दें जवाब, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बोले राजनीतिक जुड़ाव वाले लोगों को हटाकर संत और धार्मिक लोगों को ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। विपक्ष के लगातार हमलों के बीच बीजेपी ने कहा मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच के बीच चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया लेकिन गोपाल राव ने इनकार किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर मचा सियासी घमासान, सीएम योगी बोले राजनीतिक बयानबाजी बंद करें, अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक। सीएम योगी बोले जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं, विपक्ष को दी सबूत लाने की चुनौती। सीएम योगी बोले सबूत है तो एसआईटी को दें, एसआईटी रिपोर्ट के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। अखिलेश का बीजेपी परिवार, बोले अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लगका कांड। एसआईटी का बड़ा खुलासा, सूत्र के मुताबिक 2022 से 2025 के ऑडिट में मिली गड़बड़ियां, 42 दिन में 70 बार चोरी के सबूत, 60 लाख बरामद। मंदिर के सीसीटीवी में कई बार चोरी करते दिखा था मनीष यादव जो कि टिन्नू का रिश्तेदार है, एसआईटी ने जांच में पाया कि सीसीटीवी में दिखने के बाद भी मनीष पर कोई एक्शन नहीं हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा एफआईआर दर्ज हो गई, अब उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश पाठक ने एसपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण और टेरर फंडिंग का आरोप लगाया, बोले बाबरी मस्जिद के लिए जुटाएगा चंदे का हिसाब दे अखिलेश। राम मंदिर विवाद पर शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाए सवाल, कहा पार्टी ने राम मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ और चांदी की ईंट दी पर नहीं मिली रसीद। सीएम योगी नोएडा प्राधिकरण के नए प्रशासनिक मुख्यालय का आज करेंगे उद्घाटन। 390 करोड़ में बनकर तैयार हुआ है नोएडा अथॉरिटी का हेडक्वार्टर। रामंग चढ़ावा चोरी पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन का बयान, बोले असली आरोपियों को बचाया जा रहा है। देवरिया में सीएम योगी ने 456 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कहा शिक्षा पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। अयोध्या दौरे पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बोले केजरीवाल, 8 आरोपियों के खिलाफ दर्ज FIR, सिर्फ दिखावा, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर अरविंद केजरीवाल ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। कांग्रेस ने अविनाश पांडे की जगह अब राजेंद्र पाल गौतम को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया। आंध्रा दौरे पर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, विजयवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। NCERT की 9वीं कक्षा की किताब में चुनाव आयोग और SIR को मिली जगह, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के विपक्ष के सवालों के बीच तारीफ। केतन हत्याकांड की जांच तेज, पुणे पुलिस की 6 टीमें और फॉरेंसिक टीम की जांच में कई बड़े खुलासे, सिया के परिजनों के बयान दर्ज। केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस का बड़ा दावा, प्रेमी चेतन ने ही मंगेतर सिया गोयल को हत्या के लिए उकसाया। पुलिस का दावा, आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉग, सिया के भाई से 10 घंटे पूछताछ हुई। सिया के भाई साहिल ने कहा कि अगर सिया ने परिवार को बताया होता कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती तो परिवार शादी के लिए आगे नहीं बढ़ता। सिया की मां का बड़ा बयान, बोली अगर उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे भी किले से नीचे फेंक कर मार दिया जाए। सीएम फडणवीस से मिले मृतक केतन के पिता, महाराष्ट्र सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने का फैसला लिया। भरत तिवारी की मां का सनसनीखेज आरोप, का भोजपुर SP ने कहा कि मीडिया में मत बोलो नहीं तो भरत की तरह मरवा देंगे। छतरपुर SP ऑफिस में भरत तिवारी के पोस्टर लेकर पहुंचा युवक, बोला कहीं मैं भी ना बन जाऊं भरत तिवारी, मेरा भी हो सकता है एनकाउंटर, धमकियां मिल रही हैं। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने की पूजा, आशीर्वाद लिया। केरलम के थुव्वूर रेलवे स्टेशन पर बने रेलवे प्लेटफॉर्म शेल्टर का शुभारंभ, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी शामिल। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, परियोजनाओं के लिए कई MOU पर साइन हुए। जामनगर पहुंचे हॉलीवुड अभिनेता टायरीज गिब्सन, बने अंबानी परिवार के विशेष अतिथि। 2029 तक ड्रग मुक्त भारत का लक्ष्य, अमित शाह बोले सभी एजेंसी और समाज को साथ आना होगा। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल, हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन निकली। आंध्र प्रदेश दौरे पर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, आने वाले 24 घंटे में बिहार उत्तराखंड के बिहार और झारखंड के सभी इलाकों में और उत्तर प्रदेश के इसके पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में तेज होगी मानसूनी गतिविधियां, 29 से 30 जून के बीच उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो सकता है। सबसे पहले पूर्वी यूपी में देखने को मिलेगा मानसून का असर, बढ़ेगा बारिश का दायरा, तापमान में 5 से 8 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम समेत पूरे पूर्वोत्तर में मानसून की बारिश जारी, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून के विस्तार होगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिलहाल बारिश की संभावना कम है, गरज चमक के साथ बादल छाने और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला, बागेश्वर में झमाझम बारिश हुई। अरुणाचल के चांगलांग जिले में चोमना मार्केट में भूस्खलन, रास्ता साफ करने में जुटा प्रशासन। भूस्खलन के कारण सिक्किम और सिलीगुड़ी के बीच चलने वाले वाहनों का रास्ता बदला गया। पूर्वी पश्चिमी भारत समेत मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना, अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने उत्तर बंगाल में भारी बारिश की आशंका जताई, इलाके में भूस्खलन की चेतावनी जारी। बिहार के समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान भारी बवाल, तैनात पुलिसकर्मियों पर लोगों ने पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी में एक पुलिस जवान के साथ कई लोग घायल हुए, सड़क पर लोग उतर आए। फिरोजाबाद में खाली प्लॉट में खड़ी 2 कारों में लगी आग, दमकल ने काबू पाया। नैनीताल में कॉर्बेट में बाघों का खूनी संघर्ष हुआ, देर रात रेस्क्यू कर वन्य जीव चिकित्सकों ने बाघ की जिंदगी बचाई। फरीदकोट में श्रीकाल तख्त साहिब के आदेश वाले बोर्ड को शरारती तत्वों ने फाड़ा, CCTV में कैद। गाजियाबाद में 12 दिन डिजिटल अरेस्ट, रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 2,20,00,000 की साइबर ठगी, फर्जी पुलिस ED बनकर ठगा। रोहतास में नहर से एक महिला का शव बरामद, इलाके में हड़कंप। जयपुर में बेटे ने बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा, मारपीट का सीसीटीवी अब सामने आया। महाराष्ट्र के वाशिम में बड़ा हादसा, बस का टायर फटने से नियंत्रित हुई बस, दुकान में घुसी, दो लोग घायल। महाराष्ट्र के पालघर में महानगर पालिका की इलेक्ट्रिक बस में अचानक आग लगी, बस पूरी तरह जलकर खाक हुई। गुजरात के गांधीनगर हाईवे पर चार लग्जरी कारों के बीच टक्कर के बाद एक कार में आग लगी, चार लोग घायल हुए। मेरठ में हाईवे पर चलते डबल डेकर एसी बस पे अचानक आग लगी, 26 यात्री सुरक्षित। त्रिशूर में दो बसों की आमने सामने टक्कर, टकराव के बाद बस में लगी आग। कौशाम्बी टोल प्लाजा पर डिवाइडर से टकराया एलपीजी टैंकर, बाद में लगी आग, कई लोग चपेट में आ गए। बेंगलुरु में सड़क पर जा रहे बाइक सवार पर अचानक गिरा पेड़ की टहनी, शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेंगलुरु में गंभीर लापरवाही, चलती स्कूल वैन का पिछला दरवाजा खुला, 5 बच्चे बाहर गिर गए, पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी तो बड़ा हादसा टल गया। उधम सिंह नगर में हाथियों का तांडव, हाईवे पर अचानक आए हाथियों को देख अफरा तफरी। एमपी के रतलाम में मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, आई टेंशन तार से टकराया ताजिया, 3 की मौत, 12 झुलसे। आगरा के फतेहपुर सीकरी में कार से स्कूटी सवार को मारी टक्कर, 2 किलोमीटर तक घसीटा। आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप चैंपियन भारत को हराया, T20 मुकाबले में 34 रन से जीत लिया। अभिषेक की 50 काम नहीं आई, 182 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम, 148 पर ऑल आउट। वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। भारतीय फील्डरों ने 3 अहम कैच छोड़े, शिवम दुबे ने टिम चैक्टर का कैच छोड़ा, अभिषेक शर्मा ने गैरेथ चेलानी का आसान कैच गवा दिया। तेरे मेरा नाता ने सिनेमा घरों में दस्तक दी, फैमिली ड्रामा है, 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ था। हिंदी की सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नव्या चक्रवर्ती सिनेमा घरों में रिलीज, फिल्म में तुषार काबले, क्षितिज पवार और प्रतीक्षा सिंह लीड कर रहे हैं। राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का टीजर रिलीज हुआ, 7 अगस्त को फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी। प्रहार में राजकुमार ने मशहूर वकील उज्ज्वल निकम का किरदार निभाया है, 26/11 हमले के आरोपी अजमल कसाब को फांसी दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। राजकुमार ईरानी ने बड़ा ऐलान किया, 20 साल बाद फिर ला रहे मुन्ना भाई का तीसरा पार्ट।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों से लाभ लेने के लिए रत्न पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन रत्न कभी कभी बड़े महंगे भी होते हैं। तो अगर आप महंगे रत्न नहीं खरीद पा रहे हैं तो रत्नों के स्थान पे उनके उपरत्नों का प्रयोग कर सकते हैं। किस ग्रह के लिए कौन सा उपरत्न धारण किया जाएगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

जून 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, रात के 10:11 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं उपरत्नों की, यानी मुख्य रत्नों के सब्स्टिट्यूट्स की। आखिर रत्नों के स्थान पर उपरत्न क्यों धारण किए जाते हैं और उपरत्नों का महत्व क्या है? देखिए, ज्योतिष के उपायों में मुख्य रूप से 9 की चर्चा की गई है, परंतु कभी कभी ये जो मुख्य 9 हैं बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और कभी कभी इनके नकली होने की संभावना भी होती है। रत्नों के स्थान पर अगर उपरत्न पहने जाएं तो ये सस्ते भी होते हैं और ये अच्छा काम भी करते हैं। उपरत्न में और रत्न में मुख्य अंतर यही है कि रत्न ज्यादा लंबे समय तक काम करते हैं, जबकि उपरत्न की जो लाइफ होती है वो कम होती है। उपरत्न कम समय के लिए प्रभावशाली होते हैं। एक ग्रह के लिए मुख्य रूप से 1 होता है, मुख्य रत्न, और उस मुख्य रत्न के कई सारे उपरत्न होते हैं। सही उपरत्न का चुनाव करके अगर सही उपरत्न धारण किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है। सब्स्टिट्यूट्स पहनने से भी आपको फायदा अवश्य होगा। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य ग्रह के लिए कौन सा उपरत्न धारण करना चाहिए? देखिए, सूर्य का जो मुख्य रत्न है वो है माणिक्य, अंग्रेजी में कहते हैं रूबी।

मुख्य रत्न है वो है मोती। मोती के उपरत्न है मून स्टोन और एगेट। लेकिन मोती के स्थान पे सबसे बढ़िया जो उपरत्न है वो मून स्टोन है। इसको चांदी में कनिष्ठा अंगुली में सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल के लिए कौन सा मुख्य रत्न है और कौन सा उपरत्न है? मंगल का मुख्य रत्न है मूंगा, कोरल, बांग्ला में कहते हैं प्रवाल। मूंगे का एक ही उत्तम उपरत्न है लाल हकीक। ये आप मूंगे की जगह पहन सकते हैं। इसको तांबे में धारण करना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। अगर मूंगा नहीं खरीद पा रहे हैं तो लाल हकीक बहुत ही सस्ता होता है। इसको आप तांबे में बनवा करके पहन सकते हैं। बाकी ग्रहों के उपरत्नों पर भी चर्चा होगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन खर्च पर ध्यान दें। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। धन के खर्चों से परेशानी होगी। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर की समस्या हल हो जाएगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न जयदेव जी ने हमें लिखा है, कुरुक्षेत्र हरियाणा से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1965। जन्म का समय सुबह के 6 बजे। जन्म स्थान है कुरुक्षेत्र हरियाणा।
ये कह रहे हैं कि एक संपत्ति को लेके, प्रॉपर्टी को लेके विवाद

चल रहा है उसका निपटारा कब तक होगा, क्या मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल पाएगी? जयदेव जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी आपको अवश्य मिलेगी। अप्रैल 2027 के बाद 2027 में ही इस मुकदमे का निपटारा होगा और उससे आपको लाभ होगा। रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में उनको लाल फूल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि बुध ग्रह का मुख्य रत्न कौन सा है और इसके उपरत्न कौन से हैं। बुध का जो मुख्य रत्न है उसे कहते हैं पन्ना, एमरल्ड। पन्ने के बहुत सारे उपरत्न होते हैं, हरा बैरूज, ओनेक्स और मरगज, लेकिन इनमें सबसे अच्छा जो पन्ने का उपरत्न है वो है मरगज। मरगज को चांदी में धारण करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अगर आप पन्ना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, नहीं खरीद पा रहे, तो एक मरगज चांदी की अंगूठी में बनवा करके सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहन सकते हैं। अब जानते हैं कि बृहस्पति का रत्न कौन सा है और उसके उपरत्न कौन से हैं। बृहस्पति का मुख्य रत्न है पीला पुखराज और पीले पुखराज के जो उपरत्न हैं वो है पीला बैरूज, सुनहला और येलो सिट्रिन। ये आप पीले पुखराज की जगह पहन सकते हैं। जो येलो बेरियल है, पीला बैरूज है, वो बृहस्पति का सबसे अच्छा उपरत्न है। इसको पीतल में या सोने में बनवा कर तर्जनी उंगली में धारण करना शुभ होता है। बाकी उपरत्नों पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। अगर फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर के सारे काम पूरे होंगे, वाहन या संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, अभी धैर्य बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब ये जानते हैं कि शुक्र ग्रह का मुख्य रत्न कौन सा है और इसके उपरत्न कौन से हैं। शुक्र का जो मुख्य रत्न है वो सबसे महंगा, सबसे कीमती रत्न है हीरा। हीरे के उपरत्न हैं जरकन, अमेरिकन डायमंड और ओपल। हालांकि ओपल हीरे से ज्यादा बेहतर काम करता है शुक्र और चंद्र के मामले में, लेकिन अगर आपको शुक्र को प्रबल करना है खास तौर से पुरुषों के लिए तो ओपल सबसे अच्छा उपरत्न है। और कभी कभी ओपल हीरे से ज्यादा बेहतर काम करता है। शुक्र के लिए महिलाओं को हीरा या जरकन पहनना चाहिए और पुरुषों को शुक्र के लिए हीरा या ओपल पहनना चाहिए। अगर उपरत्न की बात है तो महिलाएं जरकन पहने, सफेद अमेरिकन डायमंड पहने, मोन्जो नाइट पहने, अच्छा रहेगा। और जो पुरुष हैं अगर वो सब्स्टिट्यूट पहनना चाहते हैं तो हीरे की जगह ओपल पहनेंगे। इसको चांदी में धारण करना चाहिए, या तो अनामिका अंगुली में या तो तर्जनी उंगली में। अब बात करते हैं शनि की। शनि का मुख्य रत्न कौन सा है और इसके उपरत्न कौन से हैं। शनि का मुख्य रत्न सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, उसे कहते हैं नीलम। नीलम के उपरत्न हैं नीली, नीला टोपाज, लाजवर्त और सोडा लाइट। बहुत सारे नीलम के उपरत्न यूज किए जाते हैं क्योंकि सामान्यतः लोग नीलम से डरते भी हैं और नीलम महंगा भी है। एक रत्न आता है उसे कहते हैं तंजनाइट, तंजानिया में मिलता है ये रत्न। और नीलम का सबसे अच्छा अगर कोई उपरत्न है तो वो है तंजनाइट। इसको धारण करना चाहिए अगर आप नीलम नहीं पहन पा रहे। अगर तंजनाइट भी महंगा लग रहा है
तो ब्लू टोपाज इसको आप चांदी में बनवाकर मध्यमा अंगुली में मिडिल फिंगर में धारण कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना विशेष है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, तनाव कम होता जाएगा, करियर की बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

लोग हैं, कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बीमारी में उसने रत्न पहना है, या कोई व्यक्ति रत्न पहना है उसकी मृत्यु हो गई, तो किसी बीमार या मृत्यु वाले व्यक्ति का रत्न नहीं पहनना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप कोई रत्न धारण करते हैं तो वो आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को लेना शुरू कर देता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसने रत्न पहना है, तो रत्न उसकी बीमारी की तरंगों को खींच के बाहर फेंकेगा, कुछ तरंगें उस रत्न के अंदर रह जाएंगी। उसी तरह से कोई व्यक्ति रत्न पहन के अगर मर गया, उसका देहांत हो गया, तो उसके मृत्यु की समय की जो नकारात्मक तरंगें हैं वो रत्न में आ सकती हैं या आ जाती हैं। तो अगर किसी बीमार व्यक्ति का या मृत व्यक्ति का रत्न पहनेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं, आपको मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है, आप तनाव या चिंता के शिकार हो सकते हैं। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर 2, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी। नंबर 3, परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। नंबर 4, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 8, धन लाभ के योग हैं। नंबर 9, रुके हुए काम पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी को गुलाब अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न रश्मि श्रीवास्तव ने हमें लिखा है, भोपाल मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 6 फरवरी 1992 का जन्म है, रात में 11 बजे, जन्म स्थान है भोपाल। रश्मि कह रही हैं कि मेरे पति विदेश में नौकरी करते हैं और मैं काफी समय से उनके पास जाने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन उसमें अड़चने बहुत आ रही हैं। तो क्या मैं विदेश जा पाऊंगी या मेरे पति वापस आएंगे? हम लोग कब से एक दूसरे के साथ रह पाएंगे?
रश्मि, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके पति के स्थान परिवर्तन की संभावना ज्यादा प्रबल है। इस साल के आखिरी में, साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपके पतिदेव नौकरी भी बदलेंगे और जगह भी बदलेंगे, वापस भारत में आएंगे ऐसा लग रहा है। और भारत में आने के बाद आप अगले साल के फरवरी के बाद ऐसा लगता है कि उनके साथ रह सकेंगी और वैवाहिक जीवन में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

होगा वृश्चिक वालों के लिए, हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि वालों के लिए, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा मेष राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, चिंता बढ़ सकती है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज त्रयोदशी तिथि है, आज शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन अगर कामदेव की पूजा की जाए तो विवाह शीघ्र होता है, इसलिए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो आज कामदेव की उपासना अवश्य करें। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, सेशेल्स के दौरे पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 27 तारीख से 29 जून तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हारमनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा भी की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के दौरान दुनिया के सबसे पुराने जानवर माने जाने वाले जोनाथन से भी मिलेंगे। ये एक 194 साल पुराना अल्दाब्रा जायंट कछुआ है। ये सेशेल्स के नेशनल बोटेनिकल गार्डन में रहता है और सबसे पुराने जीवित जीव के तौर पर गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज किया गया है। यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि सेशेल्स हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और हमारी विजन महासागर पहल और ग्लोबल साउथ के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का एक अहम साझेदार है और इस साल हम अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं सालगिरह भी मनाने जा रहे हैं, जो आपसी विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता के सम्मान और हमारे लोगों के बीच बहुत गहरे संबंधों पर आधारित है। ये देखिए, जिस जानवर की बात की जा रही है यही है वो सबसे बुजुर्ग कछुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है, 194 साल का है। तो इसे भी देखने जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ भी हम मना रहे हैं और सेशेल्स बहुत महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और हमारी विजन महासागर और ग्लोबल साउथ के प्रति साझा प्रतिबद्धता का एक बहुत अहम साझेदार है सेशेल्स, जिसकी बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रवाना हो चुके हैं। रवाना होने से पहले की वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। और जिसे आप दाईं तरफ देख रहे हैं, 194 साल पुराना अल्दाब्रा जायंट कछुआ है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन में ये रहता है और बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर देखने जाते हैं। हालांकि प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, जरा समझाइए आसान शब्दों में हमारी जनता को कि सेशेल्स का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना खास है और आने वाले वक्त में भारत को क्या फायदा इससे?
1: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशेल्स का यह दौरा उनका दूसरा दौरा है और ऐसे साल में हो रहा है जब सेशेल्स अपनी आजादी का, अपने नेशनल डे का 50वां वर्ष जो है मना रहा है और साथ ही भारत और सेशेल्स के राजनयिक संबंधों का भी ये 50वां साल है। तो निश्चित रूप से भारत का एक जो महासागरी पड़ोसी होने के नाते सेशेल्स के साथ भारत का पुराना नाता भी है। 1770 में जब सेशेल्स में इंसानी आबादी शुरू हुई तब से लेकर अभी तक भारत का उससे संबंध रहा है। वहां पर भारतीय आबादी बड़ी संख्या में, करीब 1,20,000 की आबादी सेशेल्स में रहती है, जो कि द्वीपों का समूह है। करीब 115 द्वीपों का समूह है सेशेल्स और इस सेशेल्स के साथ में भारत के रणनीतिक संबंध भी हैं, क्योंकि सेशेल्स की कोस्टल रडार सिस्टम को अपग्रेड करने, एस्टेब्लिश करने के साथ साथ वहाँ की जो नौसेना है उसको मजबूत करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय वहाँ पर जब राष्ट्रीय दिवस उनका मनाया जा रहा है, विशेष आयोजन हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे और साथ ही वो सेशल्स का जो की जो संसद है उसको भी संबोधित करेंगे। लेकिन जैसा अभी आप बता रहे हैं, सेशल्स का दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है मानचो, क्योंकि इस सेशल्स दौरे में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जोनाथन से होगी, क्योंकि इस धरती पर सबसे उम्रदराज प्राणी है और इनफैक्ट सेशल्स पहुंचने के बाद उनका जो पहला एंगेजमेंट है, पहली मुलाकात ही जोनाथन से होगी, उसके बाद वो राजनेताओं से मुलाकात करेंगे। तो कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। 29 तारीख तक प्रधानमंत्री मोदी का ये करीब 3 दिवसीय दौरा है, जिसके अंदर भारत और सेशल्स के संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का महासागर विजन है उसमें सेशल्स के साथ साझेदारी किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है, इस लिहाज से भी ये अहम होगा।
0: सबकी नजर इस पर होगी। शुक्रिया प्रणय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं और ये बड़ी खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में खुलेआम आतंकी घूम रहे हैं। सही सुना आपने, खुलेआम आतंकी घूम रहे हैं। एक बार फिर इसका सबूत सभी के सामने आया और ये देखिए, ये लाल घेरे में जिसे आप देख रहे हैं, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस जिसे कहा जाता है, शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में कई आतंकी शामिल हुए। खूंखार आतंकी इनाम रहमान और लश्कर के कई आतंकी जनाजे में शामिल हुए। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा LET जिसे कहा जाता है और उसके राजनीतिक मोर्चा पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग PMML के नेताओं को पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर की नमाज जनाजा में देखा गया। यह जनाजा इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में आयोजित किया गया था। इसके अलावा इनामुर रहमान आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के साथ देखा जा सकता है। ये तस्वीर आप देखिए लाल घेरे में जिसे आप देख रहे हैं, ये शख्स एक आतंकी है, खोखर आतंकी इनाम रहमान। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरविंद, हर बार एक तस्वीर पाकिस्तान से आती है जो पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल देती है और एक बार फिर बताया जा रहा है कि आतंकी वहां कैसे खुलेआम घूमते हैं।
2: देखिए हिमांशु, और ये एक विवाद ही कहेंगे आप, और खुलेआम जो आतंकी है वो जनाजे में शामिल हो रहे हैं और कोई ऐसे वैसे शख्स के नहीं जो पाकिस्तान के पूर्व फास्ट बॉलर हैं, जो शोएब अख्तर उनके भाई की मौत हुई थी, उनके जनाजे में लश्कर के कई जो बड़े आतंकी जिसमें सैफुल्ला खालिद और सैफुल्ला कसूरी जो कि लश्कर का डिप्टी चीफ है वो शामिल हुआ। उसके अलावा हाफिज सईद की लॉन्च की हुई पॉलिटिकल पार्टी का जो अध्यक्ष है इमाम उर रहमान वो शामिल हुआ। तो कई आतंकी शामिल हुए और जैसे ही आतंकी शामिल हुए उसके बाद अपने आप जो विवाद है वो पनपा, क्योंकि लश्कर एक बैंड टेररिस्ट है, खासतौर से इंडिया में और अमेरिका ने भी जो TRF है उसको हाल ही में बैन किया हुआ था। तो ये एक बड़ा विवाद आया है जिसमें जो जो पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज हैं शोएब अख्तर के भाई शाहिद अख्तर की मौत हुई थी, उनके जनाजे को लेकर ये नया विवाद है जिसमें आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के कई जो बड़े आतंकी हैं, नामी आतंकी हैं, वो शामिल हुए। जो बताता है कि पाकिस्तान में किस तरह से जो आतंकी संगठन है उनकी जड़ें गहरी हैं, न सिर्फ गहरी हैं बल्कि तकरीबन हर नामचीन लोगों के साथ उनका मिलना जुलना भी है और सांठगांठ भी आई है। तो ये एक नया विवाद सामने आया है जी।
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद, जानकारी के लिए भी। अब एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं जहां 1 लाख के इनामी का पुलिस ने एनकाउंटर किया। 1 लाख का इनामी नाम संजीव अब पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लखनऊ में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या करने वाला शूटर ढेर कर दिया गया है। लखनऊ के इंदिरा कैनाल के पास UPSTF ने एनकाउंटर करके कुख्यात बदमाश संजीव को ढेर किया। 1 लाख का इनाम था संजीव पर, कुख्यात अपराधी था। ये देखिए कैसे हत्या की थी इस शख्स ने। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये वो वीडियो है जहां लखनऊ में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर संजीव ने हत्या कर दी थी, शूटर संजीव। लेकिन अब लखनऊ के ही इंदिरा कैनाल के पास UP स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर किया और ये बदमाश संजीव ढेर हो गया है। तो 1 लाख के इनामी एनकाउंटर में ढेर हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया था कि अपराधियों का अंजाम बुरा होगा। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं शिमला से, और दुखद खबर, भीषण सड़क हादसा हुआ शिमला में। गहरी खाई में एक पिकअप वाहन गिर गया, कई लोग इस पिकअप वाहन में मौजूद थे। अब 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, लाइव वीडियो भी सामने आया है। दुर्घटनाग्रस्त दूध की गाड़ी शिमला के तकलेच से काशापाट जा रही थी और गाड़ी में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। महिला और बच्चों की आवाज भी सुनी जा सकती है, सुनिएगा।
3: सामने देखो कुकु पार मेरा ननिहाल कुखी पार को सामने पाली जाए ना कुखी काली सामने देखो गुगु पार मेरा निहाल कुखी पार वो साम पाली जाए ना कुखी काली लाल छत वाला।
0: आगे बढ़ते और करते इस वक्त की बड़ी खबर यानी हेडलाइंस का
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: चीन के सेशल्स दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की जेल। अब तक 80 लाख रुपए बरामद। बाबा बागेश्वर बोले चोरों को भगवान देगा महादंड। चेतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपित सिया के भाई साहिल से 10 घंटे पूछताछ। चेतन सिया ने डिलीट किए चैट हिस्ट्री। विग पैच थ्योरी की एंट्री। ईरान अमेरिका में पीस डील के बाद पहली बार टूटा सीज फायर। हॉर्मुज में कार्गो शिप पर हमले का अमेरिका ने लिया बदला। वेंस बोले हिंसा का जवाब हिंसा से। और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में खुलेआम दिखे आतंकी। लश्कर आतंकी इनाम उर रहमान समेत कई चेहरों की तस्वीरें सामने आई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माह का।
0: शिमला में भीषण सड़क हादसा। दूध से भरी पिकअप बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी। हादसे में वाहन सवार सभी 6 लोगों की मौके पर मौत। मौके पर पहुंचकर बचाव दल ने शुरू किया रेस्क्यू। झारखंड में गढ़वा के कस्तूरबा विद्यालय की 100 से अधिक छात्राएं फूड पॉइजनिंग से बीमार अस्पताल में भर्ती। दूषित भोजन और गर्म पानी पीने से बिगड़ी तबीयत। प्रशासन और स्वास्थ्य टीम मौके पर। सभी छात्रों का इलाज जारी। फिरोजाबाद में खड़ी दो कार बनी आग का गोला। एक पूरी तरह जलकर राख हो गई। बिहार के समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान भारी बवाल। तैनात पुलिस टीम पर लोगों ने पत्थरबाजी की। कई लोग घायल। बिहार के जमुई में मुहर्रम जुलूस पर असामाजिक तत्वों ने किया पथराव। पुलिस ने एक को हिरासत में लिया। बिहार के अररिया में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 अखाड़ों में हिंसक झड़प। पत्थरबाजी पुलिस लाठीचार्ज से अफरा तफरी। वाराणसी में मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल। 2 गुटों के विवाद के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उज्जैन में सिरफिरी आशिक ने युवती पर दिनदहाड़े चाकू से 14 वार की। आरोपी गिरफ्तार। बांदा में भीषण सड़क हादसा। ट्रक की टक्कर से बाइक के रोड़े पर कच्चे। 2 युवकों की मौके पर मौत। अलवर के वाहन चेकिंग के दौरान ईएसआई पर चालक की मारपीट का आरोप। वायरल वीडियो के बाद लाइन हाजिर। कोल्हापुर में गैस पाइपलाइन लीकेज के बाद भड़की आग। इलाके में अफरा तफरी। कल्याण में यूट्यूबर नाजिया इलाही खान को लेकर विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने दर्ज किया FIR। बेंगलुरु में चलती वैन का पिछला दरवाजा खुलने से 5 स्कूली बच्चे नीचे गिर गए। बड़ा हादसा टला। अब सेशल्स की राजकीय यात्रा पर पीएम मोदी। 27 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रवाना हुए पीएम। राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। हिंद महासागर में सेशल्स का रणनीतिक महत्व। ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी। चीन के प्रभाव के बीच भारत और सेशल्स संबंध मजबूत करने पर जोर। कई मुद्दों पर बातचीत होगी। आज अमित शाह गांधीनगर में कई प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे। गुजरात में भारत टैक्सी पहल शुरू करने के लिए बैठक करेंगे। फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई। पटना सिविल कोर्ट ने पुलिस की स्टायरी अधूरी होने के कारण टाल दी थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन। सभी 8 आरोपियों को फैजाबाद कोर्ट में पेश किया गया। 3 दिन की न्यायिक हिरासत। कांग्रेस ने संसद में इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया। केसी वेणुगोपाल बोले करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई। सरकार को जवाब देना होगा। राम मंदिर मामले को लेकर भड़के कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बोले ट्रस्ट करें भंग। पीएम मोदी भी दे जवाब। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। राजीव शुक्ला बोले राजनीतिक जुड़ाव वाले लोगों को हटाकर संतों और धार्मिक लोगों को ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। विपक्ष लगातार हमलों के बीच बीजेपी ने कहा मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है। दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच के बीच चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया लेकिन गोपाल राव ने इनकार किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर मचा सियासी घमासान। सीएम योगी बोले राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक है। सीएम योगी बोले जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं। विपक्ष को सबूत लाने की चुनौती दी। सीएम योगी बोले सबूत है तो एसआईटी को दे। एसआईटी रिपोर्ट के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। अखिलेश का बीजेपी पर वार। अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड। एसआईटी का बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक 2022 से 25 के ऑडिट में गड़बड़ियां मिली। 42 दिन में 70 बार चोरी के सबूत सीसीटीवी में कैद। 60 लाख बरामद। मंदिर के सीसीटीवी में कई बार चोरी करते दिखा था मनीष यादव, जो कि टिन्नू का रिश्तेदार है। एसआईटी ने जांच में पाया कि सीसीटीवी में देखने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ मनीष पर। यूपी के डिप्टी सीएम मनीष पाठक ने कहा एफआईआर दर्ज हो गई, अब उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश पाठक ने एसपी कांग्रेस पर तुष्टिकरण टेरर फंडिंग का आरोप लगाया, बोले बाबरी मस्जिद के लिए जुटाएगा चंदे का हिसाब दें अखिलेश। राम मंदिर विवाद पर शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाया सवाल, कहा पार्टी ने राम मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ और चांदी की ईंट दी पर रसीद नहीं मिली। सीएम योगी नोएडा प्राधिकरण के नए प्रशासनिक मुख्यालय का आज उद्घाटन करेंगे, 390 करोड़ की लागत से बना है। राम मंदिर चढ़ाव चोरी पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान, बोले असली आरोपियों को बचाया जा रहा है। देवरिया में सीएम योगी ने 456 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कहा शिक्षा पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। अयोध्या दौरे पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। राम मंदिर शराब चोरी मामले में बोले केजरीवाल 8 आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर सिर्फ दिखावा, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर चोरी विवाद मामले पर अरविंद केजरीवाल ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। कांग्रेस ने अविनाश पांडे की जगह अब राजेंद्र पाल गौतम को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया। आंध्र प्रदेश दौरे पर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, विजयवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन। एनसीईआरटी की नवीं कक्षा की किताब में चुनाव आयोग एसआईआर को जगह मिली, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के विपक्ष के सवालों के बीच तारीफ। चेतन हत्याकांड की जांच तेज, पुणे पुलिस की 6 टीमें और फॉरेंसिक टीम की जांच में कई बड़े खुलासे, सिया के परिजनों के बयान दर्ज। चेतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस का बड़ा दावा, प्रेमी चेतन नहीं मंगेतर, सिया गोयल को हत्या के लिए उकसाया। पुलिस का दावा आरोपी ने डिलीट किए थे फोन लॉग, सिया के भाई से 10 घंटे पूछताछ हुई। सिया के भाई साहिल ने कहा अगर सिया ने परिवार को बताया होता कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती तो परिवार शादी के लिए आगे नहीं बढ़ता। मुख्य आरोपित सिया की मां का बड़ा बयान, बोली अगर उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे भी किले से नीचे फेंक कर मार दिया जाए। सीएम फडणवीस से मिले मृतक केतन के पिता, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे केतन हत्याकांड केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का फैसला लिया। भरत तिवारी की मां का सनसनीखेज आरोप, का भोजपुर एसपी ने कहा कि मीडिया में मत बोलो नहीं तो भरत की तरह मरवा देंगे। छतरपुर एसपी ऑफिस में भरत तिवारी के पोस्टर लगाए गए, पहुंचा एक युवक, बोला कहीं मैं भी ना बन जाऊं भरत तिवारी, मेरा भी हो सकता है एनकाउंटर, धमकियां मिल रही हैं। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने पूजा की, भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। केरलम के थुब्बुर रेलवे स्टेशन पर बने रेलवे प्लेटफॉर्म शेल्टर का शुभारंभ, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी मौजूद रही। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरणबाजी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कई एमओयू में हस्ताक्षर। जामनगर पहुंचे हॉलीवुड अभिनेता चार्ल्स गिब्सन, अंबानी परिवार के मेहमान बने। 2029 तक जग मुक्त भारत का लक्ष्य, अमित शाह बोले सभी एजेंसी और समाज को साथ आना होगा। हरिद्वार में नशा मुक्त भारत को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और चिन्मया पांड्या की मौजूदगी में न्याय मंत्रालय और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच एमओयू। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल, हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन निकली। आंध्र प्रदेश दौरे पर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली, अगले 24 घंटे में बिहार झारखंड के कई इलाकों में और उत्तर प्रदेश में भी मानसून पहुंचने की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में तेज होगी मानसूनी गतिविधियां, 29 से 30 जून के बीच उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो सकता है मानसून। सबसे पहले पूर्वी यूपी में देखने को मिलेगा मानसून का असर, बढ़ेगा बारिश का दायरा, तापमान में 5 से 8 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम समेत पूरे पूर्वोत्तर में मानसून की बारिश जारी, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून के विस्तार होगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिलहाल बारिश की संभावना कम है, गरज चमक के साथ हल्की बहुत बारिश हो सकती है। पहाड़ों में मौसम का बदला मिजाज, बागेश्वर में झमाझम बारिश हुई। अरुणाचल के चांगलांग जिले के टोमला मार्केट में भूस्खलन, रास्ता साफ करने में प्रशासन जुटा है। भूस्खलन के कारण सिक्किम और सिलीगुड़ी के बीच चलने वाले वाहनों का रास्ता बदला गया, पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही है बारिश। पूर्वी पश्चिमी भारत समेत मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कई जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान की संभावना, अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने उत्तर बंगाल में भारी बारिश की आशंका जताई, इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी। महाराष्ट्र के पालघर में महानगर पालिका की इलेक्ट्रिक बस में अचानक लगी आग, जल गई। गुजरात के गांधीनगर हाईवे पर 4 लग्जरी कारों के बीच टक्कर के बाद एक कार में आग लगी, 4 घायल। बांद्रा एसआरए प्रोजेक्ट में 150 करोड़ के कथित एफएसआई घोटाले का आरोप, फर्जी झोपड़ियों के जरिए गड़बड़ी का आरोप, पीओडब्ल्यू जांच और पुलिस सुरक्षा की मांग। त्रिशूर में दो बसों की आमने सामने से टक्कर हुई, टकराव के बाद आग लग गई, कई यात्री घायल। कौशाम्बी टोल प्लाजा पर डिवाइडर से टकराया एलपीजी टैंकर, बाद में लगी आग, बाइक भी चपेट में आई, 7 जन से। बेंगलुरु में सड़क पर जा रहे बाइक सवार पर अचानक गिरी पेड़ की चैनी, शख्स की हालत गंभीर। बेंगलुरु में चलते स्कूल वैन का पिछला दरवाजा खुलने पर 5 बच्चे बाहर गिरे, बड़ा हादसा टल गया। ऊधम सिंह नगर में हाथियों का तांडव हाईवे पर अचानक आए हाथियों के झुंड को देख अफरा तफरी मच गई, जाम भी लग गया। एमपी के रतलाम में मोहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, हाई टेंशन तार से टकराया ताजिया, 3 की मौत, 12 झुलसे। आगरा के फतेहपुर सीकरी में कार से स्कूटी सवार को मारी टक्कर, 2 किलोमीटर तक कसीटा। आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया, 34 रन से मुकाबला जीता। अभिषेक की 50 काम नहीं आई, 182 रन के टारगेट के सामने 148 पर ढेर हुई टीम। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इस मैच में डेब्यू करने का मौका ही नहीं मिला। भारतीय फील्डरों ने 3 बड़े कैच छोड़े, शिवम दुबे ने आसान कैच छोड़ा, अभिषेक शर्मा ने भी आसान कैच छोड़ा। फिल्म तेरा मेरा नाता ने सिनेमाघरों में दस्तक दी, एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसका प्रीमियर। हिंदी की सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नव्या चक्र भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई, फिल्म में तुषार काबले, क्षितिज पवार और प्रतीक्षा सिंह लीड कर रहे हैं। राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का टीजर रिलीज, 7 अगस्त को रिलीज होगी। राजकुमार राव ने मशहूर वकील उज्जवल निकम का किरदार निभाया, जिन्होंने 26/11 हमले के आरोपित अजमल कसाब को फांसी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। राजकुमार हिरानी ने बड़ा ऐलान किया, 20 साल बाद फिर ला रहे मुन्ना भाई का तीसरा पार्ट।

0: एक बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर से अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ रहा है। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन हमले का गंभीर आरोप लगाया। ट्रंप ने दावा किया है कि कार्गो जहाज हमले का शिकार हुआ, जबकि अमेरिकी सेना ने 3 अन्य ड्रोन को रोक दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने रणनीतिक जलमार्ग से गुजर रहे जहाजों पर 4 वन वे अटैक ड्रोन दागे। ट्रंप ने इस कथित हमले को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम यानी सीज फायर समझौते का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन बताया।
1: And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people Iran if we didn't do that? And we're still, you know, we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. You know, they shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff.
0: और इसके पीछे एक बड़ी खबर वेस्ट एशिया से, जहां ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। एक तरफ शांति वार्ता समझौता और दूसरी तरफ हमले शुरू हो गए। ईरान की ओर से कहा गया है कि उसने वेस्ट एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया और यह हमला अमेरिकी अटैक के बदले में किया गया। ईरान अमेरिका में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिकी हमले का जवाब दिया है। जब एक तरफ शांति की उम्मीद दिखाई दे रही थी, वहीं अब एक बार फिर से संघर्ष की आग जल रही है। तो ट्रंप के दावों पर ईरान का भी जवाब आया है। ईरानी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष इब्राहिम अज़ीज़ी ने अमेरिका पर धोखा देने का आरोप लगाया और ईरान ने कहा कि अमेरिका ने शांति समझौते का उल्लंघन किया है। ट्रंप ने सीज फायर तोड़ा है, यह ईरान का कहना है। और ये देखिए, हॉर्मुज में तनाव से ट्रंप का दावा, ईरान का जवाब। ईरान का जवाब यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बातचीत के सिद्धांत का सम्मान नहीं करते हैं। ये ट्रंप पर आरोप लगा रहा है। कौन लगा रहा है? इब्राहिम अज़ीज़ी, जो कि ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा, हमेशा की तरह एक बार फिर ट्रंप ने युद्ध विराम तोड़ा है, अब अमेरिका पछताएगा, दोषारोपण की राजनीति काम नहीं करेगी। पुणे के सिया और केतन की बात कर लेते हैं। केतन हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ। केतन के बाल कम थे, इसलिए वो विग लगाता था, पैच लगाता था, और ये बात सिया को अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन क्या सिर्फ पैच लगाने की वजह से कोई किसी की हत्या कर सकता है? सिया के घरवाले कह रहे हैं कि उसने हत्या नहीं की। अगर जांच में साबित हो जाए कि सिया ने केतन को मारा, तो उसे भी सजा दो, उसी किले से फेंक दो, लेकिन पहले जांच तो होने दो।
2: अब सवाल है कि सच क्या है, क्योंकि अगर सिया और चेतन ने केतन के मर्डर का प्लान बनाया था, तो फिर किले में जाने का प्लान तो उन्हीं का बनता है। वो भी तब, जब 4 दिन पहले 14 जून को भी सिया केतन की हत्या की असफल कोशिश कर चुकी थी और ये वारदात भी लोहगढ़ किले में हुई थी। तो अब सिया का परिवार ये दावा क्यों कर रहा है कि ये प्लान सिया का नहीं बल्कि केतन का था? एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ रही थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
3: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर, ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
2: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही? क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
4: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं। कुछ रिश्तेदारी भी है, उसमें ज्यादा चौकसी भी नहीं होती। रिश्तेदारी है, 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है, और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
2: अब केतन का परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि सिया के परिवार को यह सब पहले से पता था, लेकिन सिया के परिवार का दावा है कि अगर ये बात सही साबित हो गई तो पूरा परिवार सजा भुगतने को तैयार है।
5: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
6: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो, मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
7: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: जस्ट व्हाट यू नीड फॉर समर इज वेटिंग एट टारगेट। Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
11: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
13: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
3: आगे आगे,
4: अरे उधर उधर,
3: करेक्ट करेक्ट,
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चले।
6: In association with Hint, बड़े आराम से
7: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
6: Vimal, बोलो जुबा केसरी।
7: Cool, stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
8: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
9: देखिए, बिल्कुल मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था, और ये बहुत छोटा सा कोचिंग सेंटर था जहां पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया और 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।
10: जो मुख्य गुनहगार है वो तो बाहर है, वो आप भी उस ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं ना। चोरी का पैसा वो आप मंदिर में चोरी करते हो, हिंदुत्ववादी लोग हैं आप, अपने आप को मानते हो। आप मंदिर की दानपेटी चुराते हो, लाखों करोड़ रुपया चुराते हो, वो पैसा राजनीति में आता है, और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो, पार्टियां तोड़ते हो। वही राम मंदिर के 2000 करोड़ आप लोगों ने जो चोरी की है, उसी पैसे से आपने आपके सांसद तोड़े, तृणमूल के सांसद तोड़े, विधायक तोड़े, शिवसेना के जो 6 सांसद तोड़े, वो राम मंदिर का ही लूटा हुआ पैसा है।
11: उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो कहावत है उसी तरह संजय राव जी का बर्ताव है। मैं हर बार बोलता हूँ उनको पागलपन के दौरे आ रहे हैं, और उसी का ये नतीजा है इसी तरह की बातें करना। राम मंदिर और उनकी तिजोरी, जो कुछ पैसा है उसके बारे में SIT लगाया है। अगर ये पैसा चोरी करने का था, रहता मन में था, तो उनके ऊपर SIT नहीं लगता था। वो जिन्होंने चोरी की है उनको पकड़ रहे हैं। ये सिर्फ पागलपन के दौरे के वजह से इसी तरह की बातें संजय राउत कर रहे हैं। मुंबई महापालिका को लूटने का काम संजय राउत और UBT ने किया है, और मुंबई के सिवा उनके ध्यान किधर भी नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं। उनकी पार्टी अब खत्म हो रही है, उनको छोड़ के जा रही है, कांग्रेस में विलीन होने की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, शरद पवार जी ने आत्मसम्मान के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की निर्मिति की, उनको बोल रहे हैं कांग्रेस में विलीन हो, इसीलिए संजय राउत ने कितना पैसा लिया है, कितनी पैसे की सुपारी ली है, मैं उनके जाहिर ये प्रश्न पूछता हूं, राहुल गांधी ने आपको कितने पैसे दिए, जो शरद पवार जी के जो 8 सांसद है उनमें कांग्रेस में जोड़ने के आप लोग आप विनंती कर रहे, डिमांड कर रहे, इसके लिए आपको कितना पैसा दिया।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: जो आशंका थी अंततो गत्वा वही हुआ, और जिन लोगों का नाम एफआईआर में आया है ये सारे के सारे सपाई हैं। टिन्नू यादव का गैंग है जो अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है, और हम लोग जो है सोच रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि हम लोग अयोध्यावासी, अयोध्या में रहने वाले, अयोध्या में आश्रम हम लोगों को पता नहीं लगा और इतनी बड़ी घटना हो गई है। उस घटना का सबसे पहला बयान सपा मुखिया अखिलेश यादव दे रहे हैं, जिनके बाप ने राम भक्तों पर गोली चलाया जो आज तक राम मंदिर नहीं गया।
3: ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि बहुत विलम्ब से दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, लेकिन देर से ही सही दुरुस्त आया और मुकदमा 8 लोगों के ऊपर लिखा गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग धैर्य रखिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो हमको लगता है धैर्य का ही परिणाम है कि मुकदमा लोगों के ऊपर लिखा गया। एसआईटी ने
4: आसमान में उड़ने का सपना हर आम इंसान देखता है। छुट्टियों और लॉन्ग वीकेंड्स की ट्रिप के लिए लोग अपने परिवार के साथ फ्लाइट्स की बुकिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हवाई सफर की प्लानिंग आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है। दरअसल दुनिया भर में जेट फ्यूल का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मैकेंजी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की किल्लत की वजह से एयरलाइंस की लागत आसमान छू रही है। इसका सीधा नतीजा ये होगा कि आने वाले दिनों में हवाई किराया 25% तक महंगा हो सकता है। हवाई सफर के इस बजट बिगड़ने के पीछे की पूरी कहानी डेटा से अगर समझें, तो किसी भी एयरलाइन के कुल ऑपरेटिंग खर्च में करीब 30% हिस्सा अकेले ईंधन का होता है, और इस बार ग्लोबल रिफाइनरियों में उत्पादन की कमी और जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से फ्यूल सप्लाई चेन टूट गई है। ऐसे में दुनिया के 40% जेट फ्यूल सप्लाई करने वाले खाड़ी देश और एशियाई निर्यातकों पर छाया संकट हालात को बिगाड़ रहा है। इस पूरे संकट के पीछे कच्चे तेल की कीमतों के साथ एक टेक्निकल खेल भी काम कर रहा है। कच्चे तेल और उसे रिफाइन होकर बनने वाले ATF की कीमत के बीच के अंतर को क्रैक स्प्रेड कहते हैं। पहले ये क्रैक स्प्रेड $20 प्रति बैरल रहता था, जो 2026 में औसतन $50 प्रति बैरल के पार जा सकता है। फिलहाल ग्लोबल रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं, जिससे ATF का नया प्रोडक्शन बढ़ाना नामुमकिन हो गया है। अभी डिमांड को पूरा करने के लिए पुराने स्टॉक का सहारा लिया जा रहा है, जो तेजी से खत्म होने की कगार पर है। फ्यूल की लागत दोगुनी होने की स्थिति में एयरलाइंस इस पूरे बोझ को मुसाफिरों पर डालने की तैयारी में है। आम जनता को इस महंगे सफर से राहत कब मिलेगी, इसे लेकर के भी स्थिति बहुत ज्यादा साफ नहीं है। हालांकि इस संकट के बीच कुछ उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अगर तेल टैंकरों की आवाजाही रफ्तार पकड़ती है तो कीमतों में फौरी कमी आ सकती है। ये राहत बहुत छोटे वक्त के लिए होगी, क्योंकि दुनिया के तमाम देश अपना रणनीतिक भंडार दोबारा भरने में जुटे हैं। इस रीस्टॉक

0: की वजह से सप्लाई सामान्य होने के बाद भी कई महीनों तक हवाई ईंधन के दाम ऊंचे बने रहेंगे। ऐसे में राहत की उम्मीद कम है और लंबे समय तक महंगा सफर ही आम लोगों की किस्मत बनने की आशंका है। जाहिर है कि एयरलाइंस के बढ़ते खर्च का बोझ सीधे मिडिल क्लास के बजट पर आने वाला है, जिससे हवाई सफर का मजा फीका होना तय है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

के बाद पहली बार टूटा सीज फायर। हॉर्मुज में कार्गो शिप पर हमले का अमेरिका ने लिया बदला। वेंस बोले हिंसा का जवाब हिंसा से। गाजा को लेकर सोनिया गांधी ने अखबार के लेख में लिखा, इसराइल की नरसंहार पर सरकार की चुप्पी को सही नहीं ठहरा सकते। खड़गे प्रियंका ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। 3 दिन के सेशल्स दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की जेल। अब तक 80 लाख रुपए बरामद हुए। बाबा बागेश्वर बोले चोरों को भगवान महादंड देगा। और केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपित सिया के भाई साहिल से 10 घंटे पूछताछ। चेतन सिया ने डिलीट किए चैट हिस्ट्री। विक पैच थ्योरी की एंट्री।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, यानी शक्तिशाली या समर्थ व्यक्ति की किसी भी गलती या दोष को अनदेखा कर दिया जाता है। क्या यही अयोध्या में हो रहा है, जहां राम मंदिर चढ़ावा विवाद में 8 लोग पकड़े जाते हैं, 3 दिन के लिए जेल भेजे जाते हैं। SIT कहती है भारी खामियां पूरे चढ़ावा गिनने वाली व्यवस्था में रही, लेकिन न चंपत राय का नाम FIR में आता है, ना अनिल मिश्रा का नाम आता है, ना गोपाल राव का आता है, नाम उनका आता है जो साजिश में शामिल रहे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठने लगे कि क्या तब चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे बड़े चेहरे आंखें मूंदे रहे, या फिर अब व्यवस्था इनके नाम पर आंख मूंद रही है।
1: आरोपी नंबर 1 अविनाश शुक्ला, जिम्मेदारी दान के रुपए को काउंटिंग रूम तक लाना और गिनती करना, आरोप दान में आए रुपयों की चोरी, अयोध्या के पास चोरी के रुपयों से संपत्ति खड़ी की। आरोपी नंबर 2 अनुकल्प मिश्रा, जिम्मेदारी काउंटिंग रूम में रुपयों की गिनती करना, आरोप काउंटिंग रूम से नोट चुराए, चढ़ावे की चोरी से संपत्ति बनाई। आरोपी नंबर 3 लवकुश मिश्रा, जिम्मेदारी चढ़ावे नकदी की काउंटिंग स्टाफ का सदस्य, आरोप चढ़ावा चोरी करके संपत्ति खड़ी की। आरोपी नंबर 4 मनीष कुमार यादव, जिम्मेदारी दान पात्र में आए चढ़ावे की गिनती करना, आरोप मंदिर के चढ़ावे की चोरी, घर से 36 लाख बरामद। आरोपी नंबर 5 करुणेश पांडे, जिम्मेदारी दान के रुपए को कमरे तक लाना, काउंटिंग कराना, आरोप दान के रुपयों की चोरी, चोरी के दान से संपत्ति बनाई। आरोपी नंबर 6 रमा शंकर मिश्रा, जिम्मेदारी दान पात्र को काउंटिंग रूम तक लाना, निगरानी करना, आरोप आरोपियों के साथ मिलकर दान के रुपए में हेरा फेरी करना। आरोपी नंबर 7 सुभाष श्रीवास्तव, जिम्मेदारी कैश काउंटिंग स्टाफ के प्रभारी, आरोप निगरानी में लापरवाही, दान के रुपयों में चोरी। आरोपी नंबर 8 राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, जिस पर दान पात्रों की देखरेख और बेसमेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, आरोप दान पात्र से करोड़ों का गबन, अयोध्या के आसपास के जिले में संपत्ति बनाई। श्री राम के मंदिर से भक्तों के समर्पण को चुराने के आरोपी पूरे 8 या केवल 8? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगला नाम FIR में जो अभी अज्ञात है, वो जांच में आगे बहुत बड़ा हो सकता है। क्या आगे राम मंदिर ट्रस्ट के गोपाल राव का अगला नाम FIR में होगा? क्या वो नाम FIR में आगे राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के समय यजमान बनने वाले डॉक्टर अनिल मिश्रा का होगा? क्या अब FIR में अगला सबसे बड़ा नाम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का होगा? क्योंकि FIR में 8 नाम 8 गिरफ्तारी के बाद खबर आई है कि चंपत राय ने ट्रस्ट के महासचिव पद से और अनिल मिश्रा ने ट्रस्टी के पद से इस्तीफा दे दिया, वो भी नैतिकता के नाम पर।
2: चंपत राय या अनिल मिश्रा के इस्तीफे से इस समस्या का कोई हल नहीं होने वाला। अगर सैकड़ों हजारों करोड़ की लूट हुई है,
3: कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया।
4: छोटे छोटे प्यादों को शामिल किया गया, कोई बड़े नाम नहीं है।
5: नीचे लिखा है अन्य, सबकी जांच होगी।
6: गिरफ्तारी कैसे होगी भाई, चंपत राय से सब डरते हैं।
7: जो रामलला द्रोह किया है वो पनिश हो।
8: मुझे लगता है थोड़ा सा लेट किया, इन्होंने को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था।
9: जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं।
1: इस वक्त कई सवाल, जैसे पहला, क्या वाकई चंपत राय ने इस्तीफा दिया है या फिर इस्तीफे पर कोई सस्पेंस है? सवाल की वजह गोपाल राव है, जो ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य है। इनसे सवाल हुआ कि क्या इस्तीफा चंपत राय का हो गया है? शुक्रवार शाम तक का इनका जवाब सुनिएगा।
10: अरे अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ, बाकी तो भगवान जाने। वो बार बार प्रचार, हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्या करें।
11: यानी एक तरफ कहा जा रहा है कि चंपत राय ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, दूसरी तरफ उनके ही साथी गोपाल राव कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मीडिया दबाव बनाकर चंपत राय का इस्तीफा लेकर ही छोड़ेगा। तो क्या चंपत राय इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, और क्या नैतिकता के नाम पर उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? जब बात नैतिकता की है तो फिर दबाव की बात कहां से आई? कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।
0: एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में जहां भक्तों की तरफ से प्रभु राम को अर्पित भेंट चढ़ावे की गिनती होती थी, वहां कैश की गिनती, उसके संचालन और प्रबंधन सबसे बड़ी खामियां पाई गई हैं। एसआईटी ने दावा है कि अपनी रिपोर्ट में इस पर सवाल तक उठाया। यही वजह है कि पूछा जाने लगा कि क्या चंपत राय के खिलाफ भी एफआईआर होगी, जिनके नेतृत्व में सारा प्रबंधन राम मंदिर का संभाला जाता रहा।
12: जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था, मैंने तब भी कहा था अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है, अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई।
13: ये बात तो सच कह रहे हैं, मुख्यमंत्री की कार्रवाई शुरू हुई है, 8 लोग पकड़े गए हैं, सोमवार तक के लिए जेल भेज दिए गए हैं।
14: चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों को सोमवार तक की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। 29 जून तक सभी आरोपी जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। सोमवार को जब दोबारा इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की स्पेशल कोर्ट होगी। पुलिस ने इन सभी 8 आरोपियों में से सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को छोड़कर 7 आरोपियों के पास से 79,85,000 से अधिक की रकम बरामद की है। अब कहा जा रहा है कि पुलिस इन आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेगी और उसके बाद इस पूरे चोरी में शामिल दूसरे बड़े चेहरों को भी सामने लाएगी।
15: कई और लोगों की जो भूमिका है वो संदेह में है, जैसे चंपत राय हो गए, अनिल मिश्रा हो गए, क्योंकि ये ट्रस्ट के कहीं ना कहीं पूरा संचालन करते थे। इनको लेकर क्या कोर्ट में किसी तरीके की आप लोगों ने बातें रखी, या फिर इनके जो रोल है उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दायित्व इनका भी बनता है, क्या आने वाले समय में आप लोगों की जांच में इनका भी नाम आ सकता है?
16: अब क्योंकि जो अभी नेम्ड एक्यूज थे वो गिरफ्तार होकर आए थे रिमांड के लिए, तो इनके पास से तो बरामदगी हुई है और इनको जो है जेल भेजा भी गया है। अब इनके बयानात, इनके जो है CDR CCTV फुटेज, तो मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस हो गए, इसके आधार पर जो आईओ जो इसमें विवेचना करेंगे उसके आधार पर किस किस के नाम आते हैं वो आगे का विषय है, विवेचना का विषय है। अभी प्रथम दृष्टया इन लोगों के बयानों के आधार पर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं उसके आधार पर जो भी आएंगे, जो उसमें दोषी होंगे उनका नाम प्रकाश में आएगा, क्योंकि अज्ञात में बहुत सारी अभी चीज आ सकती है।
13: तो क्या जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी चंपत राय के लिए मुश्किल बढ़ेगी? वो चंपत राय जिनको लेकर दावा यही है कि इस्तीफा नैतिकता के नाम पर दिया, अगर दिया तो क्यों ना ये माना जाए कि नैतिकता जागते जागते बहुत देर हो गई, क्योंकि नैतिकता चंपत राय की तब जागी जब केवल 3 महीने में 42 दिन के भीतर 70 बार चढ़ावे की चोरी का CCTV वीडियो SIT ने देख लिया है। चंपत राय की नैतिकता तब जागी है जब SIT को पता चला कि SOP की धज्जियां उड़ाकर चढ़ावे की गिनती और चोरी होती रही। चंपत राय की नैतिकता तब जाकर जागी जब SIT को दावा है ये भी पता चल चुका कि 2023 से ही गड़बड़ी चलती रही। चंपत राय की नैतिकता तब जाकर जागी जब आरोपियों के पास से चढ़ावे की चोरी का पैसा कैश बरामद हुआ।
15: ये भी बताया गया है कि इन लोगों के यहाँ से अमाउंट एक बड़ा वो रिकवर हुआ है, कितना अमाउंट?
16: टोटल अभी जो आज पकड़े गए हैं 8 एक्यूज थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं अलग अलग अमाउंट के रूप में। उसमें सुभाष जो एक एक्यूज हैं उनके वो उनके पास से बरामद नहीं हुआ है, क्योंकि वो षड्यंत्र में शामिल थे, इसलिए उनके उनके पास से नहीं, क्योंकि मतलब घटना में वो भी इन्वॉल्व थे, सबके पास से 79,85,000 रुपए।
13: तो क्या चंपत राय की नैतिकता जागने में देरी नहीं हुई? क्या चंपत राय का नाम FIR में नहीं होना चाहिए?
15: तो कहें कि कहीं ना कहीं अगर रोल पाया जाता है किसी वरिष्ठ अधिकारी का, चाहे वो चंपत राय को, तो वो उस पे आएगा।
16: बिल्कुल, ये विवेचना का विषय है, इसमें जो भी दोषी होंगे उनको जो है IO विवेचना के क्रम में लाएंगे, प्रकाश में लाएंगे और उनका रिमांड भी लिया जाएगा।
0: आज तक को एसआईटी के सूत्र ये भी बताते हैं कि आज से नहीं बल्कि पहले से आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में कई खामियां दिखती रहीं। जांच में ये तक सामने आया कि पर्याप्त सीसीटीवी कवरेज नहीं रखी गई, जिससे चढ़ावे पर निगरानी की व्यवस्था प्रभावित हुई। एसआईटी आगे इन सब मामलों में जांच को आगे बढ़ाएगी और तब क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे बड़े पदाधिकारियों का भी नाम शामिल होगा?
1: चंपत राय को लेकर सवाल इसलिए है क्योंकि ये ट्रस्ट के महासचिव ही हैं, जिन्होंने सबसे पहले आरोप लगने पर कहा कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला।
17: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
1: दावा है कि 27 अप्रैल 2026 से 5 जून तक यानी 42 दिन के भीतर 70 मौके ऐसे एसआईटी को जांच में दिखे जब चढ़ावा चोरी का वीडियो सीसीटीवी में नजर आया। सवाल है कि जब 42 दिन में 70 बार चोरी का वीडियो हो सकता है तो ये चोरी किस स्पीड से राम मंदिर में होती रही होगी? जहां चंपत राय कहते रहे कुछ उल्लेखनीय नहीं मिला, वह एसआईटी को कैसे 70 बार चोरी 3 महीने में दिख गई?
18: राम मंदिर कथित चढ़ावे की चोरी के मामले में मनीष कुमार यादव जो कई बार एसआईटी को सूत्रों से मिली जानकारी कि वह कई बार सीसीटीवी में चोरी करते हुए दिखता था। मनीष कुमार यादव जो टिन्नू यादव का रिश्तेदार था और टिन्नू यादव जो कि चंपत राय का ड्राइवर था और काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। आलम यह था कि जो हुंडियों की चाबी है वो भी टिन्नू यादव रखता था। तो ऐसे में जिस तरीके से सीसीटीवी में दिखना, उसके बाद हुंडियों की चाबी रहना, क्या चंपत राय को इसकी जानकारी नहीं थी?
9: उसके बाद जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना। और जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा, 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है? उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है।
19: 8 लोगों पर FIR हो गई है।
9: हाँ, वही तो कह रहे हैं कि 8 लोगों का FIR हो गया, वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया? अभी
19: मैंने FIR दी, उसमें समूचे प्रकरण की जांच करने के लिए कहा। 8 नाम इसलिए है कि SIT की रिपोर्ट में 8 ही है, ऐसा नहीं है। उसके नीचे लिखा है अन्य, सबकी जांच होगी, सारे आरोपों की होगी, जिस पर आरोप है उन सबकी होगी कॉम्प्रिहेंसिवली, और फिर उसका परिणाम।
1: चंपत राय संघ के पुराने स्वयंसेवक हैं, जिद्दी और जुनूनी माने जाते रहे। अपना जीवन संघ परिवार और फिर राम मंदिर को सौंप दिया, लेकिन क्या ट्रस्ट के महासचिव होने के नाते अगर प्रबंधन का श्रेय उनका रहा तो क्या सबसे बड़े अपराध पर जवाबदेही तय नहीं होगी?
20: जमीन खरीद में घोटाला, निर्माण कार्य में घोटाला, प्रभु के आभूषणों में घोटाला, दान चढ़ावे में घोटाला, घोटाले पे घोटाला कर रहा है, उसके बाद आप उसके पक्ष में खड़े हैं? अरे उसको पकड़ के जेल में डालिए ना, अनिल मिश्रा को जेल में डालिए, चंपत राय को जेल में डालिए, गोपाल राव को जेल में डालिए। यहां लूट की छूट इन लोगों को किसने दी?
21: ये कुछ नहीं, ये मेन चोरों को बचाने के लिए, मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए ये एक सिस्टमेटिक ड्रामा है। आफ्टर थॉट ये FIR लिखी गई, सोचने के बाद, सोचने समझने के बाद 10 दिन में आप FIR लिख रहे हैं। मैंने तहरीर दिया, क्यों नहीं लिखी गई? इसका मतलब ये पूरा सिस्टम चोरी में शामिल है, पूरा सिस्टम, पूरा ये SIT सहित, SIT दूध की धुली है। क्या किया SIT ने? डर के मारे मेमने बन गए? यही काम किया SIT का, यही धर्म है जो किया उन्होंने। हमारा बयान क्यों नहीं लिया, हमारे पास क्यों नहीं आए?
0: हाल ही में ये दावा किया गया कि राम मंदिर में श्रद्धालु कम नहीं हुए लेकिन चढ़ावा कम हुआ। तो क्या यह विश्वास का संकट है, वो संकट जिसे दूर करने की कोशिश में मुख्यमंत्री कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा? लेकिन सवाल है कि जब तक बड़े चेहरों तक जांच नहीं पहुंचेगी तब तक कैसे मान लिया जाए कि सब कुछ साफ होगा और विश्वास वापस लौटेगा।

0: शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है।
1: ऐसा लग रहा है कि सच में सतयुग में पहुंच गए।
2: 2024 में जब श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद श्रद्धालु सतयुग तक आने की बातें करने लगे।
3: जिसका इतने सालों से इंतजार था वो पल आज आ गया है।
4: समझिए जिंदगी धन्य हो गया।
2: यही भरोसा करोड़ों हिंदुओं का है जो प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं।
5: आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा है और ये 500 वर्षों का संघर्ष की विजय हुई है।
6: इतनी खुश है ना, इतनी खुश है कि प्राण भी दे दे तो कम है। पूरी अपनी दुनिया त्यागने के लिए तैयार है। हमको इतना अच्छा लग रहा है।
2: उसी आस्था को चोट उन लोगों ने पहुंचाई जिन्हें राम के मंदिर की चौकीदारी का जिम्मा दिया गया। उनमें से 8 लोग तो पकड़े गए, लेकिन ये सब लोग क्या अपने दम पर इतना बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं?
7: ये सबसे आगे पीले जो कुर्ते में है, ये रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव है, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा समेत ये सभी 8 आरोपी हैं। मनीष यादव, ये सारे लोग को देखिए, ये 2 अलग अलग गाड़ियों में ले जाया जा रहा है। और ये 8 आरोपी, जो सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए थे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में, इन सभी को आज रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। अयोध्या की SOG के द्वारा इनको पेश किया गया, भारी सुरक्षा के बीच में लाया गया, सभी 8 आरोपी लाए गए। और बीच में देखिए कि ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो स्कॉर्पियो के बीच में बैठा है, ये रामशंकर यादव, टिंडू यादव है। रामशंकर यादव, टिंडू यादव को बीच में रखा गया है।
2: अब आगे इन्हीं लोगों की तरफ से दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़नी, तो वो जांच क्या चंपत राय तक पहुंचेगी?
8: राम मंदिर मामले में SIT की जांच में 3 चीजें पूरी तरीके से फेल मिली हैं। एक तो पारदर्शिता उस मैनेजमेंट को रखने की, दूसरा रिकॉर्ड्स रखने की जो भी वहां पर सामान आया गया, और तीसरा सबसे बड़ा था जो मैनेजमेंट था ट्रस्ट के द्वारा बनाया हुआ। इन 3 चीजों में फेल पाया गया, पारदर्शिता नहीं थी। इसी तरीके से कहीं ना कहीं यही वजह थी कि चंपत राय की इस लापरवाही की वजह से ही दान पात्रों में चोरी होती गई, श्री राम मंदिर में चोर चोरी करते रहे और ये चोरी आगे बढ़ती रही।
9: कौन सी SIT है? सब मैनेज हुए लोग हैं और ट्रस्ट के लोग ट्रस्ट के चोरों के खिलाफ मुकदमा लिखा रहे हैं। आप मिलजुल कर नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, पूरे देश को आप गुमराह कर रहे हैं। इतना सोचने समझने के बाद आपने ड्रामा खड़ा किया। हमने तहरीर दी नामजद, आपने क्यों नहीं लिखा? पुलिस दोषी है, पुलिस चोरों से पैसा लेकर मौन है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रुपया लेकर मौन है, मैनेज नहीं तो क्या है? मैनेजमेंट चंपत राय जैसे बड़े चोर का है जिसने हजारों करोड़ रुपए लूट लिया।
8: श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में बैंक की SOP और ट्रस्ट के बीच में एक SOP तैयार की गई थी। SIT के सूत्रों का दावा है कि उस SOP का पालन नहीं किया गया। वह SOP जो SBI बैंक के कर्मचारी और ट्रस्ट के अनिल मिश्रा के बीच में हस्ताक्षर हुई थी, लेकिन उस SOP का पालन नहीं हुआ। इसी वजह से लगातार दान पात्रों से चोरी और चढ़ावा चोरी जैसे मामले सामने आते गए। तो आखिर इसमें अब किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि वहां पर ट्रस्ट में चंपत राय जो महासचिव थे उनके सामने ही इस SOP को पालन कराया गया था।
10: अगर चोर नहीं रहते तो लड़ो ना लड़ाई, लड़ाई लड़ो, लड़कर आओ भाई, मेरे नाम FIR भी होगा, मैं जेल भी जाऊंगा, पर मैं चोर नहीं हूं। चंपत राय चोर है, चोर है।
8: राम मंदिर मामले में SIT की जांच में ये साफ आया है कि जो भक्त चढ़ावा भेंट श्रद्धालु जो देते थे उसको मन मर्जी के मुताबिक अलग अलग कैटेगरी में बांटकर लिया जाता था और उसको गिनने की प्रक्रिया में डाल दिया जाता था, जिसमें ना ही किसी की जिम्मेदारी थी और ना ही कोई उसकी देखरेख में था। इसी वजह से ये माल ऐसे ही बढ़ता चला गया और चंदा चोरी होती चली गई।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates, 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
13: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
11: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
15: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
2: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
3: Swing and a foul out of play off to the left.
2: Big 12 Radio.
4: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
2: Talk Sport.
5: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
2: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
6: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है. लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली.
7: हमें मालूम है कि देश भर में कौन से राज्य में कहां केमिकल जोन है. बहुत छोटे कंस्ट्रक्शन एरिया में लैब बना दी जाती है और ऊपर कोई मुखौटा होता है, तो एजेंसियों ने भी उसको ढूंढने का एक अपना तंत्र विकसित करना पड़ेगा और उसको कठोरता के साथ हमने नष्ट करना पड़ेगा. कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन जो नई पद्धति के इन्होंने ढूंढे हैं, इसका भी हमने उपाय भी ढूंढना पड़ेगा और ये उपाय को सतत परिवर्तनशील करते हुए मॉनिटरिंग कर इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना पड़ेगा. पीएमएलए और ईडी के माध्यम से इसके फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को भी हमने बहुत रूथलेसली करना पड़ेगा और ये सब मिलकर उनके नेटवर्क को छिन्न विछिन्न करने की जिम्मेदारी हमारी है. एक बार नेटवर्क छिन्न विछिन्न होता है तो हमारी लड़ाई जीतने के रास्ता बहुत आगे तक हम कर लेंगे. और तीसरा है डिस्ट्रॉय. नेटवर्क को दोबारा खड़ा न हो इस तरह से रूथलेसली समाप्त करना है.

0: सनातन धर्म में तीर्थ केवल घूमने या खरीदारी करने की जगह नहीं है, आंतरिक शुद्धि आत्म मंथन का माध्यम है। इसीलिए तीर्थ से धूल का कण तक ले जाना पाप माना जाता है। अयोध्या में कुछ आरोप लग रहे हैं वो धर्म की नजर में पाप से कम नहीं, लेकिन सवाल यह है कि इतने दिनों से यह खेल चल रहा था, किसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? जबकि आज तक को मिली इस विवाद की इनसाइड स्टोरी बताती है कि सारा खेल खुलेआम चलता रहा आपसी मिली भगत से।
1: दान पेटी से बैंक तक राम मंदिर में चढ़ावा कैसे हुआ गायब? खुफिया कैमरे ने कैसे पकड़ा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पूरा खेल? राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ के रोज नए नए रिकॉर्ड को देखते हुए मंदिर की सुरक्षा और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए खबरों के मुताबिक 850 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मंदिर को किसी भी हमले से बचाने के लिए UPATS, RAF, SSF, CRPF, PAC और स्थानीय पुलिस की संयुक्त तैनाती भी अयोध्या में रहती। तो राम मंदिर की बाहरी सुरक्षा तो पुख्ता कर दी गई, लेकिन मंदिर के अंदर चढ़ावा गिनने वालों ने ही बड़ा खेल कर दिया। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कैसे हुई, तो इसको लेकर आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारियां। मई महीने के आखिरी हफ्ते की बात, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा देखा और रोजाना दान पेटियों के खाली होने के क्रम की पड़ताल की, तो सबसे पहले चोरी का शक पैदा हुआ। दरअसल एक दान पेटी में 7-8 लाख रुपए एक बार में जमा होते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों के क्रम में तब 500 रुपए की गड्डियों में कमी देखी गई। इस तरह चढ़ावा गिनने वाले सीधे 500 के नोट पार कर रहे थे। दावा है कि चढ़ावे में हेरफेर करने वाले कर्मचारी आगे पीछे छोटे नोट गड्डी में लगाते थे, लेकिन बीच में 500 के नोट रहते थे। इस तरह चढ़ाने में लूट का ये खेल काफी समय से चल रहा था। चढ़ावे की गिनती में हेराफेरी का शक गहराया तो कुछ छिपे हुए कैमरे लगाए गए। इन हिडन कैमरे की एक सप्ताह की फुटेज देखी गई तो पता चला नोट गिनने की प्रक्रिया में लगे कर्मचारी सामने दिख रहे सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते हैं और दूसरा साथी बनाए गए नोटों की गड्डी में नोट चोरी करके उन्हें कपड़ों में छिपा लेता है, लेकिन फिर हिडन कैमरे में उनकी ये चोरी पकड़ी जाती है।
2: चढ़ावे की चोरी करने वाले जानते थे कि सीसीटीवी कैमरे कहां लगे हैं, इसीलिए वो बेधड़क होकर इन पैसों की चोरी करते और बंदरबांट कर रहे थे। इतना ही नहीं, इनके हौसले इतने बुलंद थे कि ये उस सीसीटीवी कैमरे के सामने तक खड़े हो जाते और इनको किसी का डर नहीं होता और रकम चोरी कर रहे थे।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि ये चोरी एक और तरह से हो रही थी। नोट गिनने वाले कर्मचारी हर गड्डी में एक्स्ट्रा नोट जमा कर देते थे। जब बैंक के पास रकम गिनने की बारी आती तो हर गड्डी के एक एक नोट को गिनने के बजाय सिर्फ गड्डियां ही गिनी जाती थी और उसका वाउचर बन जाता था। जब ये रकम बैंक में जमा कराने के लिए मंदिर से बैंक में ले जाते तो उस दौरान हर गड्डी में जो एक्स्ट्रा नोट लगाया गया था वो चुपचाप बाहर निकाल लिया जाता। इस तरह वाउचर से गड्डियों का मिलान हो जाता और गड्डियों में एक्स्ट्रा रखे गए पैसे को चोरी कर लिया जाता, क्योंकि नोट की गड्डियों में 100 की जगह ज्यादा नोट ये चोरी करने वाले लगा दे रहे थे।
2: अनकल्प मिश्रा चढ़ावे की रकम की वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा था और वो अपने बहनोई लवकुश मिश्रा की मदद से चढ़ावे की रकम को चोरी कर रहा था। यही वजह थी कि लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस को 10 लाख रुपए बरामद हुए। इतना ही नहीं, चढ़ावा गिनने वाले हर शख्स किसी न किसी से परिचित था, किसी न किसी का रिश्तेदार था।
1: जैसे चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू यादव व्यवस्थापक था, तो टिन्नू यादव ने अपने चचेरे भाई मनीष यादव को नोट गिनने की प्रक्रिया में लगा दिया। ऐसे ही सालों से काम कर रहे अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को लगवा दिया, जो दोनों अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। आज तक की टीम ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार अनुकल्प मिश्रा की चाची नेहा मिश्रा से बातचीत की, जिसमें वो बताती हैं कि राम मंदिर में काम करने के बाद से अनुकल्प और उसके परिवार की संपत्ति लगातार बढ़ गई थी।
2: क्या अचानक से ये पैसा बढ़ गया इन लोगों के पास से कि पहले से था?
3: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
2: अच्छा,
3: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
2: क्या पैसा
3: बढ़ गया? हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया और अभी हाल में भागवत करवाए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
4: तो ये क्या मतलब, राम मंदिर जैसे चोरी का आरोप आ रहा है, तो क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये पैसा था?
3: अब जाहिर सी बात है कि इतना पैसा हमारे ससुराल वालों के पास नहीं था, जिस तरीके से उन्होंने भागवत में भव्य प्रदर्शन किया है और तरह तरह के नाश्ते बनवा रहे थे, तरह तरह के खाना बनवा रहे थे, प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे।
4: क्या गाड़ियां भी खरीद रहे हैं लोग, गाड़ियों का काफिला?
3: हाँ, एक गाड़ी है अभी अनुकल्प के पिताजी ने खरीदा।
4: तो लवकुश का भी यही हाल है, लवकुश के यहाँ पे भी प्रॉपर्टी खरीदी गई क्या?
3: हाँ, मुझे जानकारी है कि लवकुश मिश्रा ने शहादतगंज में 40 लाख का प्लाट लिया है जिसमें मकान बनवा रहा है।
4: तो ये सब चढ़ावा चोरी का?
3: अब जाहिर सी बात है कि जब उनके भी घर की स्थिति सही नहीं थी तो ऐसे कैसे इतना पैसा कहाँ से आ गया?
0: सोचिए, 18 से 20 हजार की तनख्वाह पाने वाले मंदिर के कर्मचारी लाखों की जमीन मकान खरीद रहे थे और ट्रस्ट के लोग बेखबर थे, किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं लगी, या फिर जानबूझकर अनदेखी की गई। क्या इस अनदेखी में चंपत राय, अनिल मिश्रा समेत ट्रस्ट के दूसरे बड़े सदस्य शामिल नहीं थे? अगर थे तो फिर क्यों इन तक FIR की आंच नहीं पहुंची?
1: तो चाहे अनुकल्प हो या फिर लवकुश मिश्रा, दोनों की आर्थिक सेहत मंदिर में काम करने के बाद से सुधरी और मजबूत हुई। सवाल है कि हजारों की सैलरी में ये कैसे हुआ? बड़ी बात ये भी कि अनुकल्प मिश्रा तो लवकुश मिश्रा का जीजा है, वहीं रमाशंकर मिश्रा लवकुश के पिता है और अनुकल्प के ससुर है। इस तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जीजा साला ससुर दामाद का कनेक्शन जुड़ता है। यही नहीं, अनुकल्प मिश्रा की ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से रिश्तेदारी बताई जाती है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि भाई भतीजावाद ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरों की एक ऐसी टीम तैयार कर दी जिसने करोड़ों की आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया है। मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के बाद से भले ही ट्रस्ट कटघरे में आ गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। साल 2024-25 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच चढ़ावा गणना के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया, उसका भी पालन नहीं किया गया।
2: अनुकल्प मिश्रा चढ़ावे की रकम की वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा था और वो अपने बहनोई लवकुश मिश्रा की मदद से चढ़ावे की रकम को चोरी कर रहा था। यही वजह थी कि लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस को 10 लाख रुपए बरामद हुए। इतना ही नहीं, चढ़ावा गिनने वाले हर शख्स किसी न किसी से परिचित था, किसी न किसी का रिश्तेदार था।
1: पकड़े गए अविनाश पांडे के CCTV फुटेज देखे गए और उसके तरफ से जो रकम चोरी की जा रही थी, इस तारीख में बैंक में रकम जमा भी कराई गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी ने पूछताछ के दौरान मिलान कराया तो पुष्टि हुई कि चढ़ावा चोरी से जमा की गई रकम का एक हिस्सा अविनाश अपने बैंक खाते में जमा कर रहा था। जो श्रद्धालु दान पेटी में जेवरात दान करते थे, उसको भी ये लोग चोरी कर लेते। बाली, झुमकी, नथ, बाल रूप, रामलला के कंगन, पैजनिया जैसे जेवरात भी चोरी किए जा रहे थे। सबसे अहम बात की चोरी पहले करते, बाद में नोटों की गिनती या दान पेटी में मिले जेवरात की लिखा पढ़ी होती थी। इस मामले में रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र ऐसे आरोपी हैं जो लगातार राम मंदिर ट्रस्ट के उस कमरे में आते जाते थे जहां दान पेटियां खुलती थी। तो अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी नहीं, डकैती हुई, क्योंकि सिर्फ पैसों का गबन नहीं हुआ, सोना चांदी जेवरात भी चुराए गए, जो बताता है कि मंदिर में चढ़ावे को गिनने की पूरी प्रक्रिया में घनघोर लापरवाही बरती गई। अब सवाल है कि मंदिर के चढ़ावे में हेरा फेरी रोकने के लिए ट्रस्ट ने कुछ क्यों नहीं किया? क्यों शीशे की पारदर्शी दीवारों में चढ़ावे को गिनने की व्यवस्था नहीं की गई? सवाल ये भी कि जब सब कुछ डिजिटल हो गया तो फिर मंदिर में ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अगर ऐसा किया गया होता तो फिर चढ़ावे के नाम पर इतनी बड़ी लूट नहीं होती।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी छुट्टी कर दी गई। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या चंपत राय की भी गिरफ्तारी होगी? क्या चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव की तरह उन पर भी कानून का शिकंजा कसेगा? लेकिन चंपत राय कौन है? वो राम मंदिर आंदोलन में कब और कैसे उभरे और क्यों समर्थक उन्हें आंदोलन का रणनीतिकार मानते हैं जबकि आलोचक उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं?
5: आया है स्टोन डस्ट आई है, ये बुंदेलखंड से आई है, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में भी है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में भी है, ये ग्रेनाइट कर्नाटक का है, तेलंगाना का है, दो राज्य और जुड़े। मंदिर हल्के गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर है, ये राजस्थान के भरतपुर जिले की तहसील का है।
1: अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से खबरदार करना हो,
6: ये उस भूमि का मानचित्र है जो भूमि सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन से भारत सरकार ने ट्रस्ट को सौंपी।
1: या फिर राम मंदिर की नींव से लेकर साकार रूप तक की गवाही हो।
6: नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए, यहाँ कितना वाइड है, यहाँ कितना नैरो है।
1: अयोध्या में हर चीज चंपतराय की आंखों के आगे से गुजरी है। वर्षों से अयोध्या में बसे चंपतराय का चेहरा राम मंदिर का नाम आते ही खुद ब खुद सामने आता रहा, लेकिन राम लला के पटवारी की उपाधि हासिल करने वाले अयोध्या के इतिहास के व्यापक जानकार होने से अयोध्या का ज्ञान कोश कहे जाने वाले चंपतराय कटघरे में खड़े। नौबत ये आ चुकी है कि मंदिर निर्माण से लेकर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान तक हर गतिविधि पर नजर निगरानी रखने वाले चंपतराय को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अपने पद से आखिरकार जाकर इस्तीफा देना पड़ा। आखिर कौन है चंपतराय, कैसे केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर राम मंदिर आंदोलन के सबसे प्रभावी चेहरे के तौर पर सामने आए और अब मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर सवाल उठते हैं, तो चंपतराय पर सबसे ज्यादा उंगली क्यों उठती है? जबकि एक पक्ष ऐसा है जो चंपतराय की राष्ट्र के प्रति सेवा भाव को देखते हुए इन आरोपों से हैरान है, जिसमें उनका परिवार भी शामिल है, जिसे देश सेवा के लिए चंपतराय ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था।
7: देखिए, उनका जो 50 साल का जीवन है, इसको पक्ष भी जानता है, विपक्ष भी जानता है, और आम जनता भी जानती है, और देश की जनता भी जानती है। तो उनका जीवन जो है निष्ठापूर्वक पारदर्शी ईमानदारी कर रहा है। जिस व्यक्ति ने सन 1980 में घर से नाता तोड़ के अपने स्कूल की प्रवक्ता की सर्विस, फिजिक्स के लेक्चरार थे आरएसएम कॉलेज में, उससे इस्तीफा दे के उन्होंने अपना जीवन सारा दान दे दिया, तो वो इस तरह की किसी भी तरह की हरकत नहीं कर सकता।
1: चंपत राय का जन्म 1946 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में चंपत राय बंसल के रूप में हुआ। वो बचपन से आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित रहे। उच्च शिक्षा के बाद उन्होंने धामपुर के आश्रम डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर के रूप में काम शुरू किया, लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। साल 1975 के आपातकाल के दौरान हिरासत में ले लिया गया। उस दौरान वो 18 महीनों तक अलग अलग जेल में रहे। जेल से बाहर आने के बाद चंपतराय ने नौकरी छोड़ी, पूरी तरह से विश्व हिंदू परिषद के काम में लग गए। साल 1991 में अयोध्या से गहरा लगाव शुरू हुआ, संगठन में उनकी भूमिका बढ़ती गई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दिन कार सेवा में सक्रिय रूप से भाग लिया। राम मंदिर आंदोलन में उनके योगदान को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें 1996 में संगठन का केंद्रीय सचिव नियुक्त किया। 2002 में वो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव बने, बाद में अंतर्राष्ट्रीय महासचिव बने। उन्होंने अपना पूरा जीवन आरएसएस, वीएचपी और राम मंदिर आंदोलन को समर्पित किया और राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में एक रहे। राष्ट्र सेवा के लिए उन्होंने कभी शादी नहीं की।
0: उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, लेकिन अयोध्या में चढ़ावा चोरी को लेकर माहौल अभी से गर्मा गया है। माना जा रहा है कि इस बार भी चुनाव में अयोध्या को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी में आमने सामने की टक्कर होगी। अखिलेश जिस तरह से हिंदुत्व की पिच पर उतरकर बीजेपी को घेर रहे हैं, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव में अयोध्या के इर्द गिर्द ही दोनों के बीच सियासी टक्कर हो सकती है।
8: स्पष्ट करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकारे नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती।
1: योगी आदित्यनाथ भले ही अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले का दूध और पानी का पानी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर घेर रहा है और इसे आस्था का अपमान बताता है।
9: कि आप जो है पिछले चुनाव में नारा था कि जो राम को लाए हैं उन्हें आप सत्ता में लाइए, तो अब जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है? उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए कि सिर्फ 8 कर्मचारियों पर डाल के, छोटे मोटे लोगों पर डाल के आप जो है इससे बच के निकलना चाहते हैं। ये मुद्दा बहुत देर मतलब देशव्यापी स्तर पर चल रहा। जो दक्षिण भारत की महिलाएं आती थी वहां पे एक परंपरा है कि जो वो पहने होती हैं, जो आभूषण या जेवर ज्वेलरी वो सब डाल देती हैं। इतने सालों से, दसियों सालों से जो ज्वेलरी, जो आभूषण, जो जेवर आ रहे थे उनकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना है।
1: कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि भगवान राम का हीरे का हार भी गायब हो चुका है।
9: एक लंबी चौड़ी फेरिस्त जो लोगों ने शिकायत करने का सिलसिला शुरू हुआ कि हमने ये दिया था, हमने ये दिया था, हमने ये दिया था, उसकी हमें रसीद आज तक नहीं आई। तो उसका तो कितने 100 करोड़ का, कितने 1000 करोड़ का जेवर था, आभूषण थे, उनका तो कुछ पता ही नहीं। कहते राम, भगवान राम की जो माला थी हीरे की, वो भी गायब है। तो ये तो अजीबो गरीब मामला, ऐसा तो सुना ही नहीं था। तो ये जो है ये अब मेरे हिसाब से राजनीतिक मुद्दा नहीं, एक बहुत बड़ा धार्मिक मुद्दा है जिसपे हर एक की चिंता है।
1: अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि बीजेपी का लंका कांड अयोध्या में ही होगा। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि आखिरकार दान भक्तों का मुखौटा उतर ही गया क्योंकि प्रभु की अलौकिक शक्ति ने अपना चमत्कार दिखा दिया। अखिलेश यादव ने लिखा है कि अब भाजपाइयों के अहंकार की चमचमाती लंका के साम्राज्य का अंत होगा और लंका अधिपति का भी। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को चढ़ावा चोरी का मुद्दा काम का लग रहा है, जिसके जवाब में योगी राम भक्तों को राम मंदिर आंदोलन में समाजवादी पार्टी के रोल की याद दिलाते हैं।
8: मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मनसा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में ये मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? राम नवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे।
1: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरह अरविंद केजरीवाल भी इस मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि चंदा चोरी में FIR दिखावा है, असली मकसद बड़े लोगों को बचाना है।
10: आज मैं गया, भगवान राम के सामने नतमस्तक हुआ, वो भी इनको दंड देंगे। राम के सहारे आए थे, अब राम ही इनको भगाएंगे, भगवान राम ही इनको भगाएंगे।
8: दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया।
1: अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बीजेपी पर सिर्फ पार्टियां ही नहीं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी लगातार निशाना साधते हैं।
11: जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है, हमने सुना। जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है, जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है, उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है।
1: 2027 के चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन जिस तरह से अयोध्या को लेकर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि यूपी में अगले चुनाव के प्रमुख मुद्दे में अयोध्या का मुद्दा सबसे आगे हो सकता है।
0: के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
14: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
15: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
12: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

भारतीय शेयर बाजार में बंपर कमाई का सपना देखने वाले आम निवेशकों के लिए एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। अपनी गाढ़ी कमाई को म्यूचुअल फंड और शेयरों में लगाने वालों के होश उड़ाने वाली ये खबर सीधे तौर पर आपकी जेब को प्रभावित करने वाली है। देश के स्टॉक मार्केट से विदेशी निवेशक बहुत तेजी से अपना बोरिया बिस्तरा समेट रहे हैं। इस साल भारत से विदेशी फंड्स की रिकॉर्ड निकासी की वजह से घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल मार्केट में आए इस बड़े उलटफेर के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। 2026 में अब तक भारत पर फोकस करने वाले इक्विटी फंड से 8.5 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम बाहर जा चुकी है। 2023 के बाद देश में जितना विदेशी निवेश आया था उसका 55% हिस्सा बाजार से वापस निकाला गया है। इस बिकवाली की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी शेयर बाजार, टेक कंपनियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सेक्टर्स में मची भारी तेजी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत और चीन जैसे देशों से पैसा निकालकर अमेरिका, ताइवान और साउथ कोरिया के एआई मार्केट में शिफ्ट कर रहे हैं। विदेशी निवेशकों की इस बिकवाली से आम आदमी को दोहरा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

0: बाजार से डॉलर बाहर जाने से भारतीय रुपया कमजोर होता है, जिससे देश में आयात होने वाली चीजें महंगी हो जाती हैं। इसके अलावा आम लोगों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और SIP के रिटर्न पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। बीते हफ्ते अमेरिकी शेयर बाजार में रिकॉर्ड 120 अरब डॉलर का नया निवेश पहुंचा है। निवेशकों के इस भरोसे की वजह से डॉलर इंडेक्स एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। AI टेक्नोलॉजी के इस दौर में ताइवान और साउथ कोरिया के मार्केट्स में फिर से विदेशी पैसा लौटना शुरू हुआ है। इस बदलाव के बीच भारत से पिछले हफ्ते भी 440 मिलियन डॉलर और चीन से 1.7 अरब डॉलर की बड़ी निकासी दर्ज की गई है। दरअसल दुनिया में ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंचे रहने की संभावना ने भी निवेशकों को अमेरिकी बाजार की तरफ खींचा है। अमेरिकी टेक कंपनियों में चल रहे AI बूम ने बाकी दुनिया के बाजारों को तगड़ा झटका दिया है। इन्वेस्टर्स ने अमेरिकी छोटी और मझोली कंपनियों के फंड्स में 2007 के बाद का सबसे बड़ा निवेश किया है। वैश्विक बदलावों के बीच गोल्ड और सिल्वर फंड से भी निवेशकों ने इस हफ्ते 3 अरब डॉलर निकाले हैं। मार्च से लेकर अब तक प्रेशियस मेटल्स फंड से कुल 18 अरब डॉलर की निकासी की जा चुकी है। दुनिया भर के बाजारों में मची इस उथल पुथल से यह साफ है कि बड़े फंड मैनेजर उभरते हुए बाजारों के मुकाबले अमेरिकी टेक सेक्टर्स को ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। इस ग्लोबल रोटेशन के थमने तक भारतीय बाजार में उतार चढ़ाव का ये दौर जारी रहने की आशंका है। विदेशी पैसे की इस विदाई से आम निवेशकों को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्लोबल AI की इस रेस में घरेलू बाजार का ये उतार चढ़ाव छोटे निवेशकों के सब्र की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। आदित्य के राणा आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अगले साल शुरुआत में भारत के दौरे पर आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। विदेश मंत्री रूबियो बोले, भारत अहम साझेदार, जल्द होगी डील साइन। तीन दिन के सेशेल्स दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ईरान अमेरिका में पीस डील के बाद पहली बार टूटा सीज फायर। हॉर्मुज में कार्गो शिप पर हमले का अमेरिका ने लिया बदला। वेंस बोले, हिंसा का जवाब हिंसा से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की जेल। अब तक 80 लाख रुपए बरामद हुए। बाबा बागेश्वर बोले, चोरों को भगवान देगा महादंड। और केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपित सिया के भाई साहिल से 10 घंटे पूछताछ। चेतन सिया ने डिलीट किए चैट हिस्ट्री। विकपैच थ्योरी की एंट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आएंगे। अगले साल ट्रंप भारत दौरे पर आ सकते हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बारे में जानकारी दी। मार्को रूबियो ने कहा है कि अगले साल की शुरुआत में भारत दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं। INS की रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन DC में भारत अमेरिकी संबंधों पर बात करते हुए मार्को रूबियो ने कहा है कि दोनों देशों के रिश्ते शानदार दौर में हैं। उन्होंने बताया कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बेहद अच्छी मुलाकात हुई थी। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वो पीएम मोदी के प्रशंसक हैं और मोदी ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रेड डील को लेकर भी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया कि जल्द ही भारत और अमेरिका में ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होंगे। डील को अंतिम रूप देने से बस एक कदम दूर है। भारत अमेरिका में सकारात्मक बातचीत रही है और बहुत जल्द डील पर साइन होंगे। क्वाड की अगली बैठक भी होगी बहुत जल्द। ये मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया कि भारत अमेरिका का रिश्ता मजबूत है और ट्रेड डील को लेकर भी कहा कि जल्द ही ट्रेड डील पर साइन होने जा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं शतक आज तक।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा दावा, अगले साल की शुरुआत में भारत आएंगे ट्रंप। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, भारत अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में, जल्द समझौते की उम्मीद। पीएम मोदी से राष्ट्रपति ट्रंप के रिश्तों पर बोले रूबियो, कहा राष्ट्रपति ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री के बीच संबंध बहुत अच्छे। रूबियो ने भारत की भारी कच्चे तेल रिफाइनरिंग क्षमता का जिक्र करते हुए कहा, अमेरिका वेनेजुएला से बातचीत जारी, सप्लाई बढ़ाने के लिए बहुत करी। रूबियो ने क्वाड बैठक जल्द होने के संकेत दिए, पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मोदी ने भारत को ग्लोबल पावर बनाया। ईरान अमेरिका पीस डील के बाद सीजफायर टूटा, हॉर्मुज में कार्गो शिप पर हमले का अमेरिका ने संज्ञान लिया। ईरान का दावा, सिरिक पोर्ट पर अमेरिकी हमले से कोई नुकसान नहीं, हालात सामान्य हैं। अमेरिका ईरान तनाव के बीच अमेरिकी कार्रवाई का ईरान ने जवाब दिया, आईआरजीसी ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका ईरान में फिर बड़ा तनाव, ट्रंप ने ईरान पर लगाया ड्रोन हमलों का गंभीर आरोप। ट्रंप का दावा, एक कार्गो जहाज हमले का शिकार हुआ, जबकि अमेरिकी सेना ने 3 अन्य ड्रोन को रोक दिया। ईरान अमेरिकी तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या पिछले 100 साल की सबसे बड़ी घटना। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई समेत कई लोग भी सुलेमानी से डरते थे और उसकी मौत से खुश थे। फेथ एंड फ्रीडम सम्मेलन में ट्रंप का बड़ा बयान, बोले अमेरिका में धर्म पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटा, ईश्वर और धर्म से ही महान बनता है देश। ट्रंप ने कहा, व्हाइट हाउस पर रहते हुए हर आस्थावान अमेरिका की रक्षा करूंगा, पिछली सरकार ने ईसाइयों धार्मिक लोगों को निशाना बनाया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि जो भी देश अमेरिका पर डिजिटल टैक्स लगाएगा उसके सभी सामानों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका ईरान के तनाव के बीच इजराइल लेबनान के बीच शांति समझौता, वाशिंगटन में सहमति बनी। लंबी बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच शांति सीजफायर के समझौते पर हस्ताक्षर। समझौते में अमेरिका की भी अहम भूमिका, इजराइल लेबनान के बीच समझौते को बताया त्रिपक्षीय समझौता। शांति समझौते पर इजराइल पीएम नेतन्याहू का दावा, सुरक्षा कारणों से इजरायली सेना बफर जोन में रहेगी। आज सेशल्स की राजकीय यात्रा पर पीएम मोदी, 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल, हिंद महासागर में सेशल्स का रणनीतिक महत्व, ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी। चीन के प्रभाव के बीच भारत और सेशल्स संबंध मजबूत करने पर जोर, कई मुद्दों पर बातचीत। आज अमित शाह गांधीनगर में कई प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे, गुजरात में भारत टैक्सी पहल शुरू करने के लिए बैठक करेंगे। फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई, पटना सिविल कोर्ट ने पुलिस केस डायरी अधूरी होने के कारण टाल दी थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, सभी 8 आरोपियों की फैजाबाद कोर्ट में पेशी, 3 दिन की न्यायिक हिरासत। कांग्रेस ने संसद में इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया, केसी वेणुगोपाल बोले, करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई, सरकार को जवाब देना होगा। राम मंदिर मामले को लेकर भड़के कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, बोले ट्रस्ट करें भंग, पीएम मोदी जवाब दें, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बोले, राजनीतिक जुड़ाव वाले लोगों को हटाकर संतों और धार्मिक लोगों को ट्रस्ट में शामिल होना चाहिए। विपक्ष लगातार हमलों के बीच बीजेपी ने कहा, मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच के बीच चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, लेकिन गोपाल राव ने इनकार किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर मचा सियासी घमासान, सीएम योगी बोले, राजनीतिक बयानबाजी बंद करें, आस्था का प्रतीक है अयोध्या। सीएम योगी बोले, जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं, विपक्ष को दी सबूत लाने की चुनौती। सीएम योगी बोले, सबूत है तो एसआईटी को दें, एसआईटी रिपोर्ट के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी। अखिलेश का बीजेपी परिवार, बोले अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड। एसआईटी का बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक 2022 से 2025 के ऑडिट में मिली गड़बड़ियां, 42 दिन में 70 बार चोरी के सबूत, 60 लाख बरामद। सूत्रों के मुताबिक मंदिर के सीसीटीवी में कई बार चोरी करते दिखा था मनीष यादव, जो कि टिन्नू का रिश्तेदार है। एसआईटी जांच में पाया, सीसीटीवी में देखने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ मनीष पर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, एफआईआर दर्ज हो गई, अब उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। ब्रजेश पाठक ने एसपी कांग्रेस पर तुष्टिकरण और टेरर फंडिंग का आरोप लगाते हुए बोले, बाबरी मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे का हिसाब दें अखिलेश। राम मंदिर विवाद पर शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाए सवाल, कहा पार्टी ने राम मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ और चांदी की ईंट दी पर रसीद नहीं। सीएम योगी नोएडा प्राधिकरण के नए प्रशासनिक भवन का मुख्यालय का आज उद्घाटन करेंगे, 390 करोड़ की लागत से बना है। राम मंदिर चढ़ावे पर चोरी पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन का बयान, बोले असली आरोपियों को बचाया जा रहा है। देवरिया में सीएम योगी ने 456 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कहा शिक्षा पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। नीतीश कुमार के आवास मिलने पहुंचे थे आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार से आरपी सिंह की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। बिहार में फिर से सियासी उठापटक, जेडीयू में आरसीपी सिंह की वापसी की अटकलें।
पटना में तेज प्रताप यादव के ड्राइवर पत्नी संकोच थाने मोतीलाल यादव के परिवार पर दर्ज कराई शिकायत। तेज प्रताप यादव के ड्राइवर अनिल यादव का आरोप का गवाही से रोकने के लिए पत्नी को दी गई धमकी। बिहार जेल प्रशासन में बड़ा फेरबदल, 30 उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों का तबादला। चेतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस का बड़ा दावा, प्रेमी चेतन सिंह बंगेतर सिया गोयल को हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस का दावा, आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉग, सिया के भाई से 10 घंटे पूछताछ। सिया के भाई साहिल ने कहा अगर सिया ने परिवार को बताया होता कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती तो परिवार शादी के लिए आगे नहीं बढ़ता। मुख्य आरोपित सिया की मां का बड़ा बयान आया, बोली अगर उनकी बेटी दोषी साबित हुई तो उसे भी किले से नीचे फेंककर मार दिया जाए। सीएम फडणवीस से मिले मृतक केतन के पिता, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे केतन हत्याकांड केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का फैसला लिया। भरत तिवारी की मां का सनसनीखेज आरोप, कहा भोजपुर एसपी ने कहा मीडिया में मत बोलो नहीं तो भरत की तरह मरवा देंगे। छतरपुर एसपी ऑफिस में भरत तिवारी के पोस्टर लगाए पहुंचा युवक, बोला कहीं मैं भी ना बन जाऊं भरत तिवारी, मेरा भी हो सकता है एनकाउंटर। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने की पूजा। केरलम के तुम्बुर रेलवे स्टेशन पर बने रेलवे प्लेटफॉर्म शेल्टर का शुभारंभ, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी शामिल। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कई एमओयू पर हस्ताक्षर। मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, आने वाले 24 घंटों में बिहार झारखंड के सभी इलाकों और उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में तेज होगी मानसूनी गतिविधियां, 29-30 जून के बीच उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो सकता है मानसून। सबसे पहले पूर्वी यूपी में देखने को मिलेगा मानसून का असर, बढ़ेगा बारिश का दायरा, तापमान में 5-8 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना। असम मेघालय अरुणाचल नागालैंड और सिक्किम समेत पूरे पूर्वोत्तर में मानसून की बारिश जारी, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून का विस्तार होगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिलहाल भारी बारिश की संभावना कम है, गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पहाड़ों में मैदान का बदला मिजाज, बागेश्वर में झमाझम बारिश हुई। अरुणाचल के चांगलांग जिले के टोबला मार्केट में भूस्खलन, रास्ता साफ करने में जुटा प्रशासन। भूस्खलन के कारण सिक्किम और सिलीगुड़ी के बीच चलने वाले वाहनों का रास्ता बदला, पूर्वोत्तर राज्य में लगातार बारिश की जगह जगह सड़क मार्ग पर रुकावट। पूर्वी दक्षिण भारत समेत मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना, अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने उत्तर बंगाल में भारी बारिश की आशंका जताई, इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की। शिमला में भीषण सड़क हादसा, धूल से भरी पिकअप बेकाबू होकर खाई में गिरी। हादसे में वाहन सवार सभी 6 लोगों की मौत, मौके पर पहुंचकर बचाव दल ने रेस्क्यू शुरू किया। झारखंड के गढ़वा के कस्तूरबा विद्यालय की 100 से अधिक छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार, अस्पताल में भर्ती। दूषित भोजन और गर्म पानी पीने से बिगड़ी तबीयत, प्रशासन और स्वास्थ्य टीम मौके पर, सभी का इलाज हो रहा है। फिरोजाबाद में खड़ी दो कार आग का गोला बन गई, जल गई, दमकल ने काबू पाया। बिहार के समस्तीपुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान भारी बवाल, तैनात पुलिस टीम पर लोगों ने की पत्थरबाजी। बिहार के जमुई में मोहर्रम जुलूस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, पुलिस ने एक को हिरासत में लिया। बिहार के अररिया में मोहर्रम जुलूस के दौरान दो अखाड़ों में हिंसक झड़प और पत्थरबाजी, पुलिस लाठीचार्ज से अफरा तफरी। वाराणसी में मोहर्रम जुलूस के दौरान बवाल, दो गुटों में विवाद के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उज्जैन में सरफरे आशिक ने युवती पर दिनदहाड़े चाकू से 14 वार किए, आरोपित गिरफ्तार। बांदा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से बाइक के पर कचोड़े, दो की मौत। अलवर में वाहन चेकिंग के दौरान एएसआई पर चालक से मारपीट का आरोप, वायरल वीडियो के बाद लाइन हाजिर। कोल्हापुर में गैस पाइपलाइन लीकेज के बाद भड़की आग, अफरा तफरी का माहौल। कल्याण में यूट्यूब नाजिल आई खान को लेकर विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बेंगलुरु में चलती वैन का पिछला दरवाजा खुलने से 5 स्कूली बच्चे नीचे गिर गए, हादसा टला। आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियन भारत को हराया, पहले T20 मुकाबला 34 रन से जीता। अभिषेक की 50 काम नहीं आई, 182 रन के टारगेट के पीछे 148 पर टीम इंडिया ऑल आउट। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इस मैच में डेब्यू का मौका नहीं मिला। भारतीय फील्डर्स ने बहुत गंदी फील्डिंग करी, शिवम दुबे ने आसान कैच छोड़ा, अभिषेक वर्मा ने भी एक आसान कैच गवाया। फिल्म तेरा मेरा नाता ने सिनेमाघरों में दस्तक दी, फैमिली ड्रामा 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ था। हिंदी की सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नव्या चक्रे भी सिनेमाघरों में रिलीज, फिल्म में तुषार कावले, क्षितिज पवार, प्रतीक्षा लीड रोल में। राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का टीजर रिलीज, 7 अगस्त को सिनेमाघरों में।
मशहूर वकील उज्जवल निकम का निभाया है किरदार, जिन्होंने 26/11 हमले में आरोपित अजमल कसाब को फांसी दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। राजकुमार ईरानी ने किया बड़ा ऐलान, 20 साल बाद फिर ला रहे मुन्ना भाई का तीसरा पार्ट।

0: बात करते हैं भारत अमेरिका के रिश्ते को लेकर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उसकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत दौरे पर आ सकते हैं, ये बड़ी खबर है। अगले साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। रूबियो ने कहा कि अगले साल की शुरुआत में भारत दौरे पर ट्रंप आ सकते हैं। INS न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे दौर में हैं, शानदार दौर में हैं। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने PM नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वो PM मोदी के प्रशंसक हैं और मोदी ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है।
1: I think it's going fantastic. I mean, it's very strong. We had a great meeting with the Prime Minister, the President did at the G7. We're hoping to finalize a trade deal. We're on the, you know, last inches of getting it done, and it's very positive. We look forward to re-engaging again in another Quad meeting very soon, which India and I look forward to returning myself before the end of the year and setting up a presidential visit in the early parts of next year.
0: प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, ये खबर अभी आ रही है मार्को रूबियो के हवाले से है कि अगले साल हो सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, बहुत जल्द डील भी साइन हो सकती है, कैसे देखते हैं?
2: देखिए हिमांशु, कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी, मैं उस समय वहां मौजूद था और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए थे कि वो जल्द ही भारत आने वाले हैं और उनके यात्रा को लेकर तैयारी और बातचीत चल रही है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब फरवरी 2025 के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में मिलने के लिए गए थे, तभी उनकी तरफ से एक निमंत्रण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था। इनफैक्ट ये माना जा रहा था कि क्वाड की शिखर बैठक के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं। हालांकि किन कारणों से वो मुलाकात है वो दौरा नहीं हो पाया, लेकिन अब फ्रांस के एवियों के अंदर हुई मुलाकात के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने को लेकर बड़ा संकेत अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया है। मार्को रूबियो ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो रिश्ता है, जो उनकी दोस्ती है, वो काफी मजबूत है और साथ ही भारत और अमेरिका के बीच की जो साझेदारी है वो भी बहुत मजबूत है और ये कोशिश हो रही है कि उस साझेदारी को, उस सहयोग को, उस रणनीतिक जो संबंध है उनको किस तरीके से और मजबूत किया जा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यदि भारत आते हैं तो ये निश्चित रूप से एक मौका होगा भारत और अमेरिका के बीच में अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने का। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जिस समय प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस में के एवियों में मुलाकात हुई थी, उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां हाउडी मोदी जैसे आयोजन का जिक्र किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजन का जिक्र करते हुए कहा था और ये दोहराया था कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में एक गर्मजोशी है, एक संबंधों के अंदर एक प्रगाढ़ता है जिस पर जिसे और ज्यादा मजबूत किया जाना चाहिए क्योंकि ये दुनिया के सबसे पुराने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच की साझेदारी है।
0: अच्छा प्रणय, एक बात बताइए, क्योंकि अब ये खबर अचानक आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत आ सकते हैं, इससे पहले बड़े लंबे वक्त से डील की बात चल रही थी, ट्रेड डील की बात चल रही, तो ट्रेड डील पर इस खबर का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या भारत को इससे फायदा हो सकता है या फिर अमेरिका के अपने रवैये को इससे पहले भी देखा है जब बात ट्रेड डील की होती है? तो
2: देखिए, ट्रेड डील को लेकर काफी उतार चढ़ाव बीते 16-17 महीनों के अंदर भारत और अमेरिका के संबंधों में देखने को मिले हैं। इनफैक्ट रेसिप्रोकल टैरिफ से अब हम इस मुहाने पर आ गए हैं कि हम ये कहने की स्थिति में हैं कि ये ट्रेड डील जल्दी ही हो सकती है। आपने भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयानों को भी सुना होगा, आपने अमेरिकी जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है जेमिसन एम्बेसडर जेमिसन ग्रेयर उनको भी सुना, आपने अमेरिकी जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो उनको भी सुना, जो ये लगातार कह रहे हैं कि बहुत करीब है हम उस ट्रेड डील को फाइनलाइज करने के लिए, बस एक आंकड़ा तय होना है। अब वो कब होता है, किस तरीके से होता है, इसको लेकर जो लास्ट इंच के जो प्रयास हैं वो इस समय चल रहे हैं। निश्चित रूप से ये भारत के लिए फायदा होगा क्योंकि अमेरिका भारत के लिए एक बड़ा साझेदार है व्यापार और कारोबार की दृष्टि से। अगर हम देश की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा निर्यात केंद्र है, यानी भारत सबसे ज्यादा जो उत्पादों का निर्यात करता है वो अमेरिका को करता है। हमारे लिए डॉलर की आय या विदेशी मुद्रा की आय का सबसे बड़ा स्रोत अमेरिका है। निश्चित रूप से
0: तो हम देशवासियों को तो प्रणय यही उम्मीद है कि जो ट्रंप अभी तक अप्रत्याशित रहे हैं, अब इस खबर के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते भी मजबूत हों और भारत को ट्रेड डील में फायदा भी हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं और ये बड़ी खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में खुलेआम आतंकी घूम रहे हैं, सही सुना आपने। एक बार फिर इसका सबूत दुनिया के सामने आया जहां पाकिस्तान में ये देखिए खुलेआम आतंकी घूम रहे हैं। अब आप कहेंगे ये हैं कहां आतंकी, तो ये समझिए कि पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर, जिनको रावलपिंडी एक्सप्रेस भी कहा जाता है, उनके भाई के जनाजे में बहुत से आतंकी शामिल हुए। खूंखार आतंकी इनाम रहमान लश्कर के कई आतंकी जनाजे में शामिल हुए। प्रतिबंधित आतंकी संगठन जिसको लश्कर ए तैयबा के नाम से जानते हैं एलईटी, और उसका राजनीतिक मोर्चा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी पीएमएमएल, इनके नेताओं को पूर्व पाकिस्तान तीन तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के बड़े भाई यानी शाहिद अख्तर की नमाज ए जनाजे में देखा गया। इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में आयोजित किया गया था। और इसके अलावा इनामुर रहमान आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के साथ देखा गया। और समझिए इस तस्वीर को, इस खबर को, और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में खुलेआम आतंकियों का घूमना है, वो भी बिना किसी बंदिश के। सिया चेतन में प्रेम संबंध थे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं। सिया ने प्लान बनाया, चेतन ने साथ दिया और केतन को खाई में धकेलकर मार डाला। अब पुलिस कड़ियों को जोड़ रही है और इसी बीच केतन अग्रवाल के विग यानी पैच वाली थ्योरी भी सामने आई है कि केतन के बाल कम थे, पैच विग लगाता था। सिया को यह पसंद नहीं था, लेकिन क्या विग लगाना इतनी बड़ी वजह बन सकती है कि कोई किसी की हत्या कर दे?
3: सिया ने केतन को क्यों मारा? केतन के मारने का प्लान सिया का था या उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी का? केतन अग्रवाल नकली बाल यानी विग लगाता था, क्या इस वजह से सिया इतनी चिढ़ गई कि अपने होने वाले पति को ही मार डाला? चेतन और सिया ने वारदात से पहले व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री क्यों मिटाई? इस हत्याकांड में सिया के भाई का क्या रोल है? ये वो सवाल है जिनकी तलाश पुणे पुलिस की 6 टीमें कर रही हैं। केतन हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब जानकारी ये सामने आई कि केतन अग्रवाल के बाल कम थे, इसीलिए वो पैच विग लगाता था। जब सिया को ये बात मालूम चली तो वो चिढ़ गई, लेकिन केतन का परिवार कह रहा है कि सिया और उसके परिवार वालों को विग वाली बात पहले से पता थी।
4: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था।
3: क्या विग लगाने की वजह से किसी की हत्या हो सकती है? क्या ये इतनी बड़ी वजह है कि इसके लिए कोई अपने मंगेतर को मार डाले? इस बीच केस की जांच कर रही पुणे पुलिस ने खुलासा किया है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन सिया का परिवार कह रहा है कि हमने तो सिया की सहमति के बाद ही रिश्ता तय किया था, जबरदस्ती का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।
5: और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
6: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
5: हाँ।
6: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
5: हाँ। तो हाँ।
6: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई
5: हाँ।
6: बात नहीं।
5: हाँ।
6: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना, और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
3: पुणे पुलिस ने इस मामले में सिया के भाई से भी पूछताछ की। करीब 10 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। इस दौरान खुलासा ये हुआ कि सिया का भाई और चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते थे, दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के मैदान पर ही पहली बार सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई थी। दिवाली की पार्टी में सिया और चेतन दोबारा मिले, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हुई और बात आगे बढ़ गई।
0: यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
8: जस्ट व्हाट यू नीड फॉर समर इज वेटिंग एट टारगेट। Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
9: As world soccer hits the big stage, Fanatic Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
7: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: भारत सरकार के मुताबिक ये पासपोर्ट आपके हिंदुस्तानी नागरिक होने की पहचान नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान या यात्रा दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज ना होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं।
1: अब एक डॉक्यूमेंट को इसलिए दिया जाता है आपको कि हम भारत के नागरिक हैं, और अगर आप पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए पढ़ेंगे तो वो ये कह रहा है कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। फिर क्या मतलब इसका?
2: क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है?
0: हालांकि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं।
3: अ पासपोर्ट इज नॉट मेयरली अ बुकलेट ऑफ पेजेस, इट इज अ पावरफुल टूल, अ वाइटल टूल ऑफ इकोनॉमिक मोबिलिटी, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आई वुड इवन से ऑफ नेशनल आइडेंटिटी।
0: संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत नागरिकता तय करने के लिए एनआरसी में नाम होना जरूरी है। वैसे तो 1951 में एनआरसी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन नागरिकता नियम 2003 में एनआरसी एनपीआर की प्रक्रिया का संशोधन किया गया। फिर 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A जोड़ी गई, जिसमें एनआरसी बनाना अनिवार्य किया गया। एनआरसी में शामिल होने के लिए सरकार ने जो शर्तें तय की थी उसे पूरा करना जरूरी था। विपक्ष को शक है कि सरकार सियासी वजहों से ऐसे लोगों के नाम एनआरसी में काट सकती है जो उसके समर्थक नहीं है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

अगले साल शुरुआत में भारत के दौरे पर आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। विदेश मंत्री रूबियो बोले, भारत अहम साझेदार, जल्द होगी डील साइन। तीन दिन के सेशेल्स दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय करेंगे वार्ता। ईरान अमेरिका में पीस डील के बाद पहली बार टूटा सीज फायर। हॉर्मुज में कार्गो शिप पर हमले का अमेरिका ने लिया बदला। जेडी वेंस बोले, हिंसा का जवाब हिंसा से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की जेल। अब तक 80 लाख रुपए बरामद। बाबा बागेश्वर बोले, चोरों को भगवान देगा महादंड। और केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपित सिया के भाई साहिल से 10 घंटे पूछताछ। चेतन सिया ने डिलीट किए चैट हिस्ट्री, विक पैच थ्योरी की एंट्री।

0: हमारे प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, सीसीटीवी के फुटेज गायब।
1: और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं।
2: पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो।

अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में ताबड़तोड़ खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के हवाले से कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत से खुलासे पर हम बात करेंगे, एक एक अपडेट आपको दिखाएंगे, लेकिन अहम सवाल है कि आखिर असल गुनहगार है कौन। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद 8 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं और कोर्ट उन्हें सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेज भी चुका है। इनमें से 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी हो गई है, लेकिन सवालों का सिलसिला तो जारी है कि कैसे इस पूरे मामले में जो ट्रस्ट था, जिसके महासचिव चंपत राय थे, ट्रस्टी अनिल मिश्रा थे, वो क्यों मौन बना रहा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सवालों की लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है। अब तक चढ़ावे की गिनती और उसकी देखरेख में जुटे कर्मचारियों और संबंधित लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन हर कोई यह जानना चाह रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर गबन हुआ और ट्रस्ट को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। या फिर सवाल यह भी है कि कहीं ट्रस्ट के लोग जानबूझकर अनजान तो नहीं बने।

0: बात निकली है तो दूर तलक जा रही है। चोरी पकड़ी गई तो खुलासे पर खुलासे होते जा रहे हैं। पर्दे में छिपे राज बेपर्दा होते जा रहे हैं। चोरों की कलई खुलती जा रही है। चढ़ावा चोरी का आरोप उन पर है जो राम भक्तों से मिलने वाले चढ़ावे के रखवाले बने बैठे थे। सब कुछ सेट था। चोरी कैसे करनी है, कैसे ठिकाने लगाना है, कैसे राम भक्तों की आंखों में धूल झोंकना है, सब कुछ। तभी तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार आस्था पर चोट की गई। पहली एफआईआर के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासे के मुताबिक सामने आया है कि चढ़ावे में 70 बार चोरी या गबन की गई। ये खुलासा 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक के सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद हुआ है। बात यहीं तक नहीं रुकती। मामले की जांच कर रही एसआईटी के हवाले से सूत्रों ने जानकारी दी है कि पिछले 3 साल में ऑडिट में कई कमियां मिली हैं। जांच में हुंडियों की संख्या और अभिलेखों में कथित तौर पर अंतर पाया गया। ये भी सामने आया है कि पर्याप्त सीसीटीवी कवरेज नहीं था, इस वजह से निगरानी प्रभावित हुई। अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था में भारी कमियां थीं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बेहद कमजोर पाई गई। खुलासा इस बात का भी हुआ है कि एसबीआई और ट्रस्ट के बीच सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में चढ़ावे की गिनती के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार की गई थी, लेकिन उसका ढंग से पालन नहीं किया गया। लगातार उल्लंघन होता रहा। चढ़ावा की गिनती में एसओपी को अनदेखा किया जाता रहा। खुलासा ये भी हुआ है कि ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि फिर ट्रस्ट ने इस पर चुप्पी क्यों साधे रखी। क्या मामले को दबाने की कोशिश की गई या सीधे तौर पर चोरी में शामिल आरोपियों को बचाने की कोशिश थी। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनमें जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष कुमार यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामाशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है।
1: 8 एक्यूज थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं, अलग अलग अमाउंट के रूप में। उसमें सुभाष जो एक एक्यूज्ड हैं, उनके पास से बरामद नहीं हुआ है, क्योंकि वो षड्यंत्र में शामिल थे, इसलिए उनके पास से नहीं, क्योंकि मतलब घटना में वो भी इन्वॉल्व थे। सबके पास से 79,85,000 रुपए।
0: सवाल उठे तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। सदस्य अनिल मिश्रा को भी पद छोड़ना पड़ा।
2: 2 ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पर नहीं है, इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है। ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है, प्रशासन का अनुभव है।
0: जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से रामाशंकर यादव और फुटिन्नू यादव मास्टरमाइंड माना जा रहा है। रामाशंकर उर्फ टिन्नू चंपत राय का करीबी है। चंपत राय ने ही टिन्नू को चढ़ावे की गिनती का काम सौंपा था। उसी के पास काउंटिंग रूम और दान पात्रों की चाबी रहती थी। दूसरा गिरफ्तार आरोपी मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है, जिसने कई बार चोरी की। उसके घर से बरामदगी भी हुई है। अब ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर उठते सवालों को भी समझिए। गिरफ्तार अनुकल्प मिश्रा अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है। अनिल मिश्रा ने अनुकल्प को नौकरी दिलाई, फिर अनुकल्प ने पैरवी कर अपने बहनोई लवकुश मिश्रा की नौकरी लगवाई। मतलब आरोपियों का सीधे सीधे चंपत राय और अनिल मिश्रा से रिश्ता है, बावजूद इसके एफआईआर में दोनों का नाम नहीं। लिहाजा दोनों पर गंभीर सवाल उठे हैं। इतने लंबे समय तक चुप्पी को लेकर भी सवालिया निशान लगे हैं। यूपी सरकार कह रही है कि एफआईआर दर्ज कर जांच जारी है।
3: जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया।
0: 8 गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उधर इस मामले को लेकर यूपी की सियासत में शोर है। सिमर चावला और आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार, अयोध्या आज तक।
4: अब आप समझिए कि राम भक्त जो कैश या ज्वेलरी चढ़ावा चढ़ाते थे उन सबसे चोरी की जा रही थी। दान पेटी से जेवरात भी गायब हो रहे थे। अब खुलासा हुआ है कि प्रभु राम की बाली झुमकी नथ, बाल रूप रामलला के कंगन, पैजनिया जैसे जेवरात भी चोरी कर लिए गए। सबसे अहम बात की चोरी पहले करते, बाद में नोटों की गिनती या दान पेटी में मिले जेवरात की लिखा पड़ी होती थी। अब तमाम चोरी का शक गहराया तो नोट गिनने वाले कैमरे में कुछ हिडन कैमरे लगवाए गए। अब उन कैमरों की जांच में अंदरूनी सच सबके सामने आ गया। हम बताते हैं आपको। देखिए, पता चला है कि नोट गिनने की प्रक्रिया में लगे कर्मचारी सामने दिख रहे सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते थे, यानी काउंटिंग में लगे कर्मचारियों की मिली भगत थी, हिडन कैमरे को कवर कर लेते थे और नोट चोरी करते। दूसरा तरीका क्या, हर गड्डी में एक्स्ट्रा नोट रखते, सिर्फ गड्डी की गिनती होती, वाउचर बनता रहता था और वो आगे पहुंचाते थे। अब आप समझिए, नोट चोरी कर कपड़ों में छुपा लेते थे, मतलब सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरे के सामने ऐसे ओढ़ लेके खड़े हो गए कि सीसीटीवी कैमरे को ब्लैंक कर दिया और यहां से गड्डी चुपचाप अपनी जेब में डाल दी, ये होता था। और दूसरा, हिडन कैमरे को कवर कर लेते थे, ये हमने आपको बताया कि कैसे हिडन कैमरे को कवर करना है। दूसरा, गड्डियों की गिनती होती, वाउचर बनता, बैंक में जमा कराते वक्त एक्स्ट्रा नोट रखते थे, मतलब काउंटिंग कर ली, उसमें एक्स्ट्रा नोट रख लिए, फिर वो एक्स्ट्रा नोट निकाल लिए और वो घालमेल कर दिया। संतोष कुमार शर्मा हमेशा इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, एक एक जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई दे रहे हैं। संतोष, अब तक क्या जांच में सामने आया है जो चौंकाने वाले खुलासे हैं और श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, क्या खुलासा हुआ अभी तक?
5: देखिए, इस पूरे मामले में 8 लोग गिरफ्तार किए गए और इसमें इनके पास से 89,85,493 रुपए बरामद हुए। सबसे बड़ी बात कि इनके पास से जो रिकवरी हुई है वो पैसा माना जा रहा है जो राम मंदिर में चढ़ावे से इनके द्वारा चोरी किया गया था। यानी कि चोरी तो की गई इनके द्वारा और लगभग 80 लाख रुपए बरामद हुआ। जो हमारे पास जानकारी है कि करीब 5 लाख रुपए ये लोग खर्च कर चुके हैं। अच्छा। क्योंकि चोरी होने के बाद से इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा, तो इन लोगों ने अपने पैसों को, कुछ लोगों ने खर्चा किया, लगभग 85 लाख रुपए का हिसाब मिला है जो इन सभी जो 6 आरोपी हैं, जिनके 7 आरोपी हैं जिनको ये जेल भेजा गया है और एक आरोपी को छोड़कर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के पास से कोई रिकवरी नहीं बताई गई, लेकिन वो बैंक कर्मी थे, वो इस षड्यंत्र में शामिल थे, इसलिए उनको जेल भेजा गया। तो इतना जरूर है कि अब अयोध्या पुलिस, राम जन्मभूमि थाने की पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रिकवरी हो चुकी है। अब रिकवरी के बाद जिसकी बात हो रही है कि भगवान राम को चढ़ाए जाने वाले पैजनिया है, रामलला के रूप में जो लोग पैजनिया चढ़ाते थे, नथ चढ़ाते थे, कंगन चढ़ाते थे, मतलब श्रद्धा के हिसाब से, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम लला के रूप में है, छोटे बच्चे के रूप में है, तो छोटे बच्चे जो जो आभूषण पहनते थे लोग श्रद्धा में चढ़ा देते थे और उन आभूषणों का भी कोई हिसाब किताब होने से पहले ही छोटे जेवरात को चोरी करने की भी बात आ रही है और इसी को लेकर अब इन सभी जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए सोमवार तक इनको।
4: मतलब ये तय है कि अभी तो और भी कई खुलासे होने बाकी हैं और भी कई सच्चाई आएगी, पता चलेगा कि कैसे रामदान की लूट हुई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद हर कोई कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को महादंड मिलेगा।
6: हमें खबर मिली कि FIR हुई है, अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है और पकड़े जाएंगे।
7: रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि सात परिवार सहित नाश हुआ, करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा, महादंड पाएगा, ये तो पक्का है, महादंड पाएगा, उसे कोई छोड़ नहीं सकता।
4: अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल गया, चुनावों से पहले विपक्ष के लिए परफेक्ट मौका। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी भी चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रही है। विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले अब तक बचे हुए क्यों हैं।
8: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा,
9: भगवान राम के भक्तों की आस्था पर चोट हुई है। चढ़ावे की चोरी की गई, जांच बिठा दी गई है, गिरफ्तारियां हो गई, आठ आरोपित पकड़े भी गए हैं और सरकार कठोर कार्रवाई का वादा दोहरा रही है। फिर भी विपक्ष हमले का मौका नहीं चूक रहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी कलंगा कांड अयोध्या में ही होगा, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अयोध्या में महा डकैती हुई। एक दिन पहले यानी 26 जून को केजरीवाल ने रामलीला के दर्शन किए, दर्शन के बाद चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरा।
10: और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं, जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महा डकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। जाहिर तौर पे वो अपने खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे नहीं, तो वो अपने को पूरी तरह से अपने को बचाने में लगे हुए हैं।
9: केजरीवाल ने पूछा कि चोरी का पैसा कहां गया। चंदा चोरी करने वालों को केजरीवाल ने राक्षस बताते हुए कहा कि उन सभी को फांसी होनी चाहिए।
10: फर्जी एफआईआर, फर्जी एसआईटी, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का कहना है कि उन्हें तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक इन चोरी करने वाले लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी।
9: सवाल आस्था और विश्वास का है, लेकिन चढ़ावे की चोरी की वारदात से राम भक्त आहत हैं। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष को मानो ब्रह्मास्त्र मिल गया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बीजेपी को घेरा, आरोप लगाया कि वो क्या करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी, लालच ने मार दिया है जिसकी आंख का पानी। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी नैतिकता की दलील को खारिज करते हुए सवाल उठा रही है।
11: वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं जिनका ट्रस्ट से संबंध है, चढ़ावे के बारे में भी जानते थे, वहां के आर्थिक हालात के बारे में जानते थे। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि राज्य सरकार उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है जो सही मानों में गुनहगार थे। नैतिकता का तकाजा नहीं है, ये शहीद होना चाहते हैं लेकिन शहीद होने जैसी स्थिति नहीं है। ये तो विशुद्ध रूप से करप्शन में शामिल हैं और उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो एक अपराधी के साथ होता
9: है। उधर कांग्रेस ने इस मामले को संसद के मानसून सत्र के दौरान सदन में उठाने का मन बना लिया। अयोध्या की लड़ाई अब दिल्ली तक लड़ी जाने की तैयारी है। प्रियंका गांधी वाड्रा पूछ रही हैं कि क्या निचले स्तर के कर्मचारी अकेले ही सीसीटीवी कैमरे बंद कर हजारों करोड़ रुपए के चढ़ावे का गबन कर सकते हैं या इसमें ताकतवर लोगों की मिलीभगत है। पूरा विपक्ष एक आवाज में कह रहा है कि इस मामले को छुपाने और लीपापोती करने की बजाय इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जानी चाहिए। केजरीवाल ने सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें आईना दिखाया तो समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए।
12: अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखे इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है कि उनकी डकैती को पूरी तरह रोकने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है, इसलिए छटपटाहट है। उसी छटपटाहट में जब इनको कुछ नहीं मिला तो जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राम भक्तों पर आक्षेप कर रहे हैं, अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं।
9: चढ़ावा चोरी के मामले की जारी तफ्तीश के बीच सियासत तेज है, लेकिन सवाल एक है कि आखिर बड़ी मछलियां जाल में कब फंसेंगी? मंदिर ट्रस्ट के बड़े चेहरों पर एक्शन कब होगा? संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
4: बड़ी मछलियां जाल में कब फंसेंगी, सब यही जानना चाहते हैं। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
14: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
15: Bring on the off-road. Bring home a new Honda. With a great deal on your favorite Honda vehicles, conquer trails and back roads in cars built for exploring. With the rugged Honda Pilot, Ridgeline, CRV, and Passport, the road might stop, but you're not done. All from the 2025 Kelley Blue Book Best Value brand.
16: Based on 2025 Consumer Choice Awards from Kelley Blue Book, visit kbb.com for more information.
17: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
18: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
19: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices.

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
2: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
3: Lee looks for someone, finds the right someone.
2: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
4: Because people who all watch games, they hear the voice.
2: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
5: आसमान में उड़ने का सपना हर आम इंसान देखता है। छुट्टियों और लॉन्ग वीकेंड्स की ट्रिप के लिए लोग अपने परिवार के साथ फ्लाइट्स की बुकिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हवाई सफर की प्लानिंग आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है। दरअसल दुनिया भर में जेट फ्यूल का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मैकेंजी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की किल्लत की वजह से एयरलाइंस की लागत आसमान छू रही है। इसका सीधा नतीजा ये होगा कि आने वाले दिनों में हवाई किराया 25% तक महंगा हो सकता है। हवाई सफर के इस बजट बिगड़ने के पीछे की पूरी कहानी डेटा से अगर समझें, तो किसी भी एयरलाइन के कुल ऑपरेटिंग खर्च में करीब 30% हिस्सा अकेले ईंधन का होता है, और इस बार ग्लोबल रिफाइनरियों में उत्पादन की कमी और जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से फ्यूल सप्लाई चेन टूट गई है। ऐसे में दुनिया के 40% जेट फ्यूल सप्लाई करने वाले खाड़ी देश और एशियाई निर्यातकों पर छाया संकट हालात को बिगाड़ रहा है। इस पूरे संकट के पीछे कच्चे तेल की कीमतों के साथ एक टेक्निकल खेल भी काम कर रहा है। कच्चे तेल और उसे रिफाइन होकर बनने वाले ATF की कीमत के बीच के अंतर को क्रैक स्प्रेड कहते हैं। पहले ये क्रैक स्प्रेड $20 प्रति बैरल रहता था, जो 2026 में औसतन $50 प्रति बैरल के पार जा सकता है। फिलहाल ग्लोबल रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं, जिससे ATF का नया प्रोडक्शन बढ़ाना नामुमकिन हो गया है। अभी डिमांड को पूरा करने के लिए पुराने स्टॉक का सहारा लिया जा रहा है, जो तेजी से खत्म होने की कगार पर है। फ्यूल की लागत दोगुनी होने की स्थिति में एयरलाइंस इस पूरे बोझ को मुसाफिरों पर डालने की तैयारी में है। आम जनता को इस महंगे सफर से राहत कब मिलेगी, इसे लेकर के भी स्थिति बहुत ज्यादा साफ नहीं है। हालांकि इस संकट के बीच कुछ उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अगर तेल टैंकरों की आवाजाही रफ्तार पकड़ती है तो कीमतों में फौरी कमी आ सकती है। ये राहत बहुत छोटे वक्त के लिए होगी, क्योंकि दुनिया के तमाम देश अपना रणनीतिक भंडार दोबारा भरने में जुटे हैं। इस रीस्टॉकिंग की वजह से सप्लाई सामान्य होने के बाद भी कई महीनों तक हवाई ईंधन के दाम ऊंचे बने रहेंगे। ऐसे में राहत की उम्मीद कम है और लंबे समय तक महंगा सफर ही आम लोगों की किस्मत बनने की आशंका है। जाहिर है कि एयरलाइंस के बढ़ते खर्च का बोझ सीधे मिडिल क्लास के बजट पर आने वाला है, जिससे हवाई सफर का मजा फीका होना तय है। आज तक ब्यूरो।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं?

स्मार्ट तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: अगले साल शुरुआत में भारत के दौरे पर आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। विदेश मंत्री रूबियो बोले, भारत अहम साझेदार, जल्द होगी डील साइन। तीन दिन के सेशेल्स दौरे पर रवाना पीएम मोदी, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ईरान अमेरिका में पीस डील के बाद पहली बार टूटा सीज फायर। हॉर्मुज में कार्गो शिप पर हमले का अमेरिका ने लिया बदला। वेज बोले, हिंसा का जवाब हिंसा से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की जेल। अब तक 80 लाख रुपए बरामद। बाबा बागेश्वर बोले, चोरों को भगवान देगा महादंड। और केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपित सिया के भाई साहिल से 10 घंटे पूछताछ। चेतन सिया ने डिलीट किए चैट हिस्ट्री, विग पैच थ्योरी की एंट्री।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एक्शन शुरू हो गया है। गिरफ्तार किए गए आठों आरोपी जेल भेज दिए गए हैं। इस बीच ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्र पर सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार चंपत राय और अनिल मिश्रा ने मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ट्रस्ट के एक और सदस्य गोपाल राव ने दोनों के इस्तीफे की खबरों का खंडन कर दिया है। सवाल है कि चढ़ावा मामले के इस में किस किस पर गाज गिरेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दोहराया कि इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष को राम भक्तों की आस्था पर राजनीति नहीं करने की चेतावनी दी। उधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा मामले के बड़े आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। सवाल यह भी है कि क्या ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर FIR होगी। सूत्रों के अनुसार SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट में ट्रस्ट के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए गए। ऐसे में क्या वाकई चंपत नहीं हो सकेगा कोई चढ़ावा चोर? यही है आज का हल्ला बोल। पहले ये रिपोर्ट।
1: जिन्होंने प्रभु राम पर करोड़ों लोगों की आस्था को अपने लालच की तिजोरी की चाबी समझ लिया था या आंख मूंद कर भ्रष्टाचार होने दिया था, उन तक आज पहुंच चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अलावा ट्रस्ट मेंबर अनिल मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा है।
2: हालांकि ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव का दावा है कि अभी दोनों का इस्तीफा नहीं हुआ है,
1: लेकिन SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से सामने आ रही जानकारियां बता रही हैं कि अभी जांच के कई सिरे खुलने बाकी हैं। सूत्रों के मुताबिक SIT की रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की वजह से दान मैनेजमेंट सिस्टम बिगड़ा। मंदिर ट्रस्ट की ओर से दर्ज कराई गई FIR के बाद चंपत राय के ड्राइवर रह चुके रमाशंकर यादव और उसके अलावा अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, कर्णेश पांडे, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा और मनीष यादव की गिरफ्तारी हुई है। इन कार्रवाइयों के बाद योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा है कि दोषी पक्षे नहीं जाएंगे, लेकिन राम की आस्था पर राजनीति ना हो।
0: ये एक ऐसा मामला है जो सबको आहत कर रहा है और ये एक ऐसा मामला है जिसमें जब तक पूरी तरीके से सारे दोषी सामने नहीं आएंगे तब तक न्याय उस भरोसे के साथ नहीं होगा जिसको छला गया है। इसीलिए हमने आज हल्ला बोल में निर्णय किया कि ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ें इस चर्चा में जिन सबका योगदान समाज को जोड़ने के लिए कभी ना कभी हुआ है, किसी न किसी रूप में हुआ है। संत समाज से लोग हमारे साथ हैं, VHP से हमारे साथ हैं और हम एक एक कर सबसे आपका परिचय करा दें। कुछ और लोग भी हमारे साथ अब जुड़ेंगे। नवल किशोर दास जी हमारे साथ, प्रवक्ता अखाड़ा परिषद की तरफ से, प्रवेश चौधरी प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कंप्यूटर बाबा हमारे साथ जुड़े हैं महामंडलेश्वर दिगंबर अखाड़ा के, और महंत सीताराम दास प्रवक्ता निर्मोही अखाड़ा के हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं। एक एक कर मैं सबसे पहले तो महंत सीताराम दास जी, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूं, क्योंकि जिस आंदोलन में लाठियां खाई इन संतों ने, आज ऐसा लगता है कि उनमें से रुपए चुरा कर उस दान पेटी में से उन सभी लाठियों पर जो आपकी मरहम लगा था राम मंदिर निर्माण के साथ, आज फिर लगता है जैसे कि उन जख्मों को फिर किसी ने खुरच दिया।
3: श्वेता जी, ऐसा है कि मैं एक बात बार बार कह रहा हूं कि ये चोरी की जो योजना है ना, वो आज से नहीं, जिस दिन से ट्रस्ट बनना शुरू हुआ था उसी दिन से इन लोगों ने चोरी की योजना बना ली थी कि हम ऐसे ऐसे ऐसे ट्रस्ट को चलाना है, ऐसे ऐसे चोरी करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को रखना है जो हमारी चोरी में लेकिन किंतु परंतु ना करें, कोई इंटरफेयर ना करे, हम आराम से चोरी करते रहे, ऐसे लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में रखा। आप अच्छी पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने जजमेंट को भी पढ़ा होगा, निश्चय ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एकमात्र निर्मोही अखाड़े का नाम लिया गया है कि निर्मोही अखाड़े का संघर्ष भुलाया नहीं जा सकता है, अतः निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में उचित और पर्याप्त मात्रा में सम्मानित स्थान दिया जाए। ये शब्द हैं, पैरा नंबर 804 और 805 आप पढ़िएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि चंपत राय जी एंड कंपनी ने निर्मोही अखाड़े से इतना भी नहीं समझा कि निर्मोही अखाड़े के संतों से, सरपंच से, उप सरपंच से, पंचों से संपर्क करके कहें कि आप हमें प्रस्ताव दीजिए कि हमें किसको रखना है। तो मूल बात यह है कि निर्मोही अखाड़े को स्थान ही नहीं मिला। ये तो ये कहिए, अभी आप कह रही थी जो कि हमें प्रसन्नता थी कि भगवान अपने मंदिर पर विराजमान हो रहे हैं, भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है, इसलिए हमें कोई अब प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कोई संघर्ष नहीं करना है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट दोबारा नहीं गए, ये रहा कि चलो भगवान बैठ जाए। लेकिन यदि हमें पता होता कि ये सदले चोर हैं और ये चोरी करने के लिए ट्रस्ट बना है और ये सब चोर ट्रस्ट में बैठ रहे हैं, तो हम जरूर सुप्रीम कोर्ट गए होते और आने वाले समय में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट कंटेम का मुकदमा भी इन पर करेंगे।
4: ताकि ट्रस्ट की संरचना बदले।
3: नहीं, ट्रस्ट की संरचना तो बदलनी ही चाहिए, ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से बना ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उस हिसाब से बनाया ही नहीं है, ये तो पूरी तरह से चोर ट्रस्ट बनाया गया है। ट्रस्ट नहीं है तो चोर ट्रस्ट है, ये सेवा करने वाला ट्रस्ट नहीं है, ये तो चोरी करने वाला ट्रस्ट है। छावनी वाले महाराज जी जैसे महापुरुष को रखा, अध्यक्ष बनाया, जो स्वयं बीमार हैं, जो कुछ बोल नहीं सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, किसी के ऊपर कमांड नहीं रख सकते, उन्हें अध्यक्ष बनाया इन्होंने। आप यहीं से विचार करिए, गोविंद देव गिरी जो इनका चेला है, कुछ बोलता ही नहीं है, वो तो इन्हीं की प्रशंसा करने वाला भाट है, तो ऐसे व्यक्ति को कोषाध्यक्ष बना दिया गया। चंपत राय शुरू से चोर है, संतोष दुबे कह रहे हैं कि जब कार सेवक पुरम में जब ईंटें आती थी उस समय से चंपत राय चोरी कर रहा है, तो चंपत राय पुराना चोर है, ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट में महासचिव बना दिया गया। और जितने बाकी की मंडली रखी गई वो सब ऐसे जो मौन रहने वाले हैं, ये लोग केवल कागज देते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी आंखों देखी बात कह रहा हूं, ये लोग रजिस्टर भेज देते हैं कि महाराज जी साइन कर दीजिए, महाराज वो जितने सदस्य हैं वो बिना देखे पढ़े और महाराज आंख बंद करके साइन कर देते हैं बस। तो ऐसे लोग इन्हें चाहिए थे, हम कह रहे हैं यदि ये चाहते हैं कि ट्रस्ट में योग्य लोग रहें, जो संघर्ष किया है उनके अनुगत रहें, तो ट्रस्ट में निर्मोही
4: ठीक है
3: अखाड़े के
4: परवेश परवेश चौधरी जी, चूंकि
3: को पर्याप्त मात्रा में रखते हैं
4: चूंकि
3: तो
4: चूंकि सारे आरोपों, चाहे वो राजनीति की तरफ से लगे, चाहे भक्तों की तरफ से लगे, चाहे संतों की तरफ से लगे, नहीं नहीं मैं वही संतों भी कहा मैंने जी,
3: राजनेताओं से प्रार्थना
4: महन जी, मैंने मैंने कहा कि चाहे राजनीति से लगे, चाहे संत समाज से लगे, चाहे भक्तों की तरफ से लगे, जवाब देना पड़ेगा और ट्रस्ट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ट्रस्ट लोगों का रहे उनमें। परवेश चौधरी जी, अभी देखिए अभी आरोप लग रहे हैं, हम अपनी तरफ से किसी निष्कर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब अभी तो SIT की तरफ से ये चीजें अब एक एक करके आ रही हैं कि ये तो कंप्लेन पहले जा चुकी थी, वो CCTV की तस्वीरें सामने थी, लेकिन उस समय उस पर एक्शन न होना भी अपने आप में भरोसा तोड़ने वाली बात थी।
5: नहीं श्वेता जी, पूज्य महंत जी ने तो जो भी बातें कही ठीक है वो अलग बातें हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने कब ये कहा कि जो आरोपी है उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, या विश्व हिंदू परिषद ने कभी क्या इस पूरे विषय में कोई लीपापोती करने का काम किया? विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से कहा कि जिसने भी कोई ये महापाप किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, जिसने में सब लोग आते हैं, जिसमें में सारे ही लोगों को शामिल किया जाता है ना, तो जो भी सच, जो भी अपराध करता है, जो भी महापाप,
4: मान जी वो बात पूरी कर लेते हैं, फिर एक एक करके
5: तरीके से
4: जी।
5: उसको उसके साथ वैसा ही दंड देना चाहिए जैसा कि दंड संविधान सम्मत है, यह विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से ही कहा है। ठीक है, अब बात रही निर्मोही अखाड़े की, तो निर्मोही अखाड़े के एक संत उसमें है, उनकी उनमें निर्मोही अखाड़े का क्या योगदान है श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए, इसको कोई नकार नहीं सकता है। ठीक है, हम उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, लेकिन पूज्य पूज्य महंत जी को आप देखिए कि क्या ये संत का स्वभाव है क्या? श्वेता जी, ये क्या संत का स्वभाव है क्या? बीच बीच में इंटरप्ट करना, बीच बीच में करना, लेकिन हमारे लिए तो ये पूजनीय है, इनकी एक एक बात हमारे लिए
4: अच्छा,
5: हमारे लिए आशीर्वाद है,
4: मान जी मान जी,
5: हमारे लिए आशीर्वाद है, जो भी वर्तमान में बोले, जो मर्जी बोले, हम उसको सहज स्वीकार करते हैं, परंतु हम तो इतना
4: महन जी नहीं, देखिए परवेश जी खाली एक चीज का आप स्पष्टीकरण दे दीजिए, क्योंकि महन जी कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है निर्मोही समाज की तरफ से, निर्मोही अखाड़े की तरफ से कोई भी नहीं है उस ट्रस्ट में, हाँ या ना? आप कह रहे हैं
5: नहीं है, हाँ उसमें है, उनसे पूछिए, महंत जी से बता देंगे, वो उसमें है, उसके अंदर
3: नहीं है।
5: पूज्य महंत जी से बताइए, पूज्य महंत जी को दिक्कत यह है कि मुझे क्यों नहीं रखा,
3: प्रवेश चौधरी जी सुनिए मेरी बात को,
5: अरे
3: मुझे ये
5: पूज्य
3: दिक्कत नहीं है।
5: पूज्य सीताराम जी, पूज्य
4: कानून
5: सीताराम जी,
4: प्रवेश जी
5: क्यों आप
4: का नाम
5: संतों का सम्मान गिरा रहे हैं?
4: कौन है निर्मोही अखाड़े से?
5: पूज्य सीताराम जी आप संतों का सम्मान क्यों गिरा रहे हैं?
3: मेरा
5: आप कहिए कि निर्मोही अखाड़े से मुझे रखा जाए, लड़ाई आपकी ये है और कुछ नहीं है।
3: आप प्रस्ताव दिखा दीजिए,
5: आप ये कहिए कि मुझे रखा जाए, मैं इसलिए कह रहा हूँ श्वेता जी के आगे इस बार।
4: नहीं प्रवेश जी, पर कौन कौन है निर्मोही अखाड़े की ओर से?
5: बिना प्रस्ताव से ही कोई व्यक्ति आ गया उसके अंदर?
3: प्रस्ताव मांगा क्या आपने? प्रस्ताव मांगा, प्रस्ताव दिखा दो, प्रस्ताव दिखा दो।
5: बिना मांगे ही आ गया क्या कोई? बिना मांगे ही आ गया कोई?
3: बिना मांगे
5: छोड़िए, ट्रस्ट का विषय नहीं है, हम विषय ये कह रहे हैं, हम ये विषय कह रहे हैं कि निर्मोही अखाड़े से उसमें व्यक्ति है और निर्मोही अखाड़े का राम मंदिर मुक्ति आंदोलन में योगदान को सारा हिंदू समाज जानता है।
4: कोई नहीं नकार सकता है,
5: हिंदू परिषद उसको नकारता नहीं है, ठीक है। विश्व हिंदू परिषद को संतों ने ही काम सौंपा जिसमें निर्मोही अखाड़ा भी शामिल था। संतों की स्वीकृति से, संतों की आज्ञा से हिंदू परिषद ने काम को बढ़ाया, उसमें हमको जीत मिली, तो हिंदू समाज और संतों के आशीर्वाद के कारण जीत मिली।
3: एक लेख अपने पक्ष में दिखा दो प्रवेश चौधरी, कागज लेके आए हो, कागज लेके आए हो, एक एक लेख।
5: मुझे आपसे आपसे स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है पूज्य महाराज जी। पूज्य महाराज जी, आप अपने अपने स्वभाव के कारण से सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन में संत ऐसा नहीं है,
4: मान जी,
5: संत की तो निर्मल होता है मन उसका।
4: महंत जी अभी अभी चलिए, बाकी बाकी भी जो हमारे प्रतिभागी हैं हम सबसे एक एक बार बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं है निर्मोही अखाड़े का प्रतिनिधित्व वहां पर, प्रवेश जी कह रहे हैं कि है। हम देखते हैं कि प्रवेश जी अगर आप नाम बता पाए तो बेहतर होगा, थोड़ी देर में हम आपसे फिर जानेंगे। लेकिन कंप्यूटर बाबा
5: आप गूगल पे डालिए, आपको पता चल जाएगा, योगेंद्र नाथ ऐसे कुछ करके नाम है उनका।
3: आपको नाम ही पता नहीं है, यही
5: अभी बता देता हूँ आपको।
3: आपको नाम पता होगा, मैं बता रहा हूँ, उनका नाम दिनेंद्र दास है, मैं नाम बता रहा हूँ।
4: दिनेंद्र है निर्मोही अखाड़ा से,
3: अखाड़े के द्वारा
5: दास जी
3: साबित नहीं है।
5: मैं इसीलिए चुप रहा श्वेता जी, मैं इसीलिए चुप रहा कि इनको इनको ये खुद बता देंगे।
3: निर्मोही अखाड़े
5: इन्होंने स्वयं बता दिया ना।
3: आप निर्मोही अखाड़े के द्वारा प्रस्तावित लाइए, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा तब बताऊंगा आपको।
4: चलिए कंप्यूटर बाबा आपकी बात भी
5: चाहते हैं, वो जाइए, वो आपकी स्वेच्छा है, परंतु परंतु ये कहना कि निर्मोही अखाड़े से कोई नहीं है,
3: नहीं है,
5: नहीं
3: है, नहीं है।
5: दूसरी चीज श्वेता जी, हम ये कह रहे हैं कि SIT जांच कर रही है, अच्छे से जांच कर रही है, अपराधी को पकड़ा जाएगा, पकड़ कर उसको सजा।
4: ठीक है कंप्यूटर बाबा, आपको भरोसा है कि SIT की जांच उस जगह तक उसकी आंच पहुंचेगी जहां तक पहुंचना चाहिए?
6: मुझे लगता नहीं है, विश्वास नहीं है। पहले मेरी बात को सुन लिया जाए
4: जी,
6: राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है। हम संत समाज का उस पर आस्था है, और जिस तरीके से चंपत राय को हमने कहा कि जब उस समय भी हम लोगों ने बार बार कहा कि जमीन घोटाले में भी चंपत राय ने किया, बहुत सारी चीजें चली, उनको बाहर नहीं किया गया। अब फिर जब समय आया तो फिर आकर के इन्होंने हमारे महा ये जो महा घोटाला किया है दान में, लोग आस्था जो रखते हैं, 1 रुपए दान करते हैं उसी में खा गए, चंदा चोरी कर दिए। ऐसी स्थिति में मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से केजरीवाल मुख्यमंत्री था, उन्हें जो है जेल में डाल दिया, और जेल डालने के बाद उसका केस चला, भरी हुए बाहर आए। हेमंत सोरेन को भी इसी तरीके से यही किया, तो फिर चंपत राय को अंदर क्यों नहीं? हमारा कहना है चंपत राय को अंदर किया जाए। हमारे संविधान में सिस्टम में, भारत के संविधान में है कि चोर यदि चोरी करता है तो चोर को पहले अंदर करिए, जो निर्णय आएगा उस निर्णय के बाद फिर यदि वो बरी होगा, यदि उसने नहीं किया तो बरी होगा वो। पर चंपत राय को बचाने का काम कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, पहले इनको अंदर करें। जब विश्व हिंदू परिषद से जानबूझ के, जिस ढंग से अभी हम सुन रहे थे, इन्होंने कोई संत नहीं है क्या? भारत में कोई संत नहीं है क्या? आपको निर्मोही अखाड़े से क्यों नहीं किया आपने? भारत के बहुत सारे संत है, मैं तो कह रहा हूं विश्व हिंदू परिषद में खुद ही इतने सारे संत है, हम लोग को किसी को नहीं चाहिए। आप कई संतों को कर दो, चंपत राय को मत करो, क्योंकि इन्होंने चोरी की है, चढ़ावा किया है, चढ़ावा में जो चोरी की है, जो महापाप किया है संतों के प्रति और जो मंदिर के प्रति, आज हमारी आस्था ही लोगों की खत्म हो जाएगी। लोग क्यों 1 रुपया डालेंगे? लोग मंदिरों में पैसा नहीं डालेंगे, कहेंगे चोर है। अरे ये तो राजा महाराजाओं के जमाने में भी कोई ने चोरी नहीं की, मंदिर के प्रति आस्था रखी, और कांग्रेस के राज में भी कभी चोरी नहीं हुई, मंदिर के प्रति आस्था रखी है, लोगों ने जमीन दी है, ये तो खा रहे हैं, ये मंदिर क्या बना रहे हैं, तो ये तो जमीन को खा रहे हैं, 2 रुपए की चीज 4 रुपए खरीद रहे हैं, मैंने पूरा चरपट कर रहे हैं, इसलिए चंपत को चंपत कर दिया जाए। अब इस्तीफा कब दिया है, जब भारी दबाव आया है। मैं विश्वेंदु परिषद के महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप अब विश्वेंदु परिषद की बजाय भारत के संतों को वहां बैठा लें, संचार शंकराचार्य हैं, बहुत सारे संत हैं, जो जो जिसको आपको लगे वो बिठा दो, चंपत राज को नहीं, विश्वेंदु परिषद को नहीं।
4: ठीक है चक्रपाणी जी, आपको उम्मीद है, देखिए अभी SIT की जांच शुरू ही हुई है, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था 15 दिन कम से कम, जिसमें दूध पानी का पानी होगा, और उन्होंने कहा कि उससे पहले ही होने लगा है। चंपत राय छोड़ चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, हालांकि एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, पर उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरा, अभी तक 8 लोगों का नाम सामने आया है, और ये पहले 8 नाम नहीं है, अभी और जांच आगे चलेगी। भरोसा है आपको कि इंसाफ न्याय होगा?
7: नहीं, देखिए मुझे तो भरोसा है बिल्कुल, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, वो एक भगवाधारी हैं, मुख्यमंत्री के साथ वो एक सनातनी है, तो मुझे लगता है वो करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अभी वर्तमान में जो परिदृश्य चली है, निश्चित रूप से श्वेता जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानते हैं कि जिस प्रकार से हिंदू विरोधी चाहते हैं कैसे मठ मंदिर और संतों को जो है किस प्रकार से आरोपित करके आक्षेप करके सनातन को कमजोर किया जाए, निश्चित रूप से 1528 में जो मीर बाकी ने मंदिर हमारे तोड़ा, एक संघर्ष हुआ, हिंदुओं ने अपनी जान दी, और एक लंबी लड़ाई के बाद उच्च न्यायालय से जिस प्रकार निर्णय आया, सबको एक आशा और विश्वास थी कि पूरे विश्व के हिंदू और सनातनियों का जब भव्य मंदिर राम का बनेगा तो कहीं ना कहीं राम राज्य स्थापित होगा, लेकिन वहां पे तो भ्रष्टाचार हो गया। तो आखिर सवाल इस बात का है, देखिए यहां पे जितने वक्ता बैठे हैं, कोई सब सही अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो मां अपने पुत्र को 9 महीने गर्भ में रखती है, जब जन्म देती है, तो उससे ज्यादा लगाव होता है, अपेक्षाकृत सौतेली मां का दूसरा ही होता है। जिन लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ी, आप जरा सोचिए, प्रेसिडेंट हिंदू महासभा के नाम से, और हिंदू महासभा की पहली केस थी 1949 से, और अनेक पक्षकार थे, धर्मदास जी थे, निर्मोही अखाड़े थे, रमेश चंद्र त्रिपाठी जी थे, और तमाम और भी पक्षकार थे, लेकिन उन पक्षकारों को जब राम मंदिर का निर्णय आया तो अनदेखा किया गया, यहां तक कि भूमि पूजन में भी नहीं बुलाया गया, और जो बॉलीवुड के बीफ खाने वाले हैं उनको बुला करके वहां पे नाच गाने और रील बनाने का काम करवाया गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा कलंक है। तो कलंक तो लग चुका है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इतनी आशा नहीं थी कि 45 दिन में सैकड़ों सीसी कैमरे में दिखाई दे रहा कि कैसे धन चोरी हो रहा है। अरे भाई, जो राम राज्य में कभी कोई चोरी नहीं कर सकता, वहां पे आप क्या उदाहरण पेश कर रहे हो? और पूज्य कंप्यूटर बाबा जी महाराज ने ठीक कहा, इस्तीफा पहले दे देना चाहिए था, आरोप लगने पे तुरंत राम राज्य में जब एक धोबी आरोप लगता है तो तुरंत माता सीता को वनवास जाना पड़ता है, और यहां पे राम मंदिर में इतने आरोप लगे बैठे हुए हो ढीठ की तरह, और उस पे कोई वो नहीं हो रहा है। हमें लगता है आदर्श प्रस्तुत करिए, भगवान राम चित्र नहीं बल्कि एक चरित्र है, और हमारे यहाँ चरित्र की पूजा हुआ करती है, तो इसलिए मेरा ये मानना था कम से कम कि वहां मंदिर में लोग अपने चरित्र दिखाएंगे। ट्रस्ट में ऐसे लोग अब टिन्नू पिन्नू पता नहीं कहां से आ गए, बताओ संघर्ष किया किसी ने? विश्व हिंदू परिषद के भी संघर्ष को नहीं वो किया सकता है, माननीय अशोक सिंघल जी ने एक आंदोलन खड़ा किया, सभी पूज्य संतों ने किया, और निश्चित रूप से निर्मोही अखाड़ा का बहुत बड़ा योगदान है कि उसको बुलाया नहीं जा सकता, या हिंदू महासभा जिन पक्षकारों ने अपनी जमीन बेच बेच के लड़ी है, मुकदमे को लड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है, और आज देखो उसी का परिणाम स्वरूप है कि वहां पे अनेक टुन्नू मुन्नू आकर के चोरी और वो कर रहे हैं, जिसके वजह से पूरी छवि खराब हो रही है। जबकि एक मंदिर में अगर धन आता है, कुछ लोग कह रहे हैं जी मंदिर में मत दो, वृद्धशाला में दो, गौशाला में दो, मैं कहना चाहता हूं जब मंदिर में देता है तो वहीं से गुरुकुल चलता है, वहीं से भंडारा और भोजन चलता है, वहीं से गरीब आश्रितों को सहयोग होता है, और ये तो राम मंदिर है, यहां से तो अनेक चिकित्सालय से लेकर के हर प्रकार के काम होने चाहिए, हर सनातनियों को हर व्यक्ति के लिए वहां से सब कुछ जन उपयोगी कार्य होने चाहिए, लेकिन वहां पे तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना करके जो पेश किया है, इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा, काला अक्षरों में लिखा जाएगा, और जिन जिन लोगों ने चोरी किया है निश्चित रूप से परमात्मा भी उसे माफ नहीं करेगा, उसे रौरव नामक नरक मिलेगा, क्योंकि मंदिर की द्रव देव द्रव की चोरी सबसे बड़ा पाप कहा गया है। लोग आस्था और श्रद्धा से दान देते और वहां पे बैठ करके बताओ ये कैमरे में सरेआम उसमें हुआ है, और 45 दिन पहले की कैमरा काट दिया गया, बंद कर दिया गया। नृपेंद्र मिश्रा जी जो स्वयं निर्माण समिति के अध्यक्ष है, उनका बयान है कि कोई वहां व्यवस्था नहीं था, कोई भी ऐसे आता था कोई भी जाता था, अब बताइए वो आरोप लगा रहे ये तो कंप्यूटर बाबा हम या निर्मोही
4: आज की बात नहीं रही, ये शिकायतें होती रही, शिकायतें होती रही, लेकिन चाहे किसी भी वजह से, पर उन शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। अब उसके पीछे कारण कई हो सकते हैं, उसी को पता लगाने की अभी एसआईटी कोशिश कर रही है। प्रमोद कृष्णम जी जो कि पीठाधीश्वर हैं श्री कल्की धाम के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ में नवल किशोर दास प्रवक्ता अखाड़ा परिषद के हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। अभी तक प्रमोद कृष्णम जी जो कि हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं उसमें संत समाज ये कहता है कि ट्रस्ट का जो गठन हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ से जो बातें कही गई थी उसको नजरअंदाज किया गया निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधित्व को देखकर। और जो हमारे अभी तक के वक्ता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब उसका गठन दोबारा हो, दूसरे रूप में हो, संतों का उसकी उसमें मौजूदगी हो ताकि भ्रष्टाचार बाहर जाए।
8: देखिए श्वेता जी, ये एक अलग विषय है कि ट्रस्ट का गठन हो, ट्रस्ट का पुनर्गठन हो, ट्रस्ट में कौन कौन लिए जाएं, ये सवाल एक दूसरा सवाल है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आज देश के सामने है और करोड़ों लोगों के सामने है वो ये है, करोड़ों लोगों के मन में है कि ये कोई किसी बिजनेस हाउसेज में चोरी नहीं हुई है, ये कोई किसी लाला जी की दुकान में चोरी नहीं हुई है, ये कोई किसी MNC में किसी के दफ्तर में चोरी नहीं हुई, ये घोटाला हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मभूमि के मंदिर में, और जिन्होंने किया है वो कोई बाहर के लोग नहीं है, भीतर के हैं। तो ये अपराध बहुत बड़ा है, महापाप है। अब सवाल उठता है कि जो ट्रस्ट का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट के ट्रस्ट को बरकरार रखने की जिम्मेदारी है वो भी देखनी पड़ेगी। तो आज देश के करोड़ों लोगों की आस्था पे चोट पहुंची है, नंबर एक। लेकिन उनका एक भरोसा है, उनका भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनका भी भरोसा है कि जिन्होंने राम मंदिर के अंदर चोरी की है वो अभी 7-8-9 लोग जो पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसके पीछे कौन है, उनको शक्ति देने का काम कौन कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि जो खबरें आ रही हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट से कुछ इस्तीफे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि वो इस्तीफे हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हुए हैं तो बहुत विलंब हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस साख को रखने के लिए सत्ता छोटी है, सनातन बड़ा है, विश्वास बहुत बड़ा है, आस्था टूटनी नहीं चाहिए। करोड़ों लोगों, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, तो उस आस्था को डेंट ना लगे, उस आस्था के ऊपर कुठाराघात जितना हुआ है और ना हो, उसके लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपनी इच्छा से त्यागपत्र देना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिएगा आप ट्रस्ट में बने रहते हैं
4: और इतना, हाँ
8: जी मैं कह रहा हूं, एक दो इस्तीफे की बात नहीं है, पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये तो सामूहिक जिम्मेदारी है। तो हम एक व्यक्ति के गले में फंदा डाल दें, एक व्यक्ति को छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका एक कारण ये भी है कि मान लीजिएगा ये 10 दिन में 20 दिन में 1 महीने में जांच पूरी होती है और उसके बाद यह रिपोर्ट आती है कि साहब ट्रस्ट को क्लीन चिट दे दी जाती है, तो फिर लोग कहेंगे साहब तुम्हारा ही ट्रस्ट, तुम ही जांच करने वाले, तुम ही उसमें थे, तो तुमने खुद यह गलत कर लिया। तो मैं कह रहा हूं कि इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेते हुए ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, और हमें भरोसा है कि चोर के पीछे मदद करने वाले व्यक्ति कितने भी बड़े हों, उनका कितना भी बड़ा मर्तबा हो, लेकिन ये भगवान राम के मंदिर की चोरी है। वो भगवान राम जिन्होंने एक व्यक्ति के सवाल पर अपनी प्रिय जानकी की भी अग्नि परीक्षा लेना स्वीकार किया था, तो जब सीता की अग्नि परीक्षा हो सकती है तो फिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों की अग्नि परीक्षा लेने में दिक्कत क्या है।
4: प्रवेश जी, ये इस सवाल को इससे बेहतर रखने का तरीका क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन वाकई ये बताइए कि क्यों ना ऐसा हो। ये राजनीति नहीं है कि यहां पर एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है विपक्ष और कोई इस्तीफा नहीं दे रहा है, यहां पर उससे बड़ा मामला है ये। भरोसे का जब खून होता है तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता है पाप, और रामलला के प्रांगण में यह हुआ।
5: श्वेता जी, ये जघन्य अपराध है, महापाप है, और जिन्होंने भी किया है वो अपराधी है, उनको सजा मिलना चाहिए, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं। और जहां तक रही ट्रस्ट का विषय, न्यास का विषय, तो उनको उनको उनकी उनको सोचना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से निर्णय ले। विश्व हिंदू परिषद उस पर क्या कह सकता है? विश्व हिंदू परिषद तो जो श्वेता जी सोचती है, जो प्रमोद कृष्ण जी सोचते हैं, जो हिंदू समाज सोचता है, वही सोचता है कि भाई हिंदू समाज की भावना है कि कुछ गड़बड़ अगर हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से यही स्टैंड लिया, श्वेता जी हम आपके साथ हैं, हिंदू समाज के साथ हैं, हिंदू समाज जो चाहता है हम उसको उसको करने की बात करते हैं। अब उसमें ट्रस्ट के मेंबर अगर शामिल हैं या नहीं शामिल हैं, एसआईटी क्या कहती है क्या नहीं कहती, वो तो एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आने के बाद हमको समझ में आएगा। लेकिन एक अच्छा निर्णय है कि कुछ सदस्यों ने, जैसी कि सूचना सूत्रों से ही आ रही है, अभी कंफर्म है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने को अलग कर लिया, ये भी एक अच्छी बात है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं
9: है। हालांकि उसमें तो भी
5: जब, लगता जब, है कि जिस आंदोलन के लिए वर्षों
9: काफी समय बीतने के बाद
5: उसमें तो एक रत्ती भर का भी कुछ नहीं होना चाहिए।
9: ये पहली बार नहीं है कि किसी गड़बड़ी की बात हुई हो, कुछ समय पहले भी इस तरह की चीज हुई थी और उसको पूरी तरीके से उसको डांट दिया गया कि नहीं ये सब तो चीजें बस ऐसे ही चर्चा हो रही है, जबकि चाहे साउंड रिकॉर्डिंग के लीक होने से लेकर लैंड डील्स से लेकर अब चंदा चोरी, मतलब जो शब्द भी मुंह से निकलना मुश्किल हो जाता है। महंत नवल किशोर दास जी, जो जो कुछ हुआ है उसकी भर्त्सना करने से कोई खुद को, मतलब कितना भी आप कह दें उससे कम नहीं हो सकता है, लेकिन आज अगर हम कहें कि पुनर उस भरोसे के पुनर्निर्माण की बात जहां से शुरू होती है, तो वो कहां से उसकी बुनियाद रखी जानी चाहिए?
3: देखिए बहन जी, भव्य मंदिर बनाने के लिए पूरे देश के संतों ने हिंदू समाज को जातिवाद, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद से ऊपर करके राम के साथ लगने के लिए निरंतर प्रयास किया और भगवान की कृपा से आज भव्य और दिव्य मंदिर बना है। मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि कोई भी भगवान की जो संपत्ति, हमारे यहाँ कहा है संपत्ति सब रघुपति के आए, संपत्ति ठाकुर जी की, हम केवल प्रबंधक हो सकते हैं और प्रबंधक होने के साथ आपने प्रबंधन ठीक नहीं किया तो आपको अपराध से अलग नहीं माना जा सकता। वहां जो लोग प्रबंधन कर रहे थे, इतनी बड़ी भूल चूक एक दिन में नहीं हो गई होगी, अनास नहीं हो गई होगी। मुझे लगता है ट्रस्ट में जितने सदस्य उन सबको सामूहिक जिम्मेदारी लेना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि किसी कोई भी कारण रहा हो पर कहीं ना कहीं अपराध तो हुआ है। जो अपराध भगत कर ही राम रोष पावक सो जर ही, भगवान का अपराध, लोग बाहर अपराध करते हैं तो भगवान से क्षमा मांगते हैं, या तो भगवान के घर में ही अपराध हो गया। और आज पूरा साधु समाज कितना व्यथित है, कितना परेशान है, कितना चिंतित है, ये वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है पूरे ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए और ट्रस्ट का पुनः सभी सदस्यों का चयन हो, और मैं चाहता हूं कि इसमें अखाड़ों की सहभागिता हो, क्योंकि संतों ने बहुत परिश्रम किया है। विश्व हिंदू परिषद और चंपत जी को अलग नहीं किया जा सकता, चंपत जी विश्व हिंदू परिषद के आधार स्तंभ हैं। हम मानते हैं कि उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए बहुत परिश्रम किया है आदरणीय अशोक जी के साथ, आचार्य जी के साथ, परंतु उनके प्रबंधन में, देखरेख में क्या चूक हुई हमें नहीं पता, वो तो जो समीक्षा करने वाले लोग करेंगे, परंतु हमें स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम अपने आश्रम में बैठे हैं और मेरे रहते कुछ गलती हो रही है तो मुझे ही कहा जाएगा, मेरे यहाँ आरती पूजा करने वाले को नहीं कहा जाएगा, झाड़ू लगाने वाले को नहीं कहा जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि पुणे ट्रस्ट के पुणे निर्माण की आवश्यकता है और हिंदू समाज को जो श्रद्धा में आघात लगा है उसको पुणे उसी स्थिति में पहुंचाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, श्रद्धालुओं के विश्वास को स्थिर रखने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है संतों से प्रार्थना की जाए, संतों का मार्गदर्शन हो, अभी पूज्य जन संतों का मार्गदर्शन है। मैं ऐसा मानता हूँ, चाहे पूज्य महाराज जी हमारे छावनी वाला अस्वस्थ रहते हैं, एक गुरु जी अस्वस्थ रहते हैं, वासुदेवानंद सरस्वती भी अस्वस्थ रहते हैं, तो जो संत वास्तव में सामाजिक और कहीं कहीं संबंध से जुड़े रहे, ऐसे कुछ अच्छे संतों को निर्णय भले वो लोग करें पर संतों की इसमें सहभागिता हो और वहाँ पारदर्शिता हो। सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता हो, कोई एक रुपए भी चलाता है तो इसलिए चलाता है ठाकुर जी के राग भोग पे,
9: और कहीं से शिकायत हो महंत जी तो शिकायत हो तो उसे सुनने वाले लोग चाहिए। महंत सीताराम दास जी, ये होता रहा कि शिकायत हुई किसी ने सुना नहीं, सुना यहां तक कि बाहर भी कर दिया गया, एक व्यक्ति ने तो ये तक आरोप लगाया कि उसकी तरफ से शिकायत हुई और उसको सीधा बाहर कर दिया गया। तो अब ये चीज, लेकिन अभी तक जिस स्वरूप की बात हो रही है, आपको लगता है कि संत समाज मिलकर बेहतर कर सकता है, ट्रस्ट को एक नए सिरे से गठित किया जाए, एक हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर बहुत आसानी से जो अंग्रेजी का एक शब्द है ना, स्टीरियोटाइप बन जाते हैं कि अरे ये तो चोर ही होंगे, उसको तोड़ने के लिए एक पूरे संत समाज ने बहुत परिश्रम किया था, लेकिन अगर वहां पर आप पहुंच रहे हैं तो यहां से पुनर्निर्माण उस भरोसे का कैसे?
3: देखिए श्वेता जी, मैं यहां से शुरुआत करूंगा, एक श्लोक सुनाता हूं मैं
9: जी।
3: श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, यहां पर विद्वान संत भी बैठे हुए हैं, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरे चयः, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरे चयः, षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते क्रमी। अर्थ है, स्वयं के द्वारा दिया हुआ या दूसरे के द्वारा दिया हुआ, जो कोई दान के धन का, धर्म के धन का, ब्राह्मण के धन का, गौ के धन का हरण करता है, चोरी करता है, वो 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। तो इनका, इनकी दुर्दशा दुर्गति होना तो तय है, भगवान छोड़ेंगे नहीं इनको, ये तो बात पक्की है। अब रही बात कानूनी प्रक्रिया की, मैं कह रहा हूं, एक भरत तिवारी जिसका कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई FIR दर्ज ठीक से नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, उसको गोली मार दी जाती है। और यहाँ इतना बड़ा घोटाला बाहर आने के बावजूद भी SIT ने पहले FIR दर्ज नहीं की, पहले जांच हो रही है, उसके बाद में FIR हो रही है, तो जिन्होंने चोरी की है वही FIR करा रहे हैं, वही चोर, वही FIR करने वाले, वही गिरफ्तार होने वाले, वही गिरफ्तार करने वाले। अब आप आइए आपके प्रश्न में, आपने कहा है कि क्या आगे विश्वास किया जा सकता है, निश्चय ही किया जा सकता है। अभी नवल किशोरदास जी महाराज कह रहे थे कि छावनी वाले महाराज जी बीमार हैं, वासुदेवानंद जी बीमार हैं, परमानंद जी बीमार हैं, हमारे दिनेंद्र दास जी भी जिनको ये कह रहे हैं कि रखा है, वो भी बीमार ही रहते हैं, वो एक शब्द बोलने की स्थिति में नहीं रहते, इसीलिए इनको रखा गया है। तो बीमार लोगों को बाहर करके अच्छे सुव्यवस्थित योग, पढ़े लिखे युवा, अच्छे जो सक्रिय लोग हैं, जो कुछ कर सकते हैं, इन्होंने अभी ऐसे लोगों को रखा। मैं कह रहा था ना शुरुआत में कि ये रजिस्टर भेज दे, वो साइन करके भेज दे बिना पढ़े लिखे, ऐसे लोगों को रखा। तो आवश्यकता है योग, युवा, पढ़े लिखे, सक्रिय महापुरुषों को, महात्माओं को उसमें रखा जाए, विशेष रूप से जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। और फिर कह रहा हूं, ये नूरा कुश्ती नहीं चलेगी, चंपत राय, अनिल मिश्रा आदि को जेल में डाला जाए जल्दी से जल्दी। और भैया प्रवेश जी, आप कह रहे थे कि हम चंपत राय जी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, चंपत राय जी से हमारा कोई मतलब नहीं है, चंपत राय जी को स्वयं सोचना चाहिए। अरे चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अभी भी उपाध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित हैं, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की विश्व हिंदू परिषद ने, कम से कम आप विश्व हिंदू परिषद से तो उनको बाहर कर ही सकते थे, ट्रस्ट में ठीक है कानूनी प्रक्रिया होगी, आपने अपने संगठन से उनको बाहर क्यों नहीं किया? चंपत राय चोर है, चोर है, चोर है, उसको जेल जाना पड़ेगा, हम पीछा छोड़ेंगे नहीं।
9: अच्छा महन जी, एक कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है, इसीलिए मतलब हम थोड़ा सा शब्दों को सोच कर बोले, यहाँ पर वहां पर अगर निकल आए तो ठीक है,
3: FIR होती तो हम विश्वास करते ना कानूनी प्रक्रिया पर।
9: तो अभी पहली FIR हुई है ना,
3: प्रक्रिया से नहीं चल रही है, SIT अपनी प्रक्रिया से नहीं चल रही है, तो हम उनकी प्रक्रिया का पालन क्यों करें?
9: तो आपको उम्मीद नहीं है कि SIT आगे चलकर उनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई करेगी?
3: भरत तिवारी पर कोई जांच नहीं हुई, कोई ट्रायल नहीं हुआ, उसको गोली मार दी गई, और चंपत राय इतना बड़ा चोर चोरी करके बैठा है, उस पर FIR भी नहीं कर सकते यार।
9: कंप्यूटर बाबा कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें, बताएं।
6: मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिल्कुल सही कहा कि किसी होटल में चोरी नहीं, किसी दुकान में चोरी नहीं, किसी कार्यालय में चोरी नहीं, ये सनातन के जो धर्म स्थल है, एक राम मंदिर है, उस पर चोरी की गई है, तो इस कदापि छोड़ा नहीं जा सकता। और रहा सवाल मुख्यमंत्री जी, हम सबको मुख्यमंत्री जी के पे विश्वास है कि हमारे भगवाधारी मुख्यमंत्री जो बराबर यदि ये चोरी करते मिले हैं तो निश्चित हमारा है कि अब बुलडोजर का मुंह जो है वो जितने चोर हैं इस बुलडोजर का मुंह अब उधर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंगें बना ली है चोरी कर करके। और हम पूरा संत समाज बार बार कहना चाहते हैं कि अब संतों का, आपने भी सिंधु परिषद को खूब देख लिया, अब साधु संतों को देखिए, भारत में एक से एक संत हुए हैं, चारों शंकराचार्य हैं और भी संत हैं, धर्माचार्य हैं, आप उनको एक बार जगह दीजिए। राम मंदिर बिल्कुल निष्पक्ष निस्वार्थ चलाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, जनता जनता से भी कहना चाहता हूँ कि आपके भी मन में एक जरूर होगा कि आने वाले जो जितने मंदिर है इन मंदिरों में लोग कैसे एक रुपया चढ़ाएगा ना चढ़ा, इसलिए चढ़ाएगा क्योंकि वो उसकी आस्था खत्म हो गई, उससे लगा कि हमें जो है यदि एक रुपया चढ़ाओ तो चोरी कर लेते हैं। तो इसलिए चंपत राय को यदि जेल में डाल दिया तो निश्चित अपने आप लोगों को लगेगा कि चोर को जो चोरी करता है उसको जेल में डाला जाता है, उसको सजा मिलती है। ये हमारे सनातन का सनातन के प्रति लोगों की आस्था रही।
9: चक्रपाणी महाराज जी, आपने कहा कि ऐसे लोगों को इसमें होना चाहिए जो कि राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे, ताकि सीधे तौर पर उनका उनकी उनका मन इस तरह की कोई कर्म करने के लिए कुकर्म करने के लिए डोले ही ना कभी। ऐसा नहीं है कि चंपत राय जी नहीं रहे आंदोलन में, रामलला का पटवारी तक उनको कहा गया। आज जो बातें हो रही है उसमें सबसे बड़ी चीज क्या वो कर सकते थे? मुझे तो लगता है कि पहले ही शायद आज जो इस्तीफे की बात हो रही है जिसको कुछ लोग डिनाई कर रहे हैं अभी, शायद उसकी शुरुआत पहले हो जाती, लोग ये तो देखते कि एक तरीके से जिसको धर्म पथ कहा जाता कि जो धर्म उनसे, और यहां पर केवल एक संप्रदाय वाला धर्म नहीं बल्कि धर्म जो उनसे अपेक्षा करता वो काम करते।
7: श्वेता जी देखिए, उन पे वास्तव में सबका विश्वास था और विश्वास का कारण भी था, इसमें कोई दो राय नहीं कि चंपत राय जी ने अपने जीवन में त्याग नहीं किए, तपस्या नहीं किए, हिंदुत्व के काम नहीं किए, आंदोलन में उन्होंने बहुत भूमिका निभाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और वर्तमान में भी बहुत सादगी से जीवन यापन करते, इसीलिए कहीं ना कहीं उनके प्रति लोगों की संपत्ति है, विश्वास है, सब जानता है एक दूसरे को। लेकिन अभी जो संत, और उनसे किसी को व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से राम मंदिर में ये हुआ है ये निश्चित रूप से सबके हृदय में एक पीड़ा है, वो ये चाहता कि कैसे उसकी प्राचीर हो, आप बताइए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए वर्तमान में जो सरकार है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, मोदी जी तो स्वयं जाते हैं रामलला पे दंडवत करते हैं, देख के हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वहां पे इस प्रकार से जो है जो घटनाएं हुई है, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में बहुत ही गलत मैसेज गया है। तो निश्चित रूप से जिस पे भी आरोप, पद छोड़ना ये कोई पद नहीं है, ये तो दायित्व है और दायित्व उस पे दिया गया है राम की सेवा करने के लिए, और वहां पे सेवा अगर नहीं कर पा रहे तो आप इस्तीफा दे दो और इस्तीफा दे करके अपना जो भी जिन्होंने किया उससे सजा भुगतेगा। और हमने जो बात कही कि देखो आंदोलन से जो जुड़े हों उनको, या जो जो पक्षकार रहे हैं जिन्होंने मुकदमा लड़ा उनको भी रखो, वो हर प्रतिनिधि को रखो, 13 अखाड़े के हमारे जो सम्मानित प्रतिनिधि है उनको रखो और तमाम हर प्रकार के लोगों को रखो ताकि बैलेंस बना रहे। मेरा ये मानना है कि देखो हिंदू हर है, वहां भेद मत करो कि जी हमारी एक लोग जो हमारे पसंद के लोग हैं इसलिए जो ट्रस्ट में है उन्हीं के कोई रिश्तेदार नोट गिन रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यही कारण है कि वो संगठित गिरोह बन गया और उस संगठित गिरोह ने चोरी को अंजाम दे दिया। आज हिंदू शर्मसार हो रहा है, आज हम लोग कहीं ना कहीं व्यथित हो रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हर प्रकार के जो जो राम भगवान राम में आस्था वाले रखते हैं, अब अभी महाराज जी ने निर्मोही अखाड़े वाले ने भी क्या कहा कि 60,000 वर्षों तक वो नरक में रहता है, वो विष्ठा का कीड़ा बन के रहता है, अगर इसको जो ये पता होगा वो क्यों करेगा वो। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो जो चिंटू मिंटू है वो जानते नहीं है, वो चोरी कर रहे हैं, उनका तो ध्यान पैसे पे है, लेकिन अगर जानेगा कि इसका अंजाम भगवान चित्रगुप्त महाराज क्या देंगे, मरने के बाद जब ऊपर जाऊंगा तो हमें क्या सजा मिलेगी, तो खत्म भी नहीं करेगा। अगर जो कानून जानता है अधिवक्ता, वो जल्दी अपराध नहीं करता, समझता है कि अगर ये अपराध करूंगा तो इतनी सजा मिलेगी। तो उसी प्रकार अगर धार्मिक व्यक्ति होता, तनिक मात्र भी राम में अगर उसको आस्था होता तो निश्चित रूप से इस तरह के कृत्य नहीं करते। ये मैं नहीं कह सकता स्पष्ट रूप से कि कौन चोर है कौन नहीं है, तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कोई ना कोई जो पद पे बैठे हुए थे उनमें पे भी दोष लगता है, क्योंकि सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं, कहीं ना कहीं सभी जिम्मेदार है और जिम्मेदारी लेना चाहिए।
9: एक राज्य में पहले पहले राजा होता है और सबका विचार एक है, वो ये कि उस विश्वास को, उस भरोसे को दोबारा बहाल होने की जरूरत है, जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। जैसा कि अभी स्वामी जी ने कहा कि पद नहीं है दायित्व है, पर उस दायित्व को भी छोड़ने की जरूरत है जब तक लोगों का भरोसा बहाल न हो जाए। सब यही चाहते हैं कि जो श्रेष्ठ हो वही हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
4: जहां खबर वहां खबरदार।
8: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: पहले गिरफ्तारी और अब इस्तीफे। राम मंदिर में चंदा चोरी पर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल वही कि क्या सिर्फ जांच के नाम पर छोटी मछलियों को ही फंसाया जाएगा या कानून के दायरे में बड़े दिग्गज ही सलाखों के पीछे जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस्तीफे को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं।
10: अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ, बाकी तो भगवान जाने। वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्या करें।
9: मामले में अब तक कई छोटी मछलियों की गिरफ्तारी हुई है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, सुशांत श्रीवास्तव, रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू अज्ञात। इसके अलावा 5 लोगों से पूछताछ जारी है। आरोपियों को
11: '27 का समर जीतने के लिए बीजेपी ने प्रदेश में अपने नए सूरमाओं का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 46 मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इस टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने जाति के समीकरणों को भी ध्यान में रखा है। पंकज चौधरी की नई टीम में 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में 4 ओबीसी, 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को जगह दी है। 19 उपाध्यक्ष में 7 ओबीसी, 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 दलित और 1 भूमिहार को रखा गया है। 8 महामंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 ठाकुर, 4 ओबीसी और 1 दलित को जगह मिली है। प्रदेश मंत्रियों में 9 ओबीसी, 3 दलित, 2 भूमिहार, 3 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 1 ठाकुर को रखा गया है। मतलब बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी टीम में सभी वर्गों के लोग हैं। जाहिर तौर पर चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है ये। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
12: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
4: एक चांद जिसकी आंच में कई चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि दान पेटियों से निकले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। एफआईआर के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम की शुरुआती जांच में मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत मिले। जांच में आरोप है कि संगठित तरीके से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी हुई। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि गिनती कक्ष में मौजूद कुछ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी मामले में पहली एफआईआर के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की विस्तृत जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में कुल 70 मौकों पर कथित चोरी गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, अभी सिर्फ 3 महीने के सीसीटीवी सबूत मिले हैं, जो कि इन घटनाओं को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं मंदिर में चढ़ावे को लेकर चांदी की ईंट के गायब होने की जांच भी एसआईटी की ओर से की गई है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी की रिपोर्ट में 200 किलो चांदी की ईंटों की चोरी के दावे को गलत पाया गया है। जांच में सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों को लेकर किए गए कई दावों को भ्रामक बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक दान में मिली चांदी की ईंटें गलाने के लिए भेजी गई थी। चांदी की ईंटें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी जांच में मिला है। एसआईटी की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टिन्नू के पास बिना आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां थीं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
1: अगले साल शुरुआत में भारत के दौरे पर आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप. विदेश मंत्री रूबियो बोले, भारत अहम साझेदार, जल्द होगी डील साइन. तीन दिन के सेशेल्स दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि. राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ द्विपक्षीय करेंगे वार्ता. ईरान अमेरिका में पीस डील के बाद पहली बार टूटा सीज फायर. हॉर्मुज में कार्गो शिप पर हमले का अमेरिका ने लिया बदला.

जेडी वेंस बोले हिंसा का जवाब हिंसा से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की जेल। अब तक 80 लाख रुपए बरामद। बाबा बागेश्वर बोले चोरों को भगवान देगा महादंड। और केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच से खुलासा, 3 साल शादी नहीं करना चाहती थी सिया, पीछा छुड़ाने के लिए केतन की हत्या। माता पिता से पूछताछ, पुलिस ने भाई साहिल को फिर बुलाया।

0: हमारे प्रभु श्री राम उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, सीसीटीवी के फुटेज गायब।
1: और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं।
2: पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। आज तक पर आपका स्वागत है। अयोध्या के राम मंदिर में चोरी को लेकर कानूनी कार्रवाई अब हो रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बावजूद विपक्ष इन कार्रवाइयों से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का मानना है कि जब तक ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के ऊपर लगे रहे तमाम आरोपों की जांच नहीं होती, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तब तक राम के नाम पर हुए घोटालों का भेद नहीं खुल पाएगा। हालांकि वीएचपी से लेकर बीजेपी तक और संघ से लेकर सीएम योगी तक सबका दावा है और वादा है कि राम के भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल बहुत है और जवाब काफी सीमित है। उम्मीदें भी बहुत है लेकिन कार्रवाई सीमित है। आरोप बहुत है लेकिन सफाई भी सीमित ही है। तो इन्हीं सवालों पर हम हमारे मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी चर्चा आज आस्था के साथ खिलवाड़ को लेकर हो रही है। लेकिन पक्ष विपक्ष की तमाम दलीलों और आरोपों पर चर्चा से पहले आपके सामने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर देश की जनता क्या चाहती है, क्या कहती है, क्या सोचती है, ये हम दिखाना चाहते हैं। सी वोटर का यह सर्वे 23 जून को यानी इन तमाम कार्रवाइयों से पहले जब आरोप लग रहे थे, एसआईटी गठित की गई थी, तब किया गया था। और इसमें देश के हर क्षेत्र, लिंग, उम्र, वर्ग और राजनीतिक रुझानों वाले करीब 1600 लोगों से कुछ सवाल पूछे गए थे। राम मंदिर चोरी मसले पर उन लोगों के जवाब जरा देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि इतने अहम और बड़े मुद्दे पर आज देश की जनता में क्या सोच है। राम मंदिर में जो कथित चढ़ावा चोरी की खबरें आई हैं, उसको लेकर जनता क्या सोचती है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सवालों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये 7 सवाल काफी अहम है। पहला सवाल जो सी वोटर की तरफ से जनता को पूछा गया था कि राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की खबरों पर क्या कहेंगे, बहुत ही गंभीर है। 63.3% लोग मानते हैं कि बहुत ही गंभीर है। गंभीर बात है 12.4, थोड़ी गंभीर बात है 10% लोग कहते हैं कि गंभीर बात है, ज्यादा गंभीर नहीं है 4.5, और पता नहीं कहने वाले 9.8, यानी करीब 80% लोग ये मानते हैं कि काफी गंभीर बात है। दूसरा सवाल जो पूछा गया था, अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो पहला जिम्मेदार कौन होगा, पूरा का पूरा मंदिर ट्रस्ट जिम्मेदार होगा। 33.9% लोग कहते हैं कि मंदिर ट्रस्ट जिम्मेदार होगा। स्थानीय प्रशासन 9.8%, राज्य सरकार 17.3%, कोई एक जिम्मेदार नहीं होगा 15.9%, और हर कोई जो इससे जुड़ा हुआ है वो जिम्मेदार होगा, ये कहने वाले 15.6%, पता नहीं कहने वाले भी 7.6% लोग हैं। अगला सवाल, चढ़ावे में हेराफेर की खबर से राम मंदिर में दान के प्रबंधन पर क्या भरोसा आपका घटा है, बहुत ज्यादा घटा है 52.5% लोग कहते हैं। हाँ कुछ हद तक घटा है 14% लोग कहते हैं कि हाँ कुछ हद तक घटा है, यानी करीब 70% लोगों का मानना है कि भरोसा घटा है। ज्यादा नहीं कहने वाले 11, बिल्कुल नहीं कहने वाले 7.1%, और पता नहीं कहने वाले 15.4% लोग हैं। दान चोरी के आरोपों पर सबसे बड़ी फिक्र की बात आपके लिए क्या है, दान के दुरुपयोग की आशंका 30.2% लोग कहते हैं, दान प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी 18.3%, क्योंकि बार बार ये मांग हो रही है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। अगला जो बात कहने वाले लोग, यानी राम मंदिर की छवि को नुकसान, सबसे ज्यादा लोग 20.4% लोग कहते हैं कि राम मंदिर की छवि को इससे नुकसान हो रहा है। प्रशासनिक अनदेखी कहने वाले 12.3, और राजनीतिक विवाद है कहने वाले 8.1, और जो भी हो जाए फिक्र नहीं 4.4, और 5.2% कहते हैं कि पता नहीं। अगला सवाल, आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या यूपी सरकार के बारे में आपकी राय बिगड़ेगी, हाँ कहने वाले 49.2% लोग कहते हैं कि हाँ बिगड़ेगी, नहीं कहने वाले 27.1%, और पता नहीं कहने वाले 23.7%, यानी 50% लोगों को लगता है कि राय बिगड़ेगी, और अभी राय जिनकी नहीं बनी है वो भी करीब करीब 23.7% लोग हैं। मामले की निष्पक्ष जांच और सच सामने आने का कितना भरोसा है, क्योंकि अब मामला काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन तब तक मामला आगे नहीं बढ़ा था, तब तक हाँ जरूर भरोसा है कहने वाले 38.6% लोग थे, शायद कहने वाले 10.4, शायद नहीं कहने वाले 31.2, और बिल्कुल नहीं कहने वाले 13.3% लोग। बड़े धार्मिक संस्थानों के दान खर्च में पारदर्शिता, सार्वजनिक खुलासा क्या उसका होना चाहिए, ये कहने वाले हां कहने वाले 80% लोग कहते हैं कि हां होना चाहिए, यानी जो भी दान दर्प किया जाता है उसका सार्वजनिक खुलासा होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, 80% लोग इस देश में ये कह रहे हैं, 8.2% कहते हैं नहीं और पता नहीं कहने वाले 11.2% लोग इसमें दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर एक बात साफ है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद है, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल होंगे। कांग्रेस कह रही है कि सदन के अगले सत्र में इस सारे मुद्दों को लेकर सवाल उठाए जाएंगे। अमितोष पारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और विजय राठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे। सुधांशु जी, ये बहुत गंभीर बात है, इसलिए सवाल सबसे पहले आपसे शुरू करनी होगी, क्योंकि इस सर्वे में एक बात साफ नजर आती है जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गंभीर है कि 2/3 लोग, जितने भी लोगों को पूछा गया उसमें से 2/3 लोग ये कहते हैं कि दान प्रबंधन पर उनका भरोसा टूट चुका है, ट्रस्ट के दान प्रबंधन पर भरोसा टूट चुका है। कितनी गंभीर बात आप इसे मानते हैं?
1: देखिए साहिल जी, आपने कहा है गंभीर बात है, मैं उससे एक स्टेप आगे जाके कहता हूं गंभीर ही नहीं पीड़ादायक बात है, यह बहुत आघात करने वाली बात। और एक राम भक्त कारसेवक के रूप में, मैं बालक के रूप में 5 अप्रैल 1987 को जब मंदिर निर्माण संकल्प की रैली हुई थी अयोध्या में, तब भी गया था, तो ऐसे करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय के ऊपर बहुत आघात करने वाली बात है। ये तो है इसका भावनात्मक पक्ष, परंतु इसके दो और पक्ष हैं, एक है तकनीकी पक्ष और दूसरा है राजनीतिक पक्ष। तकनीकी पक्ष की जहां तक बात है, ट्रस्ट के बारे में जब कोई विषय आता है तो लॉ ये कहता है कि ट्रस्ट पहले अपने स्तर पर कार्य करेगा, उसके बाद गवर्नमेंट जांच करेगी। मगर गवर्नमेंट ने, सरकार ने ट्रस्ट के उस अधिकार को दरकिनार करते हुए तत्काल SIT का गठन किया। नंबर दो, जो लोग यह प्रश्न कहते हैं कि तुरंत ही FIR क्यों नहीं दर्ज की, इस प्रकार के बचकाने तर्क नहीं देने चाहिए, क्योंकि FIR तब दर्ज होनी चाहिए जब कुछ प्राथमिक साक्ष्य यानी प्राइमा फेसिया एविडेंस मिल जाएं, ताकि वह मामला कोर्ट तक भी मजबूती से रहे। यह नहीं कि आपने भावावेश में 50 लोगों को कर दिया और उसमें से 40 छूट गए पहली हियरिंग में। तो इसलिए प्राथमिक SIT हुई, SIT की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, अभी कंप्लीट रिपोर्ट भी नहीं आई। जैसे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, उसी के अनुसार तुरंत ट्रस्ट ने इस विषय के ऊपर FIR दर्ज की। और प्राइमरी एविडेंस में भी, अभी फाइनल एविडेंस नहीं है, फिर भी 8 लोग तत्काल गिरफ्तार हुए। अर्थात सरकार इस विषय पर कितनी संवेदनशील है और कितनी सतर्क है, और मर्माहत कार सेवकों के मनोभाव को किस प्रकार से समझ रही है, वह इसको दर्शाता है। अब दूसरे पक्ष के ऊपर आते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से एक टेक्निकल पॉइंट और कहता हूं। साहिल जी, जो लोग ये कहते हैं कि तुरंत कार्रवाई होकर गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये वही लोग हैं ना जो FCRA पर जब अभी रोक लगी है, यानी जब ये कहा गया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रस्टों में आता था और वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते ही नहीं थे, तो कहते सरकार कौन होती है ये पूछने वाली, भले ही वो कन्वर्जन करें चाहे जो करें धर्मांतरण करें, ना वहां तो सरकार को पूछना ही नहीं चाहिए और यहां पर प्राइमरी रिपोर्ट आने से पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये दो चेहरे बहुत साफ दिखाई पड़ते हैं। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं राजनीतिक पक्ष में। साहिल जी, राजनीतिक पक्ष में ये होता है क्या कहा जा रहा है, और उससे अधिक महत्वपूर्ण होता कौन कह रहा है। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने अयोध्या को रक्त रंजित किया, वो आज कहते हैं हम चिंतित हैं। मैं करोड़ों करोड़ लोगों से कहना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के पूछिए, अयोध्या में सरयू को गोलियों से लाल कर देने वाले लोग, जो ये कहते थे 10,000 कमरे हैं वहां, भगवान राम कहां हुए थे बताओ, जो कहते अयोध्या ये थी ही नहीं, क्या वो चिंतित हो सकते? नहीं, वो उत्साहित होंगे, वो आनंदित होंगे कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का जो संकल्प लिया था, हिंदू धर्म का समूल नाश, जिन्होंने यह संकल्प था कि हिंदू वायरस है, कोरोना है, डेंगू है, जो ग्लोबल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस करते हैं डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, वो आज इसमें आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। हां, वो गलती जिसकी भी है, मैं मानता हूं कलिकाल है तो हो सकता है यहां पे अंदर आए लोगों ने भी यह किया होगा, मगर मैं धार्मिक भाव से भी कहता हूं, जब कहा जाता है कि राम का नाम लेने से पाप कटते हैं, और राम का नाम लेके राम के स्थल पर जिसने पाप किए होंगे उसे राजदंड भी मिलेगा और धर्म दंड भी मिलेगा। राजदंड सरकार देगी इस लोक में, और परलोक में जो दंड होगा वो भगवान सुनिश्चित करेंगे। मगर मैं पुनः एक फिर क्या जवाब चाहता हूं, ये लोग जो बोलने वाले लोग हैं साहिल जी, जानते कैसे हैं? हां, मैं एक बात और पूरी बात कह दूं, टेक्निकल तो मैंने आपको बता ही दिया है, अब मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। रामायण में भी यह स्थिति आई थी, भगवान राम के एक बार नागपाश लगा था, आज भगवान राम की आस्था पे आपके सर्वे में कहा गया कि 2/3 लोग ये मान रहे हैं कि उनके विश्वास पे आघात हुआ है। आज भगवान राम की आस्था पर नागपाश लगा है, पर जब नागपाश से मुक्ति के लिए भगवान हनुमान जी जा रहे थे अयोध्या में संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो रास्ते में एक कालनेमी भगवान राम का भक्त बनकर प्रकट हुआ था और उसने भेष धरा था जैसे वो भगवान का भक्त है, जिसपे तुलसीदास जी ने लिखा है, राक्षस कपट भेष तह सोवा, मायापति दूत ही हमोहा, और जाई पवन सुत नाय माथा, और लगा सो कहे राम गुण गाथा। वो था तो रावण का प्रतिनिधि, मगर भगवान राम के भक्त का रूप धारण करके और हनुमान जी से राम नाम का गुणगान करने लगा। तो आज ये वही लोग हैं, मगर चिंता मत करिए, हनुमान जी ने उन्हें पहचान लिया था, क्योंकि जो राम का काज करने के लिए जो लोग उद्यत थे, संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, योगी जी हो, रामचरितमानस में यह भी लिखा है कि ये जो भ्रम का आवरण उठा के लोग आए, ज्यादा दिन तक बचेंगे नहीं, उबरे अंत न हो निबाहू, काल ने जिम रावण राहू। तो वो कितना भी भेष बदल के आ जाए, दोनों बातों से मर्माहत है, कार्रवाई प्रकट हो रही है, कठोर कार्रवाई होगी, राजदंड भी मिलेगा, मगर जो बोल रहे हैं उनके चेहरे कह रहे हैं जनता के सामने साफ
2: सुधांशु जी दिखाई पड़ रहे हैं। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो विपक्ष को कालनेमी कह रहे हैं सुधांशु जी।
1: हाँ सुधांशु जी बिल्कुल, जो ये कहते थे भगवान राम थे ही नहीं, जो हलफनामा दे के कहे कि भगवान राम नहीं थे, जिन्होंने ये कहा कि कार सेवकों की हत्या करने वाले लोगों को, सुनिए साहिल जी, अरे सुनिए ये देखिए आप कितना, साहिल जी दिखाइए
2: कितना ठीक है, कैमरा जी सुन लीजिए, फोकस करिए, आपने उनको कालनेमी कहा है, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए, सुनिए
1: शर्म आनी चाहिए। हाँ सुनिए, नहीं सुनिए ये दिखाइए, ये अखबार है 3 नवंबर 1990 का, अयोध्या में अंधाधुंध फायरिंग, 200 मारे गए, जिन लोगों ने उस पर प्रसन्नता मनाई थी वो आज कहें कि हमारे ऊपर चिंतित हो रहा हूं, रक्त रंजित करने वाले, उन्हें क्या कहा जाएगा, मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। रामचरितमानस में भगवान राम की लीला में भी ऐसे लोगों के उदाहरण उपलब्ध है।
2: अखिलेश जी
3: ये तो जब सुधांशु जी बोलते हैं तो आप लोगों के लिए गॉड हो जाते हैं कि जब उन्हें रोकना नहीं है, जिसका मैं इन्हीं से शुरू करता हूं, बता रहे गोली चली थी, जो चलाया था वही तो आपका ट्रस्ट का वहां मुखिया है, शर्म आई कि नहीं कुछ, वही ना आपके ट्रस्ट का वहां पे सर्वे सर्वा बैठा है, यहां गोली चलाने की बात कर रहे हो, कुछ तो शर्म कर लिया करो। अब सुनिए साहिल जी, बात दरअसल में ये है कि इस ट्रस्ट से देश का, हिंदुओं का, सबका ट्रस्ट खत्म हो गया, ये आपने भी अभी अपने सर्वे में बताया, इस ट्रस्ट को खत्म कर देना चाहिए और ऐसा ट्रस्ट बनना चाहिए साधु संतों और शंकराचार्यों का जिसपे देश का ट्रस्ट हो। इस ट्रस्ट पे अब ट्रस्ट नहीं है, संतों का ट्रस्ट बनना चाहिए जिसपे देश को ट्रस्ट हो, क्योंकि ये ट्रस्ट बनते ही पहले दिन से इसने सिर्फ घोटाला शुरू किया है, जमीन की खरीद फरोख्त घोटाला किया, चंदे का घोटाला किया, चढ़ावा का घोटाला किया, उपहारों का घोटाला किया, जिस व्यक्ति ने, इन्हीं के एक व्यक्ति ने, महिपाल सिंह ने चोरी पकड़ी, उसको हटा दिया गया, सीसी कैमरे हटा दिए गए, रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई, सारे प्रकरण की जांच सीबीआई ईडी से होनी चाहिए, अदालत की देखरेख में होनी चाहिए, क्योंकि कई हजार करोड़ का मामला है, गया कहां तक है इस लूट का पैसा, डकैती का, जिस इस ट्रस्ट के एक बड़े सदस्य ने इसे डकैती बोला, डाका बोला है, तो ये गया कहां तक इस डकैती का पैसा, ये ऐसा नहीं पता लगेगा, ये सीबीआई ईडी अदालत की देखरेख में जब जांच करेगी तब पता लगेगा, शुरू से लूट रहे हो, खुलासे पे खुलासा हुआ, लोगों ने बताया, सीएजी ने बताया, पब्लिक डोमेन में दस्तावेज आए, संतों ने बताया, आपकी इंटरनल ऑडिट ने बताया, और जब ये सब खुलासा हुआ तो भी चंपतलाल जी ने क्या कहा, कोई उल्लेखनीय बात नहीं है, सब वहीं बने बैठे हैं, इस्तीफे की खबर आई, फिर आ रही, कोई इस्तीफा नहीं दिया, विपक्ष के नेताओं और मुख्यमंत्रियों तक पर लांछन लगते ही गिरफ्तारी होती है, जेल जाते हैं, अदालत में दलील दी जाती है कि जमानत इनकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके छूटते ही आप ये प्रभावित हो जाएगा मुकदमा, ये सारे लोग क्यों बाहर हैं, किस लिए बाहर हैं, किसके चाहते हैं, पैसा कहां तक गया है, इसका खुलासा कैसे होगा, ये ट्रेल कहां कहां पे पहुंचेगी, कैसे हार गलाए गए, कैसे चांदी कहां गई, कैसे निर्माण कार्य में कमीशन लिया गया, जमीनों में कैसे घोटाले हुए, सब के लिए एक निष्पक्ष सीबीआई जांच अदालत की देखरेख में जब तक नहीं होगा साहिल भाई, तब तक विश्वास नहीं आएगा। और इस पे तो अब ट्रस्ट खत्म हो गया,
2: ठीक है,
3: ये तो सरकार आरएसएस के
2: ट्रस्ट पर ट्रस्ट खत्म हो चुका है,
3: असली चाल चली चेहरा दिखा दिया, ये तो आपने सर्वे में भी बताया,
2: ठीक है,
3: और पब्लिक में भी है,
2: ट्रस्ट पर ट्रस्ट खत्म हो चुका है। और यही बात इस सर्वे में भी कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है। सुधांशु जी, आपने टेक्निकल बात की, इसके लिए मैं आपके सामने टेक्निकल बात रखूंगा, क्योंकि ये ट्रस्ट कोई साधारण ट्रस्ट नहीं है, ये ट्रस्ट जो है केंद्र सरकार ने बनाया हुआ ट्रस्ट है, जिसमें केंद्र सरकार के मनोनीत 12 सदस्य यहां पर काम करते हैं। उसके साथ साथ 3 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, यानी उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी इससे जुड़े हुए हैं, अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इससे जुड़े हुए हैं, और केंद्र सरकार के मनोनीत एक आईएएस अधिकारी भी इससे जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद ट्रस्ट के काम में जब घोटाला दिखाई देता है एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट के आधार
3: पर, समय दीजिएगा,
2: और इसी के वजह से लोग ये समझते हैं, एक तिहाई लोग ये समझते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट दोषी है, पूरा का पूरा ट्रस्ट दोषी है, लेकिन उसके साथ साथ 17% लोग ये भी मानते हैं कि राज्य सरकार भी दोषी है, क्योंकि उनके लोग वहां पर बैठे हुए थे, उसके बावजूद ये चोरी नहीं पकड़ पाए।
1: बिल्कुल, आपने जो बात कही वाकई बहुत गंभीर है, परंतु इसके साथ साथ एक लीगल पक्ष भी ध्यान रखने की बात है। ट्रस्ट में कितने लोग दोषी हैं, पूरे दोषी हैं, आंशिक दोषी हैं, कौन दोषी है, जब तक हम मजबूत साक्ष्यों के साथ कोर्ट में नहीं रखेंगे, तब तक जो लोग हवा हवाई में कह रहे हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तब तक हम हर उस दोषी को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए जरूरी है कि प्राइमरी रिपोर्ट के बाद, कंप्लीट रिपोर्ट के बाद, उसके बाद राज्य सरकार उन साक्ष्यों के साथ जब कोर्ट में मुकदमा जाएगा अथवा सरकार की कार्रवाई होगी, तो
2: लेकिन सुधांशु जी
1: कुछ
2: बेसिक चीजें
1: के ऊपर कार्रवाई होगी,
2: सुधांशु जी
1: वो भी तो कोर्ट जाएगा ना,
2: सुनिए तो सुनिए सुधांशु जी, सुधांशु जी एक मिनट, कुछ बेसिक चीजें जो इस रिपोर्ट में दिखाई दे रही है, जो जहां फिलहाल बाहर जो पता चली है, देखिए दान पेटी, ऑनलाइन कैश काउंटर, जहां भी चढ़ावा आ रहा है उसका रोजाना अनिवार्य एंट्री होना जरूरी था जो नहीं हो रही थी, ये तो डे टू डे काम की बात है, ठीक है, हर हफ्ते में इन सारे दान का ऑडिट होना जरूरी था, वो भी नहीं हो पा रहा था, ये सारी चीजें यहां पर आई, यानी ट्रस्ट का काम ठीक तरीके से नहीं चल रहा था, करोड़ों रुपए। और आज की स्थिति यह है कि सवाल विपक्ष का छोड़ दीजिएगा, लेकिन जिन्होंने दान दिया हुआ है, चांदी की ईंटें दिए या बाकी सारी चीजें दिए, वो सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे कि हमने जो दान दिया था वो सही जगह गया है या किसी के पेट में चला गया, इसीलिए तो सवाल आ रहा है, इसीलिए लोगों का ये सर्वे यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है।
1: आपने बिल्कुल सही बात कही। अब इसको बिल्कुल टेक्निकल देखते हैं। ट्रस्ट के लोग इन्वॉल्व हैं, ट्रस्ट के इंप्लॉयज इन्वॉल्व हैं, फिर वो संस्था इन्वॉल्व है जिसे काउंटिंग का काम दिया गया था, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोग इन्वॉल्व हैं जिनको कि यह काउंट करके सबमिट करना था। तो एक बार बहुत क्लियर ढंग से कुछ प्राइमा फेसिया एविडेंस आने चाहिए कि जिन लोगों को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया जा सके सजा में, इसलिए आप ब्लैंकेट कह दें कि ये भी थे वो भी थे, ऐसा नहीं होता। जो आपने कहा अगर गलती हुई है तो किस किस ने गलती की है, इसके कुछ एविडेंस बना के ही चार्जशीट रखी जाती है ना न्यायालय में, ऐसा थोड़ी होता कि मेरा मन में आया तो मैंने सबको कर दिया।
2: अब लेकिन जांच तो उसकी हो सकती है ना,
1: बड़ा ट्रस्ट हो या
2: सामान्य, तो बात की बात
1: साहिल जी,
2: लेकिन अभी जो लोग पकड़े गए हैं,
3: जवाब देने दीजिए,
2: मैं उसी पे सुधांशु जी, जो लोग पकड़े गए हैं वो तो ऐसे लोग हैं कि जो काउंटिंग करने वाले लोग हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो सुपरवाइजर टाइप के लोग हैं, जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं जिन्हें यह सिस्टम को फॉलो करवाना चाहिए था, वो लोग तो इसमें है ही नहीं।
3: साहिल जी मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं अभी स्पष्ट कर
1: दूं। इसी में कह रहे हैं, जब यह बात सही क्लियर होगी कि मौके के ऊपर चोरी किसने की है, जो एविडेंस मिला उन 8 पे कार्रवाई हुई, गिरफ्तार हुए, आगे कंप्लीट जांच के बाद और एविडेंस मिलेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, ताकि पुख्ता सबूतों पे कार्रवाई हो। मगर एक टेक्निकल पॉइंट और मैं कहता हूं, एकदम लीगल बात कह रहा हूं, ट्रस्ट बड़ा हो या छोटा हो एक ही रूल से गवर्न होता है। मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, भाई साहब सुनिए, यहां जनता ने आपके सर्वे में कहा 80% लोगों का मानना है कि धार्मिक ट्रस्टों में पारदर्शिता होनी चाहिए, बताइए अखिलेश जी, चर्च, मस्जिद, वक्फ बोर्ड सब में पारदर्शिता होनी चाहिए कि नहीं, बोलिए, आरोप लगते ही सब गिरफ्तार होने चाहिए, बोलिए हाँ या ना, कि एक धर्म पर होना चाहिए, बताइए, बोलिए,
3: आप चुप हो रहे हैं,
1: 80% जनता कह रही है इनके सर्वे,
3: सुनिए सुनिए,
1: बोलिए, बताइए,
3: अरे सुनिए, बोल रहा हूँ,
1: बताइए
3: साहिल भाई, इन्होंने सुधांशु जी ने बड़ी गंभीरता से यह बात कही कि कुछ तथ्य और मजबूत साक्ष्य और प्रामाफेसी सबूत होने चाहिए। जमीन के खरीद फरोख्त के दस्तावेज हैं, कागजी रजिस्ट्री, इससे बड़ा सबूत क्या होता है? कुछ और होता है क्या? 2 करोड़ की जमीन 40 करोड़ में घंटे भर में 5 मिनट में, जो पैसे चढ़े हैं, जो पैसे चढ़ रहे हैं वो चोरी हो रही है, उसकी सूचना दी जा रही है, वो हटा दिया जा रहा है, वो 8 महीने के सीसीटीवी कैमरे हटाए जा रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग डिलीट की जा रही है, इससे बड़ा प्रूफ चाहिए क्या? लगातार लिप्तता है ट्रस्ट की इस लूट इस डकैती में, और इससे बड़ा प्रूफ
2: गिरफ्तारी होनी चाहिए क्या? सुधांशु जी ये पूछ रहे हैं।
3: सुनिए, एक सेकंड, अभी भी ये लोग बचा रहे हैं। अगर आपको किसी से लेना देना नहीं, आस्था को रिस्टोर करना है, तो आप सीबीआई को क्यों नहीं रिफर करते हो? अगर आपको नहीं बचाना किसी को है तो सीबीआई को बोलो, अदालत से कहो कि आपकी देखरेख में जांच होगी, हमसे किसी बेईमान चोर से कोई मतलब नहीं, दूध का दूध पानी का पानी करके
2: सीबीआई के पास जाइए,
3: क्योंकि लिप्त है
2: और कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी
3: जा रहा है,
2: क्योंकि मामला बड़ा है,
3: ऊपर तक मामला जा रहा है।
1: अब जवाब दे दूं, अब सुनिए, जो लोग ये कह रहे हैं यही तो हम कह रहे हैं, चाहे सीबीआई जाना हो या हाई कोर्ट तक जाना हो, चार्जशीट में पुख्ता सबूत होने चाहिए। और फिर भी यदि अखिलेश जी को लगता है कि यह प्रक्रिया बगैर पुख्ता सबूत के आगे बढ़नी चाहिए, अथवा उनको लगता है कि सबूत सही नहीं है, जो उनका कहना है कि कागज जमीन के अवेलेबल हैं, तो मैं अखिलेश जी से कहता हूं कोर्ट चले जाइए। नेशनल हेरल्ड केस में जब आपके नेताओं पे घपले का आरोप लगा था तो दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया था और 2013 अक्टूबर में शुरू हो गया था। आपकी सरकार तो नहीं, जाइए, क्योंकि आपको पता है कि वह साक्ष्य वहां पर नहीं है, बयान देना और साक्ष्य। और फिर मेरी बात का उत्तर नहीं दिया अखिलेश जी ने, सुनिए, धार्मिक संस्थाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए या नहीं, बोलो हाँ या ना,
3: अभी उत्तर दे,
1: बोलो ना हाँ या ना, बोलो सारे धार्मिक संस्थाओं में होनी चाहिए कि नहीं, बोलो।
3: अभी उसका भी दूंगा, बीच में साईं जी रुके, दोनों का उत्तर दूंगा। देखिए, ये कह रहे कोर्ट चले जाइए, सुधांशु जी कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है, आप लोग लीपापोती कर लीजिए, इसकी जांच भी होगी और जितना भी निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ जांच होगी, सरकार बदलने दीजिए, याद रखिएगा, अभी लीपापोती कर लीजिए। और जो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं आपने, पहले यहां तो पारदर्शिता दिखाओ, सब
2: गिरफ्तारी,
3: ये बात ये डंके की चोट पे करो, सब कुछ होगी, ये लीपापोती करेंगे,
1: होनी चाहिए ना गिरफ्तारी सब जगह, बोलिए हाँ या ना,
3: एकदम होनी चाहिए। अरे मैं तो कह रहा हूं ना, करो ना शुरुआत,
1: बोलो ना, सब धर्मों में होना चाहिए।
3: अरे सत्ता
1: आपके बचने की कोशिश कर रहे हो भाई
3: आपके, अरे सुनिए सर, मैं बच नहीं रहा हूं, सत्ता आपके पास है, शुरुआत करिए सबकी करिए,
2: ठीक है,
3: मैं सबकी बोल रहा हूं, यहीं से शुरू करिए ना, करके दिखाओ सुधांशु त्रिवेदी, चलो करो गिरफ्तारी,
2: ठीक है,
3: ट्रस्ट के मेंबरों की जो
2: जांच से आप संतुष्ट है? सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत करिएगा, धीरे धीरे जांच में जब पता चलेगा तब गिरफ्तारियां करेंगे, टेक्निकल बात को समझने की कोशिश करिएगा। यह बात अलग है कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि इतने बड़े मामले में जो 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है उनकी पुलिस कस्टडी तक पुलिस ने नहीं मांगी है। आमतौर पर पुलिस कस्टडी के लिए जी जान लगा देती है पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अदालत के सामने, लेकिन इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। विजय राठी,
4: ठीक है साहिल जी, सुधांशु, अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना
2: जी?
4: मेरी आवाज देखिए, मैं बता दूं, सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन वो हमेशा से यही काम करते हैं, वो सरकार को बचाने का काम करते हैं, भले ही बच पा रही हो या ना बच पा रही। आप इनके पुराने रिकॉर्ड्स अगर देखेंगे, उन्नाव कांड को देखिए, ये कई महीने कुलदीप सेंगर को बचाते रहे, हाथरस कांड पे कई साल कई महीने, और यहां तक कि आज भी सरकार को बचाते रहे। लखीमपुर हिंसा के इनके वीडियो देखे, या उस पर अजय मिश्रा टैनी को बचाते रहे, और लास्ट में क्या निकलता, जो विपक्ष कहता वही निकलता, उसका दबाव बनता, ये विपक्ष का दबाव बना और उन 8 लोगों को इन्होंने पकड़ा, जो कोई गाड़ी चलाने वाला है, कोई सफाई करने वाला है, कोई नोट गिनने वाला है, जो बड़े मगरमच्छ, जो बड़े भेड़िए जिनको बोलते हैं, जो सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सब में चल रहा, उनको इन्होंने नहीं पकड़ा, ना इनकी हिम्मत है ना हैसियत है, क्योंकि वे बड़े लोग हैं, वो आरएसएस के लोग हैं। एक बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह ट्रस्ट बना, लेकिन ट्रस्ट में कौन रखा जाएगा वो इन्होंने निर्धारित किया, इन्होंने अपने लोगों को रखा। और आज जो एसआईटी की बात कर रहे हैं वो भी इन्हीं की है, जिसको रिपोर्ट देना है वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर है। और देखिए, मैं तो सीबीआई नहीं, मैं कहूंगा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने या सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दूसरा, इन्होंने कालनेमी की बात की। जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो भगवा वस्त्र में कौन आया, और उसके बाद उद्घाटन करने कौन आए, और उसके बाद जब चढ़ावा चोरी हुआ तो कौन लोग निकले? कालनेमी तो वही होता है ना, जो उसका वेशभूषा भर करके वो सारी चीजें उसने दिखाया कि मैं राम का भक्त हूं, और लास्ट में चढ़ावा चोरी कर लिया। असली कालनेमी तो अभी निकल के आ रहे हैं। और बार बार जैसे आप टेक्निकल चीजों की बात करते हो, ये दरअसल में ऐसा होता है ना जैसे जलेबी बनाना, ये हमारी यूनिवर्सिटी में बोला जाता है, जैसे कुछ प्रोफेसर लोग क्या होते हैं, हम भी हैं उसी में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बहुत सारी टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, तो लोगों को सामने देख करके लगता है यार बड़ी अच्छी बात बोल रहा है। अरे सीधी बात समझ नहीं आती कि लोगों के पास से पैसा मिल रहा है, गोबर के बीच में से पैसा निकल रहा है, शिलाएं गायब है, जिन्होंने 200-200 किलो चांदी दी है वो सामने आकर के कह रहे हैं हमारे पास रसीद नहीं है। लोग कई साल से चंपत राय जी के पास शिकायत कर रहे हैं इस बात की कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, 2-2 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में जा रही है। भाई क्या सबूत लोगे आप? सीसीटीवी जो फुटेज है वो डिलीट कर दिया आपने, और गजब की बात है। ये कहते हैं और आगे चलिए, ये कहते हैं कि थोड़ा समय दीजिए, पहले हम देख लें, पुख्ता कर लें। तो भाई अभी क्यों इस्तीफा दिया चंपत राय जी ने?
2: एक महीना कालनेमी तो वो है कि जो चोरी कर रहे थे, असली कालनेमी तो वो है कि जो चोरी कर रहे थे। आज की स्थिति में गजनी का महमूद तो वो बन रहा है कि जो मंदिर को लूट रहा है, ये नए गजनी के महमूद पैदा हो गए ऐसा कहा जा रहा है।
1: आप देखिए, जो लोग इन्होंने बात के मैं बता रहा हूं, ये लोग तो राम दल के अंदर घुस के गड़बड़ किए हैं। महमूद गजनी क्या हिंदू बन के आया था? नहीं, वो तो सीधे आके अटैक किया था। ये लोग वो हैं, कांग्रेस की लाइन बिल्कुल क्लियर, अखिलेश जी ने कहा कि बाबर की कब्र पे 3 पीढ़ियां गई हैं और राम मंदिर के इनविटेशन में लिखित में दिया कि हम नहीं जाएंगे, और उसके बाद आज आके कह रहे हैं, और मेरी सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया, सारे धार्मिक संस्थानों पे होना चाहिए कि नहीं? सब चुप्पी साध के बैठ जाते हैं, और तो और अपने जमाने में ऐसे रूल बना देते हैं कि वक्फ बोर्ड में अगर कह दिया जमीन मेरी तो कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे यहां तो कह रहा ट्रस्ट, आओ सारी बातों की जांच करो, और उसके बाद जो दूध का दूध पानी का पानी होगा, ट्रस्ट के 1, 2, 3, 4, 10, 20 जिन पदाधिकारियों पे होगा कार्रवाई, गिरफ्तारी सब होगी। वहां कहते हैं ना, मैंने कह दिया ये मेरी है, कागज नहीं दिखाना है, कोई ब्यौरा नहीं देना है। अब अगर विषयांतर में गए हैं राठी साहब, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या ये इसीलिए किया जा रहा है कि एफसीआरए में जो ट्रस्ट पकड़ में आ रहे हैं, जो सैकड़ों करोड़ों रुपए विदेश से ला रहे हैं, इलीगली ला रहे हैं धर्मांतरण करने के लिए, उनका बचाव किया जा सके इसलिए यह किया जा रहा है क्या? जब आप विषयांतर में जा रहे हैं तो इसका भी बहुत साफ सीधा जवाब दीजिए। और हवा में नहीं बोल रहा हूं, अभी इसी महीने बेंगलोर एयरपोर्ट के ऊपर द टिमोथी इंस्टीट्यूट, अब सुनिए सर, सुनिए एक लाइन पूरा सुन लीजिए, द टिमोथी इंस्टीट्यूट के एक सज्जन पकड़े गए जिन्होंने पिछले 6 महीने में 92 करोड़ रुपया आया, 24 क्रेडिट कार्ड के थ्रू आए, पकड़े गए। और उसी समय इनके वहां के मंत्री, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे जी ने आरएसएस पर बयान दे दिया। तो अगर विषयांतर में जाएंगे तो फिर पूरी पिक्चर देखिए, ये कहानी क्या है, और कौन कर रहा है, किसकी लाइन स्पष्ट है और किसकी लाइन पूरी तरीके से घात से भरी हुई है।
4: साहिल जी,
2: जनता की लाइन तो इसमें स्पष्ट नजर आ रही है, विजय राठी जवाब दीजिएगा, लेकिन जनता की लाइन इसमें स्पष्ट नजर आ रही है। सर्वे में जनता की लाइन इसमें यह नजर आ रही है कि जो चोरी कर रहा है उन पर हमें भरोसा नहीं है, यह बात तो साफ नजर आ रही है। विजय राठी जवाब दीजिए।
4: मैं इनसे बोल रहा हूँ, किनकी सरकार है? इन्हीं की सरकार है ना, इतने साल से जिस ट्रस्ट का जो करना चाहते हैं वो तो ये कर ही रहे हैं। सवाल फिर भी विपक्ष से पूछ रहे हैं लोग, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जितने ट्रस्ट आपको लगता है कि गड़बड़ है आप कर दीजिए खत्म उनको, लेकिन ये भी तो जवाब दीजिए कि जो ट्रस्ट जिसपे देश का ट्रस्ट नहीं है, आपका बनाया हुआ, जिसमें चंपत राय जी करोड़ों, और सिर्फ चंपत राय नहीं जी, वो आपकी केंद्र की और राज्य के अंदर जो फले फूले वो सारे, इसको कैसे खत्म करोगे आप? इस पे जवाब दीजिए ना, उस पे तो डिबेट हम कर लेंगे कभी भी, इस पे क्या कहोगे आप? ये अभी आपको दिख नहीं रहा, मतलब देश ने अपना जनमत दे दिया, इस बड़े चैनल पे दे दिया, लेकिन आपको अभी भी गड़बड़ नहीं। और कमाल है, कमाल की बात करते हो आप, कह रहे हो कि अभी थोड़ा टाइम लेंगे, ये देखेंगे सब कुछ दुरुस्त हो जाए, तो 6 महीने और लीजिए ना, हो सकता है एविडेंस और मजबूत हो जाए, हो सकता है चीजें निकल, 6 महीने और लीजिए ना, साल भर लीजिए, अभी मत पकड़िए किसी को। इन्हें जो अरेस्ट किया छोटे छोटे लोग, देखिए मैंने पहले भी ये बोला था टीवी चैनल पे कि आप बकरा ढूंढ रहे हो, कौन सा बकरा? बलि का बकरा। वो बकरा ढूंढने में एसआईटी लगी थी बस, वो मगरमच्छ और भेड़िया ढूंढने में नहीं लगी थी, वो असली कल्प्रिट को ने उसे ढूंढने में नहीं लगी थी। आप कर ही ये रहे थे कि कैसे इसको मैनेज किया जाए, और आप जांच किसने करा रहे हैं ये बताइए, खुद उनके ऊपर एसआईटी है। 105 एसआईटी आपके राज में चली है, उसका परिणाम आप बता दीजिए क्या निकला, नहीं निकला कुछ भी और ना निकलेगा। और इसमें भी मैं बता दूं आप, जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसकी जांच नहीं करेगी, आप कुछ नहीं निकालेंगे, ना आप निकाल सकते चाह कर भी, क्योंकि जिसके वो लोग हैं जो आरएसएस के, और जिसकी देखिए एक चीज बहुत सुनता हूं मैं आपके मुंह से सर, लोगों 500 साल राम मंदिर का इंतजार किया, अरे आपके किसी दस्तावेज में लेके सावरकर से गोवलकर तक का आप बताइए किसी किताब में लिखा हो राम मंदिर का जी, आपने 1986 के बाद उठाया, 1980 में आपकी पार्टी बनी जनसंघ से, आपकी पहली विचारधारा थी गांधीयन सोशलिस्ट, जब आपने देखा काम नहीं चल रहा तो उसके बाद आप मंदिर पे आ गए, आपका नहीं तो मंदिर से कोई लेना देना नहीं था, और असली कालनेमी आप ही निकले, उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, वो वस्त्र चोलावड़ करके
2: असली कालनेमी कौन है,
4: करोड़ रुपया उड़ा लिया
5: साहिल भाई।
2: और दूसरी बड़ी बात अमितोष पारेख,
5: हाँ साहिल भाई
2: ठीक है, असली कालनेमी कौन है नंबर एक, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो सर्वे में खुलकर निकलकर सामने आ रहा है कि राम मंदिर की छवि को नुकसान 20.4% लोग ये कह रहे हैं, और उसमें सभी तबके के लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां भूल जाइए।
5: साहिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बड़ी प्रतीक्षा करी, लेकिन उस प्रतीक्षा का एक इलाज तो ये निकला कि जितने लोग यार राम भक्त बने, नए नए सूडो राम भक्त बने, उन सबका चरित्र हम सबके सामने आ गया। मैं बताता हूं इस चीज क्या है। सबसे पहला हुआ 6 जून को अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, ट्वीट करने के बाद पवन पांडे अपोज कर देते हैं, तीसरी बात कहते हैं जांच कब होगी, जांच कब होगी, एसआईटी गठित हो गई, एसआईटी हो गई तो अब जांच रिपोर्ट कब आएगी, जांच रिपोर्ट कब आएगी, 6 दिन में जांच रिपोर्ट आ गई, जांच रिपोर्ट हो गई तो एफआईआर कब आएगी, एफआईआर कब आएगी, एफआईआर भी आ गई, एफआईआर आ गई तो पब्लिक कब होगी, पब्लिक कब होगी, पब्लिक भी हो गई, अब ये जेल कब जाएंगे, जेल कब जाएंगे, जेल भी अब जाएंगे, फिर फांसी कब चढ़ेंगे, मतलब कुल मिला के पहले दिन से और आज के तारीख तक साहिल भाई सिर्फ एक चीज है, वो है चेंज, बदलते
2: रहना।
5: दिखा दीजिए लेकिन आप हमें वो नहीं दिखाना, हमें सोर्सेस से पता चलना। अच्छा आज जो पकड़ में आया है कल तक इन्हीं से ही पैसे निकल रहे थे,
2: यानी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए अमितोष, यानी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, सही है,
5: अगर आपके पास आई
2: रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए
5: तो क्वेश्चन में तो आप आ रहे हैं साहिल भाई,
2: आप बताइए रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मैं तुरंत सुधांशु जी से पूछूंगा,
5: लिखा है आपको कैसे पता चल गया साहिल भाई, मतलब आपके पास कोई सोर्स,
2: आप मुझे बताइए ना
5: चल गया होगा,
2: अंतरिम रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, देखो हमें जो पता चला है वो तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है काले अक्षरों में, सफेद कागज पे काले अक्षरों में जो रिपोर्ट है वो पब्लिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए,
5: एफआईआर भी दिखी है ना, एफआईआर भी पब्लिक हुई ना, एसआईटी में क्या लिखा है बताइए, मुझे एक बात लगती है साहिल भाई बहुत
2: सर, मुझे बताइएगा कि पब्लिक रिपोर्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तुरंत सुधांशु जी से आप पूछेंगे,
5: वो सरकार तय कर लेगी, इज इट अ मैंडेटरी प्रोसीजर टू गेट एसआईटी रिपोर्ट पब्लिक, इज इट रिटन इन समवेयर लॉ इन ब्लैक एंड व्हाइट, नहीं लिखा है ना, लेकिन वो सरकार तय कर लेगी, एफआईआर को भी पब्लिक करना मैंडेटरी,
2: आस्था के मामले में मैंडेटरी प्रोसीजर में आप जाना चाहते हैं अमितोष जी,
5: तो
2: आस्था के मामले में मैंडेटरी प्रोसीजर में जाना चाहते हैं, यहाँ पर छवि को नुकसान हो रहा है, बाहर निकल कर लाइए, सबके सामने रखिए, लोगों का भरोसा जीती है, जरूरी है कि नहीं है,
5: धार्मिक आस्था जब हाथ होती है ना तब भी कानून के दायरे में उसका प्रोविजन दे रखा है, सड़कों पे न्याय नहीं हो रहा, जैसे कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और समाजवादी करना चाह रही है, कानून के दायरे में होता है, लेकिन दुर्भाग्य है धर्म की आस्था को राजनीतिक बनाते हुए कानून के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, जांच एजेंसियों को चुनौती ना देके मीडिया के आगे आगे बखान करना, सीसीटीवी की बात करना लेकिन एसआईटी को देखना नहीं, एफआईआर की बात करना लेकिन बड़ी मछली छोटी मछली कर देना, मुझे लगता है कि दुर्भाग्य है, आपके अंदर राम की आस्था थी नहीं, लेकिन राम को राजनीतिक करके चुनौती देना लेकिन उसके बाद धूमिल करना, यह सबसे बड़ी राजनीति दुर्भाग्य इस बात का है।
2: विजय राठी,
4: साहिल भाई आपने देखा जैसे ही आपने सवाल किया आप पे ही सवाल उठा दिया, पूरी मीडिया पे सवाल उठा दिया कि आप पे रिपोर्ट कहां से आई, कैसे आप दिखा रहे हो सब, ये देखिए इनका सवाल, ये तो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा,
2: और हमारे पास जो पता चला है वो तो हम दिखा रहे हैं,
4: जैसे जैसे ही आपने कहा कि रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए तो बगले झांक करेगा, सरकार तय करेगी और बाकी तय करेंगे, और इन्हीं के अध्यक्ष जो आलोक जी क्या बोल रहे थे, रिपोर्ट दर्ज हो जानी चाहिए अब तक, और इन्होंने तो क्लीन चिट दे दिया, मुझे तो लगता है इनका भी साझा उस चीज में, हो सकता है कुछ अमाउंट इन पे भी और आया होगा पक्का, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद से ही चंपत राय जी करते हैं। अरे भैया आप ही बता दो चंपत राय जी कितना लेके चंपत हुए, कितना चंपत हुए? अच्छा कब से चल रहा था ये तो बताओ, ये कब से चल रहा था मामला, ये खाने पीने का चोरी का कब से चल रहा था, कुछ तो पता होगा आप लोगों को, कुछ कब से चल रहा था? अच्छा कितने करोड़ अमितोष जी, कितने करोड़ रुपए खा गए आप लोग, कम से कम कुछ तो हिसाब दे दो यार, कब से चल रहा है?
6: 1400-2000
4: अच्छा आप धर्म के साथ खड़े हो, 1400-1500 करोड़ रुपए डकार करके,
6: 1400 इनके पास कैसे रिपोर्ट है, 1400-1500 करोड़, इन्हें कैसे मान लिया 1400-1500 करोड़? आपके माध्यम से एसएनडीओ सरकार से कहता हूँ कि इन व्यक्ति को लिया जाए और पूछा जाए एविडेंसेस क्या है, जाइए एविडेंस दीजिए या बैठ के हिसाब मत दीजिए, जाके एविडेंस दीजिए।
4: एसआईटी को भी बोलिए ना, एसआईटी से भी बोलिए कि कुछ नहीं हुआ, क्लीन चिट है एसआईटी, क्यों
6: 2021 से 2026 में जल्दी से क्या चाह रहे एसआईटी में, वो कागज लेके घूम रहे थे क्या, चार डाल रहे थे,
4: दो करोड़ की जमीन 24 करोड़ में, पूरा देश जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, और आपको सजा मिलेगी इसी, असली काल ने भी निकल करके तो अब आए, क्योंकि आप लोग बोलते थे दूसरे को, लेकिन भगवान के नीचे
2: आखिर में,
4: अरे इतनी निर्लज्जता कहां से,
2: सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर ये मुद्दा और भी गंभीर है, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, क्योंकि जो जानकारी फिलहाल बाहर निकल कर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि इस एसआईटी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पिछले 5 साल में जो भी दान इस ट्रस्ट को हुआ या मंदिर को हुआ है उसका पूरा ऑडिट दोबारा करने की जरूरत पड़ी है, यह भी कहा गया है कि एसओपी का पालन नहीं किया जा रहा था, तो क्या सरकार के तरफ से, क्योंकि इरोजन ऑफ ट्रस्ट इस सर्वे में भी साफ नजर आ रहा है, तो कम से कम इस ट्रस्ट को दोबारा पाने के लिए, लोगों का भरोसा दोबारा पाने के लिए, क्या आपको लगता है कि सरकार को कुछ सख्त कदम इस पूरे मामले पर उठाने पड़ेंगे?
1: जो आपने साहिल जी कहा है मैं उसी बात को लेता हूं, यह प्रमाणित करता है कि सरकार ने कितनी गंभीरता से एसआईटी की जांच की है, कहा पिछले 5 साल का ऑडिट होना चाहिए। नंबर दो, सख्त कदम पे योगी जी बोल चुके हैं बहुत साफ साफ कि जो भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा उसको कठोर दंड दिया जाएगा। तीसरी बात जो ये कह रहे रिपोर्ट सार्वजनिक होने की बात, साहिल या वरिष्ठ पत्रकार आप भी समझते हो, कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती, फाइनल रिपोर्ट ही सार्वजनिक की जा सकती है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से फाइनल रिजल्ट पे प्रभाव पड़ सकता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति पे संदेह है कि घटना स्थल पे था कि नहीं, अब जब फाइनल रिपोर्ट में उसका मोबाइल डाटा लोकेशन के साथ पुख्ता हो जाएगा तब वो था। अगर आप पहले से कहते हैं तो इसका मतलब आप उस चीज को प्रभावित कर। तीसरी बात, अब अगर इधर उधर की बात होगी इतने करोड़ रुपए लिए गए तो फिर तो शक हम यहां पर भी करेंगे पूरी विनम्रता के साथ,
2: लेकिन
1: कितने करोड़ रुपए किसके पास, कहां से आए, क्या बाहर से तो नहीं आए,
2: जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए थे,
1: एक बात
2: जिसका जिक्र इस प्राथमिक रिपोर्ट में आया हुआ है, कम से कम वो तो साझा किया जा सकता है, उसके बारे में तो चर्चा हो सकती है, उसमें सुधार के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है वो बातें तो जनता के सामने रखी जा सकती है।
1: नहीं साहिल जी फिर कह रहा हूं, कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट नहीं, फाइनल रिपोर्ट ही साझा की जाती है। आप भी गंभीरता से इस विषय को समझते हैं, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट नहीं और फाइनल रिपोर्ट में 7 दिन की बात है। मगर मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या ट्रस्ट को भंग करने का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए या नहीं, बोलो हां या ना, मैं पूछना चाहता हूं सबसे भाई, या ये एफसीआरए के पैसे
2: जी हां या ना में जवाब देंगे भाई, तो जल्दी से जवाब दीजिए,
1: धार्मिक संस्थानों में बताइए हां या ना, होना चाहिए भंग करने का अधिकार नहीं, बोलो।
3: मैंने बड़े
1: अभी नहीं बोलेंगे, दाएं बाएं बोलेंगे,
3: देखिए अभी बोल रहा हूं सब बोल दूंगा। देखिए ये लोग क्यों कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि ये तो टूल्स हैं, कारीगर तो कहीं और बैठे हैं जिनके ये विश्वसनीय हैं।
2: सुधांशु जी
3: जांच में वहां तक जाएगी ना जांच, और जहां तक है भैया तुम सत्ता में बैठे हो यहीं से करो ना गिरफ्तारी। ये सरकारी ट्रस्ट है
2: सुधांशु जी,
3: ये सरकारी ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट
2: जो उम्मीद है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। सुधांशु जी
1: देखिए ये बचकानी बातें यहां अखिलेश जी को नहीं करना चाहिए, सरकारी ट्रस्ट है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 2019 तक जलियांवाला बाग का ट्रस्ट का अध्यक्ष कांग्रेस का अध्यक्ष होता था, तो जलियांवाला बाग कांग्रेसी ट्रस्ट था, तो बेवजह की बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल लीगल बात कह रहा हूं। ट्रस्ट में जो जो पुख्ता सबूत आएंगे पूरी कार्रवाई होगी, अगर आप कहते हैं
3: सरकार ने बनाया है ट्रस्ट को
2: पूरी कार्रवाई,
1: हाँ ना बोलो ना,
2: चलिए इसी उम्मीद के साथ में हमने कुछ लोगों से पूछने की कोशिश की, जनता बिल्कुल होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये संदेह है कि क्या ये कार्रवाई पुख्ता तौर पर हो पाएगी। जिस तरीके से राम मंदिर का ट्रस्ट वहां पर काम कर रहा है, क्या उसमें कुछ बदलाव होंगे? इन सभी सवालों के साथ जवाब जनता आखिरकार ढूंढ रही है। इसके इन्हीं जवाबों का इंतजार हमें भी होगा। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।
7: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना, टंकी मतलब वेक्टर्स।
8: और एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के ठाणे में टीईटी परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर है। पेपर लीक की आशंका के बाद टीईटी परीक्षा को स्थगित किया गया। महाराष्ट्र में कल होने वाली थी टीईटी की परीक्षा, अब पेपर लीक को लेकर शिक्षा विभाग जांच में जुटा हुआ है। दिवेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या जानकारी इस पेपर लीक से जुड़ी दिवेश?
9: हिमांशु देखिए, बिल्कुल एक बहुत बड़ी घटना है जो अभी ये सामने आई है कि टीईटी का पेपर है ठाणे जिले के भिवंडी में लीक हुआ है। वहां पर कुछ संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा था और जब उनके पास से जो पेपर मिले हैं उनका जब मिलान कल होने वाले परीक्षा के पेपर से किया गया तो प्रश्न जो है वो काफी हद तक समान निकले, जिसके बाद भिवंडी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शिक्षा विभाग द्वारा प्रेस नोट जारी की गई है और कहा गया है कि कल जो परीक्षा होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है अगले आदेश तक। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है वो परीक्षा विभाग द्वारा की जाएगी कि किस तरीके से ये पेपर लीक हुआ या कैसे इनके हाथ पहुंचा, इसमें और कौन लोग शामिल है। लेकिन जाहिर तौर पर देश में जब एनी नीट पेपर के लीक होने के बाद ये एक बहुत बड़ी घटना है जो फिलहाल घटी है। कल ही पेपर होना था टीईटी का, टीचर एंट्रेंस टेस्ट, और छात्र जो है पिछले कई महीनों से सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे।
8: ऐसे समय में आखिरी समय में बहुत दुख लगता है, एक और परीक्षा एक और पेपर लीक। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: आगे आगे,
5: अरे उधर
4: उधर की तरफ।
5: करेक्ट करेक्ट,
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से
8: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
7: विमल बोलो जुबां केसरी।
8: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
9: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
10: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
11: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560006546 पर कॉल करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.
2: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
3: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
4: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
5: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
0: इन एसोसिएशन विद हिंट बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू Vimal, Bolo Zuba Kesri. Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
7: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
8: हमने तब भी सवाल किया था
9: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है
8: हम आज भी सवाल करते हैं
9: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं
8: ऑपरेशन अग्नि
9: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे
8: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई खबरदार सिर्फ आज तक पर

मध्य न्यूजीलैंड में शुक्रवार को आए तूफान से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राजधानी वेलिंगटन में तेज हवा में कई पेड़ उखड़ गए। सड़कों और घरों पर पेड़ गिरने से काफी नुकसान हुआ है। खराब मौसम का असर हवाई यातायात पर भी हुआ है। राजधानी वेलिंगटन से आने जाने वाली 200 उड़ानों को रद्द करना पड़ा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। पोल उखड़ने से हजारों घरों में बिजली कटने से अंधेरा छा गया। न्यूजीलैंड के मौसम विभाग ने खराब मौसम की चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी। मौसम विभाग ने देश भर में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका जताई थी। राजधानी वेलिंगटन में ही 4000 से ज्यादा घर में बिजली गुल होने से अंधेरा छा गया। राहत बचाव दल ने तूफान के तुरंत बाद जिम्मेदारी संभाल ली और सबसे पहले फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और बिजली सप्लाई सामान्य करने का काम शुरू किया गया। राजधानी के करीब 3000 ग्राहकों की बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है और उम्मीद है कि बाकी लोगों की बिजली सप्लाई भी जल्द सामान्य हो जाएगी। उड़ानें रद्द होने से कई लोगों को अपनी यात्रा रोकनी पड़ी है। आज तक ब्यूरो

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
6: तो मुख्य गुनहगार है वो तो बाहर है वो आप भी उस ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं ना चोरी का पैसा वो आप मंदिर में चोरी करते हो हिंदुत्ववादी लोग हैं आप अपने आप को मानते हो आप मंदिर की दानपेटी चुराते हो लाखों करोड़ रुपया चुराते हो वो पैसा राजनीति में आता है और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो पार्टियां तोड़ते हो वही राम मंदिर के 2,000 करोड़ आप लोगों ने जो चोरी किए हैं उसी पैसे से आपने आपके सांसद तोड़े तृणमूल के सांसद तोड़े विधायक तोड़े शिवसेना के जो 6 सांसद तोड़े वो राम मंदिर का ही लूटा हुआ पैसा है
7: उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये जो कहावत है उसी तरह संजय राउत जी का बर्ताव है मैं हर बार बोलता हूँ उनको पागलपन के दौरे आ रहे हैं और उसी का ये नतीजा है इसी तरह की बातें करना राम मंदिर और उनकी तिजोरी जो कुछ पैसा है उसके बारे में SIT लगाया है अगर ये पैसा चोरी करने का था रहता मन में था तो उनके ऊपर SIT नहीं लगता था वो जिन्होंने चोरी की है उनको पकड़ रहे हैं ये सिर्फ पागलपन के दौरे की वजह से इसी तरह की बातें संजय राउत कर रहे मुंबई महापालिका को लूटने का काम संजय राउत और यूबेटे ने किया है और बंबई के सिवा उनके ध्यान किधर भी नहीं है महाराष्ट्र में नहीं उनकी पार्टी अब खत्म हो रही है उनको छोड़ के जा रही है कांग्रेस में विलीन होने की बात कर रहे हैं मैं पूछता हूं शरद पवार जी ने आत्मसम्मान के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की निर्मित की उनको बोल रहे कांग्रेस में विलीन हो इसीलिए संजय राउत ने कितना पैसा लिया है कितनी पैसे की सुपारी ली है मैं उनके जाहिर ये प्रश्न पूछता हूं राहुल गांधी ने आपको कितने पैसे दिए जो शरद पवार जी के जो 8 सांसद है उनमें कांग्रेस में जोड़ने की आप लोग आप विनंती कर रहे हैं डिमांड कर रहे हैं इसके लिए आपको कितना पैसा दिया
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: महाराष्ट्र में टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक, नहीं होगी कल होने वाली परीक्षा। ठाणे में मिला लीक पेपर, जांच में जुटा शिक्षा विभाग। अगले साल शुरुआत में भारत के दौरे पर आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। विदेश मंत्री रूबियो बोले भारत अहम साझेदार, जल्द होगी डील पर साइन। तीन दिन के सेशल्स दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की जेल, अब तक 80 लाख रुपए बरामद। बाबा बागेश्वर बोले चोरों को भगवान देगा महादंड। और केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच से खुलासा, 3 साल शादी नहीं करना चाहती थी सिया, पीछे चढ़ाने के लिए केतन की हत्या। माता पिता से पूछताछ, पुलिस ने भाई साहिल को फिर बुलाया।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दोपहर के 2 बजे और इस बुलेटिन में कई अहम खबरों का जिक्र होगा। सियासत की बड़ी खबरें होंगी, साथ ही अपराध जगत की भी खबरें हम आपको दिखाएंगे। बात हम करेंगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की और आपको दिखाएंगे कि कैसे 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है, क्या अहम सबूत थे। साथ ही खबर महाराष्ट्र की सियासत की, जहां पार्टी में बगावत के बाद शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की यात्रा पर निकले हैं और इस पर विस्तार से खबर दिखाएंगे। बात करेंगे पुणे में केतन हत्याकांड की, कैसे पुलिस का शिकंजा कस रहा है, ये हम आपको बताएंगे। ये सभी खबरों पर नजर होगी, लेकिन सबसे पहले खबर महाराष्ट्र में पेपर लीक की। अब वहां भी पेपर लीक की वजह से 28 जून को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस देश में एक और पेपर लीक हुआ। प्रश्न पत्र लीक की आशंका के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे ने शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, उसको अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया। अब जानकारी ये मिली कि आज सुबह 27 जून की सुबह गोपनीय सूचना के आधार पर भिवंडी में पुलिस ने छापा मारा। जांच के दौरान महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया। अब शुरुआती जांच में संदिग्धों के पास मौजूद कुछ प्रश्न टीईटी के प्रश्न पत्र से मेल खाते पाए गए। अब इस मामले को गंभीरता से लिया गया, भिवंडी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। दीपेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपेश, एक और परीक्षा, एक और पेपर लीक, क्या खबर सामने आई अभी तक?
1: जी हिमांशु, देखिए बिल्कुल, नीट पेपर लीक होने के बाद ये एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ऐसा लगा था कि अब कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार होगा, अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, विद्यार्थियों को कोई तकलीफ नहीं होगी जो कई सालों से कई महीनों से इसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलग ही चित्र देखने को मिला, जहां टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम कल होना था वो उसका पेपर जो है एक दिन पहले ही लीक हो गया। तैयारियां लगभग प्रशासन की तरफ से भी परीक्षा लेने की पूरी कर ली गई थी, सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी, सारे सेंटर्स को एक बार देख लिया गया था, सुपरविजन सब हो गया था, लेकिन एक दिन पहले ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां थाने जिले के भिवंडी में भिवंडी पुलिस को पुलिस ने एक छापे मारकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से पेपर मिले हैं जिनके प्रश्न जो हैं वो कल टीईटी पेपर टीईटी एग्जाम में आने वाले प्रश्नों से मेल खाते हैं, और इसलिए इस परीक्षा को अगली तारीख तक या अगले आदेश तक जो है स्थगित कर दिया गया है। यानी अब विद्यार्थियों को और एक बार रुकना पड़ेगा, फिर से एक बार उन्होंने जो तैयारियां की थी उस पर एक कहीं ना कहीं विराम यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर इससे उनकी तैयारियों पर असर पड़ेगा।
0: सवाल तो उठेगा ना, जब नीट पीजी की परीक्षा की बात आती थी तो उसके भी तार महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे, अब यहां टीईटी की बात आती है, ये भी महाराष्ट्र में, ये तो महाराष्ट्र टीईटी है ही, तो महाराष्ट्र में ही क्या एक नेक्सस चल रहा है जो इस तरह से परीक्षाओं को लीक कराता है पेपरों को?
1: हिमांशु बिल्कुल, देखिए ये काफी गंभीर विषय है, क्योंकि नीट पेपर भी लीक हुआ था तो उसके ज्यादातर एक्यूज जो हैं वो महाराष्ट्र से पकड़े गए थे, मुख्य अभियुक्त भी महाराष्ट्र का ही, महाराष्ट्र से ही था। वहीं अब टीईटी पेपर जो महाराष्ट्र के लिए होना है उसके वो भी पेपर लीक हो चुका है, तो जाहिर तौर पर शिक्षा विभाग के लिए काफी गंभीर परिस्थिति है। उनको कहीं ना कहीं अपनी इंटरनल एक छानबीन करनी होगी और काफी स्ट्रिक्ट करनी होगी कि ऐसे कौन से लोग हैं, कौन से अधिकारी हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि बिना शिक्षा विभाग के किसी व्यक्ति के सम्मिलित हुए बिना ये करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक कड़े अनुशासन की जरूरत है शिक्षा विभाग में खास करके, क्योंकि शिक्षा ही भविष्य की कहीं ना कहीं नींव होती है और इसी नींव के साथ।
0: सही कहा दीपेश, आपने बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं घर का भेदी लंका ढाए, तो कौन है शिक्षा विभाग में जो इस तरह से परीक्षा लीक करा रहा है या फिर जांच में उसका नाम सामने आएगा या नहीं आएगा, ये बड़ी बात है। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक की जैसे ही खबर आई कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया, कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। कांग्रेस कह रही है कि कल होने वाला पेपर लीक हो गया है, टीईटी परीक्षा को स्थगित किया गया और अब कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया कि पेपर लीक हो गया महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर, और बीजेपी सरकार में कोई ऐसा पेपर नहीं जो लीक नहीं हुआ है। यह सरकार पेपर लीक सरकार बन चुकी है, यह कांग्रेस की तरफ से कहा गया।

0: और अब खबर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई है और इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ। सामने आया कि गिरफ्तार आरोपित यानी अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक नया घर खरीदा था। अनुकल्प मिश्रा की चाची ने जो आरोप उस पर लगाए थे, उस पर अनुकल्प के घर वालों का कहना है कि ये जानबूझकर फंसाने के लिए गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। अब आज तक की टीम अनुकल्प के उस घर तक पहुंची और वहां परिजनों से बात की।
1: इस वक्त मैं मौजूद हूं अनुकल्प मिश्रा के घर पे, वही अनुकल्प मिश्रा जिनको अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोप लगे हैं कि राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी में उनका एक सक्रिय रोल था और नोटों की जो गिनती होती थी वो उनकी देखरेख में होती थी। उनका ये काम था कि नोटों की देखरेख की जाए, गिनती की जाए और बैंक में उसको जमा किया जाए। देखेंगे आप पीछे, ये वो घर है जहां पर आज तक की टीम इस वक्त मौजूद है। बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 साल पहले ही यहां पर जो पूरा परिवार था वो शिफ्ट हुआ था और उसके पहले ये परिवार कहीं और रहता था। जब से ये तमाम खबरें सामने आई हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, तब से लगातार ये आरोप जो है उन पर लग रहे हैं कि उन्होंने ही चढ़ावा चोरी में एक सक्रिय रोल जो है वो निभाया। हालांकि घर पे ज़्यादा भी कोई है नहीं, हम कोशिश करेंगे एक बार बात करने की कि क्या परिवार वाले हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। कोई होगा यहाँ पे? मैम आप हैं यहाँ पे, आप कौन हैं अनुकल्प मिश्रा की?
2: हम उनकी बहन है, वो मेरे भाई को फंसाया जा रहा है।
1: आप बहन है उनकी, उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में। आपका क्या पक्ष है, आप क्या कहना चाहेंगी?
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की, 10 साल से उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
1: हाँ नेहा मिश्रा की बात आप बता रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया, तमाम चीजें, उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं?
2: वो सब फंसाया जा रहा है, उनका केस चल रहा है, उसी में वो भी आपके बीच में बोल रही है कि फंस जाइए, लोग पटीदार है वो लोग यहाँ रहते भी नहीं है, हम लोग से नहीं मतलब है।
1: तो आपको क्या लगता है कि गलत तरीके से आप लोगों को फ्रेम किया जा रहा है, आप क्यों, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? उनका वो वहाँ पे थे, गिनती करते थे नोटों की, आपको लगता है कि वो इन्वॉल्व नहीं थे इसमें?
2: जी, इसमें वो कुछ नहीं था, बस फंसाया जा रहा है, बस।
1: आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर आप लोग कितने समय पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं?
2: यहाँ 2-3 साल से रहे, यहाँ तो हम 10 साल से रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, पूरी फैमिली हम लोग की रहती है।
1: जब ये सब खबरें सामने आई और आप लोग की बात भी हुई होगी जो अनुकल्प से, तो क्योंकि कल गिरफ्तारी जो है वो परसों ही हुई है, तो उसके पहले उनका क्या रुख था, वो क्या कह रहे थे आपसे परिवार से?
2: जी वो कुछ नहीं कह रहे थे, उन लोगों को फंसाया गया है, बस इतना कह रहे हैं। भाई को फंसाया गया है।
1: किन लोगों द्वारा फंसाया जा रहा है?
2: जी ये सब नहीं पता।
1: तो ये आप देखेंगे अनुकल्प मिश्रा की बहन थी जिनका कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव बातचीत में आज तक से उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के उन पर आरोप लग रहे हैं, चाहे वो उस महिला द्वारा जिन्होंने उनके परिवार की ही है, चाचा की बेटी है उनका।
0: वहीं गिरफ्तार अनुकल्प की चाची नेहा मिश्रा ने चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि कैसे अनुकल्प और उसके परिवार ने बहुत संपत्ति बनाई।
3: ये तो क्या अचानक से ये पैसा बढ़ गया इन लोगों के पास से कि पहले से था?
4: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
3: अच्छा,
4: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे ये लोग।
3: क्या पैसा बढ़ गया?
4: हाँ पैसा भी, हाँ। और वहाँ गाँव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया और अभी हाल में भागवत करवाए हैं जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
3: तो ये क्या मतलब, राम मंदिर जैसे चोरी का आरोप आ रहा है तो क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये पैसा था?
4: अब जाहिर सी बात है कि इतना पैसा हमारे ससुराल वालों के पास नहीं था जिस तरीके से उन्होंने भागवत में भव्य प्रदर्शन किया है और तरह तरह के नाश्ते बनवा रहे थे, तरह तरह के खाना बनवा रहे थे, प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे,
3: गाड़ियाँ भी खरीद रहे हैं लोग, गाड़ियों का काफिला।
4: हाँ एक गाड़ी है अभी अनुकल्प के पिताजी ने खरीदा।
0: तो चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश सरकार को लगातार घेर रही है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले अब तक बचे हुए क्यों हैं।
5: ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा।
6: भगवान राम के भक्तों की आस्था पर चोट हुई है, चढ़ावे की चोरी की गई, जांच बिठा दी गई है, गिरफ्तारियां हो गई, आठ आरोपित पकड़े भी गए हैं और सरकार कठोर कार्रवाई का वादा दोहरा रही है, फिर भी विपक्ष हमले का मौका नहीं चूक रहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी कलंगा कांड अयोध्या में ही होगा, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अयोध्या में महा डकैती हुई। एक दिन पहले यानी 26 जून को केजरीवाल ने रामलीला के दर्शन किए, दर्शन के बाद चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरा।
7: और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं, जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महा डकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। जाहिर तौर पे वो अपने खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे नहीं, तो वो अपने को पूरी तरह से अपने को बचाने में लगे हुए हैं।
6: सवाल आस्था और विश्वास का है, लेकिन चढ़ावे की चोरी की वारदात से राम भक्त आहत हैं। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष को मानो ब्रह्मास्त्र मिल गया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बीजेपी को घेरा, आरोप लगाया कि वो क्या करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी, लालच ने मार दिया है जिसकी आंख का पानी। केजरीवाल ने सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री योगी ने आईना दिखाया तो समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए।
5: मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो।
6: चढ़ावा चोरी के मामले की जारी तफ्तीश के बीच सियासत तेज है, लेकिन सवाल एक है कि आखिर बड़ी मछलियां जाल में कब फंसेंगी? मंदिर ट्रस्ट के बड़े चेहरों पर एक्शन कब होगा? संतोष कुमार शर्मा, अयोध्या आज तक।
0: तो अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के रामलला के दर्शन वाली तस्वीरें जारी किए जाने के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए पूछा कि अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के लिए कैमरे और विशेष छूट, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और आम श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम। उन्होंने ये भी कहा कि जब कुछ दिन पहले मैंने दर्शन किए तब व्यवस्था अलग थी। अजय राय ने सवाल उठाए हैं कि राजनीतिक सुविधा देखकर नियम बदलने वाली बीजेपी सरकार बताए कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? राम सबके हैं, फिर बीजेपी सरकार की दोहरी नीति क्यों? अजय राय की तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया, जिसमें देखिए वो लिख रहे हैं कि राम सबके हैं, फिर बीजेपी सरकार की दोहरी नीति क्यों? राजनीतिक सुविधा देखकर नियम बदलने वाली भाजपा सरकार बताए कि आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है? अरविंद केजरीवाल पर यह बात कही गई है। अरविंद केजरीवाल के सारे बीजेपी पर निशाना साधा। चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद हर कोई कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि वैसे लोगों को महादंड मिलेगा।
8: हमें खबर मिली कि FIR हुई है, अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है और पकड़े जाएंगे।
9: रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि सात परिवार सहित नाश हुआ, करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा, महादंड पाएगा, ये तो पक्का है, महादंड पाएगा, उसे कोई छोड़ नहीं सकता।
0: केतन हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपित सिया गोयल के माता पिता को पूछताछ के लिए लोनावला ग्रामीण पुलिस ने बुलाया है। अब इससे पहले शुक्रवार को सिया के भाई साहिल से करीब 10 घंटे तक गहन पूछताछ की गई थी। अब पुलिस सिया के माता पिता से भी पूछताछ कर रही है, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश। इस पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि सिया के माता पिता से पूछताछ में मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। साथ ही साहिल को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। साहिल से एक बार पूछताछ हो चुकी है, दूसरी बार फिर बुलाया। तो केतन मर्डर केस की पड़ताल के दौरान पुलिस को चौंकाने वाली जानकारियां मिली। अब पुलिस सूत्रों की माने तो सिया ने कबूल किया कि वो 3 साल तक शादी टालना चाहती थी, लेकिन रिश्ता तय हो गया था। अब इसीलिए तोड़ने से बदनामी होती तो उसने प्लान बनाकर केतन को ही रास्ते से हटा दिया।
10: क्या केतन को मारने का प्लान चेतन ने बनाया? क्या चेतन को आगे करके सिया को बचाने की कोशिश हो रही है? 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था, सिया का या केतन का? पुणे के केतन मर्डर केस में सिया का परिवार नई थ्योरी लेकर सामने आया है। सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
11: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
12: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
10: सिया के माता पिता दावा कर रहे हैं कि उन्हें सिया और चेतन के अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं था। वो अभी भी कह रहे हैं कि सिया और चेतन के बीच कुछ नहीं है। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई, एंग्जायटी और घबराहट इतनी ज्यादा हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। इधर पुणे पुलिस की जांच में सिया ने कबूल किया है कि वो कम से कम 3 साल तक शादी टालना चाहती थी, लेकिन रिश्ता तय होने के बाद शादी तोड़ने से बदनामी होती इसलिए उसने केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सिया का दोस्त चेतन भी कम से कम 2 साल तक शादी नहीं करना चाहता था। केतन और सिया की सगाई फरवरी में हुई, लेकिन उससे ठीक पहले जनवरी में सिया गोयल अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ राजस्थान के उदयपुर गई थी। वहां वो 5 दिनों तक रही थी। चेतन चौधरी मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस की माने तो हत्या वाले दिन चेतन और सिया लोनावाला के कैफे में मिले थे, जहां उन्होंने हत्या की अंतिम योजना बनाई। शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। इसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
13: उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
14: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
10: अब पुणे पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। इससे पहले सिया के भाई से 10 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। ओंकार वाबले, पुणे आज तक।
0: वक्त तो चला है बहुत छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
17: जस्ट व्हाट यू नीड फॉर समर इज वेटिंग एट टारगेट। Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
18: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatic Sportsbook app.
19: .com.
20: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
21: इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
23: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
2: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
3: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
3: जहां खबर वहां खबरदार।
7: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: हमें मालूम है कि देश भर में कौन से राज्य में कहां केमिकल जोन है। बहुत छोटे कंस्ट्रक्शन एरिया में लैब बना दी जाती है और ऊपर कोई मुखौटा होता है, तो एजेंसियों ने भी उसको ढूंढने का एक अपना तंत्र विकसित करना पड़ेगा और उसको कठोरता के साथ हमने नष्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन जो नई पद्धति के इन्होंने ढूंढे हैं, इसका भी हमने उपाय भी ढूंढना पड़ेगा और ये उपाय को सतत परिवर्तनशील करते हुए मॉनिटरिंग कर इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना पड़ेगा। पीएमएलए और ईडी के माध्यम से इसके फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को भी हमने बहुत रूथलेसली करना पड़ेगा और ये सब मिलकर उनके नेटवर्क को छिन्न विछिन्न करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक बार नेटवर्क छिन्न विछिन्न होता है तो हमारी लड़ाई जीतने के रास्ता बहुत आगे तक हम कर लेंगे। और तीसरा है डिस्ट्रॉय, नेटवर्क को दोबारा खड़ा न हो इस तरह से रूथलेसली समाप्त करना है।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: महाराष्ट्र में टीटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक, नहीं होगी कल होने वाली परीक्षा। ठाणे में मिला प्रश्न पत्र, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस, जाट में जुटा शिक्षा विभाग। अगले साल शुरुआत में भारत के दौरे पर आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, विदेश मंत्री रूबियो बोले भारत अहम साझेदार, जल्द होगी डील साइन। 3 दिन के सेशल्स दौरे पर रवाना पीएम मोदी, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि, राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की जेल, अब तक का 80 लाख रुपए बरामद, बाबा बागेश्वर बोले चोरों को भगवान देंगे महादंड। और केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच से खुलासा, 3 साल शादी नहीं करना चाहती थी सिया, पीटर छुड़ाने के लिए केतन की हत्या, माता पिता से पूछताछ, पुलिस ने भाई साहिल को फिर बुलाया।
1: कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, उनकी तो हत्या हुई है।
2: भारतीय सेना
1: अगर सबकी सहमति ये है कि मुझे ही लड़ना है तो लड़ा जाएगा। एमएलए तो जीत कर जब आए हैं तो टीएमसी के सिंबल पर जीत कर आए हैं, तो क्या वो निर्दलीय जीत पाएंगे? मुझे ऐसा कभी नहीं दिखता है, कम से कम अगले 5-7 सालों में, 10 सालों में, कि टीएमसी और कांग्रेस का बंगाल में मर्जर हो जाएगा। ये बिल्कुल, और ये आस्था का केंद्र है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुत्व की बात करना और हिंदुत्व में एक्चुअली उस आस्था में यकीन रखना, दोनों दो बात।
3: बिहार की राजनीति इन दिनों भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर काफी गरमाई हुई है, साथ ही साथ चर्चा बांकीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी हो रही है। और तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार आज तक पर अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला।
4: धन्यवाद।
3: 6 महीने का वक्त बीत गया, आपने अभी तक मीडिया से कुछ बातचीत की नहीं है, कैसा रहा 6 महीने के पहले जरा बता दीजिए, चुनाव हारे, इतना बुरा प्रदर्शन रहा उसके बाद?
4: 6 महीने फिर से चीजों को समेटने के लिए, फिर से उसको पुनर्व्यवस्थित करने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि 6 महीने में संगठन को पुनर्गठित करके बिहार नवनिर्माण के लिए जो अगले 4-4.5 साल काम करना है उसकी तैयारी करके काम शुरू करेंगे। उसी के तहत आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने अपना बेस जो पार्टी का है या मेरे रहने का है, इसको बिहार नवनिर्माण आश्रम यहाँ बनाया है, यहीं पर अभी से लेकर अगले 4-4.5 साल तक यहीं पर रहेंगे। और ताकि बिहार के समाज से, बिहार जन स्वराज के कार्यकर्ताओं से जो हम लोग की विचारधारा है, जो हम लोग बिहार में प्रयास कर रहे हैं, उसको यहीं से उसको संपादित किया जा सके और उसको घर घर पहुंचाया जा सके।
3: पटना छोड़ के ये बाहर, मतलब एक ग्रामीण पटना के इलाके में आ गए हैं, इसके पीछे क्या वजह है?
4: नहीं, इसकी घोषणा तो मैंने चुनाव के परिणामों के तुरंत बाद कर दी थी कि आने वाले 5 वर्ष में मैं पूरी तरीके से बिहार के समाज से जुड़कर रहने की जो सोच है उसका एक हिस्सा ये भी है कि किसी रिहायशी बंगले में रहने के बजाय एक आश्रम बनाकर वहाँ रहा जाए और लोगों के साथ रहा जाए। यहाँ सिर्फ मैं नहीं रह रहा हूँ, यहाँ पे मेरे साथ सैकड़ों लोग, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये आश्रम का स्वरूप फाइनल होता जाएगा वैसे वैसे और लोग रहेंगे। और वो जो लोग रहेंगे वो संकल्पित लोग हैं जो कि अपना एक तरीके से जीवन बिहार में सुधार के लिए, बिहार में बदलाव के लिए अपना देना चाहते हैं। उसमें नए लड़के हैं, उसमें बुजुर्ग लोग हैं, और इन्हीं के माध्यम से बिहार में घर घर ये बात पहुंचाई जाए, जन स्वराज की विचारधारा को, इस प्रयास को, और बिहार में क्यों बदलाव जरूरी है और कैसे इसको किया जा सकता है। एक तरीके से उसके करने वाले जो फुट सोल्जर्स हैं, उसके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उसके निर्माण का ये स्थल है।
3: चलिए, ये तो आपने अपनी बात कही, लेकिन इन दिनों आप भी देख रहे हैं बिहार की राजनीति, भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर काफी गरमाई हुई है, आप 2 दिन पहले वहां गए थे, महापंचायत में शामिल हुए, परिवार वालों से मुलाकात की, क्या लग रहा है, मतलब ये एनकाउंटर?
4: देखिए, भरत तिवारी का कोई एनकाउंटर नहीं हुआ, उनकी तो हत्या हुई है। एनकाउंटर तो बाई डेफिनेशन इसका मतलब है कि गोली दोनों ओर से चले, तो एनकाउंटर तो हुआ नहीं है। लेकिन ये तो एक मामले ने तूल पकड़ लिया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बिहार में इस सरकार के बनने के बाद 20 से ज्यादा इनके शब्दों में सो कॉल्ड इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर, एक नया शब्द ईजाद किया है, इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर कर रहे हैं लोग। इसके पीछे आपको समझने की जरूरत है कि ये हो क्यों रहा है। ये हो इसलिए रहा है कि जो सत्ता में ऊपर लोग बैठे हुए हैं, खासकर जो मुख्यमंत्री हैं, गृहमंत्री हैं, उनकी सोच ये है, और कम से कम ये वो प्रदर्शित करते हैं कि पुलिसिंग का मतलब है गोली चलाना, पुलिसिंग का मतलब है किसी को मार देना। मेरी अपनी समझ ये है कि समाज में बहुत तेरे ऐसे लोग इससे सहमत होंगे कि पुलिसिंग का मतलब गोली चलाना नहीं है, पुलिस का काम तो समाज की रक्षा है। अपराधियों को मारने के नाम पर अगर आप पुलिस को गोली चलाने की छूट दे देंगे तो भरत तिवारी जैसी घटनाएं, मैं रादर कहूंगा दुर्घटना, होती रहेगी। इसलिए कि ये तय कौन करेगा कि अपराधी कौन है। ये बात तो ठीक है कि अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो कौन अपराधी है, उसका अपराध क्या है और उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, ये तय करना किसी मुख्यमंत्री का, गृहमंत्री का, विधायक का, थानेदार का काम नहीं है। संविधान के तहत वो काम, वो जिम्मेवारी न्यायालय की है। और जब आप उस बनी हुई व्यवस्था से अलग हटकर कोई एक नई व्यवस्था बनाएंगे जिसमें आप रोज मंच पर खड़े होकर ये कहेंगे कि अपराधियों को गोली मार दिया जाए, तो फिर वो आपके हाथ में नियंत्रण में रहेगा नहीं। और वही बिहार में हो रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग सुन रहे हैं कि आज किसी को पैर में गोली मार दी, आज किसी की हत्या कर दी गई, और जहां कहीं अगर उसमें 10 केस होगा तो 3-4 गलती होगी होगी। ऐसे तो संवैधानिक तरीके से हर अपराधी को भी गोली मारना गलत है, लेकिन उसमें इनोसेंट लोग भी मारे जाएंगे, और वही हुआ है भरत तिवारी के केस में, क्योंकि आपने प्रशासन को खुली छूट दे दी है। इसीलिए जब मैं वहां गया तो मैंने ये कहा कि घटना की जो जांच की बात हो रही है, न्यायिक जांच की, तो जांच में सबसे जरूरी बात यह है समझना कि किसकी जांच होगी। क्या जिन लोग, जो पदाधिकारी, जो कांस्टेबल, जो एएसआई, डीएसपी, थानेदार वहां पर थे, गोली चलाई या चलवाई, उनकी जांच होगी, या पटना में बैठे हुए पुलिस हेडक्वार्टर में लोग जो इसको नियंत्रित कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, उनकी जांच होगी, या फिर सरकार के गृह विभाग के, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री के भी उस जांच होगी, क्योंकि उनके वक्तव्यों का कितना असर पड़ा है इस तरह के पुलिसिया व्यवहार पे, इसको भी जांच के परिधि में लाया जाना चाहिए। जब तक आप उस चीज को नहीं एड्रेस करेंगे तो किसी कांस्टेबल को या एएसआई को सस्पेंड कर देने से ये रुकने वाला नहीं है। और आप देखिएगा बिहार में आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये नियंत्रण से बाहर होने वाला है।
3: क्या योगी मॉडल को यहाँ रेप्लिकेट करने की कोशिश हो रही है बिहार में?
4: नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि जब ये कह रहे हैं कि बिहार में बिहार को अपराध मुक्त कर देंगे, तो क्या 20 साल से जो भाजपा और जदयू की सरकार चल रही थी वो अपराध मुक्त नहीं था? क्या वो अपराध युक्त था? जो विजय चौधरी आज उप मुख्यमंत्री हैं जदयू के, उनसे जरा ये पूछिए सवाल कि क्या 20 साल के नीतीश के राज में अपराधियों का सफाया नहीं हुआ, जो सम्राट चौधरी के मॉडल की जरूरत है? 20 साल से तो भाजपा और जदयू वाले यही दावा करते रहे हैं कि राजद के जंगल राज को खत्म करके नीतीश कुमार ने सुशासन यहां बना दिया। तो अगर बिहार में सुशासन 20 साल से चल रहा था तो किस अपराध मुक्त की बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जदयू के कितने नेता मंत्री ये मानने को तैयार हैं कि नीतीश कुमार का जो 20 साल का राज था उसमें अपराधियों का बोलबाला रहा है, जिसकी सफाई सम्राट चौधरी को करने की जरूरत है। दूसरी बात कि अगर अपराधी हैं तो उसको कानून के तहत ही तो सजा दिलवाइएगा। आप ये कह सकते हैं कि अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उनको जेल में डाला जाएगा, उनको फांसी पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि पुलिस उनको गोली मार देगी, तो क्या सम्राट चौधरी या भाजपा का नेतृत्व ये कह रहा है कि हम पुलिसिया स्टेट बना दिए बिहार को? क्या यहाँ न्यायालयों को बंद कर दिया जाएगा? तो ये तो मैंने जो आपको पहले कहा, ये राजनीतिक और प्रशासनिक अपरिपक्वता को दिखाता है, और ये चलेगा नहीं। बिहार जैसे राज्य में तो चल ही नहीं सकता है, गांव-गांव में मारपीट शुरू हो जाएगी।
3: बीजेपी के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं, जेडीयू के लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्ष तो कर ही रहा है।
4: करेंगे ही करेंगे। आप देखिए इस मुद्दे पर हर व्यक्ति विरोध कर रहा है। जिस महापंचायत की आप बात कर रहे हो तो सब भाजपा ही वहां बैठे हुए थे, भाजपा से जुड़े हुए संगठनों के लोग बैठे हुए थे। कौन व्यक्ति इस बात के लिए सहमति देगा कि आप किसी सामाजिक कार्यकर्ता को, जो समाज के लिए लड़ रहा था या समाज के लिए आवाज उठा रहा था, उसको आप गोली क्यों मार देंगे? संभव है कि उसने उस समय, उस वक्त जो किया वो गलत है, आप उसको पकड़ लेते, आप उसको उस पर ट्रायल चला देते, आप उसको गोली क्यों मारेंगे? और ये यही जांच का विषय है। तो ये साफ दिखाता है कि ये किसी मालाकार साहब ने अकेले गोली नहीं चलाई है, कोई डीएसपी की ताकत नहीं है। जब तक एसपी, एसटीएफ और गृह विभाग के आला अधिकारियों ने हरी झंडी नहीं दिखाई होगी, तब तक इस तरह के मामले नहीं हो सकते हैं। सरकार अब उनका गला फंस गया है तो छोटे पदाधिकारियों की बलि चढ़ाकर अपनी जान बचाना चाहते हैं, वो होगा नहीं।
3: अच्छा चलिए प्रशांत जी, एक दूसरे मुद्दे पे बाकीपुर को लेकर अब बात करते हैं, क्योंकि आप तो पटना से बाहर यहाँ आ गए हैं, लेकिन अभी उपचुनाव होना है बाकीपुर में। बड़ी चर्चा है कि भाई प्रशांत किशोर ही वहां से क्यों नहीं लड़ जाते हैं, ये बड़ी चर्चा चल रही है।
4: बिल्कुल चर्चा है, क्यों चर्चा है आप इसको समझिए। जो भाजपा के एनडीए के वोटर हैं, जैसा कि आपके दर्शकों को पता है, बांकीपुर वो सीट है जो भाजपा पिछले 40-45 साल से हारी नहीं है। आप मान कर चल सकते हैं कि वो भाजपा का बिहार का सबसे मजबूत सीट है राजनीतिक नजरिए से। वहां के लोग आकर ये कह रहे हैं कि प्रशांत जी आप लड़िए, क्योंकि लोग इतने इससे ज्यादा इस प्रेजेंट सरकार से इतने नाखुश हैं, खासकर इसके मुखिया के तौर पर सम्राट चौधरी के चयन से इतने नाखुश हैं, कि जो भाजपा के वोटर हैं वही आके कह रहे हैं कि आप लड़िए, क्योंकि हम लोग लालू जी को की पार्टी को तो वोट दे नहीं सकते हैं, लेकिन आप जैसा व्यक्ति कोई खड़ा होगा, जनसुराज का कोई आदमी खड़ा होगा, तो हम लोग ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि नहीं, वोट लेने के बाद नीतीश कुमार को हटाकर जो सम्राट चौधरी को बनाया गया है, ये सही चयन नहीं है, और इससे बिहार की जनता इंक्लूडिंग भाजपा के वोटर भी इससे सहमति नहीं रखते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। और हम लोग ये बता भी रहे हैं बिहार बांकीपुर की जनता को कि भाई आप ये कह रहे हैं कि हमने सम्राट चौधरी के लिए वोट नहीं दिया था, तो आप मोदी जी को, अमित शाह जी को कैसे बताएंगे कि आप इससे सहमत नहीं है? आप कोई मोदी जी से फोन पर तो बात करेंगे नहीं। तो आपके पास अवसर है, ईवीएम पर भाजपा को हराइए, मोदी जी को खबर हो जाएगी कि जो निर्णय यहां पर उन्होंने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर लिया है उससे बिहार की जनता इंक्लूडिंग भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक सहमत नहीं है।
3: सम्राट चौधरी तो चलिए बात की बात है कि एक आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले तो प्रशांत किशोर पर सवाल होगा। पिछले विधानसभा में आप कहते थे करगहर की जनता चाह रही है चुनाव लड़े, आप नहीं लड़े। राघोपुर की जनता चाह रही है आप कह रहे थे, आप नहीं लड़े। अब एक और सवाल पूछ लेता हूं ये कि उस समय देखिए आपने, अब आप बहाना इसको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपने कहा कि भाई अगर मैं ही चुनाव लड़ूंगा तो सारा मशीनरी मेरे चुनाव में लग जाएगा, तो मेरे बाकी के उम्मीदवारों को कौन जिताएगा? अब अभी तो एक ही चुनाव है तो क्यों नहीं लड़ जाते हैं, जनता की बात सुन लीजिए।
4: बिल्कुल बिल्कुल लड़ा जाएगा, बिल्कुल लड़ा जाएगा। अगर सबकी सहमति ये है कि मुझे ही लड़ना है तो लड़ा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो लोग, अगर मुझे राजनीतिक कोई डर होता या चुनाव लड़ने हारने जीतने से मैं डरता, तो क्या आपको लगता है कि बिहार में इतना बड़ा प्रयास मैं कर रहा होता है? और परिणाम आने के बाद भी एक दिन भी बिहार छोड़कर नहीं गए, लगे हुए हैं।
3: तो बोल दिए तो कि बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे।
4: देखिए, एक दल की मर्यादा है, दल का एक तरीका है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हमारे लड़ने की जरूरत है, हमारे लड़ने से भाजपा यहां हारती है तो वो भी किया जाएगा।
3: लड़ने के लिए तो वहां तैयार है,
4: बिल्कुल पार्टी तैयार है, हम तैयार हैं, सब लोग तैयार है, लेकिन पहले चुनाव की घोषणा होने दीजिए। तो दल से
3: वो तो प्रक्रिया है, हाँ, वो प्रक्रिया अलग चीज है।
4: हर दिन आज बांकीपुर में, आप लोग तो खुद पटना में रहते हैं, सबसे ज्यादा सक्रियता तो जनसुराज की ही है।
3: आप ही बाहर निकल के आ गए,
4: हम ही निकल के आ रहे हैं। ये तो चूंकि मेरा पहले का कमिटमेंट है कि मैं आश्रम में ही रहूंगा, लोगों के साथ रहूंगा, जनसुराज के कार्यकर्ता साथियों के साथ रहूंगा अगले 4-5 साल, इसलिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है।
3: ये बताइए, आप जो ये बांकीपुर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, एक चीज आप बड़ा बोलते हैं कि भाई जनसुराज को ट्राई कीजिए, क्योंकि बीजेपी का भी एक संख्या बढ़ जाएगा तो क्या फायदा होगा, आरजेडी की भी एक संख्या अगर बढ़ जाएगी तो कुछ नहीं होना है। ये दलील
4: नहीं, ये दलील नहीं दिया जा रहा। दलील ये दी जा रही है कि बहुतेरे लोग बिहार में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उस समय उन्होंने ये कहा कि वोट तो हम जनसुराज को ही देना चाहते हैं, लेकिन हमें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जनसुराज को वोट देने जाऊं और लालू का जंगल राज उसमें आ जाए। इसी तरीके से लालू जी के जो समर्थक थे, खासकर मुसलमान वर्ग के बहुत सारे लोग, उन्होंने जनसुराज को वोट देना था, लेकिन इसलिए ना उन्होंने वोट नहीं दिया, उनके शब्दों में, कि कहीं हम जनसुराज को वोट देने जाएं और भाजपा बीच में आ जाए। तो इस बात को ये बताया जा रहा है कि भैया अगर सिर्फ आपने इसलिए वोट नहीं दिया था क्योंकि आपके, आपको डिपेंडिंग ऑन कि किस पार्टी के आप समर्थक हैं, ये डर था कि विपक्षी पार्टी ना आ जाए, तो वो डर तो अभी नहीं है। अगर आप भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के वोटर हैं, लेकिन आपको जनसुराज पसंद है, तो भाजपा की सरकार बांकीपुर में हारने से तो खत्म होगी नहीं, भाजपा की सरकार तो अगले 5 साल के लिए है। लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति को जिताकर, जनसुराज को जिताकर एक मैसेज दे सकते हैं कि भाजपा बिहार के वोटर्स को, बाकीपुर के वोटर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती है।
3: एक दो राष्ट्रीय मुद्दों पर भी प्रशांत जी को क्या आपकी नजर रहती है? आपने पांच राज्यों का चुनाव देखा, लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपने वहां पे ममता बनर्जी पार्टी के लिए काम किया हुआ है। क्या हो गया ये पश्चिम बंगाल में?
4: नहीं देखिए, एंटी इनकम्बेंसी रही होगी और कहीं ना कहीं टीएमसी वाले थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो गए थे, क्योंकि आपको याद होगा 2021 में जिस चुनाव में मैं जुड़ा हुआ था, जिसमें टीएमसी जीती थी, उससे पहले के पंचायत और लोकसभा के चुनाव में टीएमसी को झटका लगा था और पूरे भारत में ये चर्चा चल रही थी कि भाजपा बंगाल जीत रही है या जीत सकती है, टीएमसी हार सकती है। तो जब आप थोड़ा डरे हुए होते हैं तो आप सुधार का, बेहतरी का प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। उसके उलट इस बार पंचायती चुनावों में टीएमसी को बड़ी जीत मिली और लोकसभा के चुनाव में भी हम लोग जैसे लोगों के आकलन के विपरीत टीएमसी को अच्छी सीटें आ गई। तो अब जो भाजपा का समर्थक था बंगाल में, वो भी कह रहा था कि नहीं, लड़ाई तो अच्छी होगी लेकिन जीत तो दी ही जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेसेंसी थी और बीजेपी ज्यादा तैयारी करके गए थे। बाकी जो सरकारी व्यवस्था है, SIR है, सेंट्रल फोर्सेस का उपयोग दुरुपयोग है, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करने की बात है, वो सारी बात तो है, काउंटिंग में हंगामा हुआ है, वो सारी बात है, लेकिन मूल बात मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं टीएमसी ने इस चुनाव में देवर कॉम्प्लेसेंट, उन्होंने हल्के से लिया, हल्के से इस नजरिए से लिया कि उनको लगा कि अब बंगाल में भाजपा हमको नहीं हरा सकती है, उसका ही लाभ भाजपा उठा ले गई।
3: उसके बाद जो देख रहे हैं हम, विधायकों का 50-50-60 विधायकों का पार्टी छोड़ देना, ममता से अलग होना, सांसदों का छोड़ देना, तो ये कहीं दिखाता नहीं कि ममता से भी नाराजगी थी जो कहीं ना कहीं अंदर था वो बाहर निकल कर आया?
4: देखिए, ये तो पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है और पार्टी और उसकी विचारधारा वो विधायकों से और MP से तय नहीं होती है। कांग्रेस की आप देख लीजिए, कांग्रेस के जो हालात हैं पिछले 10-12 सालों में, कितने नेता कांग्रेस को छोड़कर चले गए, इसका मतलब कांग्रेस खत्म तो नहीं हो गई। कोई बड़ा नेता, MLA MP बड़ा नेता छोड़कर जाता है तो तात्कालिक तौर पर जरूर दल को झटका लग सकता है, दल कमजोर दिख सकता है, हो सकता है, लेकिन मूलतः हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी जन TMC को 2 करोड़ से ज्यादा वोट बंगाल में पड़ा है और वो वोट सही या गलत ममता बनर्जी के लिए पड़ा है, उनकी नीतियों पर पड़ा है, उनके विचारधारा पर पड़ा है, उनके कार्यक्रमों पर पड़ा है। तो उस 2 करोड़ वोट को आप 10-20-25-50 MLA के आने जाने से नहीं तोल सकते हैं। MLA तो जीत कर जब आए हैं तो TMC के सिंबल पर जीत कर आए हैं, तो क्या वो निर्दलीय जीत पाएंगे? तो मैं MLA और MP के या कुछ कॉरपोरेटर्स के छोड़ के जाने को बहुत बड़ी घटना नहीं मानता।
3: सर्वाइवल की लड़ाई तो है ये ममता के लिए,
4: सर्वाइवल की लड़ाई है जब आप विपक्ष में
3: चर्चा हैं। एक जोड़ दूं इसमें कि चर्चा ये भी है कि भाई कांग्रेस से मर्जर करने की नौबत आ गई है।
4: मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कभी होगा, लेकिन ये जरूर है कि जब आपको इतनी बड़ी हार मिलती है और आपके विपक्ष में BJP जैसी एग्रेसिव पार्टी है तो जरूर वो चाहेंगे कि आपको दबाएं, आपको खत्म कर दें, लेकिन पार्टियां ना एक दिन में बनती हैं ना एक दिन में खत्म हो सकती हैं। विचारधारा का जो प्रभाव है, जो संगठन है, वो TMC एक दिन में बनी नहीं है, TMC एक दिन में खत्म नहीं होगी। और ये बात सिर्फ TMC के लिए नहीं है, कांग्रेस के लिए हो या भाजपा के लिए हो, भाजपा के भी कभी 2 MP आ गए थे, लेकिन उससे भाजपा की विचारधारा, उनका संगठन वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, वो खत्म नहीं हो सकता है।
3: कोई मर्जर का आपकी लग रहा हो सकता है वो, जो ये छोटी छोटी पार्टी, क्यों बोल रहा हूं
4: मैं, जितनी राजनीतिक समझ मेरी है, मैं दावा नहीं कर सकता हूं, मुझे पता नहीं है कि उनकी क्या बात हो रही है, लेकिन जो बाहर से दिखता है, जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है, मुझे ऐसा कभी नहीं दिखता है कम से कम अगले 5-7 सालों में 10 सालों में कि TMC और कांग्रेस का बंगाल में मर्जर हो जाएगा। ये बिल्कुल सिरे से इस बात को मैं खारिज,
3: TMC नहीं, छोटे दल जैसे NCP महाराष्ट्र में, जो मतलब आप समझ नहीं, कहीं नहीं, कहीं मर्जर का कोई ऐसा नहीं,
4: बहुत मुश्किल है, इसलिए कि कांग्रेस भी कोई उफान पर नहीं है। ये जिस पार्टी को आप कह रहे हैं कि मजबूत है, जिसमें मर्ज करना चाहिए, वो लोग भी ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप अगर इसको कॉरपोरेट के एग्जांपल से देखें, मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर है, वो ऋण भी बनाती है और सर्फ भी बनाती है, दोनों जब आप खरीदते हैं तो पैसा तो हिंदुस्तान लीवर के पास ही जा रहा है, तो क्या वो दोनों को मर्ज करके एक ही ब्रांड बना देना चाहिए? तो इसके पीछे न कोई स्ट्रेटेजिक सोच दिखती है, अनलेस कि जो पार्टी है बिल्कुल उसको चलाना मुश्किल हो जाए, मर्जर की संभावना बहुत कम है।
3: टीएमसी हो या एनसीपी कोई भी हो,
4: मैं एनडीए के पार्टनर्स की भी बात कर रहा हूँ। क्या शिवसेना मर्ज कर जाएगी? सिंधे गुट है क्या वो मर्ज कर गए भाजपा में?
3: तो और मजबूत हो गया अभी।
4: एनसीपी भी नहीं मर्ज किया है, टीएमसी भी नहीं मर्ज करेगी। अरे ये तो बड़ी पार्टियां हैं, इससे बहुत छोटी पार्टियां भी मर्ज नहीं करती हैं। मर्जर बहुत बड़ी बात है, मर्जर बहुत बड़ी बात है।
3: इंडिया पक के लिए क्या देखते हैं? मीटिंग वीटिंग हुई है?
4: मुझे
3: सब
4: नहीं
3: लोग
4: मैं मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, और मैं अपने आप को जहां तक हो सके बिहार के बाहर की घटनाओं से अलग ही रखता हूं। ऐसे चूंकि हम लोग इस फील्ड में हैं तो जितना सामान्य नागरिकों को जानकारी वैसे हम लोग को भी जानकारी है थोड़ी बहुत, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में देश की राजनीति में क्या हो रहा है उसमें मेरी ना कोई सहभागिता है, ना मेरी भूमिका है, ना मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ
3: एकजुट होना चाहिए बीजेपी को
4: भाई। देखिए ये तो नो ब्रेनर है, जब आप अकेले नहीं लड़ पा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको एकजुट होना चाहिए। लेकिन एकजुट होने के पीछे की जो सोच है, इस पर मैं अपनी पहली भूमिका में लंबी टिप्पणी मैंने करी है, सिर्फ दो दलों के साथ में आ जाने से, जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तब मैंने उस पर लंबी टिप्पणी भी की है कि सिर्फ दलों के एक साथ आ जाने से परिणाम पर फर्क नहीं होगा, जब तक उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, उनके कार्यक्रमों में, और उन सबसे बढ़कर उनके द्वारा किए जाने वाले जमीन पर होने वाले प्रयास में एकजुटता नहीं दिखेगी, तब तक कोई बहुत बड़ा चुनावी परिवर्तन नहीं दिखेगा।
3: यूपी में कुछ परिवर्तन होगा अगले साल?
4: नहीं मालूम है भैया मुझे
3: बीजेपी बनी रहेगी,
4: मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि
3: नहीं मालूम है, नब्ज जानते हैं।
4: नहीं ऐसी बात नहीं, मैं नब्ज नहीं बिहार में बता पा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखिए जब मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं है तो मैं तो ऐसे टीवी पर बैठ के लोग जो टीका टिप्पणी करते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये वैसा हो जाएगा। जो जब हम लोग पहले कहीं प्रेडिक्शन करते थे तो मैं उसमें इन्वॉल्व था, मुझे उसकी जानकारी होती थी, मुझे डेटा या अदर इन्फॉर्मेशन की जानकारी होती है। जब जिस चीज की मुझे जानकारी नहीं है उस पर टीका टिप्पणी करना मुझे मेरे स्वभाव के विपरीत है।
3: सवाल पूछ के आपको छोड़ेंगे, अयोध्या में आप देख रहे हैं ये राम मंदिर को लेकर चंदा चोरी और क्या मामला, सब FIR हो गया है क्या? मतलब वाकई मामला इतना गड़बड़ है, क्या हो रहा है?
4: फिर वही बात मैं कहूंगा कि हम लोग को जो जानकारी है वो सतही जानकारी है, मीडिया में जो खबर आई है उसी से जानकारी है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में अकाउंटेबिलिटी की जब कमी होगी तो इस तरह की घटनाएं होती ही होती हैं, और ये आस्था का केंद्र है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मंदिरों में पहली बार कोई चोरी की घटना नहीं सुन रहे हम लोग। बनारस में काशी विश्वनाथ में गर्भगृह से सोना निकाल लेने की घटना हम लोग बहुत बच्चे थे तब सुनते थे, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो लोग व्यवस्था में हैं कहीं ना कहीं उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े हुए स्थान पर अगर आप करप्शन नहीं रोक पा रहे हैं, चोरी नहीं रोक पा रहे हैं, तो बाकी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। ये दिखाता है कि हिंदुत्व की बात करना और हिंदुत्व में एक्चुअली उस आस्था में यकीन रखना दोनों दो बातें।
3: चलिए शुक्रिया प्रशांत जी, आपने आज तक के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रशांत किशोर जो बिहार और राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है अपनी बातें रख रहे थे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
6: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
7: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
8: As world soccer hits the big stage, Fanatic Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And FanCash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
9: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates.

महाराष्ट्र में टीटी परीक्षा का पेपर लीक, नहीं होगी कल होने वाली परीक्षा। ठाणे में मिला प्रश्न पत्र, 3 लोगों पर मामला दर्ज, जांच में जुटा शिक्षा विभाग। कांग्रेस बोली ये पेपर लीक की सरकार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज, जेल गए आरोपी टिन्नू यादव के हॉस्टल से मिले 20 लाख रुपए बरामद। दूसरे आरोपी अनुकल्प ने 40 लाख में खरीदा था घर। तीन दिन के सशल्स दौरे पर रवाना प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति पेट्रिक हर्मेनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। अगले साल शुरुआत में भारत के दौरे पर आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। विदेश मंत्री रूबियो बोले भारत अहम साझेदार, जल्द होगी डील, होंगे साइन। केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच में खुलासा, 3 साल शादी नहीं करना चाहती थी सिया, पीछा छुड़ाने के लिए केतन के की निर्मम हत्या। माता पिता से पूछताछ, पुलिस ने भाई साहिल को भी बुलाया। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को

लेकर एक बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। आरोपी टिन्नू यादव के पास से 20 लाख रुपए बरामद किए गए। टिन्नू यादव के हॉस्टल के कमरे से 20 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। गिरफ्तारी के बाद से टिन्नू यादव को पुलिस उसके हॉस्टल लेकर पहुंची थी। चार पुलिस वालों के साथ टिन्नू यादव को हॉस्टल लाया गया था। अयोध्या के दुर्गापुरी कॉलोनी में टिन्नू यादव का यह हॉस्टल है और 20 लाख रुपए बरामद हुए। 20 लाख रुपए की यह बरामदगी टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव के पास से पुलिस ने अब तक लगभग 23 लाख रुपए से ज्यादा की बरामदगी दिखाई है। पुलिस ने अब तक कुल 80 लाख रुपए की बरामदगी की है। राम भक्तों की आस्था के साथ कैसी लूट मार हुई वो आप देख सकते हैं। ये टिन्नू यादव जो शुरुआत में अपने आप को बेकसूर कह रहा था, इसके परिवार वाले कह रहे थे, और इसके ठिकानों से ये कैश बरामद हो रहा है वो भी 1-2 लाख में 20 लाख रुपए की बरामद हुई है। और इसके साथ साथ जो इसका भतीजा है मनीष यादव, उसके पास से भी बरामदगी हुई है और पुलिस ने अब तक लगभग इनके पास से 23 लाख की बरामदगी की है और कुल जो बरामदगी हुई है वो 80 लाख रुपए की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में 100 शहर 100 खबर के। रामद चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा। टिन्नू यादव के हॉस्टल के कमरे से 20 लाख रुपए बरामद। अयोध्या में टिन्नू यादव के हॉस्टल पर पुलिस की छापेमारी, कमरे से 23 लाख रुपए की बरामदगी। टिन्नू यादव से पहले भी 80 लाख रुपए नगद बरामद कर चुकी है पुलिस। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर मंत्री संजय निषाद का बयान, बोले कि दोषियों को जेल भेजा गया, आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। राम मंदिर चढ़ावा मामले में शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत का बड़ा बयान, कहा कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि देश में न्याय व्यवस्था गुलाम है।

0: पुणे मर्डर केस में बड़ा खुलासा, शादी टालने के लिए हत्या की साजिश का आरोप है। केतन हत्याकांड की जांच तेज, आरोपी सिया गोयल के माता पिता से पुलिस ने पूछताछ की। सिया ने पुलिस को बताया कि केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए हत्या की साजिश रची उसने। 10 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने साहिल को फिर से बुलाया, केस में नए खुलासों की भी उम्मीद है। लोनावला पुलिस की जांच आगे बढ़ी है, सिया गोयल के परिवार से लगातार हो रही है पूछताछ। आज सेशल्स की राजकीय यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी, 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रवाना हुए पीएम। ये मोदी राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। हिंद महासागर में सेशल्स का रणनीतिक महत्व ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी। चीन के प्रभाव के बीच में भारत और सेशल्स के संबंध मजबूत करने की पर जो है जोर, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। गुजरात के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी लॉन्च पर कहा कि आने वाले समय में यातायात क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएगी ये भारत टैक्सी। महाराष्ट्र टीईटी 2025 परीक्षा स्थगित, प्रश्न पत्र लीक की आशंका के बाद अब बड़ा फैसला। टीईटी पेपर लीक की आशंका पर एक्शन, 28 जून की परीक्षा अगले आदेश तक टाली गई। उद्धव ठाकरे का बागी सांसदों के खिलाफ बड़ा चुनावी अभियान, अगले 3 दिनों में सभी 6 बागी सांसदों के क्षेत्रों में रैलियां करेंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ एक फ्लाइट में सफर पर बोले उद्धव, कहा कि संयोग था या नहीं जल्द पता चल जाएगा। अकाल तख्त तलब पर आम आदमी पार्टी का अलर्ट, कल अमृतसर में सभी विधायकों की अहम बैठक। पाकिस्तान में आतंकियों की खुलेआम मौजूदगी का दावा, शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में लश्कर से जुड़े हुए चेहरे दिखाई दिए। शोएब अख्तर के भाई के जनाजे को लेकर एक बड़ा दावा, लश्कर ए तैयबा और पीएमएमएल से जुड़े हुए लोगों की मौजूदगी चर्चा में है। अयोध्या के वीआईपी व्यवस्था पर सियासत, अजय राय ने बीजेपी सरकार को लगातार घेराया। अयोध्या में अरविंद केजरीवाल को कथित विशेष छूट पर अजय राय का सवाल, बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप है। अजय राय का दावा, कांग्रेस नेताओं और आम श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग से केजरीवाल के लिए नियम क्यों है। नीतीश कुमार के आवास पर मिलने पहुंचे थे आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार से ये मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। बिहार में फिर से सियासी उठापटक तेज, जेडीयू में आरसीपी सिंह की वापसी की अटकलें हुई तेज। पटना में तेज प्रताप यादव के ड्राइवर पत्नी संग पहुंचे थाने, मोतीलाल यादव के परिवार पर दर्ज करवाई शिकायत। तेज प्रताप यादव के ड्राइवर अनिल यादव का आरोप है, कहा कि गवाही से रोकने के लिए पत्नी को धमकी दी गई। बिहार के जेल प्रशासन में बड़ा फेरबदल, तेज उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया। पटना कोचिंग विवाद मामला, फैजल खान और बॉडीगार्ड की जमानत पर 30 जून को सुनवाई होगी। मुसल्लाहपुर मामले में कोर्ट में केस दायरे दाखिल, सुनवाई 30 जून तक टली है। एनसीईआरटी किताब में इमरजेंसी चैप्टर शामिल करने पर सियासत, सचिन पायलट का तंज और अरुण साव का पलटवार। डिप्टी सीएम अरुण साव का कांग्रेस पर जबरदस्त हमला, बोले कि आपातकाल संविधान की हत्या का एक काला अध्याय है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने आम आदमी सरकार पर कर्ज बढ़ाने का लगाया आरोप, 4.5 लाख करोड़ तक पहुंचा कर्ज। मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, आने वाले 24 घंटों में बिहार झारखंड के सभी इलाकों और उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में होगी तेज मानसूनी गतिविधियां, 29 से 30 जून के बीच में उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हो सकता है मानसून। सबसे पहले पूर्वी यूपी में मानसून का असर देखने को मिलेगा, दायरा बारिश का बढ़ेगा, तापमान के चलते 5 से 8 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम समेत पूरे पूर्वोत्तर में मानसून की बारिश जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून के विस्तार का अब और विस्तार होगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिलहाल भारी बारिश की संभावना कम है, गरज चमक के साथ बादल छाने, कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला, बागेश्वर में झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में टोमना मार्केट में भूस्खलन हुआ है, रास्ता साफ करने में प्रशासन जुटा है। भूस्खलन के चलते सिक्किम और सिलीगुड़ी के बीच में चलने वाले वाहनों का मार्ग बदला गया है। पूर्वोत्तर राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जगह जगह सड़कों पर रुकावट भी आई। पूर्वी पश्चिमी भारत और मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कई जिलों में आंधी बारिश और आंधी तूफान की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर बंगाल में भारी बारिश की आशंका जताई, इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की गई। युवाओं के लिए केंद्र सरकार में कई पदों पर सीधी भर्ती का एक मौका है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हैं। ओडिशा में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाली खबर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गो ईस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का ऐलान किया है। दिल्ली में कल से पहले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का आयोजन, ग्रामीण विकास परियोजनाओं को लेकर समीक्षा होगी। केरलम के कलपेटा में आंगनबाड़ी को सौगात मिली है, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उद्घाटन किया। ओपन है एआई के लिए कंज्यूमर ग्रोथ, एंटरप्राइज एडॉप्शन पार्टनरशिप, रेगुलेटरी मामलों और ऑपरेशंस के प्रदर्शन की जिम्मेदारी संभालेंगे प्रभजीत सिंह। शिमला में भीषण सड़क हादसा हुआ, दूध से भरे हुए पिकअप बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में वाहन में सवार सभी 6 लोगों की मौके पर मौत और मौके पर पहुंचकर बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया। झारखंड के गढ़वा में कस्तूरबा विद्यालय के 100 से ज्यादा छात्राएं फूड पॉइजनिंग से बीमार, अस्पताल में भर्ती। दूषित भोजन और गर्म पानी पीने के चलते तबियत बिगड़ गई, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, सभी छात्राओं का इलाज चल रहा है। फिरोजाबाद में खड़ी 2 कार आग का गोला बन गई, पूरी तरह से जलकर आग, दमकल विभाग ने आग बुझाई। बिहार के समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान भारी बवाल, तैनात पुलिस की टीम पर लोगों ने पत्थरबाजी की, कई घायल। बिहार के जमुई में मुहर्रम जुलूस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, पुलिस ने एक को हिरासत में लिया। बिहार के अररिया में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 अखाड़ों में हिंसक झड़प, पत्थरबाजी भी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वाराणसी में मुहर्रम जुलूस के दौरान भी बवाल, 2 गुटों में विवाद के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उज्जैन में सिरफिरे आशिक ने युवती पर दिन दहाड़े चाकू से 14 बार वार किए, आरोपी गिरफ्तार। बांदा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से बाइक के उड़े पर खर्चे, 2 युवकों की मौके पर मौत। अलवर में वाहन चेकिंग के दौरान एएसआई पर चालक से मारपीट का आरोप है, वीडियो वायरल होने के बाद अब लाइन हाजिर। कोल्हापुर में गैस पाइपलाइन लीकेज के बाद भड़की आग, इलाके में अफरा तफरी मची। चंबा में भीषण सड़क हादसा, कार दुर्घटना में 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बेंगलुरु में चलती वैन का पिछला दरवाजा खुलने से 5 स्कूली बच्चे नीचे गिर गए, हालांकि बड़ा हादसा टला। FIH प्रो लीग हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया, पाकिस्तान को हफ्ते में 2 बार हराया। लंदन में खेले गए इस मुकाबले में सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक, राजकुमार पाल और दिलप्रीत सिंह ने गोल किए। महिला T20 वर्ल्ड कप में कल ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी भारत की बेटी है, 2 नंबर पर टीम इंडिया इस समय। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसकर ने वैभव सूर्यवंशी के बल्लेबाजी को बताया अविश्वसनीय, आने वाले समय में अच्छे प्रदर्शन की भी उम्मीद जताई। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार नॉकआउट राउंड में पहुंचा मिस्र, ईरान के साथ 1-1 के ड्रॉ के साथ 5 अंकों के साथ ग्रुप स्टेज में 2 नंबर पर मिस्र। फिल्म वेलकम टू द जंगल ने रिलीज के पहले दिन ही 15 करोड़ कमाए, फिल्म ने पेड प्रीव्यू स्क्रीनिंग से कमाए 3 करोड़ 75 लाख। अहमद खान ने किया है वेलकम टू द जंगल का निर्देशन, फिल्म में दिखेंगे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश राव। फिल्म कॉकटेल 2 ने 8वें दिन 4.25 करोड़ की कमाई की है, 74 करोड़ से ज्यादा की अभी ये फिल्म कमाई कर चुकी है। 41 साल के हुए अभिनेता अर्जुन कपूर ने कल 26 जून को अपना जन्मदिन मनाया और 41वां उनका बर्थडे था। अर्जुन कपूर के साथ जन्मदिन पर बहन अंशुला ने शेयर किया एक इमोशनल पोस्ट, अंशुला ने पोस्ट में अर्जुन कपूर के बचपन की कई तस्वीरें साझा की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा दावा, अगले साल की शुरुआत में भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में है, जल्दी समझौते की उम्मीद है। यह मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों पर मार्को रूबियो का बयान, कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत की भारी कच्चे तेल रिफाइनिंग क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका वेनेजुएला से बातचीत जारी है, सप्लाई बढ़ाने के लिए बहुत नजदीक पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने क्वाड बैठक जल्द होने के संकेत दिए, पीएम मोदी की तारीफ में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल पावर। ईरान अमेरिका पीस डील के बाद सीज फायर फिर टूटा, होर्मुज में कार्गो शिप पर हमले का अमेरिका ने संज्ञान लिया। ईरान का दावा है कि सिरिक पोर्ट पर अमेरिकी हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ, हालात सामान्य है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच में अमेरिकी कार्रवाई का ईरान ने दिया जवाब, IRGC ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिका ईरान में फिर से बढ़ा तनाव, ट्रंप ने ईरान पर लगाया ड्रोन हमलों का गंभीर आरोप। ट्रंप का बड़ा दावा कि एक कार्गो जहाज हमले का शिकार हुआ, जबकि अमेरिकी सेना ने 3 अन्य ड्रोन को रोक दिया। ईरान अमेरिकी तनाव के बीच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के पिछले 100 साल की सबसे बड़ी घटना इसे बताया। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई समेत कई लोग भी सुलेमानी से डरते थे और उसकी मौत से खुश थे। वहीं दिन फ्रीडम सम्मेलन में ट्रंप का बड़ा बयान, बोले कि अमेरिका में धर्म पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटा, ईश्वर और धर्म से ही महान बनता है देश। ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में रहते हुए हर आस्थावान अमेरिकी की रक्षा करूंगा और पिछली सरकार ने ईसाइयों और धार्मिक लोगों को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि जो भी देश अमेरिका पर डिजिटल टैक्स लगाएगा उसके सभी सामानों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका ईरान के तनाव के बीच में इसराइल लेबनान के बीच में अब शांति समझौता वॉशिंगटन में सहमति बनी है। लंबी बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच में शांति सीज फायर के समझौते पर हस्ताक्षर। समझौते में अमेरिका की अहम भूमिका, इसराइल लेबनान के बीच में समझौते को बताया त्रिपक्षीय समझौता। शांति समझौते पर इसराइली पीएम नेतन्याहू का दावा, सुरक्षा कारणों से इसराइली सेना बफर जोन में रहेगी। दुनिया आज एक ऐसे दौर में खड़ी है जहां पर ऊर्जा सिर्फ विकास का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सबसे बड़े आधार बन चुकी है। भू राजनीतिक तनाव, बढ़ती ऊर्जा की डिमांड और जलवायु परिवर्तन के बीच में सवाल है कि भविष्य की ऊर्जा कैसी होगी। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए लंदन में आयोजित हुआ अडानी ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन डायलॉग।
1: लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक के दौरान साइंस म्यूजियम में पहली बार अदानी ग्रीन एनर्जी डायलॉग का आयोजन हुआ। इसमें दुनिया भर के नीति निर्माता, निवेशक, ऊर्जा विशेषज्ञ और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल हुए। चर्चा का केंद्र था दुनिया को तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर कैसे ले जाया जाए।
2: We must do renewables, we must do hydro, we must do efficient thermal, we must do nuclear, we must do every single thing that is available within the geographic boundaries of the country, because as much as growth and as much as cost is critical, energy security is probably more critical than every single other consideration that India faces.
1: सागर अडानी ने कहा, ऊर्जा सुरक्षा, सस्ती बिजली और पर्यावरण संरक्षण तीनों चुनौतियों का सबसे प्रभावी समाधान इलेक्ट्रिफिकेशन है। उन्होंने कहा कि जब सोलर और विंड एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा तभी 2400 घंटे भरोसेमंद और किफायती बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। सागर अडानी ने गुजरात के खावड़ा में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट का भी जिक्र किया कि उनकी कंपनी 2030 तक 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस परियोजना में बड़े पैमाने पर एनर्जी स्टोरेज को भी जोड़ा जा रहा है ताकि बिजली की आपूर्ति लगातार बनी रहे।
2: We are India's largest private sector operator in every aspect of the electricity value chain. We operate thermal power assets. We are building one of the world's largest renewable energy portfolios. We're targeting 50 gigawatts by 2030 and a substantial recently announced nuclear portfolio of 10 gigawatts by 2035. We're investing in large-scale energy storage, including pumped hydro projects, energy storage batteries. We're expanding transmission networks to move large quantums of electricity from renewable resource rich states in one part of the country to consumption centers in other parts of the country.
1: संवाद के इस वैश्विक मंच पर एनर्जी ट्रांसमिशंस कमीशन, ऑक्टोपस एनर्जी, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव और ग्रीन फाइनेंस इंस्टीट्यूट जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चर्चा में इस बात पर सहमति बनी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज और आधुनिक ट्रांसमिशन नेटवर्क में बड़े निवेश की जरूरत होगी। दुनिया में बढ़ती बिजली की मांग और जलवायु संकट के बीच लंदन से दिया गया ये संदेश साफ है कि भविष्य की ऊर्जा व्यवस्था केवल उत्पादन पर नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज और आधुनिक ग्रिड के मजबूत तालमेल पर निर्भर करेगी और इसी दिशा में भारत की भूमिका को सामने रखने की कोशिश इस वैश्विक मंच पर दिखाई दी। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की। सीए ने केतन को मारा और इस काम में उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने उसका साथ दिया। पुलिस इसी थ्योरी पर काम भी करी और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे हो रहे हैं और भी जानकारियां सामने आई हैं। केतन अग्रवाल नकली बाल यानी कि विग लगाता था और यह बात सिया को अच्छी नहीं लगती थी। सिया का भाई चेतन चौधरी को जानता था, दोनों साथ में क्रिकेट खेलते थे। अब एक और खुलासा हुआ, तीसरा खुलासा यह है कि 18 जून को केतन की हत्या से पहले चेतन और सिया के बीच में जो बातचीत हुई, चैट हुए, वो सब डिलीट किए जा चुके हैं। दोनों ही अपने अपने फोन से इसको क्लीन कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं। अब एक बड़ी खबर आपको देते हैं, केतन हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल के माता पिता को पूछताछ के लिए लोनावला ग्रामीण पुलिस ने बुलाया है। इससे पहले शुक्रवार को सिया के भाई साहिल से तकरीबन 10 घंटे तक गहन पूछताछ की गई थी। अब पुलिस के द्वारा सिया के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि सिया के माता पिता से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है, महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। साथ ही साहिल को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इसकी पड़ताल के दौरान पुलिस को चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो सिया ने स्वीकार किया है कि वो 3 साल तक शादी टालना चाहती थी, लेकिन रिश्ता तय हो गया था इसलिए तोड़ने बदनामी हो जाती और उसने प्लान बनाकर केतन को रास्ते से ही हटा दिया।
3: क्या केतन को मारने का प्लान चेतन ने बनाया? क्या चेतन को आगे करके सिया को बचाने की कोशिश हो रही है? 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था, सिया का या केतन का? पुणे के केतन मर्डर केस में सिया का परिवार नई थ्योरी लेकर सामने आया है। सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
4: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का दे के उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
5: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे है वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए, जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
3: सिया के माता पिता दावा कर रहे हैं कि उन्हें सिया और चेतन के अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं था। वो अभी भी कह रहे हैं कि सिया और चेतन के बीच कुछ नहीं है। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई, एंग्जायटी और घबराहट इतनी ज्यादा हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। इधर पुणे पुलिस की जांच में सिया ने कबूल किया है कि वो कम से कम 3 साल तक शादी टालना चाहती थी, लेकिन रिश्ता तय होने के बाद शादी तोड़ने से बदनामी होती इसलिए उसने केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सिया का दोस्त चेतन भी कम से कम 2 साल तक शादी नहीं करना चाहता था। केतन और सिया की सगाई फरवरी में हुई, लेकिन उससे ठीक पहले जनवरी में सिया गोयल अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ राजस्थान के उदयपुर गई थी। वहां वो 5 दिनों तक रही थी। चेतन चौधरी मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस की माने तो हत्या वाले दिन चेतन और सिया लोनावाला के कैफे में मिले थे, जहां उन्होंने हत्या की अंतिम योजना बनाई। शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। इसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
6: जून को जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
7: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
3: अब पुणे पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। इससे पहले सिया के भाई से 10 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। ओंकार वाबले, पुणे आज तक।
0: और अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक। Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
10: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
9: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
11: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
12: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
13: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
8: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
14: In association with
8: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
15: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगी, कल होने वाली परीक्षा ठाणे में मिला प्रश्न पत्र, 3 लोगों पर एफआईआर, जांच में जुटा शिक्षा विभाग, कांग्रेस बोली ये पेपर लीक सरकार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज, जेल गए आरोपी टिन्नू यादव के हॉस्टल से मिले 20 लाख रुपए, दूसरे आरोपी अनुकल्प ने 40 लाख में खरीदा था घर। तीन दिन के सेशल्स दौरे पर रवाना पीएम मोदी, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि, राष्ट्रपति पेट्रिक हमीनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। अगले साल शुरुआत में भारत के दौरे पर आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विदेश मंत्री मार्को रूबियो बोले भारत एक अहम साझेदार, जल्द होगी डील। और केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच से खुलासा, 3 साल शादी नहीं करना चाहती थी सिया, पीछा छुड़ाने के लिए केतन की हत्या की, माता पिता से पूछताछ, पुलिस ने भाई साहिल को फिर बुलाया।

0: श्री राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद जबरदस्त एक्शन तो हुआ, एफआईआर दर्ज हुई और सभी के सब 8 गिरफ्तार भी हुए, लेकिन वो लोग जो जिम्मेदार थे उन लोगों को कुछ नहीं कहा गया। उन लोगों पर कोई भी ना आरोप लगे, ना एफआईआर में उनका नाम आया, ना गिरफ्तार हुए और चंपत राय ने अब दे दिया इस्तीफा। तो क्यों? हमारे साथ इस समय 3 उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद और आप तीनों का बहुत स्वागत आज तक पर। विक्रम सर, आपको लगता है कि ये छोटे लोग हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो ट्रस्ट में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग हैं, उनमें चंपत राय भी शामिल हैं, उनका नाम होना चाहिए था, कहीं ना कहीं कोई कोताही आपको नजर आती है सर?
1: थैंक यू वेरी मच सई साहब, और मेरे दोनों भाइयों ओपी सिंह साहब और अरविंद जैन साहब, आप दोनों को जय हिंद, आप तीनों को जय हिंद। सबसे पहले मैं बताऊंगा, देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। सबसे पहले अगर आपने किया होता एसआईटी की जगह एफआईआर पहले कर लेते, तो मैं समझता हूं ये जो आरोप लग रहे हैं कि कहीं हम किसी को बचा तो नहीं रहे। और सबसे पहले ये होता कि सब बड़े परम पूज्य हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, सबका बेदाग है, उनके सबके श्री चरणों में मेरा प्रणाम करते हुए, लेकिन कानून में इसका कोई वो स्थान नहीं है कि आपका पास्ट रिकॉर्ड बताता है कि आपने अगर कोई अपकृत्य किया है या आपकी नाक के नीचे जिसकी आप जिम्मेदार थे वहां पर अगर माल दाएं बाएं हुआ है, आप अपनी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते थे। ट्रस्ट में भाई भतीजा वा छड़ के बोल रहा है, सीसीटीवी डिसफंक्शनल है, माल दाएं बाएं हो रहा है, आंतरिक सुरक्षा का यह मामला है कि लोग जमीनें खरीद रहे हैं और हम बिल्कुल बेफिक्र हो रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको कहते हैं कि लॉ इज अनस्पेयरिंग। आप लाख परम पूज्य होंगे लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक ट्रस्ट के पूरे नामित अभियुक्त होने चाहिए थे और कार्रवाई होनी चाहिए थी डे वन को। आज जब एफआईआर हुई है, एफआईआर के बाद 78,79,00,000 रुपए बरामद हुए हैं, यही डे वन को अगर तलाशियां हो जाती तो शायद इसके 10 गुना या 50 गुना ज्यादा माल बरामद हो सकता था। और अभी हम कैश की बात कर रहे हैं, ज्वेलरी की बात नहीं कर रहे हैं। आगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरेक्शन मैं आगे बताऊंगा।
0: नहीं सर, विक्रम सर बहुत जिस बेबाकी से खुलकर आप बोलते हैं। सिंह सर, जैन सर, आप दोनों ने विक्रम सर को यहां पर सुना, क्या आपको भी लगता है सिंह सर की बिल्कुल यही बात है, जल्दबाजी कर दी, या कुछ और लोग इसमें, वो लोग जो मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, ऑफिस बेयरर हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी?
2: क्या ये प्रश्न मुझसे है?
0: जी सर।
2: देखिए, ये केवल चोरी का मामला नहीं है, इसलिए विक्रम सिंह सर ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, ये केवल चोरी का मामला नहीं है और यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़े दान का मामला है। इसलिए इस जांच के जो उद्देश्य होने चाहिए थे पहले से ही, सबसे पहले तो मैं एसआईटी का कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, समर्थक नहीं हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन जो है राइट डे वन शुरू हो जाना चाहिए था और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। इसको हमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की अब आवश्यकता है, न कि पहले। लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसका उद्देश्य बहुत क्लियर है कि पहले हम दोषियों की पहचान करें और उन्हें कानून के कटघरे में लाएं, और दूसरा कि ऐसी पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करें ताकि जनता का विश्वास और मजबूत हो सके। संभवतः ये दोनों चीजें पहले नहीं की गई। अगर शुरू में ये की गई होती, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया होता बाय लॉजिंग एफआईआर, तो शायद हम इस नतीजे पर पहुंचते और जो भी व्यक्तियों की पहचान होनी थी, क्योंकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई है वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कमेटी है, दैट्स नॉट इन्वेस्टिगेशन। वो प्रारंभिक जांच करने वाली एक संस्था थी, एक टीम था, जिसके कारण हुआ। तो मैं समझता हूं कि अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा, हालांकि बहुत समय बीत गया है, काफी दिन बीत गए हैं, और लेकिन अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो पूरी तरह साक्ष्य आधारित होनी चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए और किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त हो। मैं समझता हूं कि इस चीज को ध्यान में रखा जाए, और मैं अभी भी मानता हूं कि हम लोगों ने बहुत समय गंवा दिया और एफआईआर शुड हैव बीन लॉज्ड मच अर्लियर।
0: बिल्कुल ठीक है सिंह सर, ओपी सिंह साहब। जैन सर, जैन सर, आपको लगता है सर कि ऑफिस बियरर्स जो हैं उनकी पहली जिम्मेदारी होती है और ये जो लोग थे पैसे कलेक्ट करने वाले, पैसे गिनने वाले, पैसे ले जाकर मंदिर से गिनने के बाद बैंक में जमा करने वाले, इनके ऊपर भी किसी की जिम्मेदारी है और एफआईआर में उनके नाम भी होने चाहिए थे?
3: बिल्कुल बिल्कुल होंगे, मेरा ये मानना है कि आएंगे, अब कोई बच नहीं पाएगा, लोग एविडेंस देंगे। एक मिस्टर मनवानी है जो टीवी पे कह रहे हैं कि 200 ईंट चांदी की हमने दी थी, वो कहाँ है? वो सुपुर्द करते दिख रहे हैं मिस्टर चंपत राय को। नाउ मिस्टर चंपत राय हैज टू एक्सप्लेन कि वो 200 ईंटें कहाँ गलवा दी गई, कहाँ गई, कहाँ पे अकाउंट फॉर की गई। और भी बहुत से आइटम्स हैं जो कि लोगों ने दान में दिए थे, जगह जगह से आए थे राम मंदिर के नाम पे, तो वो सब के बारे में इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चाहे ये हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, ये अपने दायित्व से नहीं बच सकते, मेरा मानना है, चाहे इस्तीफा दे दें, चाहे कुछ भी करें। इन्होंने राम मंदिर के लिए, आंदोलन के लिए बहुत बड़ी भूमिका रही होगी, बहुत तो इनका प्रशंसनीय भूमिका थी, मैं इसमें कोई इसमें इसको मैं डाउट नहीं करता, पर ये इन्हीं की छत्र छाया में सारा का सारा चल रहा था और ये कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि इनकी जानकारी में नहीं था। कितने लोगों ने बयान दिए हैं कि हम बार बार मिस्टर चंपत राय को बता रहे थे कि यहाँ पर एम्बेजलमेंट हो रहा है, जो बैंक का टेलर स्टाफ है, जो काउंटिंग स्टाफ है, क्योंकि ये जितने मुलजिम बनाए गए हैं सब काउंटिंग को सुपरवाइज करने वाले थे। तो अभी तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में इनके नाम आए हैं, क्योंकि अभी अभी मेरे ख्याल से कोई ऐसा साक्ष्य अभी मिला नहीं एसआईटी को जिसमें कि वो चंपत राय को या अनिल मिश्रा को या अन्य किसी व्यक्ति को जो ट्रस्ट के हैं, जो ट्रस्टीज अपॉइंट किए गए थे, उनमें से किसी बड़े व्यक्ति का नाम आ सके। पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोगों की जो भावनाएं हैं, मेरा पूरा मानना है लोग इसमें गवाही देंगे, और जब गवाही देंगे, पूछेंगे, एसआईटी के समक्ष पेश होंगे, एसआईटी उनसे उनसे पूछने के लिए बाध्य होगी कि ये बताइए कि ये सामान है कहाँ, इसका रिकॉर्ड कहाँ है
0: जी?
3: ये वहां की वेबसाइट पर आपकी तीर्थ जो का कमेटी है, राम भूमि जन्मभूमि कमेटी, इसमें इसके वेबसाइट पर है कि नहीं है, वो सामान गया कहाँ? और भी जो आरोप आ रहे हैं कि किसी ने जमीन खरीद ली, किसी ने बड़े बड़े कोठियां बना ली, किसी ने जो है वो प्लॉट्स खरीद लिए, गाड़ियां खरीद ली, तो मैं तो बहुत दिनों पहले भी मैंने ये बात कही कि इसमें साथ में गैंगस्टर एक्ट की धारा भी लगानी चाहिए, और उसके तहत जो सेक्शन 14 है उसमें, जो उसमें जब्ती की कार्रवाई का है, जो इलीगल गेम्स हैं, क्राइम प्रोसीड्स हैं, उनको उनको उनकी रिकवरी के उसमें प्रोविजन है, उसमें डीएम ऑथराइज्ड है उसमें ऑर्डर करने के लिए, वो भी लगने चाहिए, सब रिकवरीज होनी चाहिए।
0: जैन सर कह रहे हैं और धाराएं भी लगनी चाहिए, रिकवरी भी होनी चाहिए, और धीरे धीरे सबूत साक्ष्य आएंगे। तो विक्रम सर, ऐसे तो आपकी पुलिस पर सवाल उठते हैं, मतलब इतनी जल्दबाजी क्या थी? ढंग से आप इन्वेस्टिगेट तो कर लेते, उसके बाद एफआईआर दर्ज करते। अब जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं को आपने छोड़ दिया, जिन्हें पता था उन्हीं को आपने छोड़ दिया, बाहर से लोग आकर सर विक्रम सर आरोप लगा रहे हैं। आपको लगता है आगे ये इन लोगों के नाम आ पाएंगे एफआईआर में?
1: अंसारी साहब, मेरे दोनों विद्वान मित्र और मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। आवाज आ रही है मेरी?
0: बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी, प्लीज।
1: गैर राजनीतिक व्यक्ति है, कोई राजनीतिक हम लोगों को कोई झुकाव कहीं नहीं है, और हम ये कहना चाहेंगे, अरविंद जैन साहब ने, ओपी सिंह साहब ने उसको शत प्रतिशत उसको समर्थन करते हुए मैं यही कहूंगा, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। लेकिन हमने जो शुरुआत की थी, देखिए इससे कोई ऐसा नहीं कि कोई हम प्रमाद करेंगे, आपको डे वन पे सभी आपके जो हमारे दोनों अधिकारीगण हैं उन्होंने ये कहा कि एफआईआर डे वन को होनी चाहिए, बाद में जांच और जांच कमेटी तो बनती रहती है, लेकिन जो वैल्यूबल समय, जो टाइम निकल गया, वो हम बहुत कुछ कर सकते थे। अरविंद जैन साहब की बातों से मैं सहमत हूँ, गैंगस्टर एक्ट, मैं तो यहाँ कहूंगा राष्ट्र का भी लगनी चाहिए, और इसके साथ ही इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1885 की धारा 26-27 में कि जिन जिन के ट्रस्टीज ने ये मामले खलत बल किए हैं उनकी निजी संपत्ति कुर करके उससे बरामदगी की कोशिश होनी चाहिए। और एक और बात है कि आपने जो शुरुआत में की है, नामित सबको करना चाहिए था, नामित नहीं हुए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं इन्वेस्टिगेशन चलेगा कम से कम ये 90 दिन, इफ नॉट 1 ईयर। तो इस इन्वेस्टिगेशन में अभियुक्त दो प्रकार के होते हैं, एक नामित, जो नामित है, जो 8 लोग, और इसके अलावा जो प्रकाश में है, दोज दैट केम टू लाइट, अब प्रकाश में आते, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई प्रमाद नहीं होगा। अरविंद जैन साहब ने बड़ी बेबाकी से कहा कि सब बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े पवित्र हैं, उनको बहुत प्रणाम, लेकिन कानून इसमें किसी तरह की मुरव्वत या उदारता नहीं बरतता है, वो चीज अपनी जगह है, लेकिन जब कानून की बात आती है तो पाई पाई की रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि आस्था विश्वास का प्रश्न है, और इसमें यह बिल्कुल माने नहीं रखता है कि आपका पास्ट कैसा था, पास जैसा भी हो बहुत अच्छा था, वर्तमान का जवाब आपको देना होगा, पाई पाई का हिसाब देना होगा। आपने सबसे सर्वश्रेष्ठ सिस्टम्स क्यों नहीं लगाए, एआई एनेबल्ड टूल सीसीटीवी क्यों नहीं लगाए, आपने ऑडिटिंग के लिए मशीन लर्निंग और एआई टूल्स क्यों नहीं लगाए। जाहिर है कि आप लगा सकते थे, अरबों का आपके पास चढ़ावा आ रहा था, ये केवल 5 करोड़ में सब कुछ आ जाता था, फेल प्रूफ फूल प्रूफ क्यों नहीं लगाया।
0: बिल्कुल ठीक विक्रम सर, और आप तीनों, ये तीन उत्तर प्रदेश के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी रह चुके हैं और आज तीनों बड़ी बेबाकी से खुलकर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आज जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उसे ये बिल्कुल सोचना होगा। और जैन सर ने कहा कि रिकवरी होनी चाहिए, गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, तो विक्रम सर ने यह भी कहा कि आप रासुका लगाइए। इतना ये हमारी आस्था के साथ, हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास के साथ, हमारे आराध्य के साथ, हमारी हमारा जो रिश्ता है उसके साथ सर ये धोखा हुआ है। ओपी सिंह सर, सर नाम आ सकते हैं क्या, हम आगे माने इस संभावना पे विचार कर सकते हैं कि आगे पता चले कि चंपत राय का नाम एफआईआर में दर्ज हो गया।
2: देखिए अंसारी साहब, ये एफआईआर दर्ज होना इन्वेस्टिगेशन का अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है, और प्रारंभिक परीक्षा तो यही है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो हमारी है यूपी पुलिस, वो ये स्थापित कर सके कि वास्तव में कितनी राशि का गबन हुआ है या कब से चल रहा है, इसका इससे किसको लाभ मिला है, और या किसी एक व्यक्ति या किसी संगठित साजिश का कृत्य है। ये बहुत जरूरी है, इसीलिए हमारा ये विश्वास है कि वित्तीय जटिलता को देखते हुए और सार्वजनिक संवेदनशीलता को देखते हुए ये जरूरी है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जाए। केवल ये थाने के इन्वेस्टिगेशन पे निर्भर नहीं रखा जाए बल्कि एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर के अंतर्गत ये इन्वेस्टिगेशन हो, और इस टीम में आर्थिक अपराध जांच से संबंधित जो एक अनुभवी व्यक्ति हो उसको रखा जाए, फॉरेंसिक ऑडिटर को रखा जाए, साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञ को रखा जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी सेवाएं ली जाएं, बैंकिंग विशेषज्ञ की भी सेवाएं ली जाएं, और आवश्यकता पर हो सके तो हमें इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट और अन्य जांच एजेंसियों से भी समन्वय स्थापित करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई मुद्दे हैं और इनको केवल अगर चोरों को पकड़ने की बात हो तो ये नहीं हो पाएगा। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि 72 घंटे जो शुरू के होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और मैं नहीं जानता कि उसमें कितनी कार्रवाई अभी की गई है, लेकिन सभी दान अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाना, उनके दस्तावेजों को सील करना, जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उन सबों को रखना, ये सारी चीजों को करना फर्स्ट 72 आवर्स में बहुत जरूरी है। तो अब तो हमें जो हो गया सो हो गया, अब तो हमें केवल ये करना है कि केवल आरोपी को ही नहीं बल्कि हमें धन के प्रवाह को भी देखना है, उसको भी ट्रैक करना है, उसको भी फॉलो करना है, और इसके लिए जरूरी है कि हम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसको चलें और करें। और मैं समझता हूं कि ये केवल थाने के लेवल पे नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करना चाहिए जिसमें सारे एक्सपर्ट्स हों, और अगर नहीं हो तो कम से कम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उन सबों की मदद ले, तभी हम प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ेंगे और शायद हम बहुत से नामों को जोड़ पाएंगे, ये चंपत राय हो या कोई भी हो, उन सबों के नामों को जोड़। सबसे बड़ी कार्रवाई तभी हो पाएगी जब हम बहुत ही व्यवसायिक दक्ष रूप से इसको आगे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा सुझाव है, अच्छा सजेशन है सिंह सर आपका। जैन साहब आपके पास आए हम। जैन सर, बहुत सारे लोग हमारे देश में ये विश्वास करते हैं कि दान एक हाथ से देना चाहिए और दूसरे हाथ को पता ना चले, ये क्योंकि हमारी श्रद्धा होती है, हम दुनिया के लिए नहीं उससे ऊपर वाले से कनेक्ट करने के लिए हम चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो अब जैसे ये चांदी की ईंटों की बात सामने आई, ये अगर इस तरह के और भी लोग आए जो कहें कि भाई हमने जेवरात दिए थे, ज्वेलरी दी थी, सोना चांदी हमने चढ़ावे में दिया था, तो आपको लगता है सर ये पुलिस की दृष्टि में एविडेंस हो पाएगा, इसे आप सबूत मानते हैं पुलिस या नहीं?
3: बिल्कुल मानते हैं। देखिए उन्होंने कोई पब्लिसिटी नहीं की थी, उनको इस बात का कष्ट था कि उन्होंने 200 किलो चांदी की ईंटें झूले लाल जी के चित्र बनी हुई वहां पे दी, चंपत राय जी को भेंट की, और उन ईंटों का कोई पता नहीं, कोई रसीद उनको नहीं मिली। उनका इस बात का भी कष्ट था कि उनको एक इन्विटेशन का कार्ड भी नहीं मिला पूरे सिंधी समाज को जिन्होंने 200 किलो चांदी वहां पे दी, ये देना चाहिए था। तो उन्होंने किसी भी स्तर पर कभी भी पब्लिसिटी नहीं की, पर जब ये बात निकल कर सामने आई तब उन्होंने बयान दिया। और मैं समझता हूं ऐसे सभी लोगों को सामने आकर बयान देना चाहिए। अब तो ये खुली लड़ाई है, उसमें जब तक बयान नहीं देंगे कि हमने इसको हैंडओवर किया था और तब उसकी अकाउंटेबिलिटी ठहराई जाएगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस पहले दिन से बड़ा फूक फूक के कदम रख रही है। इस बात का इंतजार था कि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा कोई मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, उनके कोषाध्यक्ष के द्वारा दर्ज, जब नहीं कराया गया, उनकी तरफ से लेटर आया, तत्काल ये हाई लेवल एसआईटी फॉर्म की गई। बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स हैं, उनको मैं जानता हूं, और उन्होंने पूरा जितना उन 6-7 दिन की वहां पे रह के जो
0: सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं सर, जैन सर, अगर बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स हैं तो फिर ये ऑफिस बेयरर्स कैसे रह गए सर? क्या आपकी दृष्टि में, मैं सिंह साहब और विक्रम सर, आप दोनों से भी इस पे जैन सर के बाद एक छोटा छोटा रिएक्शन चाहूंगा सर, प्लीज बताइए।
3: देखिए अभी अभी एविडेंस, देखिए एविडेंस बेस्ड होता है। जब आप किसी को एक्यूज बनाएंगे तो यू विल हैव टू प्रोड्यूस एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आपको जज साहब के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि ये एविडेंस हमको मिली है और उनको इस आधार पे हमने मुलजिम बनाया है। अभी अगर
0: सर,
3: कोई बयान
0: ऑफिस बेरर के अलावा इतना इतनी बड़ी चोरी हो सकती है सर, उनकी मिली भगत की, या उन्हें पता नहीं है?
3: पर आप हियर से पे या अपनी अपनी थ्योरी के ऊपर आप किसी को मुलजिम नहीं बना सकते।
0: ठीक,
3: आपने उनको पेश किया, कोर्ट पूछेगा कि आपने किस आधार पे ले आए हैं आप, कि साहब ये चर्चा है कि इन्हीं के छत्र छाया में सब हुआ है, तो दैट इज नॉट अ क्राइम।
0: ठीक है विक्रम सर,
3: सॉरी,
0: बिल्कुल विक्रम सर, चंपत राय अचानक से जब एफआईआर हो जाती है, 8 हो गया 8 हो, अरेस्ट हो जाते हैं, तब इस्तीफा दे देते हैं, उससे पहले तक उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो क्या ये शक पैदा करती है बात पुलिस की दृष्टि में सर?
1: जारी साहब, शक की बुनियाद के ऊपर विवेचना नहीं होती है, विवेचना होती है साक्ष्य के आधार के ऊपर। लेकिन ये जो मैं कहते हैं नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस और प्रोपराइटी, लेकिन प्रोपराइटी हमारे आम जनजीवन में कहां रह गई? लेकिन जब एक तरफ आपके ऊपर आरोप लगे, आपको इस्तीफा उसी दिन देना चाहिए था, और आप चूंकि न्यूज में है, आपने पहली बार इनका नाम लिया, वरना जब इनका नाम लिया जाता था चंपत राय साहब का, तो लोग पहले उनकी डिफेंस में बात करते थे, डैमेज कंट्रोल की बात करते थे, मतलब ऐसा प्रतीत होता कि उनके ऊपर आप उंगली उठाने का दुस्साहस कैसे कर रहे हैं। आज अरविंद जैन साहब ने, ओपी सिंह साहब, मैं तो खुल के कह रहा हूं, आप कोई भी हो, बड़े श्रेष्ठ हो, परम पूज्य होंगे, लेकिन अगर आपने गफलत की है तो कार्रवाई होके रहेगी, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये इस कार्रवाई के बाद आप देख लीजिएगा। आपका सवाल ये था कि सबसे पहले कि क्या इसमें कार्रवाई, साक्ष्य पूरा है, साक्ष्य अकाट्य है, और इस साक्ष्य का संकलन ही विवेचना होती है। विवेचना के उपरांत आप निश्चित जानिए यूपी पुलिस की जो व्यवसायिक दक्षता उच्च कोटि है, जिसका परिपक्व नेतृत्व हमारे छोटे भाई ओपी सिंह साहब, अरविंद जैन साहब ने किया है, मुझे कोई संदेह नहीं है कि फूंक फूंक करके कदम रखे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई गफलत में या अत्यधिक जोश में आप वो काम कर दें जो कि औचित्यपूर्ण नहीं होगा। तो अंसारी साहब, मेरी गुजारिश ये है,
0: सर,
1: आप,
0: सर,
1: आपकी गाड़ी पटरी पे आई है, आपने झंडी दिखाई है, लेकिन जो काम हरी झंडी आपको 15 वो हरी झंडी
0: लेट कर
1: रही, इस्तीफे की बात, इस्तीफा डे वन को हो जाना चाहिए था, इस्तीफा ही नहीं कार्रवाई भी होनी चाहिए थी, और ये कह रहे कि मैं अपने को दूर करता हूं इन सब चीजों से।
0: आप दूर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ओपी सर, ओपी सर, आपको लगता है जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो हम स्पेसिफिकली चंपत राय के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, यहां पर उनकी भूमिका में कुछ ना कुछ निकल सकता है, या उनकी भूमिका की पुलिस जांच करेगी?
2: देखिए अंसारी साहब, विक्रम सिंह सर ने बहुत अच्छी बात कही कि मॉरल प्रोप्राइटी भी होती है इन्वेस्टिगेशन में, मॉरल का कोई स्थान नहीं है, इन्वेस्टिगेशन एविडेंस बेस्ड होता है, लेकिन जब आस्था का प्रश्न है, जब इतने बड़े भक्तों की बात है, तो उस आस्था में संस्थागत आस्था भी आ जाती है। आप केवल श्रीराम मंदिर की ही बात नहीं करते हैं, आप उन इंस्टीट्यूशंस की भी बात करते हैं जो उस मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो मॉरल प्रोप्राइटी ये था कि चंपत राय को उसी समय इस्तीफा देना चाहिए था, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन इस पूरी विवेचना में इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इतनी बड़ी अनियमितता को इतने लंबे समय तक कैसे अलाउ करते रहे, कैसे चलते रही, और क्या जो नियमित ऑडिट होते हैं वो हुआ कि नहीं हुआ, क्या ऑडिट आपत्तियों का निराकरण हुआ कि नहीं हुआ, क्या पर्यवेक्षण कमजोर था या किसी ने जानबूझकर आंखें मूंद ली, ये सारी विषयों पर जब हम गहन चिंतन करेंगे और अन्वेषण करेंगे तो प्रोबेबली चंपत राय की भूमिका भी हमें
0: ठीक है
2: आएगी, बात पे आएगी। तो
0: बिल्कुल,
2: हम समझ, डिस्कशन को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ले जाने की जरूरत है।
0: ओपी सर, विक्रम सर, जैन सर, आप तीनों ने बहुत बेबाकी से, और आपकी राय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप तीनों उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े पद पर रह चुके हैं और वर्षों आपने उत्तर प्रदेश पुलिस के माध्यम से राज्य की, हम लोगों की सेवा की है और हमें अपराध से, डर से बचाया है। बहुत धन्यवाद। और श्री राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में आप तीनों की राय काफी महत्वपूर्ण होगी। आज तक पर आप इन तीनों वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को देख रहे थे। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
7: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
8: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
9: Schwarber to right field, and it will leave.
8: From the first pitch of the season to the stretch run,
9: and that's the ball game.
8: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
10: मुख्य गुनहगार है वो तो बाहर है, वो आप भी उस ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं ना। चोरी का पैसा वो आप मंदिर में चोरी करते हो, हिंदुत्ववादी लोग हैं आप, अपने आप को मानते हो, आप मंदिर की दानपेटी चुराते हो, लाखों करोड़ रुपया चुराते हो, वो पैसा राजनीति में आता है और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो, पार्टियां तोड़ते हो। वही राम मंदिर के 2,000 करोड़ आप लोगों ने जो चोरी की है, उसी पैसे से आपने आपके सांसद तोड़े, तृणमूल के सांसद तोड़े, विधायक तोड़े, शिवसेना के जो 6 सांसद तोड़े, वो राम मंदिर का ही लूटा हुआ पैसा है।
11: उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो कहावत है उसी तरह संजय राव जी का बर्ताव है। मैं हर बार बोलता हूँ उनको पागलपन के दौरे आ रहे हैं और उसी का ये नतीजा है इसी तरह की बातें करना। राम मंदिर और उनकी तिजोरी जो कुछ पैसा है उसके बारे में एसआईटी लगाया है। अगर ये पैसा चोरी करने का था, रहता मन में था, तो उनके ऊपर एसआईटी नहीं लगता था। वो जिन्होंने चोरी की है उनको पकड़ रहे हैं। ये सिर्फ पागलपन के दौरे के वजह से इसी तरह की बातें संजय राउत कर रहे हैं। मुंबई महापालिका को लूटने का काम संजय राउत और यूबेटे ने किया है और बम्बई के सिवा उनके ध्यान किधर भी नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं। उनकी पार्टी अब खत्म हो रही है, उनको छोड़ के जा रही है, कांग्रेस में विलीन होने की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, शरद पवार जी ने आत्मसम्मान के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की निर्मिति की, उनको बोल रहे हैं कांग्रेस में विलीन हो, इसीलिए संजय राउत ने कितना पैसा लिया है, कितनी पैसे की सुपारी ली है, मैं उनके जाहिर ये प्रश्न पूछता हूं, राहुल गांधी ने आपको कितने पैसे दिए, जो शरद पवार जी के जो 8 सांसद है उनमें कांग्रेस में जोड़ने के आप लोग आप विनंती कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, इसके लिए आपको कितना पैसा दिया।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: में टीईटी परीक्षा का पेपर हुआ लीक, नहीं होगी कल होने वाली परीक्षा। थाने में मिला प्रश्न पत्र, 3 लोगों पर मामला दर्ज, जांच में जुटा है शिक्षा विभाग। कांग्रेस बोली ये पेपर लीक सरकार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर जांच तेज, जेल गए आरोपी टीनू यादव के हॉस्टल से 20 लाख बरामद किए गए। दूसरे आरोपी अनुकल्प ने 40 लाख में खरीदा था घर। तीन दिन के सेशल्स दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। अगले साल शुरुआत में भारत के दौरे पर आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। विदेश मंत्री रूबियो बोले भारत अहम साझेदार, जल्द होगी डील पर साइन। केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले पर जांच से हुआ खुलासा, 3 साल शादी नहीं करना चाहती थी सिया, पीछे छुड़वाने के लिए केतन की हत्या। माता पिता से पूछताछ, पुलिस ने भाई साहिल को फिर बुलाया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। रणभूमि स्पेशल में आज हम आपको तमाम बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच में जो डेफिसिट था, यानी जो अविश्वास की खाई थी, वो बड़ी होती जा रही है और एक के बाद एक कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि एक दूसरे पर बड़े हमले करने की तैयारी में दोनों देश है। लेकिन कई और बड़ी खबरें होंगी जिन पर हमारी नजर होगी। सबसे पहले आज आपको बात करेंगे, आपको बताएंगे कि एक और जहां पे दो देशों के मजबूत होते रिश्तों की कहानी भी आपको बताएंगे, और वहीं दो देशों के बीच में युद्ध विराम के टूटने की आशंका के लेकर भी खबरें बताएंगे। रणभूमि स्पेशल में आज हमारी पहली खबर होगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर, जिस पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मोहर लगा दी है। रूबियो ने संकेत दिया है कि साल 2027 की शुरुआत में ट्रंप भारत आ सकते हैं। रणभूमि स्पेशल में दूसरी बड़ी खबर, हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले ही वो वहां पर पहुंचे हैं। सेशल्स में प्रधानमंत्री मोदी का 29 जून का दौरा, यानी 3 दिन तक सेशल्स में प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। रणभूमि स्पेशल की तीसरी बड़ी खबर, आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका और ईरान में कुछ दिनों पहले हुए सील बंद के बाद, यानी युद्ध विराम के बाद, अब एक दूसरे पर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश की है। ऐसे संकेत मिल रहा है कि शायद ये शांति समझौता लंबे समय तक ना चले, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। आगे विस्तार से आपको इस पर ही चर्चा करेंगे। रणभूमि स्पेशल में चौथी बड़ी खबर, आपको दिखाएंगे कि कैसे रूस और यूक्रेन ने फिर से भीषण युद्ध छिड़ता जा रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर बड़े हमले किए हैं, जिस पर रूस का 2014 से कब्जा है। यानी रणभूमि स्पेशल में हमारे

0: दो खास मेहमान भी हमारे साथ इस पर जुड़े होंगे और ये भी बताएंगे कि आखिरकार लेबनन पर इसराइल के हमले किस तरीके से अब भी जारी है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि उनकी सेना पीछे नहीं हटने वाली। लेकिन दो खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े होंगे, हमारे साथ पूर्व राजनयिक अनिल त्रुनायक सर हमारे साथ जुड़े होंगे और साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे सर भी हमारे साथ जुड़े होंगे और हम दोनों से जानेंगे कि आखिरकार इन तमाम खबरों के मायने और इनके अंदर की यानी इनसाइड स्टोरी क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के सेशल्स दौरे के लिए सेशल्स पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ के निमंत्रण पर आज सुबह वहां पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस मौके पर होने वाली परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी शामिल किए गए हैं। मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक के साथ द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसके साथ ही सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। मोदी का पिछले 11 साल में सेशल्स का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने साल 2015 में इस देश की यात्रा की थी और सेशल्स का दौरा करने वाले वो इंदिरा गांधी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जब वहां पर पहुंचे तो उनका गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को और इसके बाद सेशल्स की कई जो आप कह सकते हैं प्राकृतिक चीजें हैं या कई अद्भुत चीजें हैं वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को दिखाते हुए और प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह ही सेशल्स के लिए रवाना हुए थे और अब से कुछ देर पहले वो सेशल्स पहुंच चुके हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर उनको कई चीजें प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई गई। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसके बाद वो नारियल पानी पीते भी नजर आए और इसके बाद जो बॉटनिकल गार्डन था उसकी एक तस्वीर दिखाई गई जहां पर वो मौजूद है। बॉटनिकल गार्डन वो जहां पर सेशल्स के अंदर आप कह सकते हैं कि वहां पर जो जीव जंतु है दूसरी चीजें वहां पर रखी हुई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद की।
1: I think it's going fantastic. I mean, it's very strong. We had a great meeting. Which is of getting it done, and it's very positive. Forward to returning myself before the end of the year.

0: चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की पहली भारत यात्रा के लिए व्हाइट हाउस से खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देशों के रिश्तों को देखते हुए तैयारियों को अमली जामा पहनाने का जिम्मा खुद विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने कंधों पर लिया हुआ है। इन तैयारियों के लिए वो इस साल के आखिरी में भारत आएंगे और तमाम मुद्दे भी इसमें बड़े बड़े का ऐलान किया जाएगा मुद्दों का, और दुनिया भर में यानी भारत और अमेरिका के बढ़ते रिश्तों को लेकर भी कई बड़े समझौते होने की आशंका है। दुनिया भर की नजरें इस यात्रा पर लगी होंगी, लाजमी है। खासतौर पर पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे देश लगातार इस यात्रा को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे, तो ट्रंप और मोदी की भारत में मुलाकात के हर एक लम्हे को नजर आएंगे, लेकिन ये भी दिखाएंगे कि आखिरकार दोनों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसे मजबूत होती जा रही है।
1: भारत और अमेरिका की दोस्ती गढ़ेगी नए आयाम। अगले साल ट्रंप के भारत आने का ऐलान। ट्रेड डील जल्द, कई अहम समझौते चढ़ेंगे परवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति की ये तस्वीरें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की है। दुनिया भर की निगाहों से होकर गुजरी इन तस्वीरों के अलग अलग मायने निकाले गए, लेकिन भारत का एजेंडा बिल्कुल साफ था। आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाना और भारत के कारोबार को बढ़ावा देने की हर मुमकिन कोशिश करना। इन कोशिशों के साथ साथ अमेरिका के साथ उतार चढ़ाव वाले रिश्ते एक बार फिर पटरी पर लौटते दिखे। अब इन्हीं रिश्तों को परवान चढ़ाने डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर पाकिस्तान से लेकर दुनिया के कई देशों को परेशान करने वाली ये खबर सीधे अमेरिका से आई है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहद मजबूत हैं और अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप भारत का दौरा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस अहम दौरे की तैयारियों के लिए खुद रूबियो इस साल के आखिर में भारत आएंगे।
2: We're hoping, that's what we're working towards, sometime early next year to have the president come. And I think it's very positive. India is such a close partner and ally of the United States. And the relationship between the prime minister and the president couldn't be closer, which I think is really important in diplomacy. And I look forward to returning myself before the end of the year and setting up a presidential visit in the early parts of next year.
1: मोदी की जमकर तारीफ करते हुए रूबियो ने कहा कि भारत को ग्लोबल पावर बनाने में उन्होंने अहम किरदार निभाया है।
2: We're enormous fans of Prime Minister Modi and what he's done. I mean, he leads a country that's making incredible gains economically and is really coming into its own as sort of a global power, a country that's increasingly accounted for on decisions being made on the global stage.
1: भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर ने भी साफ कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां ट्रंप जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती दोनों देशों के रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है। फ्रांस में हुई मोदी ट्रंप की मुलाकात इसका एक उदाहरण है, जब एक घंटे तक दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा और कई रणनीतिक मुद्दों पर बात की।
3: President is very warm on India. I mean, you heard it even last week when we were together in France with the Prime Minister. He spoke very highly of India. Our relationship with India is very deep. It goes back a long time. And so it's something that the president holds the prime minister and India in the highest regards. He's always talked about the prime minister being a great friend of his personally. And he always reminds me of his first trip to India and the vibrancy that he saw there. It's something that he's never forgotten.
1: ट्रंप की दूसरी भारत यात्रा होगी। साल 2020 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान वो भारत आए थे जब नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया था। दूसरे कार्यकाल में उनका ये पहला दौरा होगा। इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी नजदीकियां और ईरान युद्ध के मद्देनजर भारत के साथ बदले कारोबारी रिश्तों पर पूरी दुनिया की नजर है। आज तक ब्यूरो।
0: तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा करीब करीब तय हो चुका है। आइए अब आपको बड़ी वॉल पर दिखाने की और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो ट्रंप के भारत दौरे से ठीक पहले दोनों देशों के चाहेंगे कि उस पर फैसला लिया जा सके। सबसे पहले आप देखिए, भारत अमेरिका के बीच इन मुद्दों पर लगातार मंथन जारी है। सबसे पहला है टैरिफ में कटौती का मुद्दा, यह सबसे बड़ा कंसर्न है, जिसके बाद अमेरिका और भारत के रिश्तों में तल्खी भी बढ़ी। इसके बाद सप्लाई चेन की मजबूती, क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा सुरक्षा, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो प्रमुखता से इस बातचीत से पहले सुलझाने या इस बातचीत के दौरान इनका ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा रक्षा सहयोग यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका की और भारत की बहुत मजबूत है। इसके अलावा समुद्री मार्गों की सुरक्षा और सेमीकंडक्टर और AI भी एक मेजर चीज है जिसको लेकर दोनों देशों के बीच में बातें चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि दोनों एक समन्वय पर आकर बन सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बड़ा बयान भी इसमें आया। सामने आया। रूबियो ने कहा कि जल्दी ट्रेड डील को भी अंतिम रूप दे दिए जाने की उम्मीद है। रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका और वेनेजुएला से बातचीत कर रहा है और हम सप्लाई बढ़ाने के लिए बहुत मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दुनिया के ने कहा कि उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जिसमें कच्चे तेल की रिफाइनरी करने की क्षमता है। देखिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही और उसमें उन्होंने भारत के साथ अपने समझौतों को अपने रिश्तों को और मजबूत करने की बात भी कही है। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मोहर लगा दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल शुरुआत में भारत आएंगे। अब एलईडी स्क्रीन पर आपको फिर से लिए चलते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले कब कब प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो चुकी है और कहां कहां पर हो चुकी है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अभी हाल ही में हुई 17 जून 2026 यानी अभी में G7 समिट के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। आपको याद होगा ये बहुत लंबे समय के बाद यानी 2001 साल के बाद करीब करीब ये मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात 2025 के बाद एक बड़ी मुलाकात के तौर पर इसे देखा जा रहा था और इसी के बाद कहा जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। इसके अलावा 13 फरवरी 2025 को वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप के दूसरे ट्रंप में पीएम मोदी की पहली यात्रा हुई थी यानी जब उनका दूसरा ट्रंप आया तब उनके ट्रंप के बाद पहली मुलाकात यह थी। उसके बाद 24 फरवरी 2020 में अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप इवेंट का आयोजन किया गया था, तब भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे और उनका एक भव्य स्वागत किया गया था। उसके बाद 2025 में दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद अगर आप देखें उससे पहले 22 सितंबर 2019 में ह्यूस्टन के अंदर हाउडी मोदी रैली के अंदर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सके कि आखिरकार इन दोनों नेताओं की मुलाकातें कब कब हुई हैं, कितने अंतराल के दौरान हुई और आखिरकार ये जब भारत दौरा उनका दोबारा से होगा तब ये कितना महत्वपूर्ण है। 26 अगस्त 2019 को ब्रियारिज यानी फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में उन दोनों की मुलाकात हुई थी। आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझिए कि अभी हाल ही में जो मुलाकात हुई है वो भी G7 में फ्रांस में ही हुई है और इससे पहले अगर आप 2019 की बात करें तब भी G20 से पहले 28 जून 2019 को ओसाका के अंदर G20 शिखर सम्मेलन में दोनों की बातचीत हुई थी। और एक एक करके हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि दोनों की बातचीत कब कब हुई, कहां कहां पर हुई। 30 नवंबर 2018 को ब्यूनस आयर्स में G20 समिट के दौरान चर्चा भी दोनों की हुई थी। ये मैं आंकड़े आपको लगातार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझिए कि आखिरकार दोनों नेताओं की मुलाकात कहां कहां पर। 2017 के अंदर भी 13 नवंबर को मनीला के अंदर आसियान समिट में मुलाकात हुई थी और दोनों नेताओं ने उस समय भी एक लंबी चौड़ी बात की थी और यानी सिलसिलेवार तरीके से अगर आप देखें तो ये बातचीत कई बार हो चुकी है लेकिन इस बार उनका जो भारत दौरा है दोनों देशों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे और वो तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे युद्ध क्षेत्र से भी लेकिन हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका रुख करते हैं। सबसे पहले अनिल सर आप तो डिप्लोमेसी को समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पे तो वैसे पूरी दुनिया को विश्वास नहीं है, पूरी दुनिया ही मानती है कि कहते कुछ है करते कुछ है और कभी पलट जाए इसका कोई वो उनका कोई फिक्स नहीं है। आखिरकार उनका ये दौरा भारत के पर्सपेक्टिव से ठीक रहेगा भी या फिर कहीं ऐसा ना हो टैरिफ के ऊपर बात करने और एक एडिशनल टैरिफ वो लगा दें।
4: देखिए ऐसा है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप काफी अनप्रेडिक्टेबल है और भारत को एक तरह से मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा ही हुआ जो ये हुआ 2000 जब वो आए दूसरी बार तो एक ट्रंप। देखिए कोई भी रिलेशनशिप जो है वो जब तक म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल या म्यूचुअल इंटरेस्ट ड्रिवन नहीं होती है तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है
0: जी।
4: तो मैं समझता हूँ कि अगर ये हम कहें कि पिछले 1.5 साल में एटलीस्ट पब्लिक दौर पर पब्लिकली तो ये लगा कि भाई रिलेशनशिप में काफी खटास आ गई है लेकिन अगर आप विदेश मंत्रालय की या प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट देखें या वहां के रूबियो की या उनके एम्बेसडर की स्टेटमेंट देखें तो हम खाली रिलेशनशिप को एक सिर्फ टैरिफ्स या एक ट्रेड एक डायमेंशन है उसका, उसके अलावा ये ग्लोबल कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और उसको सभी लोग इस बात को समझते हैं कि एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है भारत की। तो इस अगर वो आएंगे तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन जैसा आपने भी दिखाया कि जो हमारे बीच में 4-5 चीजें हैं उनके ऊपर उनका रेजोल्यूशन होना बड़ा जरूरी है। जैसे टैरिफ की बात है तो टैरिफ्स हो गया या ट्रेड डील की बात है या जो सप्लाईज हैं एसेंशियल सप्लाईज की बात हो रही है डिफेंस सेक्टर के अंदर इंजिन वगैरह वो सब काफी अभी डिलेज है उसके अंदर किसी ना किसी उन चीजों को एड्रेस करना है। मैं मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब वो G7 में मिले हैं इस बार तो उन्होंने अवश्य ये सारी बातें कही होंगी लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ी स्पेशल रिस्पेक्ट रखते हैं
0: बिल्कुल
4: और उसको बार बार उन्होंने रिपीटेडली इस बात को कहा है।
0: सर
4: तो
0: बात
4: पर्सनल रिलेशनशिप एक अच्छी रिलेशनशिप है,
0: बिल्कुल
4: और चूंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प को पेजेंट्री बड़ी पसंद है, तो चाहे वो हाउडी मोदी इवेंट हो या आपकी अहमदाबाद की इवेंट हो, ये सारी चीज उनको बड़ी पसंद आती है। तो
0: बिल्कुल,
4: अगली
0: यानी
4: बार उनको बड़े
0: आप मतलब
4: सारे
0: यही बात बात जो हम कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से हो तो अच्छा, नहीं हो तो फिर सब खराब। ग्रुप कैप्टन पांडे, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, हम उस पार्टनरशिप की बात करते हैं जो अमेरिका और भारत के बीच में सदियों से थी, लेकिन अमेरिका के जो कई काम थे जिसमें खासतौर पर वो जी इंजन की भी बात की जाती है कि देखिए इंजन हमको देने थे, लगातार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे बढ़ानी थी, और रूस के साथ जब हमने तेल खरीदे तो हम पे सैंक्शन लगा दिए गए, रोक दिया गया, लगातार हमको स्टेटमेंट दी गई है, क्या इन सभी चीजों के बीच में वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत हो सकती है? क्योंकि कहा यह जाता है राष्ट्रपति आते हैं जाते हैं, लेकिन पेंटागन या फिर जो उनकी नीतियां होती है वो लंबे समय तक काम करती है, क्या उसको माना जाए कि अमेरिका के साथ भारत की जो स्ट्रेटेजीज है वो लंबे दौर तक जाएगी?
5: जहन और बहुत धन्यवाद शामिल करने के लिए चर्चा में। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि कहा जाता है कूटनीति में कि जो राष्ट्र हित सर्वोपरि है, और हमारे लिए जो राष्ट्र हित है हमने उसको अनुरूप काम किया, लेकिन ये कुछ हमारा जो अप्रोच था और हमने बहुत एग्रेसिवली किया, ऐसा नहीं कि हमने जो है बहुत शांति तरीके से और गुच्छुप और स्लो प्रोसेस किया, तो ये शायद जो है डोनाल्ड ट्रंप को नहीं रास आया और दोनों के बीच में जो कुछ जो है जो गैप बढ़ता गया, ये गैप को हमने देखा कि जिस प्रकार से टैरिफ बढ़ाया गया 10%, 15%, 15%, 15%, 15%, उसके बाद विड्रॉ करने की बात थी, तो अभी भी जो है टैरिफ की धमकी रहती है, और जब मिले हैं और उनका 50% से अधिक कहना कि पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ, ये जो बताता है कि कुछ बीच में जो गैप्स हैं जो कि क्योंकि और किसी तरह रूप से आप कैसे कहेंगे, कूटनीति में डायरेक्ट बात नहीं की जाती, घुमा फिरा के कहना होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में हमें नुकसान न हो, हमें भारत को जरूरत है अमेरिका की, क्योंकि जैसा कि आपने कवर किया कि हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं, डिफेंस कॉपरेशन की बात है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन की बात है, साथ में सेमीकंडक्टर, एआई का कई फील्ड है जिसमें कि हमको साथ साथ बढ़ना, क्योंकि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और कहा जाता है ग्लोबल अगर टीम के साथ चलते हैं तो आपकी प्रोग्रेस बेहतर होती है और वो मानवता के प्रति होती है, तो उसी प्रकार से अमेरिका को भी एक मार्केट की आवश्यकता है, क्योंकि जो इकोनॉमी है बहुत बढ़िया कंडीशन में नहीं चल रही है, 2.2, 2.3, और अभी कहा जा रहा है इन्फ्लेशन वर्तमान में मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ गई है, ऐसे में भारत की उनको आवश्यकता, तो दोनों देश एक दूसरे को चाहते हैं। मजेदार चीज यह है कि भारत ने हमेशा डिफेंस और डिप्लोमेसी पर विश्वास किया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई नीति अपनाई है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मेरे पास लाठी मेरे हाथ में है, मैं जो कहूंगा उसको मानिए, ये जो है पूरे पूरे स्पेशली साउथ ग्लोबल जो जो इश्यूज हैं उस पर जो है काफी कुठाराघात हुआ, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, वो मिडिल ईस्ट के तेल के रुकाव जो सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस हुआ है तो उसकी वजह से काफी परेशान है। ये जरूर है कि शायद दोनों की मुलाकात के बाद जो ये जो गैप्स हैं उनको ब्रिज करने का एक अवसर मिले, और एफटीए भी देखिए कितना लंबा खिंच गया, क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि उनका एग्रीकल्चर और डेयरी को हम
0: अनिल सर हमारे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन पांडे, तो अनिल सर से भी जान ले। ग्रुप कैप्टन पांडे जिस तरीके का जिक्र कर रहे थे अनिल सर, हमारे सामने वो विपरीत परिस्थिति अमेरिका ने लाकर खड़ी कर दी, लगातार सैंक्शन हो, टैरिफ हो, लेकिन उन्होंने एक नई अपॉर्चुनिटी भी भारत को दी, लगातार यूरोप के मार्केट्स को खोलना, लगातार वहां बातचीत करना, अलग अलग मार्केट्स में जाकर उनको टच करना। क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने ये बात उस समय समझ ली कि देखिए अमेरिका भारत के पास वो कैपेबिलिटीज हैं कि अगर वो इंडिविजुअली भी चाहे तो अपने लिए एक नए मार्केट का तलाश कर सकता है, एक नया ग्रुप? शायद वो भी प्रेशर था अमेरिका के ऊपर जिसने मजबूर कर दिया कि वो हम पर बातें थोपे नहीं, क्योंकि जैसा डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, बातों को थोपते और नहीं मानो तो फिर आप पे सैंक्शन अटैक कर देते हैं।
4: देखिए मैं समझता हूं कि भारत ने एक 5D पॉलिसी का इस्तेमाल किया थ्रू आउट, और खास तौर से पिछले 1.5 साल में, और उसके ऊपर और भी ज्यादा फोकस हुआ, डायलॉग, डिप्लोमेसी, डीएस्केलेशन, डीहाइफनेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सो मैं ये समझता हूं कि हमने डाइवर्सिफिकेशन जो उसके बाद आया, तो भारत का देखिए जो भी हुई वो हमारी अमेरिका के साथ तनातनी चल रही है या प्रेसिडेंट ट्रंप की यूरोप के साथ चल रही है, उसके चलते आपका ईयू एफटीए बहुत जल्दी जल्दी जो है साइन हो गया और ऑपरेशनलाइज भी हो जाएगा, यूके के साथ भी आपका एफटीए हो गया, 7-8 और बड़े बड़े एफटीए हो गए। अब जैसे उन्होंने ईरान में अटैक किया तो उससे और हमें एक समझ आ गई कि आप अपने सारे एग्स को एक बास्केट में नहीं रख सकते हैं, कि आपको जो है वो जो डिपेंडेंसीज है चोक पॉइंट्स के ऊपर उसको भी कम करना। तो मैं समझता हूँ किसी ना किसी तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो ये कदम रहे हैं, चाहे भले ही हमें प्लेजेंट ना लगे हो, लेकिन उन्होंने हमें सीख बड़ी दी है, और उस सीख को लेकर के भारत की जो विदेश नीति है या भारत प्रधानमंत्री है, उन्होंने इस बात का पूरा फायदा उठाया है और अपने रिलेशनशिप को बहुत डाइवर्सिफाई किया है,
0: बिल्कुल
4: उससे उनको भी ये लग गया। देखिए आप अगर देखें तो जब चाइना में समिट हुई थी तियानजिन की, तो तीनों नेता जैसे प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी मिले फ्यू मिनट्स के लिए, भले ही एक तरह का एक आरआईसी का एक नया बात चल पड़ी, भले ही हो
0: बिल्कुल
4: ना उसमें कुछ भी, लेकिन एक वो बात चली तो उससे उनको लगा कि अरे यार ये तो और भी इनके पास ऑप्शंस हैं।
0: बिल्कुल। कि सर
4: तो
0: ग्रुप कैप्टन
4: भारत
0: पांडे से एक
4: में
0: और चीज मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेटेजिक चीजों की बात कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन पांडे, भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक चीज हमेशा आकर खड़ी हो जाती है, वो है पाकिस्तान। अमेरिका की नजदीकियां, जो आसिफ मुनीर के साथ हमने देखा, शहबाज शरीफ के साथ हमने देखा, जो लगातार आसिफ मुनीर की वाहवाही की, हमने जब भी देखा है कि ऐसी नजदीकियां हुई हैं, वो भारत के लिए एक खतरे की घंटी होती है, क्योंकि कारगिल हुआ, उसके बाद कई ऐसे मौके हुए। क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान का फैक्टर कहीं ना कहीं दोनों के रिश्तों को और ज्यादा खराब कर सकता है? क्योंकि देखिए उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया था कि देखिए जब भी भारत पर अटैक होगा तो अमेरिका हमेशा आके खड़ा होगा, लेकिन क्या वो नजदीकियां ज्यादा हावी होती नजर आ रही है?
5: देखिए बड़ा सीधी बात है, ख्वाजा अहमद जो उनके डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि उनको टिश्यू पेपर की तरह यूज किया गया पहले, और क्या अब यूज नहीं किया जा रहा ये वक्त बताएगा। खैर, तो ये निश्चित रूप से पाकिस्तान का एक समीकरण जरूर रहा है, लेकिन वो सामरिक चाइना के साथ जो रिक्वायरमेंट्स हैं अमेरिका की, और दूसरा जो उसके जो वैश्विक रीजन, जो वो चाहते थे कि वहाँ शायद रेयर अर्थ हो या वहां पर कुछ उनको एनर्जी सोर्सेज मिल जाए और टैप कर पाए, तो वो उद्देश्य जरूर रहा उसमें, के पीछे वैश्विक कारण था। लेकिन बहुत लंबे समय तक इसको वो हैंडल करके इसके बदौलत इसको स्प्रिंग बोर्ड बना के भारत के खिलाफ जाएंगे, मेरे आकलन में नहीं लगता ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण की थी, जो जी इंजन की, वो जरूर एक नेगेटिव अप्रोच में कही जाएगी कि आपने पहले तो डिले कर दिया सप्लाई चेन को, दूसरी बात जो है आपने कीमतें 3 गुना बढ़ा दी, तो क्या मैसेजिंग है ये? अगर आप दोनों जब देखे कांटेक्ट हुआ था तो उस समय कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो रखे गए थे कि हम ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अब एकदम से रेट बढ़ाना, अब भारत को मजबूरन जो है दूसरे रास्ते अख्तियार करने होंगे। निश्चित रूप से उनकी इस नीति की वजह से भारत ने वो अन्य जो ऑप्शन है उनको एक्सप्लॉइट किया, और जो भारत के अमेरिका के साथ जो व्यापार था उससे ज्यादा व्यापार हम कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जो है पॉजिटिव आउटपुट हुआ है इस पूरे बीच में, जो अमेरिका और भारत के बीच में गैप आया। निश्चित
0: सर, हमें आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सेशंस की कुछ तस्वीर आ रही है, वो अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दरअसल 3 दिन के सेशल्स दौरे पर वहां पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पर उनका शानदार भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के निमंत्रण पर आज सुबह ही वहां के लिए रवाना हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर वहां शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर होने वाली परेड में भी भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत 2 शिप उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात भी करेंगे, उनको संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का पिछले 11 साल में सेशल्स का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने साल 2015 में इस देश का यानी सेशल्स की यात्रा की थी। सेशल्स का दौरा करने वाले वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये दौरा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित, आप देख सकते हैं कि उनको सम्मानित किया गया, और वहां पर और लगातार आपको बता रहे हैं कि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सेशल्स के 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री होंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान अनिल सर भी हैं। अनिल सर, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सेशल्स को लेकर, उनके उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को लेकर, आखिरकार भारत का ये दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
4: देखिए अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जो 2014 में आए और उसके 1 साल के अंदर लगभग पहला दौरा उन्होंने जो है वो सेशल्स का किया था 2015 में, और उस वक्त में कई सारे एग्रीमेंट भी साइन हुए थे। तो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जो है सेशल्स की, और क्योंकि आइलैंड नेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट आइलैंड नेशन है इंडियन ओशन के अंदर और अफ्रीका का एक कॉन्ट्रीब्यूट भी है, तो उसको नेचुरली है कि आपको उनके साथ में अच्छे रिश्ते रखने हैं, और वो भी चाहते हैं इस बात को क्योंकि वहां की लगभग पॉपुलेशन 10-12% जो है वो इंडियन ओरिजिन की पॉपुलेशन है। और जो वहां के राष्ट्रपति थे कुछ दिन पहले यहाँ फरवरी में आए भी थे, और उनकी एक नई विजन है सेशल्स, उसमें भारत उनको पूरी तरह से सपोर्ट करने की चेष्टा कर रहा है। तो हमारा जो एक महासागर विजन है उसके अंतर्गत डिफेंस सिक्योरिटी में उनके डेवलपमेंट
0: बिल्कुल। और सर
4: कोऑपरेशन
0: देखिए यही वजह है कि
4: करके।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा से सेशल्स का दौरा किया। आपको बीच में मैं रोकने के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त की कमी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन रणभूमि के अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे अमेरिका और ईरान के बीच में जो अविश्वास की खैरी घाई पैदा हो गई है वो एक नए युद्ध में तब्दील ना हो जाए, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
7: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
8: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
9: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
6: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
2: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
3: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
2: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
4: हमने तब भी सवाल किया था।
5: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
4: हम आज भी सवाल करते हैं।
5: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
4: ऑपरेशन अग्नि,
5: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
4: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
6: हमें मालूम है कि देश भर में कौन से राज्य में कहां केमिकल जोन है। बहुत छोटे कंस्ट्रक्शन एरिया में लैब बना दी जाती है और ऊपर कोई मुखौटा होता है तो एजेंसियों ने भी उसको ढूंढने का एक अपना तंत्र विकसित करना पड़ेगा और उसको कठोरता के साथ हमने नष्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन जो नई पद्धति के इन्होंने ढूंढे हैं, इसका भी हमने उपाय भी ढूंढना पड़ेगा और ये उपाय को सतत परिवर्तनशील करते हुए मॉनिटरिंग कर इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना पड़ेगा। पीएमएलए और ईडी के माध्यम से इसके फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को भी हमने बहुत रूथलेसली करना पड़ेगा और ये सब मिलकर उनके नेटवर्क को छिन्न विछिन्न करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक बार नेटवर्क छिन्न विछिन्न होता है तो हमारी लड़ाई जीतने के रास्ता बहुत आगे तक हम कर लेंगे। और तीसरा है डिस्ट्रॉय, नेटवर्क को दोबारा खड़ा न हो इस तरह से रूथलेसली समाप्त करना है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नर।
2: ब्रेक के बाद रणभूमि स्पेशल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताएंगे अमेरिका और ईरान के युद्ध की खबरें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है अयोध्या चढ़ावा विवाद से जुड़ी हुई, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा है कि उन्होंने चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। देखिए आपको बता दें कि अब राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर मंदिर ट्रस्ट ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी सिमर चावला भी हमारे साथ जुड़ गए। सिमर देखिए पहले ये कहा जा रहा था कि इस्तीफा दे दिया है, फिर कल कुछ खबरें आई कि नहीं इस्तीफा नहीं दिया है, अब राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ऐलान किया गया है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हाँ इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है दोनों ही लोगों का।
3: ये आपको बता दूं सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। तमाम ये कयास लगाए जा रहे थे जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे थे गोपाल रॉय, और अभी एक स्टेटमेंट आया कि फिलहाल इस तरीके की कोई जो बात है वो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आखिरकार राम मंदिर ट्रस्ट ने अपने आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि कर दी गई है कि अनिल मिश्रा और चंपत राय दोनों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उस आधिकारिक बयान में लिखा हुआ है कि दोनों ने अपना इस्तीफा दिया है, इस इस्तीफे को अगली बैठक में इसके बारे में चर्चा की जाएगी। अब क्या चर्चा होती है जिसके बाद एक्सेप्ट होता है क्या, उस पर अभी जो है वो क्लैरिटी आना बाकी है। लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है कि पहली बार आधिकारिक बयान राम मंदिर ट्रस्ट ने इस पूरे मामले में दिया है और इस्तीफा जो है वो दोनों की तरफ से पहुंच चुका है राम मंदिर ट्रस्ट के पास, इसकी पुष्टि कर दी गई है। इसके साथ ही कई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आधिकारिक जी
2: सिमर इसके हिसाब से आपने जो बताया, क्योंकि खबर ये थी कि स्वीकार कर लिया यानी उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, अब अगली मीटिंग में जैसा आप बता रहे हैं कि अगली मीटिंग में उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा।
3: जी बिल्कुल, अगर आधिकारिक बयान की बात करी जाए तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि दोनों ही व्यक्तियों से, चाहे वो चंपत राय हो चाहे वो अनिल मिश्रा हो, उन दोनों से त्याग पत्र जो है उनका प्राप्त हुआ है और अगली बैठक पर इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। ये आधिकारिक बयान है जो अभी ट्रस्ट द्वारा दिया गया है। फिलहाल स्वीकार किया गया है या नहीं किया गया है इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। इसके साथ ही कई जो कयास लगाए जा रहे थे, कई जो एलिगेशन ट्रस्ट पर लग रहे थे, चाहे वो चंदा चढ़ावा चोरी की बात हो, चाहे वो सिल्वर की, वो जो ब्रिक्स हो जिसके बारे में शिवसेना ने या तमाम राजनीतिक पार्टीज ने किया था कि चंदे की रसीदें नहीं मिली, उस पर भी एक बड़ा बयान दिया है ट्रस्ट ने। ये कहा है अफवाहों पे ना जाया जाए, क्योंकि जो ट्रस्ट पे दान की गई थी चीजें, चाहे वो चांदी की हो चाहे कुछ हो, वो महफूज है और ट्रस्ट के पास ही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि FIR दर्ज हो गई है इसमें और जो कोई भी इसमें दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जो पूरी डेवलपमेंट हो रही थी इसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि ट्रस्ट इस पे चुप्पी साधे हुए है, लेकिन
2: आप बने रहिए क्योंकि लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ कुमार अभिषेक भी हमारे सहयोगी जुड़ गए। कुमार अभिषेक, जैसा सिमर बता रहे कि देखिए अगली मीटिंग में तय किया जाएगा, ये आखिरकार अगली मीटिंग होनी कब है और क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा के अलावा भी कुछ लोगों के इस्तीफे हो सकते हैं, क्या इसको लेकर भी खबरें मिल रही है?
4: देखिए अगली मीटिंग की बात जरूर कही गई है, लेकिन ये बात कंफर्म हो गई जो आज जिसने कल इस खबर किया था कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा सार्वजनिक तौर पर नहीं है, लेकिन आज राम जन्मभूमि तीर्थ जो अध्यक्ष है स्वामी राम गोविंद देव जी, इन्होंने बताया, एक रिटर्न स्टेटमेंट जारी किया है ट्रस्ट की तरफ से और ये बता दिया है कि दोनों लोग, चाहे वो अनिल मिश्रा हो या चंपत राय, दोनों का त्याग पत्र प्राप्त हो गया, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि इस पर अगली बैठक में विचार करें, यानी कि इसकी बात नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ औपचारिकता है। ट्रस्ट पर इतने गंभीर आरोप, सोसाइटी में जो बातें निकल करके आई है उसमें बड़े जो चेहरे हैं उनके प्रति भी लापरवाही की बात और गंभीर आरोपों की बात आई हुई है। ऐसे में बगैर इस्तीफे के कोई चांस इनके पास भी नहीं था और ये एक फेस सेविंग है, इसे आप सेफ एग्जिट आप मान सकते हैं। लेकिन ये हो गया और ये इनका इस्तीफा हो चुका है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ क्योंकि सिमर भी जुड़े हैं, कुमार अभिषेक, हम सिमर का भी रुख करते हैं। सिमर, जैसा कुमार अभिषेक कह रहे हैं कि देखिए एक तरीके की फेस सेविंग है, लेकिन कार्रवाई की बात अब तक नहीं की गई, क्योंकि अनियमितताएं अगर बढ़ती गई, अनियमितताएं अगर हुई, भ्रष्टाचार अगर हुआ, तो उसके लिए जिम्मेदारी तो चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे लोगों की होगी जो लगातार ट्रस्ट को वहां पर कामकाज को देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे।
3: जी बिल्कुल, आपके बता दूं कि एक सेफ एग्जिट कहा जा सकता है, जिस तरीके से चंपत राय उनका एक व्यक्तित्व रहा है या एक पर्सनालिटी रही है। हमने देखा कि कई ऐसे बड़े मंत्री हैं या है वो बीजेपी के नेता हैं, उनके द्वारा तमाम ये स्टेटमेंट्स आते रहे थे कि चंपत राय के कैरेक्टर पे कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। फिलहाल हमने अभी एक उत्तर प्रदेश के मंत्री से बात करी, उन्होंने साफ साफ कहा कि चंपत राय ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वह धन और वैभव के लिए नहीं जी रहे हैं, उनके लिए सब मायने नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी इमेज है संगठन में और कहीं ना कहीं सरकार में भी, वो एक बड़ा रीजन हो सकता है कि उनको इस तरीके का सेफ एग्जिट दिया गया। लेकिन जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे कुमार अभिषेक जी, की किस तरीके से एक बड़ा अपने आप में ये स्टेप है और बड़ा एक्शन, जो कि एक तमाम बाकी एलिगेशन जो लगाए जा रहे थे, अपोजिशन द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा था कि उन पर भी एक्शन लिया जाए, वो कहीं ना कहीं अभी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। FIR पे कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है चंपत राय का नाम हो, लेकिन वो वाली कार्रवाई फिलहाल होती हुई नहीं दिख रही है। ये एक दूसरी कार्रवाई में उनको सेफ एग्जिट बोलने वो बिल्कुल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट ने जो कंफर्म कर दिया है कि जो उनका इस्तीफा है वो मिल चुका है, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने की भी पुष्टि नहीं हुई है।
2: क्योंकि आप लगातार आप बिल्कुल जिस तरीके से बात कर रहे हैं, हम दरअसल वो चिट्ठी या स्टेटमेंट भी अपने दर्शकों को पढ़कर सिलसिलेवार तरीके से हर एक लाइन बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस चिट्ठी में, उस प्रेस स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा गया। दरअसल उसमें अगर आप देखें, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या प्रेस जो स्टेटमेंट है, उसके अंदर श्रीराम मंदिर अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई घटनाओं पर हम सब आहत और अत्यंत दुखी है। समस्त राम भक्तों और राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में यहां सेवक करने वाले आप बताएं, इसकी न्यायपूर्वक जांच और राम भक्तों को आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए उसके बाद उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय और न्यासी श्री अनिल मिश्रा के त्यागपत्र प्राप्त हुए हैं, न्यास अपनी आगामी बैठक में इस पर विचार करेगा। जैसा हमारे सहयोगी सिमर चावला और कुमार अभिषेक बता रहे थे, अब आगे की लाइनें क्या कहती हैं वो भी आपके लिए पढ़ना और आपके लिए जानना जरूरी है। मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि की घटना से स्तंभ संबंध में न्यास के निवेदन पर शासन द्वारा गठित SIT से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर न्यास ने FIR की प्रविष्टि कि उस पर वैधानिक कार्रवाई जारी है, यानी उस पर लगातार मॉनिटरिंग, उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके बाद जो आखिरी पैरा है वो क्या कहता है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हम सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना बने, ऐसा सुनिश्चित करेंगे और अपराधियों को वैधानिक कड़ा दंड मिलेगा, इसी के आग्रही रहेंगे। असामाजिक और आधार्मिक और स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास सफल नहीं होने देंगे। दरअसल हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रेस स्टेटमेंट में क्यों क्या बड़ी बातें कही गई हैं, और ये इसलिए भी क्योंकि वो लगातार जो मिस्ट्रस्ट, लगातार जो सवाल खड़े हो रहे थे ट्रस्ट को लेकर भी, उसको लेकर भी ये जवाब दिया गया है। और शायद इसी वजह से ना सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की बात इसमें मंजूर की गई है, बल्कि यह भी कहा गया है कि लगातार जो SIT की जांच है उस पर भी लगातार प्रक्रिया तेज है और उस पर भी आगे काम चलता रहेगा। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सिमर चावला भी जुड़े हुए हैं। सिमर, देखिए ये हमने अपने दर्शकों को पढ़कर बताया, इसमें कई मैसेज हैं, खासतौर पे ना सिर्फ आप चंपत राय की बात कर लीजिए, अनिल मिश्रा के इस्तीफे की बात कर लीजिए, बल्कि जो सवाल ट्रस्ट पे खड़े हो रहे थे, जो लगातार उनके ऊपर कामकाज के तरीकों पर सवाल खड़े हो रहे थे, उसके बारे में भी कहा कि ऐसा काम किया जाएगा कि आने वाले वक्त में ऐसा काम ना हो, ऐसे सवाल ना खड़े हो ट्रस्ट पर।
3: जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सभी पॉइंट्स का, जो सभी खबरें चल रही थी या तमाम जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज द्वारा हो, चाहे वो आम लोगों की एक भावना हो, उन सब का सिलसिलेवार इस पूरे प्रेस नोट में जवाब दिया गया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो जो था वो रेजिग्नेशन का था, उसमें पुष्टि की गई कि हाँ रेजिग्नेशन दे दिया गया। इसके साथ ही जिस तरीके से पूरी ट्रस्ट की वर्किंग पे एलिगेशन लग रहे थे, उस पर उनका स्टेटमेंट आया है कि अगर SIT जांच कर रही है, कोई दोषी पाया गया तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ जो एक ये इल्जाम लगाए जा रहे थे, अपोजिशन पार्टीज कह रही थी कि आस्था से खिलवाड़ हुआ है, उस पर उनका साफ एक स्टेटमेंट है कि इस तरीके की अफवाह ना फैलाई जाए, ट्रस्ट द्वारा जो है विधिवत कार्रवाई की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको लेकर कई बड़े नेता, जैसे हमने देखा कि उद्धव ठाकरे ने एक स्टेटमेंट आया कि उनके द्वारा 1 करोड़ रुपए कैश और सिल्वर की एक ब्रिक दी गई जो गायब है, उसकी रिसिप्ट उनको नहीं दी गई, उस पर यह स्टेटमेंट साफ तौर पर किया गया है कि अफवाहों पर ना जाए, जो भी सामग्री है चाहे वो सिल्वर की हो चांदी की हो वो सब ट्रस्ट के पास सुरक्षित मौजूद है और किसी भी तरीके से उसको ना गायब किया गया है ना उसमें कोई हेरफेर की गई है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं जो डिफेंसिव स्टेटमेंट भी इसे आप कह लें, लेकिन अपनी साथ एक मैसेज जो देना था कि ट्रस्ट की जो एक इमेज है उस पे कहीं ना कहीं जब बात आई है तो उस पे अपना पूरा पक्ष रखा गया है। तो
2: सिमर हमारे साथ कुमार अभिषेक भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुमार अभिषेक आप भी इस मामले को लंबे समय से देख रहे थे, लगातार जो सवाल खड़े हुए, जो लगातार आप कैसे चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, एसआईटी में नाम भी, लेकिन अभी जो कार्रवाई एसआईटी की कार्रवाई की बात कर लीजिए या फिर आप कह सकते हैं ट्रस्ट की तरफ से जो प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है उसमें कौन कौन से नाम है जो प्रमुखता से सामने आ रहे हैं?
5: देखिए 8 लोगों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, 75 सीसीटीवी के ऐसे दृश्य सामने आए हैं जिसमें चोरी की वारदात दिख रही है, 79 लाख यानी कि 79 लाख रुपए पुलिस ने बरामद करके बता दिए हैं कि इतने पैसे बरामद हो चुके हैं, 8 लोगों पर एफआईआर, जिनके नेम्ड एफआईआर हुई है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जेल जा चुके हैं। लेकिन आखिर ये सब कुछ चल कहां रहा था? ये सब चल तो रहा था ट्रस्ट के अंदर में ही ना, ये तमाम लोग जो लोग गिरफ्तार किए गए ये सब ट्रस्ट के अंतर्गत ही काम कर रहे थे। ऐसे में चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या फिर गोपाल राव हो, ये सभी इस पूरे जो मंदिर परिसर में चल रहा था उसकी जिम्मेदारी इनकी बनती थी, और एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इनकी जिम्मेदारियों की ओर उल्लेख किया है। निश्चित तौर पर एसआईटी ने इन्हें प्राइमा फेसी इन पर कोई आरोप नहीं पाया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये जिम्मेदारियों से बच जाएंगे, और यही वजह थी कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद कल ही इस बात का खुलासा हो गया था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए ये बड़ा ही एक फाइन लाइन है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनसे इस्तीफा लिया गया है, या फिर अगली मीटिंग में इनके भी इस्तीफा पर विचार होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सेफ एग्जिट दिया गया है कि भाई इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी चोरी में अगर इनकी भूमिका अगर नहीं भी थी तो भी ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं, और जिस तरीके के आरोप, जिस तरीके का की किरकिरी इस पूरे ट्रस्ट की और खास करके अयोध्या की हुई है उसके बाद से ये होना ही था। ये जरूर है कि पिछले 24 घंटे से इस तरीके का भी एक माहौल बनाया गया था कि कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और उनकी तरफ से अभी तक कोई इस्तीफा सामने नहीं आया है, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इस्तीफा हुआ नहीं, लेकिन इनका इस्तीफा पहले ही हो चुका था और इनकी इस्तीफे की खबर भी आ चुकी थी, आज बस पुष्टि होनी बाकी थी। तो इस्तीफे की पुष्टि हो गई है, अब इसे एक आगे कदम बढ़कर के आप देख सकते हैं कि आगे की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। तो क्या विचार किया जाएगा, खैर अब उस पर आगे चर्चा होगी, लेकिन निश्चित तौर पर ये फेस सेविंग और सेफ एग्जिट है।
2: एक और बात, क्योंकि देखिए कुमार जब भी हम बात करते हैं खासतौर पर चंदा चोरी को लेकर, उसमें 2 चीजें थी जो प्रमुखता से सामने आई। पहली तो चीज थी कि देखिए ट्रस्ट के लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, दूसरा यह था कि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था वो ऐसा था जिसमें लूप होल थे, जिसका इस्तेमाल लगातार इन लोगों की तरफ से किया गया, ये जानते थे। तो क्या उसको भी दुरुस्त करने के लिए कुछ काम चल रहा है, क्योंकि ट्रस्ट ने देखिए तरफ साफ तौर पर कहा है कि वो जो अविश्वास, जो लगातार सवाल खड़े हो रहे उसको लेकर भी ट्रस्ट काम कर रहा है, तो क्या उसके ऊपर, उन पहलुओं पर भी पैरेलली काम किया जा रहा है?
5: देखिए मुझे लगता है कि जब ये ट्रस्ट की जो बैठक होने वाली है, चूंकि ये 29 तारीख तक 15 दिन पूरे हो जाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप 15 दिन धैर्य रखें, दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो देखिए प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर बड़े फैसले तो हो गए, 8 लोग पकड़े गए जैसा मैंने बताया, और इन दोनों लोगों का, जो चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये चूंकि ट्रस्ट के सबसे अहम मेंबर थे, इनका इस्तीफा भी हो गया। अब रही बात कि आगे क्या होगा, देखिए निश्चित तौर पर जो सीसीटीवी कैमरे थे उसने 70 ऐसे फुटेज सिर्फ 70 दिनों में पकड़े हैं जिसमें चोरी की वारदात कैमरे में कैद है। हिडन कैमरे की बात है इसके भीतर कि हिडन कैमरे जब लगाए गए तब पता चला कि पैसे की गिनती कैसे गड़बड़ी की जा रही थी। तो नेचुरल है कि एक पूरा ओवरऑल होना है इसको कि किस तरीके से, नए तरीके से इसकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। लेकिन जो बात नृपेंद्र मिश्र ने कुछ दिन पहले कही कि एक सीईओ होना चाहिए या फिर आप ट्रस्ट के पुनर्गठन को नए तरीके से देख सकते हैं आने वाले वक्त में, क्या ये जो श्राइन बोर्ड है माता वैष्णो देवी, उसके उसके तर्ज पर होगा, सोमनाथ के तर्ज पर होगा, बाबा काशी विश्वनाथ के तर्ज पर जो बना हुआ है बोर्ड उसके तर्ज पर होगा, लेकिन यहां पर बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस जरूर होंगे ये आप तय मान लीजिए। और जो बात की जा रही है कि अगली बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा, तो उस बैठक के पहले मुझे लगता है बहुत सारे फैसले स्ट्रक्चर को लेकर, खास करके जो एसआईटी ने सुझाए हैं कि अब नए तरीके से पूरे चीजों को स्ट्रक्चर किया जाए, मुझे लगता है उस पर पहले फैसला।
2: बिल्कुल, हमारे साथ सिमर चावला भी जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, सिमर एक बात बताइए, जो अगली बैठक की बात की जा रही है, बैठक कब होने वाली है, कौन कौन से लोग होंगे इंटरेस्टेड जो इस बैठक में शामिल होंगे, क्या इसमें सरकार की तरफ से भी कोई होगा जो लगातार इनकी बैठक की मॉनिटरिंग करेगा, देखेगा कि आखिरकार बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं?
3: बिल्कुल, अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। हालांकि ये पूरी तरीके से राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने वाली है, फिलहाल किसी भी तरीके का कोई बाहरी अधिकारी या फिर कोई बाहरी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये जो बैठक होती है राम मंदिर ट्रस्ट की, हमेशा से उनके पदाधिकारियों, उनके मेंबर्स और उन्हीं के लोगों के साथ ही होती है। फिलहाल अभी जो अगली बैठक है उसकी जो डेट है वो आधिकारिक रूप पे नहीं बताई गई है, लेकिन जल्दी हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से सारी गतिविधियां हो रही हैं, तमाम जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, ये बैठक बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसे इसी बैठक में तय किया जाएगा और ये माना जाएगा कि आगे की रणनीति ट्रस्ट की क्या होती है। जिस तरीके से जैसे हमें सहयोगी बता रहे थे कि क्या पुनर्गठन या फिर स्ट्रक्चरल चेंज हो सकते हैं पूरे इस बोर्ड में, उसको लेकर जो बोर्ड है वो भी सजग है, तो अपने फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं वरिष्ठ अपने जो पदाधिकारी हैं उनके साथ जो है वो बैठक करेगा और जल्द ही रणनीति तय करेगा कि किस तरीके की कार्रवाई बोर्ड को करने की जरूरत है, ताकि उनका जो कहीं ना कहीं एक तरीके से व्यक्तित्व है वो बचा रहे और उनकी जो इमेज है जिसको भारी डेंट पहुंचा है उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। ये पहला स्टेप था जो आज हुआ है प्रेस रिलीज के जरिए अपनी सफाई, और आगे की रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं उसकी आप झलक इस प्रेस रिलीज में देखेंगे, लेकिन बिल्कुल एक जो अहम बैठक आने वाले समय में होगी वही राम मंदिर ट्रस्ट का जो है वो फ्यूचर डिसाइड करेगी और उसको दिशा देगी कि आने वाले समय में ऐसा क्या किया जाता है।
2: बिल्कुल, हमारे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े और हमें बता रहे हैं कि आखिरकार ट्रस्ट की इस बैठक के बाद से ही लगातार इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कुमार अभिषेक बता रहे थे कि सिर्फ औपचारिकता ही है, उनके इस्तीफे की बात को लेकर ट्रस्ट ने बात मान ली है कि उनका उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब अगली बैठक में डिसाइड किया जाएगा कि उनका इस्तीफे पर चर्चा की जाएगी, लेकिन लगभग तौर पर यानी लगभग इस बात को मान लिया गया है कि उनके इस्तीफे स्वीकार ही होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दोनों सहयोगी सिमर चावला और कुमार अभिषेक इस बड़ी खबर पर हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए। रणभूमि में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
6: ब्रह्मांड की सबसे पवित्र माने जाने वाली जगह कैलाश, आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं चढ़ पाया।
7: कोई नहीं चढ़ सकता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे खींच रहा है आपको।
8: इससे अद्भुत, इससे अविश्वसनीय, इससे अकल्पनीय जगह कहाँ हो सकती है?
9: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
10: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
11: soccer's biggest stage is here. And we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: केतन को मारने का प्लान चेतन ने बनाया? क्या चेतन को आगे करके सिया को बचाने की कोशिश हो रही है? 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था, सिया का या केतन का? पुणे के केतन मर्डर केस में सिया का परिवार नई थ्योरी लेकर सामने आया है। सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
5: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
6: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
4: सिया के माता पिता दावा कर रहे हैं कि उन्हें सिया और चेतन के अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं था। वो अभी भी कह रहे हैं कि सिया और चेतन के बीच कुछ नहीं है। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई। एंग्जायटी और घबराहट इतनी ज्यादा हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। इधर पुणे पुलिस की जांच में सिया ने कबूल किया है कि वो कम से कम 3 साल तक शादी टालना चाहती थी, लेकिन रिश्ता तय होने के बाद शादी तोड़ने से बदनामी होती, इसलिए उसने केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सिया का दोस्त चेतन भी कम से कम 2 साल तक शादी नहीं करना चाहता था। केतन और सिया की सगाई फरवरी में हुई, लेकिन उससे ठीक पहले जनवरी में सिया गोयल अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ राजस्थान के उदयपुर गई थी। वहां वो 5 दिनों तक रही थी। चेतन चौधरी मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस की माने तो हत्या वाले दिन चेतन और सिया लोनावाला के कैफे में मिले थे, जहां उन्होंने हत्या की अंतिम योजना बनाई। शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। इसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
7: जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
8: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
4: अब पुणे पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। इससे पहले सिया के भाई से 10 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे।
9: ओंकार वाबले पुणे आज तक।

नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अयोध्या में रामलला के चढ़ावे में कथित चोरी का मामला सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गया है, जहां जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सवाल सिर्फ आरोपियों का नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की जवाबदेही का। राम भक्तों के चढ़ावे की कथित चोरी मामले में जांच लगातार हो रही है, नए नए राज भी खुल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लगभग 80 लाख रुपए की बरामदगी की गई। सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। और इसी बीच में एक बड़ी खबर भी आपको दे देते हैं। ट्रस्ट की ओर से एक बयान जारी कर दिया गया, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की बात कही गई है, जिन्होंने नैतिकता के आधार पर अभी इस्तीफा दिया है। ट्रस्ट की अगली बैठक में दोनों के इस्तीफे पर बातचीत होगी। साथ ही ट्रस्ट की ओर से बयान में यह भी कहा गया है कि दान में मिले सोना चांदी और आभूषण पूरी तरह से सुरक्षित हैं। साथ ही इस घटना में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। अब मामले में सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग कर रहा है। अरविंद केजरीवाल इसे महाडकैती बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए पलटवार भी किया है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच का दायरा क्या सिर्फ ये गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित रहेगा जो बहुत छोटे से हैं, या फिर अगर सबूत मिले तो फिर बड़ी जिम्मेदारियों तक भी कार्रवाई होगी। जो बड़े बड़े जिम्मेदार थे उन पर भी कार्रवाई होगी, उनके गर्दन तक भी पहुंचेगी पुलिस। दंगल में आज इसी मुद्दे पर होगी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट।

0: बात निकली है तो दूर तलक जा रही है, चोरी पकड़ी गई है तो खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, पर्दे में छिपे राज बेपर्दा होते जा रहे हैं, चोरों की कलई खुलती जा रही है। चढ़ावा चोरी का आरोप उन पर है जो राम भक्तों से मिलने वाले चढ़ावे के रखवाले बन बैठे थे। सब कुछ सेट था, चोरी कैसे करनी है, कैसे ठिकाने लगाना है, कैसे राम भक्तों की आंखों में धूल झोंकना है, सब कुछ। तभी तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार आस्था पर चोट की गई। पहली एफआईआर के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासे के मुताबिक सामने आया है कि चढ़ावे में 70 बार चोरी या गबन की गई। ये खुलासा 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक के सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद हुआ है। बात यहीं तक नहीं रुकती, मामले की जांच कर रही एसआईटी के हवाले से सूत्रों ने जानकारी दी है कि पिछले 3 साल में ऑडिट में कई खामियां मिली हैं। जांच में हुंडियों की संख्या और अभिलेखों में कथित तौर पर अंतर पाया गया। ये भी सामने आया कि पर्याप्त सीसीटीवी कवरेज नहीं था, इस वजह से निगरानी प्रभावित हुई। अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था में भारी कमियां थी। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बेहद कमजोर पाई गई। खुलासा इस बात पर भी हुआ है कि एसबीआई और ट्रस्ट के बीच सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में चढ़ावे की गिनती के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार की गई थी, लेकिन उसका ढंग से पालन नहीं किया गया। लगातार उल्लंघन होता रहा, चढ़ावे की गिनती में एसओपी को अनदेखा किया जाता रहा। खुलासा ये भी हुआ है कि ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष कुमार यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है।
1: 8 accused थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं, अलग अलग अमाउंट के रूप में। उसमें सुभाष जो एक accused हैं, उनके पास से बरामद नहीं हुआ है, क्योंकि वो षड्यंत्र में शामिल थे, इसलिए उनके पास से नहीं, क्योंकि मतलब घटना में वो भी इन्वॉल्व थे। सबके पास से 79,85,000 रुपए।
0: सवाल उठे तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। सदस्य अनिल मिश्रा को भी पद छोड़ना पड़ा।
2: 2 ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पर नहीं है, इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है। ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है।

0: प्रशासन का अनुभव है।
1: भगवान राम के भक्तों की आस्था पर चोट हुई है, चढ़ावे की चोरी की गई है, जांच बिठा दी गई है, गिरफ्तारियां हो गई है, फिर भी विपक्ष हमले का मौका नहीं चूक रहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी का लंका कांड अयोध्या में ही हो गया, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अयोध्या में महाडकैती हुई है। एक दिन पहले यानी 26 जून को केजरीवाल ने रामलला के दर्शन किए, दर्शन के बाद चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरा।
2: और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं, जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महाडकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। जाहिर तौर पे वो अपने खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे नहीं, तो वो अपने को पूरी तरह से अपने को बचाने में लगे हुए हैं।
1: केजरीवाल ने पूछा कि चोरी का पैसा गया कहाँ? चंदा चोरी करने वालों को केजरीवाल ने राक्षस बताते हुए कहा कि उन सभी को फांसी होनी चाहिए।
2: फर्जी एफआईआर, फर्जी एसआईटी, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महाडकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का कहना है कि उन्हें तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक इन चोरी करने वाले लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी।
1: उधर कांग्रेस ने इस मामले को संसद के मानसून सत्र के दौरान सदन में उठाने का भी मन बना लिया है। पूरा विपक्ष एक आवाज में कह रहा है कि इस मामले को छिपाने और लीपापोती करने की बजाय इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जानी चाहिए। केजरीवाल ने सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें आईना दिखाया, तो समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
3: मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो।
1: चढ़ावा चोरी के मामले की जारी तफ्तीश के बीच सियासत तेज है, लेकिन सवाल एक है कि आखिर बड़ी मछलियां जाल में कब फंसेंगी? मंदिर ट्रस्ट के बड़े चेहरों पर एक्शन कब होगा? आज तक ब्यूरो।
4: बहुत सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और इनके इर्द गिर्द आज हमारी बहस भी होगी। खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा जुड़े हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी जुड़े हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका है, वीएचपी प्रवक्ता अमितोष पारिक हमारे साथ है, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक सूरज पाल अमुजी हमारे साथ है। हम चर्चा की शुरुआत करें, हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी जुड़ गए। क्योंकि बड़ी खबर यह है कि इस्तीफा तो दिया गया लेकिन उस इस्तीफे को भी स्वीकार नहीं किया गया है। इस बात की जानकारी दे दी गई है कि हाँ, इस्तीफे हमारे पास आ गए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया गया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है। कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे संवाददाता भी हैं। बैठक में महासचिव की नियुक्ति पर भी चर्चा संभव है। यह बैठक कब होगी? 11 जुलाई को होगी। राम मंदिर ट्रस्ट की यह अगली बैठक है। ट्रस्ट जिस पर बड़ा सवाल उठ रहा है, उसकी विश्वसनीयता पर, उसके ट्रस्ट, उसने जो ट्रस्ट तोड़ा है उस पर बड़ा सवाल है। कुमार अभिषेक हमारे साथ। कुमार अभिषेक, जब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हो गया है तो स्वीकार करने के लिए इतना अगली बैठक का समय क्यों?
5: बिल्कुल राजीव, देखिए बड़ा सवाल है, लेकिन बात यह है कि दरअसल ये पूरा मामला सिर्फ एग्जिट का है, फेस सेविंग का है और कुछ नहीं। क्योंकि जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, 8 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, जेल भेज दिए गए, 70 सीसीटीवी फुटेज ऐसे आ गए जिसमें चोरी करते दिखाई दिए हैं, 79 लाख रिकवर हो गए हैं, इसके बाद भी अगर इस्तीफे का सार्वजनिक ऐलान नहीं हुआ तो सवाल उठना लाजमी था। और ये सवाल कल से, जब हम लोगों ने इस खबर को ब्रेक किया कि इनका इस्तीफा हो चुका है, तब भी सवाल उठाए जा रहे थे कि इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है। आज किसी तरीके से कोषाध्यक्ष जो हैं गोविंद देव गिरी जी महाराज, उन्होंने इसकी पुष्टि की है और यह कह दिया है कि अब अगली मीटिंग में इस पर फैसला होगा। लेकिन फैसला क्या होगा, इसके पहले आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, आप 15 दिन धैर्य रखिए। तो उम्मीद ये की जा रही है कि विस्तृत रिपोर्ट एसआईटी की आएगी। और जिस तरीके से आप कह लें कि नृपेंद्र मिश्र ने कुछ बयान दिया था कि नए स्ट्रक्चरल चेंजेज हो सकते हैं, नए, तो इनकी बैठक के पहले बहुत कुछ हो जाएगा। जो 11 जुलाई की बैठक ट्रस्ट की तरफ से रखी गई है, अब उसमें आप इस्तीफा स्वीकार करें ना स्वीकार करें तो 11 जुलाई तक पता चलेगा, लेकिन 11 जुलाई के पहले राम जन्मभूमि को लेकर के बहुत बड़े फैसले हो जाएंगे जो हमारी जानकारी है। कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस इसमें दिखाई देंगे, और ये इस्तीफा कल ही हो चुका था जिसकी आज पुष्टि की गई।
4: थैंक यू सो मच कुमार अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब चर्चा की करते हैं शुरुआत। के शर्मा जी, सीधा सीधा बड़ा सवाल, आपकी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है, मतलब आप छोटे छोटे राक्षसों को पकड़ रहे हैं, लेकिन उन राक्षसों का सेनापति कौन था, कौन निर्देशित कर रहा था उन राक्षसों को, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है।
0: नहीं राजीव जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो दान की जो चोरी का घटनाक्रम है अयोध्या का, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये करोड़ों करोड़ों भारतीयों के आस्था पर एक गहरी चोट है, और इसको किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और हमारा तो स्पष्ट मानना है कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, और इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसके जो भी अपराधी हैं वो पकड़े जाएं।
4: के शर्मा जी, आप भी कह रहे कि जांच हो,
0: चाहे वो बड़े अपराधी
4: हुई कैसे, डकैती हुई कैसे,
0: पूरी तरह से हो,
4: इस पर भी तो आपको बताना पड़ेगा।
0: मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं, मुझे बात तो पूरी कर, मैं ये सारा बता रहा हूं आपको, आप सुनिए। तो देखिए, दो पक्ष हैं राजीव जी, एक है आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कानूनी कार्रवाई है, और एक है इसको लेकर हो रही राजनीति। मैं दोनों ही विषय पर आपको बताना चाहता हूं। कानूनी कार्रवाई जिस दिन ये घटना संज्ञान में आती है, उसके बाद सरकार वहां SIT बनाती है, SIT के बाद उसकी प्राथमिक रिपोर्ट 7 दिन के पहले आती है, उसमें जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर 8 लोगों की गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी के बाद उनसे जांच परख चालू होती है। अब उस पर जो फाइनल रिपोर्ट आना है, जो 15 दिन के लगभग जो वहां के CM ने कहा है, आते ही उस पर जिसके भी उस पर नाम आते हैं, जो भी शंका शुभ पर होता है, उस पर भी कठोर कार्रवाई सरकार निश्चित तौर से करेगी। लेकिन जो लोग इस पर राजनीति करना चाहते हैं और इसको एक राजनीतिक बनाकर इस पर दुनिया भर की जो अफवाहें खड़ा करना, प्रश्न खड़ा करना, ये करना, मैं उनसे केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि साहब, आप कब से राम के हो गए? आप तो भगवान राम को काल्पनिक मानते थे। ये तो यही कांग्रेस है जो एफिडेविट जमा करती थी कोर्ट के अंदर, यही समाजवादी पार्टी जो कि निहत्ते कार सेवकों पर जो है गोलियां चलवाए इन्होंने, और यही नहीं रामचरितमानस,
4: ये तो हो गए। लेकिन मेरा जो दो बातें आपने रखी ट्रस्ट के संबंध में और राजनीति के संबंध में, आप सवाल भी सुनेंगे ना, सवाल ये है कि ट्रस्ट बना, ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटे छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो और ऊपर से किसी ने निर्देश ना, एक भी ट्रस्ट के मेंबर का नाम नहीं है क्या? बिना किसी ट्रस्ट के मेंबर की जानकारी के बिना सब हो रहा था? अगर आप राम के थे तो यह हुआ कैसे, एक सवाल। और दूसरा, राजनीति से, आपने भी तो राम के नाम का खूब राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है, तो अगर वो सवाल पूछ रहे तो इसमें गलत क्या है?
0: नहीं नहीं, मैं एक बात कहता हूं सर, नहीं नहीं, मैं सिंपल सी बात आपको कह दूं, अभी न जांच खत्म हुई है राजीव जी, अभी तो पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है जो कि 15 दिन के अंदर आनी है। इसलिए आप ये कैसे अभी से निष्कर्ष पे जा रहे हैं कि इनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया?
4: छोड़ा नहीं, सवाल लेके अभी तक किसी का नाम भी नहीं है ना, इतने दिनों में अभी तक किसी का नाम भी नहीं आया।
0: नहीं नहीं, आप रिपोर्ट पढ़े हैं क्या? आप अभी 15 दिन के जो रिपोर्ट आनी है उसको पढ़ लिए हैं क्या? आपके पास जानकारी है कि किसी का नाम नहीं है?
4: आप बताइए नाम है क्या?
0: मीडिया ट्रायल नहीं,
4: 8 गिरफ्तारियां तो हो गई हैं क्या उसमें कोई?
0: ये तो मुझे भी इसलिए नहीं, राजीव जी मैं यही तो कह रहा हूं कि आप 15 दिन वेट क्यों नहीं कर लेते हैं? आज ना उसकी अभी रिपोर्ट की पूरी जानकारी ना हमें है ना सरकार को है, जो रिपोर्ट बना रहे हैं वो उनके पास है, उनके रिपोर्ट सबमिट होने दीजिए। ये मीडिया ट्रायल के आधार पर आप किसी को दोषी कैसे बना देंगे? रिपोर्ट आने दीजिए, उसकी तथ्य सामने आने दीजिए, उसके बाद सारी चीजें आ
4: जाएंगी। गजब, लेकिन आपसे सवाल पूछा जाए तो वो मीडिया ट्रायल होगा। मतलब आपसे सवाल पूछा वहां की चोरी हो गई,
0: इनका
4: वो चोरी हो गई तो वो मीडिया ट्रायल होगा, आपसे सवाल ही ना पूछे।
0: आप मुझे
4: मतलब 70 CCTV थे, चोरी करते हुए पकड़े गए 70 सीसीटीवी में, 79 लाख रुपीज रिकवर भी हुए हैं, पर सवाल ही ना पूछा जाए वो मीडिया ट्रायल हो गया।
0: नहीं नहीं तो राजू जी मुझे एक चीज बताइए ना, अभी जांच चल रही है उसके अंदर आप जो है उसके पहले आपको उसकी जानकारी है,
4: आप निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं ना कि भाई बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, मगर मच्छों को पकड़ा ही नहीं जा रहा है, छोटी छोटी मछलियों के नाम आ रहे हैं, ये आरोप लग रहा है कि निष्पक्षता नहीं है।
0: कैसे आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कैसे? अभी तक रिपोर्ट नहीं आई पूरी, अभी 15 दिन पूरे नहीं हुए, आप इस निष्कर्ष पर भी आ गए। इसीलिए मैंने कहा कि आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, आप विपक्ष की जो है बातों पर घूम रहे हैं।
4: विपक्ष के जो सवाल है वो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, अगर आपको मीडिया ट्रायल लगता है तो सही है, वो मीडिया ट्रायल है तो आपको, अगर आपको लगता है कि मीडिया ट्रायल है आपसे सवाल पूछा जाना है तो ये मीडिया का काम है, ये मीडिया का काम है, और हम के शर्मा जी को करेंगे। लेकिन आलोक शर्मा जी आप आइए चर्चा में आइए, वो ये कह रहे हैं कि आप निष्कर्ष पे कैसे पहुंच गए, आप लोग ही तो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है, बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है।
6: देखिए जो राम मंदिर की डकैती है ना राजीव जी, ये कोई एक दिन में तो हुई नहीं, सरकार भी इनकी है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन सब इनका है, ट्रस्ट भी सरकार ने बनाया, 15 में से 12 मेंबर भी मोदी जी ने भेजे, और योगी जी की नाक के नीचे से डकैती होती रही, और योगी जी आज कह रहे हैं कि कोई सनातनियों को चैलेंज नहीं करे, प्रमाण है तो प्रमाण दो, मतलब प्रमाण भी विपक्ष देगा। तो आप लोग पकौड़े तलने के लिए सरकार में आए थे क्या भाई? हालत यह है कि 2021 में जिस समय पर पहली घटना घटी और एक एसआईटी बनी जमीन को लेकर, तो क्या जमीन को लेकर जो एसआईटी बनी थी उसकी जांच पूरी हुई कि नहीं? यहाँ पर बैठकर हंस रहे हैं डकैत लोग, बताइए चोरी हो गई इतनी बड़ी प्रभु राम के घर में, और ये लोग आज भी सीना चोरी कर रहे हैं।
0: आलोक शर्मा भाषा भी, अरे भाई भाई
6: सुनो ना यार, आप हंसते हो अच्छे लग रहे हो क्या यार? चोरी के ऊपर चोरी की डिबेट कर रहे हैं हम, आप हंस रहे हो, दांत फाड़ रहे हो,
0: क्या लग रहा है क्या? पकोड़े की भाषा बोला।
6: अरे भाई मैं फिर कह रहा हूँ कि क्या सरकार की नाक के, मैं चुप हो जाता हूँ रोंडियाल जी,
4: के शर्मा जी प्लीज,
6: रोंडियाल जी हम चुप हो जाते हैं।
4: नहीं नहीं आलोक शर्मा जी प्लीज,
6: इन्हीं को बोलना
4: मैं चाहता हूँ। देख के शर्मा जी आप जब बोल रहे थे किसी ने बीच में नहीं बोला ना,
6: कोई नहीं बोला,
4: मैं सभी से कि जो भी अपनी बात रखें सभ्यता के दायरे में रखी जाए, है ना। के शर्मा जी उनको बात कंप्लीट करने देना पूरे,
0: इन्होंने मुझे डकैत कहा है, इसका खानदान होगा डकैत, मुझे डकैत बोल रहे।
6: देखिए बीजेपी और आरएसएस के लोग, बीजेपी और आरएसएस के लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, और वो डकैत हैं, इनकी नाक के नीचे हुआ, इन्होंने ये लोग इन्वॉल्व, आरएसएस के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और आरएसएस जो है वो बीजेपी और वो बीजेपी की, अरे सुनो ना भाई, बीजेपी की मात्र पूरी तरह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन।
4: शर्मा जी सुनना, मैं आपको समय दूंगा एक बार उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। क्या के शर्मा जी ऐसे है कि आप ऑपोजिशन के सवाल ही नहीं सुनना चाहते इस मैटर पर? प्लीज सुनिए उनकी बात, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा समय दूंगा।
0: लेकिन
4: वो सीधा वो डकैती का आरोप लगा रहे हैं कि डकैती हुई है, और नहीं हुई तो आप बताइए क्या नहीं हुई? डकैती हुई है, डकैती आप उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। आपके पर्सनल किसने टिप्पणी नहीं किया? पर्सनल नहीं, आपको नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने आपको नहीं बोला, उन्होंने जो हाँ
6: टक्कर मैंने आरएसएस और बीजेपी के लिए बोला है। राजीव जी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सुनना नहीं चाहते।
0: आपने कहा ये हंस रहे हैं, ये डकैत है।
6: अरे भाई जो हंसने वाले लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं,
0: चलाइए
6: बीजेपी के लोग हैं और आरएसएस के लोग हैं, और चोरी और सीना चोरी कर रहे हैं आप लोग, डकैती कर रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग।
4: मैं नहीं चाहता कि इतना गंभीर मुद्दा डिरेल हो जाए, इधर उधर चला जाए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। भारत के राम भक्तों के साथ बहुत बहुत बड़ा छल हुआ है, नहीं उनका सीधा सीधा अपमान हुआ, और मैं इस डिबेट को डिरेल नहीं होने दूंगा। के शर्मा जी प्लीज अब आलोक जी को आप सुने, अभी सुनेंगे 30 सेकंड में आलोक जी अपनी बात कंप्लीट करिए, दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा। के शर्मा जी प्लीज अब आप टॉपिक पर
6: आइए। देखिए मैं तीन चीजें बताना चाहता हूँ कि इनका नारा था कि जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। आज हालत यह है कि पूरी बीजेपी 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक गायब रही, टीवी चैनल पे नहीं आई। गजनवी ने तो सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा, भाजपाई और संघियों ने एक छोटी सी वीडियो क्लिप में पता चला 70 बार लूटा, और कह रहे हैं कि साहब हमें डकैत मत कहो।
4: आलोक जी आप एक सीनियर लीडर, मेरा सवाल आपसे है कि ट्रस्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालता है, वित्तीय और तमाम चीजें, इसमें सरकार को आप दोषी क्यों कह रहे हैं?
6: ट्रस्ट किसने बनाया भाई? क्या ट्रस्ट में एक्स ऑफिशियो मेंबर डीएम है कि नहीं है?
4: उसको उसको स्वायत्त जो है पूरी जिम्मेदारी देगा ना,
6: नहीं, नहीं, नहीं,
4: स्वतंत्र बनाया गया
6: नहीं
4: उसको
6: है? क्या
4: उसमें आपको लगता है कि सरकार के आदमी थे? आप ये कह रहे हैं
6: डीएम को क्यों रखा, एडिशनल होम सेक्रेटरी उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है कि नहीं है? और मोदी जी 200-200 कैमरे लेकर वहां जाते थे कि नहीं जाते थे? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं कि नहीं है? मोदी जी ने नारा दिया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी और योगी की नाक के नीचे से डकैती होती रही और ये लोग हमसे आज भी आंख दिखा रहे? मोदी जी ने तो पूरा वो चलवाया था ना, हाँ मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो भाई आप भी चौकीदार बनो सब, अब कोई जिम्मेदारी कौन लेगा?
4: डन, राम मंदिर की चौकीदारी क्यों नहीं हो पाई आप लोगों से?
6: एक मिनट सुनिए ना राजीव जी, देखो बीच में उन्होंने पूरा टाइम खराब कर दिया,
4: फिनिश कीजिए जल्दी।
6: देखिए गलत बात है, बीजेपी ने, हम बार बार कह रहे हैं कि ये धन इनके लिए धर्म है, सनातनी नहीं है धनातनी है लोग। हालत ये है कि जब महिपाल ने कंप्लेंट की, महिपाल को हटा दिया आपने, फिर वो जो 2021 में एसआईटी बनी उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता है। इनके जो सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह, वो कह रहे हैं बहुत बड़े लोग हैं, मारा जाऊंगा मैं, अब कुछ नहीं बोलूंगा। अरे सारी दुनिया को पता है, लेकिन चंदा चोर, जमीन के लुटेरे, ये चढ़ावे के डकैत, इनको कुछ नहीं पता चला। दिक्कत यह है कि प्यादों को पकड़ लिया, हैंडलर बैठे हैं नागपुर, आतंकवादियों के हैंडलर बैठते ना पाकिस्तान में, ऐसे डकैतों के हैंडलर बैठे हैं नागपुर और दिल्ली। आप देखिए राजीव जी,
4: ठीक है,
6: आज एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद पुलिस ने रिमांड नहीं लिया उनका, किसके कहने से नहीं लिया भाई? एक घड़ी चोरी हो जाए, चेन चोरी हो जाए, तो पुलिस सबसे पहले कहती है कि मैं जो लोग पकड़े गए हैं उनका पुलिस रिमांड लेंगे, पुलिस रिमांड नहीं लिया।
4: ठीक है, बिल्कुल डिबेट लंबी है, मैं लौटता हूं आपके पास। केके शर्मा जी, चौकीदारी आप स्वीकार करेंगे? चौकीदारी नहीं कर पाए आप लोग?
0: नहीं, देखिए मैं एक बहुत स्पष्ट कर रहा हूं पुनः, वहां पर जैसे ही दान की गड़बड़ी का विषय आया, सरकार ने तत्काल एसआईटी बनाकर उसकी जांच प्रारंभ की, उसमें प्राथमिक
6: सरकार ने एसआईटी नहीं बनाई,
0: उसमें दोषी दिखे,
6: कह रहे हैं
0: वो भी तथ्य दिखे, उसके आधार पर
6: सरकार ने नहीं,
0: मैं बता रहा हूं साहब, ऐसा है भैया, गजनबी की स्तुति करने वाले
4: आलोक जी प्लीज,
0: और भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले
4: केके शर्मा,
0: तुम्हें आईना ये दिखाना जरूरी है? कांग्रेस बोलेगी इस विषय पर? मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक गजनबी का स्तुति गान जाकर,
4: मुगल ये सब छोड़िए, केके शर्मा जी वापस आइए, केके शर्मा जी वापस आ जाइए, वर्तमान में आइए। राम मंदिर में चोरी कैसे हो गई? इतने बड़े बड़े चौकीदार थे, इतने इतने बड़े कट्टर राम भक्त थे,
0: मैं
4: कट्टर राम भक्तों के बीच में चोरी कैसे हो गई?
0: मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ सर, ये कार्रवाई जो है अभी 8 लोगों की तत्काल गिरफ्तारी, और इसके बाद जो 15 दिन अभी पूरे नहीं हुए उसके पहले पहले अभी जो है कई जिसके भी उसमें तथ्य आएंगे, जिससे भी जुड़े हुए, बड़ी मछली छोटी मछली कुछ नहीं होता है इसमें। जो भी आरोपी है राजीव जी, जो भी आरोपी है, बे भ्रष्टाचार स्वीकार ही नहीं, चोरी स्वीकार ही नहीं, ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था का विषय है। हम ये इसके लिए 500 साल हम लड़े हैं, इस पे
6: अखाड़े वाले,
0: हमने कितनी सरकारें बलिदान की है इस चीज के लिए, इन कांग्रेसियों के ने हमारा बलिदान ले लिया है, ये हमको सिखाएंगे।
6: अखाड़े का
0: ये लोग भगवान राम को नहीं मानते, आज मंदिर जो है बनाने में कितना विरोध किया इन्होंने, इन कांग्रेसियों ने, आज इनको शर्म नहीं आ रही है, ये शर्म नहीं आ रही है इनको, ये किस मुंह से पूछ रहे हैं? लेकिन हम फिर भी किसी को नहीं छोड़ेंगे।
4: आप कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, मैं एक एक करके दूसरे मेहमान के पास भी जाना है। मनोज काकर जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी अभी सुना है, वो कह रहे हैं, अश्योर कर रहे हैं कि रुकिए, जांच पूरी होने दीजिए, और जो भी छोटी मछली, बड़ी मछली, मगरमच्छ, राक्षस, रावण, सब एक ही है, जो होगा उस पर कार्रवाई होगी। थोड़ा दिलासा देता है आपको, लगता है कि न्याय मिलेगा?
7: राजीव जी, एक बात से, दिनकर की एक लाइन है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याद, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो तो जो लोग तटस्थ हैं, जो सहकर्मी हैं, सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं। देखिए, चिलम चिल्ली करने का बात नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पौराणिक राम पे बात हो, उनके आदर्श पे बात हो और एक दूसरे को गाली दिया जाए, बिल्कुल नहीं, तथ्यों पे बात करिए। आप बताइए कि वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का जो ट्रस्ट बना था, उसका संचालन किसके पास था, उसकी पूरी व्यवस्था कौन देखता था? चंपत राय जी देखते थे। ये आप हमको सबको पता है कि वहां चंपत राय के बिना एक एक व्यक्ति भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। जो जो सरकार के ही प्रमुख रहे, एक व्यक्ति ने सवाल उठाया कि यदि वहां चंदों के हिसाब किताब की जिम्मेदारी एसबीआई बैंक को थी, तो उस बैंक को हटा करके एक प्राइवेट फर्म को क्यों रखा गया, सवाल नंबर दो है। तीसरी बात यह है कि अगर वहां चोरी इतने दिनों से हो रही थी, जो अब तमाम लोग देश भर के 200 किलो ईंट कहां चले गए, काकभूषुंडी कहां चले गए, आज एक व्यक्ति आए 1 करोड़ का जमीन कहां चले गए, चरण पादुका कहां चले गए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शिलाएं कहां चली गई, आज
4: आभूषणों को तो अभी ट्रस्ट की तरफ से बयान आ गया है कि सब सुरक्षित है, सब हमारे पास है।
7: मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और एसआईटी की रिपोर्ट, एक साथी कह रहे हैं कि आपको कैसे पता एसआईटी की रिपोर्ट। ये जो बात है कि अपील भी तुम हो, दलील भी तुम हो, तुम जिसे चाहो जबह कर दो, जिसे चाहो वो कर दो, तो आप सरकार से सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि आप छोटी मछलियों पर क्या ये सच नहीं है? जो ड्राइवर है उसका चयन किसने किया? क्या ड्राइवर ये फैसला ले रहा था? क्या अनुकल्प मिश्रा, अवनीश मिश्रा फैसला ले रहे थे कि अब बैंक वहां की चढ़ावा की जिम्मेदारी नहीं लेगा, आप प्राइवेट फर्म करेंगी? ये सब काम तो वहां गोपाल राव, चंपत राव, जो लोग प्रमुख हैं, जो लोग उसका संचालन कर रहे थे, जो समन्वय कमेटी को पूरा देख रहे, तो वही कर रहे हैं। तो इसलिए सवाल उठाया जा रहा। अगर साथी करें, ये पूरा देश और पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर सबसे ज्यादा राजनीति किसने करी? वो कौन देश के प्रधानमंत्री थे जो प्रभु राम को छोटा दिखाते थे और अपनी आकृति बड़ा करते थे? नरेंद्र मोदी करते थे। सबसे ज्यादा भाषण किसने दिया? और पूरी देश और दुनिया जानती है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया और देश के सभी वर्गों ने, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, ने सभी ने उसका सम्मान किया। अगर किसी ने राम को अपमानित किया, उनके आदर्श को कम किया, तो वो वही लोग हैं जो चंदा चोरों के बचाव में खड़े हैं। चूंकि वो गांव में कहावत है ना, चोर चोर मौसी अरे भाई, आप बचाव क्यों कर रहे हैं? आप स्पष्ट कहिए ना। आज तो कई धार्मिक लोगों ने वहां कहा है, कई साधुओं ने सवाल उठाया है कि आखिर ऐसा क्या है भाई, आप बड़े लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर करें? एफआईआर के बाद एफआर भी होता, अगर वो लोग निर्दोष होते तो एफआर हो जाती। तो सवाल इसलिए उठाया जा रहा कि राम किसी एक के गिरवी नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पूरी दुनिया के हैं, पूरे धरती के हैं, विश्व के हैं। उनकी मान्यता तो यह है, केवल भारतीय जनता पार्टी छाप रहा 1980 के आई, उसी के हो गए राम, उसी के अयोध्या हो गई। कह दिन की भारतीय जनता पार्टी है, राम के नाम पर सिर्फ धार्मिक धांधली बाजी करने वाले राम के नायक नहीं हो सकते। उन्होंने राम की मर्यादा हमेशा कम करी है, पेपर लीक करके कम करी है, खीरा की खेती करके 90 लाख कमा रहे हैं, जमीन उनकी 2 गुना हो जा रही है, मणिपुर आज भी हमारे ही देश का मुकुट है, जल रहा है, इसी लखनऊ में बेटे 15-16 नौनिहाल जल के मर गए और मुख्यमंत्री से संवेदना का एक शब्द नहीं निकला राजीव जी, वो लोग राम के आदर्श कैसे हो सकते हैं? राम के आदर्श तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने कम से कम पूरी दुनिया को राम के यहाँ हो रहे चंदे के चोरी से अवगत कराया और तब सरकार ने 7 तारीख को राष्ट्रीय
4: अध्यक्ष के जवाब में अमिताभ जी सूरज जी के पास
7: करेंगे। इससे पता चलेगा कि आप राम के नहीं, रावण
0: एक मिनट इनको बंद कराइए। नहीं, वो कौन रावण का भक्त है ये तो अपने अपने कर्मों से पता चलता है। जब रामचरित मानस फाड़ के फेंक रहे थे, जब उसको आग लगा रहे थे, जब राम के चरित्र पे प्रश्न उठा रहे थे, तब उससे पता था, इस देश की जनता जान रही थी कि ये समाजवादी पार्टी ये रावण के ही अनुयायी हैं। और जब निहत्थे कार सेवकों पर आपने गोलियां चलाई, ये कौन सा पर्व था भैया? ये कौन सी राम भक्ति थी? ये कौन सी मर्यादा पाल रहे थे आप? मुलायम सिंह खड़े होकर कहते थे कि और हिंदुओं को मरवाना होता तो मैं मरवा देता मस्जिद के लिए। ये आप अब बीच में, मैं देखिए राजू जी, मैंने बीच में नहीं बोला, अब इनको आग बुझ की लग रही है।
4: मनोज जी आपने ही सवाल बहुत सारे पूछे हैं और जनता भी आपके सवालों को सुन चुकी है, तो उन सवालों पर जवाब भी आना चाहिए, वो जवाब भी आपको सुनना चाहिए, लेकिन सिर्फ सवालों के जवाब। के शर्मा जी, पर्सनल टिप्पणी, इतिहास में क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या, वो एक तरफ रहने देते,
0: सवालों का ही जवाब। हाँ देखिए, ऐसा है राजीव जी, आप यदि मेरे ऊपर राजनीतिक आरोप लगाएंगे तो मैं उसका उत्तर तो जरूर दूंगा सत्यता के साथ। और जो तथ्यात्मक विषय है, जिस पर ठीक है, आप विपक्ष से आप प्रश्न उठाइए, एसआईटी जांच, हम भी कह रहे हैं कि अभी उसका 15 दिन पूरा नहीं हुआ, होने दीजिए, हम उसकी तथ्य बाहर आएंगे, उस पर सब पर हम कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप जब झूठी अफवाह फैलाते हैं, जब आप झूठी बातें वहां पर करते हैं, आप तिल को तार बनाने लगते हैं और आप सोचते हैं कि अफवाह फैलाकर आप हिंदुओं की आस्था कमजोर कर देंगे। अरे मुल्लाओं की पार्टी, अरे मुल्लाओं की पार्टी, तुम क्या आस्था हिंदुओं
7: की पार्टी,
0: तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मुल्लाओं की पार्टी, तुम जाकर मुल्ला अल्लाह क्या करो, हमारी आस्था कम नहीं होने वाली राम मंदिर
7: के,
0: हमारी आस्था कम नहीं होगी, तुम चिल्लाओगे, तुम चिल्लाओगे मनोज काका, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे सच पर बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मुसलमानों की पार्टियां आज भारत के अंदर हिंदू आस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इन आस्था कमजोर करने वालों को माकूल जवाब मिलेगा, इसी देश की जनता अभी भी जवाब दे रही है, आगे भी इनको जवाब देगी। आप ये सोचकर, ये हिंदू
4: आप दोनों साथ में बोल रहे हैं, दोनों दोनों की बात ही समझ में नहीं आ रहे हैं और फिर विषय इधर से उधर भटक रहा है, बहुत गंभीर विषय। मैं आलोक जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक रिएक्शन में पहले अमिताभ जी से भी लेना चाहता हूं। अमिताभ जी, आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सुन लिया है, क्या आपको लगता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है या विपक्ष के जो सवाल हैं वो वाजिब हैं, वो जायज सवाल हैं?
8: राजीव, बहुत स्पष्ट एक चीज है, अगर इसका सवाल का जवाब मुझे इन्हीं के ही आधार से देना है तो वो डिबेट आज भी चल रही थी, कल भी चलेगी, 7 दिन पहले भी चल रही थी। लेकिन उन सवालों का जवाब अगर कानूनी प्रक्रिया से देना है तो मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से रखता हूं, मैं इनकी नैतिकता पे नहीं जाना चाहता, मैं इनके आधार पे नहीं जाना चाहता, मैं इनके इतिहास पे भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो इतिहास लिख चुका है उसको ये भी नहीं बदल सकते, ना आप बदल सकते, ना मैं बदल सकते। लेकिन हाँ, एलिगेशन के ऊपर में, सूचनाओं के आधार पे और सिर्फ मेयर डिफेमेशन के आधार पे जो भी कानूनी प्रक्रिया हो रही है उस पे इनके आरोप प्रत्यारोप एलिगेशन को बदला जा सकता है। वो कैसे बदलता है मैं बताऊं। सबसे पहली बात, 6 जून से ये विषय चालू होता है, ये कह रहे हैं मनोज काका कि लगातार तरीके से इस देश के अंदर में कब से चोरी हो रही है, आलोक शर्मा कह रहे हैं कितने दिनों से चोरी हो रही है, लेकिन आज दिनांक तक जो भी हुआ है वो सारी कानूनी प्रक्रिया के थ्रू हुआ है, लेकिन ये उसको चैलेंज करते रहे। देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए कि इनकी मानसिकता क्या है। सबसे पहले बात आई ट्विटर से, ट्विटर में पवन पांडे इसको अपोज करते हैं, हमें पता नहीं है, बाद में एलिगेशन लगने चालू होते हैं, कांग्रेस पार्टी का स्वाभाविक था कि समाजवादी पार्टी के साथ सुर मिलाएगी क्योंकि हमेशा राम विरोधी सुर मिलाते जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद बाद में एसआईटी गठित होती है, एसआईटी के अंदर इन्वेस्टिगेशन होता है, तो बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन कब होगा, 6 दिन में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे दी जाती है, प्रीलिम रिपोर्ट कब आएगी, 6 दिन में दे दी गई, एफआईआर कब होगी, एफआईआर हो जाती है, आरोपी कब अरेस्ट होंगे, आरोपी अरेस्ट हो जाते हैं, जुडिशियल कस्टडी कब होगी, जुडिशियल कस्टडी हो जाती है, एफआईआर पब्लिक होगी, एफआईआर पब्लिक हो जाती है। आप कह रहे हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली, मुझे लगता है कि पूरे स्वभाव से एक बार भी अगर इस कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध अगर इनको लगता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का वायलेशन हुआ है तो क्यों चैलेंज नहीं कराए लोगों ने, लेकिन नहीं चैलेंज करें क्योंकि उन्हें पता है कि हर चीज कानूनी प्रक्रिया से हो रही है। अजय आलोक शर्मा और समाजवादी पार्टी के मनोज काका बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से पूछता हूं, बिना गूगल में देख के बताइए कि कौन सी कमीशन एक्ट के अंदर में, किस कौन से धारा के अंदर में कमीशन में जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है, ये बता दें मुझे, यहाँ बैठ के टीवी मीडिया के माध्यम से सिर्फ चीखने से बोलने से बड़बड़ाने से जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती है। लेकिन जो एसआईटी की प्रोब था वो स्टेट की डिस्क्रिशनरी पावर थी ना कि आर्बिट्री पावर, वो करा, आपको लगता है गलत था आप चैलेंज कर देते, आपको लगता है लैंडस्केप हुआ चैलेंज कर देते कोर्ट में, लेकिन यहाँ बैठ के सिर्फ मेयर एलिगेशन सिर्फ डिपोर्टेशन।
4: लेकिन आप चोरी जो हुए उस पर भी अपनी बात रख दीजिए, जो चोरी हुई है उस पर भी बता दीजिए, क्या आपको लगता है कि बिना ट्रस्ट के किसी सदस्य का अब तक क्यों किसी का नाम नहीं आया, ये चोरी हो गई हो, चाबियां भी वो टिन्नू यादव चोर के पास पहुंच गए, वो कैसे पहुंच गए चाबियां?
8: मैं बताता हूं राजीव जी, आप सिर्फ आधारों पे और इन जैसे मिस इन्फॉर्मेड लोगों के आधार पे जो विसल ब्लोअर्स हैं, जो इनपैटिएबल है, जिनकी डिजायर्स खत्म नहीं होती, उनके आधार पे चलना चाहते हैं तो आप हजारों और अनेकों एलिगेशन और प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप जो कंक्लूसिव एविडेंसेस पे चलना चाहते हैं तो वो तो जो लिखे थे वही है, जो तथ्य है वही प्रमाण है। अगर आज एफआईआर में जो कुछ बात लिखी है उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, अन्य भी 15-7 दिन और बचे, 7 दिन में इन्वेस्टिगेशन फिर होगी, एफआईआर अगर होनी तो फिर होगी, चार्जशीट होनी तो चार्जशीट भी होगी, जुडिशियल कस्टडी होगी और जो जो इसमें लिख पाएगा सब सब इसमें आएंगे। लेकिन क्या है, इन्हें दिक्कत है कि इनकी बात पे जो है वो क्यों नहीं हो जा रही। मतलब कुल मिलाकर राम जन्मभूमि, आपको मैं 4 एग्जांपल देता हूं राजीव भाई, उसके बाद में आप कंक्लूड करके आगे बढ़ सकते हैं। ये क्यों चुप हो जाते हैं कार्तिकेय दीपम पे, ये क्यों चुप हो गए गुरुवर अय्यप्पा टेंपल पे, ये क्यों चुप हो गए सबरीमला गोल्ड थेफ्ट के ऊपर में, वहां तो सबरीमला गोल्ड थेफ्ट केरला और कर्नाटका में तो सरकारें किसकी है, सांसद किसके है, कौन चला रहा है, मुस्लिम लीग के साथ समर्थन में कौन है, वहां ये चुप हो जाएंगे, वहां सनातन आहत नहीं होगा इनका। कर्नाटक वर्क लैंड के अंदर में सर्वर रनमन मणिपट्टी की रिपोर्ट है, 4.1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है वर्क के अंदर में, केरला के अंदर में 2022 के अंदर में 9.78 करोड़, केरला मतुनान मॉस के अंदर में एम्बेजलमेंट हुआ है, कहां से लेगा ये? और जिस सलात दरगाह की बात करें उसमें एम्बेजलमेंट आया है अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में, वहां क्यों नहीं बोलता ये? तो कुल मिलाकर सनातन को टारगेट करना, तथ्यों के ऊपर में विरोध करना और सिर्फ डिस्टर्स जताना, ये बता दें कितना सनातन।
4: आलोक जी 30 सेकंड में रिएक्ट कीजिए, फिर उसका सूरज जी आपसे रिएक्शन लूंगा मैं, लेकिन आलोक जी 30 सेकंड में जवाब चुके सवाल आपसे थे।
6: देखिए दिक्कत ये है कि 14-14, 15-15 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाले लोग राजीव जी करोड़ों अरबों की डकैती नहीं डाल सकते हैं, सब हर आदमी समझता है। 21 जून 2022 को एक रिपोर्ट आई थी कि 3400 करोड़ रुपया हमारा निर्माण के लिए इकट्ठा हो चुका है, 1200 शिलाओं को क्या ये लोग जो 14,000-15,000 रुपए तनख्वाह ले रहे थे वो खा सकते हैं, वो डकार सकते हैं क्या? ये संभव ही नहीं है। ये बार बार कह रहे हैं साहब ये हो गया वो हो गया, अरे भाई आज 20 दिन हो गए टीवी पे डिबेट होते होते, कल FIR हुई है, और FIR भी किसके खिलाफ हुई है? वो 14,000-15,000 रुपए तनख्वाह लेने वालों के। तो सवाल तो उठेंगे ना, विपक्ष पूछेगा सवाल कि भाई आपके नाक के नीचे से सब कुछ होता रहा। अभी मैंने कहा कि पुलिस ने पुलिस कस्टडी उनकी क्यों नहीं ली, क्या उनसे माल रिकवर और नहीं करना था? ये लोग तो तमाम लोग पिछले 20 दिन से कह रहे हैं चोरी हुई नहीं है, चोरी हुई नहीं है, पूरी ट्रस्ट कह रही है। वो चंपत राय खुद कह रहा था, जो खुद अब चंपत होता हुआ नजर आ रहा
8: है। कांग्रेस सरकार
6: गलत नहीं बोला है, तो बोला जाएगा चंपत राय, चंपत राय के नाक के नीचे डकैती हुई और चंपत राय ने माल कहाँ भेजा वो भी सामने आएगा।
8: बेलों में जो घूम रहे हैं सड़कों
6: में बहुत धर्मात्मा है, तो इस्तीफा क्यों ले रहे हो भाई उसका?
8: चोर
6: चोर मोटे रे भाई,
8: कैसे
6: उसको बचाया जाए कि चंपत राय को अरेस्ट नहीं करेंगे? चंपत राय अरेस्ट होते ही राजीव जी
8: पता चल जाएगा
6: अभी तो उसके बोर भर भर के लोग कहाँ गए, इसलिए ये बोलने नहीं देंगे टीवी पे, बोलने नहीं देंगे हमें, क्योंकि चंपत राय जिस दिन अरेस्ट होगा उस दिन वो मुंह खोल देगा अपना कि कहाँ कहाँ बोरे गए।
4: सूरज जी
6: लग रही है
4: आप तो बिल्कुल बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, जो दिल में होता है वो जुबान पर होता है। आप बताइए क्या आपको लगता है कि जो जांच चल रही है वो सही चल रही है और अभी तक गिरफ्तारी किसी बड़े बड़े व्यक्ति की नहीं हुई है, ट्रस्ट के किसी सदस्य की नहीं हुई है, ना उसका नाम आया, आपको लगता है सब ठीक चल रहा है? सूरज जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है
9: ना बॉस, चंपत राय उसको
4: ठीक हाँ हाँ हाँ अब आवाज आ रही है,
9: आपको मेरी
4: आ रही है आवाज आ रही है, बताइए क्या कोई संदेह है आपको या ठीक है सब?
9: देखो जो राक्षसों का आका है चंपत राय अनिल मिश्रा, चंपत राय अनिल मिश्रा कौन है लोग? FIR के अंदर आठों के आठों दोषियों के पिता का नाम नहीं है, पता नहीं है SIT को, क्या उन जांचकर्ताओं को ये नहीं पता कि आठ लोगों के पिता का नाम क्या है? उनका पता क्या है? अज्ञात लिखा हुआ है राजीव भाई। और ये जो बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, मैं एक बात पूछ रहा हूं, ये राम मंदिर ये विश्वंदु परिषद का RSS का या 130 करोड़ लोगों का है? ये ठेकेदार जो बन रहे हैं ये विश्वंदु परिषद के प्रवक्ता बोल रहे हैं। देखो मैं राजनीतिक विषयों पर नहीं जाऊंगा, के मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूं कांग्रेस और समाजवादी का राम मंदिर के प्रति क्या आस्था रही है, परंतु मैं कार सेवक रहा हूं, मैं स्वयं सेवक हूं, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है 1800 रुपए के कंस्ट्रक्शन के अंदर, नृपेंद्र मिश्रा दोषी है और वही नृपेंद्र मिश्रा आपके टीवी चैनल पर बोल रहे हैं आज तक पर कि हाँ गड़बड़ है, घोटाला है, जब घोटाला है तो इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं कर रहे, घोटाला है तो उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं हो रही, अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे? विश्व हिंदू परिषद ठेकेदार नहीं है, विश्व हिंदू परिषद ठेकेदार नहीं है।
8: अरे
9: प्रवक्ता 37 साल भाजपा में रहा हूं मैं, मेरा संघ प्रवेश 10 वर्ष है, आप पैदा भी नहीं हुए थे, अरे ढाका डाल रखा है, शर्म नहीं आती? हमारे बाप का मंदिर है क्या ये? हमारे बाप का मंदिर है क्या? आलोक कुमार के बाप का मंदिर है?
4: प्लीज इस तरह की भाषा ना हो, ये इस तरह की टिप्पणियां ना हो, मतलब एक ऐसा मंच है जिसको बच्चे बूढ़े सब देखते हैं और यहाँ से सीखते हैं कुछ ना कुछ, यहाँ पर मतलब भाषा तो ऐसी होनी चाहिए बाप, ये सब बहुत ही अच्छी भाषा नहीं है। सूरज जी प्लीज, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखता हूँ, सूरज कंप्लीट करिए।
9: राक्षसों को
8: मैं ये कह रहा हूँ, आपको लगता है कि कोई आरोपी है, आप एक सिटीजन है, आप जाके FIR करिए, अगर लगता है FIR नहीं हो रही है तो 156(3) की कार्रवाई करिए,
4: अमित कंप्लीट करिए, आप मतलब वो थोड़ा से कहते हैं आप विचलित से हो जाते हैं, उनको कंप्लीट करने दीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, 30 सेकंड में कंप्लीट करिए।
9: बरामद की हुई है और रिमांड भी नहीं पुलिस का,
4: ठीक है
9: आप पुलिस का रिमांड भी नहीं लेंगे, कमाल है भाई,
4: ठीक है, ये रिमांड वाला प्रश्न आलोक जी भी बार बार उठा रहे हैं, के शर्मा जी इस पर आप जवाब दें। वो बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस को रिमांड लेने की भी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है।
0: नहीं सर, पूछताछ तो चली रही है ना सर, वो कोई बाहर तो है नहीं, और सारे डिटेल्स जो है वो लिए ही जाएंगे, उसमें तो कोई छोड़ेंगे थोड़ी ना किसी को। अभी आलोक जी एक बात कह रहे थे, मैं उस बात का मैं आलोक जी एक बात कह रहे थे, मैं किसी के बचाव पे ये तर्क नहीं दे रहा हूं। किसी के 14,000-15,000 जो भी तनख्वाह उनका क्या है कैसे, लेकिन यदि यही आधार कांग्रेस का है तो मैं पूछना चाहता हूं आलोक जी, गांधी खानदान
10: मैं भी चिल्लाऊंगा, अच्छी बात नहीं,
0: गांधी खानदान पिछले चार पुस्तों से कोई नौकरी नहीं करता
10: जो है एक पूरी
0: चोरी। हाँ बता रहा हूँ, गांधी खानदान कोई नौकरी नहीं करता, कोई धंधा नहीं है उसका, एक करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आ गई, एक गांधी खानदान के पास कहाँ से आ गई,
10: गांधी फैमिली,
0: एक गांधी खानदान के पास कहाँ से आ गई, लगता है जी
4: अलग अलग समय आप इस राम मंदिर पर आ जाइए, जिस राम मंदिर को बनाने के लिए 500 वर्षों तक लोगों ने इंतजार किया, कई लोगों ने अपना बलिदान दिया, वहां चोरी कैसे हो गई के शर्मा जी, और उसके बाद वो जांच पर सवाल उठा रहे हैं।
0: जी जी
10: जांच पर नहीं बोलेंगे,
0: मैं तो सरकार ये तो उठाएंगे, ये तो इनके पाप है
10: लेते ना उसके खिलाफ,
0: ये तो
4: नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप हिचकिचा रहे हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं मुख्य आरोपियों को पकड़ने में,
0: इनके नेता तो पूछते थे तो मैं इस क्यों किसको छोड़ रहे हैं सर, ये तो बताइए ना
10: राजीव जी,
0: किसको छोड़ रहे हैं, जिसका भी एसआईटी का रिपोर्ट नाम आ रहा है सबको पकड़ रहे हैं, और पूरे जांच के बाद हम सब किसी को नहीं छोड़ेंगे,
4: ठीक है,
0: लेकिन जो भगवान राम पे प्रश्न उठाते रहे वो बैंक में हमें
10: बीस दिन
0: आप आरोप मत लगाइए, आपका ये राजनीतिक चाल नहीं चलने वाला गलने वाला, ये हिंदू विरोधी गांधी खानदान जो आज तक अयोध्या नहीं गया, कांग्रेस पार्टी जो अयोध्या का विरोध करती रही, ये लोग बैठ के हमें अयोध्या का महत्व न सिखाएं,
4: ठीक है,
0: हमें न सिखाएं।
4: आलोक शर्मा
0: जी
4: वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो इस समय पीड़ा है वो सिर्फ राजनीतिक पीड़ा है, मतलब आपको न राम में कोई दिलचस्पी है न राम मंदिर से कोई लेना देना है, और इतिहास का भी वो उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन अब जो आपके प्रश्न है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है।
0: कितनी नफरत है,
4: आलोक शर्मा जी,
6: राजीव जी हम राजनीति नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी तो 15 दिन तक इंतजार करती रही कि कब FIR हो, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा उनको FIR करने में 20 दिन लगे, वो पुलिस जिसको एक छोटी सी चेन कोई मोबाइल चोरी हो जाए तो पुलिस का रिमांड मांगती है, लेकिन पुलिस ने रिमांड नहीं मांगा, पुलिस ने क्यों नहीं मांगा रिमांड, क्यों जुडिशियल कस्टडी में चले गए कि उनके अगर पिछवाड़े लट पड़ेंगे तो वो बताएंगे कि पैसा नागपुर किसके कहने पर गया, दिल्ली झंडे वाला किसके कहने पर गया, वो झंडे वाला इनकी बिल्डिंग कैसे बनी, सब कुछ सामने आ जाएगा, इसलिए रिमांड नहीं मांगा गया, इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं।
0: यही मैं कहना चाहता हूँ, ये अफवाह फैलाना,
4: ठीक है शर्मा जी, मैं इस पे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है,
0: यही कांग्रेस पार्टी का सत्य,
4: आप इसमें आरएसएस बीजेपी को सीधा सीधा ही, मतलब आप तो निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं ना आलोक शर्मा जी,
0: यही कांग्रेसियों का सच है कि प्रोपेगेंडा,
6: मैं निष्कर्ष पे
0: चोट करो भगवान राम
6: जितने लोग हैं ये सारे के सारे आरएसएस से जुड़े हुए हैं राजीव जी, जितने लोग हैं सारे आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस ने बहुत सारे हिंदुस्तान के मंदिरों पर कब्जा कर लिया,
0: भविष्य
6: पूरा एक षड्यंत्र है इनका,
0: भ्रष्टाचारी को
6: वो कहाँ है, श्री श्री रविशंकर कहाँ है, वो लाला रामदेव कहाँ है, वो बाबा बागेश्वर,
0: आपको यही बताना चाहता हूँ,
6: यहाँ बताइए ना, उसको
0: पार्टी
6: सब भाग के खड़े हो गए, सबके मुंह पे टेप लग गई, कहाँ है वो बाबा बागेश्वर,
4: समय कम है, मैं सबसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है, मनोज काका जी, मतलब क्या 2027 में आप इसे, मतलब तैयारियां चल रही है आप लोगों की, मैनिफेस्टो में ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा राम का, न्याय दिलाने का।
7: राजू जी आपको बहुत साधुवाद, देखिए ये जो आपने कहा कि 2027 में क्या होगा, 2027 में वही होगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी समाजवादी पार्टी जब 2027 में सरकार में आएगी तो दुनिया की सबसे बेहतरीन आकर्षक और सत्य और न्याय की नगरी होगी, और ये समाजवादी पार्टी सुनिश्चित करेगी ये, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के यहाँ तिनका भी चोरी नहीं होगा, यह समाजवादी पार्टी ही सुनिश्चित कर पाएगी। जिन लोगों ने इस देश को लूटा है, लगातार लूटा है, जिन लोगों के पास एक 1925 का संगठन है, जिसके पास कोई, उनके पास पूछिए कौन सी कंपनी है जो संगठन कहीं, जो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है, आरएसएस 1925 से चला आ रहा है, एक खाता नहीं, वो ऑडिट कराते हैं, उनके पास अरबों की संपत्ति कहां से आ गई कि पूरे देश भर में उनके बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, ये पूछ लेंगे। ये लोग गौ सेवा का गाना गाते हैं और गौ काटने वाली कंपनियों से चंदा ले लेते हैं, तो देहरे चरित्र के लोग हैं, राम के नाम पे गाना गाने वाले, आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भी चंदा चोरी कर लिए, तो इनसे देश कभी
8: सच्चा न्याय
4: अमितोष, आप ये तो मानेंगे ना कि एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है, डेंट तो पहुंचा है, जो राम के हैं, इतनी सारी बातें होती हैं, इतनी लंबी राजनीति है, तो बड़ा एक लंबा इतिहास है, डेंट तो लगा है एक बड़ा।
8: राजीव, चोरी का समर्थन यहाँ कोई नहीं कर रहा, मुझे लगता है ना आप कर रहे हैं, ना भाव से हम करेंगे, ना सूरज पाल जी करेंगे। आलोक शर्मा और मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं करता, क्योंकि ये लोग तो हेरल्ड और बर्क जो है मस्जिदों से भी बिजली चुराते हुए पकड़ में है। लेकिन ये बात तथ्य है कि आज कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक अगर कोई काम हो रहा है और आप उससे सुनिश्चित नहीं करते, आप उसे सेटिस्फाई नहीं है, तो यू हैव लीगल कोर्सेस। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑफरिंग फॉर द लीगल कोर्सेस, आप यहाँ बैठकर अगर डिबेट करते हैं और एलिगेशन लगाते हैं, वो सबसे बड़े चीज दिखाते हैं कि आप डिफेम करने का प्रयास करें, ना कि उसके डिस्कोर्स पे जाने का।
4: ठीक है, सूरजपाल जी,
9: एक प्रिस्ट सर, मोदी योगी तुझसे बैर नहीं और चंदा चोरों की खैर नहीं, मोदी योगी तुझसे बैर नहीं, चंदा चोरों की खैर नहीं। गोपाल राव
10: की डर क्यों रहे हो, सुन लो भाई, संरक्षण तो उन्हीं का मिला है,
9: पूरा पूरा देश सुन रहा है सर। आलोक जी गोलियां चलवाई है, कार से
10: चोरी हुई है,
9: गोलियां चलवाई है, ये मुलायम जी ने गोलियां चलवाई है,
10: उन्हीं के नाक के नीचे चोरी हुई है, इतना डर क्यों रहे हो,
9: सरयू के अंदर लाशें
10: देखिए ना उनके लिए जाके,
9: आलोक भाई सरयू के अंदर लाशें देखिए कार सेवकों की,
4: किसी ने वर्तमान पर आ जाते हैं, कुछ नाम देना चाहेंगे सूरजपाल मुझे, कौन कौन लग रहा है आपको,
9: कैसे तुम्हारी हाँ
7: आपको आप कुछ भी पता नहीं, जिन्होंने गोली चलवाई वो मंदिर निर्माण समिति के
4: अध्यक्ष। इसमें एक बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी टिप्पणी की है, उन्होंने एसआईटी जांच पर फिर सवाल खड़े किए हैं, एसआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इस बीच में अखिलेश यादव ने राज्य सरकार को घेरा है, जो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए, आपको सुनाते हैं क्या कहा अखिलेश यादव।
11: सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है, और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं, इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में पहले धन, और ये जो हुआ है व्यवहार ये बहुत चिंताजनक है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था, तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
4: आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, विपक्ष कह रहा है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि आस्था के साथ तो हम खिलवाड़ होने नहीं देंगे। बहरहाल इस समय राजनीति चरम पर है और 27 तक ऐसा लगता है कि ओपोजिशन अब इस मुद्दे को पकड़कर आगे चलता रहेगा। दंगल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
2: आगे आगे,
3: अरे उधर उधर,
2: करेक्ट करेक्ट।
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: In association with Hint, बड़े आराम से Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
6: Vimal, bolo zuba kesri.
7: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
8: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
9: 20 साल से India Today Media Institute देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या? रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
10: देखिए, बिल्कुल मैं इस समय पर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हूं। आप देखिए किस तरीके का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट था, और ये बहुत छोटा सा कोचिंग सेंटर था जहां पर लोग फंसे थे, और उसके बाद ये अंदर का ये पूरा नजारा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया और 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में SIT गठित की है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up Strawberry Scented Sunscreen, Favorite Day Ice Cream in flavors like Cotton Candy and Orange Cream, Inflatable Fun for the Pool, Elf Beauty's Best, and Levi's Denim Shorts. Summer's Best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
2: Jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: भारत और अमेरिका की दोस्ती गढ़ेगी नए आयाम. अगले साल ट्रंप के भारत आने का ऐलान. ट्रेड डील जल्द, कई अहम समझौते चढ़ेंगे परवान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति की ये तस्वीरें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की हैं. दुनिया भर की निगाहों से होकर गुजरी इन तस्वीरों के अलग अलग मायने निकाले गए, लेकिन भारत का एजेंडा बिल्कुल साफ था. आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाना और भारत के कारोबार को बढ़ावा देने की हर मुमकिन कोशिश करना. इन कोशिशों के साथ साथ अमेरिका के साथ उतार चढ़ाव वाले रिश्ते एक बार फिर पटरी पर लौटते दिखे. अब इन्हीं रिश्तों को परवान चढ़ाने डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं. जी हाँ, एक बार फिर पाकिस्तान से लेकर दुनिया के कई देशों को परेशान करने वाली ये खबर सीधे अमेरिका से आई है. विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहद मजबूत हैं और अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप भारत का दौरा कर सकते हैं. इतना ही नहीं, इस अहम दौरे की तैयारियों के लिए खुद रूबियो इस साल के आखिर में भारत आएंगे.
4: We're hoping, that's what we're working towards, sometime early next year to have the president come. And I think it's very positive. India is such a close partner and ally of the United States. And the relationship between the prime minister and the president couldn't be closer, which I think is really important in diplomacy. And I look forward to returning myself before the end of the year and setting up a presidential visit in the early parts of next year.
3: मोदी की जमकर तारीफ करते हुए रूबियो ने कहा कि भारत को ग्लोबल पावर बनाने में उन्होंने अहम किरदार निभाया है.
4: Prime Minister Modi and what he's done. I mean, he leads a country that's making incredible gains economically and is really coming into its own as sort of a global power, a country that's increasingly accounted for on decisions being made on the global stage.
3: भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर ने भी साफ कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां ट्रंप जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती दोनों देशों के रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है. फ्रांस में हुई मोदी ट्रंप की मुलाकात इसका एक उदाहरण है, जब एक घंटे तक दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा और कई रणनीतिक मुद्दों पर बात की.
5: President's very warm on India. I mean, you heard it even last week when we were together in France with the Prime Minister. He spoke very highly of India. Our relationship with India is very deep. It goes back a long time. And so it's something that the President holds, the Prime Minister and India in highest regards. He's always talked about the Prime Minister being a great friend of his personally. And he always reminds me of his first trip to India and the vibrancy that he saw there. It's something that he's never forgotten.
3: ट्रंप की दूसरी भारत यात्रा होगी. साल 2020 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान वो भारत आए थे जब नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया था. दूसरे कार्यकाल में उनका ये पहला दौरा होगा. इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी नजदीकियां और ईरान युद्ध के मद्देनजर भारत के साथ बदले कारोबारी रिश्तों पर पूरी दुनिया की नजर है. आज तक ब्यूरो.

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट का कबूलनामा, चंपत राय और अनिल मिश्रा का मिला इस्तीफा, अखिलेश का निशाना, कहा बीजेपी में धर्म से पहले धन है। तीन दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर होगी बात। अगले साल की शुरुआत में भारत के दौरे पर आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, विदेश मंत्री रूबियो बोले भारत अहम साझेदार, जल्द लगेगी ट्रेड डील पर मुहर। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा पेपर लीक पर सियासी सवाल, राहुल ने सरकार को घेरा, कहा देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया है, ठाणे में मिला प्रश्न पत्र, तीन लोगों पर FIR। मुंबई में मुहर्रम जुलूस का निशाना बनाने की साजिश नाकाम, 14,900 जहरीले कैप्सूल जब्त, हिरासत में पुणे का रहने वाला आरोपी फैयाज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अल्लाह बोल में। एक बार खास तौर पर जनता के लिए बहुत ताली, क्योंकि आज ये सवाल पूछने वाले छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आज चर्चा हो रही है, तो हमारे साथ हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अभय दुबे जी हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, तालियों का बहुत स्वागत है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में बड़े भैया तो समाजवादी पार्टी वाले ही है, तो अमित जमई जी का भी तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। और निशा चौधरी जी हमारे साथ प्रवक्ता आरएलडी की जुड़ी हैं। अब सवाल ये है कि चुनाव आ रहे हैं 2027 के, अभी से ही आपने देखा है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस बीजेपी कर रही है और तैयारी में पूरी तरह से अपने आप को झोंक रही है। तो लंबे वक्त से पीडीए का कार्ड लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, और आज सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश हो, देश हो, अलग अलग राज्यों में हो, जाति है कि जाति नहीं, इसी फॉर्मूले को लेकर एक बार फिर से 2027 में चुनावी घमासान में तमाम पार्टियां मैदान में उतर रही हैं। इन सब पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव अगर मजबूती के साथ पीडीए की चर्चा बार बार करते हैं, हालांकि उनकी पीडीए की परिभाषा बदलती रहती है, कभी पी से पिछड़ा रहता है, फिर उसके बाद से बदलता है, ए से अगड़ा भी है, ए से अल्पसंख्यक भी है, ए से वो कहते हैं आधी आबादी भी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो कोर वजह रही उसकी लगातार उत्तर प्रदेश में जीत की, वो है ओबीसी। जो ओबीसी का एक सबसे बड़ा तबका पूरी तरह से बीजेपी के समर्थन में चला गया, उस वजह से बीजेपी फिर से नए सिरे से उसमें जान फूंक रही है। और पिछली बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी ने यूपी की अपनी नई टीम में ओबीसी चेहरों को बड़ा मौका दिया है, ओबीसी आउटरीच पर भी बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी उत्तर प्रदेश के सभी 75 ओबीसी जातियों के बीच उसी बिरादरी के ही नेताओं की टोली लेकर हर परिवार में जाने की तैयारी में है। अब की बार के चुनाव में राम मंदिर की चढ़ावा चोरी का मसला भी है, चढ़ावा चोरी का मामला अखिलेश यादव ने उठाया है और ये मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ओबीसी कार्ड या पीडीए कार्ड, मंडल कमंडल का जोड़, पीडीए का तोड़, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें।
1: यूपी में 2027 का घमासान, सियासत का पूरा आसमान। चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी की नई टीम का ऐलान,

0: समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास है ही नहीं, उनके एजेंडे में विकास नहीं है, समाज को बांटना।
1: यूपी बीजेपी टीम में ओबीसी को बड़ी जिम्मेदारी। अखिलेश के पीडीए को काटेगा मंडल कमंडल वाला दाव।
2: उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। पीडीए की सरकार सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का संकल्प समाजवादी जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं।
1: क्या अखिलेश से जीतने के लिए मंडल कमंडल का संतुलन जरूरी है? 2027 में अखिलेश के पीडीए वर्सेस बीजेपी का मंडल कमंडल।
3: ओबीसी मोर्चा ने ठान लिया है कि 2027 के असेंबली के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी जातियों को जो ओबीसी सूची के अंतर्गत आती है, हम भारतीय जनता पार्टी के विचार और प्रदेश देश की सरकार की उपलब्धियों को रखते हुए समर्थन प्राप्त करेंगे।
4: तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला सवाल आप ही से ये है, क्या आप इनको बार बार आरोप लगाते हैं कि भाई ये जाति का कार्ड खेलते हैं, तो ये ओबीसी आउटरीच ये जातिवाद नहीं है?
5: देखिए, ये जब से जात बिरादरी का मुद्दा आने लगा तब से लोग ओबीसी और एससी और ये बात करने लगे। मैं तो बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को, सभी को साथ में लेके जिस प्रकार से आगे बढ़ती, मैं सब प्रमाण बोलता हूं। कल्याण सिंह जी ओबीसी वर्ग के थे और भारतीय जनता पार्टी यूपी के अध्यक्ष 1984 में बने थे, आज से 42 साल पहले। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, 1980 के दशक में किसी ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष अगर ओबीसी बनाया हो तो बताइए। अब आइए विनय कटियार जी, 1986 में बजरंग दल के अध्यक्ष बन गए थे। उमा भारती जी 1988 में सांसद बन गई थी और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता बन गई थी। और 9 नवंबर 1989 को जिस दिन श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था, उस दिन पहली ईंट कामेश्वर चौपाल जी से रखवाई थी, जो अभी दिवंगत हुए हैं पिछले साल, और वो अनुसूचित जाति से थे। पूरा जो हिंदुत्व का मूवमेंट था उसमें सभी जातियां पूरी तरीके से साथ में थीं। तो हम तो सबको साथ में लेके चलते हैं, मगर दूसरे लोगों के लिए जानते क्या रहता है, उनके लिए सरकार बनाने का फार्मूला जो है वो जात पे होके कैसे जाता है। जैसे आप लोग मोबाइल देखते हो, मोबाइल में दो सिस्टम होते हैं ना, जीएसएम ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल, और एक सीडीएमए होता था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। पर इनके लिए एक सीडीएमए एक दूसरा है, इनका फार्मूला क्या सीडीएमए, कास्ट डिवाइड एंड मुस्लिम अपीजमेंट। यानी इनके लिए जात बिरादरी का मतलब है हिंदुओं में कास्ट को डिवाइड करना और मुस्लिम एकजुट रखना। और मैं फिर एक बात कहूंगा, थोड़ा सा यहां पर किसी को अन्यथा लग सकता है, मैंने जो पहले बात कही है कि जब यह देश बना तो इस देश के दो टुकड़े हुए, जो अब तीन टुकड़े हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश, दो इस्लामिक राष्ट्र बने और भारत आंशिक इस्लामिक राष्ट्र बना। क्यों? संविधान की दृष्टि से, क्योंकि संविधान में वो तमाम प्रावधान हैं जो किसी भी सेकुलर देश में नहीं होते, शरिया कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर, वो छोड़िए। आज भी मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार आने के बाद भी भारत का इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट में अभी भी वो आंशिक मुस्लिम राष्ट्र का इंपैक्ट है, इंक्लूडिंग मीडिया। आप कहेंगे कैसे भाई, मैं कहूंगा बताइए, अभी जब आएगा किसी भी क्षेत्र का आप विवरण देखते हैं तो क्या लिख के आता है, इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने जाट, इतने कुर्मी, इतने यादव, इतने वो, और इतने मुस्लिम। यानी ये क्या हो गया, कास्ट डिवाइड एंड मुस्लिम मत। कोई तो नहीं कहता इतने शेख, इतने सैयद, इतने गद्दी, इतने घोसी, इतने हलालखोर, इतने बहना, इतने शिया, इतने सुन्नी, इतने अहले हदीस, इतने देवबंदी, इतने बरेलवी, कभी लिखा है ना? तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो नजरिया है देखने का, इसीलिए हम या क्या कहना चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इसीलिए हम आज से नहीं 40 साल से हम ये कहेंगे कि अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। तो हम सबको साथ में लेके चलते हैं, बाकी लोग डिवाइड करके चलते हैं। वैसे एक बात बताएं, डिवाइड वाली पॉलिटिक्स में एक और बात मैं कहूंगा, यह होती सुविधा की राजनीति। भाई एक मुस्लिम वोट पक्का पकड़ लो, और उसके लिए भी क्या है, चंद कट्टरपंथी आ जाते हैं जो कहते हैं हम होल सोल विक्रेता है, ना थोक विक्रेता फलां चीज के, तो थोक विक्रेता बन के आ जाते हैं। फिर जातियों में डिवाइड करो, एक दो बड़ी जाति पकड़ लो उत्तर से दक्षिण तक, मतलब मैं कह रहा हूं आप हरियाणा से लेके और कर्नाटक और आंध्र तक देख लीजिए, एक जाति जो 10-12% हो उसमें, उसको ले लो, फिर मुस्लिम को ले लो, और आसानी से हो जाता। हम क्या करते हैं, हम जमीन से शुरू करके एक एक तिनका तिनका जोड़कर जहां तक पहुंचते हैं, याद करिए बंगाल के चुनाव में 2021 में क्या बोले थे ममता जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर, हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है, भाजपा क्या मुकाबला करेगी, और हमने -30 से शुरू करके बंगाल में इतिहास बदल के दिखा दिया। इसलिए हम वो नहीं है जो फूलों का हार लेके आगे आते हैं, मोदी जी और योगी जी उन विचारों के हैं जो अंगारों का हार लेके चलते। तो एक पंक्ति कह के समाप्त करता हूं, अंगार हार उनका जिनकी सुन हाँक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है।
4: लेकिन सुधांशु जी मुझे पता नहीं चला कि ओबीसी आउटरीच क्यों आप लोग कर रहे हैं, मैं दूसरी बार पुनः कोशिश करूंगी समझने के लिए। लेकिन अमित जमाई जी आपका तो फॉर्मूला ही ऐसा है जिसमें आप अब्रीविएशन दे रहे हैं कास्ट के लिए, इसका क्या मतलब है?
6: देखिए
4: बाकी सब पूरी यूपी की जनता क्यों नहीं कहते
6: हैं? आप समस्या समझिए सुधांशु जी की, इनकी पार्टी की, प्रधानमंत्री की और जो डबल इंजन वाले लोग हैं। 2024 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बीजेपी आरएसएस को ऐसी चोट दी कि वो जो जख्म है वो अभी भर नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हाफ हो गई लोकसभा के चुनाव में। कुर्मी समाज का एक बड़ा हिस्सा, लैंड होल्डिंग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उनके पास है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को,
5: पूर्ण बात है ध्यान देने,
6: माननीय अखिलेश यादव जी को चुना। पहले ये कह रहे हैं हम जाति तो मानते नहीं है बीजेपी वाले, फिर कह रहे हैं उमा भारती जी की क्या जाति थी, फिर कह रहे हैं कि वो हमारे कल्याण सिंह जी थी उनकी क्या जाति थी। यही सुधांशु जी हैं जो हर कार्यक्रम में बोलते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से। इफ यू डोंट बिलीव इन कॉस्ट, आप हमारे नौजवानों के सामने फिर आप इनको बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? सीधी सी बात है कि हमारे देश में सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, 1967 के बाद सोशलिस्टों का भारत में उदय हुआ। अगर एससी एसटी ओबीसी मिला के जो हमारे देश में आबादी 80% है, अगर आज उनके लड़के लड़कियों को शिक्षा में, नौकरियों में, मंडल कमीशन के बाद, जब मंडल कमीशन हुआ तो सुधांशु जी की पार्टी के लोग अपने आप को आग जला के मार रहे थे, अपने आप को पूरे देश में इन लोगों ने जला दिया हमारे देश को, कि ये कैसे पिछड़ों को 27% आरक्षण मिल गया। ये तो अर्जुन सिंह जी थे शिक्षा मंत्री UPA 2 में, UPA 1 में, कि उन्होंने शिक्षा में भी इस देश के पिछड़ों के लिए जो 60% आबादी है, नहीं तो आज शिक्षा में कहीं पिछड़े समाज की गिनती नहीं होती। अगर ये गिनती देना, अगर उनको अधिकार देना, अगर माननीय अखिलेश जी के जरिए उनको गिन के एससी एसटी ओबीसी की 80% आबादी को हक अधिकार देना, आप हमको जातिवादी कहलाते हैं तो हम अपने आप को जातिवादी कहलाने को तैयार है। लेकिन आप क्यों मंडल की पॉलिटिक्स पे आ रहे हैं? इनके यहां उत्तर प्रदेश में अंजना जी मंडल कमीशन, मंडल की पॉलिटिक्स में PDA, पिछड़ा दलित अगड़ा, ये इनका नया फॉर्मूला है। क्यों आपको चाहिए पिछड़ा और दलित, जब आप इस देश के अंदर शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण खत्म कर रहे हो निजीकरण के जरिए? आप शिक्षा में, आप एक नीट बच्चों के लिए भविष्य में एक नीट का एग्जाम नहीं कर सकते देश के अंदर? व्हाट इज योर विजन?
4: ठीक है,
6: और अखिलेश यादव जी ने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी 2024 में बन गई, और हम आपको आए सुधांशु जी, आप हम सबके बड़े हैं, बड़ा हमसे इज्जत करते हैं, 2027 में PDA के फॉर्मूले पे समाजवादी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, 250 प्लस में आज इनके सामने कह के जा रहा हूं अंजना जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी आपकी हवा में उड़ने वाली है।
4: चलिए ठीक है, जवाब दीजिए।
5: वैसे एक बात बताएं, पीडीए में ए को इन्होंने अगड़ा बोल दिया, कभी अल्पसंख्यक,
6: ये तो आप
5: कभी आदिवासी, कभी आधी आबादी, मगर एक ए पक्का है, वो है अपराधी। ए का मतलब अपराधी, इसमें कोई चिंता मत करिए। जैसे योगी जी ने बोला भाई हमारा 1 District 1 Product, इनका है 1 District 1 Mafia, वैसे आप लोगों ने सुना होगा FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इनका फार्मूला था, मतलब 1 District 1 Mafia तो था ही था। HMCG क्या, हर मोहल्ला छोटा गुंडा, डिस्ट्रिक्ट में बड़ा माफिया और हर मोहल्ले में एक छोटा गुंडा, उस प्रकार की चीज रहती थी। और जहां तक इन्होंने बात की, देखिए भाई साहब, आपने कांग्रेस की तारीफ कर दी, मतलब मेरे तो बड़ा आश्चर्य है, ये कह रहे हैं अर्जुन सिंह,
6: संदेह क्या, संदेह क्या,
5: संगत का असर क्या होता क्या है? मैंने जो गिनाया मंडल का नामो निशान नहीं था उस जमाने में हमारे नेताओं ने, सुनिए, जब मंडल का नामो निशान नहीं था तब मैंने बताया हर वर्ग हर जाति को साथ में लेकर चले, और हमारे जितने भी ओबीसी नेता हुए ना सब हिंदुत्व के परचम पे दिखाई पड़े, वो हिंदुत्व के प्रतीक बने, चाहे उमा भारती जी हो, विनय कटियार जी हो, कल्याण सिंह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, आपके सब जात जात लेके आते हैं। और अब मैं बताना चाहता हूं, अब सुनिए, अब मैं प्रमाण देता हूं, केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में देख लीजिए, हमने भिन्न भिन्न जातियों के लोगों को बनाया ओबीसी में, बताइए आज, पहले कल्याण सिंह जी बने केशव मौर्य जी यूपी में डिप्टी सीएम, आइए अभय जी के प्रांत में मध्य प्रदेश में, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी, मोहन यादव जी, सब अलग अलग जातियों के। अब आइए हमारे बिहार में अभी सम्राट चौधरी जी, इससे पहले जो हमारे डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी जी, तारकेश्वर जी, रेणुका देवी जी, सब अलग अलग जातियों के। आपने अपनी जात के अलावा एक दूसरी जात का बनाया सीएम तो बताइए, इसे कहते हैं सबको साथ में लेके चलना और एक होता केवल अपने। और वैसे तो एक बार बता दूं विद ड्यू रिस्पेक्ट, वैसे तो भाई साहब जात की बात आप नहीं करते, फिर ये एम वाई क्या है, ये जात थोड़ी है।
6: एमवाई कभी
5: नहीं नहीं,
4: एमवाई एमवाई में जी के साथ आप क्यों ओबीसी कर रहे हैं, वो तो कह रहे कि हम जाती
6: है। आप मंडल कमीशन की पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं,
5: जल्दी बताइए आप। हम मंडल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम तो बहुत पहले से कर रहे थे।
6: जब कुर्मी वोट खसक गया पंकज चौधरी जी प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए, जबकि वो मंत्री हैं।
5: एक मिनट में, इससे पहले सुनिए, आप कुर्मी वोट की बात करें, विनय कटियार जी उसी समुदाय से हमारे प्रदेश अध्यक्ष 2004 में रहे हैं,
6: वो विनय कटियार जिनको राम मंदिर में
5: हमारे
6: घुसने नहीं दिया गया,
5: साथ में रहे
6: वो विनय कटियार
5: प्रतिपक्ष, क्या
6: जिनको राम मंदिर में घुसने नहीं दिया।
4: बारी बारी बारी,
5: हमने अपने ठंड में बोली है, ये कह रहे जैसे कि हमने पंकज चौधरी जी को आप बनाया। अरे विनय कटियार जी 2003-04 में 2002 में सॉरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो भी कुर्मी बिरादरी से थे, इसलिए हम ये कह रहे हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, चलो कुर्मी बिरादरी और वो भी छोड़िए, यादव बिरादरी भी छोड़ दीजिए, एक यादव बताइए, एक यादव जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनाया हो, चाहे बिहार में चाहे उत्तर प्रदेश में, अपनी बिरादरी में भी कोई दूसरा नहीं दिखता। और पिछड़ों की बात करते हैं,
6: एक सेकंड, अभी उन्होंने बोला कि मोहन यादव जी को बना दिया मुख्यमंत्री, अगर आपने मोहन यादव जी को इस्तेमाल करके काम आपका पूरा हो गया, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, बेल बॉन्ड के जरिए जितने हजारों करोड़ रुपए इनकी जेब में गए हैं वो भ्रष्ट नहीं है, लेकिन मोहन यादव क्योंकि एक यादव कम्युनिटी से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, खबर प्लांट करवा के उसकी मुख्यमंत्री पद को ये छीनना चाहते हैं। अरे हटाना है, सीधे हटा दो,
4: ये तो आप अभय जी इधर क्यों देख रहे हैं,
6: अरे सीधे हटाओ
4: अभय जी,
6: सीधे हटाओ ना, सीधे हटाओ
4: अभय जी, पहले तो आप दोनों को रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि आप भी मोहन यादव जी का मुद्दा है।
5: मोहन यादव जी के सीएम बनने से क्या प्रभाव पड़ा है उत्तर प्रदेश पे,
6: नहीं पिछड़ों के खिलाफ है,
5: पड़ता है
6: और पिछड़ों के खिलाफ है,
5: वो आए थे पार्टी
6: मध्य प्रदेश का पिछड़ा यादव समाज आपका चेहरा पहचान रहा है कि आप मोहन यादव के खिलाफ,
4: आज वो मोहन यादव जी के साथ खड़े हो गए हैं, जवाब दीजिए
7: अंजना जी,
4: आप लोगों ने क्या
5: किया, इनसे पूछिए ना
4: अभय जी,
6: क्या बात हुई
4: अभय जी, अभय जी पहले तो ये मोहन यादव जी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग आरोप लगा रहे हैं,
5: ये तो उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए और ये मोदी यादव जी सपोर्ट करें, पहले आपस में निपटाइए,
6: हम सीधे
5: इंडी गठबंधन वालों को,
6: हम ये कह रहे हैं आप अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश, अरे यादव है हटा दो ना, इतना खेल का है, रजगी भ्रष्टाचार है, चोर है, डकैत है वो।
5: अब मैं सुनिए, मैं भी बताना चाहता हूं, अगर इनको यादव समाज के प्रति बहुत वो है तो मैं पूछना चाहता हूं, जब भारत ने T20 का वर्ल्ड कप जीता दुबई में तो उस समय क्या बधाई दी भाई साहब, जब भारत ने पाकिस्तान को हराया किसी और को ना भारतीय टीम को बधाई ना देते, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को ही बधाई दे देते,
6: नहीं सबको,
5: सब तो नहीं दिया,
6: टीम को मत बांटिया,
5: ऑपरेशन सिंदूर हुआ,
6: टीम को मत बांटिया,
5: जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और एयर वाइस चीफ उस समय डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन थे, जिन्होंने वो लाइन बोल दी थी ना, विनय नमानत जलद झड़के तीन दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय गुन हो प्रदीप, एके भारती साहब वो भी यादव थे, उन्हीं को बधाई दे देते। चलो और कोई बात मैं कहना चाहता हूँ, बाबा रामदेव,
6: ये पूछ रहा हूँ,
5: बाबा रामदेव से बड़ा योग ऋषि यादव समाज में पिछले मतलब 100 साल में शायद ना हुआ होगा, मगर उसके खिलाफ रहते हैं, मगर जैसे ही कोई और नजर आएगा, बल्कि अन्यथा नहीं लेना,
6: भूपेंद्र यादव जी भी यादव हैं
5: और अन्य लोग आएंगे तो उनके लिए ज्यादा,
6: भूपेंद्र यादव जी भी यादव हैं, यादव कह के जो आप मजाक उड़ा रहे हो ना वो भी आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे,
5: बाबूलाल गौड़ जी भी यादव थे,
6: आपका उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी जी,
4: पहले तो यही निपटा लें कि मोहन यादव जी पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है,
6: बना दिया
4: बोले,
7: बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दल देखा भाजपा इनसे बुरा न कोई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बहुत विद्वान व्यक्ति है, देश के सरोकार की एक भी बात की अभी तक वक्तव्य में, सिर्फ हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास, इन बच्चों का भविष्य नीट की परीक्षा में बर्बाद कर रहे हैं, एक शब्द नहीं निकला, लेकिन सिर्फ हिंदू मुसलमान, कश्मीर जाएंगे तो आतंकवादी सैफुल्ला फारूक को टिकट देते हैं, घोषित आतंकवादी, देखिएगा 10 साल जेल में रहा पंडितों का हत्यारा, उसको टिकट दिया इन लोगों ने, अपने राजनीतिक दल से चुनाव लड़ाया, बड़े कह रहे थे अपराधी अपराधी उत्तर प्रदेश के अपराधी। अरे अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले। ब्रजेश सिंह 106 अपराध है, कहां है पूछिए इनसे। ब्रजेश सिंह कह रहे थे ना एक जिला एक प्रोडक्ट एक अपराधी। धनंजय सिंह 46 अपराध है, कहां है पूछिए। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया 31 अपराध। उदय भान सिंह 83 अपराध। अशोक चंदेल 37 अपराध। विनीत सिंह 34 अपराध। ब्रजभूषण शरण सिंह 84 अपराध। चुलबुल सिंह 53 अपराध। सोनू सिंह 71, तो इसमें से स्वाभाविक डेथ भी हो गई। मोनू सिंह 48 अपराध। अजय सिंह सिपाही 81 अपराध। पिंटू सिंह क्यों साहब सारे सिंह, एक जिला एक प्रोडक्ट और वो सिंह होना चाहिए, यह विशेषण है इनका। लेकिन हाथरस से उन्नाव तक बलात्कारियों को सत्ता की सरपरस्ती देते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात, ओबीसी ओबीसी की बात कर रहे थे, लेखपाल की परीक्षा हुई, ओबीसी वर्ग को कितना आरक्षण दिया, क्या कहा हाईकोर्ट ने, शिक्षक भर्ती घोटाला, 69,000 शिक्षकों की भर्ती, 27% ओबीसी का आरक्षण देना था, 3.6% दिया। क्या कहा हाईकोर्ट ने कि आपने जो ओबीसी का कानून है 1994 का, उसका सेक्शन 3.6 का पालन नहीं किया, उनके साथ अन्याय कर दिया। कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आते हैं दलित बस्ती में, बोले शैंपू से निलवा देना साहब, कैसा ना हो मुख्यमंत्री जी को कोई छूले, तो लाल कारपेट बिछाते हैं और वहां जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा सबसे ज्यादा दलितों पर अपराध, 26% देश के कुल अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं, इनके कानों पर जू नहीं देखती। सिर्फ हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। आप एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट देख लीजिए, सबसे बदतर शिक्षा स्कूली शिक्षा का हाल है तो उत्तर प्रदेश में, मैं नहीं कह रहा हूं मोदी जी की रिपोर्ट है। हेल्थ इंडेक्स देख लीजिए नीति आयोग का, सबसे वर्स्ट कंडीशन हेल्थ की है। अभी हाईकोर्ट ने कहा कि अगर बाजी बात हाथ से ना निकल जाए कम से कम उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य की रक्षा कर लीजिए। इनके आपके सरोकारों का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान के अलावा।
4: आप तो मध्य प्रदेश के हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े इतने बड़े मामले पर आपने भी चुप्पी काट दी।
7: हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत ही अच्छा आपने मेरे संज्ञान में लाया। मैं अपने साथी भाई को यह कहना चाहता हूं, यह मामला जाति का नहीं है साहब मोहन यादव जी की, यह जमीन का मामला है, जाति से मत जोड़िए उसको। ओबीसी वर्ग का मैंने तो कोई नहीं देखा जो इतने भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ आदमी हो, ओबीसी के नाम पर और जाति के नाम पर दोनों लोग संरक्षण दे रहे हैं। एक मेरी बात सुनिए ना,
4: अरे सोच रहे कि मुस्कुराए, सुनिए
7: ये तो आदतन अपराधी है। वेस्ट बंगाल में जाएंगे और शुभेंदु अधिकारी को, प्रधानमंत्री हमारे, बोले देखो टीवी पे भ्रष्टाचार ही पकड़ाया है, टीवी पे रिश्वत खा रहा, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा बुकलेट निकाली उसके खिलाफ, कहा कि ये देखो लुई बर्जर का आरोपी अमेरिका की कंपनी से पैसे खा रहा है, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। हरेक प्रांत में चले जाइए, अजीत पवार से लेके हसन मुशरिफ से लेकर
4: राहुल
7: पटेल जितनों को हो, ये तो उत्तर प्रदेश की और देश की जनता समझाएगी। उन्होंने कहा है कि योगी, आप उनका स्टेटमेंट सुनिए अखिलेश जी का, उन्होंने कहा तीन मुख्यमंत्री बदलने, इनको एक बदलने मोहन यादव को, एक बदलने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को और एक आदित्यनाथ जी को। ये जिस केशव प्रसाद मौर्य जी का जिक्र कर रहे थे, अरे उनकी तरफ मुंह करके बैठते भी नहीं है केशव प्रसाद।
4: मैम बोले उससे पहले इसका एक जवाब आप दीजिए कि अखिलेश जी ने कहा है तीन मुख्यमंत्री बदलने,
5: एक बात बहुत साफ हो गई,
4: इसलिए ये सब किया जा रहा है
5: दोनों के बीच में। एक बात बहुत साफ हो गई कि हमारा यादव अखिलेश यादव से बड़ा है, क्योंकि ये उनका समर्थन कर दिए, कभी मोहन यादव जी ने अखिलेश यादव की तरफदारी नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, आपातकाल का काला दिन, मगर आपातकाल में जेल में रहे ये बोलने का साहस नहीं कर पाएंगे। और सुनिए, और वो आकर इनके वाले जवाब के ऊपर जवाब नहीं दे पाएंगे, इसीलिए इनके लिए एक पंक्ति में कहूंगा, इन दोनों का जैसा साथ है। और देखिए मध्य प्रदेश चुनाव 2023 आपको याद है ना, जब कमलनाथ जी ने कहा था अखिलेश वखिलेश छोड़ो, और अखिलेश जी ने कहा था कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है संभल के रहना चाहिए, तो इन दोनों के लिए मैं कहूंगा दोनों की नजर करते हुए कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं।
4: बोलिए मैम जल्दी से बोलिए कि क्या पक्ष है आपका इस मुद्दे पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स तो है और आपकी पार्टी भी उसको आगे ही बढ़ाती है।
8: नहीं, ऐसा नहीं है अंजना जी। राष्ट्रीय लोकदल शरदे चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे आगे बढ़ रही है, जहां धर्म हम जाति सबको साथ लेके चलने की बात करती है। उनके एक ही विचार थे कि ग्रामीण विकास से होकर के हम देश को विकसित बना सकते हैं। तो ग्रामीण जहां बात
4: ये मेल कैसे करते हैं फिर आप लोग? ये तो कह रहे हैं -30 से चलते हैं,
8: -30 से चलते हैं मेहनत में -30 से चले मेहनत में, लोगों को चैलेंज किया मेहनत में, क्योंकि हम कार्यकर्ता तक पहुंचते हैं, हम जाति धर्म देख के नहीं पहुंचते। आज राष्ट्रीय लोकदल के सिर्फ
4: 80-20 क्या होता है मैम?
8: नहीं, 80-20 की बात हम कहां कर रहे हैं? हम तो ये कर रहे हैं कि विकास देखो, उत्तर प्रदेश में कैसे न्याय व्यवस्था हो गई है, उत्तर प्रदेश का कैसे विकास हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने भुगतान कितने हुए, उन कामों के ऊपर वोट मांगने जाएंगे और जनता उसको नकार नहीं सकती, क्योंकि वो सत्य है। अगर इस सरकार के आने के बाद लगभग 13 लाख करोड़ से भी अधिक की गन्ना किसानों के भुगतान हुए हैं, जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था, किसानों की सिंचाई व्यवस्था के लिए जो काम किए गए, आज महिलाओं की अगर मैं बात करूं सुरक्षा की, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का उदाहरण हर जगह जाकर के
7: आज युवा बच्चे बैठे हैं, सब बताते होंगे। नेता को मारा नहीं, बर्बरता से मारा, वो सिर्फ उसका कसूर ये था कि
8: उत्तर प्रदेश में जब आप जाएंगे तो
9: मैम, मेरा सवाल अमित सर से है, मैं सुधांशु सर के ही सवाल को आगे बढ़ाऊंगा।
4: अमित जी से,
9: उनको अभी बहुत दया आ रही थी मोहन यादव सर से, क्योंकि वो यादव समाज से हैं, तो ये दया जब हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव को जब कप्तानी से हटा दिया गया लगातार वर्ल्ड कप जिताने के बाद, तो उस समय इन लोग का आवाज क्यों नहीं उठा?
5: देखो, आज जो भी पिछड़े समाज के लोग हैं, अगर मंडल कमीशन इस देश में नहीं होता, अगर मरहूम नेता मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में मंडल कमीशन नहीं ले आते, ये लोग 54 के लागू किया था मुख्यमंत्री,
10: मंडल कमीशन बीपी सिंह लाए थे और ये चंद्रशेखर जी के साथ चले गए।
5: मैं कह रहा हूँ राज्य प्रदेश, अच्छा आपने विरोध किया था, सपोर्ट किया था, पहले बताइए।
10: हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया था, हमने पूरा सपोर्ट किया था, खुला
5: पूरे देश में छात्रों ने आग लगवाई,
10: राजीव गांधी ने अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण दिया मंडल के अगेंस्ट में,
5: पूरे देश में
4: मंडल जवाब मिल गया,
5: मिशन के खिलाफ आग लगवाई गई,
4: जवाब मिला?
11: एजुकेशन के वो बहुत ज्यादा मेरे को लगता है साथ है, तो जब रिजर्वेशन आया था तो वो सिर्फ 10 साल के लिए आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था, तो 10 साल के बाद इनकी पार्टी ने ही सिर्फ अपने फायदे के लिए रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया, तो उस टाइम इन्होंने जो छात्र थे उनके साथ गलत नहीं किया, और आज भी हम देखते हैं कि रिजर्वेशन इसलिए आया था ताकि स्टूडेंट्स की बेटरमेंट हो, बट मेरे को तो नहीं लगता कि जो जनरल में स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ भी बेटरमेंट मिल रही है, क्योंकि
4: ठीक
11: ओके थैंक यू
7: अंजना जी।
4: और 2-3 सवाल लेते हैं एक साथ सर, जल्दी आइए आगे आ जाइए।
12: मेरा बहुत सीधा सा एक और सवाल है, जिससे आज जिसपे मुद्दा भी हमारा वही है कि जो 2027 का इलेक्शन है वो किस पे लड़ा जा रहा है, जात पे बात पे, या फिर जो हमारी व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए, या फिर किस चीज पे?
13: मेरा सवाल अपोजिशन पार्टी से है कि आप बोल रहे हो कि बीजेपी जो है वो जात के ऊपर लड़ती है, तो मेरा आपसे ये सवाल है, जिस टाइम पे हिंदू लड़के को बांग्लादेश में बीचों बीच जलाया जा रहा था, तब कांग्रेस ने चुप्पी क्यों साधी थी? तब उसका कोई सवाल क्यों नहीं उठा था? और जिस समय पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बीजेपी लगी हुई थी वहां से अपने हिंदुओं को बचाने के लिए, उस टाइम पे कांग्रेस ने सबूत क्यों मांगा था सपोर्ट करने के बजाय?
4: ठीक है,
14: मैम मेरा सवाल दोनों पार्टी से है कि 27 में इलेक्शंस आ रहे हैं और 26 में अभी राम मंदिर का घोटाला हुआ रखा है, तो ये क्या कोई एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ताकि इलेक्शंस 27 के जीत सके, या ये क्या है एक्चुअल में?
10: दोनों में एक तो हम है, दूसरा वाला
12: यूपी की पॉलिटिक्स है वो पूरी कास्ट बेस्ड है, तो मेरा सवाल भाजपा और ओपोजिशन दोनों से है कि आप लोग इस देश की पॉलिटिक्स में जाति और धर्म को लाना कब बंद करेंगे?
15: मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आपने कहा कि माफिया इस देश में भाजपा ने पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर दिया है, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूं वहां पे भाजपा की सरकार है और वहां पे अभी भी सैंड माफिया बालू माफिया का पूरा खेल चल रहा है।
16: जब विपक्ष सत्ता में था तो भाजपा हर समस्या के लिए विपक्ष से सवाल वो जवाब मांगती थी और ठहराती थी कि वो उनकी गलती है, तो आज जब आपकी सत्ता इतने टाइम से है तो यहाँ पे जो पेपर लीक बेरोजगारी और अभी भी इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो आप इसके ऊपर कभी अकाउंटेबिलिटी लेंगे या नहीं? यहाँ मान लें कि ये सरकार से डबल इंजन की आपकी किसी काम की नहीं
10: है। कितना इस समय कितना
4: इन्फ्लेशन?
17: सर से है, सर कह रहे थे कि सर मेरा सवाल आपसे है कि आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी कंडीशन के हिसाब से अलायंस बनाती है, आरएलडी ने भी आपको 2024 में ज्वाइन करा था, उससे पहले वो भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी लोकसभा में, जो कि उन्होंने काफी टक्कर दी थी। तो मेरा इस बात से है कि आप अपनी कंडीशन जब आपको दिखता है कि उस सामने वाले पार्टी
4: सारे की ताली के छट्टे बट्टे हैं, यही कह रहे हैं आप भी तो मिलते रहते हैं।
10: उससे पहले भी 2002 के चुनाव में भी अजीत सिंह जी हमारे साथ रहे। सबसे बड़ी बात, यंगर जनरेशन को नहीं पता होगा, हमारी जनरेशन वालों को भी नहीं पता रहता, 67 के चुनाव में यूपी में हमारे 96 एमएलए आए थे जनसंघ के, और चौधरी चरण सिंह जी को जो पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया उस समय जनसंघ के सपोर्ट से बने थे। तो हमारा चौधरी चरण सिंह जी के साथ जो संबंध है वो उस जमाने से है भाई साहब, जिस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 68-69, जब संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी थी। इसलिए और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक फैक्ट जरूर बच्चों को पता होना चाहिए, मंडल लागू किस दिन हुआ था, इसलिए उसका ओबीसी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, ना कोई पिछड़ों के उत्थान से मतलब था। 7 अगस्त 1990, उस समय हम लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे, जैसे आप लोगों की उम्र के थे। आप सोचिए 15 अगस्त को होता है स्वतंत्रता दिवस, अगर किसी को इतनी बड़ी घोषणा करनी थी लाल किले की प्राचीर से करता, 7 दिन पहले क्यों घोषणा की, उसका प्रमाण है। और यह मैं कोट करके बोल रहा हूं, कंचा लैया बहुत बड़े भाजपा विरोधी दलित थिंकर हैं, सो कॉल्ड दलित थिंकर, जिनको कांग्रेस पार्टी ने तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी ने सम्मानित किया था बुलाकर। उन्होंने किताब लिखी है शूद्राज ए न्यू पाथ अहेड, उसमें शरद यादव जी ने खुद एक चैप्टर लिखा, उन्होंने लिखा कि वीपी सिंह ने मुझे बुलाया 1 और 2 अगस्त को और कहा कि देवीलाल की रैली में हमारे ज्यादा सांसद चले जाएंगे तो रोकने का क्या उपाय है। तो मैंने कहा मंडल लागू कर दो, वीपी सिंह लागू नहीं करना चाहते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कंचा लैया की किताब में शरद यादव लिख रहे हैं। तो कहा बड़े अनमने ढंग से वीपी सिंह तैयार हुए, उन्होंने कहा मैं 15 अगस्त को घोषणा करूंगा, तब शरद यादव जी ने कहा मगर देवी लाल की रैली 10 अगस्त को है और अगर आपने उससे पहले घोषणा नहीं की तो अधिकांश सांसद देवीलाल की रैली में चले जाएंगे, शायद मैं भी चला जाऊं। तो उस जमाने में जाट समाज कहीं भी ओबीसी में नहीं आता था, तो जाट वर्सेस यादव कुर्मी का डिवीजन करने के लिए उन्होंने कहा एक ही तरीका है कि लागू करो बकौल शरद यादव, इसलिए 7 अगस्त को वीपी सिंह ने लागू किया। यह जनता दल की अंदरूनी राजनीति थी, इसका पिछड़ों के उत्थान से कोई लेना देना नहीं था। वो अगर था तो भारतीय जनता पार्टी का, मैंने बताया 84 में कल्याण सिंह जी को बनाया, 86 में विनय कटियार जी को बनाया, 88 में उमा भारती जी को बनाया और उसके बाद से हमारे अनेकानेक रहे। तो हम कंस्ट्रक्टिव वे में चल रहे थे इन लोगों का उससे, और उस समय मुलायम सिंह जी वीपी सिंह के साथ नहीं थे। एनीबडी कैन गो एंड चेक, 1991 में यह समाजवादी जनता पार्टी बनाई, वीपी सिंह से अलग हुए, चंद्रशेखर जी के साथ थे, तो आज आकर इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए।
7: अंजना जी, मंडल कमीशन का नोटिफिकेशन नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ, अब आप देखिए कितना इतिहास से प्रतिशोध लेते हैं।
10: क्या झूठ बोल रहे भाई, कोर्ट का जजमेंट,
7: कोर्ट के जजमेंट के
10: बाद
7: किसकी सरकार थी भाई, किसकी सरकार थी प्लीज, ये तो हमने इंदिरा जी ने 2 बार कार्यकाल बढ़ाया, मैं इतिहास से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता। आज की बात पे करें, बिटिया ने प्रश्न पूछा रिजर्वेशन का, हजारों वर्षों की दास्ता जाति के आधार पर, उन्होंने सही है बिटिया, हम लोगों को धैर्य रखना होगा, जब तक हम उनको साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे नहीं कर लेते तब तक ये रिजर्वेशन हमको जारी रखना चाहिए, समाज का अंतिम पंक्ति का आदमी पीछे नहीं छूटे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। आपने बांग्लादेश का प्रश्न पूछा, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बर्बरता से हमारे हिंदू समाज के लोगों को बांग्लादेश में मारा जा रहा था और हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक बोल नहीं निकला, हमारे गृह मंत्री के बेटे ने बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को बुलाकर यहां पर क्रिकेट मैच कराया। जानते हैं आप, जब पाकिस्तान बर्बरता कर रहा था तो पाकिस्तान की हॉकी की टीम को निमंत्रित किया इन लोगों ने, और आप सवाल हमसे पूछते हैं, आप सवाल पूछिए उनसे जो सत्ताधारी दल के लोग, आपको सवाल क्या पूछना चाहिए, इतिहास से प्रतिशोध लेना बंद कीजिए। पूछिए कि यूपी के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चों का भविष्य इन्होंने बर्बाद किया, और जानते हैं किसने किया था, वो आरोप था एक एजुसेट कंपनी के नाम पर जो कि गुजरात का था, नितिन वर्मा। क्या हुआ पता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको जैसे ही नोटिस दिया वो अमेरिका भाग गया, उसको नोटिस पे नोटिस देते रहे, वो आ गया और क्लीन चिट दी। कौन था जानते हैं, वो जिसने बिहार की प्रवेश परीक्षा का स्कैम किया, 2020 में बिहार से छूटा और उसको काम सौंप दिया उत्तर प्रदेश का। जैसे अभी ओएसएम का स्कैम हुआ है, वैसा का वैसा स्कैम है। यूपी पीएससी आरओ एआरओ प्रवेश भर्ती परीक्षा, यूपी टीईटी 2021 पेपर लीक, परीक्षा रद्द, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, लेखपाल भर्ती परीक्षा, सॉल्वर गैंग पकड़ाई, यूपी एसएससी की विभिन्न भर्तियां, विकास ग्राम अधिकारी कनिष्ठ सहायक अधिकारी पेपर लीक, पीईटी प्रिलिमिनरी इंग्लिश टेस्ट, सॉल्वर गैंग पकड़ाई, एक के बाद एक भर्ती और प्रवेश परीक्षा के 80 स्कैम हुए। कब सवाल पूछेंगे हम इन लोगों से? कब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे? कहां है धर्मेंद्र प्रधान? कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं, सिर्फ हिंदू और मुसलमान कर करके ये नफरत का बीज बो रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, एक भर्ती गिनाने के लिए नहीं है। 8,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड किया, 500 आलीशान बिल्डिंग इनके ऑफिस की बन रही है, 10,000 करोड़ रुपए इनके खाते में, तुम्हारे खातों में कितने, तुम्हारे परिवार के खातों में कितने पैसे, इस बात की इनको चिंता नहीं है। ये राग अलापते हिंदू मुसलमान का, जाकर तलाश कीजिए। एक नाम बताया मैंने, तालिब हुसैन, तारिक अहमद मीर, पाकिस्तान आतंकवादी। जानते हैं क्या किया? एक को चुनाव का टिकट विधानसभा का दिया, एक गृह मंत्री का मंच साझा करता है, यहाँ ज्ञान बांटते, सिर्फ यहाँ समाज में ये वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, सही मुद्दों पर बात कीजिए।
18: हमारे मुख्यमंत्रियों में
4: बच्ची का सवाल जो था वो दोनों से मैं पूछूंगी, जाति और धर्म की पॉलिटिक्स इस देश में कब खत्म हो?
18: जो बच्चों
4: कब सड़क, बिजली, पानी, पेपर लीक, शिक्षा, पढ़ाई, ऐसे मुद्दों पर विपक्ष भी उतरेगा और सरकार भी काम।
18: बहुत से बच्चों ने अपोजिशन से सवाल पूछे, तो मैं आपको ये दो बातें याद दिलाना चाहता हूं। लखनऊ में अग्निकांड हुआ है, अभी भी घरों घरों में मातम चल रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी एक छोटी सी बच्ची से बात कर रहे हैं, वो अपना दुख बोल रही
7: है, बेहद दुर्भाग्य
18: कि मैं भाजपा से हूं मुख्यमंत्री जी, हम आपको वोट देते हैं, वो कुछ कह रही है, भाषण बंद कर, भाषण ना दे,
7: बहुत दुर्भाग्य।
18: और कुशीनगर में
7: जरूर,
18: कुशीनगर में जब रेलवे कांड हुआ उसमें लोग मारे गए, मुख्यमंत्री जी गए, जाहिर सी बात है कि जिनके परिजन मारे गए, घरों में मातम है, तो गुस्सा तो आता है कि मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री अखिलेश जी तो थे नहीं। कुशीनगर के मामले में मुख्यमंत्री कह रहे हैं नौटंकी बंद कर, नौटंकी बंद कर, ये होते हैं मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया। 2012 में आप सोच नहीं सकते थे कि गांव गांव में उत्तर प्रदेश के उन्होंने बच्चे बच्चियों के हाथ में लैपटॉप पहुंचाया। उन्होंने 11th 12th की बच्चियां, क्योंकि वो ड्रॉप आउट्स हो रही थी, गरीब 80% तबका गरीब है उत्तर प्रदेश का, उनके लिए 11th 12th में स्कॉलरशिप का इंतजाम किया, विश्वविद्यालय बनाए, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बनी, शिक्षा का जो कदम उठाया, सबसे देश का सबसे बड़ा हाईवे लखनऊ से लेकर जो आगरा का बना ये उनके समय पे बना, कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ में बना, ऐसी 50 चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं जो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं? अभी आप बोलते हो ना, हमसे पूछे हो ना, इनसे पूछो, ए भाषण बंद कर, भाषण बंद कर, ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश इस मुख्यमंत्री से परेशान है, और 2027 में बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए एक नई समाजवादी इंडिया अलायंस की गठबंधन की सरकार बनेगी, जो अधूरा काम छूटा हुआ था। कोई आपको धमका नहीं पाएगा बच्चों को कि जो है कि तू भाषण क्यों दे रही है।
7: अभी फेक टेक और चेक कीजिएगा।
4: चलिए
7: एक तथ्य सिर्फ, आप सब चेक कीजिएगा, उत्तर प्रदेश पूरे देश में एकमात्र प्रांत है 8,37,00,000 लोगों ने पिछले 10 साल में पलायन किया है,
4: ठीक है,
7: और एफिडेविट दिया है कि हमारी परिवार की आमदनी 10,000 रुपए से कम, मतलब 67 रुपीज पर डे पर जिंदा है।
8: अभी एक बच्चे ने पूछा था कि राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में आई, तो गठबंधन में आने के बाद क्या राष्ट्रीय लोकदल ने अपने सिद्धांत छोड़ दिए? वो पहले भी किसानों की बात करती थी, युवाओं की बात करती थी, ग्रामीण विकास की बात करती थी। अगर आज आप पश्चिमी यूपी से कोई है तो देखिएगा वहां तक मेट्रो जाने से कितना पश्चिमी उत्तर में विकास हुआ है। दूसरी बात, वहां ग्रामीण विकास के लिए सिंचाई के साधन कितने गए हैं?
4: आज किसानों, मैडम उसका सवाल ये था कि आपके लिए इनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है?
8: नहीं, क्यों नहीं है फर्क? सिद्धांतों का फर्क है।
4: आप दोनों को स्वीकार करते हैं?
8: दोनों को स्वीकार नहीं, जहां देश के विकास की बात आती है, जहां जनता के विकास की बात आती है, वहां स्वार्थ नहीं होता। राष्ट्रीय लोकदल स्वार्थ के लिए गठबंधन में नहीं आई। जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश इतनी गति से विकास कर रहा है,
7: कानून कृषि के लिए
8: उत्तर प्रदेश उतनी गति से विकास कर रहा है, तो उस गठबंधन के बाद हमने वही मुद्दे उठाए और आज उन मुद्दों के ऊपर, किसानों के मुद्दों के ऊपर गठबंधन में सुनवाई
4: आप बार बार आरोप लगाते हैं, ये देखिए दोनों मिल गए, तो वो भी तो उधर ही थे पहले। अब आए तो आप उनको गले लगा लिए, तो सवाल यही है कि आप भी उसी तरह की।
8: अंजना जी, हम कम से कम जहां हैं वहीं तो हैं, ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में साथ है और हरियाणा में अलग हो गए, और ऐसा तो नहीं पश्चिम बंगाल में साथ और वहां अलग हो गए, ऐसा तो कम से कम नहीं करते। जहां साथ हैं तो साथ हैं, वो भी जनता के विकास के लिए, अपने नहीं।
4: शासन में है कब तक इनको, इनको तो जनता ने बाहर कर दिया ना, अब कब तक इनकी बात कीजिएगा? आप शासन में है, आप सरकार
5: मतलब
4: है साहब,
5: ये बात मान लीजिए कि
19: इनको ज्ञानेश कुमार जी ने अंदर कर रखा है,
4: ऐसा नहीं है,
5: फिर दावेदार भी नहीं ना, तो फिर बात खत्म हो गई।
19: ज्ञानेश कुमार जी ने इनको अंदर कर रखा है।
5: अब मैं बताता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, इन्होंने नीट का सवाल उठाया तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बेंगलोर में कई परीक्षार्थी इसलिए अपना एग्जाम देने नहीं पहुंच पाए क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद जी की रैली थी और उन रोते हुए बच्चों को लोगों ने देखा। आप रैली का टाइम नहीं चेंज कर सकते थे? डेट और टाइम पहले से पता था। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी उसी दिन कोलकाता से आए, 1:20 पे लैंड किए एयरपोर्ट के ऊपर, ही वेटेड फॉर 45 मिनट। चूंकि अब देखिए आपने टर्न पे बोलिए, देखिए मैं आपने किसी को मैं नहीं बोला था, देखिए मैं किसी को नहीं बोला, आपने टर्न पे सर, देखिए प्रधानमंत्री जी ने 45 मिनट इसलिए वेट किया कि 2 बजे नीट की परीक्षा थी, सारे जो भी अभ्यर्थी है वो पहुंच जाए तो 2:05 में वहां से निकले। ये होता है सोचना, और इनकी रैली हो रही है और ये अपना टाइम, डेट तो छोड़िए, टाइम तक चेंज करने को तैयार नहीं है। और उसके बाद मैं दूसरी बात कहता हूं, भाई साहब ये बताइए अभय जी, वो अजमेर से जयपुर तक पेपर लीक के लिए यात्रा किसने निकाली थी जब अशोक गहलोत सीएम थे? सचिन पायलट ने निकाली थी ना, और कहा था कि बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, पेपर अंदर बंद है और बाहर लीक हो गया, ये तो जादू है। तो अखिलेश अशोक गहलोत जी ने कहा मैं जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा, और सचिन पायलट जी ने कहा मेरे पैरों के छाले भले ही फूट जाएं मगर राजस्थान में जो अन्याय हो रहा है अशोक गहलोत जी की सरकार से, इनके नेता इनकी सरकार में इनके खिलाफ यात्रा निकाले और आज आकर ये लोग बड़ी बड़ी बातें
4: दूसरा। इसके साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव है, असल मुद्दों पर जनता टिके रहे ये आप ही को सुनिश्चित करना है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।
20: और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, मुंबई में मोहर्रम जुलूस से पहले एक बड़ी साजिश का दावा सामने आया है। भाईगला पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और 14,900 कैप्सूल इसके पास से जब्त किए हैं, दिखा भी रहे आपको फुटेज। अब पुलिस का कहना है कि जांच में इन कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिलने की बात सामने आई है। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद यह मामला सामने आया, आरोपी से इस समय पूछताछ चल रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बीबीए ग्रेजुएट है, पुणे में पेंट का कारोबार करता है, आरोपी ईरान और इराक भी जा चुका है और अब पुलिस इस बात की जांच करेगी क्या इसके तार किसी आतंकी संगठन से जुड़े थे या इसके पीछे कोई दूसरा मकसद था। फिलहाल किसी आतंकी कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जांच चल रही है।
21: कि उसने इस प्रोसेशन को टारगेट करने के लिए और साथ ही में लोगों को हानि पहुंचाने के लिए टोटल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर की थी ऑनलाइन और साथ ही में 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल के उसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट किया और वहां पे बहाना बनाया कि ये कैप्सूल पेन किलर की तरह काम करती है और प्रोसेशन में जाने वाले लोगों को ऐसा फंसा के उसने कैप्सूल बेचने की कोशिश करी। परंतु मुंबई पुलिस की सतर्कता और होशियारी और मेहनत की वजह से ये बड़ा हादसा टला है। और
20: हमारे संवाददाता दिवेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े। दीपेश, ये शख्स कौन है, जरा इसके बारे में बताइए, कहां के रहने वाला है और इस कैप्सूल का कैसे इस्तेमाल करने वाला था, क्या मंसूबे थे इसके पीछे के?
22: राजीव बिल्कुल, देखिए इसका नाम जो है फैयाज प्रेम जी है, ये पुणे का रहने वाला है, इसने बीबीए की डिग्री ली है और इसका पेंट का एक बिजनेस है। फिलहाल ये एक डिवोर्सी है, अपनी पत्नी से अलग हो चुका है और इसकी बहन जो है वो ईरान में फिजियोथेरेपिस्ट है, तो वहीं माँ भी ईरान में ही रहती है। ये 2019 से 25 तक कई बार ईरान और इराक जाकर आ चुका है और पिछले एक साल में ये ईरान और इराक 19 बार जाके आ चुका था। पिछले कुछ दिनों से ये मुंबई में रह रहा था जहां पर इसने ऑनलाइन कैप्सूल्स मंगाई थी जो खाली थी और चूहे मारने की दवा जिसमें फॉस्फोरस था वो ऑर्डर की थी और कल मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था जिसमें करीब 14,900 दवाइयां एक थैले में लेकर बैठा था और लोगों को पेन किलर कहकर बांट रहा था। जब पुलिस को इसके तरीके पर शक हुआ तब पुलिस ने इसे हिरासत में लिया और पूछताछ में इसका जो मकसद था वो पुलिस को पता चला कि उस कैप्सूल में पॉइजन भरा हुआ था और 14,500 लोगों को ये कैप्सूल जो है वो बांटने वाला था। और इतना ही नहीं, इसने 30,000 कैप्सूल जो है वो और भी ऑर्डर की थी, यानी बड़े पैमाने पर इस साजिश को अंजाम देने का इसका प्लान था जो पुलिस की सतर्कता से कहीं ना कहीं नाकाम हो गया। अब पुलिस ये जानकारी जुटा रही है कि ये किसके संपर्क में था या किसके कहने पर अगर इसी ने ऐसा किया हो या किसी संगठन के संपर्क में था। पुलिस किसी भी एंगल को जो है वो खारिज नहीं कर रही है। फिलहाल पुलिस इसके मोबाइल की जांच कर रही है, जो इसके पास से गैजेट्स मिले उनकी पुलिस जांच कर रही है। राजीव,
20: बहुत शुक्रिया दीपेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, शख्स को पकड़ लिया गया है। छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
4: जहां खबर वहां खबरदार।
8: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 million unique viewers, one-stop solution for your brand, regional or hyper-local reach. Har shahar, har kasbe tak, advertise karne ke liye email karein.
10: Pachis saalon se jahan tiki hai desh ki nazar. Mere saath phir se shuru ho raha hai wahi safar. Ye hai khabrein saath tak, देखते रहिए आज तक।

27 का समर जीतने के लिए बीजेपी ने प्रदेश में अपने नए सूरमाओं का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 46 मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया है, साथ ही कई महिला चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय और मोर्चा प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। खास बात यह है कि इस टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने जाति के समीकरणों को भी ध्यान में रखा है। पंकज चौधरी की नई टीम में 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष में 4 ओबीसी, 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को जगह दी है। 19 उपाध्यक्ष में 7 ओबीसी, 4 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 दलित और 1 भूमिहार को रखा गया है। 8 महामंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 ठाकुर, 4 ओबीसी और 1 दलित को जगह मिली है। प्रदेश मंत्रियों में 9 ओबीसी, 3 दलित, 2 भूमिहार, 3 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 1 ठाकुर को रखा गया है। मतलब बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी टीम में सभी वर्गों के लोग हैं। जाहिर तौर पर चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने की कवायद है ये। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
1: और अब बड़ी खबर आपको देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के सेशल्स के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ, शानदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर उनका ये स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पेट्रिक हमेनी के निमंत्रण पर आज सुबह ही रवाना हुए थे। सेशल्स पहुंचने के बाद पीएम मोदी विक्टोरिया के नेशनल बोटैनिकल गार्डन पहुंचे, वहां उनके साथ राष्ट्रपति हमेनी भी मौजूद थे। सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर समारोह में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और इस मौके पर होने वाली परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी, भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और इसके अलावा सेशल्स के नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी सेशल्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। मोदी का पिछले 11 साल में सेशल्स का दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने साल 2015 में इस देश की यात्रा की थी। सेशल्स का दौरा करने वाले वो इंदिरा गांधी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री हैं और अब कूटनीतिक प्रगति और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का स्वागत हुआ। आप एक तस्वीर देख रहे हैं, बोटैनिकल गार्डन में पीएम मोदी पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा भी और साथ साथ में नारियल पानी का लुत्फ उठाया और राष्ट्रपति के साथ उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने जिसमें समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, विकास परियोजनाओं पर साझेदारी बढ़ाने पर चिंतन मंथन होगा। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। SIT की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। याद करिए, कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। SIT की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
2: जांच करा रही है, जो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर FIR हुआ है। हमने सुना कि जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर FIR हो गया। वो उनका क्या मतलब है? वो तो नोट को सीधा करके उसको तक्की लगाते थे, तक्की लगा के उसको गिन के बंडल बनाते थे, रबर बैंड लगाते थे। उसके बाद जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना। और जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा, 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है? उस बारे में तो कोई FIR ही नहीं है। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि 8 लोगों का FIR हो गया, वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया अभी?

0: चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें पूरे मामले में दुख जताया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। वहीं जनता से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। लेकिन सबसे बड़ी बात, राम मंदिर की ओर से बताया गया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है।
1: 8 एक्यूज थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं, अलग अलग अमाउंट के रूप में।
0: 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
2: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी, ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
3: क्या आप क्या कहना चाहेंगी?
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं।
5: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं, तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
3: अच्छा,
5: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
2: क्या पैसा बढ़ गया?
5: हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया, और अभी हाल में भागवत करवाए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सीसीटीवी कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल RMO को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी जुड़ गए। कुमार अभिषेक, बहुत कुछ चल रहा है, जांच भी चल रही है, लेकिन इस बीच में जो अगली बैठक है उसको लेकर क्या चर्चाएं हैं?
7: राजीव, देखिए 11 जुलाई को वो तारीख रखी गई है जब ट्रस्ट की पूरी फुल बॉडी की बैठक होगी, और उसमें यह तय होगा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने जो अपना इस्तीफा सौंपा है उस पर ट्रस्ट क्या फैसला लेता है। देखिए, अभी से लेकर तकरीबन 10 दिन से 12-13 दिन का वक्त है, और 12-13 दिन का वक्त अभी तक इनका जो इस्तीफा है वो पेंडिंग रहेगा। देखिए, ये मान लीजिए कि जो इस्तीफा हुआ है, हालांकि ये कल ही इस्तीफा हो चुका था और कल हम लोगों ने इसकी जानकारी दे दी थी, लेकिन आज ट्रस्ट को ये ऐलान करना पड़ा है कि हाँ, उनका इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और अब इस पर फैसले लिए जाएंगे। दरअसल ये एक सेफ एग्जिट की तरह इसको देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये फेस सेविंग है, क्योंकि चंपत राय हो या अनिल मिश्रा हो, इनके ऊपर SIT रिपोर्ट में इनकी भूमिका को लेकर के संदेह जताया गया है कि आखिर इनके नाक के नीचे इतना बड़ा ये कांड कैसे हो गया। देख लीजिए, 8 लोग जेल चले गए, लगभग 80 लाख रुपए बरामद कर लिए गए, रिकवरी हो गई ऐसे लोगों से जिन्होंने चोरी की थी। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों के हाथ में ये ट्रस्ट है या जिनके अंडर में ये पूरा का पूरा दान और तमाम चीजें चल रही थी, उन पर उनकी भूमिका पर शक होना लाजमी था और है। लेकिन ये जरूर बात है कि अब 11 तारीख को जो बैठक होती है उसमें क्या फैसला होता है। मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक नए तरीके से ट्रस्ट रिस्ट्रक्चर होगा और कुछ ना कुछ इसमें नया किया जाएगा। लेकिन जो एक बार
6: नया तो करेंगे, लेकिन उस भरोसे का क्या जो चकनाचूर हुआ है। कुमार अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो भले ही ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा भी मंजूर ना किया हो, लेकिन पूरे मामले में चंपत राय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी चंपत राय को लेकर सरकार से

0: सवाल पूछ रहा है।
1: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी या फिर चंद मोहरों को बलि का बकरा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
2: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी सजा मिले।
3: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा, लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
1: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपक राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
4: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से ये हो रहा है।
1: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
5: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
6: जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
1: एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।
0: राम मंदिर अब 2027 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। आज अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर 27 में उनकी सरकार आती है तो अयोध्या को शानदार तरीके से डेवलप करेंगे। वहीं बीजेपी अखिलेश के दावों को एक सपना बता रही है।
7: इन्होंने तो रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई।
8: राम मंदिर पर हो रहे खुलासे से साधु से लेकर राम भक्तों तक में आक्रोश है। वहीं विपक्ष पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
9: सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है।
3: मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ कि जो चंदा चोर हैं वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी सीएम से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए, इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ।
8: उधर योगी आदित्यनाथ जनता को भरोसा दे रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
10: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
8: साफ है राम मंदिर चंदा चोरी का शोर अब चुनावी मंचों पर गूंजने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या को नए तरीके से विकसित करेंगे, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अनुभूति करेंगे।
9: मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं अगर गिरफ्तारी हुई है, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी या आप मान लीजिए डायमंड दिया था या गुप्त दान था, तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
8: इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम के दर्शन की तस्वीर साझा की तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। राम सबके हैं, फिर भाजपा सरकार की दोहरी नीति क्यों? अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के लिए कैमरे और विशेष छूट, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और आम श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम। कुछ दिन पहले जब मैंने दर्शन किए तब व्यवस्था अलग थी। बहरहाल राम मंदिर चंदा चोरी के मामले की गूंज इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। इस मुद्दे की पहली अग्नि परीक्षा 2027 के यूपी चुनाव में होगी, जहां जनता तय करेगी कि वो जांच से कितनी संतुष्ट नजर आई। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एक और खबर की, जहां पर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट पेपर लीक का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में अब एक और पेपर लीक ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
8: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है।
11: प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है, ऐसा थाने भिवंडी में हुआ। पुनः एफआईआर हो गई है, हमारे परीक्षा परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त दोनों भी वहाँ। रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, अगली तारीख हम दे देंगे।
8: एग्जाम रविवार को होना था। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। जांच में पता चला है कि 1.5 करोड़ में पेपर बेचा जा रहा था।
12: पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कॉन्टैक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ। उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है। उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं।
8: परीक्षा में 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। ऐसे में अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है।
13: ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
14: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
15: जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है और कभी कभार जैसे लीक में 22 बच्चों ने वहां पे आत्महत्या की और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपणे ये सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए, हम सबकी मांगनी है।
8: महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं उनके लिए भी टीईटी जरूरी है, लेकिन नीट के बाद अब टीईटी पेपर लीक ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: एक बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये बड़ी खबर। और एक नहीं कई इलाकों में जानकारी मिल रही है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी जुड़ गए। अशरफ, रिक्टर स्केल पर कितनी इसकी तीव्रता थी, क्या कोई जानमाल के नुकसान की खबर मिल रही है?
16: राजू, सिर्फ 3 मिनट पहले करीब 7:09 पर जो है ये भूकंप के झटके पूरे कश्मीर में महसूस किए गए। मैं इस वक्त घर पे था, मैंने भी इन झटकों को महसूस किया। जब अचानक पहले थोड़ी सी हल्की आवाज आई और उसके बाद जो है जो लाइटें और जुमरे वगैरह जो घरों में होते हैं वो हिलने लगे। फिर जब बाहर निकला तो वहां पर भी कई सारे आसपास के लोग यही बता रहे थे कि भूकंप आया है, भूकंप आया है। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि इसका एपिसेंटर जो है वो ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का इलाका है। 5.4 तीव्रता इस भूकंप की बताई जा रही है इनिशियल तौर पर, अभी तक तो पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये कई समय से कश्मीर में देखा गया है, जबकि हिंदकुश की पहाड़ियों में जो अफगानिस्तान में आती हैं, ताजिकिस्तान से भी गुजरती हैं, वहां पर जब कोई भी भूकंप आता है उसको जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के कई इलाकों में महसूस किया जाता है। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वो सीमावर्ती इलाका है, अफगानिस्तान के साथ भी कुछ सीमाएं लगती है, पाकिस्तान के साथ भी लगती हैं, पाक अधिकृत कश्मीर की सीमाएं भी लगती हैं। तो जाहिर है जब भी इस तरह का भूकंप अफगानिस्तान के इलाके में या हिंदकुश में आता है तो उसको जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में महसूस किया जाता है, जो इस वक्त भी महसूस किया गया है। हल्के झटके थे, करीब 2-3 सेकंड तक इनको महसूस किया गया। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जो लाइट्स वगैरह थी, फैन घरों में है, वो इस भूकंप से जो है हिलने लगे। तो भूकंप को कई इलाकों में जम्मू कश्मीर में महसूस किया गया, न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि जो उत्तरी कश्मीर के इलाके हैं, खासतौर से अगर हम बारामूला की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें, यहाँ तक कि पुंछ और रजौरी की बात करें, वहां पर भी लोगों ने इस भूकंप को महसूस किया गया है। पूरे जो है देश में जो है चिंताएं हैं, क्योंकि वेनेजुएला में कुछ ही दिन पहले भीषण भूकंप आया है, जहां पर अभी भी राहत कार्य चल रहा है। उस बीच अगर हम हिमालयी क्षेत्र की बात करें या हिंदकुश पहाड़ियों की बात करें, वहां पर भी लगातार जो है इस तरह के
0: असल ये पहाड़ियां बिल्कुल संवेदनशील हैं भी भूकंप के लिहाज से भी। लेकिन क्या किसी तरह की कोई नुकसान की खबर है जम्मू कश्मीर में भी, अफगानिस्तान में भी, अब ताजिकिस्तान की बात भी कर रहे हैं वहां पर?
16: राजीव, अभी तक क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मात्र 3 मिनट गुजरे हैं इन भूकंप के झटकों को महसूस किए हुए, 7:09 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी तक फिलहाल कहीं से जो है कोई माल या जान की नुकसान की खबरें नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर खबरें मिल रही हैं कि इस भूकंप के हल्के झटके को जो है जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में महसूस किया गया है। अभी भी खबरें आ रही हैं, लेकिन फिलहाल अगर जम्मू कश्मीर की बात करें या कश्मीर की बात करें, अभी तक कहीं से भी किसी भी तरह से किसी भी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।
0: जम्मू कश्मीर में आप बता रहे हैं कि कंपन था, लेकिन उतना तीव्र महसूस नहीं किया गया?
16: हाँ बिल्कुल राजीव, जैसे मैंने आपको कहा कि पहली बार ऐसा नहीं है, आए दिन जो है इस तरह के भूकंप जो है के झटके महसूस किए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जो हिंदकुश पहाड़ियां हैं जो अफगानिस्तान से गुजरती है, ताजिकिस्तान से गुजरती हैं, उनमें जो है एक एक्टिव जोन है इस तरह से, जहां पर महीने में हर बार कई भूकंप आते हैं, कुछ को महसूस किया जाता है जिनकी तीव्रता 4 या 5 से ज्यादा हो, कई सारे भूकंपों को महसूस भी नहीं किया जाता है। लेकिन कश्मीर में जब 2005 में एक विनाशकारी भूकंप आया था, जब जिसका सबसे ज्यादा असर पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के इलाकों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी पड़ा था, तब से लोग जो है जम्मू कश्मीर में इस तरह के हल्के झटकों से भी जो है कहीं ना कहीं घबराते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जब भी कोई भूकंप का झटका आता है, फिर उसके बाद जो है और भी आफ्टर शॉक्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो है वो लोगों को चिंतित जरूर कर रही है।
0: आशा, हमारे साथ बने रहे, इस बीच में हम दर्शकों को कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर पर यह बताया जा रहा है कि यह भूकंप का केंद्र रहा अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर पर, और वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर काफी इसकी तीव्रता थी, हालांकि जम्मू कश्मीर तक जो इसका इंपैक्ट है बताया जा रहा है कि उतना तीव्र नहीं था, लेकिन हाँ कंपन जरूर महसूस किया गया। लगभग 7:09 पर यह भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में महसूस किए गए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्रिकेट की। कल आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं मिली। टीम इंडिया पहली बार आयरलैंड से कोई मुकाबला हारी है, ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वैभव सूर्यवंशी के फॉर्म को देखते हुए क्या उन्हें दूसरे मुकाबले में जगह मिलेगी?
17: कल मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को मौका, सीरीज के साथ साथ वर्ल्ड चैंपियन की साख भी दांव पर। हर किसी को इंतजार था, फैंस को भी, वैभव सूर्यवंशी को भी, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 में वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला। सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले भारतीय बनने के लिए वैभव का इंतजार कुछ दिन का बढ़ जरूर गया, लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया की सनसनीखेज हार से अब हर कोई चाहता है कि अगले मुकाबले में वैभव को 11 में मौका मिले। फिलहाल वैभव को पूरी टीम इंडिया सपोर्ट कर रही है ताकि उनका मनोबल बना रहे।
18: एज अ टीम और हमारा एक ग्रुप एक ही हमारा आई वुडन से प्लान है या बट उसको जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए जैसा ग्रुप में उसको चाहिए। आई फील कि हमें यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो फील हो, उसको ये ना लगे कि ही इज़ अ यंग गाय और नया नया है। तो एज अ ग्रुप आई थिंक इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हिम दैट मच कम्फर्टेबल एंड उसके ऑब्वियसली ही इज़ अ गाय जो वॉट आई फेल्ट जो इज़ वेरी यू नो क्यूरियस टू प्ले ऑल द टाइम। तो आई फील ही इज़ जस्ट लर्निंग राइट नाउ, दैट्स व्हाट आई वुड से। एंड वो क्वेश्चंस भी पूछता तो आई फील ही हैज दैट इन हिमसेल्फ दैट वेयर ही वॉन्ट्स टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑब्वियसली उसके लिए भी ये काफ़ी ड्रीम ही होता है जो भी नया लड़का आता है। तो इज जस्ट वी आर ट्राइंग आर बेस्ट टू उसको वो एटमोसफेयर मिले और वो एज अ ग्रुप में ऐसे उसको फील हो कि ही बिलोंग्स है।
17: आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया 2 मैचों की सीरीज में पहला मैच हार चुकी है। जाहिर है कल का मुकाबला उसे न सिर्फ सीरीज बचाने के लिए खेलना होगा बल्कि वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर बनी साख को बचाना भी बड़ी चुनौती होगी। आज तक ब्यूरो।
0: दुनिया आज एक ऐसे दौर में खड़े जहां पर ऊर्जा सिर्फ विकास का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सबसे बड़ा आधार बन चुकी है। भू राजनीतिक तनाव, बढ़ती ऊर्जा डिमांड और जलवायु परिवर्तन के बीच में सवाल है कि भविष्य की ऊर्जा कैसी होगी। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए लंदन में आयोजित हुआ अडानी ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन डायलॉग।
19: लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक के दौरान साइंस म्यूजियम में पहली बार अदानी ग्रीन एनर्जी डायलॉग का आयोजन हुआ। इसमें दुनिया भर के नीति निर्माता, निवेशक, ऊर्जा विशेषज्ञ और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल हुए। चर्चा का केंद्र था दुनिया को तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर कैसे ले जाया जाए।
20: We must do renewables, we must do hydro, we must do efficient thermal, we must do nuclear, we must do every single thing that is available within the geographic boundaries of the country, because as much as growth and as much as cost is critical, energy security is probably more critical than every single other consideration that India faces.
19: सागर अडानी ने कहा, ऊर्जा सुरक्षा, सस्ती बिजली और पर्यावरण संरक्षण तीनों चुनौतियों का सबसे प्रभावी समाधान इलेक्ट्रिफिकेशन है। उन्होंने कहा कि जब सोलर और विंड एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा तभी 2400 घंटे भरोसेमंद और किफायती बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। सागर अडानी ने गुजरात के खावड़ा में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट का भी जिक्र किया कि उनकी कंपनी 2030 तक 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस परियोजना में बड़े पैमाने पर एनर्जी स्टोरेज को भी जोड़ा जा रहा है ताकि बिजली की आपूर्ति लगातार बनी रहे।
0: और अब रुपये छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार, इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
21: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
5: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
6: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
5: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
7: आगे आगे, उधर करेक्ट करेक्ट।
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: धनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंद बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू विमल बोलो जुबा केसरी
1: कूल स्टाइलिश फैंस एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
2: जो निवेश का खेल है वो प्रोबेबिलिटी का खेल है जो जितना भी निवेश है उसका 90% या 100% भारत में नहीं होना चाहिए क्यों होना चाहिए जब भारत 3% है गोल्ड बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल कमोडिटी है आप डॉलर टर्म्स में देखें
3: स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर लक बहुत इंपॉर्टेंट है
2: आप गलत टाइम पे बाजार से बाहर जाते हो और गलत टाइम पे अंदर आते हो अब आपको खेलना कैसे है नॉट टू लूज कि अपने कैपिटल पे बड़ा हिट नहीं लेना उसको तरफ जाइए ही मत ये पूरा स्कैम है और मैं इससे स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकती हूँ
4: हमने तब भी सवाल किया था
5: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है
4: हम आज भी सवाल करते हैं
5: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं
4: ऑपरेशन अग्नि
5: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे
4: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई खबरदार सिर्फ आज तक पर

0: टूटा युद्ध विराम, ईरान में फिर घमासान। सीज फायर तोड़ने का आरोप, यूएस एक्शन से भड़का ईरान। अमेरिका का बदला, ईरानी ठिकानों पर हमला। युद्ध विराम के बेहद करीब जा पहुंचे अमेरिका और ईरान एक बार फिर रणभूमि में आमने सामने आ गए। अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान पर करीब एक घंटे तक ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिकी फौज ने ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां मिसाइलों और ड्रोन को रखा जाता था और लॉन्च किया जाता था। इनके साथ साथ समंदर के किनारे की कई रडार साइट्स भी बर्बाद कर दी गई। दरअसल अमेरिका ने ये एक्शन हॉर्मुज में ईरानी हमले के जवाब में लिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का आरोप कि दो दिन पहले ईरान ने हॉर्मुज में एक कार्गो शिप एमवी एवर लवली पर ड्रोन हमला किया था। ट्रंप इस हमले से इस कदर नाराज थे कि उन्होंने मीडिया के सामने ऐलान कर दिया था कि ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप भी सुनिए रिपोर्टर और ट्रंप के बीच हुई बातचीत।
1: Do you consider the ceasefire to still be in place?
2: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually, four. We knocked down three at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
1: Will the U.S. respond? What is your message to Iran?
2: Will they respond? You're going to find out.
0: उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी ईरान के हमले से बुरी तरह भड़के हुए हैं। उन्होंने तो सोशल मीडिया पर साफ साफ कह दिया है कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा और इस तरह के हमले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक IRGC की नौसेना ने दावा किया है कि उसने भी उस इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मुखिया इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका ने एक बार फिर युद्ध विराम के बीच में हमला किया। नाकाम अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिखाया है कि सीज फायर के उसूल उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। युद्ध विराम का उल्लंघन हमेशा की तरह पीछे हटने और पछतावे की वजह बनेगा। ईरान के समंदर की सरहदों पर एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। वार पलटवार ने सीज फायर पर सवाल उठा दिए हैं और अमेरिका की सख्त चेतावनी ने माहौल एक बार फिर गर्मा दिया है। आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

एनसीआर समेत उत्तर भारत अफगानिस्तान में था केंद्र, 6.2 थी तीव्रता, फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट का कबूलनामा, चंपत राय और अनिल मिश्रा का मिला इस्तीफा, अखिलेश का निशाना, बीजेपी में धर्म से पहले धन है। तीन दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत, राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर होगी बात।

0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। विशेष में आज बात एक ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी के लिए मना नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे हैं। अब सिया और चेतन के बीच क्रिकेट का कनेक्शन भी सामने आया है।
1: क्या परिवार को चेतन और सिया के अफेयर की जानकारी थी? क्या सिया ने केतन के साथ शादी का विरोध किया था? क्या परिवार सिया की शादी जबरन केतन से कराना चाहता था? आखिर 19 साल की उम्र में सिया की शादी की जल्दबाजी परिवार को क्यों थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे खेल में पुलिस की जांच की सुई सिया के भाई की ओर भी घूम रही है। पुणे पुलिस ने इस मामले में सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की है। लगभग 10 घंटे तक उससे सवाल जवाब किए। सिया का भाई साहिल और चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के मैदान पर ही पहली बार सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई थी। फिर 2025 में दिवाली की पार्टी में सिया और चेतन दोबारा मिले, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हुई और बात आगे बढ़ गई।
2: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
1: यानी सिया के भाई को चेतन और सिया के बीच चल रही दोस्ती की जानकारी थी, क्योंकि खबरों की माने तो सिया के भाई के साथ मैच देखने जाती थी, जिसकी वजह कहीं ना कहीं चेतन से मुलाकात को माना जा रहा है। हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है।
3: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
4: नहीं, मैंने आज तक कभी उससे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
3: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
4: नहीं थी, पहचानते नहीं।
3: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
5: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
3: हाँ।
5: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
4: हाँ। तो साहिल
5: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
3: हाँ।
5: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
1: इस बीच केस की जांच कर रहे पुणे पुलिस ने खुलासा किया है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। जांच में पता चला है कि सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या कर दी जाए तो उन्हें शादी के बारे में सोचने से पहले कम से कम 3 साल और मिल जाएंगे। पुलिस को शक है कि चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले 2-3 साल का और समय चाहता था। जांच में पता चला है कि अरेंज मैरिज के टूटने पर समाज में बदनामी के डर से सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि सिया का परिवार अभी भी दावा कर रहा है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
5: ये कुछ पता नहीं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
1: एक और अहम बात सामने आई है, वो ये है कि फरवरी में सगाई से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने गए थे। बताया जाता है कि जनवरी में दोनों राजस्थान गए थे और एक ग्रुप ट्रिप के तहत वहां 5 दिन रुके थे। चेतन मूल रूप से राजस्थान के रहने वाला है, लेकिन परिवार बार बार कह रहा है कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी।
3: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है?
4: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो, मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
5: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली का।
1: बहरहाल इतना साफ है कि चेतन और सिया का भाई एक दूसरे को जानते थे। अब परिवार को इसकी कितनी जानकारी थी इसका सच आना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
0: पूरे देश में मांग हो रही है कि केतन को न्याय मिले। अब केतन को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर भी लोगों ने कैंडल मार्च किया, लोगों ने हाथों में पोस्टर्स लिए हुए केतन की तस्वीर लिए, जस्टिस और केतन लिखे हुए इन पोस्टर्स को हाथों में लेकर कैंडल मार्च निकाला। उनकी बस एक ही मांग है कि केतन को न्याय मिलना चाहिए। जितनी हिम्मत हत्या करने के लिए चाहिए उससे बहुत कम हिम्मत चाहिए थी घर वालों को इनकार करने के लिए, बहुत कम हिम्मत चाहिए थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं दिखाई, हत्या करने की हिम्मत दिखाई और कार्रवाई की मांग लोग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमकार भी जुड़ गए। ओमकार, पुलिस की जांच कब कहां तक पहुंची है?
6: आज प्रवीण गोयल और पूजा गोयल जो सिया गोयल के बाबा है उनके डॉक्यूमेंट, उनकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया गया, लेकिन अभी मैं हूँ अग्रवाल के यहाँ, आप देख सकते हो उसकी माँ और पिता यहाँ हैं। आज पुणे के इनकी जो सोसाइटी है इस सोसाइटी में कैंडल मार्च निकाला गया था और वो कैंडल मार्च में सैकड़ों लोग यहाँ पे दाखिल हुई है, अलग अलग जगहों से आए हैं, रिश्तेदार आए हैं। अब उनके बड़े पापा जो है केतन के, वो भी इस मार्च में आ रहे हैं। आप देख सकते हो कैंडल मार्च में पूरी फैमिली और उनके फ्रेंड्स, रिश्तेदार और जितने यानी कि केतन के बचपन के दोस्त हो या फिर कोई स्कूल वाला, कॉलेज वाला हो या फिर नेबर हो, सब लोग साथ में आ रहे हैं। केतन के बड़े पापा भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ, उनके दादा है और केतन के पिताजी, सभी लोग इस पूरे कैंडल मार्च में शामिल हो चुके हैं। आधे घंटे पहले ही कैंडल मार्च की शुरुआत हो चुकी थी। पूरी सोसाइटी में मार्च ये आगे जाएगा और एक एक कदम आगे बढ़ता जाएगा। सब लोग कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल। जिस तरीके से इतने ब्रूटली ये सब हत्या की गई थी, प्री प्लान कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, इसी को, इसकी जांच ठीक से हो। और लोग यहाँ, उनकी भावना ऐसी है कि जिस तरीके से केतन अग्रवाल को मारा गया, उसी तरीके से फोर्ट से जो इस पूरे मामले में अभी तहकीकात चल रही है, सिया हो या फिर चेतन उसको

0: आखिर केतन के मर्डर की साजिश कब रची गई? आखिर कब से केतन को मारने का प्लान था? किसने केतन की हत्या का आइडिया दिया? लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था? अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को बाहर निकालना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारियां सामने आ सकती हैं। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर के प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई? जांच ने तब एक नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ही डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं को शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई है बल्कि उसे अपने डिवाइस से रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फॉरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम एफएसएल में वो क्यूरी वो पूछे।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच बातचीत संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। मोबाइल से साफ हो सकता है कि आखिर लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था। हालांकि सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ भी गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
3: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
5: इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे, तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
0: शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आया। उसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
2: जो उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
1: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
0: एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी, तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ी थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
6: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
2: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
1: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: जो मुख्य गुनहगार है वो तो बाहर है, वो आप भी उस ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं ना। चोरी का पैसा वो आप मंदिर में चोरी करते हो, हिंदुत्ववादी लोग हैं आप, अपने आप को मानते हो, आप मंदिर की दानपेटी चुराते हो, लाखों करोड़ रुपया चुराते हो, वो पैसा राजनीति में आता है और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो, पार्टियां तोड़ते हो। वही राम मंदिर के 2000 करोड़ आप लोगों ने जो चोरी की है, उसी पैसे से आपने आपके सांसद तोड़े, तृणमूल के सांसद तोड़े, विधायक तोड़े, शिवसेना के जो 6 सांसद तोड़े, वो राम मंदिर का ही लूटा हुआ पैसा है।
1: उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो कहावत है उसी तरह संजय राव जी का बर्ताव है। मैं हर बार बोलता हूँ उनको पागलपन के दौरे आ रहे हैं और उसी का ये नतीजा है इसी तरह की बातें करना। राम मंदिर और उनकी तिजोरी जो कुछ पैसा है उसके बारे में SIT लगाया है, अगर ये पैसा चोरी करने का था, रहता मन में था, तो उनके ऊपर SIT नहीं लगता था। वो जिन्होंने चोरी की है उनको पकड़ रहे हैं, ये सिर्फ पागलपन के दौरे के वजह से इसी तरह की बातें संजय राउत कर रहे हैं। मुंबई महापालिका को लूटने का काम संजय राउत और UBT ने किया है और बम्बई के सिवा उनके ध्यान किधर भी नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं, उनकी पार्टी अब खत्म हो रही है, उनको छोड़ के जा रही है, कांग्रेस में विलीन होने की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, शरद पवार जी ने आत्मसम्मान के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की निर्मिति की, उनको बोल रहे कांग्रेस में विलीन हो, इसीलिए संजय राउत ने कितना पैसा लिया है, कितनी पैसे की सुपारी ली है, मैं उनके जाहिर ये प्रश्न पूछता हूं, राहुल गांधी ने आपको कितने पैसे दिए, जो शरद पवार जी के जो 8 सांसद है उनमें कांग्रेस में जोड़ने के आप लोग आप विनंती कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, इसके लिए आपको कितना पैसा दिया।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: Abad London mein climate parivartan par ho rahi charcha ki. London Climate Action Week में क्लाइमेट को लेकर दिग्गजों ने अपनी राय रखी. इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अध्यक्ष एन के सिंह ने कहा कि क्लाइमेट एक्शन अब एक नए दौर में पहुंच गया है, जहां पर ध्यान बड़े बड़े वादों से हटकर फंड जुटाने और नतीजे देने पर होना चाहिए. उन्होंने जोर दिया कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ग्रीन ट्रांजिशन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सस्ती पूंजी और मजबूत वैश्विक सहयोग बहुत जरूरी होगा.
3: इन इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट that growth and climate growth are the flip side of each other. We cannot have long-term sustainable growth. They're also looking at its consequences for climate. Climate indeed today is an existential obligation. Prime Minister recognizes this, so that is the first thing.
2: Look at the break. You can see it.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
4: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
5: Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
1: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
2: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
3: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
2: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
4: जो आशंका थी अंततोगत्वा वही हुआ, और जिन लोगों का नाम एफआईआर में आया है ये सारे के सारे सपाई हैं। टिन्नू यादव का गैंग है जो अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है, और हम लोग यही हम लोग जो है सोच रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि हम लोग अयोध्या वासी, अयोध्या में रहने वाले, अयोध्या में आश्रम, हम लोगों को पता नहीं लगा और इतनी बड़ी घटना हो गई है। उस घटना का सबसे पहला बयान सपा मुखिया अखिलेश यादव दे रहे हैं, जिनके बाप ने राम भक्तों पर गोली चलाया जो आज तक राम मंदिर नहीं गया।
5: ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि बहुत विलंब से दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, लेकिन देर से ही सही दुरुस्त आया और मुकदमा 8 लोगों के ऊपर लिखा गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग धैर्य रखिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो हमको लगता है धैर्य का ही परिणाम है कि मुकदमा लोगों के ऊपर लिखा गया एसआईटी ने।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: स्वर्ग और पृथ्वी कहीं आकर अगर मिलते प्रतीत होते हैं तो वो है कैलाश में। हर हर ओम
1: नमः शिवाय। भोले बाबा सिलेक्ट करते हैं कि किसको आना है।
2: यहाँ पे श्रद्धा के सिवाय कोई नहीं पहुँचेगा।
3: वो आप फील करते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस।
0: ब्रह्मा के मानस से बना है मानसरोवर।
4: आत्मा से परमात्मा का मिलन यही होता है।
5: कैलाश की परिक्रमा करने का मतलब है कि भगवान शिव की साक्षात परिक्रमा कर ली।
6: महादेव तो अद्भुत, कल्पना से भी परे।
3: स्पीचलेस।
0: कैलाश है जिसे ब्रह्मांड का केंद्र कहा गया।
7: तो एक हमारा जीवन का सपना सच हो गया है, सब कुछ मिल गया हुआ जाके।
0: इससे अद्भुत, इससे अविश्वसनीय, इससे अकल्पनीय जगह भला कहां हो सकती है।
8: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपको लेकर आई हूं ब्रह्मांड की सबसे पवित्र माने जाने वाली जगह कैलाश। हम कैलाश पर्वत की परिक्रमा इस समय कर रहे हैं और परिक्रमा करते हुए कैलाश पर्वत से जुड़े वो सभी रहस्य आपको बताएंगे जिनको लेकर आपने भी सुना होगा पर जानते नहीं होंगे कि सत्य क्या है। क्या वैज्ञानिक कहते हैं, क्या आम लोग कहते हैं, क्या पंडित कहते हैं और इन सब के बीच तथ्य क्या कहते हैं। हकीकत तो यह है कि आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं चढ़ पाया है। हकीकत तो यह भी है कि दुनिया के अलग अलग देशों के पर्वतारोहियों ने कहा है कि जब भी उन्होंने जाने की कोशिश की तो उन्हें किसी अदृश्य अनजान शक्ति ने रोक लिया। हकीकत तो यह भी है कि बीते कुछ वर्षों से यहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित है इस पर्वत पर चढ़ पाना। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब उससे पहले लोगों ने प्रयास किया तो माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गए पर कैलाश पर्वत तक नहीं।

0: महादेव जो आदि भी है और अंत भी, महादेव जो सृष्टि के सृजन करता भी है और संहारक, महादेव जो नीलकंठ भी है और गंगाधर भी, महादेव जो घट घट वासी भी है और कैलाशी भी, क्या महादेव आज भी विराजते हैं कैलाश पर्वत पर?
1: जहाँ पे भोले हैं वहाँ पे सब कुछ आदमी भूल जाता है, केवल ओम नमः शिवाय करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है।
0: आज इन सभी पवित्र मान्यताओं को महसूस करने मेरे साथ चलिए उसी पवित्र कैलाश पर्वत की अद्भुत यात्रा पर, जो दुनिया भर में करोड़ों की आस्था का केंद्र है।

0: कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा, इसमें लगभग 22 दिन लगते हैं। दूसरा रास्ता नाथुला, जिसमें सिक्किम के गैंगटोक से होते हुए शेराथांग, जोंगबा, दार्चिन और फिर कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा, इसमें भी 22 से 23 दिन लग जाते हैं। मेरी यात्रा इससे कम समय की थी, जिसमें चीन के शहर चेंगदू से शुरुआत करनी थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए फिट होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें 51 किलोमीटर की परिक्रमा शामिल है, वो भी लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर।
1: अभी चेंगदू में मैं इस समय मौजूद हूँ, जो कि हमारा पहला बेस रहा है यहाँ पर चीन पहुँचने के बाद। अलग अलग रास्ते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए, और हमें जो रास्ते जिस रास्ते से ले जाया जा रहा है यहाँ से, अब इसके बाद फ्लाइट के लिए इंतजार हो रहा है, जहाँ पर हम जाएंगे लासा की तरफ, यानी एक कदम और महादेव की।
0: कैलाश पर्वत सदियों से किसी प्रकाश स्तंभ की तरह निमंत्रण देता आ रहा है उन धर्म जिज्ञासुओं को, जिन्हें तलाश है मोक्ष की, जिन्हें तलाश है शांति की, जिन्हें तलाश है शिव की।
2: ओम नमः शिवाय।
0: करीब 2 घंटे 50 मिनट की हवाई यात्रा के बाद मैं पहुंची लासा, यानी तिब्बत, यानी वो भूमि जहां आदिकाल से रहते हैं महादेव।
3: कैलाश मानसरोवर जाने के रास्ते में हम पहुंच गए हैं लासा। लासा एक बेहद अहम पड़ाव, जिसके आगे फिर अब हम पुरांग की तरफ जाएंगे, और पुरांग के बाद हम पवित्र पर्वत के दर्शन कर पाएंगे। कैलाश पर्वत के ही नहीं, बल्कि मानसरोवर झील के भी दर्शन कर पाएंगे। मान्यताएं हैं कि आप वहां का जल लेकर आते हैं और आपका जीवन का उद्धार हो जाता है, अगर आप ये दर्शन कर लेते हैं प्रत्यक्ष, अगर महादेव के निवास को आप अपनी आंखों से देख लेते हैं। यहाँ से आगे जाएंगे, धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड और आगे बढ़ेगा, तो जब हम आते हैं, चाहे किसी भी रास्ते में से आप भारत से आ रहे हो, लेकिन आपको धीरे धीरे उस ऑल्टीट्यूड के लिए अपने शरीर को तैयार करना होता है। अभी धीमे धीमे हमें कदम अपने रखने हैं, बहुत तेज़ी से कोई काम नहीं करना है, बेबी स्टेप्स कहा जाता है। पानी बहुत सारा पीना है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड का असर अगर पड़ गया तो पूरी यात्रा पर हमारे प्रभाव पड़ सकता है। तो लासा से आगे एक एक पड़ाव आपको हम दिखाते हुए चलते हैं, चलिए हमारे साथ।
0: मन में एक अद्भुत एहसास था कि महादेव के निवास की ओर बढ़ रहे हैं। लासा से आगे की यात्रा का पल पल आध्यात्मिक रोमांच से भरा था। लासा में एक रात रुकने के बाद हम अगली सुबह अंतिम पड़ाव की ओर निकल पड़े। पुरांग काउंटी, तिब्बत के पश्चिम भाग में स्थित पुरांग काउंटी भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर पड़ता है। ये जगह 13,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है,
1: और यहाँ पर अपनी बस से जब पहली नजर हमने देखी कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए, पहली मानसरोवर झील दिखना शुरू हुई और इसके बाद कैलाश पर्वत, यकीन मानिए कि जब तक आप दूसरों के दर्शन को अनुभव सुनते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं आपको क्या नजर आएगा। कई लोग इतने भी भाग्यशाली होते हैं कि कहते हैं कि हमें तो शिवजी, पार्वती जी साक्षात वहाँ पर नजर आ गए, लेकिन अपना अनुभव होता है, बहुत बहुत ही भाग्य से मिलता है वो अवसर कि हम यहाँ पर आ सकें और दर्शन कर सकें।
0: कैलाश पर्वत के दूर से दिव्य दर्शन किए जा सकते हैं, संपूर्ण पर्वत की पैदल परिक्रमा की जा सकती है, लेकिन कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ा नहीं जा सकता, कोई आज तक चढ़ भी नहीं सका है।
4: कैलाश मानसरोवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है स्पिरिचुअली, बहुत सारे रिलीजन्स के लिए, हिंदुइज्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए। तो ये पर्वत जो है, इस पे परमिशन नहीं होती चढ़ने के लिए, चाइनीज से ही नहीं लेकिन पहले से भी लोग उस पर्वत को बहुत ही मान देते हैं और भगवान का दर्जा देते हैं। तो भगवान को हम सिर्फ पैर छूते हैं, कभी सिर के ऊपर नहीं चढ़ते। तो कभी कैलाश मानसरोवर इसलिए नहीं चढ़ा जाता एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से।
0: दुनिया में जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, उनमें से अधिकांश को इंसान जीत चुका है, अपना झंडा गाड़ चुका है उन चोटियों पर, लेकिन कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। आखिर क्यों? पहाड़ों पर इंसानों की चढ़ाई की पहली कोशिश 1492 में दर्ज हुई। 1850 में एक स्पोर्ट के तौर पर इसका विस्तार हुआ, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत की चोटी तक कभी कोई पर्वतारोही नहीं पहुंच सका है। तो क्या यह सच है कि कैलाश की ऊंचाइयों पर विजय हासिल कर पाना इंसान के बस की बात ही नहीं?
5: भगवान शिव का जहाँ साक्षात निवास है इस पांच भौतिक शरीर से, वहाँ की यात्रा संभव नहीं है, कि वहाँ सब सिद्धों का निवास है। भगवान शिव नित्य निवास करते हैं, इसलिए कोई सामान्य प्राणी वहाँ जा नहीं सकता। इस पांच भौतिक शरीर से कोई वहाँ पर जाकर के भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता। ये कई कारण है कि भगवान शिव के यहाँ निवास होने के कारण कोई व्यक्ति या पर्वतारोही वहाँ पर नहीं चढ़ पाया है, शायद आगे भी कोई वहाँ नहीं जा पाएगा।
0: कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर गहन रिसर्च करने वाले अंग्रेज पर्वतारोही ह्यू रटलिज ने कैलाश पर पर्वतारोहण को बिल्कुल असंभव बताया। उनके साथ कर्नल विल्सन और शेरपा टीस्टेन भी थे। विल्सन ने दावा किया कि शेरपा ने उन्हें कहा था कि वो कैलाश पर चढ़ सकते हैं। विल्सन ने कहा कि जब उन्होंने कैलाश को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी दिशा की तरफ से देखा तो लगा कि हाँ चढ़ा जा सकता है, लेकिन फिर जो अनुभव हुआ वो अद्भुत था। विल्सन ने कहा,
6: जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया।
0: कुछ पर्वतारोहियों ने माना कि कैलाश पर कभी नहीं चढ़ा जा सकता, तो कई ने ये माना कि कैलाश तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता है। विल्सन के अलावा रूस के पर्वतारोही सर्गे सिस्त्याकोव का अनुभव भी ऐसा ही रहा।
6: जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी सी महसूस होने लगी और मन को यह ख्याल तेजी से जकड़ने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया।
7: सारे लोगों ने कोशिश करी, शुरू शुरू में जैसे पीरियड था कि बहुत लोगों ने ऊपर जाने की कोशिश करी, और उन लोगों को नेचुरल प्रॉब्लम्स वहाँ पे आई कि जैसे एकदम से तूफान आ जाता, एकदम से। अब वहाँ कैलाश इज ए डेजर्ट, इज ए कोल्ड डेजर्ट, रेगिस्तान है, तो वहाँ पे एकदम से हर्ड्स ऑफ एनिमल्स आ जाते, तो किसी आदमी के हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती। तो ये जितने लोगों ने कोशिश करी, उनको किसी ना किसी वजह के कारण उसको कैंसिल कर दिया।
0: आज कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पे पाबंदी है, लेकिन कैलाश पर चढ़ाई की कोशिशें कोई आज की बात तो नहीं है, ये 20वीं सदी की शुरुआत की बात है, जब स्थानीय लोग इस स्थिति में ही नहीं थे कि अपनी आस्था के नाम पर पश्चिमी देशों के पर्वतारोहियों को रोक पाते। तब भी पर्वतारोही कैलाश के रहस्य से अभिभूत थे। ऑस्ट्रियन लेखक और मशहूर पर्वतारोही हर्बर्ट टिचे ने 1936 की एक घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि जब उन्होंने तिब्बत के धर्मगुरु से सवाल किया कि क्या कैलाश पर चढ़ा जा सकता है, तो उन्हें अद्भुत जवाब मिला।
6: जो इंसान पूरी तरह पाप मुक्त हो वही कैलाश पर चढ़ सकता है, और ऐसा करने के लिए उसे बर्फ की दीवारों के रास्ते नहीं जाना होगा, बल्कि वो एक पक्षी की तरह सीधे पर्वत शिखर पर जा सकता है।
0: कैलाश पर चढ़ने की आखिरी कोशिश का रिकॉर्ड साल 2001 में मिलता है, जब चीन ने अंतिम बार स्पेन की एक टीम को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया मिलने लगी, जो ये मानते थे कि कैलाश पवित्र स्थान है और उस पर चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। इन प्रतिक्रियाओं का परिणाम ये निकला कि कैलाश पर पर्वतारोहण को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2001 में जब कैलाश पे चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा, तब तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 1500 पर्वतारोही चढ़ाई कर चुके थे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,031 फीट है और कैलाश की ऊंचाई 21,778 फीट। अब तक माउंट एवरेस्ट पर लगभग 7,000 लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई। दुनिया भर के तमाम पर्वतारोहियों ने कैलाश को जीतने की कोशिश की, लेकिन न केवल हार कर लौटे बल्कि उन्होंने लौटने के बाद जो दुनिया को बताया वो अविश्वसनीय भी है और अकल्पनीय भी। क्या हर पर्वतारोही का अनुभव भ्रम था? अगर नहीं तो कौन छीन लेता है पर्वतारोहियों से उनकी शक्ति? ये रहस्य क्या है?
8: जो वहां पर एनर्जी थी, वो एनर्जी इतनी ज्यादा थी और इतनी शांत करने वाली है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं।
9: भोलेनाथ की कृपा जिस पे है उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। बाकी तो जब अगर कष्ट नहीं होगा, सब चीज सरल होगा, तो फिर भोले को कौन याद करे।
10: हमें जो सबसे बड़ा सहारा मिला वो भगवान शिव जी का है। हमें जो था सबसे अच्छा जो सपोर्ट मिला वो मौसम का सपोर्ट मिला।
0: महलों से ज्यादा सुख कैलाश की खुली हवाओं में। ये पूरा क्षेत्र कैलाश का क्षेत्र ही कहलाता है। जो माउंटेन रेंजेस हैं, वैसे हिमालय का क्षेत्र होता है ट्रांस हिमालयन में जो कैलाश रेंजेस हैं, कैलाश रेंज में सबसे प्रमुख पर्वत कौन? तो शिव का निवास कैलाश। ओघड़दानी नीलकंठ महादेव ने महलों को कभी नहीं चुना, ओघड़दानी शिव ने चुना कैलाश को। कैलाश और काशी के वासी महादेव। अगर ये माना कि आस्था का सम्मान करते हुए पर्वतारोहियों ने कैलाश पर पांव नहीं रखा, तो हमें उन पर्वतों से तुलना करनी होगी जो अपने क्षेत्र में इसी तरह से पवित्र माने जाते हैं, जैसे कंचनजंगा। कंचनजंगा पर चढ़ाई पे प्रतिबंध 1955 में लगा। उससे दो साल पहले 1953 में ब्रिटिश पर्वतारोही चार्ल्स इवांस ने पर्वत पर चढ़ाई कर ली थी। इसके अलावा माउंट ओलंपस, माउंट किनाबालू सब अपने अपने इलाकों में पूजनीय है, पर पर्वतारोहियों का दल वहां जाने से नहीं रुका। किसी भी पहाड़ पर चढ़ने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ऑक्सीजन की कमी की। अलग अलग ऊंचाइयों पर शरीर को हवा में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा के हिसाब से खुद को ढालना होता है। वातावरण में समुद्र स्तर पर 21% ऑक्सीजन होती है। जैसे जैसे समुद्र स्तर से ऊंचाई बढ़ती जाती है, हवा का दबाव कम होता है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरी गैसों की मात्रा भी कम होती जाती है, लेकिन प्रतिशत उतना ही रहता है। यानी हवा का दबाव कम होने के कारण ऐसा महसूस होता है कि ऑक्सीजन की कमी है। अब ऊंचाई पर पहुंचने में हर सांस के साथ शरीर में कम ऑक्सीजन जाती है। करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर बैरोमेट्रिक प्रेशर या हवा का दबाव घट जाता है। इस ऊंचाई पर सांस लेने के लिए 40% कम ऑक्सीजन के कण या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से शरीर को इस ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन की आदत डालनी होती है।
4: लोग जो ये हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक करते हैं कैलाश मानसरोवर की तरह, उन्हें AMS का ध्यान रखना पड़ता है, अक्यूट माउंटेन सिकनेस, क्योंकि वहां पे हाइट गेन पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स होती है उससे बचाओ आपको अपना एक्लामेटाइजेशन स्केड्यूल एक फॉलो करना पड़ता है। बहुत ही जल्दी हाइट गेन नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको अपनी हाइड्रेशन पे ध्यान रखना है, बहुत सारा पानी पीना है और इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है। सिर्फ पानी पीने से आपके शरीर के अंदर जो सॉल्ट है वो वॉश आउट हो जाती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। आप उसके साथ एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले सकते हो और जाने के पहले अपने डॉक्टर से और एक मेडिकल कंसल्टेशन करने के बाद ही आप ऐसे ट्रैक्स पे जाएं।
7: वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है, ऑक्सीजन की वजह से काफी लोगों की तबीयत खराब हो रही थी, वापस जा रहे थे। वो हम लोग तो बाबा के आशीर्वाद से ही कम्प्लीट कर पाए। हमारा पूरा ग्रुप जैसे गया था बिल्कुल वापस आया सही सलामत।
0: माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन समुद्र स्तर पर मौजूद ऑक्सीजन से 2/3 कम है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप सीढ़ी चढ़ें और 3 की बजाय 1 बार सांस लें। सामान्य प्रक्रिया है,
11: सुपर हाई ऑल्टीट्यूड पर आप हैं और आपको चेक करना होता है अपना ऑक्सीजन। How much?
12: Okay.
11: How much?
12: How much?
11: 88. 86. Very good.
12: Very good.
11: ये very good. ये बहुत अच्छे की श्रेणी में आता है। ये super high altitude है। 12,000 feet की acclimatization से शुरुआत होती है। 12,000 feet एक दिन नहीं लेकिन मतलब ज्यादा दिन आपको रुकना पड़ता है, लेकिन उसके बाद हम आगे बढ़े हैं।
0: कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, पर शरीर पर ऑल्टीट्यूड का असर कहीं ज्यादा महसूस होता है। इतना तो स्पष्ट है कि माउंट एवरेस्ट के मुकाबले बेहतर ऑक्सीजन लेवल होता है, पर फिर भी लोग इस पर नहीं चढ़ पाए और जिसने कोशिश की उनको दिशा भ्रम हुआ। क्या यहाँ मौजूद ऑक्सीजन खून में आसानी से नहीं मिलती, जिसकी वजह से इस पर जाने वालों को सांस लेने में दूसरे ऊंचे पहाड़ों के मुकाबले ज्यादा दिक्कत होती है? सवाल कई, जवाब शायद कैलाश की बुलंदियों में छिपे हैं।
11: आप इस पूरे इलाके में जब पर्वत दो के आकार को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि कैलाश पर्वत का आकार बिल्कुल अलग है, एक पिरामिड की तरह आपको नजर आएगा। अभी तो बादलों के पीछे बाबा कैलाश छिपे हुए हैं, ऐसा नहीं होता है कि पूरे समय आपको दर्शन होते हैं, अभी वो बादलों के पीछे नजर आ रहे हैं, लेकिन एक पिरामिड की तरह। एक रूसी वैज्ञानिक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बिल्कुल भी प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं लगता, ये मानव निर्मित एक पर्वत लगता है, लेकिन चीनी वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा सही नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से इसे नकारा। पर देखिए, चार तरफ से इसको आप देख सकते हैं, इस पूरे पर्वत को।
0: क्या वाकई कैलाश पर्वत ब्रह्मांड का केंद्र है? क्या वाकई कैलाश पर आकर सारी दिशाएं एक हो जाती हैं? क्या वाकई कैलाश ही है पिरामिड जिसे विज्ञान धरती की नाभि कहता है? कैलाश पर्वत के महत्व को ऊंचाई की वजह से नहीं बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से समझा जाता है। इसका चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कंपास के चार बिंदुओं जैसा माना जाता है। एक अवधारणा के अनुसार सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को चार अलग हिस्सों में बांटती हैं, जो पूरे विश्व के चार भागों को दर्शाता है। कैलाश पर्वत इसके केंद्र में है, लिहाजा कैलाश को केंद्र बिंदु माना जाता है। एक शोध के अनुसार कैलाश पर्वत ही वो एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। एक्सिस मुंडी लैटिन का शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का केंद्र।
7: पुराने जितने शास्त्र हैं हमारे, उन सब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कैलाश जो है वो पृथ्वी की धुरी है। रशियन जो इसको एक्सिस मुंडी बोलते हैं। शास्त्रीय कहते हैं कि कैलाश एक ऐसा पर्वत है कि जो पाताल में भी है, धरती पर भी है और स्वर्गों तक भी है।
0: इसका वर्णन सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है बल्कि अलग अलग धर्मों और मान्यताओं में अलग अलग तरीके से माना गया है। हर सभ्यता ने अपने रहने की जगह को एक्सिस मुंडी माना है। मिसाल के तौर पर चीन का पुराना नाम मिडिल किंगडम इसीलिए पड़ा क्योंकि उनका मानना था कि चीन पृथ्वी के एकदम बीचों बीच है। फिर किसी पहाड़ या पेड़ जैसी ऊंची प्राकृतिक चीज को एक्सिस मुंडी मान लिया जाता था, जिसको आकाश और धरती के बीच के संपर्क का माध्यम माना जाता था। जापान ने माउंट फूजी, चीन ने माउंट कुनलुन, नेटिव अमेरिकन्स ने ब्लैक हिल्स और भारत और तिब्बत ने कैलाश पर्वत को केंद्र माना। जूडाइज्म में माउंट सिनाई, ईसाई धर्म में माउंट ऑलिव्स और इस्लाम में मक्का को पृथ्वी का केंद्र माना गया। कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया तो इसके कई पहलू हैं। पहला कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र होना, दूसरा आसमान और धरती का मिलन बिंदु होना, तीसरा चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु होना और चौथा ईश्वर और उनकी बनाई सृष्टि के बीच संवाद का केंद्र बिंदु होना।
5: भगवान शिव का जहाँ निवास है, हम सब प्रकृति और विज्ञान के लोग भी मानते हैं, वह पृथ्वी का मूलाधार है कैलाश पर्वत। ये निहित है, वैज्ञानिकों ने बड़ा रिसर्च किया तब भी माना है कि कोई भूकंप आए, कोई कुछ आए, उसको कैलाश को कोई अस्तर नहीं कर पाता है, क्योंकि वो स्तंभ के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए उसे प्रकृति का मूलाधार माना जाता है।
0: सनातन व्यवस्था में जिस कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान मानकर परिक्रमा की परंपरा है, उसी तरह तिब्बत में परिक्रमा को कोरा कहा जाता है और इस पर्वत के परिक्रमा की परंपरा है। अवधारणा है कि पूर्व जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही ये भी कि शिखर पर रहने वाली शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है।
6: कैलाश पर्वत बहुत ही पवित्र जगह है, तिब्बती टूरिज्म के लिए लोगों का यहाँ आना बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आए।
0: बौद्ध धर्म, जो कि बौद्ध धर्म से पहले का धर्म माना जाता है, उसके अनुसार कैलाश के इर्द गिर्द का पूरा क्षेत्र और 9 मंजिला स्वास्तिक पहाड़ आध्यात्मिक शक्तियों का प्रमुख स्थान है, जहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा भी कैलाश पर्वत को लेकर अलग अलग पंथ और धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं। बौद्ध अनुयायी कैलाश को ब्रह्मांड की धुरी मानते हैं। उनकी मान्यताओं के अनुसार यही वो स्थान है जहां बौद्ध गुरु रिम्पोचे ने 7वीं-8वीं सदी में तांत्रिक क्रियाएं की थी, जिसके बाद तिब्बत का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म बना। वो ये भी मानते हैं कि ये भगवान बुद्ध के डेमचौक रूप का गृह स्थान है, जिसे धर्मपाल भी कहा जाता है। जैन अनुयायी ये मानते हैं कि स्थान को प्रथम तीर्थंकर ने 8 पगों में नाप दिया था, जिसके कारण इसे अष्टपद भी कहा जाता है।
11: इस पूरे परिक्रमा मार्ग पे दरअसल हिंदुओं, बौद्ध, जैन, बौन सबकी आस्था होती है, इसलिए ये जो प्रार्थना के पहिए होते हैं, प्रेयर व्हील्स जिन्हें कहा जाता है, इन पर मंत्र लिखे होते हैं और अगर आप इन्हें इस तरीके से हिला देते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं उस ईश्वर के पास पहुंचती हैं, क्योंकि मान्यता ये है कि जब इस तरीके से आप इस प्रेयर व्हील को घुमाते हैं तो वो हवाओं के साथ ऊपर वाले तक पहुंच जाती है।
0: सवाल पड़ा है, एक ही पर्वत के बारे में अलग अलग धर्मों में एक ही तरह की मान्यता आखिर कैसे है? कुछ तो अद्भुत होगा, कोई तो अविश्वसनीय कड़ी होगी, कहीं तो अकल्पनीय रिश्ता जुड़ता होगा। और केवल कैलाश पर्वत ही नहीं, ये संपूर्ण क्षेत्र अद्भुत है। आइए इस अकल्पनीय संसार के रहस्यों के बारे में समझते हुए हम आपको मानसरोवर लिए चले।
11: दूर मेरे पीछे देखिए कैलाश पर्वत और मेरे ठीक पीछे मानसरोवर। रामायण में उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम को महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि उत्तर से एक ऐसा सरोवर है जो ब्रह्मा के मानस से, यानी भगवान ब्रह्मा के मन से बना है, उसे कहते हैं मानसरोवर, और वहीं से निकलती है वो नदी सरयू जो पहुंचती है अयोध्या। केवल सरयू नदी ही नहीं, बल्कि सरयू नदी के साथ साथ सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां यहीं से निकलती हैं। ये बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है ये सरोवर, इसकी ऊंचाई लगभग 15,100 फीट बताई जाती है और इस ऊंचाई पर ये एक मीठे पानी का की झील है, मीठे पानी का सरोवर है। बहुत अलग अलग स्रोत हैं इसके, यानी कि जब बर्फबारी होती है, बारिश होती है, वो तो स्रोत है ही इस सरोवर का, लेकिन इसके साथ ही आसपास बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, उनके जल से भी यहाँ पर जो सरोवर है उसमें पानी आता है। लेकिन मुख्य तौर पर जो मानसरोवर है उसका स्रोत है कैलाश, और इसीलिए आप जब यहाँ पर तस्वीरों को देखेंगे, उस सीधाई में देखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इसके जल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। जैसे गंगा जल की मान्यता है कि उसे आप कितने भी दिनों तक रखें, वर्षों तक रखें, वो कभी खराब नहीं होता, वही मान्यता मानसरोवर से भी जुड़ी हुई है।
12: इस ऊंचाई पर मीठे पानी का सरोवर असामान्य नहीं है, पर जो अद्भुत है वो है इस सरोवर के ठीक बगल में स्थित एक दूसरा ताल। क्या कल्पना कर सकते हैं कि एक ही क्षेत्र में दो ऐसे ताल हों जिनके गुण धर्म बिल्कुल अलग हों, वो दोनों एक चैनल से जुड़ते हों, लेकिन एक शुद्धता के साथ साथ जीवन का प्रतीक और दूसरा जीवन से रहित। कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला गोल ताल पवित्र मानसरोवर है, जिसे ब्रह्म ताल भी कहते हैं और जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। कैलाश के दक्षिण पश्चिम में आधे चंद्रमा जैसा दिखने वाला ताल राक्षस ताल, जहां कोई नहीं जाना चाहता। ब्रह्मताल का शांत पानी मीठा है, जीवनदायक, और इसी वजह से इसमें जीव जंतु प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, जबकि राक्षस ताल का पानी इतना खारा है कि वहां कुछ भी नहीं पनप सकता। मान्यताएं बताती हैं कि ब्रह्म सरोवर सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत। क्या भौगोलिक तौर पर यह मुमकिन है कि चंद फीट के फासले पर दो इतने अलग अलग जल स्रोत हों?
13: कुल नजदीक नजदीक होते हुए भी एकदम खारा और एकदम मीठा पानी है, ये शिव जी की महिमा ही है, एक ही जगह से जबकि आ रहा है स्रोत।
11: सकारात्मक और नकारात्मक का संतुलन अगर आप कहीं देखते हैं तो यहाँ कैलाश के क्षेत्र में आप देखेंगे मानसरोवर और उससे लगता हुआ राक्षस ताल। जी, राक्षस ताल यहाँ स्थानीय भाषा में भी अगर आप देखेंगे तो उसका मतलब यही होता है, एक ऐसी झील जो नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। कहानियां जो दोनों हैं वो रावण से जुड़ी हैं, और इसीलिए इसे राक्षस ताल ही नहीं बल्कि रावण ताल भी कहा जाता है। जो हिंदू मान्यता है उसके अनुसार जो कथा है वो ये है कि रावण यहाँ पर आया। ये हम आपको ये भी बताएं कि ये एक चंद्राकार लेक है, चंद्राकार झील है ये, वो यहाँ पर आया और उसने महादेव को खुश करने के लिए, शिव जी को खुश करने के लिए एक एक कर अपने दसों सरों की बलि देनी शुरू की। कहते हैं कि जब तक दसवें सर पर वो पहुंचा, शिव जी जो कि बेलपत्र के चढ़ावे से भी खुश हो जाते हैं, वो रावण के इस बलिदान से खुश हुए और उसे शक्तियों का वरदान दिया। तिब्बती मान्यता के अनुसार रावण चाहता था कि शिवजी उसके साथ चले जाएं और लंका में वास करें। अब रावण ने यहाँ पर डुबकी लगाई, तपस्या की शिवजी की, लेकिन शिवजी नहीं माने। फिर उसने कोशिश की कि वो कैलाश पर्वत को उठाकर अपनी ताकत के साथ, अपनी शक्ति के साथ ले जाए और लंका में स्थापित कर दे। शिव जी बहुत क्रोधित हो गए, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके अंगूठे को ही वहां पर कुचल दिया। कैलाश पर्वत के नीचे अपने कुचले हुए अंगूठे को निकालने के लिए कहते हैं कि रावण ने तब शिव तांडव स्त्रोत का पाठ किया और आखिरकार शिव जी ने उसे एक शिवलिंग भेंट स्वरूप दिया और जाने दिया यहां से।
12: दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने इस बात को माना कि कैलाश पर्वत और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र अलौकिक शक्तियों का केंद्र है।
0: जो इस क्षेत्र में प्रवेश करता है वो इन शक्तियों को महसूस कर सकता है।
12: बात अगर केवल महसूस करने तक ही होती तो इसे कुछ लोगों के मन का भ्रम मानकर टाला जा सकता था, पर लोगों के अनुभव तो कोई और ही बात कहते हैं।
14: कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं तो वो यात्रा एक बड़ा लोनली प्लेस है, तो उसमें आप जाते हैं तो आप भगवान का ध्यान करते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो आदमी शायद नोटिस ज़्यादा लेता है कि मेरे नाखून तेज़ी से बढ़ रहे हैं या मेरे हेयर फास्ट ग्रो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल जब होते हैं तो लोग कितने दिन, कोई बाल तो अपने बढ़ाता नहीं है, शेव डेली करते हैं तो कोई नोटिस नहीं करता कितने दिन बाद बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरा, नेल हम काटते हैं और नेल घिसते भी हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं ना, जैसे आप लिख रहे हैं तो आपके नेल लगेगा तो घिसेगा भी।
0: सनातन धर्म में कैलाश पर्वत को योगी, सन्यासी और तंत्र के महादेव भगवान शंकर का निवास स्थान तो माना ही गया है। विष्णु पुराण में कैलाश का वर्णन कुछ इस प्रकार है।
15: कैलाश एक तरफ स्फटिक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी ओर नीलम से बना है। कैलाश पर्वत विश्व का एक ऐसा स्तंभ है जो 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखता है।
0: कैलाश पर्वत अगर हर दिशा से अलग रत्न के चमक का अनुभव कराता है तो भगवान शिव के पंचमुखी रूप से भी जुड़ता है। भगवान शिव के 5 मुख माने गए, जिनमें सद्योजात मुख पश्चिमी दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, ये पृथ्वी तत्व का आधिपति है, इसे सृष्टि के रचना का प्रतीक मानते हैं। वामदेव मुख ये उत्तरी दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, ये जल तत्व का अधिपति है, इसे सृष्टि के पालन का प्रतीक माना गया है। तत्पुरुष मुख ये पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और वायु तत्व का अधिपति है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा के स्थानांतरण का प्रतीक है। ईशान मुख ये ऊर्ध्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और आकाश तत्व का अधिपति है, ये जीवों के मोक्ष का प्रतीक माना गया है। 5वां मुख है अघोर मुख, ये दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और अग्नि तत्व का अधिपति है, ये सृष्टि के संहार का प्रतीक माना गया है। मानसरोवर के ठीक सामने से भगवान शिव का दक्षिणी मुख दिखता है, ये मुख उनके रौद्र रूप का प्रतीक है जो संहारक माना गया है। मानसरोवर आने वाले तीर्थयात्री जब मानसरोवर से कैलाश की पूजा करते हैं तो वो उनके इसी रूप की पूजा करते हैं जिससे अकाल मृत्यु या संकट मिट जाने की मान्यता है।
10: यहाँ ऐसा माना जाता है कि देवी देवता सुबह आके स्नान करते हैं इस झील में। हम जब नहाते हैं तो हमारे जितने भी पाप कर्म है वो धुल जाते हैं। इसके पानी को ग्रहण करने से ये मान्यता है कि आप जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति पा जाते हैं।
16: तारा तो पूरे ब्रह्मांड को कैलाशपति का ही है, जो यूनिवर्स का सेंटर है वो ये यहाँ पे अपन खड़े हैं।
17: स्पीचलेस, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ सुना था, देखा था, पढ़ा था, अपनी आंखों से उसको साक्षात दर्शन करना एक अलग ही अनुभूति है।
18: शंभो
0: जब भी श्रद्धालु कैलाश पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो उनकी पहली 10 किलोमीटर की परिक्रमा भगवान शिव के इसी दक्षिणी मुखी रूप में होती है, जिसकी शुरुआत के द्वार को यम द्वार कहा जाता है। 12 महीने सफेद बर्फ की दुशाला ओढ़े कैलाश के शिखर पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं और चोटी स्वर्णिम आभा से चमक उठती है, तब एक विश्वास और मजबूत होता है कि कैलाश सत्य है, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है। शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना स्थान क्यों चुना, इसको लेकर भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने समुद्र मंथन के बाद जब विषपान किया तो उसके बाद वो कैलाश पर चले गए और वहीं तपस्या में लीन हो गए। उनका पूर्ण ज्ञान यही संरक्षित माना जाता है। कुछ का मानना है कि मानसरोवर सृजन का प्रतीक है, तो संहारक रूप लेकर महादेव कैलाश पर निवास बनाकर रहने लगे और जग में कैलाशपति के नाम से जाने गए। कुछ मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र होने के कारण ये स्थान आध्यात्मिक रूप से अधिक समृद्ध है, इसीलिए महादेव ने इसे तपस्या के लिए चुना। एक विश्वास ये भी है कि पृथ्वी पर जब हिम युग था तब भगवान विष्णु ने रहने के लिए समुद्र चुना, ब्रह्मा जी ने नदी और महादेव ने कैलाश की ऊंचाइयों पर अपना डेरा जमाया।
5: जब सती का प्रत्याग किया था उससे पूर्व 87,000 वर्ष तक वहाँ पर भगवान शिव ने साधना की थी। वो साधना का स्थान है, दिव्य स्थान है, पवित्र स्थान है और पृथ्वी का मूलाधार है, इसलिए भगवान शिव ने वहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया। आज तक भगवान शिव वहाँ प्रत्यक्ष रूप में निवास करते हैं।
0: पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का जब विवाह माता पार्वती से हुआ तो वो कैलाश से नीचे उतरे और ऐसे स्थान की तलाश की जो आध्यात्मिक रूप से पवित्र हो। इसी तलाश के चलते वो काशी गए। श्रद्धालु जब कैलाश की यात्रा पर होते हैं तो अक्सर उन्हें अलग अलग तरह का अनुभव होता है। क्या आस्था का ये अद्भुत विश्वास केवल मन का वहम हो सकता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके कई जवाब दिए जा सकते हैं। कई वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि कई दिनों की थकान की वजह से कुछ श्रद्धालुओं को भ्रम हो जाता है या ऑक्सीजन की कमी की वजह से मन काल्पनिक तस्वीरें देखने या आवाजें सुनने लगता है।
14: हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो रेरिफाई हो जाती है, जो आपकी एयर है वो थिन हो जाती है और एयर प्रेशर कम हो जाता है, उससे ब्रेन में एडिमा बढ़ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग होने से हेलुसिनेशन होने लगते हैं, ब्लैकआउट्स होने लगते हैं, वोमिटिंग, हेडेक, फेंट हो जाता है आदमी, और अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो मृत्यु हो सकती है।
0: सदियों का विश्वास ये कहता है कि कैलाश शिखर भोले शंकर का साधना स्थल है जिसकी शक्ति को पीढ़ियों ने महसूस किया और यहाँ वही होता है जो महादेव की मर्जी होती है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

चूंकि कैलाश मानसरोवर चीन में ऑटोनोमस रीजन ऑफ टिबेट में स्थित है, यहां पहुंचना जटिल भी है और इसमें समय भी लगता है। तीर्थयात्रियों के लिए दो रास्ते हैं। पहला लिपुलेख दर्रे का रास्ता, जहां उत्तराखंड के धारचूला से शुरुआत होती है, फिर गुंजी, नाबी, कालापानी होते हुए पुरांग और फिर

0: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn, and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: आगे आगे
4: अरे उधर
3: उधर किधर
4: करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
8: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
7: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
9: साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, जिंदल साथी सील साथी रे।

0: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
0: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
2: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
3: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
3: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
4: आगे आगे,
5: अरे उधर
4: उधर,
5: करेक्ट करेक्ट।
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
8: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
7: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।

मध्य ट्रस्ट की अगली बैठक 11 जुलाई को होनी है। इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर चर्चा होने की उम्मीद है और ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर डॉक्टर अनिल मिश्रा के उत्तराधिकारी को चुनने पर भी विचार किया जा सकता है। अब इससे पहले राम मंदिर की एक बड़ी बैठक भी आज हुई, जिसमें चंपत राय को लेकर बयान सामने आया है। बयान में यह कहा गया कि चंपत राय ने इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। इस पर विचार किया जा रहा है।

0: चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें पूरे मामले में दुख जताया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। वहीं जनता से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। लेकिन सबसे बड़ी बात, राम मंदिर की ओर से बताया गया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है।
1: 8 एक्यूज थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं, अलग अलग अमाउंट के रूप में।
0: 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
2: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
3: क्या आप क्या कहना चाहेंगी?
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं।
5: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं, तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
3: अच्छा,
5: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
2: क्या पैसा बढ़ गया?
5: हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया, और अभी हाल में भागवत करवाए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सीसीटीवी कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल RMO को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: अब बात भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एक और खबर के, जहां पर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट पेपर लीक का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि अब महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक ने पूरे सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस मामले में महाराष्ट्र के CM ने जांच के लिए SIT का गठन भी कर दिया है, और SIT इस मामले की जांच करेगी। थाने ज्वाइंट CP की अध्यक्षता में एक SIT के गठन का आदेश हुआ है। साथ ही साथ जो एग्जाम होना था उसे भी रद्द कर दिया गया है।
7: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है।
8: प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है, ऐसा थाने भिवंडी में हुआ, पुनः FIR हो गई है। हमारे परीक्षा परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त दोनों भी वहाँ। रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, अगली तारीख हम दे देंगे।
7: एग्जाम रविवार को होना था। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद थाने के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। जांच में पता चला है कि 1.5 करोड़ में पेपर बेचा जा रहा था।
9: पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कॉन्टेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ। उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है। उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं।
7: परीक्षा में 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। ऐसे में अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है।
10: ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
11: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
12: जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है और कभी कभार जैसे लीक में 22 बच्चों ने वहां पे आत्महत्या की और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपने ये सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है मंत्री हो या कोई भी हो उसका राजीनामा लेना चाहिए, हम सबकी मांगनी है।
7: महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं उनके लिए भी TET जरूरी है, लेकिन नीट के बाद अब TET पेपर लीक ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने भी पेपर लीक को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा है, सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि देश के शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया जिससे देश का हर युवा असुरक्षित है। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य की चोरी है। वही महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस मामले की पूरी निष्पक्ष और बहुत सख्ती से जांच की जाएगी, दोषी चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
16: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today. Beautiful.
17: आगे आगे
18: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
19: हमने तब भी सवाल किया था,
20: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
19: हम आज भी सवाल करते हैं,
20: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
19: ऑपरेशन अग्नि,
20: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
19: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।
13: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

एक चांद जिसकी आंच में कई चेहरे जलते नजर आ रहे हैं। 25 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि दान पेटियों से निकले चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। FIR के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम की शुरुआती जांच में मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय सबूत मिले। जांच में आरोप है कि संगठित तरीके से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी हुई। FIR में यह भी कहा गया है कि गिनती कक्ष में मौजूद कुछ ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो चढ़ावा चोरी मामले में पहली FIR के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच के दौरान 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक उपलब्ध CCTV फुटेज की विस्तृत जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक CCTV फुटेज में कुल 70 मौकों पर कथित चोरी गबन से जुड़ी गतिविधियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, अभी सिर्फ 3 महीने के CCTV सबूत मिले हैं, जो कि इन घटनाओं को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वहीं मंदिर में चढ़ावे को लेकर चांदी की ईंट के गायब होने की जाँच भी SIT की ओर से की गई है। सूत्रों के अनुसार SIT की रिपोर्ट में 200 किलो चांदी की ईंटों की चोरी के दावे को गलत पाया गया है। जांच में सोशल मीडिया पर चांदी की ईंटों को लेकर किए गए कई दावों को भ्रामक बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक दान में मिली चांदी की ईंटें गलाने के लिए भेजी गई थी। चांदी की ईंटें सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजे जाने का रिकॉर्ड भी जांच में मिला है। SIT की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टिन्नू के पास बिना आधिकारिक आदेश के हुंडियों की चाबियां थीं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट को काफी पहले ही चढ़ावा चोरी की आशंका हो गई थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और स्टेट बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक कर चढ़ावा गणना के लिए एक SOP तैयार की गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक SOP का पालन नहीं किया गया। आज तक ब्यूरो।

0: निष्पक्ष जांच होगी। तो तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए इस बहस के अंत तक आप दोनों पर यह जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी संख्या बढ़ानी है, तो जब यहाँ पर वक्ता बोलेंगे तो उधर से कुछ को आप आमंत्रित कीजिएगा, वो सफेद या लाल गमछा ले सकते हैं, आप इनको आमंत्रित कीजिएगा, ये नीला या सफेद गमछा ले सकते हैं, और सफेद वालों के लिए तो दोनों तरफ का रास्ता खुला हुआ है। तो आइए बहसबाजी करके शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बुलाते हैं अपने तीनों जजेस। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे तीनों जजेस का, स्वामी चक्रपाणि महाराज, डॉक्टर विक्रम सिंह, कमलेश किशोर। कमलेश किशोर यानी तीन ताल के ताऊ, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। और जबरदस्त पुलिस अधिकारी फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी चक्रपाणि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों जजेस अपनी अपनी जगह पर। अब तो सर हमने तो आपको अनेकों शोज में अब जज बना के बुला लिया है डीजीपी साहब, तो हमें उम्मीद है कि आज के मुद्दे पर आप थोड़ा प्रकाश खुद भी डालेंगे,
1: है ना? मुद्दा जो है हम सबके हृदय से संबंधित है, जिसने खुल के नहीं बात किया तो अन्याय।
0: बहुत अच्छा, आइए सर, आइए। आइए बुलाते हैं। देखिए आज आपको बता दें बहस बाजीगर इस शो का नाम ही इसलिए है क्योंकि आज छह जो कंटेस्टेंट्स आएंगे उनमें से किसी एक को ये जजेस बहस बाजीगर डिक्लेयर करेंगे, यानी वो सबसे अच्छा वक्ता था, जिसने मुद्दे पर बोला, दमदार तरीके से बोला, और इसी के साथ फैक्ट्स के साथ बात की। क्योंकि बहस की जो प्रथा है वो हम देखते हैं कई बार अधूरी रह जाती है चिल्ला चिल्ली के शोर में, इसीलिए सभी को 90-90 सेकंड का टाइम मिलेगा। फर्स्ट राउंड में फिर एक मिनट का टाइम मिलेगा। बात कीजिए, मुद्दे पर बोलिए, सटीक बोलिए, सही बोलिए, आप बन सकते हैं बहसबाजीगर। तो सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने पहले दो वक्ताओं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अमितोष प्रतीक, नेशनल स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो दोनों ही तिलकधारी हैं, हैं? अच्छा है, दिलचस्प है, देखते हैं कौन अच्छे से अपनी दलीलों को रखता है। अगले दो जो वक्ता है उनको अब बुलाते हैं। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सूर्या मैथिल जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। सूर्या मैथिल जी बाहर का कैमरा देख के ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे, वाह वाह। आइए यास्ता भी नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब आखिरी के दो कंटेस्टेंट जो है उनको दोनों टीम्स की तरफ से बुलाते हैं। महंत नवल किशोर दास जी महाराज, प्रवक्ता अखाड़ा परिषद के, और साध्वी विश्वरूपा धर्मगुरु हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों, बहुत स्वागत।
2: आज इस बहस का आधार बना है राम मंदिर में चंदा चोरी और उसकी जांच को लेकर विपक्ष की आशंका। राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा सामने आने के बाद से ही देश भर में राम भक्त दुखी, नाराज और परेशान है, क्योंकि उनकी आस्था के साथ बड़ा धोखा हुआ है। इस पर तमाम सवाल और राजनीति के बाद ट्रस्ट से लेकर सरकार तक सवाल उठे, तो सरकार ने एसआईटी बनाकर जांच के आदेश दे दिए। एसआईटी ने जब अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी तब ट्रस्ट की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद सभी 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। और अब ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका और नियत को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज इस बहस का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चढ़ावा चंपक मामले में निष्पक्ष जांच होगी।
0: तो पहले दो वक्ताओं को बुलाते हैं, कुछ खास संदेश आज के लिए क्योंकि ये बहस ताऊ
3: की अनुमति से अंजना जी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी वक्तव्य प्रस्तुत करें साक्ष्यों के साथ तर्क के साथ, केवल हवा हवाई बातें ना करें हम लोग।
0: वाह वाह, बजाइए ताली जोर से। मतलब ये रोज वाली टीवी डिबेट की वही रटी रटाई बातें नहीं, एकदम फैक्ट्स के साथ बात कीजिए। चलिए स्वागत करते हैं अमितोष पारिक और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप यही रह जाओ, आइए जोशी जी आप दोनों को 90-90 सेकंड का टाइम मिलेगा। 90 सेकंड में आपको अपनी बात रखनी है और जैसे ही मैं कहूं कि समय समाप्त हुआ तो समय रुक चुप जाई हो जाएगा, नहीं तो ये लोग

0: काटते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आप अमितोष जी इस विषय पर बोलेंगे। आपका समय 90 सेकंड का शुरू होता है अब।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। सबसे पहले शुरुआत में बोलेंगे जय श्री राम,
2: जय श्री राम, जय श्री राम।
1: देखिए कितना बड़ा खेल है, जो कल तक हम पे गोलियां चला रहे थे, जिनको राम में विश्वास नहीं था, जो राम मंदिर की जगह बाबरी की कस्में खा रहे थे, आज वो नए नए 3 दिन से राम भक्त बन रहे हैं और हमें कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उस विचार से आते हैं जिसने इस राम के लिए रामचंद्र गुप्ता ने गोली खा ली, हम उस विचार से आते हैं जिस राम के लिए दिगंबर अखाड़े ने गोली खा ली, हम उस राम से आते हैं जिसके लिए खोटारी बंधुओं ने गोली खा ली, लेकिन वो थे जो लगातार तरह से हम पे गोली मारते रहे। पूछिए चंदे से पहले अपने गोलियों का हिसाब दीजिए, पूछिए कि पहले से हमारी मृत्यु का हिसाब दीजिए, लेकिन वो हिसाब नहीं मिले। क्यों आ रही नई नई बातें ये, और कहां से आ रही नई बातें? जिस दिन पहले दिन ट्वीट हुआ उसके रात को परिवहन पांडे ने ट्वीट करके बोला कि ऐसी तो कोई खबर ही नहीं है। उसके बाद में ट्रस्ट ने एसआईटी जांच की मांग करी, इनको एसआईटी पे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन ये कोर्ट नहीं जाते। उसके बाद ही बोले जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, कोर्ट नहीं जाएंगे। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, कोर्ट नहीं जाएंगे। पीआईएल लगनी चाहिए, पार्टी नहीं बनेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए, पार्टी नहीं बनेंगे। लेकिन क्या करेंगे? आपकी मेरी आस्था को आहत करेंगे, राम को कटघरे में खड़ा करेंगे, राम जन्मभूमि के ऊपर में बात करेंगे, लेकिन उसको चैलेंज नहीं करेंगे। एक सवाल उठता है, एसआईटी जांच खराब क्यों है? एसआईटी जांच में निसंदेह हमें शक क्यों है? 2024 के अंदर में केदारनाथ बद्रीनाथ कमेटी के ऊपर में भी सेम आक्षेप लगा था कि वहां से सोना चोरी हुआ, एसआईटी गठित हुई और सब क्लीन चिट पाया गया, लेकिन इनको उस पर विश्वास नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से
0: समय समाप्त हुआ भाई, ओपनिंग बैट्समैन ने बैट में ठीक ठाक मोड़ दम दिखाया है। अब जोशी जी आप पर पूरी जिम्मेदारी है, आप इस तरफ से बोल रहे हैं तो चढ़ावा चंपत में निष्पक्ष जांच होगी आज का विषय है और आपका समय शुरू होता है अब।
3: देखिए अंजना जी, देश ये देख पा रहा है कि जो ये वार है ये हमारी आस्था पर वार है, ये हम लोगों के लिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी का विषय नहीं है। ये मुझे लगता है कि हमारी आस्था और जो कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये हमारे राष्ट्रवाद पर हमला है। और बड़ी आश्चर्य हो रहा है देश को कि हमारे बिना एफआईआर लिखे हुए एक किस प्रकार की एसआईटी की जांच होगी। देश इसको संदेह की दृष्टि से देख रहा है और युवा भी इसको दृष्टि से देख पा रहा है संदेह के। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और राम मंदिर पर गाज क्या क्या गिरी है, ये कोई पहली गाज नहीं है। जमीन घोटाला इनके लोगों ने करा, वहां पर टपकती छत इस देश ने देखी, राम रसोई बंद इनके कार्यकाल में हुई, चढ़ावा चोरी इनके काम में हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं उसके बाद जिन पर आरोप है चंपत राय जी का, जो आज छाए हुए हैं, और किस वजह से छाए हुए हैं कि चोरी पर छाए हुए हैं, और उन पर किस प्रकार का आरोप साधु संत ने लगाने का काम करा, किस प्रकार उनके शौकों का, हालांकि हम लोग समाजवादी किसी के शौक पर नहीं आते, लेकिन जो उनके शौक है वो भी किस प्रकार के आए हैं, ये भी देश और प्रदेश समझ रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो अनैतिक प्रकार के कार्य करता हो उसको अध्यक्ष बनाएंगे। और इन्होंने बात करी थी गोली चलाने की, उसी नृपेंद्र मिश्रा को जिसने गोली करने देने का आदेश करा उसको राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने का काम इन लोगों ने करा। किस प्रकार की दोगली बातें करके देश को शर्मसार करने का काम आप कर रहे हैं? क्यों नृपेंद्र मिश्रा को बनाया, क्यों चंपत राय को बनाया, यौन शोषण करने का आरोप।
0: समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, शुरू में एकदम स्लो खेलना शुरू किया और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी तो लास्ट होते होते कमाल ही कर दिया। कोई सवाल था?
4: प्रश्न उठाने वाले पर प्रश्न उठाकर आपने वक्तव्य तो दिया पर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। निष्पक्ष जांच होगी इसके पक्ष में आपने कोई दलील नहीं दी और प्रोफेसर साहब भी अटैक में लगे रहे, नहीं होगी इसके लिए कोई दलील नहीं।
0: मोशन फिर से आपको पढ़कर सुना देते हैं। चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी ? आप कह रहे होगी, आप कह रहे नहीं होगी, तो क्यों नहीं होगी, क्या दलील है वो तो दीजिए उस पर जल्दी से एकदम छोटा सा रिबटल जो सवाल है उनका उस पर।
1: ये निष्पक्ष जांच जब होती है आप किसी थाने के अंदर में जाते, कौन करता है इसकी कार्यवाही? एक थाने का इंचार्ज करता, तब जांच सही होती। लेकिन उसकी इसी मामले को देखते हुए, हिंदुओं की आस्थाओं को देखते हुए 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स को इसके अंदर में जांच में रखा गया। आपको लगता है स्वतंत्र व्यक्ति है, लगता है निष्पक्ष जांच नहीं होगी, आर्टिकल 3226 का आपके पास प्रावधान है, चले जाइए उसको चैलेंज कर दीजिए। तो क्या अंजना जी के आपके पास बोलेंगे कि नहीं नहीं निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तो अंजना जी क्या करेंगी उसमें? आपका दुपट्टा चोरी होगा तो क्या करेंगे? अंजना जी के पास आके बोलेंगे क्या? थाने में जाएंगे? लेकिन वहां नहीं जा रहे, लगातार मीडिया ट्रायल दे रहे हैं। निष्पक्ष जांच होना यही स्वतंत्रता का अधिकार है, यही आपकी डेमोक्रेसी है, यही लीगल प्रिंसिपल है, और यही अगर आपको लगता ही नहीं है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं।
3: अंजना जी, हमारा मानना है कि इसमें निष्पक्ष जांच नहीं होगी, क्योंकि ये बड़ी मछलियों को बचाने का जो प्रयास है वो साफ देश को दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं हमारे पास प्रूफ नहीं है, देश के पास प्रूफ भी है। 2 करोड़ रुपया कैश बरामद हो गया है।
1: कहाँ है
3: और किनसे हुआ है? नहीं रुके रुके, सुनिए इसे। 2 करोड़ रुपया कैश बरामद हो गया है वहां के इम्प्लॉयियों से, किस किस के अंदर, गोबर के अंदर तक भी आप पैसा छुपाने का काम कर रहा है। देश का युवा, आप देश को बरगलाई तो रहे।
1: 15 लाख रुपए
3: अकाउंट में आने के नाम से देश को हमारे बच्चों की परीक्षा के नीट की लीड कर रहे हैं आप, देश को बरगलाने के अलावा कर
1: नीट पर आ गए।
3: मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बड़ा गर्व होता है इस देश के युवाओं पे, जैन जी पर। अब CBSE में भी जो इन्होंने भ्रष्टाचार करा वो जैन जी ने उसको क्लियर करने का काम करा। अब देश का जैन जी आपको आपका आईना दिखाने का काम कर रहा है। नहीं नहीं, विषय
1: अरे अभी पीडीए पे आएंगे, 2 मिनट रुको। FIR चंदा वीडियो पीडीए यही इनका है, और फिर आ जाएंगे यूपी के चुनाव पे, और इसीलिए राम जन्मभूमि है।
0: चक्रपाणि जी, कोई सवाल जो आपके मन में आ रहा हो?
5: देखिए, हमें लगता है विशेष रूप से हमें इस पे तर्क नहीं देना चाहिए कौन सही है, हमें देना चाहिए क्या सही है। आप जैसे बोल देते हैं कि नृपेंद्र मिश्रा भाई उन्होंने गोली चलवाई, तो नृपेंद्र मिश्रा को तो आपने ही ट्रस्ट में रखा ना, सरकार ने ही ट्रस्ट में रखा ना, तो इस बात को तो ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरे पे कभी भी हम आरोप लगा रहे हैं तो इस चीज को देखें, उसे पूरे देश के और विश्व के राम भक्त प्रभावित हुए कि जिसके गोली चलाई गई उसी को रख लिया गया, ट्रस्ट में जगह दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं मनहतात है। मेरा मानना है कि उसकी निष्पक्षता से कैसे जांच हो इस पे वो करिए, ताकि राम मंदिर कम से कम उसको विवादित ना किया जाए, उस स्थान पे भ्रष्टाचार के जो बार बार औरों को भी मौका मिल गया।
0: छोटा सा जवाब,
5: स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग आरोप लगाने लगे जो खुद ही सनातन के विरोधी हैं, तो ये मौका आपने दिया है, तो इसलिए हमें लगता है उसको तुरंत जितना हो सके हटाना चाहिए।
6: सबसे पहली बात, सम्मान है स्वामी जी का, लेकिन सरकार ने नृपेंद्र मिश्रा को ट्रस्ट में नहीं रखा है। ट्रस्ट एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो पब्लिक बॉडी नहीं है, मंदिर जो है उस ऑटोनोमस बॉडी के अंडर में आता है। दूसरी बात, नृपेंद्र मिश्रा ने गोलियां नहीं चलवाई, कौन सा अधिकारी गोली चलवाएगा भाई? जिस अधिकारी जिस नेतृत्व के अंदर में होगा, मुलायम सिंह यादव के अंदर में, उसके आदेश की पालना करना अधिकारी का काम है, ना कि उस पर गोलियां चलवाना। तो मुझे लगता है नृपेंद्र मिश्रा कंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष है, जैसे भुवनेश जी ने कहा गलत कहा था, वो ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष है। ये सारी जितनी नैरेटिव है सब और सब राम जन्मभूमि पे आके क्यों टिकती? कार्तिकेय दीपम में तो ये जस्टिस G.R. स्वामीनाथन के अगेंस्ट चले गए, वहां पे काले पट्टे बांध लेते, यही राम जन्मभूमि के दिन में अयोध्या का जजमेंट आया था, तब भी काले पट्टे बांध के सरकार के गए थे। मुझे लगता है हमें इनसे बचना चाहिए, ये सूडो सनातनी है, सूडो राम भक्त है, ना कि राम भक्त।
0: ठीक, अब 2 सवाल हैं। आप मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? अगर वाकई उनके कहे बिना नृपेंद्र मिश्रा ने किया था तो उसके खिलाफ एक्शन लेते वो, एक सेकंड, तो ये माना जाए ना कि उनकी सहमति थी गोली चलाने के लिए। दूसरा सवाल, आपने जो ये 2 करोड़ का नंबर कोट किया है, मैंने भी अपनी रिसर्च टीम को कहा, किससे बरामद हुए हैं 2 करोड़, कहाँ बरामद हुए हैं?
3: पहला विषय तो आपका नृपेंद्र मिश्रा को बताइए, आज सब लोग गूगल पे, अभी आपने भी सर्च रिसर्च करी है, आप लोग देखिएगा राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, अभी पता चल जाएगा कौन सच यहाँ पे बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, पहला विषय। दूसरा, हमारे जो साथी हैं विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने कहा आदेश देने का काम मुलायम सिंह जी का था, उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का काम करता। वीडियो सोशल मीडिया पे है नृपेंद्र मिश्रा जी का, मैं कहेंगे तो मैं भी दिखा दूंगा सोशल मीडिया के, मैं नृपेंद्र मिश्रा ने खुद कहा कि वो आदेश मेरा था, माननीय मुलायम सिंह जी का आदेश नहीं था, सोशल मीडिया पे तैर रहा है वो, ये छुपाओ नहीं कर पाता। ये इसीलिए तो मैं कहता हूं ये हर समय जुमलेबाजी नहीं चलती है, आजकल का जैन जी पढ़ा लिखा हुआ है। और तीसरा प्रश्न आपने मुझसे जो कहा है, मैं आपने कहा पैसों की पकड़ में, मैं कहना चाहता हूं ये सब आंकड़े सोशल मीडिया से जो चल रहे हैं, आप आज के जमाने में सब लोग जानते हैं, हम लोग मीडिया में सोशल मीडिया में पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, देखते हैं चीजें हैं गूगल से, सब
0: बच्चे पता नहीं है। नहीं नहीं, आपको पता नहीं?
3: नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं लाया, नहीं नहीं, हम लोग के स्टूडेंट हैं, हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते।
6: ये देखिए, अभी ने कहा गूगल खोल के देख लीजिए, मैंने गूगल खोल लिया, इनकी बात मानते, सम्मानित बड़े हैं, महंत नित्य गोपाल दास इज अ प्रेसिडेंट ऑफ राम जन्मभूमि ट्रस्ट, ना कि नृपेंद्र मिश्रा। अभी इनके कहने पे चलता, हम तो छोटे इनसे।
3: आप भी देख लीजिए,
0: कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन है, मैंने भी अनेकों बार उनके इंटरव्यू किए हैं, राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र थे। आइए अगले 2 जो कंटेस्ट, आइए अभय दुबे जी। अबे दुबे जी बीच बीच में ऐसे ऐसे कर रहे थे, हाँ कर रहे थे, तो लगता है कुछ फैक्ट्स लेकर आ जाओ अबे दुबे, आइए जल्दी से आइए। सूर्य मैथिल जी इस विषय पर दोनों के, सूर्य मैथिल जी आपसे शुरू कर रहे हैं, चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी, इस विषय पर बोलने का आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है।
7: धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और सभी को जय श्री राम। देखिए आज जो विषय चल रहा है, जो भी नैरेटिव चलाया जा रहा है, वो ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि राम मंदिर जो न्यास प्रशासन है वहां पर घोर करप्शन है। 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़ तक का आंकड़ा इन लोगों ने दिया, जिन लोगों ने कहा कि राम जी का तो अस्तित्व ही नहीं है, रामलला विराजमान तो कभी इस दुनिया में आए नहीं थे, और दूसरे वो थे जिन्होंने राम भक्तों के सरों में गोली मारी और उनको बांध बांध के सरयू जी में बहा दिया। मैं यहां पर दो चीजें रखना चाहता हूं। पहला, हमारे को और पूरे देश को और पूरे विश्व को विश्वास है श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर और श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर। और योगी आदित्यनाथ जी ने हुंकार भरी थी अयोध्या जी में खड़े होकर, उन्होंने कहा था कि यदि इस एसआईटी में कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, कोई भी जो है अपराधी बच के नहीं जाएगा। मैं दो तस्वीरें यहां दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर, ये तस्वीर सोशल मीडिया पे तैर रही है, यह है वो काग भुसंडी जी को जो चंपत राय जी को यह दी गई थी, चढ़ाया गया था भगवान श्री रामलला विराजमान के मंदिर में, और इसके लिए कहा गया कि ये काग भुसंडी जी तो अब बेच दिए गए, इनको गला दिया गया। मैं दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं, ये कार सेवकपुरम के अंदर वहीं पर इन काग भुसंडी जी की प्रतिमा की पूजा हो रही है। तो ये
0: समय समाप्त हो गया,
7: ये जो जांच,
0: ठीक है, इनका मेन आर्ग्यूमेंट है कि जो नैरेटिव है वो गलत है। अब इस विषय पर कि क्या चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी, आपका 90 सेकंड का समय शुरू होता है अभय जी। अब
8: सभ्यता की संहिता और रघुकुल के रत्न मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में नमन। राम लला हम आएंगे और चंदा हम ही चुराएंगे, बुनियादी रूप से ये नारा था इनका। इनका ये नकली राम दुलारे हैं, ये चंदा चुराने वाले हैं, लूट मचा दी देश में राम भक्त के भेष में। मुझे इस बात का दुख हुआ, बहुत न्याय की बात की और आज हमने रखा एक तर्क दिया कि क्या न्याय मिलेगा। आप जानते हैं उस एसआईटी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट किसको सौंपी? जो उस ट्रस्ट में व्यक्ति है, जिस ट्रस्ट पर आरोप है उसी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जांच सौंप दी। तो क्या जांच की निष्पक्षता बरकरार रहेगी, मैं पूछना चाहता हूं। ये प्रश्न आज का नहीं है, जब से राम मंदिर का आंदोलन चालू हुआ। जानते हैं क्या आरोप लगा? 700 करोड़ रुपए के स्कैम का आरोप लगा, और आरोप लगाने वाले कौन थे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1990 मार्च में इनको एक नोटिस दिया। नोटिस देने वाले ये इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया, विश्व बंधु गुप्ता जी ने इनको नोटिस दिया। क्या किया जानते हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, इन्होंने कहा कि हम आपकी सरकार गिरा देंगे अगर इस अधिकारी को आपने ट्रांसफर नहीं किया। उस अधिकारी का तमिलनाडु में ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस है, ये इनकी सच्चाई है। निर्मोही अखाड़े ने प्रधानमंत्री को 2015 में पत्र लिखा कि 1400 करोड़ रुपए का स्कैम इन लोगों ने किया है, 825% बढ़ा करके जमीन रामलला के नाम पर, राम मंदिर निर्माण के नाम पर बेची गई, जिन काग भुसंडी जी का जिक्र कर रहे थे। 3000 करोड़ रुपए नरेंद्र मिश्रा ने कहा है कि हमने एकत्रित किए निर्माण के लिए,
0: समय समाप्त हो,
8: और कम से कम 2000 करोड़ रुपए का ये स्कैम है। आगे डिबेट में मैं इस बात को दस्तावेजी प्रमाणों के साथ सिद्ध करूंगा।
0: ठीक है, बहुत अच्छा, दोनों ने मिडिल ऑर्डर ने जबरदस्त पारी खेली है। कोई प्रश्न?
9: मैं दोनों विद्वान पहले पूछूंगा वन लाइनर। हम लोग बात को बार बार जलेबी की तरह घुमा रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि पैसा बरामद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना, मैं ऑब्जेक्टिव सवाल है।
7: बिल्कुल,
9: और अगर होना चाहिए तो हंटर की चोट होना चाहिए, या पहले हम जर्मनी और लंदन से एक्सपर्ट बुलाएंगे तब करेंगे हम। हमें
7: देखिए, आप आदरणीय, मैं बहुत सम्मान करता हूं विक्रम सिंह जी का, और मेरा ऐसा मानना है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जैसा कि श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा, हुंकार भरी, और देश के करोड़ों राम भक्त यहां जितने भी बैठे हैं वो सभी, और जो देख रहे हैं वो सभी, वो भी चाहते हैं कि आखिर रामलला विराजमान के मंदिर में यदि किसी ने चोरी की है तो उसको उसका उस पाप का जो है पूरा का पूरा जो है सजा मिलनी चाहिए। लेकिन
0: सर, दूध का दूध पानी का पानी आप कह रहे हैं, डाउट तो ये ना कि दूध में पानी मिला हुआ है, अब कैसे पता चलेगा?
7: यही तो असलियत, मैंने आपको क्या दिखाया,
0: क्या दिखाया?
7: कि ये जो चीज है कि आप कह रहे हैं काग भुसंडी जी को चुरा लिया गया, वो वहां पर पूजे जा रहे हैं।
0: जो राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमिटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा कि वहां पर कोई सुरक्षा अपैरेटस वाज नॉट इन प्लेस। वो खुद कह रहे हैं कि फ्रिस्किंग नहीं हो रही थी। ट्रस्ट के लोग ऐसे घुसते हैं, ऐसे निकलते हैं, कोई उनकी चेकिंग नहीं करता, फ्रिस्किंग नहीं होती। साहब ये कौन सी व्यवस्था चल रही थी, किसके शह पे चल रही थी, कैसे ये आरोप लगा? ये राम मंदिर है जिसके लिए लोगों ने पैसा दिया, ये किसी के जेब से नहीं बना है, लोगों ने पैसा दिया है। इशू सीरियस है ना
7: अंजनी जी? बिल्कुल मैं सहमत हूँ, मैं भी इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। यदि वहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर है या वहां पर कोई फ्रिस्किंग हो रही है तो उसको सामने आना चाहिए। कितने का घपला हुआ, गबन हुआ, कौन जिम्मेदार है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आप सरकार की मंशा पे, आप एसआईटी की पवित्रता पे प्रश्न नहीं उठा सकते। वो लोग जो 22-22 वकील खड़े करके भगवान रामलला विराजमान के अस्तित्व को ही नकारते हो कोर्ट में खड़े होके, आज वो राम जो है राम नामी ओढ़कर आ गए क्योंकि 2027 में चुनाव है। अरे जब श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने हुंकार भर दी कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, घसीट के निकालेंगे, तो परेशानी क्या है? वेट कीजिए, इंतजार कीजिए।
0: अभय जी से किसी का सवाल है?
8: नहीं अंजना जी, हाँ। इन्होंने जो कहा ना, दूध चुरा कर सारा पी गए, पानी पानी बचा है, जांच कौन करेगा, जांच कौन कर रहा है?
7: अमेरिका से बुला लीजिए।
8: अब आप ये देखिए, मैंने आपको प्रमाण दिया,
7: बांग्लादेश से बुला लीजिए,
8: आपको प्रमाण दिया,
7: पाकिस्तान से बुला लीजिए।
8: अरे पाकिस्तान नहीं जाए तो पेट में दर्द होने लगता है, इनको तकलीफ ये है, मरोड़ उठते साहब इनके, पाकिस्तान के बगैर इनकी बात अधूरी होती है। मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के संदर्भ में सीधा सा प्रश्न किया, हम लोगों ने पूछा कि साहब ये बताइए, आपने उसी व्यक्ति को जांच के दस्तावेज सौंप दिए जिस पर आर चले नपेंद्र मिश्र, सरयू को रक्त रंजित करने वाला वो आदमी है, एक पॉडकास्ट में उसने स्वीकारा, चुप रहिए, एक पॉडकास्ट में उसने स्वीकारा कि मेरे आदेश से गोलियां चलाई गई, मुलायम सिंह को नहीं पता था, ये उसने एक पॉडकास्ट में स्वीकारा। दूसरी मेरी बड़ी बात, वो कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन है ना साहब, आरोप लग रहे हैं मीडिया में कि 40% कंस्ट्रक्शन में पे घूस खाई गई, तो क्या एसआईटी ने पूछताछ की नपेंद्र मिश्र से? आपको जानकर आप हतप्रभ रह जाएंगे, केंद्र सरकार के एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर उस ट्रस्ट में है, स्टेट गवर्नमेंट का एक सीनियर आईएएस ऑफिसर उस ट्रस्ट में है, किसी एसआईटी के मेंबर ने उनसे पूछताछ की? क्यों पूछताछ नहीं की? अरे अखंड पाप में डूबे हुए हैं ये। मुझे बताइए, इस नोटिस को देने वाले आदमी का, वो अमेरिका से पढ़ के आया था, उसका पूरा इंटरव्यू है, गूगल पे जाकर देखिएगा, विश्वबंधु उपाध्याय का, उसने कहा अमेरिका से पढ़ाई की कि ताकि मैं भारत को सुधार सकूं, और इन दुष्ट लोगों ने भगवान के चंदे में चोरी के नोटिस को मुझे प्रताड़ना का एक तरीका निकाल लिया, मुझे सस्पेंड तक इन लोगों ने कराया, आज तक भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जानते हैं कहां है 1400 करोड़ रुपए, किसी को नहीं पता है, राम आंदोलन से लेके राम मंदिर के निर्माण से लेके अब ये पाप कर रहे हैं। अरे इंडियन बुलियंस एसोसिएशन ने अपना स्टेटमेंट दिया, कहां है उनकी रसीद? अगर 200 किलो चांदी उन्होंने दी तो उनको रसीद तो देना चाहिए थी। काग भुसंडी देने वाली भारद्वाज वो मैडम कह रही है कि आज तक मुझे कोई रसीद, बार बार आग्रह करते रहे रसीद दीजिए, 3000 करोड़ रुपए नपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए हमको मिले, हमने 1500 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया, 1800 करोड़ रुपए उसमें लगेंगे, बाकी के पैसे कहां है, हिसाब कौन देगा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अगर आस्था पर आंच आएगी तो तुम कहते थे कि कोई अदालत फैसला नहीं कर सकती, जनता की अदालत ने फैसला किया, अयोध्या से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तुमको हरा दिया, रामेश्वर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तुमने हरा दिया, चित्रकूट से भगवान राम ने तुमको हरा दिया, शाखाटू श्याम से भगवान राम ने तुमको हरा दिया, तब भी नहीं समझे भगवान ने दंडित किया है, अब तुम लोगों की बारी है, जब तक इनको तुम दंडित नहीं करोगे इनके पाप नहीं मिटेंगे, इनको सलाखों के पीछे जब भी सत्ता परिवर्तित होगी, हम आश्वस्त करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रामलला के मंदिर के साथ न्याय होगा और ये सलाखों के पीछे।
0: मन में लग रहा है कोई सवाल,
4: मैं इन्होंने श्री मैथिल जी ने उपयोग किया एसआईटी के लिए पवित्रता शब्द का, कि एसआईटी की पवित्रता पर प्रश्न ना करें, कृपया पवित्रता वर्ड की पवित्रता रहने दें, एसआईटी से ना जोड़ें। और दुबे जी मैं ये कहना चाहूंगा, आपने वीवी गुप्ता वाला, बहुत विश्वबंधु गुप्ता वाला मामला उठाया, उसके बाद आपकी भी सरकार 15 साल रही, उसकी सुन लेते एक बार, उसकी क्यों नहीं सुनी गई?
8: उसका पूरा इंटरव्यू देखिएगा, मैं बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं सुनिए, फिर उत्तर दे रहा हूँ ना, उत्तर तो दे लेने दीजिए मुझे, सवालों से तलाशी लीजिएगा मेरे उत्तर आ जाने के बाद। उसने इस बात को स्वीकारा कि उसके बाद सरकारों ने मुझे रिस्टेट किया मेरे साथ, ने पूरा इंटरव्यू तफसील से देखिएगा। हाँ, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि इस पर हमने एक्शन नहीं लिया, हमें लेना चाहिए था, हमको ये, हमको इस बात का आभास था कि ये फिर हमें रामद्रोही कहने लगेंगे। हम तो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ अपने सत्ता को तजने वाले लोग हैं और ये सत्ता की भूख मिटाते मर्यादा पुरुषोत्तम राम को धोखा देकर।
0: आप यहाँ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, फटाफट जल्दी जल्दी।
10: तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या बीजेपी वही पारदर्शिता और जवाबदेही इस मामले में लागू करेगी जिसकी वो विपक्ष से मांग करती है? और अगर हाँ, तो क्या हम ये मान लें ऑडिट रिपोर्ट्स और इस केस की जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो आप सार्वजनिक करेंगे?
11: ठीक। कब तक हिंदू पक्ष और विपक्ष के झूले पे झूलता रहेगा? क्यों ना राम मंदिर, आज राम मंदिर का कंट्रोल सरकार के हाथ में क्यों है? क्यों ना एक बोर्ड बनाकर, हिंदू बोर्ड बनाकर राम मंदिर का कंट्रोल हिंदू बोर्ड के नाम क्यों नहीं कर दिया जाता है?
0: नीले हिस्से से को
12: सर, मेरा आपसे सवाल है कि आज के टाइम पे रूलिंग पार्टी भी बीजेपी है और यूपी में भी बीजेपी है, तो राम मंदिर में चोरी हुई क्यों?
0: बहुत अच्छा सवाल, इसका जवाब दीजिए, उसके बाद से जनता को आपसे शुरू करते हैं, छोटा सा जवाब।
7: देखिए, सबसे पहले तो जो पूछा गया कि क्या एसआईटी की जो रिपोर्ट होगी उसको सार्वजनिक किया जाएगा, बिल्कुल। देखिए, हमें, हम सबको श्रद्धेय या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जांच के ऊपर बिल्कुल भी शक और शुबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सनातन के लिए जीते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, हर जिले से माफिया को खत्म करके जिस प्रकार का कार्य उन्होंने पूरे विश्व में बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी ये काम हो सकता है, तो वो अपराधियों को जरूर पकड़ेंगे। दूसरी चीज जो अभी आपने बोला,
0: चोरी हुई कैसे,
7: जी मैं उसी की बात करना चाहता हूँ कि देखिए, जो मंदिर ट्रस्ट है वो सरकार के अधीन नहीं है, पहली चीज, इस चीज को समझना पड़ेगा। वहां का जो न्यास है, उस न्यास के प्रशासनिक फेलियर में यदि कहीं कोई लूपोल है, उसी को जांचने के लिए पीएमओ ने भी इन्वेस्टिगेशन करवाई है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इन्वेस्टिगेशन कराई है। 150 पन्नों की जो बनी है प्रिलिम्स की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, 150 लोगों से वेरीफाई किया गया, 40 लोगों को शक के घेरे में रखा गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको इंगित किया गया,
8: ये सब आपको
7: और
8: कैसे
7: साथ ही
8: पता
7: साथ
8: है?
7: जो
8: आपको
7: 2 करोड़ रुपए को, 10 लाख रुपए को 2 करोड़ रुपए बना रहे हैं, उन लोगों को जवाब देने के लिए वो रिपोर्ट सामने आएगी, आप इंतजार।
0: छोटा सा,
8: मैं तो हतप्रभ हूं साहब, अभी तो कह रहे थे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, उसके इंटरनल इश्यूज कैसे पता इनको?
7: आएगी, सामने
8: इसका
7: आएगी,
8: अर्थ है कि वो संदेह के घेरे में हैं। इसका अर्थ है कि इन लोगों ने अपने दफ्तर में वो रिपोर्ट तैयार की है। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ पाप पर पर्दा डालने के लिए काम हुआ है। जो राम भक्त होगा, जो सच्चा राम भक्त होगा, इन 4 लाइनों में मेरे साथ, मैं तो आपके तरह बहुत अच्छा अच्छा नहीं गाता हूं, बच्चों को मैंने सुना भी बाहर बैठकर, बहुत खूबसूरत गा रहे थे, तो कम से कम ताली बजा दीजिएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना गुन का, चंप चंदा खाएगा। जो लोभ जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। राम नाम का दे के धोखा, सत्ता को हथियाएगा। दिया राम का चरण पद दूका, चंपत चट कर जाएगा। राम राम चंद्र कहे सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी दंडित करेंगे इनको,
7: हम
8: आश्वस्त हैं पूरी तरह।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। वो पूछे
5: सूर्या जी से, मेरा देखिए प्रश्न है कि बार बार आप प्रधानमंत्री मोदी जी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ले रहे हैं। देखिए, उनका तो प्रश्न ही नहीं है, उनपे तो हम लोग तो प्रश्न उठा ही नहीं सकते, और उठा ही नहीं रहे, विश्वास है तभी तो प्रदेश में और केंद्र में सरकार है। सवाल इस बात का है कि जो वो हमारी आस्था के केंद्र मंदिर में अनियमितता हो रही है, उसकी बात हो रही है। कांग्रेस हमारे प्रवक्ता हैं अभय दुबे जी, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, राम पे कितना अच्छा भी, राम पे वो भी सुना दिया, लेकिन ये बताइए कि राहुल गांधी जी राम मंदिर कब जाएंगे? और ये भी जाते, एक मिनट, और आप जो है, आप ही की सरकार ने भगवान राम को काल्पनिक कहा था, वो सेतु विषय में कोर्ट में एफिडेविट दिया था आज... तो उस एक मिनट दुबे जी, तो उसपे आखिर अगर जो आपका हृदय परिवर्तन हो गया, कई बार हो जाता है हृदय परिवर्तन, स्वाभाविक है, हो सकता है नृपेंद्र मिश्रा का भी हो गया हो, पहले गोली चलाए हो आज हो गया हो, लेकिन बात कर रहा हूं, तो हो सकता है आपकी भी कांग्रेस की हृदय परिवर्तन हो गया हो, तो उसपे एक एफिडेविट देके माफी मांग लीजिए, हिंदू समाज शायद माफ कर देगा। तो ये मेरा वो था।
0: चलिए दोनों दो दो लाइन का जवाब,
8: बिल्कुल दो लाइन का जवाब दूंगा। देखिए ये एक दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया कि हम लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संदर्भ में, हमने नहीं, जिस अधिकारी ने दिया था हमने उसको तत्काल हटा दिया। आप जानते हैं वो राम सेतु परियोजना जिसके लिए एफिडेविट दिया था, आप तो जैनजी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए अन्ना दुराई के जन्मदिन पर तमिलनाडु और उन्होंने कहा कि मैं अन्ना का स्वप्न साकार करने आया हूं, इस राम सेतु को तोड़ने का संकल्प लेता हूं। और सेतु समुद्रम परियोजना उन्होंने प्रारंभ की, नीरी से उसकी जांच कराई, नीरी ने कहा कि बहुत बड़ी थोरियम की यहां पर लेयर है, इसको मत डिस्टर्ब कीजिए। तो उस समय अरुण जेटली जी गए नीरी के पास, उसको मॉडिफाई करा के लाए। ये बेसिकली राम तोड़ सेतु तोड़ने का प्रोजेक्ट इनका था। आस्था के साथ ये कुठाराघात करते, हम तो वचन की मर्यादा की रक्षा सत्ता का, जैसे मैंने कहा, भोग नहीं करते, त्याग करने वाले लोग। राहुल गांधी जी सच्चे अनुयायी है। राम मंदिर का प्रश्न पूछा, क्या जवाब देते मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अगर वो पूछ लेते कि मेरे काक कुशुंडी कहां है, तो क्या कहते, बेच दिया इन चोरों ने? क्या जवाब देते रत्नचणी शिलाओं का कि वो रत्नचणी शिलाएं कहां है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्या जवाब देते? उनके चोरों ने उनका पूजन हो रहा है भाई, ये झूठी तस्वीर उठाकर
7: कांचीपुरम में पूजा,
8: आज भी
7: काक कुशुंडी जी के पूजन हो रहा है,
8: इनको महंगा पड़ेगा। आप इसीलिए तो उन्होंने दंडित किया, नहीं तो दंडित नहीं करते अयोध्या में।
0: इसकी वजह से राहुल जी नहीं जा रहे हैं।
8: मैंने कहा क्या जवाब देते हैं?
0: अब आपके पास मौका है, आप में से कोई ऐसा हो जो गमछा अपना रंग बदलना चाहता हो तो आप दूसरा गमछा लेकर वापस अपनी जगह पर बैठ जाइए पहन और अच्छे से लपेट लिए। जाकर बदल लीजिए। हाँ, यू भी जा रहा उधर। वहीं बैठ जाइए। कितने बच्चों ने लाल गमछा लिया बदल कर? 1, 2, 3, 4, 5 कितनों ने लिया नीला गमछा बदलकर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो अभी तो भारी चल रही है जोशी जी की टीम। ठीक है, अब अपने आखिरी दो जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको यहाँ पर स्वागत करते हैं, महंत नवल किशोर दास जी महाराज और साध्वी विश्वरूपा जी। भाव से 3-4 लाल ले जा रही हो तुम? अच्छा, अब लग रहा है कि मामला बराबर हो गया दुबे जी। महंत नवल किशोर दास जी, इस विषय पर कि क्या चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी, आपका समय 90 सेकंड का शुरू होता है अब।
13: जय श्री राम, भारत माता की
14: जय।
13: सुन सुरेश रघुवीर सुवाऊ, निज अपराध रिसायन काहू, जो अपराध भगत कर करहीं, राम रोस पावक सो जरहीं। भगवान श्री राघवेंद्र का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने के लिए विश्वहिंदु परिषद के कार्यकर्ताओं ने और सभी संतों ने गांव-गांव जाकर के समाज को चेतना प्रदान की। 500 वर्ष का कलंकित ढांचा समाप्त करने के बाद भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। वो केवल एक पत्थर का मंदिर नहीं, हमारा आस्था का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। भगवान श्री राम के लिए कहा, राम राज बैठे उतर लोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। निसंदेह हम परेशान जरूर हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में जिन दुष्टों ने इस प्रकार का कुकृत किया है उन्हें कठोर से कठोर दंड मिलना ही चाहिए। पहली मांग हमारी यह है और हमें विश्वास है विश्वास है उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी पर, क्योंकि योगी जी अकेले नहीं, उनके गुरु पूज्यपाद महंत अवैधनाथ जी महाराज, उनके गुरु महंतपुरी विजयनाथ जी महाराज, तीन तीन उन पीढ़ियों ने गोरखनाथ की परंपरा की तीन पीढ़ियों ने अपना सर्वस्व नौछार कर दिया राम मंदिर के लिए। मुझे विश्वास है जब तक योगी लखनऊ में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, एक भी रामद्रोही बच नहीं पाएगा। एक एक आने का हिसाब लिया जाएगा, चाहे वो कोई बना रहे, चाहे ट्रस्ट का सदस्य हो, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हो, किसी को बख्शा नहीं बख्शा जाएगा।
0: बहुत अच्छा।
13: कठोर दंड मिलेगा उनको।
0: अच्छा, नीले गमछे वाले जो योगी जी की लाइन पर ताली बजा रहे थे, तो आपको क्या लगता है निष्पक्ष जांच होगी?
15: जय जय श्री राम।
0: 90 सेकंड शुरू होता है अब।
15: राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। देखिए, इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया हमारे मंदिर ट्रस्ट वालों ने, बहुत ही सीरियसली ले लिया है। और मैं तो लूट नहीं, डाका कह रही हूँ, डाका। ये कोई, मैं कह रही हूँ, आरोप कोई भी लगाए, प्रत्यारोप कोई भी लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसने गोली चलवाई, कौन आरोप लगा रहा है, कौन राम को मानता है, कौन नहीं मानता है। बात है आरोप क्या है, आरोप किस बात पर लगाया गया है, और उसकी जांच हो रही है, बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। देखिए, छोटी छोटी बातों को यहां ध्यान रखिएगा। दान पात्र की चाबी किसके पास थी? रमाशंकर यादव टिन्नू के पास। टिन्नू कौन है, इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। निश्चित कहां गोबर में पैसे मिल रहे हैं, छुपाए गए हैं, ये बात है। और ये चोरी डकैती से भी ऊपर बात है, करोड़ों करोड़ों जो राम भक्त है उनकी आस्था की चोरी है, उनके विश्वास की चोरी है, इसीलिए आज हम सब यहाँ खड़े हैं। तो निश्चित रूप से जो भी जांच होगी निष्पक्ष होगी, परंतु साथ ही साथ मैं ये बात कहना चाहूंगी, जांच में कुछ खास नहीं मिलने वाला। जो इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, उन्होंने बहुत कुछ ठिकाने लगा दिया है, निश्चित रूप से ठिकाने लगा दिया है। छोटी छोटी चीजें पकड़ में आ रही है और यही पकड़ में आएंगी, क्योंकि इतना बड़ा कार्य करने से पहले देखिए, सभी इतना बड़ा प्रबंधन है, इतना बड़ा पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है राम मंदिर, और वहां पर सीसीटीवी कैमरे खराब हो जाते हैं, वहां पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, ये सोचने का विषय है, ये कोई जानबूझकर नहीं हुआ।
0: समय समाप्त हुआ, बहुत अच्छा। दोनों क्लोजिंग बैट्समैन ने भी एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी अपनी बात कही, आप दोनों का धन्यवाद। अच्छा, सवाल है
13: मैं
16: हमारे पूज्य नवल किशोर दास जी महामंडलेश्वर जी से। देखिए, बालकांड में लिखा है कि जहां जब यज्ञ योगमुनि कर रही तहां मारच सुबाह, देखत यज्ञ निशाचर धावे करहि उपद्रव मुनि दुख पावे। जहां जहां हवन यज्ञ अनुष्ठान होता था, विश्वामित्र मुनि करते थे तो विघ्न डालने के लिए आ जाते थे। तो क्या ऐसा तो नहीं कि उसी तरह विघ्न डालने का प्रयास किया गया आस्था पे? ये आपकी बात बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई भी हो दंड मिलेगा, अब मिलना चाहिए, और हर व्यक्ति। और एक बात और कहना चाहता हूं, यहां कोई सनातन और गैर सनातनी की लड़ाई नहीं, यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, और सब हर व्यक्ति चाहेगा कि कोई भी, यहाँ पे हर व्यक्ति हिंदू है, हर सनातनी है, हर राष्ट्रभक्ति है, तो यह विचार की बात है। तो क्या उस पे कार्रवाई कैसे हो कि जल्दी त्वरित रूप से वो हो?
13: एक तो निवेदन ये कर रहा हूँ बड़ा स्पष्ट रूप से कि हमें योगी जी पर पूरा विश्वास होना चाहिए, योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और वहां तुरंत उसका करते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग आपत्ति लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो थाने नहीं जा सकते थे क्या? FIR क्यों नहीं करे उन्होंने?
0: चलिए, जल्दी से अपनी जगह पर आ जाइए। आइए, पहले दो कंटेस्टेंट्स जो है रिबटल राउंड जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, और अमितोष पारिक जी और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी। अमितोष पारिक जी, अब आपको सिर्फ 60 सेकंड मिलेंगे, तो जो जो बोलना है उसमें बोलिएगा, और जैसे ही इशारा करें रुक जाइएगा। आपका 60 सेकंड का रिबटल, जिसमें बच्चों ने जो सवाल उठाए हैं या अपने अपने ऑपोजिट साइड से सुना, उस पर आपका समय शुरू होता है अब।
6: देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ना मैं गाना गा सकता उन लोगों के जैसे, और ना ही मैं यहाँ पर एक विरोधी राम विरोधी बनके राम भक्त बन सकता। फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करते हैं, दो स्पेशल बात है, वो ये है कि सबसे पहले जब राम जन्मभूमि का आदेश हुआ था लॉ खोलने का, उस जज का नाम था जस्टिस कुमार कृष्ण मोहन पांडे। उसका समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को लिख के कहा कि इनने जो जजमेंट दिया है ये लॉ एंड ऑर्डर के विरोध है, इनका प्रमोशन रोक दिया जाए। आज वो राम जन्मभूमि के लिए आपके सामने खड़े होकर राम भक्त बन रहे, जिससे उस जजमेंट को रोक दिया गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, हबीबुल्ला जो जम्मू कश्मीर कैडर के IAS हुए, उन्होंने किताब लिखी माय डेज केस विद राजीव गांधी ट्रिम्फ एंड ट्रेजेडी, उसके अंदर में लिखा गया कि मुझे पता ही नहीं था राजीव गांधी को कि कब तो ताला खुल गया और कब ताला बंद हो गया, उनको जजमेंट के बारे में कोई नहीं पता था। जिस तरह से इनको ये पता है कि नृपेंद्र मिश्रा को पता ही, मुलायम सिंह यादव को पता ही नहीं था कि कब गोलियां चल गई, उसी प्रकार से कांग्रेस को भी नहीं पता था। इन्होंने राम को मिथ कहा, एफिडेविट दिया, इन्होंने राम को माइथोलॉजिकल कहा यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर, और आज राम जन्मभूमि के ऊपर में सिर्फ एलिगेशन के आधार पर अपना एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप पर प्रश्न है, ये मेरे पे प्रश्न है, ये राम जन्मभूमि पे प्रश्न है। सत्य के आधार पर 500 वर्ष बाद राम जन्मभूमि जीती थी और सत्य
0: समय
6: के आधार पर
0: समय समाप्त हुआ। चलिए अब आपका भुवन जोशी जी,
3: देखिए देश
0: सवाल रह गया है सर, 2 करोड़ कहां मिला?
3: जी जी,
0: 2 करोड़ आपका 60 सेकंड का रिबटल राउंड, रिबटल राउंड शुरू होता है।
3: अंजना जी, मैं उस लाइन को भी पढ़ देता हूं जो आपने कहा कि 2 करोड़ रुपए की बरामदी हुई है, और मैं आपको बताना चाहता हूं किन किन लवकुश अवनीश अनुकल्प करुणा।
6: उत्तर प्रदेश सरकार का प्रेस नोट है क्या, एसआईटी रिपोर्ट का प्रेस वक्तव्य है क्या, या आपके द्वारा लिखा गया चैट जीपीटी है? पहले तो ये सबको बता दो, उत्तर प्रदेश सरकार का वक्तव्य है क्या?
0: अब लेट हिम स्पीक प्लीज।
3: क्योंकि दिक्कत यहाँ पर है, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, दाल पूरी काली हो चुकी है, और जो लोग चंदे पे धंधा करते हो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने, बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं, उनसे हम राम के मंदिर की रक्षा की क्या आशा कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से क्या इन्होंने बीफ कंपनियों से चंदा नहीं लिया? देश जानता है गाय के नाम पर राजनीति करने वाले लोग। और मैं आपसे बोला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या था, यही तो था कि जिनसे आपने चंदा लिया उनको धंधा देने का काम करा।
0: समाप्त हो गया, ताली बजा दीजिए, अब दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। अब क्या सवाल जवाब कीजिएगा, अब तो है जो है सब अपना अपना लाइन में बैठे, अपनी अपनी बात बोल रहे हैं सब, जिसको जो बोलना है। सूर्या मैथिल जी, अभय दुबे जी, आइए रिबटल राउंड में आप दोनों को एक बार फिर 1-1 मिनट का समय मिलेगा जिसमें आपको अपनी बात रखनी है। दुबे जी पहुंच जाए यहां और आपका इस विषय पर बोलने का। सूर्या मैथिल जी, 7 सेकंड का समय शुरू होता है अब।
7: रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। ये देखिए, अभी राम जी के नाम पे चौपाइयां सुना रहे थे, अभी कह रहे थे कि हम तो राम जी को मानते हैं, रोज पूजते हैं। यही वो लोग हैं, प्रियंका वाड्रा जी की तस्वीर जो है वो दुनिया ने देखी, पूरे इंडिया गठबंधन की तस्वीर दुनिया ने देखी, जब एक हाईकोर्ट के जज ने ऑर्डर कर दिया कार्तिक दीपम जलेगा, उसके खिलाफ महाभियोग संसद में लाने के लिए ये सब लोग इकट्ठे खड़े हो गए। मतलब सनातन को डेंगू मलेरिया एचआईवी कहने वाले लोग आज यहां खड़े होकर रामलला विराजमान के मंदिर में यदि कोई घोपला घोटाला हुआ उसकी जांच चल रही है, उस जांच में प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, यहां पर बहुत बार बात हो रही थी कि आपका नृपेंद्र मिश्रा जी वाली बात, यहां हमारे डीजीपी साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे प्रत्यक्षम किन प्रमाणस्थि सामने बैठे हैं, अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश को लीड किया है, उनसे पूछिए ना, उनसे ये सब प्रश्न होना चाहिए कि क्या कोई अधिकारी अपनी मर्जी से बिगर सरकार के आदेश पर गोली चलवा सकता है क्या?
0: सारा कैमरा, अब सारा कैमरा विक्रम सिंह साहब पर फोकस कर दीजिए।
9: आपने जो कानून का सवाल किया है, मैं काश मैं राजनेता होता तो जलेबी की तरह घुमा के वो जवाब देता, और जवाब आता ही नहीं आपके पास। लेकिन आपने स्पष्ट सवाल का स्पष्ट उत्तर ये है कि जो वहां सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है, चाहे हेड कांस्टेबल हो या थाना अध्यक्ष हो, देखता है कि अगर किसी अपनी किसी और की जान माल बचाने के लिए बल प्रयोग है तो न्यूनतम बल प्रयोग धारा 34 से लेकर 44 भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप मिनिमम न्यूनतम बल प्रयोग, वो नीचे का अधिकारी होता है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, न डीजीपी से, न होम सेक्रेटरी से, न किसी से।
7: लेकिन सर, गोली चलवाने के लिए, सैकड़ों राम भक्तों की हत्या करवाने के लिए तो आपको आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से लेना पड़ेगा ना, कि आप सबसे ज्यादा बल प्रयोग एक्सीड बल प्रयोग कर रहे हैं, सरों में गोली मार रहे हैं, तो आपको ऑर्डर तो लेना पड़ेगा सर।
9: देखिए, पुलिस वैक्यूम में काम नहीं करती है, और जंजीरा सुन लो, आप लोग भी आईपीएस हो गए, आप एक इकोसिस्टम में काम करेंगे, और इकोसिस्टम की लगाम किसके पास है? मुख्यमंत्री की।
0: अभय जी, आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है।
17: स्वामी जी महाराज ने जिक्र किया कि राक्षसों का मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो सुबाहु और मारीच का मारीच को 400 कोस दूर फेंक दिया था और सुबाहु का वध किया क्योंकि वो हवन में विघ्न डाल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वही है, इनकी लंका लगनी चाहिए, और जब लंका लगाएंगे तो हनुमान जी से पूछेंगे हम कि लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, बोले कपि ही ये राघव आगे। वो कहते कि भगवान राम मेरे हृदय में, बोले कपि ही ये राघव आगे, पीछे है पूछ रहस्य है बारी, राम हनुमान को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। तो भगवान राम के कारण सत्ता अर्जित किए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसा दंडित करेंगे कि ये फिर 60 और 70 वर्ष के लिए दरकिनार कर दिए जाएंगे। क्यों क्यों नहीं शंका करें? ये कहते हैं कि योगी जी पर और मोदी जी पर क्यों नहीं शक करें साहब? आपकी सत्ता की सरपरस्ती में ये लूट चली। हमने कहा कि जो रजिस्ट्री हुई 2 मिनट में 18-18, 20-20 करोड़ रुपए कमाए, कोई जांच कराई क्या? आदित्यनाथ जी ने सारे पाप पर पर्दा डाला। 2 सीनियर ऑफिसर से, एक मोदी सरकार के अधीन, एक योगी जी के अधीन, उनकी जाँच क्यों नहीं होनी चाहिए साहब?
0: दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए स्वामी जी, जल्दी से। महंत जी, आपका समय 60 सेकंड का शुरू।
18: नहीं, मैंने तो पहले निवेदन कर दिया इस बात का कि जिन लोगों ने किया है वो अपराधी हैं, घोर अपराधी हैं। और फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पर हमें पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा धैर्य रखिए और हम सबको धैर्य, इतना तो समय देना पड़ेगा कि कम से कम उसकी रिपोर्ट पूरी आ जाए। और पूरा रिपोर्ट आएगा और किसी प्रकार का रिपोर्ट में गड़बड़ होगा तो हम लोग कहां गए? राम मंदिर बनवाने के लिए घर घर गली गली हम जा सकते हैं, तो राम मंदिर में बिघिन डालने वालों के लिए भी हम समाज में खींच कर ला सकते हैं। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी हद को पार करना पड़े, हम करेंगे। पर राम की अस्मिता पर और राम की मर्यादा पर कोई अंगुली उठाएगा, कोई वहां पाप कर्म करेगा, उसे नहीं करने देंगे। देश का एक भी साधु अखाड़े का जीवित है तब तक किसी भी सनातन विरोधी को चैन से नहीं सोने देगा, चाहे कोई बना रहे। यदि गलत हुआ है तो गलत करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड मिलना ही चाहिए। नहीं प्रशासन देगा तो हमारे अखाड़े के नागा सड़क पर उतर करके ऐसे राम अपराधियों को हम दंडित करने का प्रयास करेंगे, कानून के दायरे में रह करके।
15: हमारे धर्म की
0: मैम, आपका समय लगा दो, आपका 7 सेकंड का समय शुरू होता है।
15: देखिए, हमारे सनातन धर्म की बहुत अच्छी खूबसूरती है, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, कितना भी बड़ा पंडित हो, अगर वो कुकर्म करता है, कोई गलत कार्य करता, तो उसे आज भी रावण नाम से जलाया जाता है। तो निश्चित रूप में जो मंदिर में है, मंदिर में जो आस्था मीन्स सीता का जो हरण हुआ है, जो चीर हरण इन लोगों ने कर दिया है, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगी। और कमेटी पर इसलिए सवाल है, कमेटी पर इसलिए सवाल उठाए गए, जिम्मेदारी कोई ना कोई तो लेगा ही। अगर वहां प्रबंधक जो कमेटी है उसे आगे आना चाहिए था, कमेटी को भंग कर देना चाहिए था, क्योंकि कोई छोटा मामला नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे चंपत राय जी को आगे आना चाहिए था और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। तब से ये लोग कह रहे हैं कि FIR क्यों नहीं कराई, कौन कराएगा? अरे कमेटी आगे आती और वो निष्पक्ष जांच कराती, वो FIR कराती, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम इसका आ सकता था।
0: और हमारे तमाम दर्शक जो घर पर मौजूद हैं, आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर आज तक पर आपको जो QR कोड दिख रहा है उसको स्कैन करके आप अपना वोट इस विषय पर डाल सकते हैं। चढ़ावा चंपत मामले में क्या निष्पक्ष जांच होगी? अगर आप मानते हैं कि हाँ, योगी आदित्यनाथ की SIT जो उन्होंने गठित की है वो निष्पक्ष जांच करेगी, तो हाँ पर वोट डालिए। अगर आप मानते हैं कि नहीं होगी तो नहीं पर, और कह नहीं सकते वालों को तो आजादी है। इस बीच तीनों जजेस आपस में बात करके ये तय कर सकते हैं कि आज का बहसबाजी कर कौन बनेगा। तो चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी, अगर आप मानते हैं हां तो हां पर वोट कीजिए। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT गठित की है, अगर आप मानते हैं कि SIT निष्पक्ष जांच नहीं करेगी तो नहीं पर, और कह नहीं सकते वाले कह नहीं सकते पर क्लिक कर सकते हैं। आपको 60 सेकंड मिलेंगे वोटिंग के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। समझकर अपना वोट डालिएगा, इसी से तय होगा कि आज के इस मोशन में जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं उनमें से कितने लोगों को इस बात पर भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो टीम है वो निष्पक्ष जांच करेगी। और मामला एकदम ही एक तरफा होता हुआ दिख रहा है, जिसमें नहीं कहने वाले 53% है आखिरी के 35 सेकंड, 54% और 34% सिर्फ हाँ कह रहे हैं, जबकि कह नहीं सकते वाले 13%। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, 13% यहाँ पर, हालांकि गमछे वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिख रहे सफेद गमछे वाला, चले इधर भी है, लेकिन 12% लोग कह रहे हैं, 13% की कह नहीं सकते, 34%। और फिलहाल टीम विपक्ष इसमें जीतती हुई दिखाई दे रही, जिसका साफ साफ ये मानना है कि चढ़ावा चंपत मामले में निष्पक्ष जांच होगी। समय समाप्त हुआ, 53% के साथ धूमन जोशी की टीम, अभय दुबे जी की टीम और साध्वी विश्वरूपा जी की टीम जीत गई है, जिसमें जनता ने ये कहा है, यहां पर मौजूद लोगों ने, कि चढ़ावा चंपत मामले में उनको नहीं लग रहा है कि निष्पक्ष जांच होगी। हमें बताएंगे स्वामी चक्रपाणी जी की आज का विजेता कौन है।
19: सभी ने अच्छे अच्छे विचार दिए, लेकिन हम तीनों ने निर्णय लिया, इसमें दो लोग जो हम लोगों ने दो लोगों का नाम डिसाइड किया, जो पक्ष और विपक्ष से अच्छे रूप में उन्होंने अपनी बात रखी है, तो और इस शर्त पे कि पूज्य नवल किशोरदास जी, महामंडलेश्वर जी निश्चित रूप से सजा दिलवाने के लिए आगे रहेंगे, जांच के लिए आगे रहेंगे, इसलिए प्रथम वक्ता हमारे महामंडलेश्वर नवल किशोरदास जी को
0: बहुत बहुत,
19: और दूसरी उसी तरह आवाज उठाती रहेंगी दूसरे जगह दूसरे नंबर पे विश्वरूपा जी को मैं वक्ता करूंगा।
0: बहुत अच्छा,
19: एक पक्ष और विपक्ष दोनों को,
0: आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बहसबाजी घर में जुड़ने के लिए। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात, देखते रहिए आज तक।
20: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
21: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet matched every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
22: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
23: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
24: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
25: Jack, come home. It's supper time.
24: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
26: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
24: Jack FM, playing what we want.
27: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
28: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
27: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
29: मैं करता हूँ ना,
30: मैं करूँगा।
31: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
29: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
31: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टेज, डाइनिंग एंड मच मोर।
29: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
31: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
4: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
3: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
5: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं, तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
6: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
7: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
8: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
9: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
10: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
9: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
2: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
1: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू? विमल, बोलो जुबा केसरी।
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: जो मुख्य गुनहगार है वो तो बाहर है, वो आप भी उस ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं ना। चोरी का पैसा वो आप मंदिर में चोरी करते हो, हिंदुत्ववादी लोग हैं आप, अपने आप को मानते हो। आप मंदिर की दानपेटी चुराते हो, लाखों करोड़ रुपया चुराते हो, वो पैसा राजनीति में आता है और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो, पार्टियां तोड़ते हो। वही राम मंदिर के 2000 करोड़ आप लोगों ने जो चोरी की है, उसी पैसे से आपने आपके सांसद तोड़े, तृणमूल के सांसद तोड़े, विधायक तोड़े, शिवसेना के जो 6 सांसद तोड़े, वो राम मंदिर का ही लूटा हुआ पैसा है।
4: उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो कहावत है उसी तरह संजय राउत जी का बर्ताव है। मैं हर बार बोलता हूँ उनको पागलपन के दौरे आ रहे हैं और उसी का ये नतीजा है इसी तरह की बातें करना। राम मंदिर और उनकी तिजोरी, जो कुछ पैसा है उसके बारे में SIT लगाया है। अगर ये पैसा चोरी करने का था, रहता मन में था, तो उनके ऊपर SIT नहीं लगता था। वो जिन्होंने चोरी की है उनको पकड़ रहे हैं। ये सिर्फ पागलपन के दौरे के वजह से इसी तरह की बातें संजय राउत कर रहे हैं। मुंबई महापालिका को लूटने का काम संजय राउत और UBT ने किया है और मुंबई के सिवा उनके ध्यान किधर भी नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं। उनकी पार्टी अब खत्म हो रही है, उनको छोड़ के जा रही है, कांग्रेस में विलीन होने की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, शरद पवार जी ने आत्मसम्मान के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की निर्मिति की, उनको बोल रहे कांग्रेस में विलीन हो, इसीलिए संजय राउत ने कितना पैसा लिया है, कितनी पैसे की सुपारी ली है, मैं उनके जाहिर ये प्रश्न पूछता हूं, राहुल गांधी ने आपको कितने पैसे दिए? जो शरद पवार जी के जो 8 सांसद है उनमें कांग्रेस में जोड़ने की आप लोग आप विनंती कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, इसके लिए आपको कितना पैसा दिया?
5: जो आशंका थी अंततो गत्वा वही हुआ और जिन लोगों का नाम FIR में आया है ये सारे के सारे सपाई हैं। टीनू यादव का गैंग है जो अखिलेश यादव से

0: लेकिन शायद अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। बात होगी पाक फौज के पूर्व अधिकारी से, जो बता रहे हैं कि कैसे मुनीर और उसकी फौज के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और कैसे अपनी हत्या की झूठी खबर फैलवा रहा है जनरल मुनीर। क्यों पाकिस्तान बोल रहा है कि मोसाद की हिट लिस्ट में आसिम मुनीर का नाम था, लेकिन सवाल है कि उससे क्या फायदा है पाकिस्तान। इस शो में हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे रेजीम चेंज करने चले थे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में, लेकिन उसका असर अमेरिका पर हो रहा है, कैसे दो फाड़ में बट गया है अमेरिका और क्यों अपने ही नेताओं के बीच ट्रंप हो गए हैं बेगाने। दिखाएंगे ये भी कि कैसे अमेरिका के पीछे हटने के बाद भी इसराइल लगातार ईरान के प्रॉक्सी संगठनों पर हमलावर है और कह रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ईरान की कुद्स फोर्स इसराइल को हार की धमकी दे रही है, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो रुकने वाले नहीं हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी वॉर ब्रेकिंग, फिर देखिए हमारी रिपोर्ट।
1: इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा युद्ध शुरू हो चुका है। आरोप है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कार्गो शिप पर ड्रोन हमला किया है। ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ड्रोन और राडार ठिकानों पर हमले किए। एक और बड़ी खबर बहरीन से है। ईरान ने शनिवार सुबह बहरीन पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के मुताबिक ये अमेरिका के हमलों का जवाब है। इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक और कार्गो शिप पर मिसाइल अटैक की खबर है, जिससे व्यापारिक जहाजों का रास्ता पूरी तरह ठप हो गया। ईरान ने अमेरिका पर शांति समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है और अंजाम भुगतने की धमकी दी है। क्या महज दो हफ्ते पहले हुआ ये समझौता पूरी तरह टूट चुका है। क्या टूट गया 60 दिनों का संधि प्रस्ताव? क्या ईरान की दादागिरी तय करेगी हॉर्मुज का भविष्य? क्या अमेरिका ने बदल दिया है खाड़ी छोड़ने का प्लान? क्या ईरान को भारी पड़ने वाला है कमर्शियल जहाज पर हमला? इन सभी सवालों का जवाब ट्रंप के बयान में छिपा है। ईरान द्वारा कमर्शियल कार्गो शिप पर हमले के बाद ही ट्रंप ने संदेश दे दिया था, अंजाम भुगतना होगा।
2: Do you consider the ceasefire to still be in place?
3: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually, four. We knocked down three at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship, and it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
2: Will the U.S. respond? What is your message to
3: Iran? Will they respond? You're going to find out.
1: कार्गो शिप पर हमला और ईरान पर जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। सीज फायर कागजों पर बना हुआ है, लेकिन आग पानी में लगी है। मतलब साफ है, अमेरिका और ईरान दोनों देशों के बीच हवाई हमलों और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला तेज हो गया है। कार्गो शिप पर हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ड्रोन और रेडर ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके जवाब में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उसने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ पलटवार किया है। बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कमर्शियल कार्गो शिप पर हुए ड्रोन हमले के बाद शुरू हुआ तनाव अब बड़े सैन्य टकराव का रूप ले चुका है। दोनों देशों के बीच लगातार हमले और जवाबी हमले जारी हैं। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने उसकी सीमाओं पर हमला करके सीज फायर और आपसी समझौतों का उल्लंघन किया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान की आक्रामक कार्रवाई के बाद ही जवाबी एयर स्ट्राइक की गई। इस बीच ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, व्यापक और विनाशकारी होगा। दरअसल आरोप है कि ईरान ने ओमान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर ड्रोन अटैक किया। कहा जा रहा है कि शुरुआती शांति समझौते के बाद किसी

0: कमर्शियल शिप पर ईरान का यह पहला हमला था।
1: ईरान जो है उसको अभी शिप्स के ऊपर बहुत प्रेशर डाला है। वो ये बोला है कि जहां पर डेजिग्नेटेड रूट IRGC ने बनाए हैं उसी से जाना है, और अगर किसी और रास्ते से जाते हैं तो उस पर वो हमला करता है। और ये अभी हुआ है ऐसे कि एक जो शिप था जो कि ओमान की तरफ से जा रहा था, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ओमान की तरफ का जो रास्ता है उस तरफ से जा रहा था, उस पर ड्रोन ने से हमला किया ईरान ने। तो कहीं ना कहीं ईरान ये दिखा रहा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसके कंट्रोल में है, और ईरान जो बोलेगा वैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज में शिप जाएंगी। तो एक डर का माहौल पैदा कर दिया ईरान ने, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कर नहीं पा रहा है।
0: हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी ने फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों को निकालने का अभियान रोक दिया। वहीं ईरान की चेतावनी के बाद दो तेल के टैंकर वापस लौट गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या भी 73 से घटकर 54 रह गई। इस अकेली घटना ने शांति समझौतों को हॉर्मुज में डुबो दिया। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति हालात संभाल पाएगी या फिर यह टकराव एक बड़े क्षेत्रीय संकट में बदल जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वॉशिंगटन शांति समझौते से जुड़ी आ रही है। इसराइल, लेबनान और अमेरिका के बीच शांति समझौते की रूपरेखा पर हस्ताक्षर के बावजूद नेतन्याहू ने कह दिया है कि सेना पीछे नहीं हटेगी। इसराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक समझौते के बावजूद जमीन पर तनाव चरम पर है। शांति समझौते पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद इजरायली PM ने साफ कर दिया है कि दक्षिणी लेबनान से उनकी फौज अभी बाहर नहीं निकलेगी। इसराइल लगातार हमलावर है, ईरान के प्रॉक्सी का जवाब इसराइल मजबूत तरीके से दे रहा है, अमेरिका शांति की दुहाई दे रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक और सीज फायर की फाइलिंग घूम रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं।

0: बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के नेतृत्व को बता दिया है कि इसराइल की सुरक्षा सबसे पहले। इसी नीति पर चलते हुए इसराइल की सेना लगातार लेबनान से लेकर गाजा तक ईरान के पाले हुए प्रॉक्सीज को चुन चुनकर साफ कर रही। वॉशिंगटन में इसराइल, लेबनान और अमेरिका के बीच लंबी बातचीत के बाद एक बड़ा समझौता हुआ है, जिसका सार यह है कि इसराइल दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगा।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल दक्षिणी लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखेगा। ये हमारे लिए बड़ी सफलता है। हम वहाँ तब तक रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं छोड़ देता और इसराइल को उससे खतरा बना रहता है। यह ईरान के लिए भी एक बड़ा झटका है। ईरान चाहता था कि इसराइल दक्षिणी लेबनान से हट जाए, लेकिन इसराइल, लेबनान और अमेरिका ने साफ कहा है कि लेबनान के मामलों में ईरान, हिजबुल्लाह या किसी भी आतंकवादी संगठन की कोई भूमिका नहीं होगी।
0: वहीं समझौते से ठीक पहले एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिणी लेबनान के टेबनीत गांव में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के दर्जनों आतंकियों को उनके ही सुरंगों के जाल में घेर लिया। रास्ते सील कर दिए गए। बिचौलियों के जरिए आतंकियों को सुरक्षित निकालने की भीख मांगी जा रही है, लेकिन आईडीएफ के सूत्रों ने साफ कह दिया है कि या तो सरेंडर करो या इसी सुरंग में मारे जाओ। इसराइल के कैबिनेट में सीज फायर को लेकर बहस छिड़ी तो पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री केटज ने साफ कह दिया कि हमारे किसी भी सैनिक के हाथ बंधे नहीं हैं। जो भी खतरा दिखेगा उसे ऑन द स्पॉट ढेर किया जाएगा। वहीं वॉशिंगटन समझौते के बाद इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल की सुरक्षा सबसे पहले है,
1: कि अब लेबनीज सेना कुछ इलाकों का नियंत्रण संभाल सकती है। इसके लिए दो पायलट क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। ये दोनों क्षेत्र इजरायली सेना की सलाह पर चुने गए हैं। इसराइल अपने मूल सुरक्षा क्षेत्र को एंटी टैंक मिसाइलों की पहुंच से बाहर सुरक्षित रखेगा। इस क्षेत्र में न हिजबुल्लाह को और न ही आम लोगों को आने दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे लिए इसराइल की सुरक्षा सबसे पहले है।
0: नेतन्याहू ने सीधे शब्दों में ईरान को चेतावनी दी है कि लेबनान से दूर रहो।
2: ואנחנו נישאר ככל שידרש באזור הביטחון בדרום לבנון. אנחנו לא עומדים לסגת ממנו. ואני אגיד לכם גם למה. כי אנחנו עברנו משטחים נשלטים לשטחים שולטים. ואנחנו נשמור על השטחים השולטים הללו ככל שידרש.
0: अपने पाले हुए आतंकियों को मरता देख अब ईरान बिलबिला उठा। ईरान की आईआरजीसी गुड्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी ने इसराइल को धमकी दी, लेकिन समझौते में ईरान की मौजूदगी न होना बता रहा है कि लेबनान और हिजबुल्ला एक पेज पर नहीं है और न ही ईरान और लेबनान। लेकिन सच तो यह है कि ईरान की खोखली धमकियों से इसराइल रुकने वाला नहीं। इससे पहले भी जब ईरान ने आंख दिखाने की कोशिश की थी तो इसराइल ने उसका गुरूर तोड़ दिया था। सिर्फ लेबनान ही नहीं, गाजा में भी इसराइली सेना का कहर जारी है। अक्टूबर 2025 के सीज फायर का फायदा उठाकर हमास फिर से रॉकेट लॉन्चिंग पैड बना रहा था। लेकिन इसराइली खुफिया तंत्र से कुछ नहीं छिपता। IDF ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स करके हमास के उन चारों नए लॉन्चिंग पैड्स को मिट्टी में मिला दिया। मई के महीने में हमास के दो बड़े मिलिट्री प्रमुख मारे गए थे और खौफ का आलम ये है कि हमास अब तक अपना नया कमांडर चुनने की हिम्मत नहीं कर पाया।
3: इस
0: साफ है कि अमेरिका भले डिप्लोमेसी की टेबल पर कोई भी खेल खेले, इसराइल ने अपनी बंदूकों का रुख साफ रखा है। ईरान के प्रॉक्सीज खत्म हो रहे हैं और ईरान बेबस होकर सिर्फ तमाशा देख रहा है। सुरक्षा सर्वोपरि है और यही इसराइल का नया मूल मंत्र है। एक वॉर ब्रेकिंग आ रही है, ये खबर जुड़ी है पीओजेके से। पीओजेके में जारी जनता के आंदोलन और पाकिस्तानी हुकूमत के बीच टकराव चरम पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान की फूड ब्लॉकेड नीति आज 14वें दिन भी जारी है, जिसके चलते कहुटा बॉर्डर पर सैकड़ों राशन के ट्रक जाम खड़े हैं। हालात इतने बदतर हैं कि आम लोगों के हाथों से भी जबरन राशन जब्त किया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी तानाशाह को यह गुमान हुआ है कि वही मुल्क का मुस्तकबिल है, उसके फैसले ही मुल्क के आईन हैं, तब तब हुकूमतें खाक हुई हैं। इस इतिहास को भूलने वाले मुल्कों के भूगोल ही बदले हैं और पाकिस्तान का इतिहास फिर से शायद बांग्लादेश को दोहराता हुआ दिख रहा है। बलूचिस्तान से लेकर पीओजेके तक हर तरफ आवाम अपने हुकूक के लिए सड़कों पर है, पाकिस्तान के पास जवाब के नाम पर है गोली या जेल। ये क्वेटा है, दुकानें बंद हैं, सड़कें खाली हैं। ये विद्रोह है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, ये बगावत है पाक फौज के खिलाफ, ये गदर है बलूचिस्तान की बेटी के गिरफ्तारी के खिलाफ। क्वेटा की अदालत ने बलूच यकजहती कमेटी की प्रमुख नेता महरंग बलोच को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई अशांति में फ्रंटियर कोर के एक अधिकारी की मौत के मामले में दोषी ठहराया है। ये विद्रोह महरंग बलोच के समर्थन में।
3: और रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज चुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। लाशें गिराएंगे, गिराए और कितने गिराएंगे। लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे। आ जाए किस किस को मारेंगे आप। जितने मारेंगे हम उतने निकलेंगे और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुजम्मत का ही रास्ता अपनाएगी।
0: वो बीमारी का इलाज करना जानती है, वो मर्ज को पहचानती है, वो डॉक्टर है। वो पाकिस्तान नाम के कैंसर का इलाज कर रही थी जो बलूचिस्तान को अंदर ही अंदर खा रहा है, जिसकी एक हुंकार से पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बलूच क्रांति की उस चिंगारी को आज पूरा बलूचिस्तान बलोच की शेरनी कहता है। नाम है डॉक्टर महरंग बलोच। बलोचों की एक ऐसी जांबाज रहनुमा जिसके एक इशारे पर पूरा बलूचिस्तान हक की जंग के लिए सड़कों पर उतर आता है।
3: नहीं, ये बलूचिस्तान है।
0: उनकी जनसभाओं में उमड़ा हुजूम देखकर जनरल मुनीर और उसकी खाकी वर्दी वाली पलटन के होश उड़ जाते हैं। बलूच सरजमी के चप्पे चप्पे से नौजवान लड़कों को गायब करना, निहत्थों पर गोलियां बरसाना और क्वेटा की जमीन को स्थानीय लोगों के खून से लाल करना, यही है वर्दीधारी जनरल का असली खूनी चेहरा। मगर जब आसिम मुनीर का बारूद इस बलूच बेटी के फौलादी इरादों को नहीं डिगा सका, तो रावलपिंडी के डरपोक नीति नियंताओं ने पर्दे के पीछे से एक बेहद घिनौनी चाल चली। अपनी नाकामी और डर से बौखलाए आसिम मुनीर ने आनन फानन में पाकिस्तान की उस तथा कथित न्यायपालिका की शरण ली जो इंसाफ के लिए कम और सेना की चाकरी के लिए ज्यादा जानी जाती है। एक ऐसी आतंकवाद विरोधी अदालत जहां न दलीलों की कोई कीमत है, न सबूतों की कोई बिसात, जहां काल कोठरी के भीतर गुप चुप सुनवाई का ढोंग रचा जाता है। तभी तो भरी अदालत के इस तमाशे को दुनिया के सामने लाते हुए खुद डॉक्टर मेहरंग ने डंके की चोट पर कहा था कि इन अदालतों की तराजू में कानून नहीं बल्कि विदेशी करेंसी और डॉलर तोले जाते हैं। उसी अदालत ने मेहरंग बलोच के खिलाफ फैसला सुना दिया। इस फैसले के दम पर डॉक्टर मेहरंग और उनके सहयोगी सिब्बतुल्लाह शाह को उम्र कैद की सजा सुनाकर मुनीर ने मुगालता पाल लिया था कि वो आजादी की इस गूंज को दबा देगा, लेकिन पासा पूरी तरह पलट गया। इस फैसले के आते ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर न सिर्फ महरंग बलोच की तुरंत रिहाई की गूंज उठी बल्कि बलूचिस्तान की पूर्ण आजादी का आंदोलन और उग्र हो गया है। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों से लेकर ग्रेटा थनबर्ग जैसी ग्लोबल एक्टिविस्ट्स ने मुनीर की इस तानाशाही को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। अब दुनिया एक सुर में कह रही है कि मेहरंग को रिहा करो और बलूचिस्तान को इस जुल्म से आजाद करो।
4: Dr. Mahram Baloch has spent years peacefully advocating for the families of the disappeared, speaking up against extrajudicial killings and demanding justice for the people of Balochistan, occupied territory by Pakistan. You cannot silence an entire movement by locking away its voices. The world cannot continue to look away from this. Stand with Dr. Mahram Baloch and all those imprisoned for peacefully demanding justice. Demand accountability, demand due process, and demand their freedom. Free Mahram and free Balochistan.
0: ईरान और अमेरिका के बीच दलाली करने की फिराक में घूमने वाला जनरल मुनीर आज पूरी दुनिया की नजरों में विलन बन चुका है। महरंग को जेल में ठूंसने की इस कायर हरकत ने मुहर लगा दी है कि बलोच शेरनी के रुतबे से इस्लामाबाद के हुक्मरान थर थर कांप रहे हैं।
3: और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुजम्मत का ही रास्ता अपनाएगी। बाज आ जाओ, अब बलोच हवाम कड़ी हुई है। ये 1948 नहीं है, ये 2023 है और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है।
0: इस तानाशाह का पागलपन सिर्फ महरंग बलोच तक नहीं रुका। जुल्म की इंतहा देखिए, उसने महरंग का केस लड़ रही मानवाधिकार वकील ईमान मजारी को सिर्फ इसलिए 17 साल के लिए जेल भिजवा दिया क्योंकि उसने अदालत में अपनी मुवक्किल के हक की वकालत की थी। यानी मुनीर के राज में न्याय की मांग करना भी सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है।
5: इस साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा की। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उधर मुतालबा किया गया कि डॉक्टर महरंग बलोच को रिहा किया जाए। तो अगर पंजाब हुकूमत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये बात कर सकती है तो मैं अपने ट्विटर पर ये बात क्यों नहीं कर सकती, इसकी सेंस मुझे नहीं बन रही।
0: ये नफरत कल की नहीं है, ये कहानी शुरू होती है 1947 से। जब पाकिस्तान बना तब बलोच नेताओं ने पाकिस्तान के जबरन विलय का विरोध किया और तब से लेकर आज तक ये जंग लगातार चल रही है। पाकिस्तान की फौज पर आरोप है कि वो बलोच लोगों को उठा लेती है, उन्हें गायब कर देती है और बिना किसी ट्रायल के मार देती है। इस आग में घी डालने का काम किया चीन ने। ग्वादर पोर्ट और सीपेक के नाम पर जो मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बलोच लोग उन्हें अपनी बर्बादी का प्रतीक मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जमीन पर चीन का कब्जा करवाया जा रहा है और उन्हें बदले में क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री की पाबंदियां। इसीलिए विद्रोहियों ने सीधा चीन के प्रोजेक्ट्स और वहां के वर्कर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान कहता है कि ये सब विदेशी ताकतों का हाथ है, लेकिन सच तो ये है कि खुद पाकिस्तान के अंदर ही फूट है। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की फौज में 45% पंजाबी मुसलमान भरे पड़े हैं। बलोच लोगों के साथ होती ज्यादती इस बात का पुख्ता सबूत है कि ये पंजाबी फौज बलोचों पर हुक्म चला रहे हैं। बलोच आंदोलन भी एक नहीं है, मरी, बुगती और मैंगल, ये तीन बड़े कबीले बंटे हुए हैं। 2006 में जब पाक फौज ने नवाब अकबर बुगती को मारा, तब से ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से अफगान युद्ध के बाद आए पश्तूनों ने बलोच लोगों की डेमोग्राफी बिगाड़ दी है, उन्हें अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार चाहे कितने भी दावे करे, लेकिन हकीकत ये है कि बलूचिस्तान एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी है। अगर बलूचिस्तान सुलगा तो उसकी लपटें दूर तक जाएंगी।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
1: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
4: आगे आगे,
5: अरे उधर उधर,
4: करेक्ट करेक्ट,
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: हमने तब भी सवाल किया था,
8: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
7: हम आज भी सवाल करते हैं,
8: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
7: ऑपरेशन अग्नि,
8: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
7: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
9: In association with
10: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें साथ तक, देखते रहिए आज तक।
15: क्या केतन को मारने का प्लान चेतन ने बनाया? क्या चेतन को आगे करके सिया को बचाने की कोशिश हो रही है? 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था, सिया का या केतन का? पुणे के केतन मर्डर केस में सिया का परिवार नई थ्योरी लेकर सामने आया है। सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
16: मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का दे के उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
5: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे है वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
17: सिया के माता पिता दावा कर रहे हैं कि उन्हें सिया और चेतन के अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं था। वो अभी भी कह रहे हैं कि सिया और चेतन के बीच कुछ नहीं है। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। जब से खबर आई है तब से सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई। एंग्जायटी और घबराहट इतनी ज्यादा हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। इधर पुणे पुलिस की जांच में सिया ने कबूल किया है कि वो कम से कम 3 साल तक शादी टालना चाहती थी, लेकिन रिश्ता तय होने के बाद शादी तोड़ने से बदनामी होती, इसलिए उसने केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सिया का दोस्त चेतन भी कम से कम 2 साल तक शादी नहीं करना चाहता था। केतन और सिया की सगाई फरवरी में हुई, लेकिन उससे ठीक पहले जनवरी में सिया गोयल अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ राजस्थान के उदयपुर गई थी। वहां वो 5 दिनों तक रही थी। चेतन चौधरी मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस की माने तो हत्या वाले दिन चेतन और सिया लोनावाला के कैफे में मिले थे, जहां उन्होंने हत्या की अंतिम योजना बनाई। शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। इसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
18: उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
19: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
17: अब पुणे पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। इससे पहले सिया के भाई से 10 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। ओंकार वाबले, पुणे आज तक।
20: हमें मालूम है कि देश भर में कौन से राज्य में कहां केमिकल जोन है। बहुत छोटे कंस्ट्रक्शन एरिया में लैब बना दी जाती है और ऊपर कोई मुखौटा होता है, तो एजेंसियों ने भी उसको ढूंढने का एक अपना तंत्र विकसित करना पड़ेगा और उसको कठोरता के साथ हमने नष्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन जो नई पद्धति के इन्होंने ढूंढे हैं, इसका भी हमने उपाय भी ढूंढना पड़ेगा और ये उपाय को सतत परिवर्तनशील करते हुए मॉनिटरिंग कर इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना पड़ेगा। पीएमएलए और ईडी के माध्यम से इसके फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को भी हमने बहुत रूथलेसली करना पड़ेगा और ये सब मिलकर उनके नेटवर्क को छिन्न विछिन्न करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक बार नेटवर्क छिन्न विछिन्न होता है तो हमारी लड़ाई जीतने के रास्ता बहुत आगे तक हम कर लेंगे। और तीसरा है डिस्ट्रॉय, नेटवर्क को दोबारा खड़ा न हो इस तरह से रूथलेसली समाप्त करना है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: और इस समय हमारे साथ पाकिस्तानी फौज के पूर्व अफसर रहे मेजर आदिल राजा, जो कि अब सेवानिवृत्त हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन बहुत खरी खरी बातें वो करते हैं। बहुत स्वागत है मेजर आदिल आपका। लेकिन हम स्टार्ट एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ करना चाहते हैं। दरअसल एक ब्राजील के एक रिपोर्टर ने यह खबर ब्रेक की थी कि आसिम मुनीर को मोसाद ने मारने की प्लानिंग की थी, इसराइल के मोसाद ने। अब इसकी खबर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस को लगी, जिसके बाद उनकी तरफ से कहा गया कि अगर आसिम मुनीर को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। और इसके बाद से पाकिस्तान लगातार ये नैरेटिव चला रहा है कि इसराइल जनरल मुनीर को मारना चाहता था। सबसे पहले तो मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहती हूं, इस पर रिएक्शन चाहती हूं।
1: थैंक यू श्वेता। एक तो आपने कहा कि खरी खरी जो है वो सुनाते हैं, तो खरी खरी सुनाने की वजह से आपको पता है कि पाकिस्तान में मुझे 99 ईयर का सिर्फ और सिर्फ जर्नलिज्म की वजह से, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से 99 ईयर का प्रिजन सेंटेंस सुनाया गया है, जो मैं खरी खरी यहां बैठ के बातें सुनाता हूं। तो देर इज अ प्राइस टू बी पेड फॉर स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, और एज अ पैराहिशिस्ट हम वो कर रहे हैं। और आपने जो बात की वो पेपे एस्कोबार को, मेरे ख्याल में बहुत ही कोई गलत इंफॉर्मेशन फीड की गई है, क्योंकि एक और उसकी वजह है, डेफिनेटली वजह है, क्योंकि आसिम मुनीर अपने आप को एक हीरो बना के पेश करना चाहते हैं। और जो ईरान और यूएस का डायलॉग है उसमें मेरे पास कंफर्म्ड खबर जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी में जो मेरे सोर्सेज हैं वो कंफर्म करते हैं कि पाकिस्तान को ईरान यूएस नेगोशिएशन प्रोसेस से बाहर निकाल दिया गया है, और अब कतर जो है वो ये प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रहेगा। पाकिस्तान को टोटली आउट किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान इस प्रोसेस को अपनी लेजिटिमेसी ढूंढ रहा था इस प्रोसेस के जरिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि डोमेस्टिक लेजिटिमेसी इस गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, जिसको आसिम मुनीर लीड कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ उनके चपरासी के तौर के ऊपर, इमरान खान उनको अर्दली कहते हैं, अर्दली के तौर के ऊपर उनके साथ लगे हुए हैं। पेपे एस्कोबार को स्टोरी मेरे ख्याल में जो है मेरी जाती राय के मुताबिक लीक इसलिए की गई क्योंकि एंटी इसराइल सेंटिमेंट जो है वो चलता है पाकिस्तान में लेजिटिमेसी बनाने के लिए, और एंटी इंडिया सेंटिमेंट चलता है पाकिस्तान में लेजिटिमेसी बनाने के लिए। तो इंडिया के खिलाफ तो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस और मार्का हक का जो ड्रामा करके वो लेजिटिमेसी जितना उसको नचोड़ा जा सकता था नचोड़ लिया गया है। अब इंटरनेशनल नेगोशिएटर के तौर के ऊपर आलमी अमन लाना चाहते हैं, हालांकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कहते हैं कि यार पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला इन्होंने लगाया हुआ है। पाकिस्तान में एक जो है नाश्ते के लिए डबल रोटी अंडा तक हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और ये अमन करने के चक्कर के अंदर जा रहे हैं, इंटरनेशनल नेगोशिएटर बने हुए हैं, और ये अपनी लेजिटिमेसी ढूंढ रहे हैं उस प्रोसेस के जरिए और अपनी मशहूरी करवाना चाहते हैं।
0: मिजादल पल, अब बलूचिस्तान के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, ये क्या हो रहा है, मेहरंग बलूच की गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए ये भी लिंक्ड है उसी से श्वेता, कि आप देखो कि ये स्टोरी प्लांट की गई पेपे को और उसके बाद ऑफिशियली इसको डिनाई किया गया। हालांकि इसराइल में मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की, इसराइली जर्नलिस्ट से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि भाई या तो कैपेबिलिटी का अगर ताल्लुक है कि क्या हम कर सकते हैं आसिम मुनीर के खिलाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट, तो बिल्कुल हमारी इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी है, लेकिन हमें क्या जरूरत पड़ी है आसिम मुनीर को, वो हमारे लिए थ्रेट ही नहीं है सर ऐसे, बल्कि वो तो हम उसको क्यों हिट करेंगे, ऑलरेडी हमारे बड़े फ्रंट खुले हुए हैं। तो वो ऑलरेडी, अब देखें, अब आज मारंग के ऊपर आ जाए, मारंग का जो इशू है वो पूरे पाकिस्तान का इशू है, पूरा पाकिस्तान राइट्स मांग रहा है, बलूचिस्तान राइट्स मांग रहा है, सिंध में राइट्स मांगे जा रहे हैं, एजेके में आज 18वां दिन है और एजेके के अंदर 56 लोग ये मार चुके हैं पाकिस्तानी स्टेट, और वहां से पाकिस्तान से आजादी की, आजाद कश्मीर में बातें चल रही हैं, और लोगों का राशन पानी बंद किया गया है, बीबीसी ने उसको वैलिडेट किया उस स्टोरी को। अब पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान को बेच के खा रहा है, चाहे वो सोना हो रिकोटेक का, वो पाकिस्तान में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में उसका सौदा होता है, कनाडा को बेच दिया जाता है, कॉपर होती है बलूचिस्तान की तो वो चाइना को बेच दी जाती है, रेयर अर्थ एलिमेंट जितना भी है, गवादर डीप सी पोर्ट है वो चाइना को बेच दी गई है, चाइना ने 60 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम के ऊपर, रिसोर्सेज सारी बलूचिस्तान की है या खैबर पख्तूनख्वा की है या सिंध की है, कराची की पोर्ट्स है। वो लोग जब अपने राइट्स मांगते हैं तो पैसा ये ऊपर ही ऊपर स्किम करके खा जाते हैं, करप्शन इतनी है, और इनको
0: मतलब क्या हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में आसिम मुनीर की नीतियों ने भी हालात को और खराब दौर में पहुंचा दिया है?
1: जाहिरी बात है, अगर देखें श्वेता बात वही है कि अगर इंडिया के पास फंड्स हैं ना, इकोनॉमी चल रही है ना, क्यों इकोनॉमी चल रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, पब्लिक मैंडेट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है और इकोनॉमी चलती है तो फंड्स आते हैं जो आप डेवलपमेंट पर लगा सकते हैं। यहां पे इन्होंने कब्जा करके बैठे हुए हैं, इमरान खान को लोगों ने वोट दिया है, उसको जेल के अंदर डाल के बंद करके बैठे हुए हैं, पपेट गवर्नमेंट चला रहे हैं। 7 सीटें जिन्होंने ली हैं उनको गवर्नमेंट्स दे दी हैं, तमाम पपेट इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पैसे है ही नहीं तो लगाएंगे कहां से। फिर आ गई बात अल्ले नी तेला ते कर दी मेला मेला।
0: तो अच्छा, जो पीओजे के वाला पूरा एरिया है वहां पर भी बहुत लगातार प्रोटेस्ट सभी हो रहे हैं, वहां पर जो लोग हैं वो आवाज उठा रहे हैं, हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इंडिया सबको कह रही है कि आप ऐसा करो, लेकिन वहां के लोगों के हालात भी जब देखते हैं ना, तो कश्मीर में जम्मू में लोग कहते हैं कि देखिए हमारी डेवलपमेंट कितनी है, वहां पर क्या हाल है। तो वहां पर तो महिलाएं लड़कियां सब अभी प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये यहां के प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हैं आप?
1: देखें, बलोचिस्तान वाला हाल ही जो है, महरंग बलोच और समी बलोच और ये हमारी जो बहनें हैं, ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी, इनके बापों को मिसिंग पर्सन बना के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर दी गई। स्टेट का पुराना तरीका कार 75 साल से चल रहा है, 3 साल से एक्सपोज हो गया है, वही काम इन्होंने किया है एजेके के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर जो है, एग्जैक्टली लाशें मार के गायब कर दी गई हैं। औरतें और बच्चे छोटे छोटे इस वक्त, आज 18वां दिन है, सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो राइट्स डिमांड कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर एग्जैक्टली यही काम जो है, जो पुरमन तरीके से करने की कोशिश की गई, जो इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी एजेके के अंदर कर रही है, तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। उनके पास छुपने की जगह नहीं थी बलोचिस्तान के अंदर, शायद उनकी टेरेन इतनी ज्यादा नहीं थी जिसके अंदर वो उसको ब्लॉक कर सकते, छुप सकते, वेजिटेटेड टेरेन नहीं थी, बल्कि वो तो ओपनली इस्लामाबाद आके बैठी हुई थी। हमारी बहनें जो हैं, महिलाएं जो हैं, जो खवातीन हैं, वही काम इस वक्त, अगर आप देखें कि एजेके से लोग अगर रावलाकोट से निकल के या हजीरा से निकल के पीर पंजाल रेंज से निकल के इस्लामाबाद बैठ जाएं, तो ये उनको भी वहां पे अरेस्ट कर लेंगे और जेलों के अंदर डाल देंगे। इनको तो, इनके पास क्योंकि देने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हर जो अथॉरिटेरियन स्टेट है, जब उसकी इकोनॉमी नहीं चल रही होती तो वो फैशिस्ट पॉलिसीज के ऊपर बैंक करती है, जो कि ये स्टेट कर रही है। और बेसिक इशू तो एजेके का भी यही है जो बलूचिस्तान का है, कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अवाम जिन लोगों को वोट देती है उनके वोट रातों रात चेंज कर देती है आर्मी, और अपनी मर्जी के रिप्रेजेंटेटिव बना देती है। जिन लोगों को वोट दिया जाता है फॉर्म 45 के अंदर, उनको 47 के अंदर रातों रात वोट चेंज कर देती है पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई, और अपनी मर्जी के पपेट्स को बिठा देती है। तो जब पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो फिर लोगों के लिए तो कोई आवाज नहीं उठाएगा, और हर कोई जो वहां पे लोग बैठे होंगे वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, जो कि कर रहे हैं।
0: चलिए, 99 साल यानी 99 ईयर्स की जेल के उस जो पाकिस्तान में आपके खिलाफ हो रहा है, उसके बावजूद आप सच बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मिर्जा आदिल।
1: थैंक यू श्वेता।
0: डॉक्टर मेहरंग बलूच की यह लड़ाई उनके पिता के अपहरण और हत्या से शुरू हुई थी, लेकिन अब उनको पाकिस्तानी सरकार ने आतंकवादी घोषित करते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। पाकिस्तानी फौजी बूटों तले कुचली गई जिंदगियों में से डॉक्टर मेहरंग बलोच केवल एक नाम भर है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार, अदालतें, पाकिस्तानी फौज और आसिम मुनीर के इशारे पर जो कुछ होता हुआ दिख रहा है, कमोवेश वही सब हर उस शख्स के साथ होता आया है जिससे पाकिस्तानी फौज को दिक्कत या परेशानी होती है। पाकिस्तान के आईन को अपने जूतों तले रखने वाले और बंदूक की नाल से हुकूमत चलाने वाले रावलपिंडी के जनरलों ने पाकिस्तान को इस बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक
2: जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं सारे,
0: और पंजाब से लेकर पीओजे के तक, हर तरफ सिर्फ जमीन लाल हो रही है। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। जो विरोध कल तक बंद कमरों में था वो आज विद्रोह का रूप ले चुका है। जिन घरों को पाकिस्तानी सेना ने उजाड़ दिया आज उन्हीं घरों की असमत सड़कों पर उतरकर फौज के खिलाफ इनकलाब के नारे बुलंद कर रही हैं।
3: शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया को, तू फैलाना था ऐसे मीडिया के ऊपर कि यहाँ पे रियासत के अंदर कत्ल किए जा रहे लोग और हमारा पाकिस्तानी मीडिया झूठी खबरें चला रहा है।
0: डॉक्टर मेहरंग बलोच को उम्र कैद देना कोई इकलौती घटना नहीं है, ये जनरल आसिम मुनीर के उस खूनी मंसूबे का हिस्सा है जो पूरे पाकिस्तान को लील जाना चाहता है। अपनी ही जनता का नरसंहार और अपनी ही आवाम पर जुल्म, ये नए पाकिस्तान के नए नियम हैं, लेकिन इन पर अमल कई सालों से चल रहा है। अपनी ही जनता का नरसंहार, अपनी ही आवाम पर जुल्म, ये नए पाकिस्तान के नए नियम हैं, लेकिन इन पर अमल कई सालों से चल रहा है। 21 मार्च 2025 क्वेटा यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के सामने अपने हक के लिए आवाज उठा रहे बेगुनाह छात्रों पर सीधी गोलियां बरसाई गई। एक 12 साल के मासूम बच्चे समेत 3 लोगों की मौत के बाद जब अगले दिन अपनों की लाशों के साथ धरने पर बैठी मेहरंग बलोच और उनकी बहन ने इंसाफ मांगा तो मुनीर की जालिम फौज ने उन्हें जेल में डाल दिया। 13 अक्टूबर 2025 लाहौर, जुल्म की ये आग सिर्फ बलूचिस्तान तक नहीं रुकी, ये पाकिस्तानी पंजाब भी पहुंच गई। मुरीदके में टीएलपी के शांतिपूर्ण मार्च पर पाक रेंजर्स ने गोलियां चला दी। फायरिंग में 13 लोगों की जान चली गई, 150 से ज्यादा घायल हुए और करीब 5,500 से ज्यादा लोगों को जानवरों की तरह जेलों में ठूंस दिया गया। 17 सितंबर 2025 खैबर पख्तूनवा, जरा मुनीर की फौज की सबसे बड़ी कायरता देखिए। ऑपरेशन अजमे इस्तकाम के नाम पर खैबर पख्तूनवा और वजीरिस्तान में महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया। 22 सितंबर 2025 की रात को पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने ही नागरिकों पर JF-17 फाइटर जेट से बमबारी कर दी। इस बमबारी में महिलाओं और बच्चों समेत 30 बेगुनाह लोग मार दिए। मार्च में भी काटलांग में ड्रोन हमले से 11 नागरिक उड़ा दिए। जून 2026 पाक के अनाधिकृत कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, जब आवाम अपनी मांगों के लिए सड़कों पर निकली तो फौज ने कत्लेआम मचा दिया। जून 2026 के आंदोलन में रावलकोट और मुजफ्फराबाद में कम से कम 24 लोग गोलियों से भून दिए गए।
4: पाकिस्तान के आवाम से, मजलूम आवाम से मेरी अपील है कि वो इस मुश्किल की घड़ी में कश्मीरियों का साथ दें।
0: बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा और POJK की ये रोती हुई आंखें और सड़कों पर उतरी बहन बेटियां इस जुल्म को कभी नहीं भूलेंगी। बंदूक की नोक पर डराकर बनाया गया ये साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला है।
5: हम तो अपने वसाइल से भी दस्तबरदार रह चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसलिए बावर करा दिया गया है कि हम इंसान नहीं है।
0: इतिहास गवाह है, जब घर की असमत सड़कों पर इनकलाब बनकर उतरती है तो तानाशाहों के तख्तो ताज हवा में उड़ जाया करते हैं। पाकिस्तान के इस महाविनाश का इकलौता स्क्रिप्ट राइटर कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जिसका नाम है जनरल आसिम मुनीर। वॉर रूम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: ना रूस रुकने को तैयार है, ना यूक्रेन झुकने को। दोनों तरफ से हुए ड्रोन हमलों ने ऐसी तबाही मचाई है कि बढ़ती हाहाकार मच गया है। सबसे ज्यादा बदतर हालात हैं क्रीमिया के, जिस पर 2014 से रूस ने कब्जा कर रखा है। क्रीमिया पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों के बाद से तो हालात और खराब हो गए। यूक्रेन ने एक साथ सैकड़ों ड्रोन से हमले किए। रूसी सेना ने 660 ड्रोन मार गिराए, लेकिन कई हमलों को रोकने में वो नाकाम रही। ये हमले रूस के अलग अलग इलाकों के साथ साथ क्रीमिया, काला सागर और आजोब सागर में किया गया। हमलों से परेशान अधिकारियों ने शुक्रवार को क्रीमिया में स्टेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। ये इलाका पहले से ही ईंधन की कमी और बिजली की कटौती से जूझ रहा है। ऊपर से यूक्रेन के हमलों ने यहाँ की सैन्य स्थिति और अर्थनीति की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। सिविल गैसोलीन बंद कर दी गई है और कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। क्रीमिया में रूस की तरफ से बनाए गए गवर्नर सरगेई अक्सिनोव ने क्रीमिया गणराज्य और सेवस्तोपोल शहर में क्षेत्रीय स्तर पर आपातकालीन स्थिति घोषित करने वाले आदेशों पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया है। यूक्रेन पिछले कई महीनों से रूस के तेल उत्पादन और ऊर्जा क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। इससे न सिर्फ रूस की ऑयल सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है, कई जगह बिजली को लेकर भी संकट खड़ा हो गया है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क जैसे इलाकों में रूस की सेनाएं आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन उनकी रफ्तार इतनी धीमी और खर्चीली है कि पुतिन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि रूस इन हमलों के बाद चुपचाप बैठ गया है। उसने पलटवार करते हुए कीव, ज़ेपोरोजिया और खार्किव समेत कई इलाकों में बम बरसाकर यूक्रेन को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। खार्किव में एक रिहायशी इलाके में हुए रूसी हमले से इमारत में धमाकों के साथ आग लग गई। हमला इतना भीषण था कि एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। रूस के एयर स्ट्राइक का सिलसिला यही नहीं थमा। डोनेट्स इलाके में उसने विनाशकारी मिसाइलों के वार से भारी तबाही मचाई है। रूस ने यह भी दावा किया है कि उसके रॉकेट ने ज़ेपोरोजिया में यूक्रेनी यूएई कमांड पोस्ट उड़ा दिया। नीपर ग्रुप ने हरिकेन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल करके ओरेखोव के पास ही हमला किया। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने कीव की ओर बढ़ रही रूस की ताकतवर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल को पैट्रियट सिस्टम के जरिए इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
4: और अब बड़ी खबर आपको देते हैं पाकिस्तान के कराची से। बड़ी खबर जहां पर धमाका हुआ है सतपुरा इलाके में। जानकारी मिल रही है कि यह धमाका सुनाई दिया है और धमाके के बाद बताया जा रहा है कि फायरिंग भी हुई है। पाकिस्तान के कराची से बड़ी खबर जहां 4 लोगों की मौत भी हो गई है। ये धमाका तो हुआ और उसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ देर तक वहां पर लगातार फायरिंग भी होती रही। ये कराची का सपूरा इलाका बताया जा रहा है। इसके साथ रेंजर्स हेडक्वार्टर के बिल्कुल नजदीक ये धमाका हुआ है। जानकारी मिल रही है कि कुछ हमलावर वहां पर थे और उसके बाद वहां पर उन्होंने काफी देर तक फायरिंग भी की। सुरक्षा बलों ने इस समय इलाके की घेराबंदी की हुई है। पाकिस्तान में हर तरफ आतंकवादियों का डेरा रहता है। और इस बीच में अभी कराची से एक बड़ी खबर जहां धमाका हुआ है, जो आतंकवादी पाकिस्तान ने पाले थे दूसरे देशों में, खासतौर पर भारत में, अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने के लिए वो अब पाकिस्तान को ही निशाने पर ले रहे हैं। और इस बीच में ये बड़ी खबर कराची से, कराची में धमाका हुआ है। अभी किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये धमाका, इसमें 4 लोगों की जान भी चली गई है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि बताया जा रहा है कि ये जो धमाका हुआ है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन वहां पर उसके ठीक पास में हुआ है और गुलिस्तान जौहर के पास में बताया जा रहा है कि धमाका हुआ। और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर तेज हुई तकरार। अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी के बचाव में आया आरएसएस। कहा एसआईटी की जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं, संसद में मुद्दा उठाएगी समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक पर सियासी उबाल। राहुल और प्रियंका ने सरकार को घेरा। कहा शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को बनाया वसूली का सिस्टम, जांच के लिए एसआईटी का गठन। टीएमसी के बागी नेताओं के खिलाफ ममता गुट ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। गलत पहचान बताने, फर्जीवाड़ा और पार्टी के नाम के इस्तेमाल का आरोप। तीन दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत। राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर होगी बात। पाकिस्तान के कराची में धमाका और फायरिंग से अफरा तफरी। रेंजर्स हेडक्वार्टर पर सुसाइड हमले की आशंका। अब तक चार लोगों की मौत, कई घायल।

नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। आखिर क्यों मेहंदी वाले हाथ खून से सन रहे हैं? आखिर क्यों घरों को बनाने वाले हाथ हथियार उठा रहे हैं? जिन हाथों पर रिश्तों को सहेजने की जिम्मेदारी थी, वो क्यों उन्हीं रिश्तों को तार तार कर रहे हैं? इन दिनों एक के बाद एक ऐसे मामले आ रहे हैं जहां दुल्हनें अपने पतियों को, प्रेमिकाएं अपने प्रेमियों को, मंगेतर अपने मंगेतरों की हत्या कर रही। सवाल यही कि क्या

0: रिश्तों में विश्वास टूटे तो सबसे बड़ी हार इंसानियत की होती है। केतन अग्रवाल से लेकर सौरभ राजपूत और राजा रघुवंशी तक अपराध की क्रूरता से ज्यादा लोगों को हैरान कातिलों ने किया, क्योंकि इन सभी मामलों में कातिल वो थे जिन पर कत्ल होने वाले को सबसे ज्यादा भरोसा था।
1: तो जिंदगी पूरी खराब हो गई, घर खाली हो गया, कुछ नहीं रहा हमारे पास।
2: कितना सपोर्ट चाहिए, प्लीज मेरे बेटे को इंसाफ दे।
3: उन्होंने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया।
4: वो भी दुखे और ये भी दुखे। अभी तो
5: पूनम को नहीं रहना था तो वो नहीं रहती, मगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा बहुत गलत हुआ।
6: पीछे सवाल नहीं होता कभी, तुम्हें भैया जिंदा होता,
5: मगर मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ।
7: वो अपना जीने का हक खो चुकी है, मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है, उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए।
8: बच्चे को मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए।
9: बेटी को फांसी होनी चाहिए,
8: फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए उसे फांसी।
0: कभी किले की दीवार से मंगेतर को फेंक देना, कभी प्रेमी के साथ पति को खाई में धक्का, कभी नीले ड्रम में पति की सीमेंटेड लाश। आज कहानी सुनाएंगे भरोसे के कत्ल की, आज कहानी सुनाएंगे रिश्तों के कत्ल की, आज कहानी सुनाएंगे विश्वासघात की, आज कहानी सुनाएंगे मर्यादाओं की हत्या की। आखिर हंसते चेहरों के पीछे क्यों साजिशें छुपी हैं? आखिर क्यों रिश्ता पसंद ना आने पर ना करने से ज्यादा हत्या पर भरोसा रहता है? क्यों इश्क इस कदर जानलेवा हो रहा है जहां पवित्र संबंधों के लिए भी संवेदनाएं शून्य है? आज हम आपको साजिशों की आड़ में रिश्तों के कत्ल की वो खौफनाक कहानियां सुनाएंगे जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।

पहली कहानी कैसे लव ट्रायंगल की जिसने पूरे देश को चौंका दिया। पुणे के लोहगढ़ किले के ऊंचाइयों से गिरकर एक युवा कारोबारी की मौत हुई, जिसे पहले तो हादसा माना गया, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी अपराध की गुत्थियां सुलझती चली गई। जिस लड़की के साथ कुछ ही महीनों बाद साथ फेरे लेने की तैयारी थी, उसी पर अब अपने मंगेतर की हत्या का आरोप है। सवाल सिर्फ इतना कि केतन अग्रवाल की मौत कैसे हुई, सवाल ये भी कि आखिर रिश्तों के चेहरे के पीछे ऐसा कौन सा सच छिपा था जिसे कोई पढ़ नहीं पाया।

इस कहानी में कदम कदम पर कत्ल की साजिश है, कदम कदम पर भरोसे का कत्ल है, कदम कदम पर प्रेम के नाम पर महापाप है। जो केतन सिया को अपनी दुनिया समझता था, उसके सामने बार बार सिया का षड्यंत्रकारी चेहरा आया था, लेकिन केतन उसे पहचान नहीं सका। सिया और केतन की सगाई 11 फरवरी 2026 को हुई थी। केतन उसे साथ घुमाने ले जाता था। 31 मई को केतन सिया को लौगढ़ किले घुमाने ले गया था। किले की ऊंचाई को देखते ही सिया के मन में केतन की हत्या कैसे की जाएगी, इसका प्लान तैयार हो गया था। मौत की आहट ने केतन को बार बार खबरदार किया था। 5 जून 2026 सिया ने केतन से फिर से लौगढ़ किले चलने को कहा, लेकिन तब केतन के परिवार वालों ने मना कर दिया और दोनों नहीं जा पाए। 6 जून 2026 बाली में केतन और सिया की शादी का प्री वेडिंग शूट था, लेकिन एयरपोर्ट पर केतन का पासपोर्ट खो जाने की बात सिया ने कही और ये कार्यक्रम रद्द हो गया। 14 जून 2026 सिया केतन को किले लेकर गई और एक पहाड़ी से धक्का दे दिया। केतन ने झाड़ी पकड़ ली और वो बच गया। सिया ने

0: धक्का देने का कारण केतन को सांप से बचाने को बताया। ये बात परिवार को भी पता चली, लेकिन सिया के झूठ को सच मान लिया गया। 18 जून 2026 सिया केतन को फिर लोहगढ़ किले ले गई। वहां अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ केतन को किले की ऊंची दीवार से 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। इस बार केतन की किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो मौत के मुंह में समा गया।
1: लड़का जब ऐसा कर रहा था, हमारा पोता, तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धक्का दे दी। शायद दोनों ने मिलके भी दिया हो, उन्होंने दे दिया। और आके नाटक करने, मतलब फोन आया मेरी बहू के पास, लड़के की माँ के पास, कि केतन ऊपर से गिर गया। हम सब भागते हुए गए, मैं तो नहीं गया था, बच्चे सब भागते हुए गए। तो वहाँ खड़ी थी, उसको कोई बहुत बड़ा अफसोस नहीं था, बहुत बड़ा रोना धोना कुछ नहीं था।
0: पुलिस जांच में पता चला कि 18 जून को हत्या से पहले चेतन और सिया एक रेस्टोरेंट में मिले और यहां केतन की हत्या की फाइनल प्लानिंग की गई, जिसे अगले दिन अंजाम दिया गया। चेतन लगातार केतन और सिया का पीछा कर रहा था, उसकी तस्वीर भी रिकॉर्ड हुई थी।
2: जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं, इसी कुर्सी पर 17 तारीख को चेतन चौधरी बैठा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसके ठीक सामने यानी कि इसी कुर्सी पर सिया गोयल भी बैठी थी। दोनों ने यही मिलकर पुणे के कोंडवा स्थित इस कैफे में प्लान किया, साजिश रची। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लोहगढ़ की तस्वीरें एक दूसरे को दिखाई। सिया की जो मोबाइल हिस्ट्री है, उसमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूट्यूब पे जाके उसने लोहगढ़ का एक डॉक्यूमेंट्री उसे दिखाया था। यही बैठ के लगभग एक घंटे दोनों में चर्चा हुई थी और इस साजिश को किस तरीके से अंजाम देना है, एग्जैक्टली क्या करना है, इस सभी की प्लानिंग एक घंटा यही बैठकर हुई थी।
0: केतन हर फरेब को इसलिए नहीं भाप पाया क्योंकि उसे सिया पर भरोसा था। सिया इंस्टाग्राम पर अपने और केतन के रिश्ते को लेकर रोमांटिक पोस्ट डालती थी। केतन ने एक महीने से लगातार सिया का जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया था। उसने 19 जून को सिया का बर्थडे मनाने के लिए पूरा 5-स्टार होटल बुक कर लिया था, लेकिन उससे पहले ही वो सिया की साजिश का शिकार हो गया। पुलिस हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है।
3: ये जो घटना हुई है, इसके दो, एक ये जो टॉप ऑफ द फोर्ट है और एक नीचे जो जंगल में यहाँ पे डिसीज्ड की बॉडी मिली थी, वो ठिकान है। तो यहाँ से वो नीचे गिरने के बाद इम्पैक्ट है, कैसे आएगा, धक्का देने से कैसे आता है, गिरने से कैसे आता है, नीचे बॉडी कहाँ पे जाके पाई गई, वहाँ पे कुछ पुरावे जो हैं, वो सब, ये सब की तहकीकात के लिए ये टीम अभी काम कर रही है और परिसर की पहानी चल रही है।
4: ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो, मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
5: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
6: देखो, आपकी लड़की कॉन्स्पिरेटर है ये अभी दिख रहा है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में, अगर वो कल कल्प्रिट फाइनलाइज होता था तो मतलब वो आरोपी निश्चित हो जाती थी।
5: हाँ तो ठीक है ना, आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो।
0: सिया ने कहा था कि केतन की मौत पैर फिसलने से हो गई और उसने अगले दिन केतन की याद में इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाली।
7: तेरी आंखें तो परफेक्ट पिच पैन राइज है, मेरे लिए द ब्राउन कलर है।
0: केतन की बहन को सिया पर यकीन नहीं था। उसे पता था कि केतन एक प्रोफेशनल ट्रैकर है, बस यहीं से साजिश का एंगल शामिल हुआ और केतन की बहन को सिया पर शक हुआ। बात पुलिस तक गई और पुलिस ने जब जांच शुरू की तो किले में सिया और केतन के आसपास हुडी पहने एक शख्स दिखा। उस दिन वहां का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था, इतनी गर्मी में कोई हुडी क्यों पहनेगा। इस सवाल के बाद एक के बाद एक परत उघड़ने लगी और पता चला कि हुडी वाला शख्स सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी है, जिसके साथ मिलकर सिया ने केतन की हत्या की साजिश रची। परिवार सदमे में है। वो जिस केतन के सिर पर सेहरा देखने का ख्वाब देख रहे थे, वो कफन ओढ़कर हमेशा के लिए चला गया।
8: अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए, इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
5: मुझे एक बार भी नहीं लगा सी ऐसे है। मुझे पुलिस की पूरा सपोर्ट चाहिए, पुलिस ने मेरे को साथ देना चाहिए। प्लीज मेरे बेटे को इंसाफ दिलाओ, मैं इतना ही बोलूँ। अब जल्द से जल्द कार्रवाई करवाई जाए, कट से कट सजा सिया को, सिया की फैमिली को दिया जाए।
0: इस कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, हर किसी के चेहरे पर सवाल है। पैसा था, रसूख था, फिर क्यों सिया ने यह कदम उठाया? वो रिश्ते से ना कहकर निकल सकती थी, लेकिन उसने इनकार की जगह हत्या का रास्ता क्यों चुना?
1: शादी करते टाइम पूरी चौकसी करे बिना शादी ना करे, चाहे कितने भी साल के रिश्ते हो, कितने भी हो, लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके बारे में सारी खोजतान करके करे, और जो कि उनको भविष्य में ये दुख सहना ना पड़े। इस दुख को और माँ बाप का फर्ज है कि वो भी अपने बच्चों की तरफ ख्याल रखे। अगर वो जिद कर रहे हैं शादी करने का, लो मैरिज करने का, तो उनका कर दें।
0: शादी तय होने के बाद से जनवरी 2026 से हत्या के दिन तक सिया ने अपने बॉयफ्रेंड से 2004 कॉल्स में 338 घंटे बात की थी, यानी रोज करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे की बातचीत। क्या सिया के परिवार वाले भी सिया को समझने में भूल कर रहे थे? कहा जा रहा कि 18 जून को अगर केतन बच जाता तो उसे रोड एक्सीडेंट में मार देने के लिए भी प्लान तैयार था, यानी हर मुस्कुराहट के पीछे कितना फरेब छुपा था इससे केतन बिल्कुल अनजान था, और उसका सिया पर विश्वास ही उसकी जान ले गया।
9: शादी के महज कुछ ही दिन बाद हनीमून पर निकला एक नवविवाहित जोड़ा। सामने थी मेघालय की खूबसूरत वादियां, ऊंचे पहाड़, झरने और नई जिंदगी के सपने, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस रिश्ते की मंजिल प्यार नहीं बल्कि मौत होगी। पहले दोनों के लापता होने की खबर आई, फिर एक गहरी खाई से मिला राजा रघुवंशी का शव, और उसके बाद जो कहानी सामने आई उसने पूरे देश को सन्न कर दिया।

0: जो केतन और सिया की कहानी है उसमें एक चेतन है। इसी तरह पिछले साल यानी 2025 में एक और कहानी थी बिल्कुल इसी तरह की, जिसमें एक हसीना थी, एक दीवाना था और एक तीसरा आदमी भी। यूं समझ लीजिए कि सिया की जगह सोनम थी, केतन की जगह राजा रघुवंशी और चेतन चौधरी की जगह राज कुशवाहा। कहानी शुरू होती है 11 मई 2025 से। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की शादी खूब धूमधाम से होती है। सब बहुत खुश, ऐसा लग रहा था जैसे परियों की प्रेम कथा चल रही हो। राजा बहुत खुश था सोनम को पाकर, लेकिन सोनम के मन में पाप। शादी के 9 दिन बाद यानी 20 मई 2025 को राजा और सोनम हनीमून मनाने मेघालय चले गए। मेघालय की ट्रिप सोनम ने प्लान की थी, टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक सब सोनम के नाम से था। 23 मई को राजा और सोनम शिलोंग में नोंगरियाड गांव घूमने गए। सोनम की राजा की मां से बात भी हुई।
1: लौटने की टिकट नहीं कराई, क्योंकि जाने की टिकट कराई ना तो राजा ने मेरे को बता दिया, मम्मी वो सोनम ने टिकट करा लिया मेरी और मेरे को परसों के रोज निकलना है। तो मैंने कहा बेटा इतने जल्दी, तो बोले अब तो उसने टिकट करा ली, बोले कि तो बोलती चलना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा चले जाओ। मैंने कहा कितने दिन में आओगे, तो बोले 7 दिन में।
0: इसके बाद सोनम और राजा लापता हो गए। ना सोनम का कुछ पता चल रहा था ना राजा का, दोनों के परिवार वाले परेशान हो गए।
2: यही था कि राजा की हत्या करने के बाद उसकी लाश को किसी खाई में ठिकाने लगा दे, लाश कभी मिलेगी नहीं और राजा की हत्या गुमशुदगी की गुत्थी बनकर पुलिस की फाइलों में बंद हो जाएगी। उसके बाद सोनम अपनी अपहरण की कहानी बताकर दुनिया के सामने खुद को पीड़िता दिखाएगी।
0: 24 मई को पुलिस ने वो स्कूटी बरामद की जिससे सोनम और राजा घूमने निकले थे। पुलिस ने लापता दंपत्ति के तौर पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया 2 जून को। बेसाब डॉग वाटरफॉल के पास पुलिस को एक लाश मिली। लाश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लिहाजा शिनाख्त मुश्किल थी, लेकिन हाथ पर लिखे टैटू ने सारी कहानी खोलकर रख दी। टैटू से हाथ पर गुदा था राजा। लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि राजा की मौत सिर में गहरी चोट और धक्का देने से हुई। हत्या के मामले की पुष्टि होते ही शक की सुई सोनम की तरफ घूम गई, लेकिन सोनम कहां थे कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने सोनम को ट्रेस करना शुरू कर दिया और फिर आई तारीख 9 जून। तड़के सुबह सोनम को यूपी में गाजीपुर के ढाबे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
3: नहीं, वो वहाँ पे कस्टमर लोग कुछ बैठे थे, एक लेडीज, एक उनके पिता और 2 बच्चे। तो उनके पास जाती है, उनसे कुछ हेल्प मांगती है तो मना कर देते हैं। फिर मेरे पास आती है, बोलती है कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, हमको थोड़ा बात करना है। तो हम उनको अपना मोबाइल देते हैं, वो नंबर डायल करती हैं, फिर अपने भाई से मतलब हेलो भैया हम इतना ही कुछ बोल के वो रोने लगती हैं। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं, उनको यहाँ का एड्रेस बताते हैं, फिर इतना ही बात होता है।
4: उसके बाद पुलिस को कौन सूचना देता है, पुलिस कैसे आती है?
3: हम ही कॉल करते हैं, उसके बाद पुलिस आती है। वही बता रही थी कि मई में उनका शादी हुआ था, कुछ देर बाद वो अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी, फिर वहाँ पे अपहरण मतलब उनका गहना वहना चोरी करने की कोशिश की जाती है, उसी के बीच उनके पति की हत्या हो जाती है। और वो देख के बता रही थी कि मैं बेहोश हो गई, फिर यहाँ पे इनको मतलब यहाँ पे कैसे आई उस इनको ये भी आइडिया कुछ नहीं था।
0: इसके बाद जो सच सामने आया उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। सोनम रघुवंशी ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की पूरी साजिश रची थी। राज कुशवाहा लगातार सोनम के संपर्क में था।
5: इंदौर से कैसे गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुंचे थे और किस प्रकार इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया था ये उन्होंने पुलिस को बताया है। और साथ में ये भी बताया कि विशाल उर्फ विक्की जो है उसने पहले जो वहां से हथियार खरीदा था उसको राजा को पीछे से वार करके वार किया, पहला वार उसने किया। उसके अलावा जब वो अचेत हो गया, मृत अवस्था में आ गया, तो उसके बाद इसने इन्होंने सबने मिलके उसकी डेड बॉडी को नीचे खाई में।
0: राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी राज कुशवाहा शामिल हुआ था, जबकि यही वो शख्स था जिसने सोनम के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या के सारे किरदार जुटाए। सोनम ने 3 लोगों को सुपारी दी। जब राजा और सोनम पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तब वो हत्यारे भी आसपास ही चल रहे थे। राजा स्वस्थ और तगड़े शरीर का था, लिहाजा उसके बचने की कोई गुंजाइश न रह जाए इसके लिए पहले उसके सिर पर वार किया गया और फिर खाई में धक्का दे दिया। दरअसल वो राजा से नहीं राज से शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने राजा को रास्ते से हटाने का पूरा मन शादी से पहले ही बना लिया था। सोनम ने राजा के घर का विश्वास जीता और किसी भी तरह से शक नहीं होने दिया। सोनम रघुवंशी को 11 महीने बाद जमानत मिल गई, वो शिलोंग में ही है। उस पर और उसके बॉयफ्रेंड पर केस चल रहा है। लेकिन पुणे के केतन की हत्या जिस तरह से की गई उसने सोनम राजा कांड की यादें ताजा कर दी। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही किया गया और एक बेटा धोखे का शिकार होकर मौत की अनंत गहराइयों में खो गया। यहां भी सवाल वही कि शादी से इनकार था तो मना कर दिया होता, लेकिन हत्या का रास्ता आसान क्यों लगा?
6: प्यार, विश्वासघात और एक खौफनाक साजिश की एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में जिसने सुना वो हैरान रह गया। मेरठ का एक घर, एक लापता पति और सीमेंट से भरा एक ड्रम। जब इस ड्रम का राज खुला तो सामने आई एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अगली कहानी उस रिश्ते की जिसमें कत्ल से ज्यादा कत्ल का तरीका बदनाम हो गया। कहानी नीले ड्रम वाले हत्याकांड की।

0: ये हिंदुस्तान के सबसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर में से एक है। ये रिश्ते का ऐसा कत्ल था जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। ये एक ऐसी खौफनाक हत्या थी जो इससे पहले शायद ही अंजाम दी गई हो। ये कहानी है एक ऐसे कत्ल की जिसने रिश्तों पर भरोसा करने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा मर्डर जिसमें पत्नी ने पति की हत्या के बाद शव के टुकड़े किए, शव के टुकड़ों को एक ड्रम में भरा और फिर उसके ऊपर से सीमेंट डाल दी गई। हत्या के पीछे प्रेम, धोखा और साजिशों का जाल था। मेरठ का ये ब्लू ड्रम मर्डर केस हाल के वर्षों के सबसे सनसनीखेज हत्याकांडों में गिना जाता है।
1: साइकोपैथिक एंटी सोशल कैरेक्टर्स हैं जो कि अपनी भावनाओं की, अपनी सोच की पूर्ति में इतने विलीन होते हैं कि उन्हें उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। और यहां पे भी इन दोनों को बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आया, कोई गिल्ट नहीं किसी भी तरह। और बड़ा एक प्रीमेडिटेटेड तरीके से दवाएं खरीदी गई, उन एंटी एंग्जाइटी गोलियों को घोल मिला के उसको सौरभ को पिलाया गया, फिर कैसे उस पर वार हुआ, उसको मारा और उसके बाद ये होली खेल रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, 13 दिन हिमाचल में घूम के आ रहे हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली ये एक साइकोपैथिक मानसिकता है, एक बहुत विकृत मानसिकता है।
0: ये कहानी है सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की। सौरभ राजपूत मेरठ के रहने वाले थे और मर्चेंट नेवी में काम कर चुके थे। मुस्कान रस्तोगी से उनकी मुलाकात दोस्ती के जरिए हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। परिवारों के विरोध के बावजूद दोनों ने प्रेम विवाह किया। शादी के बाद उनकी एक बेटी भी हुई। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन समय के साथ रिश्तों में दरार पड़ने लगी।
2: क्या कहना है इस बारे में जो इस तरीके से ये घटना हुई है?
3: गलत कराए जी, वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है उसके लिए, उसे फांसी होनी चाहिए।
4: मेरा बेटा छीना है उसने, मेरा बेटा।
5: बहुत केयर करता था वो, हमें बहुत मानता था, हम जो कैसे कहते थे मानता था वो, लेकिन उसके प्यार में उससे प्यार से ज्यादा नहीं मानता था। सू भी जो कहती थी वो ही करता था वो, लेकिन हमें रेस्पेक्ट दी, इसलिए उस बच्चे को मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए।
2: बेटी को फांसी होनी चाहिए?
5: फांसी होनी चाहिए उसे फांसी। ऐसा आने वाले समय
4: किसी के संग में कुछ भी कर सकता है जी।
5: होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए उस बच्चे के लिए, होनी चाहिए सौरभ के लिए होनी चाहिए।
4: मेरी तरफ से कुछ चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ जी, उसे फांसी होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए।
0: सौरभ विदेश में नौकरी करते थे। इसी दौरान मुस्कान की नजदीकियां साहिल शुक्ला नाम के एक युवक से बढ़ी। दोनों ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रची। मार्च 2025 में सौरभ भारत आए तो मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उनको गहरी नींद में सुला दिया और फिर दोनों ने मिलकर सौरभ की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें एक नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से भर दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सके। मामले की परतें तब खुलनी शुरू हुई जब सौरभ के गायब होने को लेकर सवाल उठने लगे। जांच के दौरान पुलिस को कई सुराग मिले। बाद में मुस्कान ने अपने परिवार के सामने अपराध की बात कबूल की, जिसके बाद पुलिस तक जानकारी पहुंची।
6: 2019 से ही जो मुस्कान है और साहिल इनके अवैध संबंध थे, इस बात की जानकारी सौरभ को भी थी। सौरभ ने 2021 में इसमें डाइवोर्स भी फाइल किया था, परंतु परिजनों द्वारा इनको समझा बुझा दिया गया था। जो मुस्कान है उसको जब पूछताछ की तो उसने बताया कि साहिल थोड़ा शराबी किस्म का था, शराब पीता था।
0: लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इतनी नफरत क्यों, वो भी उस शख्स से जो आपकी जिंदगी का हम सफर था। ये क्या सोच होती है जो अपने सबसे करीबी रिश्तों में इस कदर कड़वाहट घोल देती है कि नौबत यहाँ तक आ जाती है।
7: ये लोग सबसे पहले सोचते हैं, आपने सभी ने देखा कि इसके अंदर एग्जिट प्लान सबसे पहले आता है। तो उस ड्रम के अंदर भी उसको ये लगता है कि वो ड्रम के अंदर टुकड़े डालकर सीमेंट डालकर उसके बाद छुपा देंगे, वो चीज उस तक वापस नहीं आएगी। वो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं ये बोल दिया जाएगा कि मुझे पता नहीं था। ये जो प्लानिंग होती है ये एक ही दिन की प्लानिंग नहीं होती है। रिवर्स साइकोलॉजी, जैसे मैंने कहा कि रिवर्स साइकोलॉजी के अंदर आप इनके पूरे पुराने कई ऐसे केसेस निकल कर आएंगे स्कूलों के अंदर, माँ बापों के साथ, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। कहीं ना कहीं उन्होंने बुली सिस्टम, नार्सिसिस्ट सिस्टम, कहीं पर नार्सिसिस्ट की जो ट्रेट्स हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी चीज, मेरी इंडिपेंडेंस, मेरा प्यार, दूसरा उनके सामने कोई नहीं। और उसमें पैरानॉइड, एक अगर उनके दिमाग में कोई एक कीड़ा बैठ गया या कोई एक ऐसी थ्योरी उनके दिमाग में बैठ गई जिसको उन्होंने एलिमिनेट करना है, तो वो उसको पूरा करके ही दम लेंगे।
0: बहरहाल इस हत्याकांड ने न सिर्फ रिश्तों को तार तार करने की एक भयानक मिसाल पेश की, बल्कि नीले ड्रमों की भी एक नई व्याख्या कर दी।
8: वक्त एक से ब्रेक का उछला है, ब्रेक के बाद भी कहानी का इस सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हत्या की सबसे बड़ी वजहों में प्रेम संबंध शामिल है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में लव अफेयर्स हत्या की तीसरी सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आया, यानी प्यार जो जिंदगी बनाने का वादा करता है कई बार जान लेने की वजह बन रहा है।

0: एक रिसर्च कहती है कि कुल हत्याओं में महिलाओं द्वारा अपने पार्टनर की हत्या का प्रतिशत काफी कम है। अधिकांश पार्टनर हत्याओं में पीड़ित महिलाएं होती हैं, जबकि अपराधी पुरुष होते हैं। वैश्विक स्तर पर महिलाओं की हत्या का लगभग 39% हिस्सा उनके पार्टनर द्वारा किया जाता है। लेकिन जब जब महिलाओं ने हाथों में हथियार उठाए हैं तो रिश्ते तार तार हो गए, जिंदगियां तबाह हो गई, लिस्ट बड़ी लंबी है। 2025 में औरैया में शादी के महज 15 दिन बाद प्रगति यादव ने पति प्रदीप यादव की हत्या कर दी। आरोप है कि पत्नी और उसके प्रेमी ने शादी में मिले पैसों से सुपारी किलर की व्यवस्था की। 2025 में उत्तर प्रदेश में आरोप है कि पत्नी रेखा ने पति केहर पाल सिंह को पहले जहर दिया, फिर गला घोटकर हत्या कर दी। 2025 में जयपुर में आरोप है कि गोपाली देवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति धन्नालाल सैनी की हत्या की और शव को जला दिया। 2019 में मेरठ में अदालत ने पत्नी निशा और उसके प्रेमी को पति की हत्या कर उसे आत्महत्या दिखाने के मामले में दोषी ठहराया। 2025 में हरियाणा में आरोप है कि पत्नी रवीना राव और उसके प्रेमी ने पति प्रवीण की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया ताकि सबूत मिटाए जा सके। 2018 में दिल्ली में रंजू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति वीरेंद्र पांडे की कथित तौर पर हत्या की और फिर मौत को हादसा साबित करने के लिए दीवार गिरने की झूठी कहानी गढ़ी।
1: न्यायपालिका जो पहले बिल्कुल 100% महिला सेंट्रिक थी वो मध्य मार्ग में आती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ पुरुष के पक्ष में अभी हो गया है और कानूनी प्रावधान में पुरुष के फेवर में अभी तक कोई ऐसा कानूनी चेंज नहीं लाया गया है। बहुत सा मूवमेंट हो रहा है, बहुत से PIL फाइल हो रहे हैं, बहुत से NGO हैं जो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो सब अभी मूवमेंट के स्टेज में है। लेकिन कानूनी प्रावधान पे अगर देखेंगे तो न्यायपालिका का जो अपना सोच है उसमें जो परिवर्तन आया है उसके अलावा दूसरा कोई प्रोटेक्शन अभी जो है पुरुष के लिए ऐसा अलग से कानून में होता हुआ नहीं दिख रहा है।
0: सिया केतन, सोनम राजा, मुस्कान सौरभ, इस जैसे तमाम मामले सिर्फ नाम नहीं बल्कि वो आंकड़े हैं जो अपराध की नई कहानी बयान करते हैं। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में हत्या की तीसरी सबसे बड़ी वजह प्यार, मोहब्बत और अवैध संबंध होते हैं। NCRB के मुताबिक 2024 में देश भर में 27,049 हत्याएं हुई थी। इनमें से 2,802 हत्याओं की वजह लव अफेयर्स या अवैध संबंध थे। इसका मतलब हुआ कि 10% कत्ल इन्हीं दो वजहों से हुए थे, यानी हर 10 में से एक कत्ल। 2010 से 2014 के बीच हत्या के कुल मामलों में ऐसी हत्याओं का हिस्सा 7-8% था, लेकिन 2016 से 2024 के बीच ये बढ़कर 10-11% तक हो गया। अकेले 19 मेट्रो शहरों में ही 2024 में लव अफेयर्स और अवैध संबंध के कारण 187 मर्डर हुए थे।
2: आज जब हम लोग क्राइम को देखते हैं और कई पोजीशन सामने आती है, तो अब जब कोर्ट्स के सामने फीमेल्स ने भी इस तरीके की प्रताड़िता करी हुई है और इवन ब्रुटालिटी के साथ उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट के भी रखा है, कईयों ने असॉल्ट किया है, कईयों ने डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, कईयों ने घर के अंदर पूरे की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया है, तो उसके अंदर ये नज़र आता है कि एविडेंसेस के तौर पर वो पूरे एविडेंस क्रोनोलॉजी वाइज इवेंट की तरह से नॉट ओनली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के रूप में CCTV फुटेज के साथ आपके डिजिटल इम्प्रिंट के साथ वो चीज सामने आए और कोर्ट में प्रूव हो, वो सामने हो, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को जो एक निर्धारित लॉ है उसके अंदर उसे वो सजा बिल्कुल मिलेगी और उसी के बिहाफ पर उनको उनको लॉयर भी प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हें इक्वालिटी भी दी जाएगी कि वो अपने पक्ष को भी आगे रखे।
0: सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में इस तरह के मामले आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस पर एक शोध किया गया। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी की एक रिसर्च ये समझने की कोशिश करती है कि ऐसे जघन्य अपराधों के पीछे अपराधियों की मानसिकता क्या होती है। क्या ये हत्याएं अचानक गुस्से में हो जाती है या फिर इनके पीछे लंबी सुनियोजित तैयारी होती है?
1: इस तरह के केसेस जो हाल फिलहाल में बहुत सारे हुए हैं, एक मेघालय में एक अपना केस हुआ था, कोई रघुवंशी थे उनका, उसके पहले एक कोई ब्लू ड्राम का केस था मेरठ का अपना। इन सारे केसेस में एक और बात यह देखी गई है कि उन स्त्रियों को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल बेल दे दिया गया। बेल हो जाने के बाद ट्रायल में कोई बहुत स्पीड नहीं हो रहा है। इसका जो एक समाज में जो एक इसका मैसेज जा रहा है वो भी एक विचारणीय बिंदु है कि इस तरह के जघन्य अपराधों में अगर बेल दे दिया जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इस तरह की बहुत सी घटनाएं हो रही हैं तो एक ये संदेश जरूर गया हुआ है समाज के अंदर कि सजा के बगैर आदमी छूट सकता है या सजा होने में जितना समय लगेगा, मतलब एक ये विश्वास रह रहा है कि हम इस तरह का अपराध करके बच निकलेंगे। और ये अपराध करके बच निकलेंगे इस भाव के चलते इस अपराधों की संख्या और मतलब क्रमशः बढ़ती जा रही है। जिस चीज की आवश्यकता है वो है कि जितनी तीव्र गति से इनका ट्रायल कंप्लीट करके और सजा सुनाई जा सके, नहीं तो इसके चलते जो एक समाज में जो संदेश जा रहा है वो बहुत गलत जा रहा है और जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं तो एक चिंता का विषय तो हो ही गया है।
0: आमतौर पर ये माना जाता है और क्रूर अपराध ज्यादातर पुरुष करते हैं, जबकि महिलाएं तभी हिंसक होती हैं जब वो लंबे समय तक घरेलू हिंसा या प्रताड़ना का शिकार रही हों। लेकिन AIC की रिसर्च रिपोर्ट इस सोच को पूरी तरह चुनौती देती है। रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं द्वारा अपने पार्टनर की हत्या के लगभग 48% मामले अचानक गुस्से में नहीं होते बल्कि पहले से सोचे समझे और योजनाबद्ध होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे अपराधों के पीछे सबसे बड़े कारण शक, ईर्ष्या, रिश्तों में तनाव या अपनी किसी छुपी हुई जिंदगी को बचाने की कोशिश होते हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि इस तरह के अपराधों में नशे और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन में पाया गया कि ऐसी वारदातों में शामिल लगभग 68% महिलाओं ने अपराध से पहले के 24 घंटों में शराब का सेवन किया था। वहीं करीब 19% मामला किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही थी। हालांकि यह जरूरी नहीं कि नशा या मानसिक समस्या सीधे अपराध का कारण बने, लेकिन रिसर्च बताती है कि कई मामलों में ये परिस्थितियां फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करती है और हिंसक व्यवहार का जोखिम बढ़ा सकती है।
2: कहानी है मेरे साथ, अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: बड़ी खबर अब आपको पाकिस्तान से देते हैं। पाकिस्तान के कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर के पास धमाका हुआ है। इस धमाके में 4 लोगों की मौत हुई है, कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जब ये धमाका हुआ उसके बाद जानकारी मिल रही है कि काफी देर तक वहां पर फायरिंग भी हुई। और ये रेंजर्स हेडक्वार्टर के पास धमाका हुआ है। धमाके के बाद से अफरा तफरी का माहौल भी वहां पर देखने को मिला। तो कराची में ये बम धमाका और उसके बाद फायरिंग की खबर है, और वो भी रेंजर्स हेडक्वार्टर गुलिस्तान जौहर के पास में। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी जुड़ गया। अरविंद, किसने ये धमाका करवाया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस धमाके के संबंध में?
1: देखिए, एक तंजीम है, आतंकी तंजीम, उसने अभी ये क्लेम किया है जो लोकल मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट आई है उसके मुताबिक 5 जो टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं रेंजर्स की तरफ से। जो मुकाबला हुआ था, जो गोलीबारी हुई थी, उसमें कुल मिलाकर जो जानकारी मिली है कि 9 आतंकी आए थे। उन्होंने जो कराची में जो ये इलाका है, रेंजर्स का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर सबसे पहले फिदाइन अटैक हुआ, उसके बाद एक के बाद एक 2 बम धमाकों की आवाज आई, उसके बाद चारों तरफ जो अटैकर्स हैं वो फैल गए और लगातार गोलीबारी करने लगे। उस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। लेकिन अभी अभी जो आज तक के पास एक्सक्लूसिव फुटेज आया है और जानकारी आई है उसके मुताबिक 5 जो आतंकी हैं वो भी मारे गए हैं। तो 4 जो लोकल लोग वहां पर थे वो मारे गए हैं, 3 घायल थे जबकि 5 आतंकी मारे गए हैं। बड़ा ये अटैक है, तकरीबन 8:10 पर ये हमला शुरू हुआ। सबसे पहले जो फिदाइन हमलावर आए थे उन्होंने जो रेंजर्स हेडक्वार्टर है उसके गेट के पास जो गाड़ी थी उसको टकराया जिससे वो धमाका हुआ। एक के बाद एक 2 बम धमाकों की आवाज सुनाई दी, उसके बाद गोलीबारी शुरू हुई। उसके बाद जो पाकिस्तान रेंजर्स के जवान है वो एक के बाद एक बड़ी संख्या में वहां पर आने लगे और लगातार तकरीबन 1.5 घंटे से जो गोलीबारी है वो दोनों तरफ से चल रही थी, जिसमें अब 5 आतंकियों के मारे जाने की जानकारी मिली है। राजीव,
0: बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस तमाम जानकारी। अब बात है कैसे हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे हैं। अब सिया और चेतन के बीच में क्रिकेट का कनेक्शन सामने आया है।
2: क्या परिवार को चेतन और सिया के अफेयर की जानकारी थी? क्या सिया ने केतन के साथ शादी का विरोध किया था? क्या परिवार सिया की शादी जबरन केतन से कराना चाहता था? आखिर 19 साल की उम्र में सिया की शादी की जल्दबाजी परिवार को क्यों थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे खेल में पुलिस की जांच की सुई सिया के भाई की ओर भी घूम रही है। पुणे पुलिस ने इस मामले में सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की है। लगभग 10 घंटे तक उससे सवाल जवाब किए। सिया का भाई साहिल और चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के मैदान पर ही पहली बार सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई थी। फिर 2025 में दिवाली की पार्टी में सिया और चेतन दोबारा मिले, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हुई और बात आगे बढ़ गई।
3: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
2: यानी सिया के भाई को चेतन और सिया के बीच चल रही दोस्ती की जानकारी थी, क्योंकि खबरों की माने तो सिया के भाई के साथ मैच देखने जाती थी, जिसकी वजह कहीं ना कहीं चेतन से मुलाकात को माना जा रहा है। हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है।
4: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
5: नहीं, मैंने आज तक कभी उससे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
4: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
5: नहीं थी, पहचानते नहीं।
4: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
6: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
4: हाँ।
6: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
5: हाँ। तो हाँ।
6: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
4: हाँ।
6: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना, और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
2: इस बीच केस की जांच कर रही पुणे पुलिस ने खुलासा किया है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। जांच में पता चला है कि सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या कर दी जाए तो उन्हें शादी के बारे में सोचने से पहले कम से कम 3 साल और मिल जाएंगे। पुलिस को शक है कि चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले 2-3 साल का और समय चाहता था। जांच में पता चला है कि अरेंज मैरिज के टूटने पर समाज में बदनामी के डर से सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि सिया का परिवार अभी भी दावा कर रहा है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
6: ये कुछ पता नहीं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी, और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
2: एक और अहम बात सामने आई है, वो ये है कि फरवरी में सगाई से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने गए थे। बताया जाता है कि जनवरी में दोनों राजस्थान गए थे और एक ग्रुप ट्रिप के तहत वहाँ 5 दिन रुके थे। चेतन मूल रूप से राजस्थान के रहने वाला है, लेकिन परिवार बार बार कह रहा है कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी।
4: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
5: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है, और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो, मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
6: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
2: बहरहाल इतना साफ है कि चेतन और सिया का भाई एक दूसरे को जानते थे। अब परिवार को इसकी कितनी जानकारी थी इसका सच आना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
0: अलीब ये आखिर हत्या की प्लानिंग किसकी थी? सिया ने चेतन को हत्या के लिए तैयार किया या फिर पूरा प्लान चेतन का ही था? इस मामले में दोनों के मोबाइल फोन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिससे जो डेटा है वो डिलीट कर दिया गया है।

0: आखिर केतन के मर्डर की साजिश कब रची गई? आखिर कब से केतन को मारने का प्लान था? किसने केतन की हत्या का आइडिया दिया? लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था? अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को बाहर निकालना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारियां सामने आ सकती हैं। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर के प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई? जांच ने तब एक नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ही डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं को शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई है बल्कि उसे अपने डिवाइस से रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फॉरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई।
1: तो जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम एफएसएल में वो क्यूरी वो पूछ।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच बातचीत संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। मोबाइल से साफ हो सकता है कि आखिर लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था। हालांकि सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ भी गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
3: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
5: इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, केतन को उसने ऐसा कन्वेंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे, तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
0: शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आया। उसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
2: जो उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
1: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
0: एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी, तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ी थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
6: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
0: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
7: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज़्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
0: पुणे पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। इससे पहले सिया के भाई से 10 घंटों तक सवाल जवाब भी किए गए थे। ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
8: मुंबई में मुहर्रम जुलूस से पहले एक बहुत बड़े साजिश का दावा सामने आया है। भाईखला पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार कर लगभग 14,900 कैप्सूल जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में इन कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिलने की बात सामने आई है। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला सामने आया, आरोपी से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बीबीए ग्रेजुएट है और पुणे में पेंट का कारोबार करता है। यह आरोपी ईरान और इराक भी जा चुका है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसके तार किसी आतंकी संगठन से जुड़े थे या इसके पीछे इसका कोई अन्य मकसद था। फिलहाल किसी आतंकी कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है।
9: उसने इस प्रोसेशन को टारगेट करने के लिए और साथ ही में लोगों को हानि पहुंचाने के लिए टोटल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर की थी ऑनलाइन और साथ ही में 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल के उसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट किया और वहां पे बहाना बनाया कि ये कैप्सूल पेन किलर की तरह काम करती है और प्रोसेशन में जाने वाले लोगों को ऐसा फंसा के उसने कैप्सूल बेचने की कोशिश करी। परंतु मुंबई पुलिस की सतर्कता और होशियारी और मेहनत की वजह से ये बड़ा हादसा टला है। और
8: अब उज्जैन की जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक के प्यार के इजहार पर मना करना युवती को भारी पड़ गया। सिर्फ एक आशिक ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
10: एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम, सिरफिरे युवक ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ 14 बार कर दिए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि बेखौफ युवक ने महज 10 सेकंड में युवती पर 14 बार कर दिए। युवती चीखती रही लेकिन युवक रुका नहीं।
11: घटनास्थल पर आया, बालिका से बातचीत करी और बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद उसने उसके ऊपर चाकू से मल्टीपल वार किए। बालिका को भी हमने एसएन कृष्णा अस्पताल में रेफर हुई थी तो वहां भर्ती है और हमने वहां देखने भी गया था और अभी उसका ऑपरेशन कराया जा रहा है।
10: पुलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लिया और आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया।
11: आरोपी को टीम ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान वो भागने के प्रयास में उसके पैर में चोट आई है, उसका पैर बुरी तरह जख्मी है तो उसको भी इलाजरत इलाज कराया जा रहा है। एक बार इलाज हो जाए उसके बाद उससे उसके जो इंटेंशंस हैं उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी।
10: जांच में सामने आया है कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोपी युवती से एक तरफा प्रेम करता था और जब युवती ने उससे दूरी बनाई तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आज तक ब्यूरो।
8: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर तेज हुई तकरार। अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी के बचाव में आरएसएस, कहा एसआईटी जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं। संसद में समाजवादी पार्टी

टीएमसी के बागी नेताओं के खिलाफ ममता गुट ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, गलत पहचान बताने, फर्जीवाड़ा और पार्टी नाम के इस्तेमाल का आरोप। 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर बात। पाकिस्तान के कराची में धमाका और फायरिंग से अफरा तफरी, रेंजर्स हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक, अब तक 4 की मौत, कई घायल।

चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट का कबूलनामा चंपत रहा, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मिला, अगली बैठक में त्यागपत्र पर फैसला। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान, कहा कि घटनाओं से हम स्तब्ध आहत दुखी हैं। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर तकरार तेज, अखिलेश यादव पर निशाना, कहा कि बीजेपी के लिए धर्म से पहले धन। अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी बचाव में आया आरएसएस, इंद्रेश कुमार ने कहा कि एसआईटी जांच के बाद सियासत की आवश्यकता नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सरकार को घेरेगी समाजवादी पार्टी, संसद में उठाएगी मुद्दा। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा पेपर लीक, आज होने वाली परीक्षा को स्थगित किया गया। टीईटी परीक्षा पेपर लीक मामले में 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज, थाने में मिला प्रश्न पत्र। महाराष्ट्र में पेपर लीक मामले की जांच के लिए फडणवीस सरकार ने बनाई एसआईटी, डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि बचेंगे नहीं गुनेगा। पेपर लीक पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा कि देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था वसूली सिस्टम बन गए है। प्रियंका ने भी आंदोलन की अपील। उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को घेरा, कहा कि दिन के उजाले में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सिर्फ सत्ता से इनको मतलब। 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत, राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सेशल्स के राष्ट्रपति पेट्रो के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे पीएम मोदी, रिश्तों में मजबूती पर होगी बातचीत। टीएमसी के बाकी नेताओं के खिलाफ ममता गुट ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, गलत पहचान बताने, फर्जीवाड़ा और पार्टी का नाम इस्तेमाल करने का आरोप। महाराष्ट्र में सियासी हलचल पर उद्धव ठाकरे का बयान, कहा कि यह ऑपरेशन टाइगर नहीं बल्कि ऑपरेशन देवेंद्र है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अल्टीमेटम, कहा कि अगर 1 महीने के भीतर फायर ऑडिट, जरूरी सुरक्षा उपकरण या तय सुरक्षा उपायों के नियमों का पालन नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। पुणे में खेतन हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल ने लगभग उनसे 12 घंटे के आसपास पूछताछ हुई। पुलिस के जांच में बड़ा खुलासा, पुलिस के मुताबिक केतन की हत्या से पहले दोनों आरोपी सिया और चेतन लोहागढ़ किले से धक्का देने का अभ्यास भी उन्होंने किया। पुणे में केतन को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, कैंडल मार्च निकाला। अकाल तख्त के सामने पेश होने से पहले पंजाब में आप विधायकों से आज मिलेंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। मुंबई में मुहर्रम जुलूस को निशाना बनाने की साजिश नाकाम, 14,900 जहरीले कैप्सूल जब्त किए गए, आरोपी फैयाज पकड़ा गया। भूकंप के झटकों से हिला दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका, उत्तर भारत भी अफगानिस्तान में था केंद्र, 6.2 तीव्रता रिक्टर स्केल पर थी। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके, दहशत के चलते लोग घरों से बाहर निकले। पाकिस्तान के कराची में धमाके और फायरिंग से अफरातफरी, रेंजर्स हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक की आशंका, अब तक 4 लोगों की मौत। जमात उल अहरार ने कराची धमाके की जिम्मेदारी ली, कहा कि हमले में शामिल थे हमारे 9 लोग। दिल्ली में उमस वाली गर्मी से हाल बेहाल, 41.3 डिग्री दर्ज किया गया तापमान, 48.4 डिग्री पर पहुंचा महसूस होने वाला टेम्परेचर। गाजियाबाद में थार में पेट्रोल डालकर लगाई गई आग, हिस्ट्री शीटर समेत 2 पर मुकदमा। बांदा में दुकानदार पर सोते समय एसिड अटैक, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। फजिलगंज में नकली पुलिस गिरोह का पर्दाफाश, 1 महिला समेत 4 गिरफ्तार। गोले में भाई से विवाद के बाद से युवक ने लगाई आग, पेट्रोल डालकर खुदकुशी की कोशिश। झांसी में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा, चालू हालत में पोर्टेबल मशीन छोड़कर 2 आरोपी फरार। हैदराबाद में दर्दनाक हादसा, बहन ने 4 साल की मासूम को कुचला, घटना सीसीटीवी में कैद। सूरत के भीस्तान में दर्दनाक हादसा, डंपर की चपेट में आने से मां और बेटी की मौत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में धमाका, 1 व्यक्ति की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आए 500 करोड़ के हेरोइन का भंडाफोड़, महिला समेत 3 गिरफ्तार। गिरिडीह में वाहन में लगी भीषण आग, 4 ट्रांसफार्मर जलकर राख, मची अफरातफरी। जामनगर के खंभालिया में आवारा कुत्तों का आतंक, दादा पोते पर किया हमला, घटना सीसीटीवी में कैद। खेड़ा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई ये आवाज।

अमृतसर पुलिस ने ड्रोन के जरिए हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, 10 अत्याधुनिक पिस्तौल बरामद, 4 गिरफ्तार। मुरैना में पति ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की, घरेलू विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया। राजनांदगांव में नशे में धुत ट्रक चालक ने बच्ची को रौंद दिया, लगभग 2 घंटे के बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, ईरान ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी ठिकानों पर रक्षात्मक हमले किए। यूक्रेन के सुमी शहर पर रूस ने बरसाए जबरदस्त बम, रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना जिसमें 2 बच्चों समेत 13 लोग हैं। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ने इसराइल के साथ हुए समझौते का स्वागत किया, कहा कि समझौता संप्रभुता वापस पाने की एक शुरुआत। हिजबुल्ला चीफ नईम कासिम ने लेबनान सरकार से डील तोड़ने की अपील की, कहा कि फ्रेमवर्क समझौते को तुरंत आप खारिज करें। जापान के रक्षा मंत्री गेन नागाताने ने दक्षिण कोरिया का दौरा किया और दक्षिण कोरियाई वायुसेना के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। एशिया प्रशांत महासागर में चीन और रूस ने सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, लड़ाकू विमानों ने आसमान में दिखाई अपनी ताकत। वेनेजुएला में भूकंप से तबाही ड्रोन तस्वीरें आई सामने, दुनिया भर के देशों ने भेजी मदद। जापान के कई हिस्सों में भारी बारिश और दोहरे तूफान के चलते बड़ी तबाही, कहीं पर भूस्खलन, कहीं पर बाढ़ का पानी दिखाई दिया। जर्मनी समेत यूरोप के कई हिस्सों में भीषण गर्मी, सैनन प्रांत में दर्ज किया गया रिकॉर्ड 41.3 डिग्री सेल्सियस तापमान। बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर ऑस्ट्रेलिया सरकार सख्त, कानून तोड़ने वाले टेक कंपनीज पर लगेगा 68 मिलियन का जुर्माना।

मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अब ट्रस्ट की अगली बैठक 11 जुलाई को होनी है। इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर डॉक्टर अनिल मिश्रा के उत्तराधिकारी को चुनने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे पहले राम मंदिर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें चंपत राय को लेकर बयान सामने आया। बयान में कहा गया कि चंपत राय ने इस्तीफे की पेशकश की है लेकिन अभी उसे स्वीकार नहीं किया है, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

0: चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें पूरे मामले में दुख जताया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। वहीं जनता से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। लेकिन सबसे बड़ी बात, राम मंदिर की ओर से बताया गया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है।
1: 8 एक्यूज्ड थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं, अलग अलग अमाउंट के रूप में।
0: 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
2: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
3: क्या आप क्या कहना चाहेंगी?
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं।
5: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं, तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
2: अच्छा,
5: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
2: क्या पैसा बढ़ गया?
5: हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया, और अभी हाल में भागवत करवाए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में CCTV कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल RMO को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: भले ही ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर ना किया हो, लेकिन इस पूरे मामले में चंपत राय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी चंपत राय को लेकर सवाल पूछ रहा है।
0: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर चंद मोहरों को बलि का बकरा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
7: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले CCTV बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें कड़ी सजा मिले।
8: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपत राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
9: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से ही हो रहा है।
0: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
10: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं, जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
11: जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
0: एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।
6: मंदिर अब 2027 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर 2027 में उनकी सरकार आती है तो अयोध्या को शानदार तरीके से डेवलप तो करेंगे और साथ ही साथ जांच भी करवाएंगे। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के इन तमाम दावों को सपना बताया।
12: इन्होंने तो रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र ने लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी की।
13: राम मंदिर पर हो रहे खुलासे से साधु से लेकर राम भक्तों तक में आक्रोश है। वहीं विपक्ष पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
14: सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है।
8: मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ कि जो चंदा चोर हैं वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी सीएम से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए, इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ।
13: उधर योगी आदित्यनाथ जनता को भरोसा दे रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
15: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
13: साफ है राम मंदिर चंदा चोरी का शोर अब चुनावी मंचों पर गूंजने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या को नए तरीके से विकसित करेंगे, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अनुभूति करेंगे।
14: मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था या गुप्त दान था, तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
13: इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम के दर्शन की तस्वीर साझा की तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। राम सबके हैं, फिर भाजपा सरकार की दोहरी नीति क्यों? अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के लिए कैमरे और विशेष छूट, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और आम श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम। कुछ दिन पहले जब मैंने दर्शन किए तब व्यवस्था अलग थी। बहरहाल राम मंदिर चंदा चोरी के मामले की गूंज इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। इस मुद्दे की पहली अग्नि परीक्षा 2027 के यूपी चुनाव में होगी, जहां जनता तय करेगी कि वो जांच से कितनी संतुष्ट नजर आई। आज तक ब्यूरो।
6: बात भ्रष्टाचार से जुड़ी एक और खबर की, जहां लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट पेपर लीक का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक हो गया, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच का ऐलान किया है।
13: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है।
16: प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है, ऐसा थाने भिवंडी में हुआ है। पुनः एफआईआर हो गई है, हमारे परीक्षा परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त दोनों भी वहाँ। रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, अगली तारीख हम दे देंगे।
13: एग्जाम रविवार को होना था। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। जांच में पता चला है कि 1.5 करोड़ में पेपर बेचा जा रहा था।
17: पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कॉन्टेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ, उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है, उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किया है।
13: परीक्षा में 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। ऐसे में अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है।
18: ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
19: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
20: जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है और कभी कभार जैसे लीक में 22 बच्चों ने वहाँ पे आत्महत्या की और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपने ये सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए, हम सबकी मांगनी है।
13: महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं उनके लिए भी टीईटी जरूरी है, लेकिन नीट के बाद अब टीईटी पेपर लीक ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
6: मुंबई में मुहर्रम जुलूस से पहले एक बहुत बड़ी साजिश का दावा सामने आया है। भाईखला पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार कर लगभग 14,900 कैप्सूल जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में इन कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिलने की बात सामने आई है। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला सामने आया, आरोपी से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बीबीए ग्रेजुएट है और पुणे में पेंट का कारोबार करता है। यह आरोपी ईरान और इराक भी जा चुका है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसके तार किसी आतंकी संगठन से जुड़े थे या इसके पीछे इसका कोई अन्य मकसद था। फिलहाल किसी आतंकी कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है।
21: उसने इस प्रोसेशन को टारगेट करने के लिए और साथ ही में लोगों को हानि पहुंचाने के लिए टोटल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर की थी ऑनलाइन और साथ ही में 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल के उसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट किया और वहां पे बहाना बनाया कि ये कैप्सूल पेन किलर की तरह काम करती है और प्रोसेशन में जाने वाले लोगों को ऐसा फंसा के उसने कैप्सूल बेचने की कोशिश करी। परंतु मुंबई पुलिस की सतर्कता और होशियारी और मेहनत की वजह से ये बड़ा हादसा टला है।
6: अब बात एक ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे हैं। अब सिया और चेतन के बीच में क्रिकेट का कनेक्शन सामने आया है।
13: क्या परिवार को चेतन और सिया के अफेयर की जानकारी थी? क्या सिया ने केतन के साथ शादी का विरोध किया था? क्या परिवार सिया की शादी जबरन केतन से कराना चाहता था? आखिर 19 साल की उम्र में सिया की शादी के जल्दबाजी परिवार को क्यों थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं।
1: इस पूरे खेल में पुलिस की जांच की सुई सिया के भाई की ओर भी घूम रही है। पुणे पुलिस ने इस मामले में सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की है। लगभग 10 घंटे तक उससे सवाल जवाब किए। सिया का भाई साहिल और चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के मैदान पर ही पहली बार सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई थी। फिर 2025 में दिवाली की पार्टी में सिया और चेतन दोबारा मिले, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हुई और बात आगे बढ़ गई।
3: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
1: यानी सिया के भाई को चेतन और सिया के बीच चल रही दोस्ती की जानकारी थी, क्योंकि खबरों की माने तो सिया के भाई के साथ मैच देखने जाती थी, जिसकी वजह कहीं ना कहीं चेतन से मुलाकात को माना जा रहा है। हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है।
22: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
23: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
22: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
23: नहीं थी, पहचानते नहीं।
22: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
24: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
22: हाँ।
24: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
23: हाँ। मेरा साहिल।
24: उस टाइम पे ये मिले थे। उसके बाद कोई बात नहीं। उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
1: इस बीच केस की जांच कर रही पुणे पुलिस ने खुलासा किया है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। जांच में पता चला है कि सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या कर दी जाए तो उन्हें शादी के बारे में सोचने से पहले कम से कम 3 साल और मिल जाएंगे। पुलिस को शक है कि चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले 2-3 साल का और समय चाहता था। जांच में पता चला है कि अरेंज मैरिज के टूटने पर समाज में बदनामी के डर से सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि सिया का परिवार अभी भी दावा कर रहा है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
24: ये कुछ बता नहीं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
1: एक और अहम बात सामने आई है, वो ये है कि फरवरी में सगाई से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने गए थे। बताया जाता है कि जनवरी में दोनों राजस्थान गए थे और एक ग्रुप ट्रिप के तहत वहां 5 दिन रुके थे। चेतन मूल रूप से राजस्थान के रहने वाला है, लेकिन परिवार बार बार कह रहा है कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी।
22: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
23: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो, मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
24: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो इस बात की बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली का।
1: बहरहाल इतना साफ है कि चेतन और सिया का भाई एक दूसरे को जानते थे। अब परिवार को इसकी कितनी जानकारी थी इसका सच आना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
6: अब उज्जैन की जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक के प्यार के इजहार पर मना करना युवती को भारी पड़ गया। सिर्फ अरे आशिक ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
13: एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम, सिर्फ अरे युवक ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ 14 बार कर दिए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि बेखौफ युवक ने महज 10 सेकंड में युवती पर 14 वार कर दिए। युवती चीखती रही लेकिन युवक रुका नहीं।
2: वो घटनास्थल पर आया, बालिका से बातचीत करी और बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद उसने उसके ऊपर चाकू से मल्टीपल वार किए। बालिका को भी हमने एसएन कृष्णा अस्पताल में रेफर हुई थी, वहां भर्ती है और हमने वहां देखने भी गया था और उसका ऑपरेशन कराया जा रहा है।
13: पुलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लिया और आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया।
2: आरोपी को टीम ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान वो भागने के प्रयास में उसके पैर में चोट आई है, उसका पैर बुरी तरह जख्मी है तो उसको भी इलाजरत इलाज कराया जा रहा है। एक बार इलाज हो जाए उसके बाद उससे उसके जो इंटेंशन है उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी।
13: जांच में सामने आया है कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोपी युवती से एक तरफा प्रेम करता था और जब युवती ने उससे दूरी बनाई तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आज तक ब्यूरो।
6: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर तेजी हुई तकरार। अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी के बचाव में आरएसएस, कहा एसआईटी जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं। संसद में समाजवादी पार्टी उठाएगी मुद्दा। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक पर सियासी उबाल। राहुल और प्रियंका ने सरकार को घेरा, कहा शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को बनाया वसूली का सिस्टम, जांच के लिए एसआईटी का गठन। टीएमसी के बागी नेताओं के खिलाफ ममता गुट ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, गलत पहचान बताने, फर्जीवाड़ा और पार्टी नाम के इस्तेमाल का आरोप। 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर बात। पाकिस्तान के कराची में धमाका और फायरिंग से अफरा तफरी, रेंजर्स हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक, अब तक 4 की मौत, कई घायल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है और ट्रस्ट की अगली बैठक 11 जुलाई को होनी है। इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर डॉक्टर अनिल मिश्रा के उत्तराधिकारी को चुनने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे पहले राम मंदिर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें चंपत राय को लेकर बयान सामने आया। बयान में कहा गया कि चंपत राय ने इस्तीफे की पेशकश की है लेकिन अभी उसे स्वीकारन नहीं किया है, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

0: चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें पूरे मामले में दुख जताया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। वहीं जनता से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन सबसे बड़ी बात, राम मंदिर की ओर से बताया गया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है।
1: 8 एक्यूज थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं, अलग अलग अमाउंट के रूप में।
0: 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
2: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
3: क्या आप क्या कहना चाहेंगे?
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं।
5: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं, तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
2: अच्छा,
5: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
2: क्या पैसा बढ़ गया?
5: हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया, और अभी हाल में भागवत करवाए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में CCTV कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल RMO को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: भले ही ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर ना किया हो, लेकिन इस पूरे मामले में चंपत राय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी चंपत राय को लेकर सवाल पूछ रहा है।
0: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर चंद मोहरों को बलि का पकड़ा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
7: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले CCTV बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है? इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें कड़ी सजा मिले।
8: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपत राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
9: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से हो रहा है।
0: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
10: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं, जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
11: जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
0: SIT की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।
6: मंदिर अब 2027 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर 2027 में उनकी सरकार आती है तो अयोध्या को शानदार तरीके से डेवलप तो करेंगे और साथ ही साथ जांच भी करवाएंगे। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के इन तमाम दावों को सपना बताया।
12: इन्होंने तो रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र ने लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी की।
13: राम मंदिर पर हो रहे खुलासे से साधु से लेकर राम भक्तों तक में आक्रोश है। वहीं विपक्ष पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
14: सरकार को झुक करके उन्हें SIT बनानी पड़ी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न है कि SIT बनी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई, और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है।
8: मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ कि जो चंदा चोर हैं वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी CM से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में उनको फांसी दी जाए, इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ।
13: उधर योगी आदित्यनाथ जनता को भरोसा दे रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
15: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। SIT की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
13: साफ है राम मंदिर चंदा चोरी का शोर अब चुनावी मंचों पर गूंजने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या को नए तरीके से विकसित करेंगे, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अनुभूति करेंगे।
14: मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं अगर गिरफ्तारी हुई है, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था या गुप्त दान था, तो ये आस्था की साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
13: इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम के दर्शन की तस्वीर साझा की तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। राम सबके हैं, फिर भाजपा सरकार की दोहरी नीति क्यों? अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के लिए कैमरे और विशेष छूट, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और आम श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम। कुछ दिन पहले जब मैंने दर्शन किए तब व्यवस्था अलग थी। बहरहाल राम मंदिर चंदा चोरी के मामले की गूंज इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। इस मुद्दे की पहली अग्नि परीक्षा 2027 के UP चुनाव में होगी, जहां जनता तय करेगी कि वो जांच से कितनी संतुष्ट नजर आई। आज तक ब्यूरो।
6: बात भ्रष्टाचार से जुड़ी एक और खबर की, जहां लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट पेपर लीक का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक हो गया, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने SIT जांच का ऐलान किया है।
13: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है।
16: प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है, ऐसा थाने भिवंडी में हुआ, पुनः FIR हो गई है। हमारे परीक्षा परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त दोनों भी वहाँ। रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, अगली तारीख हम दे देंगे।
13: एग्जाम रविवार को होना था। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। जांच में पता चला है कि 1.5 करोड़ में पेपर बेचा जा रहा था।
17: पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कॉन्टेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ, उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है, उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं।
13: परीक्षा में 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। ऐसे में अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है।
18: ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
19: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
20: जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है और कभी कभार जैसे लीक में 22 बच्चों ने वहां पे आत्महत्या की और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपणे ये सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए, हम सबकी मांगनी है।
13: महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं उनके लिए भी TET जरूरी है, लेकिन नीट के बाद अब TET पेपर लीक ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
6: मुंबई में मुहर्रम जुलूस से पहले एक बहुत बड़ी साजिश का दावा सामने आया है। भाईखला पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार कर लगभग 14,900 कैप्सूल जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में इन कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिलने की बात सामने आई। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला सामने आया। आरोपी से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी BBA ग्रेजुएट है और पुणे में पेंट का कारोबार करता है। यह आरोपी ईरान और इराक भी जा चुका है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसके तार किसी आतंकी संगठन से जुड़े थे या इसके पीछे इसका कोई अन्य मकसद था। फिलहाल किसी आतंकी कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है।
21: उसने इस प्रोसेशन को टारगेट करने के लिए और साथ ही में लोगों को हानि पहुंचाने के लिए टोटल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर की थी ऑनलाइन और साथ ही में 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल के उसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट किया और वहां पे बहाना बनाया कि ये कैप्सूल पेन किलर की तरह काम करती है और प्रोसेशन में जाने वाले लोगों को ऐसा फंसा के उसने कैप्सूल बेचने की कोशिश करी। परंतु मुंबई पुलिस की सतर्कता और होशियारी और मेहनत की वजह से ये बड़ा हादसा टला है।
6: अब बात है कैसे हत्याकांड के जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे हैं। अब सिया और चेतन के बीच में क्रिकेट का कनेक्शन सामने आया है।
13: क्या परिवार को चेतन और सिया के अफेयर की जानकारी थी? क्या सिया ने केतन के साथ शादी का विरोध किया था? क्या परिवार सिया की शादी जबरन केतन से कराना चाहता था? आखिर 19 साल की उम्र में सिया की शादी की जल्दबाजी परिवार को क्यों थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं।
1: इस पूरे खेल में पुलिस की जांच की सुई सिया के भाई की ओर भी घूम रही है। पुणे पुलिस ने इस मामले में सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की है। लगभग 10 घंटे तक उससे सवाल जवाब किए। सिया का भाई साहिल और चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के मैदान पर ही पहली बार सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई थी। फिर 2025 में दिवाली की पार्टी में सिया और चेतन दोबारा मिले, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हुई और बात आगे बढ़ गई।
3: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
1: यानी सिया के भाई को चेतन और सिया के बीच चल रही दोस्ती की जानकारी थी, क्योंकि खबरों की माने तो सिया के भाई के साथ मैच देखने जाती थी, जिसकी वजह कहीं ना कहीं चेतन से मुलाकात को माना जा रहा है। हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है।
22: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
23: नहीं, मैंने आज तक कभी उससे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
22: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
23: नहीं थी, पहचानते नहीं।
22: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
24: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
22: हाँ।
24: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
23: हाँ। तो साहिल
24: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
22: हाँ।
24: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
1: इस बीच केस की जांच कर रहे पुणे पुलिस ने खुलासा किया है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। जांच में पता चला है कि सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या कर दी जाए तो उन्हें शादी के बारे में सोचने से पहले कम से कम 3 साल और मिल जाएंगे। पुलिस को शक है कि चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले 2-3 साल का और समय चाहता था। जांच में पता चला है कि अरेंज मैरिज के टूटने पर समाज में बदनामी के डर से सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि सिया का परिवार अभी भी दावा कर रहा है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
24: ये कुछ पता नहीं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
1: एक और अहम बात सामने आई है, वो ये है कि फरवरी में सगाई से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने गए थे। बताया जाता है कि जनवरी में दोनों राजस्थान गए थे और एक ग्रुप ट्रिप के तहत वहां 5 दिन रुके थे। चेतन मूल रूप से राजस्थान के रहने वाला है, लेकिन परिवार बार बार कह रहा है कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी।
22: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
23: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
24: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो बात की बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
1: बहरहाल इतना साफ है कि चेतन और सिया का भाई एक दूसरे को जानते थे। अब परिवार को इसकी कितनी जानकारी थी इसका सच आना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
6: अलीबे की आखिर हत्या की प्लानिंग किसकी थी? सिया ने चेतन को हत्या के लिए तैयार किया या फिर पूरा प्लान चेतन का ही था? इस मामले में दोनों के मोबाइल फोन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिससे जो डेटा है वो डिलीट कर दिया गया है।

0: आखिर केतन के मर्डर की साजिश कब रची गई? आखिर कब से केतन को मारने का प्लान था? किसने केतन की हत्या का आइडिया दिया? लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था? अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को बाहर निकालना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारियां सामने आ सकती हैं। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर के प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई? जांच ने तब एक नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ही डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं को शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई है बल्कि उसे अपने डिवाइस से रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फॉरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई।
1: तो जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम एफएसएल में वो क्यूरी वो पूछे।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच बातचीत संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। मोबाइल से साफ हो सकता है कि आखिर लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था। हालांकि सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ भी गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
3: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
5: इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, केतन को उसने ऐसा कन्वेंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे, तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
0: शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आया। उसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
2: उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
1: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
0: एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी, तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ी थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
6: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
0: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
7: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज़्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
0: अब पुणे पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। इससे पहले सिया के भाई से 10 घंटों तक सवाल जवाब भी किए गए थे। ओमकार वाबले, पुणे आज तक। अब उज्जैन की जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक के प्यार के इजहार पर मना करना युवती को भारी पड़ गया। सिर्फ अरे आशिक ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
8: एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम, सिर्फ अरे युवक ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ 14 बार कर दिए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि बेखौफ युवक ने महज 10 सेकंड में युवती पर 14 वार कर दिए। युवती चीखती रही लेकिन युवक रुका नहीं।
9: वो घटनास्थल पर आया, बालिका से बातचीत करी और बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद उसने उसके ऊपर चाकू से मल्टीपल वार किए। बालिका को भी हमने एसएन कृष्णा अस्पताल में रेफर हुई थी तो वहां भर्ती है और हमने वहां देखने भी गया था और उसका ऑपरेशन कराया जा रहा है।
8: पुलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लिया और आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया।
9: आरोपी को टीम ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान भागने के प्रयास में उसके पैर में चोट आई है, उसका पैर बुरी तरह जख्मी है तो उसको भी इलाज कराया जा रहा है। एक बार इलाज हो जाए उसके बाद उससे उसके जो इंटेंशन है उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी।
8: जांच में सामने आया है कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोपी युवती से एक तरफा प्रेम करता था और जब युवती ने उससे दूरी बनाई तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

हम जांच के लिए एसआईटी का गठन। टीएमसी के बागी नेताओं के खिलाफ ममता गुट ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, गलत पहचान बताने, फर्जीवाड़ा और पार्टी नाम के इस्तेमाल का आरोप। 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर बात। पाकिस्तान के कराची में धमाका और फायरिंग से अफरा तफरी, रेंजर्स हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक, अब तक 4 की मौत, कई घायल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अब ट्रस्ट की अगली बैठक 11 जुलाई को होनी है। इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर डॉक्टर अनिल मिश्रा के उत्तराधिकारी को चुनने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे पहले राम मंदिर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें चंपत राय को लेकर बयान सामने आया। बयान में कहा गया कि चंपत राय ने इस्तीफे की पेशकश की है लेकिन अभी उसे स्वीकार नहीं किया है, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

0: चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें पूरे मामले में दुख जताया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। वहीं जनता से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। लेकिन सबसे बड़ी बात, राम मंदिर की ओर से बताया गया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है।
1: 8 एक्यूज्ड थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं, अलग अलग अमाउंट के रूप में।
0: 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
2: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर हैं, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
3: क्या आप क्या कहना चाहेंगी?
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की, 10 साल से उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं।
5: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं, तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
6: अच्छा,
5: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
2: क्या पैसा बढ़ गया?
5: हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया, और अभी हाल में भागवत करवाए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में CCTV कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल RMO को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
7: भले ही ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर ना किया हो, लेकिन इस पूरे मामले में चंपत राय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी चंपत राय को लेकर सवाल पूछ रहा है।
0: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर चंद मोहरों को बलि का बकरा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
8: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले CCTV बंद कर हजारों

0: करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो और जो भी लोग इसमें शामिल है उन्हें कड़ी सजा मिले।
1: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
2: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपक राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
3: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से ही हो रहा है।
2: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
4: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
5: जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
2: एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।
6: मंदिर अब 2027 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर 2027 में उनकी सरकार आती है तो अयोध्या को शानदार तरीके से डेवलप तो करेंगे और साथ ही साथ जांच भी करवाएंगे। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के इन तमाम दावों को सपना बताया।
7: इन्होंने तो रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई।
8: राम मंदिर पर हो रहे खुलासे से साधु से लेकर राम भक्तों तक में आक्रोश है। वहीं विपक्ष पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
9: सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है।
1: मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ कि जो चंदा चोर है वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी सीएम से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए, इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ।
8: उधर योगी आदित्यनाथ जनता को भरोसा दे रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
10: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
8: साफ है राम मंदिर चंदा चोरी का शोर अब चुनावी मंचों पर गूंजने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या को नए तरीके से विकसित करेंगे, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अनुभूति करेंगे।
9: मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था या गुप्त दान था, तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
8: इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम के दर्शन की तस्वीर साझा की तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। राम सबके हैं, फिर भाजपा सरकार की दोहरी नीति क्यों? अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के लिए कैमरे और विशेष छूट, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और आम श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम। कुछ दिन पहले जब मैंने दर्शन किए तब व्यवस्था अलग थी। बहरहाल राम मंदिर चंदा चोरी के मामले की गूंज इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। इस मुद्दे की पहली अग्नि परीक्षा 2027 के यूपी चुनाव में होगी, जहां जनता तय करेगी कि वो जांच से कितनी संतुष्ट नजर आई। आज तक ब्यूरो।
6: बात भ्रष्टाचार से जुड़ी एक और खबर की, जहां लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट पेपर लीक का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक हो गया, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने SIT जांच का ऐलान किया है।
8: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है।
11: प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है, ऐसा थाने भिवंडी में हुआ, पुनः FIR हो गई है। हमारे परीक्षा परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त दोनों भी वहाँ पर। रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, अगली तारीख हम दे देंगे।
8: एग्जाम रविवार को होना था। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। जांच में पता चला है कि 1.5 करोड़ में पेपर बेचा जा रहा था।
12: पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कॉन्टेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ। उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है। उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किया है।
8: परीक्षा में 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। ऐसे में अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है।
13: ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
14: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
15: जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है, और कभी कभार जैसे नीट में 22 बच्चों ने वहां पे आत्महत्या की, और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपने ये सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए, हम सबकी मांगनी है।
8: महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं उनके लिए भी TET जरूरी है, लेकिन नीट के बाद अब TET पेपर लीक ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
6: मुंबई में मुहर्रम जुलूस से पहले एक बहुत बड़ी साजिश का दावा सामने आया है। भाईखला पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार कर लगभग 14,900 कैप्सूल जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में इन कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिलने की बात सामने आई है। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला सामने आया, आरोपी से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी BBA ग्रेजुएट है और पुणे में पेंट का कारोबार करता है। ये आरोपी ईरान और इराक भी जा चुका है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसके तार किसी आतंकी संगठन से जुड़े थे या इसके पीछे इसका कोई अन्य मकसद था। फिलहाल किसी आतंकी कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। अब बात एक ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे। अब सिया और चेतन के बीच में क्रिकेट का कनेक्शन सामने आया है।
16: क्या परिवार को चेतन और सिया के अफेयर की जानकारी थी? क्या सिया ने केतन के साथ शादी का विरोध किया था? क्या परिवार सिया की शादी जबरन केतन से कराना चाहता था? आखिर 19 साल की उम्र में सिया की शादी की जल्दबाजी परिवार को क्यों थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे खेल में पुलिस की जांच की सुई सिया के भाई की ओर भी घूम रही है। पुणे पुलिस ने इस मामले में सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की है। लगभग 10 घंटे तक उससे सवाल जवाब किए। सिया का भाई साहिल और चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के मैदान पर ही पहली बार सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई थी। फिर 2025 में दिवाली की पार्टी में सिया और चेतन दोबारा मिले, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हुई और बात आगे बढ़ गई।
17: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
16: यानी सिया के भाई को चेतन और सिया के बीच चल रही दोस्ती की जानकारी थी, क्योंकि खबरों की माने तो सिया के भाई के साथ मैच देखने जाती थी, जिसकी वजह कहीं ना कहीं चेतन से मुलाकात को माना जा रहा है। हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है।
18: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
19: नहीं, मैंने आज तक कभी उससे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
18: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
19: नहीं थी, पहचानते नहीं।
18: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स है, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
20: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
18: हाँ।
20: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
19: हाँ। मेरा साहिल।
20: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ, उसके बाद कोई बात नहीं।
18: हाँ।
20: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
16: इस बीच केस की जांच कर रहे पुणे पुलिस ने खुलासा किया है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। जांच में पता चला है कि सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या कर दी जाए तो उन्हें शादी के बारे में सोचने से पहले कम से कम 3 साल और मिल जाएंगे। पुलिस को शक है कि चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले 2-3 साल का और समय चाहता था। जांच में पता चला है कि अरेंज मैरिज के टूटने पर समाज में बदनामी के डर से सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि सिया का परिवार अभी भी दावा कर रहा है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
20: ये कुछ बताएं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
16: एक और अहम बात सामने आई है, वो ये है कि फरवरी में सगाई से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने गए थे। बताया जाता है कि जनवरी में दोनों राजस्थान गए थे और एक ग्रुप ट्रिप के तहत वहां 5 दिन रुके थे। चेतन मूल रूप से राजस्थान के रहने वाला है, लेकिन परिवार बार बार कह रहा है कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी।
18: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
19: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
20: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो बात की बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
16: बहरहाल इतना साफ है कि चेतन और सिया का भाई एक दूसरे को जानते थे। अब परिवार को इसकी कितनी जानकारी थी इसका सच आना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
6: अलीब ये आखिर हत्या की प्लानिंग किसकी थी? सिया ने चेतन को हत्या के लिए तैयार किया या फिर पूरा प्लान चेतन का ही था? इस मामले में दोनों के मोबाइल फोन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिससे जो डेटा है वो डिलीट कर दिया गया है।

0: आखिर केतन के मर्डर की साजिश कब रची गई? आखिर कब से केतन को मारने का प्लान था? किसने केतन की हत्या का आइडिया दिया? लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था? अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को बाहर निकालना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारियां सामने आ सकती हैं। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर के प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई? जांच ने तब एक नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ही डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं को शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई है बल्कि उसे अपने डिवाइस से रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फॉरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम एफएसएल में वो क्यूरी वो पूछे।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच बातचीत संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। मोबाइल से साफ हो सकता है कि आखिर लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था। हालांकि सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ भी गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
3: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
5: इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे, तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
0: शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आया। उसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
2: जो उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
1: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
0: एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी, तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ी थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
6: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
0: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
7: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज़्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारी बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
0: अब पुणे पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। इससे पहले सिया के भाई से 10 घंटों तक सवाल जवाब भी किए गए थे। ओमकार वाबले, पुणे आज तक। अब उज्जैन की जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक के प्यार के इजहार पर मना करना युवती को भारी पड़ गया। सिर्फ एक आशिक ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
8: एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम, सिर्फ एक युवक ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ 14 बार कर दिए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि बेखौफ युवक ने महज 10 सेकंड में युवती पर 14 वार कर दिए। युवती चीखती रही लेकिन युवक रुका नहीं।
9: वो घटनास्थल पर आया, बालिका से बातचीत करी और बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद उसने उसके ऊपर चाकू से मल्टीपल वार किए। बालिका को भी हमने एस एन कृष्णा अस्पताल में रेफर हुई थी, वहाँ भर्ती है और हमने वहाँ देखने भी गया था और उसका ऑपरेशन कराया जा रहा है।
8: पुलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लिया और आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया।
9: आरोपी को टीम ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान भागने के प्रयास में उसके पैर में चोट आई है, उसका पैर बुरी तरह जख्मी है तो उसको भी इलाज कराया जा रहा है। एक बार इलाज हो जाए उसके बाद उससे उसके जो इंटेंशन है उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी।
8: जांच में सामने आया है कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोपी युवती से एक तरफा प्रेम करता था और जब युवती ने उससे दूरी बनाई तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर तेज हुई तकरार। अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी के बचाव में आरएसएस, कहा एसआईटी जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं। संसद में समाजवादी पार्टी उठाएगी मुद्दा। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक पर सियासी उबाल। राहुल और प्रियंका ने सरकार को घेरा, कहा शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को बनाया वसूली का सिस्टम, जांच के लिए एसआईटी का गठन। टीएमसी के बागी नेताओं के खिलाफ ममता गुट ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, गलत पहचान बताने, फर्जीवाड़ा और पार्टी नाम के इस्तेमाल का आरोप। 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर बात। पाकिस्तान के कराची में धमाका और फायरिंग से अफरा तफरी, रेंजर्स हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक, अब तक 4 की मौत, कई घायल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अब ट्रस्ट की अगली बैठक 11 जुलाई को होनी है। इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर डॉक्टर अनिल मिश्रा के उत्तराधिकारी को चुनने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे पहले राम मंदिर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें चंपत राय को लेकर बयान सामने आया। बयान में कहा गया कि चंपत राय ने इस्तीफे की पेशकश की है लेकिन अभी उसे स्वीकार नहीं किया है, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

0: चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें पूरे मामले में दुख जताया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। वहीं जनता से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। लेकिन सबसे बड़ी बात, राम मंदिर की ओर से बताया गया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है।
1: 8 एक्यूज थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं, अलग अलग अमाउंट के रूप में।
0: 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
2: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
3: क्या आप क्या कहना चाहेंगी?
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं।
5: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं, तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
2: अच्छा,
5: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
2: क्या पैसा बढ़ गया?
5: हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया, और अभी हाल में भागवत करवाए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सीसीटीवी कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल RMO को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: भले ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर ना किया हो, लेकिन इस पूरे मामले में चंपत राय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी चंपत राय को लेकर सवाल पूछ रहा है।
0: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर चंद मोहरों को बलि का बकरा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
7: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें कड़ी सजा मिले।
8: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपत राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
9: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखा अधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से यह हो रहा है।
0: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
10: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं, जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
11: जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
0: SIT की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।
6: मंदिर अब 2027 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर 2027 में उनकी सरकार आती है तो अयोध्या को शानदार तरीके से डेवलप तो करेंगे और साथ ही साथ जांच भी करवाएंगे। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के इन तमाम दावों को सपना बताया।
12: इन्होंने तो रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र ने लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी की।
13: राम मंदिर पर हो रहे खुलासे से साधु से लेकर राम भक्तों तक में आक्रोश है। वहीं विपक्ष पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
14: सरकार को झुक करके उन्हें SIT बनानी पड़ी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न है कि SIT बनी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है।
8: मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ कि जो चंदा चोर हैं वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी CM से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए, इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ।
13: उधर योगी आदित्यनाथ जनता को भरोसा दे रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
15: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। SIT की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
13: साफ है राम मंदिर चंदा चोरी का शोर अब चुनावी मंचों पर गूंजने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या को नए तरीके से विकसित करेंगे, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अनुभूति करेंगे।
14: मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था या गुप्त दान था, तो ये आस्था की साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
13: इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम के दर्शन की तस्वीर साझा की तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। राम सबके हैं, फिर भाजपा सरकार की दोहरी नीति क्यों? अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के लिए कैमरे और विशेष छूट, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और आम श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम। कुछ दिन पहले जब मैंने दर्शन किए तब व्यवस्था अलग थी। बहरहाल राम मंदिर चंदा चोरी के मामले की गूंज इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। इस मुद्दे की पहली अग्नि परीक्षा 2027 के UP चुनाव में होगी, जहां जनता तय करेगी कि वो जांच से कितनी संतुष्ट नजर आई। आज तक ब्यूरो।
6: बाद भ्रष्टाचार से जुड़ी एक और खबर की, जहां लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट पेपर लीक का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक हो गया, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने SIT जांच का ऐलान किया है।
13: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है।
16: प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है ऐसा थाने भिवंडी में हुआ, पुनः एफआईआर हो गई है, हमारे परीक्षा परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त दोनों भी वहाँ। रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, अगली तारीख हम दे देंगे।
13: एग्जाम रविवार को होना था। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। जांच में पता चला है कि 1.5 करोड़ में पेपर बेचा जा रहा था।
17: पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कॉन्टेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ, उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है, उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं।
13: परीक्षा में 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। ऐसे में अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है।
18: ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
19: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
20: जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है और कभी कभार जैसे नीट में 22 बच्चों ने वहां पे आत्महत्या की और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपणे ये सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए, हम सबकी मांगनी है।
13: महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं उनके लिए भी टीईटी जरूरी है, लेकिन नीट के बाद अब टीईटी पेपर लीक ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
6: मुंबई में मुहर्रम जुलूस से पहले एक बहुत बड़ी साजिश का दावा सामने आया है। भाईखला पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार कर लगभग 14,900 कैप्सूल जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में इन कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिलने की बात सामने आई। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला सामने आया। आरोपी से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बीबीए ग्रेजुएट है और पुणे में पेंट का कारोबार करता है। यह आरोपी ईरान और इराक भी जा चुका है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसके तार किसी आतंकी संगठन से जुड़े थे या इसके पीछे इसका कोई अन्य मकसद था। फिलहाल किसी आतंकी कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। अब बात है ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे हैं। अब सिया और चेतन के बीच में क्रिकेट का कनेक्शन सामने आया है।
13: क्या परिवार को चेतन और सिया के अफेयर की जानकारी थी? क्या सिया ने केतन के साथ शादी का विरोध किया था? क्या परिवार सिया की शादी जबरन केतन से कराना चाहता था? आखिर 19 साल की उम्र में सिया की शादी की जल्दबाजी परिवार को क्यों थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे खेल में पुलिस की जांच की सुई सिया के भाई की ओर भी घूम रही है। पुणे पुलिस ने इस मामले में सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की है। लगभग 10 घंटे तक उससे सवाल जवाब किए। सिया का भाई साहिल और चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के मैदान पर ही पहली बार सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई थी। फिर 2025 में दिवाली की पार्टी में सिया और चेतन दोबारा मिले, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हुई और बात आगे बढ़ गई।
21: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
13: यानी सिया के भाई को चेतन और सिया के बीच चल रही दोस्ती की जानकारी थी, क्योंकि खबरों की माने तो सिया के भाई के साथ मैच देखने जाती थी।
1: जिसकी वजह कहीं ना कहीं चेतन से मुलाकात को माना जा रहा है। हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है।
3: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
22: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
3: आप पहचानते नहीं था? आप भी नहीं पहचानते?
22: नहीं थी, पहचानते नहीं।
3: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स है, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
23: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
3: हाँ।
23: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
22: हाँ। तो मेरे
23: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
3: हाँ।
23: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
1: इस बीच केस की जांच कर रही पुणे पुलिस ने खुलासा किया है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। जांच में पता चला है कि सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या कर दी जाए तो उन्हें शादी के बारे में सोचने से पहले कम से कम 3 साल और मिल जाएंगे। पुलिस को शक है कि चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले 2-3 साल का और समय चाहता था। जांच में पता चला है कि अरेंज मैरिज के टूटने पर समाज में बदनामी के डर से सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि सिया का परिवार अभी भी दावा कर रहा है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
23: ये कुछ बता नहीं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
1: एक और अहम बात सामने आई है, वो ये है कि फरवरी में सगाई से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने गए थे। बताया जाता है कि जनवरी में दोनों राजस्थान गए थे और एक ग्रुप ट्रिप के तहत वहाँ 5 दिन रुके थे। चेतन मूल रूप से राजस्थान के रहने वाला है, लेकिन परिवार बार बार कह रहा है कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी।
3: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
22: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
23: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
1: बहरहाल इतना साफ है कि चेतन और सिया का भाई एक दूसरे को जानते थे। अब परिवार को इसकी कितनी जानकारी थी इसका सच आना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
6: अलीब ये आखिर हत्या की प्लानिंग किसकी थी? सिया ने चेतन को हत्या के लिए तैयार किया या फिर पूरा प्लान चेतन का ही था? इस मामले में दोनों के मोबाइल फोन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिससे जो डेटा है वो डिलीट कर दिया गया है।

0: आखिर केतन के मर्डर की साजिश कब रची गई? आखिर कब से केतन को मारने का प्लान था? किसने केतन की हत्या का आइडिया दिया? लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था? अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को बाहर निकालना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारियां सामने आ सकती हैं। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर के प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई? जांच ने तब एक नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ही डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं को शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई है बल्कि उसे अपने डिवाइस से रीसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फॉरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम एफएसएल में वो क्यूरी वो पूछे।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच बातचीत संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। मोबाइल से साफ हो सकता है कि आखिर लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था। हालांकि सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ भी गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
3: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
5: इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे, तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
0: शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आया। उसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
2: जो उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
1: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
0: एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी, तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ी थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
6: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
0: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
7: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज़्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
0: अब पुणे पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। इससे पहले सिया के भाई से 10 घंटों तक सवाल जवाब भी किए गए थे। ओमकार वाबले, पुणे आज तक। अब उज्जैन की जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, एक युवक के प्यार के इजहार पर मना करना युवती को भारी पड़ गया। सिर्फ एक आशिक ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
8: एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम, सिर्फ एक युवक ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ 14 बार कर दिए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि बेखौफ युवक ने महज 10 सेकंड में युवती पर 14 वार कर दिए। युवती चीखती रही लेकिन युवक रुका नहीं।
9: वो घटनास्थल पर आया, बालिका से बातचीत करी और बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद उसने उसके ऊपर चाकू से मल्टीपल वार किए। बालिका को भी हमने एस एन कृष्णा अस्पताल में रेफर हुई थी तो वहाँ भर्ती है और हमने वहाँ देखने भी गया था और उसका ऑपरेशन कराया जा रहा है।
8: पुलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लिया और आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया।
9: आरोपी को टीम ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान भागने के प्रयास में उसके पैर में चोट आई है, उसका पैर बुरी तरह जख्मी है तो उसको भी इलाज कराया जा रहा है। एक बार इलाज हो जाए उसके बाद उससे उसके जो इंटेंशन है उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी।
8: जांच में सामने आया है कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोपी युवती से एक तरफा प्रेम करता था और जब युवती ने उससे दूरी बनाई तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर तेज हुई तकरार। अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी के बचाव में आरएसएस, कहा एसआईटी जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं। संसद में समाजवादी पार्टी उठाएगी मुद्दा। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक पर सियासी उबाल। राहुल और प्रियंका ने सरकार को घेरा, कहा शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को बनाया वसूली का सिस्टम, जांच के लिए एसआईटी का गठन। टीएमसी के बागी नेताओं के खिलाफ ममता गुट ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, गलत पहचान बताने, फर्जीवाड़ा और पार्टी नाम के इस्तेमाल करो। 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर बात। पाकिस्तान के कराची में धमाका और फायरिंग से अफरा तफरी, रेंजर्स हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक, अब तक 4 की मौत, कई घायल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अब ट्रस्ट की अगली बैठक 11 जुलाई को होनी है। इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर डॉक्टर अनिल मिश्रा के उत्तराधिकारी को चुनने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे

0: चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें पूरे मामले में दुख जताया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। वहीं जनता से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। लेकिन सबसे बड़ी बात राम मंदिर की ओर से बताया गया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है।
1: 8 एक्यूज्ड थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं, अलग अलग अमाउंट के रूप में।
0: 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
2: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
3: क्या आप क्या कहना चाहेंगी?
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की, 10 साल से उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं।
5: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं, तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
6: अच्छा,
5: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
2: क्या पैसा बढ़ गया?
5: हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया, और अभी हाल में भागवत करवाए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में CCTV कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल RMO को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
7: भले ही ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर ना किया हो, लेकिन इस पूरे मामले में चंपत राय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी चंपत राय को लेकर सवाल पूछ रहा है।
0: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर चंद मोहरों को बलि का पकड़ा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
8: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले CCTV बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है? इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें कड़ी सजा मिले।
9: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपक राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
10: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी

0: कैसे ये हो रहा है।
1: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
2: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
3: जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
1: SIT की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।
4: मंदिर अब 2027 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर 2027 में उनकी सरकार आती है तो अयोध्या को शानदार तरीके से डेवलप तो करेंगे और साथ ही साथ जांच भी करवाएंगे। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के इन तमाम दावों को सपना बताया।
5: इन्होंने तो रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र ने लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी की।
6: राम मंदिर पर हो रहे खुलासे से साधु से लेकर राम भक्तों तक में आक्रोश है। वहीं विपक्ष पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
7: सरकार को झुक करके उन्हें SIT बनानी पड़ी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि SIT बनी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है।
8: मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ कि जो चंदा चोर हैं वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी CM से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए, इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ।
6: उधर योगी आदित्यनाथ जनता को भरोसा दे रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
9: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। SIT की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
6: साफ है राम मंदिर चंदा चोरी का शोर अब चुनावी मंचों पर गूंजने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या को नए तरीके से विकसित करेंगे, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अनुभूति करेंगे।
7: मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था या गुप्त दान था, तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
6: इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम के दर्शन की तस्वीर साझा की तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। राम सबके हैं, फिर भाजपा सरकार की दोहरी नीति क्यों? अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के लिए कैमरे और विशेष छूट, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और आम श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम। कुछ दिन पहले जब मैंने दर्शन किए तब व्यवस्था अलग थी। बहरहाल राम मंदिर चंदा चोरी के मामले की गूंज इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। इस मुद्दे की पहली अग्नि परीक्षा 2027 के UP चुनाव में होगी, जहां जनता तय करेगी कि वो जांच से कितनी संतुष्ट नजर आई। आज तक ब्यूरो।
4: बाद भ्रष्टाचार से जुड़ी एक और खबर की, जहां लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट पेपर लीक का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक हो गया, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने SIT जांच का ऐलान किया है।
6: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है।
0: प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है, ऐसा थाने भिवंडी में हुआ, पुनः FIR हो गई है। हमारे परीक्षा परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त दोनों भी वहाँ पर। रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, अगली तारीख हम दे देंगे।
6: एग्जाम रविवार को होना था। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। जांच में पता चला है कि 1.5 करोड़ में पेपर बेचा जा रहा था।
10: पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कॉन्टेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ। उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है। उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं।
6: परीक्षा में 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। ऐसे में अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है।
11: ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
12: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
13: जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है और कभी कभार जैसे लीक में 22 बच्चों ने वहां पे आत्महत्या की और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपणे ये सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए, हम सबकी मांगनी है।
6: महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं उनके लिए भी TET जरूरी है, लेकिन नीट के बाद अब TET पेपर लीक ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
4: मुंबई में मुहर्रम जुलूस से पहले एक बहुत बड़ी साजिश का दावा सामने आया है। भाईखला पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार कर लगभग 14,900 कैप्सूल जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में इन कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिलने की बात सामने आई है। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला सामने आया, आरोपी से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी BBA ग्रेजुएट है और पुणे में पेंट का कारोबार करता है। यह आरोपी ईरान और इराक भी जा चुका है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसके तार किसी आतंकी संगठन से जुड़े थे या इसके पीछे इसका कोई अन्य मकसद था। फिलहाल किसी आतंकी कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। अब बात है ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे हैं। अब सिया और चेतन के बीच में क्रिकेट का कनेक्शन सामने आया है।
6: क्या परिवार को चेतन और सिया के अफेयर की जानकारी थी? क्या सिया ने केतन के साथ शादी का विरोध किया था? क्या परिवार सिया की शादी जबरन केतन से कराना चाहता था? आखिर 19 साल की उम्र में सिया की शादी की जल्दबाजी परिवार को क्यों थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे खेल में पुलिस की जांच की सुई सिया के भाई की ओर भी घूम रही है। पुणे पुलिस ने इस मामले में सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की है। लगभग 10 घंटे तक उससे सवाल जवाब किए। सिया का भाई साहिल और चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के मैदान पर ही पहली बार सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई थी। फिर 2025 में दिवाली की पार्टी में सिया और चेतन दोबारा मिले, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हुई और बात आगे बढ़ गई।
14: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
6: यानी सिया के भाई को चेतन और सिया के बीच चल रही दोस्ती की जानकारी थी।
15: क्योंकि खबरों की माने तो सिया के भाई के साथ मैच देखने जाती थी, जिसकी वजह कहीं ना कहीं चेतन से मुलाकात को माना जा रहा है। हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है।
16: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
17: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
16: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
17: नहीं थी, पहचानते नहीं।
16: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स है, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
18: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
16: हाँ।
18: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
17: हाँ। तो सही।
18: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
16: हाँ।
18: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
15: इस बीच केस की जांच कर रही पुणे पुलिस ने खुलासा किया है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। जांच में पता चला है कि सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या कर दी जाए तो उन्हें शादी के बारे में सोचने से पहले कम से कम 3 साल और मिल जाएंगे। पुलिस को शक है कि चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले 2-3 साल का और समय चाहता था। जांच में पता चला है कि अरेंज मैरिज के टूटने पर समाज में बदनामी के डर से सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि सिया का परिवार अभी भी दावा कर रहा है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
18: ये कुछ बता नहीं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
15: एक और अहम बात सामने आई है, वो ये है कि फरवरी में सगाई से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने गए थे। बताया जाता है कि जनवरी में दोनों राजस्थान गए थे और एक ग्रुप ट्रिप के तहत वहाँ 5 दिन रुके थे। चेतन मूल रूप से राजस्थान के रहने वाला है, लेकिन परिवार बार बार कह रहा है कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी।
16: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
17: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
18: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो बात की बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
15: बहरहाल इतना साफ है कि चेतन और सिया का भाई एक दूसरे को जानते थे। अब परिवार को इसकी कितनी जानकारी थी इसका सच आना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
4: अलीब ये आखिर हत्या की प्लानिंग किसकी थी? सिया ने चेतन को हत्या के लिए तैयार किया या फिर पूरा प्लान चेतन का ही था? इस मामले में दोनों के मोबाइल फोन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिससे जो डेटा है वो डिलीट कर दिया गया है।

0: आखिर केतन के मर्डर की साजिश कब रची गई? आखिर कब से केतन को मारने का प्लान था? किसने केतन की हत्या का आइडिया दिया? लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था? अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को बाहर निकालना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारियां सामने आ सकती हैं। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर के प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई। जांच ने तब एक नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ही डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं को शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई है बल्कि उसे अपने डिवाइस से रीसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फॉरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई।
1: तो जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम एफएसएल में वो क्यूरी वो पूछे।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच बातचीत संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। मोबाइल से साफ हो सकता है कि आखिर लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था। हालांकि सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ भी गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
3: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
5: इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे, तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
0: शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आया। उसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
2: जो उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
1: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
0: एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी, तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ी थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
6: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
0: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
7: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज़्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
0: अब पुणे पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। इससे पहले सिया के भाई से 10 घंटों तक सवाल जवाब भी किए गए थे। ओमकार वाबले, पुणे आज तक। अब उज्जैन की जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, एक युवक के प्यार के इजहार पर मना करना युवती को भारी पड़ गया। सिर्फ एक आशिक ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
8: एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम, सिर्फ एक युवक ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ 14 बार कर दिए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि बेखौफ युवक ने महज 10 सेकंड में युवती पर 14 वार कर दिए। युवती चीखती रही लेकिन युवक रुका नहीं।
9: वो घटनास्थल पर आया, बालिका से बातचीत करी और बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद उसने उसके ऊपर चाकू से मल्टीपल वार किए। बालिका को भी हमने एस एन कृष्णा अस्पताल में रेफर हुई थी तो वहाँ भर्ती है और हमने वहाँ देखने भी गया था और उसका ऑपरेशन कराया जा रहा है।
8: पुलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लिया और आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया।
9: आरोपी को टीम ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान भागने के प्रयास में उसके पैर में चोट आई है, उसका पैर बुरी तरह जख्मी है तो उसको भी इलाज कराया जा रहा है। एक बार इलाज हो जाए उसके बाद उससे उसके जो इंटेंशन है उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी।
8: जांच में सामने आया है कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोपी युवती से एक तरफा प्रेम करता था और जब युवती ने उससे दूरी बनाई तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर तेज हुई तकरार। अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी के बचाव में आरएसएस, कहा एसआईटी जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं। संसद में समाजवादी पार्टी उठाएगी मुद्दा। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक पर सियासी उबाल। राहुल और प्रियंका ने सरकार को घेरा, कहा शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को बनाया वसूली का सिस्टम, जांच के लिए एसआईटी का गठन। टीएमसी के बागी नेताओं के खिलाफ ममता गुट ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, गलत पहचान बताने, फर्जीवाड़ा और पार्टी नाम के इस्तेमाल का आरोप। 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर बात। पाकिस्तान के कराची में धमाका और फायरिंग से अफरा तफरी, रेंजर्स हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक, अब तक 4 की मौत, कई घायल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अब ट्रस्ट की अगली बैठक 11 जुलाई को होनी है। इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर डॉक्टर अनिल मिश्रा के उत्तराधिकारी को चुनने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे पहले राम मंदिर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें चंपत राय को लेकर बयान सामने आया। बयान में कहा गया कि चंपत राय ने इस्तीफे की पेशकश की है लेकिन अभी उसे स्वीकार नहीं किया है, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

0: चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें पूरे मामले में दुख जताया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। वहीं जनता से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। लेकिन सबसे बड़ी बात, राम मंदिर की ओर से बताया गया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है।
1: 8 एक्यूज थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं, अलग अलग अमाउंट के रूप में।
0: 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
2: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
3: क्या आप क्या कहना चाहेंगी?
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं।
5: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं, तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
2: अच्छा,
5: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
2: क्या पैसा बढ़ गया?
5: हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया, और अभी हाल में भागवत करवाए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सीसीटीवी कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल RMO को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: भले ही ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर ना किया हो, लेकिन इस पूरे मामले में चंपत राय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी चंपत राय को लेकर सवाल पूछ रहा है।
0: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर चंद मोहरों को बलि का बकरा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
7: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले CCTV बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें कड़ी सजा मिले।
8: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपत राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
9: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से ही हो रहा है।
0: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
10: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं, जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
11: उस जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
0: एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।
6: मंदिर अब 2027 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर 2027 में उनकी सरकार आती है तो अयोध्या को शानदार तरीके से डेवलप तो करेंगे और साथ ही साथ जांच भी करवाएंगे। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के इन तमाम दावों को सपना बताया।
12: इन्होंने तो रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र ने लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी की।
13: राम मंदिर पर हो रहे खुलासे से साधु से लेकर राम भक्तों तक में आक्रोश है। वहीं विपक्ष पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
14: सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है।
8: मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ कि जो चंदा चोर हैं वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी सीएम से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए, इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ।
13: उधर योगी आदित्यनाथ जनता को भरोसा दे रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
15: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
13: साफ है राम मंदिर चंदा चोरी का शोर अब चुनावी मंचों पर गूंजने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या को नए तरीके से विकसित करेंगे, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अनुभूति करेंगे।
14: मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था या गुप्त दान था, तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
13: इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम के दर्शन की तस्वीर साझा की तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। राम सबके हैं, फिर भाजपा सरकार की दोहरी नीति क्यों? अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के लिए कैमरे और विशेष छूट, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और आम श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम। कुछ दिन पहले जब मैंने दर्शन किए तब व्यवस्था अलग थी। बहरहाल राम मंदिर चंदा चोरी के मामले की गूंज इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। इस मुद्दे की पहली अग्नि परीक्षा 2027 के यूपी चुनाव में होगी, जहां जनता तय करेगी कि वो जांच से कितनी संतुष्ट नजर आई। आज तक ब्यूरो।
6: बात भ्रष्टाचार से जुड़ी एक और खबर की, जहां लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट पेपर लीक का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक हो गया, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच का ऐलान किया है।
13: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है।
16: प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है, ऐसा थाने भिवंडी में हुआ, पुनः एफआईआर हो गई है। हमारे परीक्षा परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त दोनों भी वहाँ पर। रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, अगली तारीख हम दे देंगे।
13: एग्जाम रविवार को होना था। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। जांच में पता चला है कि 1.5 करोड़ में पेपर बेचा जा रहा था।
17: पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कॉन्टेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ। उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है। उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं।
13: परीक्षा में 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। ऐसे में अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है।
18: ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
19: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
20: जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है और कभी कभार जैसे नीट में 22 बच्चों ने वहां पे आत्महत्या की और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपने ये सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए, हम सबकी मांगनी है।
13: महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं उनके लिए भी टीईटी जरूरी है, लेकिन नीट के बाद अब टीईटी पेपर लीक ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
6: मुंबई में मुहर्रम जुलूस से पहले एक बहुत बड़े साजिश का दावा सामने आया है। भाईखला पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार कर लगभग 14,900 कैप्सूल जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में इन कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिलने की बात सामने आई। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला सामने आया। आरोपी से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बीबीए ग्रेजुएट है और पुणे में पेंट का कारोबार करता है। यह आरोपी ईरान और इराक भी जा चुका है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसके तार किसी आतंकी संगठन से जुड़े थे या इसके पीछे इसका कोई अन्य मकसद था। फिलहाल किसी आतंकी कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। अब बात है ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे हैं। अब सिया और चेतन के बीच में क्रिकेट का कनेक्शन सामने आया है।
13: क्या परिवार को चेतन और सिया के अफेयर की जानकारी थी? क्या सिया ने केतन के साथ शादी का विरोध किया था? क्या परिवार सिया की शादी जबरन केतन से कराना चाहता था? आखिर 19 साल की उम्र में सिया की शादी की जल्दबाजी परिवार को क्यों थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे खेल में पुलिस की जांच की सुई सिया के भाई की ओर भी घूम रही है। पुणे पुलिस ने इस मामले में सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की है। लगभग 10 घंटे तक उससे सवाल जवाब किए। सिया का भाई साहिल और चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के मैदान पर ही पहली बार सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई थी। फिर 2025 में दिवाली की पार्टी में सिया और चेतन दोबारा मिले, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हुई और बात आगे बढ़ गई।
21: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
13: यानी सिया के भाई को चेतन और सिया के बीच चल रही दोस्ती की जानकारी थी, क्योंकि खबरों की माने तो सिया के भाई के साथ मैच देखने जाती थी।
1: जिसकी वजह कहीं ना कहीं चेतन से मुलाकात को माना जा रहा है। हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है।
3: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
22: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
3: आप पहचानते नहीं था? आप भी नहीं पहचानते?
22: नहीं थी, पहचानते नहीं।
3: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
23: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
3: हाँ।
23: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
22: हाँ। तो साहिल।
23: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
3: हाँ।
23: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
1: इस बीच केस की जांच कर रही पुणे पुलिस ने खुलासा किया है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। जांच में पता चला है कि सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या कर दी जाए तो उन्हें शादी के बारे में सोचने से पहले कम से कम 3 साल और मिल जाएंगे। पुलिस को शक है कि चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले 2-3 साल का और समय चाहता था। जांच में पता चला है कि अरेंज मैरिज के टूटने पर समाज में बदनामी के डर से सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि सिया का परिवार अभी भी दावा कर रहा है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
23: ये कुछ बता नहीं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
1: एक और अहम बात सामने आई है, वो ये है कि फरवरी में सगाई से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने गए थे। बताया जाता है कि जनवरी में दोनों राजस्थान गए थे और एक ग्रुप ट्रिप के तहत वहाँ 5 दिन रुके थे। चेतन मूल रूप से राजस्थान के रहने वाला है, लेकिन परिवार बार बार कह रहा है कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी।
3: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
22: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
23: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
1: बहरहाल इतना साफ है कि चेतन और सिया का भाई एक दूसरे को जानते थे। अब परिवार को इसकी कितनी जानकारी थी इसका सच आना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
6: अलीबी की आखिर हत्या की प्लानिंग किसकी थी? सिया ने चेतन को हत्या के लिए तैयार किया या फिर पूरा प्लान चेतन का ही था? इस मामले में दोनों के मोबाइल फोन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिससे जो डेटा है वो डिलीट कर दिया गया है।

0: आखिर केतन के मर्डर की साजिश कब रची गई? आखिर कब से केतन को मारने का प्लान था? किसने केतन की हत्या का आइडिया दिया? लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था? अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को बाहर निकालना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारियां सामने आ सकती हैं। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर के प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई। जांच ने तब एक नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ही डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं को शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई है बल्कि उसे अपने डिवाइस से रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फॉरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका FSL को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम FSL में वो क्यूरी वो पूछ।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच बातचीत संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। मोबाइल से साफ हो सकता है कि आखिर लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था। हालांकि सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ भी गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
3: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का दे के उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
5: इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, केतन को उसने ऐसा कन्वेंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे, तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
0: शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आया। उसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
2: जो उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
1: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
0: एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी, तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ी थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
6: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
0: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
7: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज़्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से ही डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारी बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
0: अब पुणे पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। इससे पहले सिया के भाई से 10 घंटों तक सवाल जवाब भी किए गए थे। ओमकार वाबले, पुणे आज तक। अब उज्जैन की जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, एक युवक के प्यार के इजहार पर मना करना युवती को भारी पड़ गया। सिर्फ एक आशिक ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
8: एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम, सिर्फ एक युवक ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ 14 बार कर दिए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि बेखौफ युवक ने महज 10 सेकंड में युवती पर 14 वार कर दिए। युवती चीखती रही लेकिन युवक रुका नहीं।
9: वो घटनास्थल पर आया, बालिका से बातचीत करी और बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद उसने उसके ऊपर चाकू से मल्टीपल वार किए। बालिका को भी हमने एसएन कृष्णा अस्पताल में रेफर हुई थी, तो वहां भर्ती है और हमने वहां देखने भी गया था और अभी उसका ऑपरेशन कराया जा रहा है।
8: पुलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लिया और आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया।
9: आरोपी को टीम ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान वो भागने के प्रयास में उसके पैर में चोट आई है, उसका पैर बुरी तरह जख्मी है, तो उसको भी इलाजरत इलाज कराया जा रहा है। एक बार इलाज हो जाए उसके बाद उससे उसके जो इंटेंशन है उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी।
8: जांच में सामने आया है कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोपी युवती से एक तरफा प्रेम करता था और जब युवती ने उससे दूरी बनाई तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर तेज हुई तकरार। अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी के बचाव में आरएसएस, कहा एसआईटी जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं। संसद में समाजवादी पार्टी उठाएगी मुद्दा। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक पर सियासी उबाल। राहुल और प्रियंका ने सरकार को घेरा, कहा शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को बनाया वसूली का सिस्टम, जांच के लिए एसआईटी का गठन। टीएमसी के बागी नेताओं के खिलाफ ममता गुट ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, गलत पहचान बताने, फर्जीवाड़ा और पार्टी नाम के इस्तेमाल करो। 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर बात। पाकिस्तान के कराची में धमाका और फायरिंग से अफरा तफरी, रेंजर्स हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक, अब तक 4 की मौत, कई घायल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अब ट्रस्ट की अगली बैठक 11 जुलाई को होनी है। इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर डॉक्टर अनिल मिश्रा के उत्तराधिकारी को चुनने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे पहले राम मंदिर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें चंपत राय को लेकर बयान सामने आया। बयान में कहा गया कि चंपत राय ने इस्तीफे की पेशकश की है लेकिन अभी उसे स्वीकार नहीं किया है, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें पूरे मामले में दुख जताया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। वहीं जनता से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। लेकिन सबसे बड़ी बात, राम मंदिर की ओर से बताया गया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख

0: सात लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं अलग अलग अमाउंट के रूप में।
1: 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
2: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर दो कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
1: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था जहां आज तक की टीम पहुंची।
3: क्या आप क्या कहना चाहेंगे?
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है वो अलग जाने।
1: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं।
5: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
3: अच्छा,
5: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
2: क्या पैसा बढ़ गया?
5: हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया और अभी हाल में भागवत करवाए हैं जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में CCTV कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी उसका कंट्रोल RMO को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: भले ही ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर ना किया हो लेकिन इस पूरे मामले में चंपत राय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी चंपत राय को लेकर सवाल पूछ रहा है।
7: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी या फिर चंद मोहरों को बलि का बकरा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
8: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले CCTV बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें कड़ी सजा मिले।
9: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
7: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपक राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
10: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से ही हो रहा है।
7: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
11: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
12: जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
7: SIT की जांच जारी है लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।
6: मंदिर अब 2027 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर 2027 में उनकी सरकार आती है तो अयोध्या को शानदार तरीके से डेवलप तो करेंगे और साथ ही साथ

0: आज भी करवाएंगे। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के इन तमाम दावों को सपना बताया।
1: इन्होंने तो रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र ने लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी की।
2: राम मंदिर पर हो रहे खुलासे से साधु से लेकर राम भक्तों तक में आक्रोश है। वहीं विपक्ष पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
3: सरकार को झुक करके उन्हें SIT बनानी पड़ी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न है कि SIT बनी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई, और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है।
4: मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ कि जो चंदा चोर हैं वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी CM से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए, इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ।
2: उधर योगी आदित्यनाथ जनता को भरोसा दे रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
5: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। SIT की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
2: साफ है राम मंदिर चंदा चोरी का शोर अब चुनावी मंचों पर गूंजने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या को नए तरीके से विकसित करेंगे, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अनुभूति करेंगे।
3: मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई है, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था या गुप्त दान था, तो ये आस्था की साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
2: इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम के दर्शन की तस्वीर साझा की तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। राम सबके हैं, फिर भाजपा सरकार की दोहरी नीति क्यों? अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के लिए कैमरे और विशेष छूट, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और आम श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम। कुछ दिन पहले जब मैंने दर्शन किए तब व्यवस्था अलग थी। बहरहाल राम मंदिर चंदा चोरी के मामले की गूंज इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। इस मुद्दे की पहली अग्नि परीक्षा 2027 के UP चुनाव में होगी, जहां जनता तय करेगी कि वो जांच से कितनी संतुष्ट नजर आई। आज तक ब्यूरो।
0: बात भ्रष्टाचार से जुड़ी एक और खबर की, जहां लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट पेपर लीक का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक हो गया, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने SIT जांच का ऐलान किया है।
2: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है।
6: प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है, ऐसा थाने भिवंडी में हुआ, गुना FIR हो गई है। हमारे परीक्षा परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त दोनों भी वहाँ पर। रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, अगली तारीख हम दे देंगे।
2: एग्जाम रविवार को होना था। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। जांच में पता चला है कि 1.5 करोड़ में पेपर बेचा जा रहा था।
7: पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कॉन्टेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ, उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है, उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं।
2: परीक्षा में 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे, ऐसे में अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है।
8: ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
9: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
10: जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है और कभी कभार जैसे लीक में 22 बच्चों ने वहां पे आत्महत्या की और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपने ये सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए, हम सबकी मांगनी है।
2: महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं उनके लिए भी टीईटी जरूरी है, लेकिन नीट के बाद अब टीईटी पेपर लीक ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: मुंबई में मुहर्रम जुलूस से पहले एक बहुत बड़ी साजिश का दावा सामने आया है। भाईखला पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार कर लगभग 14,900 कैप्सूल जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में इन कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिलने की बात सामने आई है। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला सामने आया, आरोपी से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बीबीए ग्रेजुएट है और पुणे में पेंट का कारोबार करता है। यह आरोपी ईरान और इराक भी जा चुका है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसके तार किसी आतंकी संगठन से जुड़े थे या इसके पीछे इसका कोई अन्य मकसद था। फिलहाल किसी आतंकी कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। अब बात है ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे हैं। अब सिया और चेतन के बीच में क्रिकेट का कनेक्शन सामने आया है।
2: क्या परिवार को चेतन और सिया के अफेयर की जानकारी थी? क्या सिया ने केतन के साथ शादी का विरोध किया था? क्या परिवार सिया की शादी जबरन केतन से कराना चाहता था? आखिर 19 साल की उम्र में सिया की शादी के जल्दबाजी परिवार को क्यों थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, जिसे लेकर रोज नहीं खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे खेल में पुलिस की जांच की सुई सिया के भाई की ओर भी घूम रही है। पुणे पुलिस ने इस मामले में सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की है। लगभग 10 घंटे तक उससे सवाल जवाब किए। सिया का भाई साहिल और चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के मैदान पर ही पहली बार सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई थी। फिर 2025 में दिवाली की पार्टी में सिया और चेतन दोबारा मिले, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हुई और बात आगे बढ़ गई।
11: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
2: यानी सिया के भाई को चेतन और सिया के बीच चल रही दोस्ती की जानकारी थी, क्योंकि खबरों की माने तो सिया के भाई के साथ मैच देखने जाती थी, जिसकी वजह कहीं ना कहीं चेतन से मुलाकात को माना जा रहा है। हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है।
12: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
13: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
12: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
13: नहीं थी, पहचानते नहीं।
12: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
14: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
12: हाँ।
14: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
15: हाँ। तो
14: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
12: हाँ।
14: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
16: इस बीच केस की जांच कर रहे पुणे पुलिस ने खुलासा किया है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। जांच में पता चला है कि सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या कर दी जाए तो उन्हें शादी के बारे में सोचने से पहले कम से कम 3 साल और मिल जाएंगे। पुलिस को शक है कि चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले 2-3 साल का और समय चाहता था। जांच में पता चला है कि अरेंज मैरिज के टूटने पर समाज में बदनामी के डर से सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि सिया का परिवार अभी भी दावा कर रहा है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
14: ये कुछ पता नहीं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
16: एक और अहम बात सामने आई है, वो ये है कि फरवरी में सगाई से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने गए थे। बताया जाता है कि जनवरी में दोनों राजस्थान गए थे और एक ग्रुप ट्रिप के तहत वहां 5 दिन रुके थे। चेतन मूल रूप से राजस्थान के रहने वाला है, लेकिन परिवार बार बार कह रहा है कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी।
12: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
13: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
14: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो इस बात की बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
16: बहरहाल इतना साफ है कि चेतन और सिया का भाई एक दूसरे को जानते थे। अब परिवार को इसकी कितनी जानकारी थी इसका सच आना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
0: अलिए भी आखिर हत्या की प्लानिंग किसकी थी? सिया ने चेतन को हत्या के लिए तैयार किया या फिर पूरा प्लान चेतन का ही था? इस मामले में दोनों के मोबाइल फोन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिससे जो डेटा है वो डिलीट कर दिया गया है।

0: आखिर केतन के मर्डर की साजिश कब रची गई? आखिर कब से केतन को मारने का प्लान था? किसने केतन की हत्या का आइडिया दिया? लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था? अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को बाहर निकालना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारियां सामने आ सकती हैं। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर की प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई? जांच ने तब एक नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ही डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं को शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई है बल्कि उसे अपने डिवाइस से रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फॉरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम एफएसएल में वो क्यूरी वो पूछ।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच बातचीत संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। मोबाइल से साफ हो सकता है कि आखिर लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था। हालांकि सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ भी गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
3: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
5: इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे, तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
0: शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आया। उसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
2: जो उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
1: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
0: एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी, तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ी थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
6: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
0: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
7: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज़्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से ही डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारी बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
0: अब पुणे पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। इससे पहले सिया के भाई से 10 घंटों तक सवाल जवाब भी किए गए थे। ओमकार वाबले, पुणे आज तक। अब उज्जैन की जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आए हैं एक युवक के प्यार के इजहार पर मना करना युवती को भारी पड़ गया। सिर्फ इरे आशिक ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
8: सिर्फ इरे युवक ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ 14 बार कर दिए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि बेखौफ युवक ने महज 10 सेकंड में युवती पर 14 वार कर दिए। युवती चीखती रही लेकिन युवक रुका नहीं।
9: वो घटनास्थल पर आया, बालिका से बातचीत करी और बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद उसने उसके ऊपर चाकू से मल्टीपल वार किए। बालिका को भी हमने एसएन कृष्णा अस्पताल में रेफर हुई थी तो वहां भर्ती है और हमने वहां देखने भी गया था और अभी उसका ऑपरेशन कराया जा रहा है।
8: पुलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लिया और आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया।
9: आरोपी को टीम ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान वो भागने के प्रयास में उसके पैर में चोट आई है, उसका पैर बुरी तरह जख्मी है तो उसको भी इलाज कराया जा रहा है। एक बार इलाज हो जाए उसके बाद उससे उसके जो इंटेंशन है उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी।
8: जांच में सामने आया है कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोपी युवती से एक तरफा प्रेम करता था और जब युवती ने उससे दूरी बनाई तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर तेज हुई तकरार। अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी के बचाव में आरएसएस, कहा एसआईटी जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं। संसद में समाजवादी पार्टी उठाएगी मुद्दा। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक पर सियासी उबाल। राहुल और प्रियंका ने सरकार को घेरा, कहा शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को बनाया वसूली का सिस्टम, जांच के लिए एसआईटी का गठन। टीएमसी के बागी नेताओं के खिलाफ ममता गुट ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, गलत पहचान बताने, फर्जीवाड़ा और पार्टी नाम के इस्तेमाल करो। 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर बात। पाकिस्तान के कराची में धमाका और फायरिंग से अफरा तफरी, रेंजर्स हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक, अब तक 4 की मौत, कई घायल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अब ट्रस्ट की अगली बैठक 11 जुलाई को होनी है। इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर डॉक्टर अनिल मिश्रा के उत्तराधिकारी को चुनने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे पहले राम मंदिर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें चंपत राय को लेकर बयान सामने आया। बयान में कहा गया कि चंपत राय ने इस्तीफे की पेशकश की है लेकिन अभी उसे स्वीकार नहीं किया है, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

0: चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें पूरे मामले में दुख जताया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। वहीं जनता से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन सबसे बड़ी बात, राम मंदिर की ओर से बताया गया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है।
1: 8 एक्यूज थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं, अलग अलग अमाउंट के रूप में।
0: 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
2: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
3: क्या आप क्या कहना चाहेंगी?
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की, 10 साल से उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं।
5: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं, तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
6: अच्छा,
5: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
2: क्या पैसा बढ़ गया?
5: हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया, और अभी हाल में भागवत करवाए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में CCTV कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल RMO को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
7: भले ही ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर ना किया हो, लेकिन इस पूरे मामले में चंपत राय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी चंपत राय को लेकर सवाल पूछ रहा है।
0: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर चंद मोहरों को बलि का पकड़ा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
8: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले CCTV बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें कड़ी सजा मिले।
9: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपत राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
10: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से ये हो रहा है।
0: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
11: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं,
6: जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
11: जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
0: SIT की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।
7: मंदिर अब 2027 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर 2027 में उनकी सरकार आती है तो अयोध्या को शानदार तरीके से डेवलप तो करेंगे और साथ ही साथ जांच भी करवाएंगे। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के इन तमाम दावों को सपना बताया।
12: इन्होंने तो रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी की।
13: राम मंदिर पर हो रहे खुलासे से साधु से लेकर राम भक्तों तक में आक्रोश है। वहीं विपक्ष पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
14: सरकार को झुक करके उन्हें SIT बनानी पड़ी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न है कि SIT बनी और SIT की रिपोर्ट किसको दी गई, और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है।
9: मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ कि जो चंदा चोर हैं वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं, योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी CM से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में उनको फांसी दी जाए, इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ।
13: उधर योगी आदित्यनाथ जनता को भरोसा दे रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
15: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। SIT की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
13: साफ है राम मंदिर चंदा चोरी का शोर अब चुनावी मंचों पर गूंजने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या को नए तरीके से विकसित करेंगे, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अनुभूति करेंगे।
14: मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई है, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था या गुप्त दान था, तो ये आस्था की साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
13: इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम के दर्शन की तस्वीर साझा की तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। राम सबके हैं, फिर भाजपा सरकार की दोहरी नीति क्यों? अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के लिए कैमरे और विशेष छूट, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और आम श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम। कुछ दिन पहले जब मैंने दर्शन किए तब व्यवस्था अलग थी। बहरहाल राम मंदिर चंदा चोरी के मामले की गूंज इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। इस मुद्दे की पहली अग्नि परीक्षा 2027 के UP चुनाव में होगी, जहां जनता तय करेगी कि वो जांच से कितनी संतुष्ट नजर आई। आज तक ब्यूरो।
7: बात भ्रष्टाचार से जुड़ी एक और खबर की, जहां लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट पेपर लीक का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक हो गया, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने SIT जांच का ऐलान किया है।
13: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है।
16: प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है ऐसा थाने भिवंडी में हुआ, FIR हो गई है, हमारे परीक्षा परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त दोनों भी वहाँ। रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, अगली तारीख हम दे देंगे।
13: एग्जाम रविवार को होना था। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। जांच में पता चला है कि 1.5 करोड़ में पेपर बेचा जा रहा था।
17: पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कॉन्टेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ, उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है, उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं।
13: परीक्षा में 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। ऐसे में अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है।
18: ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
19: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
20: जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है और कभी कभार जैसे लीक में 22 बच्चों ने वहां पे आत्महत्या की और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपणे ये सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए, हम सबकी मांगनी है।
13: महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं उनके लिए भी TET जरूरी है, लेकिन नीट के बाद अब TET पेपर लीक ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
7: मुंबई में मुहर्रम जुलूस से पहले एक बहुत बड़ी साजिश का दावा सामने आया है। भाईखला पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार कर लगभग 14,900 कैप्सूल जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में इन कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिलने की बात सामने आए। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला सामने आया। आरोपी से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी BBA ग्रेजुएट है और पुणे में पेंट का कारोबार करता है। यह आरोपी ईरान और इराक भी जा चुका है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसके तार किसी आतंकी संगठन से जुड़े थे या इसके पीछे इसका कोई अन्य मकसद था। फिलहाल किसी आतंकी कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। अब बात है ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे। अब सिया और चेतन के बीच में क्रिकेट का कनेक्शन सामने आया है।
13: क्या परिवार को चेतन और सिया के अफेयर की जानकारी थी? क्या सिया ने केतन के साथ शादी का विरोध किया था? क्या परिवार सिया की शादी जबरन केतन से कराना चाहता था? आखिर 19 साल की उम्र में सिया की शादी के जल्दबाजी परिवार को क्यों थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे खेल में पुलिस की जांच की सुई सिया के भाई की ओर भी घूम रही है। पुणे पुलिस ने इस मामले में सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की है। लगभग 10 घंटे तक उससे सवाल जवाब किए। सिया का भाई साहिल और चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के मैदान पर ही पहली बार सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई थी। फिर 2025 में दिवाली की पार्टी में सिया और चेतन दोबारा मिले, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हुई और बात आगे बढ़ गई।
21: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
13: यानी सिया के भाई को चेतन और सिया के बीच चल रही दोस्ती की जानकारी थी, क्योंकि खबरों की माने तो सिया के भाई के साथ मैच देखने जाती थी,
1: जिसकी वजह कहीं ना कहीं चेतन से मुलाकात को माना जा रहा है। हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है।
3: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
22: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
3: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
22: नहीं थी, पहचानते नहीं।
3: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
23: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
3: हाँ।
23: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
22: हाँ। मेरे तो साहिल।
23: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
3: हाँ।
23: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
1: इस बीच केस की जांच कर रहे पुणे पुलिस ने खुलासा किया है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। जांच में पता चला है कि सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या कर दी जाए तो उन्हें शादी के बारे में सोचने से पहले कम से कम 3 साल और मिल जाएंगे। पुलिस को शक है कि चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले 2-3 साल का और समय चाहता था। जांच में पता चला है कि अरेंज मैरिज के टूटने पर समाज में बदनामी के डर से सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि सिया का परिवार अभी भी दावा कर रहा है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
23: ये कुछ पता नहीं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
1: एक और अहम बात सामने आई है, वो ये है कि फरवरी में सगाई से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने गए थे। बताया जाता है कि जनवरी में दोनों राजस्थान गए थे और एक ग्रुप ट्रिप के तहत वहां 5 दिन रुके थे। चेतन मूल रूप से राजस्थान के रहने वाला है, लेकिन परिवार बार बार कह रहा है कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी।
3: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
22: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो, मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
23: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो इस बात की बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
1: बहरहाल इतना साफ है कि चेतन और सिया का भाई एक दूसरे को जानते थे। अब परिवार को इसकी कितनी जानकारी थी इसका सच आना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
7: अलिए भी आखिर हत्या की प्लानिंग किसकी थी? सिया ने चेतन को हत्या के लिए तैयार किया या फिर पूरा प्लान चेतन का ही था? इस मामले में दोनों के मोबाइल फोन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिससे जो डेटा है वो डिलीट कर दिया गया है।

0: आखिर केतन के मर्डर की साजिश कब रची गई? आखिर कब से केतन को मारने का प्लान था? किसने केतन की हत्या का आइडिया दिया? लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था? अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को बाहर निकालना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारियां सामने आ सकती हैं। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर के प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई। जांच ने तब एक नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ही डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं को शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई है बल्कि उसे अपने डिवाइस से रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फॉरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम एफएसएल में वो क्यूरी वो पूछ।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच बातचीत संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। मोबाइल से साफ हो सकता है कि आखिर लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था। हालांकि सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ भी गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
3: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
5: इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे, तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
0: शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आया। उसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
2: जो उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
1: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
0: एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी, तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ी थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
6: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
0: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
7: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज़्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से ही डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारी बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
0: अब पुणे पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। इससे पहले सिया के भाई से 10 घंटों तक सवाल जवाब भी किए गए थे। ओमकार वाबले, पुणे आज तक। अब उज्जैन की जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आए है, एक युवक के प्यार के इजहार पर मना करना युवती को भारी पड़ गया। सिर्फ आशिक ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
8: एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम, सिरफिरे युवक ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ 14 बार कर दिए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि बेखौफ युवक ने महज 10 सेकंड में युवती पर 14 वार कर दिए। युवती चीखती रही लेकिन युवक रुका नहीं।
9: वो घटनास्थल पर आया, बालिका से बातचीत करी और बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद उसने उसके ऊपर चाकू से मल्टीपल वार किए। बालिका को भी हमने एसएन कृष्णा अस्पताल में रेफर हुई थी तो वहां भर्ती है और हमने वहां देखने भी गया था और अभी उसका ऑपरेशन कराया जा रहा है।
8: पुलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लिया और आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया।
9: आरोपी को टीम ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान वो भागने के प्रयास में उसके पैर में चोट आई है, उसका पैर बुरी तरह जख्मी है तो उसको भी इलाज कराया जा रहा है। एक बार इलाज हो जाए उसके बाद उससे उसके जो इंटेंशन है उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी।
8: जांच में सामने आया है कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोपी युवती से एक तरफा प्रेम करता था और जब युवती ने उससे दूरी बनाई तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर तेज हुई तकरार। अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी के बचाव में आरएसएस, कहा एसआईटी जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं। संसद में समाजवादी पार्टी उठाएगी मुद्दा। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक पर सियासी उबाल। राहुल और प्रियंका ने सरकार को घेरा, कहा शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को बनाया वसूली का सिस्टम, जांच के लिए एसआईटी का गठन। टीएमसी के बागी नेताओं के खिलाफ ममता गुट ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, गलत पहचान बताने, फर्जीवाड़ा और पार्टी नाम के इस्तेमाल का आरोप। 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर बात। पाकिस्तान के कराची में धमाका और फायरिंग से अफरा तफरी, रेंजर्स हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक, अब तक 4 की मौत, कई घायल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अब ट्रस्ट की अगली बैठक 11 जुलाई को होनी है। इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर डॉक्टर अनिल मिश्रा के उत्तराधिकारी को चुनने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे पहले राम मंदिर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें चंपत राय को लेकर बयान सामने आया। बयान में कहा गया कि चंपत राय ने इस्तीफे की पेशकश की है लेकिन अभी उसे स्वीकारा नहीं गया है, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

0: चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें पूरे मामले में दुख जताया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। वहीं जनता से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। लेकिन सबसे बड़ी बात, राम मंदिर की ओर से बताया गया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है।
1: 8 एक्यूज्ड थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं, अलग अलग अमाउंट के रूप में।
0: 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
2: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।

0: जहाँ आज तक की टीम पहुँची।
1: क्या आप क्या कहना चाहेंगी?
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की, 10 साल से उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं।
3: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
4: अच्छा,
3: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
1: क्या पैसा बढ़ गया?
3: हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया, और अभी हाल में भागवत करवाए हैं जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सीसीटीवी कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के आरएमओ अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी उसका कंट्रोल आरएमओ को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
5: भले ही ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर ना किया हो, लेकिन इस पूरे मामले में चंपत राय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी चंपत राय को लेकर सवाल पूछ रहा है।
0: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर चंद मोहरों को बलि का बकरा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
6: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी सजा मिले।
7: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपक राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
8: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से ही हो रहा है।
0: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
9: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
10: जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
0: एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।
5: मंदिर अब 2027 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर 2027 में उनकी सरकार आती है तो अयोध्या को शानदार तरीके से डेवलप तो करेंगे और साथ ही साथ जांच भी करवाएंगे। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के इन तमाम दावों को सपना बताया।
11: इन्होंने तो रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई।
12: राम मंदिर पर हो रहे खुलासे से साधु से लेकर राम भक्तों तक में आक्रोश है। वहीं विपक्ष पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
13: सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है पूरे देश की जनता दुखी है, और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है।
7: मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ कि जो चंदा चोर है वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी सीएम से हटाने की तैयारी है,

0: मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ वो इस महापाप में शामिल ना हो, जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए, इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ दें।
1: उधर योगी आदित्यनाथ जनता को भरोसा दे रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
2: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। SIT की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
1: साफ है, राम मंदिर चंदा चोरी का शोर अब चुनावी मंचों पर गूंजने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या को नए तरीके से विकसित करेंगे, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अनुभूति करेंगे।
3: मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था, तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
1: इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम के दर्शन की तस्वीर साझा की तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। राम सबके हैं, फिर भाजपा सरकार की दोहरी नीति क्यों? अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के लिए कैमरे और विशेष छूट, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और आम श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम। कुछ दिन पहले जब मैंने दर्शन किए तब व्यवस्था अलग थी। बहरहाल, राम मंदिर चंदा चोरी के मामले की गूंज इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। इस मुद्दे की पहली अग्नि परीक्षा 2027 के यूपी चुनाव में होगी, जहां जनता तय करेगी कि वो जांच से कितनी संतुष्ट नजर आई। आज तक ब्यूरो।
4: बात भ्रष्टाचार से जुड़ी एक और खबर की, जहां लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट पेपर लीक का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक हो गया, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने SIT जांच का ऐलान किया है।
1: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है।
5: प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है, ऐसा थाने भिवंडी में हुआ, FIR हो गई है, हमारे परीक्षा परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त दोनों भी वहाँ। रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, अगली तारीख हम दे देंगे।
1: एग्जाम रविवार को होना था। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। जांच में पता चला है कि 1.5 करोड़ में पेपर बेचा जा रहा था।
6: पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कॉन्टेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ, उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है, उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं।
1: परीक्षा में 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। ऐसे में अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है।
7: ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
8: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
9: जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है, और कभी कभार जैसे नीट में 22 बच्चों ने वहां पे आत्महत्या की, और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपणे ये सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए, हम सबकी मांगनी है।
1: महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं, उनके लिए भी टीईटी जरूरी है, लेकिन नीट के बाद अब टीईटी पेपर लीक ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
4: मुंबई में मुहर्रम जुलूस से पहले एक बहुत बड़ी साजिश का दावा सामने आया है। भाईखला पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार कर लगभग 14,900 कैप्सूल जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में इन कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिलने की बात सामने आई है। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला सामने आया, आरोपी से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बीबीए ग्रेजुएट है और पुणे में पेंट का कारोबार करता है। यह आरोपी ईरान और इराक भी जा चुका है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसके तार किसी आतंकी संगठन से जुड़े थे या इसके पीछे इसका कोई अन्य मकसद था। फिलहाल किसी आतंकी कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। अब बात एक ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे हैं। अब सिया और चेतन के बीच में क्रिकेट का कनेक्शन सामने आया है।
1: क्या परिवार को चेतन और सिया के अफेयर की जानकारी थी? क्या सिया ने केतन के साथ शादी का विरोध किया था? क्या परिवार सिया की शादी जबरन केतन से कराना चाहता था? आखिर 19 साल की उम्र में सिया की शादी की जल्दबाजी परिवार को क्यों थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे खेल में पुलिस की जांच की सुई सिया के भाई की ओर भी घूम रही है। पुणे पुलिस ने इस मामले में सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की है। लगभग 10 घंटे तक उससे सवाल जवाब किए। सिया का भाई साहिल और चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के मैदान पर ही पहली बार सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई थी। फिर 2025 में दिवाली की पार्टी में सिया और चेतन दोबारा मिले, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हुई और बात आगे बढ़ गई।
10: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
1: यानी सिया के भाई को चेतन और सिया के बीच चल रही दोस्ती की जानकारी थी, क्योंकि खबरों की माने तो सिया के भाई के साथ मैच देखने जाती थी, जिसकी वजह कहीं ना कहीं चेतन से मुलाकात को माना जा रहा है। हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है।
11: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
12: नहीं, मैंने आज तक कभी उसे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
11: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
12: नहीं थी, पहचानते नहीं।
11: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
13: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
11: हाँ।
13: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
12: हाँ। तो मेरा साहिल।
13: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
11: हाँ।
13: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
1: इस बीच केस की जांच कर रही पुणे पुलिस ने खुलासा किया है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। जांच में पता चला है कि सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या कर दी जाए तो उन्हें शादी के बारे में सोचने से पहले कम से कम 3 साल और मिल जाएंगे।
14: पुलिस को शक है कि चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले 2-3 साल का और समय चाहता था। जांच में पता चला है कि अरेंज मैरिज के टूटने पर समाज में बदनामी के डर से सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि सिया का परिवार अभी भी दावा कर रहा है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
13: ये कुछ बता नहीं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
14: एक और अहम बात सामने आई है, वो ये है कि फरवरी में सगाई से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने गए थे। बताया जाता है कि जनवरी में दोनों राजस्थान गए थे और एक ग्रुप ट्रिप के तहत वहाँ 5 दिन रुके थे। चेतन मूल रूप से राजस्थान के रहने वाला है, लेकिन परिवार बार बार कह रहा है कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी।
11: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
12: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
13: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो इस बात की बच्चों का ऐसे था तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली का।
14: बहरहाल इतना साफ है कि चेतन और सिया का भाई एक दूसरे को जानते थे। अब परिवार को इसकी कितनी जानकारी थी इसका सच आना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
4: अलेबिया की आखिर हत्या की प्लानिंग किसकी थी? सिया ने चेतन को हत्या के लिए तैयार किया या फिर पूरा प्लान चेतन का ही था? इस मामले में दोनों के मोबाइल फोन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिससे जो डेटा है वो डिलीट कर दिया गया है।

0: आखिर केतन के मर्डर की साजिश कब रची गई? आखिर कब से केतन को मारने का प्लान था? किसने केतन की हत्या का आइडिया दिया? लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था? अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को बाहर निकालना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारियां सामने आ सकती हैं। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर के प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई। जांच ने तब एक नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ही डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं को शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई है बल्कि उसे अपने डिवाइस से रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फॉरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका FSL को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम FSL में वो क्यूरी वो पूछ।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच बातचीत संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। मोबाइल से साफ हो सकता है कि आखिर लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था। हालांकि सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ भी गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
3: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का दे के उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
5: इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, केतन को उसने ऐसा कन्वेंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे, तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
0: शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। उसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
2: उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
1: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
0: एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी, तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ी थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
6: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
0: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
7: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज़्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से ही डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारी बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
0: अब पुणे पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। इससे पहले सिया के भाई से 10 घंटों तक सवाल जवाब भी किए गए थे। ओमकार वाबले, पुणे आज तक। अब उज्जैन की जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, एक युवक के प्यार के इजहार पर मना करना युवती को भारी पड़ गया। सिर्फ एक आशिक ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
8: एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम, सिरफिरे युवक ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ 14 बार कर दिए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि बेखौफ युवक ने महज 10 सेकंड में युवती पर 14 बार कर दिए। युवती चीखती रही लेकिन युवक रुका नहीं।
9: वो घटनास्थल पर आया, बालिका से बातचीत करी और बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद उसने उसके ऊपर चाकू से मल्टीपल वार किए। बालिका को भी हमने एसएन कृष्णा अस्पताल में रेफर हुई थी तो वहाँ भर्ती है और हमने वहाँ देखने भी गया था और अभी उसका ऑपरेशन कराया जा रहा है।
8: पुलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लिया और आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया।
9: आरोपी को टीम ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान भागने के प्रयास में उसके पैर में चोट आई है, उसका पैर बुरी तरह जख्मी है तो उसको भी इलाजरत इलाज कराया जा रहा है। एक बार इलाज हो जाए उसके बाद उससे उसके जो इंटेंशंस हैं उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी।
8: जांच में सामने आया है कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोपी युवती से एक तरफा प्रेम करता था और जब युवती ने उससे दूरी बनाई तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर तेज हुई तकरार। अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी के बचाव में आरएसएस, कहा एसआईटी जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं। संसद में समाजवादी पार्टी उठाएगी मुद्दा। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक पर सियासी उबाल। राहुल और प्रियंका ने सरकार को घेरा, कहा शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को बनाया वसूली का सिस्टम, जांच के लिए एसआईटी का गठन। टीएमसी के बागी नेताओं के खिलाफ ममता गुट ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, गलत पहचान बताने, फर्जीवाड़ा और पार्टी नाम के इस्तेमाल का आरोप। 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर बात। पाकिस्तान के कराची में धमाका और फायरिंग से अफरा तफरी, रेंजर्स हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक, अब तक 4 की मौत, कई घायल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अब ट्रस्ट की अगली बैठक 11 जुलाई को होनी है। इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर डॉक्टर अनिल मिश्रा के उत्तराधिकारी को चुनने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे पहले राम मंदिर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें चंपत राय को लेकर बयान सामने आया। बयान में कहा गया कि चंपत राय ने इस्तीफे की पेशकश की है लेकिन अभी उसे स्वीकार नहीं किया है, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

0: चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें पूरे मामले में दुख जताया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। वहीं जनता से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। लेकिन सबसे बड़ी बात, राम मंदिर की ओर से बताया गया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है।
1: 8 एक्यूज थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं, अलग अलग अमाउंट के रूप में।
0: 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
2: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
3: क्या आप क्या कहना चाहेंगी?
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं।
5: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं, तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
3: अच्छा,
5: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
2: क्या पैसा बढ़ गया?
5: हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया, और अभी हाल में भागवत करवाए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सीसीटीवी कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के RMO अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल RMO को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
6: भले ही ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर ना किया हो, लेकिन इस पूरे मामले में चंपत राय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी चंपत राय को लेकर सवाल पूछ रहा है।
0: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर चंद मोहरों को बलि का बकरा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
7: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले CCTV बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें कड़ी सजा मिले।
8: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपत राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
9: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से ही हो रहा है।
0: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
10: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं, जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
11: उस जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
0: एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।
6: मंदिर अब 2027 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर 2027 में उनकी सरकार आती है तो अयोध्या को शानदार तरीके से डेवलप तो करेंगे और साथ ही साथ जांच भी करवाएंगे। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के इन तमाम दावों को सपना बताया।
12: इन्होंने तो रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र ने लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी की।
13: राम मंदिर पर हो रहे खुलासे से साधु से लेकर राम भक्तों तक में आक्रोश है। वहीं विपक्ष पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
14: सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है।
8: मैं योगी जी को कहना चाहता हूं कि जो चंदा चोर हैं वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी सीएम से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूं वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए, इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ।
13: उधर योगी आदित्यनाथ जनता को भरोसा दे रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
15: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
13: साफ है, राम मंदिर चंदा चोरी का शोर अब चुनावी मंचों पर गूंजने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या को नए तरीके से विकसित करेंगे, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अनुभूति करेंगे।
14: मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था या गुप्त दान था, तो ये आस्था की साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
13: इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम के दर्शन की तस्वीर साझा की तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। राम सबके हैं, फिर भाजपा सरकार की दोहरी नीति क्यों? अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के लिए कैमरे और विशेष छूट, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और आम श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम। कुछ दिन पहले जब मैंने दर्शन किए तब व्यवस्था अलग थी। बहरहाल राम मंदिर चंदा चोरी के मामले की गूंज इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। इस मुद्दे की पहली अग्नि परीक्षा 2027 के यूपी चुनाव में होगी, जहां जनता तय करेगी कि वो जांच से कितनी संतुष्ट नजर आई। आज तक ब्यूरो।
6: बात भ्रष्टाचार से जुड़ी एक और खबर की, जहां लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट पेपर लीक का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक हो गया, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच का ऐलान किया है।
13: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है।
16: प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है, ऐसा थाने भिवंडी में हुआ, पुनः एफआईआर हो गई है। हमारे परीक्षा परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त दोनों भी वहाँ पर। रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, अगली तारीख हम दे देंगे।
13: एग्जाम रविवार को होना था। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। जांच में पता चला है कि 1.5 करोड़ में पेपर बेचा जा रहा था।
17: पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कॉन्टेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ। उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है। उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं।
13: परीक्षा में 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। ऐसे में अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है।
18: ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
19: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
20: जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है और कभी कभार जैसे नीट में 22 बच्चों ने वहां पे आत्महत्या की और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपणे ये सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए, हम सबकी मांगनी है।
13: महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं उनके लिए भी टीईटी जरूरी है, लेकिन नीट के बाद अब टीईटी पेपर लीक ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
6: मुंबई में मुहर्रम जुलूस से पहले एक बहुत बड़ी साजिश का दावा सामने आया है। भाईखला पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार कर लगभग 14,900 कैप्सूल जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में इन कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिलने की बात सामने आई। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला सामने आया। आरोपी से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बीबीए ग्रेजुएट है और पुणे में पेंट का कारोबार करता है। यह आरोपी ईरान और इराक भी जा चुका है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसके तार किसी आतंकी संगठन से जुड़े थे या इसके पीछे इसका कोई अन्य मकसद था। फिलहाल किसी आतंकी कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है।
21: उसने इस प्रोसेशन को टारगेट करने के लिए और साथ ही में लोगों को हानि पहुंचाने के लिए टोटल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर की थी ऑनलाइन और साथ ही में 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल के उसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट किया और वहां पे बहाना बनाया कि ये कैप्सूल पेन किलर की तरह काम करती है और प्रोसेशन में जाने वाले लोगों को ऐसा फंसा के उसने कैप्सूल बेचने की कोशिश करी। परंतु मुंबई पुलिस की सतर्कता और होशियारी और मेहनत की वजह से ये बड़ा हादसा टला है।
6: अब बात है कैसे हत्याकांड के जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे हैं। अब सिया और चेतन के बीच में क्रिकेट का कनेक्शन सामने आया है।
13: क्या परिवार को चेतन और सिया के अफेयर की जानकारी थी? क्या सिया ने केतन के साथ शादी का विरोध किया था? क्या परिवार सिया की शादी जबरन केतन से कराना चाहता था? आखिर 19 साल की उम्र में सिया की शादी की जल्दबाजी परिवार को क्यों थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं।
1: इस पूरे खेल में पुलिस की जांच की सुई सिया के भाई की ओर भी घूम रही है। पुणे पुलिस ने इस मामले में सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की है। लगभग 10 घंटे तक उससे सवाल जवाब किए। सिया का भाई साहिल और चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के मैदान पर ही पहली बार सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई थी। फिर 2025 में दिवाली की पार्टी में सिया और चेतन दोबारा मिले, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हुई और बात आगे बढ़ गई।
4: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
1: यानी सिया के भाई को चेतन और सिया के बीच चल रही दोस्ती की जानकारी थी, क्योंकि खबरों की माने तो सिया के भाई के साथ मैच देखने जाती थी, जिसकी वजह कहीं ना कहीं चेतन से मुलाकात को माना जा रहा है। हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है।
22: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
23: नहीं, मैंने आज तक कभी उससे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
22: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं
23: पहचानते? पहचानते नहीं।
22: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
24: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
22: हाँ।
24: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
23: हाँ। मेरा साहिल।
24: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
22: हाँ।
24: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
1: इस बीच केस की जांच कर रहे पुणे पुलिस ने खुलासा किया है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। जांच में पता चला है कि सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या कर दी जाए तो उन्हें शादी के बारे में सोचने से पहले कम से कम 3 साल और मिल जाएंगे। पुलिस को शक है कि चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले 2-3 साल का और समय चाहता था। जांच में पता चला है कि अरेंज मैरिज के टूटने पर समाज में बदनामी के डर से सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि सिया का परिवार अभी भी दावा कर रहा है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
24: ये कुछ पता नहीं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
1: एक और अहम बात सामने आई है, वो ये है कि फरवरी में सगाई से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने गए थे। बताया जाता है कि जनवरी में दोनों राजस्थान गए थे और एक ग्रुप ट्रिप के तहत वहां 5 दिन रुके थे। चेतन मूल रूप से राजस्थान के रहने वाला है, लेकिन परिवार बार बार कह रहा है कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी।
22: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
23: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
24: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए आप पूरी गोयल फैमिली को।
1: बहरहाल इतना साफ है कि चेतन और सिया का भाई एक दूसरे को जानते थे। अब परिवार को इसकी कितनी जानकारी थी इसका सर्च आना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
6: अलीबे की आखिर हत्या की प्लानिंग किसकी थी? सिया ने चेतन को हत्या के लिए तैयार किया या फिर पूरा प्लान चेतन का ही था? इस मामले में दोनों के मोबाइल फोन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिससे जो डेटा है वो डिलीट कर दिया गया है।

0: आखिर केतन के मर्डर की साजिश कब रची गई? आखिर कब से केतन को मारने का प्लान था? किसने केतन की हत्या का आइडिया दिया? लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था? अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को बाहर निकालना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारियां सामने आ सकती हैं। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर के प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई? जांच ने तब एक नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ही डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं को शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई है बल्कि उसे अपने डिवाइस से रिसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फॉरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम एफएसएल में वो क्यूरी वो पूछे।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच बातचीत संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। मोबाइल से साफ हो सकता है कि आखिर लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था। हालांकि सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ भी गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
3: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का दे के उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे है वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
5: इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी, उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
0: शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आया। उसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
2: जो उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
1: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
0: एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ी थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
6: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
0: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही? क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
7: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज़्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से ही डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारी बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
0: अब पुणे पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। इससे पहले सिया के भाई से 10 घंटों तक सवाल जवाब भी किए गए थे। ओमकार वाबले, पुणे आज तक। अब उज्जैन की जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, एक युवक के प्यार के इजहार पर मना करना युवती को भारी पड़ गया। सिर्फ एक आशिक ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
8: एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम, सिर्फ एक युवक ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ 14 बार कर दिए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि बेखौफ युवक ने महज 10 सेकंड में युवती पर 14 वार कर दिए। युवती चीखती रही लेकिन युवक रुका नहीं।
9: वो घटनास्थल पर आया, बालिका से बातचीत करी और बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद उसने उसके ऊपर चाकू से मल्टीपल वार किए। बालिका को भी हमने एस एन कृष्णा अस्पताल में रेफर हुई थी तो वहाँ भर्ती है और हमने वहाँ देखने भी गया था और अभी उसका ऑपरेशन कराया जा रहा है।
8: पुलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लिया और आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया।
9: आरोपी को टीम ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान वो भागने के प्रयास में उसके पैर में चोट आई है, उसका पैर बुरी तरह जख्मी है तो उसको भी इलाज कराया जा रहा है। एक बार इलाज हो जाए उसके बाद उससे उसके जो इंटेंशन है उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी।
8: जांच में सामने आया है कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोपी युवती से एक तरफा प्रेम करता था और जब युवती ने उससे दूरी बनाई तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर तेज हुई तकरार। अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी के बचाव में आरएसएस, कहा एसआईटी जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं। संसद में समाजवादी पार्टी उठाएगी मुद्दा। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक पर सियासी उबाल। राहुल और प्रियंका ने सरकार को घेरा, कहा शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को बनाया वसूली का सिस्टम, जांच के लिए एसआईटी का गठन। टीएमसी के बागी नेताओं के खिलाफ ममता गुट ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, गलत पहचान बताने, फर्जीवाड़ा और पार्टी नाम के इस्तेमाल का आरोप। 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत। राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर बात। पाकिस्तान के कराची में धमाका और फायरिंग से अफरा तफरी। रेंजर्स हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक, अब तक 4 की मौत, कई घायल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अब ट्रस्ट की अगली बैठक 11 जुलाई को होनी है। इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर डॉक्टर अनिल मिश्रा के उत्तराधिकारी को चुनने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे पहले राम मंदिर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें चंपत राय को लेकर बयान सामने आया। बयान में कहा गया कि चंपत राय ने इस्तीफे की पेशकश की है लेकिन अभी उसे स्वीकार नहीं किया है, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

0: चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें पूरे मामले में दुख जताया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। वहीं जनता से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। लेकिन सबसे बड़ी बात, राम मंदिर की ओर से बताया गया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है।
1: 8 एक्यूज थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं, अलग अलग अमाउंट के रूप में।
0: 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
2: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
3: क्या आप क्या कहना चाहेंगे?
4: मेरे भाई को फंसाया।

0: रहे हैं तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
1: अच्छा,
0: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
1: क्या पैसा बढ़ गया?
0: हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया, और अभी हाल में भागवत करवाए हैं जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सीसीटीवी कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां टिन्नू यादव की तरह यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट के आरएमओ अर्जुन देव की भूमिका पर भी रिपोर्ट में सामने आई है। जिस कमरे में नोट गिने जाते थे और चोरी हो रही थी, उसका कंट्रोल आरएमओ को दिया गया था। अर्जुन देव का पिछले 17 सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसकी वजह उसका चंपत राय से करीबी होना बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: भले ही ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर ना किया हो, लेकिन इस पूरे मामले में चंपत राय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी चंपत राय को लेकर सवाल पूछ रहा है।
2: क्या राम भक्तों से धोखा करने वाली इस जांच की आंच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चंपत राय से सवाल किए जाएंगे? क्या चढ़ावा चोरी के इस पूरे खेल में चंपत राय की जिम्मेदारी तय होगी, या फिर चंद मोहरों को बलि का बकरा बनाकर मामले की लीपापोती कर दी जाएगी?
4: ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी सजा मिले।
5: हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, बड़े बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, तभी लोगों के को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जिन लोगों ने भी चोरी की उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
2: चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उनकी नाक के नीचे चढ़ावे की चोरी का पूरा खेल खेला गया। मामला बाहर आया तो चंपत राय की चुप्पी पर सवाल खड़े हुए। 28 दिन बाद इस्तीफे की खबर आई, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से चंपत राय पाक साफ साबित हो जाते हैं?
6: तो जब उन्होंने शिकायत की चंपत राय जी से कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, तो लेखाधिकारी को हटा दिया, यानी कि चंपत राय जी की शह से ये हो रहा है।
2: हालांकि चंपत राय के पुराने साथी अभी भी उनके बचाव में हैं।
7: कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा।
8: जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, पूरे अपने जीवन को तपस्या में लगाया है, उनके लिए धन और वैभव यदि रहता तो बहुत पहले पा जाते।
2: एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन अब तक उनकी जांच में ट्रस्ट कमेटी के 14 लोगों में से किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।
3: मंदिर अब 2027 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर 2027 में उनकी सरकार आती है तो अयोध्या को शानदार तरीके से डेवलप तो करेंगे और साथ ही साथ जांच भी करवाएंगे। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के इन तमाम दावों को सपना बताया।
9: इन्होंने तो रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र ने लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी की।
2: राम मंदिर पर हो रहे खुलासे से साधु से लेकर राम भक्तों तक में आक्रोश है। वहीं विपक्ष पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
10: सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है।
5: मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ कि जो चंदा चोर है वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं, योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी सीएम से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए, इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ।
2: उधर योगी आदित्यनाथ जनता को भरोसा दे रहे हैं

0: किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
1: सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। SIT की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
0: साफ है, राम मंदिर चंदा चोरी का शोर अब चुनावी मंचों पर गूंजने वाला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या को नए तरीके से विकसित करेंगे, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अनुभूति करेंगे।
2: मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारी हुई है, अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्तदान था, तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
0: इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम के दर्शन की तस्वीर साझा की तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। राम सबके हैं, फिर भाजपा सरकार की दोहरी नीति क्यों? अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के लिए कैमरे और विशेष छूट, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और आम श्रद्धालुओं के लिए कड़े नियम। कुछ दिन पहले जब मैंने दर्शन किए तब व्यवस्था अलग थी। बहरहाल राम मंदिर चंदा चोरी के मामले की गूंज इतनी आसानी से थमने वाली नहीं है। इस मुद्दे की पहली अग्नि परीक्षा 2027 के यूपी चुनाव में होगी, जहां जनता तय करेगी कि वो जांच से कितनी संतुष्ट नजर आई। आज तक ब्यूरो।
3: बात भ्रष्टाचार से जुड़ी एक और खबर की, जहां लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट पेपर लीक का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक हो गया, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने SIT जांच का ऐलान किया है।
0: महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET का पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने इसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी है।
4: प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है, ऐसा थाने भिवंडी में हुआ, पुनः FIR हो गई है, हमारे परीक्षा परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त दोनों भी वहाँ। रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, अगली तारीख हम दे देंगे।
0: एग्जाम रविवार को होना था। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक की सूचना के बाद ठाणे के भिवंडी इलाकों के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसके बाद एग्जामिनेशन काउंसिल के अफसरों को बुलाया गया और जब्त पेपर को वेरीफाई कराया गया। जांच में पता चला है कि 1.5 करोड़ में पेपर बेचा जा रहा था।
5: पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। शिक्षण विभाग के जो सीनियर ऑफिसर है उनको कॉन्टेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हुआ, उन्होंने भी वही कहा, रिपोर्ट दिया कि ये वही पेपर है, इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है, उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किया है।
0: परीक्षा में 4,28,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। ऐसे में अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है।
6: ये सरकार की नाकामयाबी है, ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते। अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
7: समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता।
8: जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है, और कभी कभार जैसे नीट में 22 बच्चों ने वहां पे आत्महत्या की, और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपणे ये सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए, सबकी मांगनी है।
0: महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए या जो पहले से सरकारी टीचर हैं, उनके लिए भी टीईटी जरूरी है। लेकिन नीट के बाद अब टीईटी पेपर लीक ने एक बार फिर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
3: मुंबई में मुहर्रम जुलूस से पहले एक बहुत बड़ी साजिश का दावा सामने आया है। भाईखला पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार कर लगभग 14,900 कैप्सूल जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में इन कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिलने की बात सामने आए। एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला सामने आया। आरोपी से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बीबीए ग्रेजुएट है और पुणे में पेंट का कारोबार करता है। ये आरोपी ईरान और इराक भी जा चुका है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसके तार किसी आतंकी संगठन से जुड़े थे या इसके पीछे इसका कोई अन्य मकसद था। फिलहाल किसी आतंकी कनेक्शन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। अब बात एक ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। आखिर सिया ने केतन का कत्ल क्यों किया? क्या वो शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे। अब सिया और चेतन के बीच में क्रिकेट का कनेक्शन सामने आया है।
0: क्या परिवार को चेतन और सिया के अफेयर की जानकारी थी? क्या सिया ने केतन के साथ शादी का विरोध किया था? क्या परिवार सिया की शादी जबरन केतन से कराना चाहता था? आखिर 19 साल की उम्र में सिया की शादी की जल्दबाजी परिवार को क्यों थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे खेल में पुलिस की जांच की सुई सिया के भाई की ओर भी घूम रही है। पुणे पुलिस ने इस मामले में सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की है। लगभग 10 घंटे तक उससे सवाल जवाब किए। सिया का भाई साहिल और चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट के मैदान पर ही पहली बार सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई थी। फिर 2025 में दिवाली की पार्टी में सिया और चेतन दोबारा मिले, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी हुई और बात आगे बढ़ गई।
9: चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे और वो दोनों दोस्त भी थे।
0: यानी सिया के भाई को चेतन और सिया के बीच चल रही दोस्ती की जानकारी थी, क्योंकि खबरों की माने तो सिया के भाई के साथ मैच देखने जाती थी, जिसकी वजह कहीं ना कहीं चेतन से मुलाकात को माना जा रहा है। हालांकि सिया के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में या उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है।
10: अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को?
11: नहीं, मैंने आज तक कभी उससे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई।
10: आप पहचानते नहीं थे? आप भी नहीं पहचानते?
11: नहीं थी, पहचानते नहीं।
10: वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स है, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे।
12: वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था।
10: हाँ।
12: उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था।
11: हाँ। मेरा साहिल।
12: उस टाइम पे ये मिले थे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं।
10: हाँ।
12: उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
0: इस बीच केस की जांच कर रहे पुणे पुलिस ने खुलासा किया है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। जांच में पता चला है कि सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या कर दी जाए तो उन्हें शादी के बारे में सोचने से पहले कम से कम 3 साल और मिल जाएंगे। पुलिस को शक है कि चेतन चौधरी भी सिया से शादी करने से पहले 2-3 साल का और समय चाहता था।
13: जांच में पता चला है कि अरेंज मैरिज के टूटने पर समाज में बदनामी के डर से सिया और चेतन ने मिलकर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि सिया का परिवार अभी भी दावा कर रहा है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी।
12: ये कुछ बताएं था, जब से उसकी सगाई हुई ना वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे।
13: एक और अहम बात सामने आई है वो ये है कि फरवरी में सगाई से पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी अपने दोस्तों के साथ उदयपुर घूमने गए थे। बताया जाता है कि जनवरी में दोनों राजस्थान गए थे और एक ग्रुप ट्रिप के तहत वहां 5 दिन रुके थे। चेतन मूल रूप से राजस्थान के रहने वाला है लेकिन परिवार बार बार कह रहा है कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी।
10: सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है।
11: ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंडर डाल दो मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो।
12: अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो इस बात की बच्चों का ऐसे था तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को।
13: बहरहाल इतना साफ है कि चेतन और सिया का भाई एक दूसरे को जानते थे। अब परिवार को इसकी कितनी जानकारी थी इसका सर्च आना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
3: अलीब ये क्या आखिर हत्या की प्लानिंग किसकी थी? सिया ने चेतन को हत्या के लिए तैयार किया या फिर पूरा प्लान चेतन का ही था? इस मामले में दोनों के मोबाइल फोन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिससे जो डेटा है वो डिलीट कर दिया गया है।

0: आखिर केतन के मर्डर की साजिश कब रची गई? आखिर कब से केतन को मारने का प्लान था? किसने केतन की हत्या का आइडिया दिया? लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था? अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को बाहर निकालना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारियां सामने आ सकती हैं। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर के प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई? जांच ने तब एक नया मोड़ लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ही डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और अन्य डिलीट किए गए डेटा की फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं को शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई है बल्कि उसे अपने डिवाइस से रीसाइकल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फॉरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई।
1: जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे।
2: बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ?
1: अभी तक तो हमारे अभी पंचनामे से क्या है, हम एफएसएल में वो क्यूरी वो पूछे।
0: कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच बातचीत संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। मोबाइल से साफ हो सकता है कि आखिर लोहगढ़ जाने का प्लान किसका था। हालांकि सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था, केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ भी गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो।
3: मैं तो कहता हूं अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। अब इससे ज्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।
4: अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे।
5: इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे, तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
0: शुरुआत में चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो घटना के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आया। उसके बाद दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और पूरी घटना का क्रम पुलिस को बता दिया।
2: जो उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी।
1: जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
0: एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था, और ये भी पता चला है कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी, तो क्या इसी वजह से सिया की केतन के लिए नफरत बढ़ी थी? लेकिन हत्या की ये वजह तो नहीं हो सकती कि विग लगाना पसंद नहीं आया तो मार दिया।
6: केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना।
0: अब सवाल ये है कि सच क्या है, हत्या की वजह क्या रही, क्योंकि सिया तो केतन के सामने बहुत खुश नजर आती थी। ये भी पता चला है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पिछले 45-50 सालों से जानते थे, इसीलिए दोनों ने बच्चों की शादी तय की।
7: जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज़्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया।
0: अब पुणे पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। इससे पहले सिया के भाई से 10 घंटों तक सवाल जवाब भी किए गए थे। ओमकार वाबले, पुणे आज तक। अब उज्जैन की जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, एक युवक के प्यार के इजहार पर मना करना युवती को भारी पड़ गया। सिर्फ एक आशिक ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
8: एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम, सिर्फ एक युवक ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ 14 बार कर दिए। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि बेखौफ युवक ने महज 10 सेकंड में युवती पर 14 वार कर दिए। युवती चीखती रही लेकिन युवक रुका नहीं।
9: वो घटनास्थल पर आया, बालिका से बातचीत करी और बातचीत करते करते थोड़ी देर बाद उसने उसके ऊपर चाकू से मल्टीपल वार किए। बालिका को भी हमने एस एन कृष्णा अस्पताल में रेफर हुई थी तो वहाँ भर्ती है और हमने वहाँ देखने भी गया था और उसका ऑपरेशन कराया जा रहा है।
8: पुलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लिया और आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया।
9: आरोपी को टीम ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान भागने के प्रयास में उसके पैर में चोट आई है, उसका पैर बुरी तरह जख्मी है तो उसको भी इलाज कराया जा रहा है। एक बार इलाज हो जाए उसके बाद उससे उसके जो इंटेंशन है उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी।
8: जांच में सामने आया है कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोपी युवती से एक तरफा प्रेम करता था और जब युवती ने उससे दूरी बनाई तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर तेज हुई तकरार। अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी के बचाव में आरएसएस, कहा एसआईटी जांच के बाद सियासत की जरूरत नहीं। संसद में समाजवादी पार्टी उठाएगी मुद्दा। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक पर सियासी उबाल। राहुल और प्रियंका ने सरकार को घेरा, कहा शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को बनाया वसूली का सिस्टम, जांच के लिए एसआईटी का गठन। टीएमसी के बागी नेताओं के खिलाफ ममता गुट ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, गलत पहचान बताने, फर्जीवाड़ा और पार्टी नाम के इस्तेमाल का आरोप। 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि, द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की मजबूती पर बात। पाकिस्तान के कराची में धमाका और फायरिंग से अफरा तफरी, रेंजर्स हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक, अब तक 4 की मौत, कई घायल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अब ट्रस्ट की अगली बैठक 11 जुलाई को होनी है। इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर डॉक्टर अनिल मिश्रा के उत्तराधिकारी को चुनने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे पहले राम मंदिर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें चंपत राय को लेकर बयान सामने आया। बयान में कहा गया कि चंपत राय ने इस्तीफे की पेशकश की है लेकिन अभी उसे स्वीकार नहीं किया है, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

0: चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें पूरे मामले में दुख जताया गया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई। वहीं जनता से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे। लेकिन सबसे बड़ी बात, राम मंदिर की ओर से बताया गया कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई तो उनसे जुड़ी कई सच्चाई सामने आई। इन आरोपियों में से एक रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव बार बार चोरी करता दिखा था। सीसीटीवी में उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। 7 आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की गई है।
1: 8 एक्यूज्ड थे, उसमें से 7 लोगों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं, अलग अलग अमाउंट के रूप में।
0: 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद होने की बात सामने आ रही है।
2: टिन्नू यादव के इस हॉस्टल से ही, दुर्गापुरी कॉलोनी का ये अयोध्या में ही दुर्गापुरी कॉलोनी ये हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में यूं तो यहाँ अयोध्या विश्वविद्यालय के आसपास के कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं जो टिन्नू यादव ने अपने निजी यूज के लिए रखे हैं। कहने को तो दोनों कमरे पूजा घर है, उसका अपना कमरे उनके कब्जे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद, जब गुरुवार देर रात टिन्नू यादव को अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया, तो शुक्रवार की सुबह उसको यहां लाया गया, और पुलिस के अनुसार जो दस्तावेज, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लगभग 20 लाख रुपए टिन्नू यादव के पास से बरामद हुए हैं।
0: इस मामले में एक गिरफ्तारी अनुकल्प मिश्रा की भी हुई है, जिसकी देखरेख में नोटों की गिनती की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का एक घर लिया था, जहां आज तक की टीम पहुंची।
3: क्या आप क्या कहना चाहेंगी?
4: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की, 10 साल से उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने।
0: उधर अनुकल्प के रिश्तेदार पैसों को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं।
5: ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं, तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा।
2: अच्छा,
5: पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे लोग।
2: क्या पैसा बढ़ गया?
5: हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया, और अभी हाल में भागवत करवाए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सीसी